0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल हैं। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, अमृतधारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वेलकम। कहा जाता है, जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हो। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हो, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं, और ऐसे ही जिनकी वजह से हम सब खुश होते हैं वो आज हमारे यहाँ पधारे हैं, ज्ञानेश्वर जी। रेडियो मधुबन की तरफ से हम सब पहले उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ज्ञानेश्वर जी, स्वागत है, गुड मॉर्निंग, वेलकम।
1: थैंक यू भक्ति जी, और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर लिसनर्स। रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण को बहुत बहुत सुप्रभात और शुभकामनाएं।
0: थैंक यू ज्ञानेश्वर जी। हम चर्चा कर रहे हैं, श्री राम जब वन में गए तब उनका वन में जाना भी अच्छाई के लिए ही था, या कह सकते हैं जो भी कोई हमारे लिए बुरी घटना नजर आती है उसमें भी अच्छाई छिपी हुई है। और उसी प्रकार श्री राम जी का वन जाना और वन में जाने के बाद जो मुख्य घटनाएं हैं उसमें दो घटनाएं मुझे याद आती है। वो एक है, वो अहिल्या जी है, उनका भी उद्धार हो गया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: ये बहुत अच्छा आपने टॉपिक निकाला है, इंट्रोड्यूस किया है, और एक पॉइंट जो है जो बार बार हम कहते तो आए हैं लेकिन उसके ऊपर गौर नहीं करते कि जो जिंदगी में घटना घटती है वो कल्याणकारी है। तो इसलिए मुझे यही लगता है कि जैसे राम जी का वन में जाना, वनवाह में जाना, वो भले बहुत लोगों के लिए दुखकारी होगा लेकिन वहां एक व्यक्ति बहुत सालों से इंतजार कर रही थी।
0: अच्छा, वो व्यक्ति थे?
1: वो व्यक्ति जो इंतजार कर रही थी वो पत्थर के रूप में इंतजार कर रही थी।
0: ओह।
1: और वो पत्थर के रूप में इंतजार कर रही थी क्योंकि उसको किसी ने शराब दिया था कि अभी तो आप पत्थर बन गई हो लेकिन जब प्रभु रामचंद्र जी वन में आएंगे और उनका पदस्पर्श जब होगा तब आप फिर से जिंदा हो जाएगी या मानव हो जाएगी।
0: जी, उसके पीछे एक्चुअली क्या संदेश है?
1: अभी वो जो व्यक्ति है वो है अहिल्या। अभी देखिए, अहिल्या की कहानी जो है वो हमने बहुत बार उसके ऊपर डिस्कस भी किया है, लेकिन हर कहानी जब भी नए सिरे से डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, तो नए सिरे से उससे कुछ अलग पहलू मिल जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये अहिल्या की कहानी सबको मालूम है कि जैसे ऋषि थे और गौतम ऋषि जो थे उन्होंने उनको श्राप दिया था और वो पत्थर बन गई थी, है पतिव्रता, बहुत पतिव्रता, उनका गायन भी है। और जो पांच कन्याएं जो है, अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा मंदोदरी तथा पंचकन्याम स्मरे नित्यम महापातक नाशनम, उसमें टॉप में सबसे प्रथम चरण में अहिल्या जी है।
0: लेकिन ज्ञानेश्वर जी, मुझे ये बिल्कुल अटपटा लगता है शास्त्रों की कई बातों का, कि पहली बात तो ये है कि इतने महान ऋषि, इतने महान महर्षि, और फिर वो श्राप क्यों देते हैं, एक बात जो मेरी डाउट है। और दूसरी बात यह है कि श्राप देने के बाद अहिल्या जी जो है, उनकी पत्नी जो है, वो पत्थर क्यों बन जाती है?
1: देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये सवाल अगर किसी के मन में आ गया तो वो नेचुरल है, स्वाभाविक है। आपके यहाँ हमारे भारत में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो जैसा कहा है उसे मान लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, उसमें चर्चा नहीं करते, और चर्चा करेंगे तो उनको लगता है इसके ऊपर चर्चा नहीं करनी चाहिए, भक्तिभाव से सुनते हैं, और दूसरे हैं वो तराशते हैं। इसमें मुझे ये फर्क नजर आता है कि कई लोग जो है एक पत्थर लेते हैं, उसको गेरू लगाते हैं और फिर उसकी पूजा करते हैं, तो पत्थर को कुछ तकलीफ नहीं हुई, सिर्फ उसको गेरू का रंग चढ़ाया और फिर उसकी पूजा होने लगी। कई लोग ऐसे हैं कि पत्थर को तराशते रहते हैं, तराशने के बाद उससे मूर्ति निकल आती है
0: जी।
1: ये मूर्ति जब निकल आती है, ये जब भी मैं मूर्ति की तरफ देखता हूँ, तब मुझे ये लगता है कि ये पत्थर ने कितने घाव झेले होंगे, कितनी तकलीफें झेली होगी, और ये तकलीफ उठाने के बाद ही वो मूर्ति बन गई
0: जी।
1: वो उसके ऊपर एक मुझे कहानी याद आती है कि एक शायद बहुत बार हमने सुनी भी होगी, लेकिन अभी इस जो हम चर्चा कर रहे हैं, इस जिस मुद्दे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उससे वो काफी मिलती जुलती है, इसलिए हम फिर से उसे दोहराते हैं
0: जी।
1: कि देखिए, एक शिल्पकार था और वो पत्थर को तराशते रहता था। वहां से एक छोटा बच्चा गुजर रहा था और उसने बड़ी उत्सुकता से देखा और उसने देखा कि वो तो मूर्ति बना रहा है, और उसके पास गया और उसने बोला, महाराज आप मूर्ति बना रहे हो ना? तो शिल्पकार ने वो बच्चे की तरफ देखा और कहा, नहीं। तो बच्चे को बड़ा आश्चर्य लग गया कि ये तो दिख रहा है मूर्ति बना रहे हैं, और जब मैं पूछता हूं तो बोलते नहीं। तो उसको लगा शायद ये कलाकार जो होते हैं वो बहुत मूडी होते हैं। तो उसने कहा, ठीक है, थोड़ा देर के बाद फिर आएंगे और पूछेंगे। फिर वो बच्चा आ गया और फिर उसने पूछा, तब फिर वही जवाब दे दिया कि नहीं। जब दो बार हो गया, तीसरी बार हो गया, तब बच्चे को रहा नहीं गया और बच्चे ने पूछा, महाराज अगर आप नहीं बताना चाहते तो वैसे बताओ, लेकिन मैं देख रहा हूं आप मूर्ति बना रहे हो, लेकिन जब भी मैं पूछता हूं आप बोलते हैं नहीं। फिर वो जवाब जो दिया शिल्पकार ने वो बड़ा अच्छा है। उसने कहा, बेटे मैं मूर्ति बना नहीं रहा हूं, ये पत्थर में मूर्ति है ही।
0: बिल्कुल।
1: मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ जो अनवांटेड पोर्शन है, जो पोर्शन नहीं चाहिए, वो मैं निकाल रहा हूं, जो बचता है वो मूर्ति।
0: बहुत अच्छा। और इस कथा से हमें भी कई बार यह संदेश मिलता है दोस्तों, कि हमारे पास ऐसी अनवांटेड चीजें हमारे मन में कितनी सारी होती है, जिसकी बहुत बड़ी लिस्ट है। आप एक बार आपको ही चेक करके देखेंगे तो लंबी लिस्ट नजर आएगी। अगर इन अनवांटेड चीजों को हम निकाल देंगे तो हमारे अंदर का देवत्व जो है, हमारे अंदर का जो बहुमूल्य ऐसा एक बहुत सुंदर चरित्र है, चित्र है, वो लोगों के सामने नजर आएगा। और इस कथा का सार जब हम जीवन में उतारेंगे, तब सचमुच ही अंदर की कमियां निकालने की बहुत बहुत कोशिश करेंगे। दोस्तों अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। आपके चेकिंग से दोस्तों आपने खुद को जाना होगा कि सचमुच मैं भगवान का बच्चा हूँ या मैं भगवान की बच्ची हूँ। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया और हमारे अंदर की देवत्व की जो रचना है या देवत्व जो है वो कम होते गया, तो असुरत्व कहो, शब्द तो बहुत गलत लगता है कभी कभी या थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन हमारे अंदर की कमियां ज्यादा हो गई और अच्छाई कम हो गई, ये जरूर कह सकते हैं। तो इस कहानी के द्वारा ज्ञानेश्वर जी आपने बताया कि हम पत्थर जैसे बनने लगे या कहो हमारे अंदर वो मूर्ति जैसी महानता है ही।
2: बिल्कुल, हर व्यक्ति के अंदर भले वो पत्थर जैसा दिखता है लेकिन अंदर मूर्ति छिपी हुई है, और वो मूर्ति तराशने के लिए, वो मूर्ति बाहर निकालने के लिए हमारे पास जो नहीं है वो लाना है, और जो नहीं चाहिए, अनवांटेड है, जो एक्सेस है या बुरी चीजें है, उसको निकालना है।
1: बिल्कुल सही। तो ये जो गौतम ऋषि है उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी को पत्थर बन जाओगी ये श्राप क्यों दिया होगा? शायद इसके पीछे भी कुछ अच्छाई छिपी हुई है।
2: देखो, ये पत्थर बन जाओ ये श्राप जो दिया है ये कहानी, उसके पीछे का राज जो मुझे लगता है कि अपनी बुद्धि जो है वो पत्थर जैसी बन जाती है।
1: मतलब उसने समय पर अच्छी तरह से बुद्धि की जो परख शक्ति है वो यूज नहीं की।
2: बिल्कुल, ये परख शक्ति जो है यूज नहीं करेंगे तो जो उसका परिणाम है वो भुगतना ही पड़ेगा
1: जी।
2: तो पत्थर तो बन गई, लेकिन मुझे ये कहना है कि जैसे पत्थर बुद्धि बन गए, बुद्धि पत्थर बन गई, और उसका उदाहरण उन्होंने दिखाया कि वो शरीर ही उसका पत्थर जैसे बन गया। हम जो चर्चा कर रहे हैं कि पत्थर में जो मूर्ति है उसे हमें निकालना है, तो उसमें मुझे और एक चीज याद आती है कि जैसे हम हमारे बचपन में मेरे पिताजी हमें सिखाते थे, और मेरे बहुत सारे मित्र हैं, श्रोतागण मित्र हैं, वो भी जानते होंगे कि बुजुर्ग पहले जमाने में ऐसे कहते थे, जब भी आप उठ के बैठ जाओ, सोने के बाद जब उठते हो तो पहले अपने हाथ देखो, अपने हाथ देखो। और एक श्लोक था, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। हमारा जब हाथ देखते हैं तो हाथ देखे, हर चीज में अच्छाई दिखाने का ये संदेश है। हमारा ही हाथ है जो हम रोज देखते हैं, लेकिन उस हाथ में ये देखना है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर का अग्र भाग जो है, उंगलियों का जो अग्र है वहां स्थान किसका है?
1: लक्ष्मी
2: का स्थान है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, जो हाथ है उसका जो सेंटर पॉइंट है, मध्य भाग है, वहां सरस्वती विराजमान है। और हाथ का जो मूल है, कर मूले तू, वहां गोविंद है, श्री कृष्ण है। और प्रभाते कर दर्शनम, तो कर दर्शन होगा, जब भी मैं सुबह दर्शन करता हूं तो मुझे लक्ष्मी जी का भी दर्शन होता है, सरस्वती का भी दर्शन होता है, और गोविंद का भी दर्शन होता है। और ये दर्शन सिर्फ दर्शन नहीं करना है, ये जब दर्शन करता हूं तब मुझे ये देखना है कि लक्ष्मी जी का गुण मेरे पास है। लक्ष्मी जी खुद अमीर है, खुद धनवान है, लेकिन उनको भक्तों को धन देती रहती है। वैसे जो हमारे पास कभी भी अगर हम देते हैं तो कराग्रे, जो कर का अग्र भाग है, वहां से निकल जाता है। जैसे हम किसी को दान देते हैं और उसके ऊपर पानी छोड़ते, पानी छोड़ना मालूम है?
1: जी जी।
2: जैसे वो पंडित है और उसके आपके हाथ के ऊपर पानी छोड़ते हैं और बोलते हैं संकल्प छोड़ दो कि आज से ये आपका हो गया, पानी छोड़ दिया
1: जी।
2: तो पानी जाता कहां से है? कर के अग्रभाग से जाता है और वो लक्ष्मी का प्रतीक है।
1: बहुत सुंदर। और वैसे भी लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है।
2: तो कराग्रे वसते लक्ष्मी, वो लक्ष्मी का दर्शन हो गया और वन भी हो गया, यादगार भी हो गई, और कर मध्य सरस्वती। ये सरस्वती जो है वो तो विद्या की देवता है, ये धन की देवता है, ये विद्या की देवता है। तो विद्या की देवता है वो भी मुझे याद रहना चाहिए, और मुझे ये याद रहना चाहिए जैसे मैं उठता हूं कि मेरे पास विद्या है। अगर नहीं है तो मुझे वो
1: प्राप्त करनी है।
2: अगर नहीं है तो मुझे वो प्राप्त करनी है। तो वो भी हो गया सरस्वती। और सरस्वती पूजन वो भी आजकल स्कूलों में बहुत पूजा सरस्वती पूजन करते हैं। दशहरा में विजयदशमी जब होती है तभी सरस्वती पूजन करते हैं। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे प्रसंग है, वहां हम सरस्वती पूजन करते हैं। ये तो रोज की पूजा है। और तीसरा है कर मूले तू गोविंद। गोविंद जो है, गोविंद है वो बाल कृष्ण है, कृष्ण का रूप है। कृष्ण ने जैसे लोगों को रिझाया, कृष्ण ने जैसे लोगों को छुड़ाया, कृष्ण ने जैसे गोप गोपियों को संकट से मुक्त किया, कृष्ण ने जैसे पृथ्वी को असुरों से मुक्त किया, ऐसा जो कृष्ण है और सबका जो लाडला है, प्यारा है, उसका जैसे मैंने दर्शन किया तो मैंने ये संकल्प किया कि मैं कृष्ण जैसे भी बन जाऊं।
1: बहुत अच्छा।
2: मैं जब दाता बनता हूं तो लक्ष्मी जैसा बनता हूं, जब मैं पढ़ता हूं तो सरस्वती जैसा पढ़ता हूं और उनके जैसी विद्या लेता हूं, और जब लोगों का कल्याण करता हूं तो गोविंद जैसे करता हूं। तो एक हाथ देख के तो मेरा कहना है, मेरा नम्र निवेदन है हमारे श्रोतागण को, आप चाहे कोई भी मजहब के हो ये करके देखो।
1: बहुत सुंदर।
2: तो क्या होगा, ये आपके जैसे आप उठते हो तो बहुत अच्छे अच्छे संकल्प आपके मन में होंगे और आपका दिन अच्छा जाएगा।
1: बहुत सुंदर ज्ञानेश्वर जी। मेरा एक ये भी विचार है कि कर मध्य सरस्वती, अगर हमारे पास सरस्वती देवी है, अगर हमारे पास किसी भी बात की अच्छी विद्या है तो अपने आप लक्ष्मी देवी तो आएगी ही। इसीलिए सरस्वती देवी को मध्य में दिखाया है। तो वैसे ही अगर हम अपने ही हस्तों की रेखाएं देखते हुए अपना ही भाग्य बना सकते हैं, तब जब हमारे पास श्रेष्ठ संकल्प है, जब हमारे पास शुभ संकल्प है। और इसीलिए पहले जमाने में जब देवताओं का वर्णन किया जाता था, आज भी, तो उनके लिए हस्तकमल बोलते थे। केवल हस्त नहीं बोलते थे, केवल हाथ नहीं बोलते थे, लेकिन हस्त कमल बोलते थे, पद कमल बोलते थे, चरण कमल बोलते थे। तो इसके पीछे भी वही भाव होगा कि हम उठने के बाद जब दातापन की स्थिति में होंगे, किसी भी बात की विद्या सीखने के लिए हम तैयार होंगे, तब हम गोविंद अर्थात कृष्ण अर्थात हमारी तरफ कोई भी आकर्षित हो सकता है। क्योंकि कृष्ण का ये जो रूप है जो आपने कहा वो बहुत आकर्षित करने वाला है। कृष्ण जो देवता है वो मनमोहन, उसके बहुत सारे नाम है, उसमें एक नाम बहुत अच्छा लगता है वो है मनमोहन, और दूसरा नाम मुझे बहुत भाता है और वो है श्याम सुंदर।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: भले हम मन से अभी काले बन गए हैं, हमारी बुद्धि जो है वो अभी अपवित्र या काली बन गई है, लेकिन इस श्याम बुद्धि से ही सुंदर बनना है तो पहले अपने संकल्पों को शुभ बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, तब आप लक्ष्मी जैसे दाता भी बन सकते हैं। और जरूरी नहीं है दोस्तों कि लक्ष्मी जैसे दाता बनना माना धन का दान देना, लेकिन हमारे पास कितनी सारी बातें हैं जो भगवान की दी हुई चीज है। किसी के पास बहुत मधुर बोल हो सकते हैं, किसी के पास बहुत अच्छी दृष्टि होती है, किसी के पास कुछ ऐसे मॉरल सपोर्ट दूसरों को देने जैसे एक हिम्मत के भी बोल हो सकते हैं। तो इनका दाता बनो। इस दातापन से ही, इस महादानी बनने से ही हमारे अंदर वो देवत्व आएगा, ऐसा हमारे पूर्वजों ने सिर्फ सोचा नहीं होगा लेकिन उन्होंने व्यवहार में वो उतारा। और इसीलिए उन पूर्वजों को हम पहले नमन करेंगे जिन्होंने हमारी सुबह जो है, हमारी प्रभात जो है, वो श्रेष्ठ संकल्पों से शुरू होनी चाहिए, ये हमें संस्कृति दिलाई। दोस्तों, आप करके देखो, हम तो जब बोलते हैं तब पहले करते हैं, तब उस बोलने में भी एक अधिकार प्राप्त होता है। और दोस्तों, मैंने ये अनुभव किया है कि जब हम करने के बाद बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। आप भी जरूर इसकी शुरुआत आज से करो। शुभश्च शीघ्रम कहा जाता है। और अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से आपसे बात करेंगे। रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं हूँ चांद मिश्रा, आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहे, सुनाते रहे, जन जन तक प्यार बरसाते रहे।
1: रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, ब्रेक के बाद सबका दिल से स्वागत। आप सब अहिल्या की कहानी सुन रहे हैं और वह सुनते सुनते अपने में कौन से गुण धारण करना है, अपनी बुद्धि अगर पत्थर जैसी हो गई तो उसको पारस कैसे बनाना है, श्रेष्ठ संकल्पों से वह कैसे पारस बन सकती है, वह भी अनुभव कर रहे हैं और मन ही मन उस अनुभव को जीवन में उतारने के लिए किसी औरों को भी बता रहे हैं। हमें ज्ञानेश्वर जी आप बता रहे थे कि अहिल्या जो है वो पत्थर बन गई और श्री राम जी जब वन में आए तब उसका पद स्पर्श होने के बाद उसका जैसे उद्धार हो गया। तो हमारे जीवन में भी कौन से राम का पद स्पर्श होता है?
2: देखिए, अभी जैसे आपने कहा अहिल्या का उद्धार हो गया और अहिल्या की कहानी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और हमने ये भी देखा कि अगर हमारे राम का चरण स्पर्श होना चाहिए, ये चरण स्पर्श जो होता है ना, हाथ का स्पर्श और चरण स्पर्श उसमें भी अंतर है। हाथ का स्पर्श क्या है? जब हम कोई अच्छा मित्र होता है, मित्र मिलता है तो उसको चरण स्पर्श नहीं करते। कोई अच्छा मित्र है तो उसको हाथ का स्पर्श होता है, भले उसे शेक हैंड करेंगे, हाथ मिलाएंगे
1: जी।
2: चरण स्पर्श जो है वो कोई महान व्यक्ति है, अपने से कोई ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, तो उनका चरण स्पर्श हो जाता है और उनको चरण स्पर्श करें हम उनको वंदन करते हैं।
1: बिल्कुल।
2: और ये वंदन करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि ये वंदन करना है, क्योंकि हम शास्त्र की भाषा में जब उसमें देखते हैं तब मुझे ये लगता है कि जो एनर्जी जो है, अगर आप अच्छे विचार करते हो, आपके संकल्प अच्छे हैं, आप संसार के प्रति शुभ भावना रखते हो और हर कार्य अगर शुभ करते हो तो आपकी जो एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी फ्लो होती है
1: जी,
2: जिसे हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। और जब उसको चरण स्पर्श करते, क्योंकि वो सर से सहस्रार चक्र जो है वहां से फ्लो होती है नीचे की तरफ
1: जी,
2: और जब उनको चरण स्पर्श करते हैं तब वही एनर्जी जो अच्छी एनर्जी है, मैं मेरे हाथ कराग्रे, मेरे हाथ के टिप्स है, वहां से मैं मुझ में धारण कर देता हूं। तो ये हो गया बड़ों का, गुरुओं का, लेकिन यहां तो स्वयं परमात्मा का है और इसलिए यहां चरण स्पर्श कहते हैं शरीर को। अभी देखिए, अहिल्या जो थी वो पत्थर थी
1: जी।
2: वो नमन भी नहीं कर सकती थी। अगर मैं किसी गुरु के पास जाता हूं या देवता के पास जाता हूं तो मेरा हाथ है, मेरे हाथ से मैं उनको चरण स्पर्श कर सकता हूं या मेरा माथा उनके चरणों में टिका सकता हूं। लेकिन यहां तो अहिल्या थी, वो पत्थर बन गई थी, वो हिल नहीं सकती थी, डुल नहीं सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी, वो स्थिर थी। और इसलिए जब भगवान आते हैं तब सिर्फ आपका संकल्प अच्छा हो, अगर उसकी प्रतीक्षा में आप हो तो आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं होती, वो भगवान आके अपना काम कर देते हैं। लेकिन उसके लिए होना क्या चाहिए? आपका संकल्प तीव्र होना चाहिए, आपकी मन की आश होनी चाहिए जैसे अहिल्या की थी,
1: सच्ची प्रीत होनी चाहिए, तब हमारे पास परमात्मा आता है। हमें परमात्मा के पास जाना नहीं पड़ता, हमें ढूंढने के

0: लिए या ढूंढते हुए वही हमारे पास आता है। और बहुत अच्छी बात कही आपने ज्ञानेश्वर जी, ये जो सहस्रार चक्र है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ये जो सप्त चक्र है, जिसका कई थेरेपीज में भी आज लोग उपयोग करते हैं, रेकी जैसे थेरेपी हो या और कोई, तो उसमें भी बताया गया है कि देवताओं के पीछे या साधु महात्माओं महर्षियों के पीछे ये जो ऑरा दिखता है, ये जो तेजो वलय दिखता है, वो इसलिए है क्योंकि उनके सहस्रार चक्र का तेज पवित्रता बहुत है। और यही प्रतीत होता है, क्योंकि हम जब ब्रेन कहते हैं या हमारे विचारों का जो हम उगम स्थान दिखाते हैं तो वो वही होता है। तो जिनके मन में सदा, जिनके बुद्धि में सदा लोक कल्याण की भावना है, सबका सदा भला हो, ऐसी श्रेष्ठ जिनकी वृत्ति है, उनका सहस्रार चक्र जो है वो सदा ही तेजोमय दिखता है। तो हम देवता उस प्रकार से सहज बन सकते हैं, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस लग रहा है, विश्वास लगता है कि हमारे बुद्धि में बस लोक कल्याण के प्रति सदा भावना होनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और देखिए, ये जब हम बात कर रहे हैं लोक कल्याण की, जब बात कर रहे हैं, तब मुझे और एक विषय मन में आया कि जब मैं अमेरिका गया था तब वहां मुझे एक मित्र मिले। वो मित्र मिले, वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो है, जिसको पीस विलेज न्यूयॉर्क में, जो उनका बड़ा रिट्रीट सेंटर है पीस विलेज करके, वहां वो मिले थे।
0: अच्छा।
1: उनका नाम था राम भाई, और उन्होंने एक प्रोजेक्ट डेवलप किया था, इतना अच्छा प्रोजेक्ट था, और वो था 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस।
0: वंडरफुल।
1: उसका नाम ही इतना अट्रैक्टिव था, 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस। वो खुद इंजीनियर है, काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस, वो प्रोजेक्ट वो सारी दुनिया में जाते हैं और उसका प्रचार करते हैं, उसका प्रसार करते हैं, और लोगों को अपील करते हैं कि आप उसको समझो और उसको करने की कोशिश करो। ये संकल्पना ऐसी है कि जो हम अभी कह रहे हैं कि हमारा चक्र कैसे बदलना है, हमारा ऑरा कैसे बदलना है, और ये सिर्फ अगर बदलना है ऐसा मैं सोचता हूँ तो पॉसिबल लोगों को लगता है ये तो संतों का काम है, वो तो बड़े बड़े महंतों का काम है, ये तो देवताओं का काम है या साधु संन्यासियों का काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन हम आम आदमी भी इसमें योगदान दे सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इतना अच्छा प्रोजेक्ट लगा मुझे। वो प्रोजेक्ट में ऐसे कहते हैं कि अगर मुझे कुछ अच्छा काम करना है तो हम हमेशा दूसरों की तरफ देखते हैं। अगर मुझे स्वच्छता का अभियान चलाना है तो मुझे पहले मेरे घर में स्वच्छता करनी है।
0: बिल्कुल।
1: अगर मुझे सच बोलने का अभियान चलाना है तो मुझे खुद को सच बोलना है। अगर मुझे अच्छा संकल्प, अच्छे विचारों का अभियान चलाना है तो मुझे अच्छा विचार करना है। तो ये ऑडियो क्लिप एंड वीडियो क्लिप दिखाई थी, बहुत अच्छी थी, कि एक लड़का है और वो लड़का जाते रहता है, जाता है तब देखता है कि ऊपर के फ्लोर से नाली है और वहां से पानी गिरते रहता है, उसके शरीर पे गिरता है। तो दूसरा कोई रहता था तो बोलता था कि ये क्या हो गया, झगड़ा हो जाता था। वो क्या करता है, एक छोटा सा पौधा है उसको लेके उसके नीचे रख देता है। वो पौधा और गमला है उसको लेके नीचे रख देता है। फिर एक बूढ़ी औरत रहती है उसको मदद करता है। फिर एक भिखारी रहता है उसको जाके पैसा देता है, क्योंकि उसकी छोटी बच्ची रहती है उसको वो मदद करता है। ऐसे बहुत सारे चित्र दिखाए, और फिर थोड़े दिन के बाद दिखाया कि वो पौधा जो है उसको फूल आ गए। जिस बूढ़ी औरत को वो पैसा देता था, उसकी जो छोटी बच्ची है वो स्कूल यूनिफॉर्म में आती है और स्कूल जाती है, वो जो बूढ़ी औरत है जो बीमार है उसको जाके वो केले देता था, वो उसको गले लगाती है। ऐसे एक एक चित्र दिखाइए, और उसका परिणाम जो है, हर कोई खुश हो गया। उसने एक संकल्प ठान लिया कि मुझे अच्छा करना है।
0: बहुत सुंदर। ज्ञानेश्वर जी, कहा जाता है जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है। ये जो है दुआएं जमा करने का अकाउंट, अगर हम क्रेडिट करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, तो दोस्तों सोचो आपका वैसे जो पैसों का बैंक बैलेंस है वो तो कितना भी हो, कम हो ज्यादा हो, वो तो भौतिक चीज है, लेकिन ये आध्यात्मिकता है, ये सहज हमारे लिए संभव है कि जब हम हमारी दुआओं का खाता बढ़ाएंगे, ऐसा एक बैंक का अकाउंट रोज हम चेक करेंगे रात को कि आज मैंने कितनों की दुआएं ली, कहीं किसी से मैंने श्राप तो नहीं लिया, किसी को मैंने दुख तो नहीं दिया। और ये चेकिंग बिल्कुल सहज है, क्योंकि जब हमने दुआ इकट्ठी की तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है। और इसीलिए कभी किसी पर संकट आता है, कोई उस संकट से बच जाता है, तो कहा जाता है कि हमारे पूर्वजों की जो पुण्य का संचय है वो आज हमें काम आया।
1: दुआओं का खाता जो है उसका उपयोग हो गया। जैसे इमरजेंसी में अगर हमें कुछ जरूरत है, कोई संकट है, और बैंक में पैसा रखते हैं, वो पैसा काम आ जाता है।
0: बिल्कुल। तो ये दुआओं का खाता कैसे जमा करना है, किस प्रकार से हमारे कर्मों के द्वारा एक आदर्श बनना है, उसके बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से, तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे, वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो। दोस्तों, अमृतधारा कार्यक्रम के इस पार्ट में आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक के बाद शुभ भावनाओं की, शुभकामनाओं की बैंक जमा करने की बात हम कर रहे हैं, और ज्ञानेश्वर जी ने हमें एक बहुत सुंदर, जो ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में उन्होंने किसी भाई जी का देखा कि 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस, तो गुडनेस जो हमारे पास है उसको जब हम औरों तक लेके जाएंगे, उसको स्प्रेड करेंगे, तब हमारे पास वो गुडनेस अपने आप आएगा। क्योंकि कहा जाता है जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। देखो, छोटी सी बात होती है, कभी कभी जहाँ लिखा हुआ रहता है कि यहाँ कूड़ा कचरा मत फेंको, लेकिन अगर किसी एक या दो व्यक्ति ने फेंका तो आने वाले भी सोचते हैं कि चलो इन्होंने फेंका तो मैं भी फेंकने के लिए काबिल हो सकता हूँ या मैं भी फेंक सकता हूँ। लेकिन अगर किसी ने फेंका और मैंने उसको उठाया, मैंने अच्छा कर्म किया, तो जो पीछे आने वाले दो लोग हैं वो भी ज़रूर कचरा फेंकने के लिए 10 बार विचार करेंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि एक्ट ऑफ गुडनेस जो ज्ञानेश्वर जी ने हमें अभी बताया, तो ये भी एक साइंस है कि जैसे हम प्रकृति को या ब्रह्मांड को बहुत अच्छी एनर्जी देते हैं, तो जो भी हम एनर्जी देते हैं वो वापस आती है। आपको अगर जीवन में अच्छाई चाहिए तो आपको अच्छी एनर्जी देनी पड़ेगी, और आप अगर उसके बारे में बेफिक्र है, कभी अच्छी देते हो और कभी बुरी देते हो, तो नेचुरल है जब आपने बुरी एनर्जी ब्रह्मांड को दी तो वापस भी वही एनर्जी आएगी। तो ये जो ज्ञानेश्वर जी आपने कहा कि उसमें जो क्लिप में दिखाया था कि उस बच्चे ने एक पौधे को पानी दिया, एक बूढ़ी औरत को मदद की, और एक जो गरीब भिखारी महिला थी उसकी बेटी को शिक्षा देने के लिए वह निमित्त बना, तो इसने जैसे हर बुराई को अच्छाई में परिवर्तन किया, वैसे हम भी जिंदगी में अगर इस प्रकार की एक्ट करेंगे, और ऐसे 7 बिलियन मतलब जो हमारी आज विश्व की पॉपुलेशन है, हर एक अगर ऐसा सोचेगी कि मुझे अच्छा कर्म करना है, तो हम जिस स्वर्ग की बात कर रहे हैं वो स्वर्ग तो अवतरित होगा, उसमें कई संदेह ही नहीं है।
3: बिल्कुल, और यही उसकी जो थीम है, उसका मेन उद्देश्य है 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस। जब मैं उनके साथ चर्चा कर रहा था तब उन्होंने कहा कि कभी कभी हमें लगता है कि ये जो स्वर्ग धरती पे लाना है ये तो दूसरों का काम है, हमारा काम नहीं है, वह बड़ों का काम है। लेकिन अगर 7 बिलियन, जैसे आपने सही फरमाया कि 7 बिलियन अगर हमारी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या ऐसे मानते हैं कि 700 करोड़ है, 7 बिलियन है, तो उसमें से अगर हर कोई ये संकल्प करे कम से कम मैं एक अच्छा काम करूंगा, तो 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस, 7 बिलियन 700 करोड़ अगर अच्छे काम हो जाएंगे तो वो पृथ्वी हिल जाएगी। और यही मुझे लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं, जैसे आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि अगर मुझे कचरा रास्ते पे नहीं फेंकना है, अब्दुल कलाम जी एक बार कह रहे थे, भाषण कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि जब मैं विदेश में रहता हूं, और विदेश में बिल्कुल क्लीनलीनेस है, वहां कचरा इधर उधर फेंकने के लिए बिल्कुल मना है और लोगों को आदत पड़ी है और वो कोई फेंकता नहीं है, तब उस समय अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि वहां मैं ये करता हूं, फेंकता नहीं हूं, और फिर जैसे वहां वापस भारत में आता हूं तो वो आदत मुझे वापस आ जाती है और मैं कचरा इधर उधर फेंकता हूं।
2: बिल्कुल सही फरमाया आपने। एयरपोर्ट से ही हम शुरू करते हैं। yes. हमने भी कई बार देखा हुआ है कि लंदन में हो या यूके हो या यूएस हो, लेकिन वहां हर एक की वृत्ति ऐसी होती है और अगर किसी ने कचरा डाल भी दिया, फेंक भी दिया, तो दूसरा जो चलने वाला इंसान होता है वो उसको कुछ ना बोलते हुए सिर्फ वो कचरा जो है वो कूड़ेदान में डालता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है।
3: ऐसा एक प्रसंग भी हो गया। हमारे एक मित्र थे और वो बता रहे थे, वो खुद बता रहे थे कि उन्होंने क्या किया, वो सिगरेट पीते थे, वो सिगरेट पीना खराब है वो तो बात अलग है, लेकिन उनकी आदत थी, शौक था, वो सिगरेट पीते थे और वो एयरपोर्ट पे जब थे, खड़े थे, सिगरेट पिया और जो सेट का जो
2: बचा हुआ
3: टुकड़ा है वो उन्होंने रास्ते पे फेंक दिया। यहां अगर कुछ होता था तो शायद झगड़ा होता था, कोई बोलता था उनको कि ये समझ में नहीं आता क्या, लिखे पड़े दिखते हो और यहां वहां कचरा फेंकते हो। वहां जो दूसरा कोई फॉरिनर था, विदेशी था, तो उसने क्या किया, उसने वो टुकड़ा उठाया और उनको प्रेम से कहा, महाशय, इंग्लिश में कहा, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, महाशय ये कूड़ादान जो है वो इस तरफ है
2: जी।
3: और उसने सिर्फ खुद सिगरेट का टुकड़ा उठाया और कूड़ादान में डाल दिया। इतना कहने के बाद वो मित्र ने कहा, जिंदगी भर मैं ये याद रखूंगा कि ये कूड़ादान में ही कूड़ा फेंकना है। तो ऐसी कई सीख जो होती है वो हमें मिलती है। तो इसके लिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो है, उन्होंने एक अभियान चलाया, स्वच्छता अभियान। अगर ये स्वच्छता हर कोई भारतीय नागरिक मन से, दिल से करे, तो देखते देखते स्वच्छ भारत अभियान बहुत यशस्वी हो जाएगा और बहुत आसान है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। और ज्ञानेश्वर जी, मुझे एक बहुत सुंदर बात याद आ गई कि जब मैं स्कूल में पढ़ा रही थी बच्चों को, तो हमारे पास ब्रह्मा कुमारी से कुछ बहनें आई थी और वो एक अभियान लेकर आई थी, स्वच्छ स्वस्थ स्वर्णिम भारत।
3: अरे वाह, बहुत अच्छा।
2: तो उसमें मैंने उनको पूछा कि आपका ये जो अभियान है उसका क्या है, मतलब उसका जो अर्थ है वो क्या है। बहुत सुंदर उन्होंने बताया कि स्वच्छता जो है वो केवल तन की स्वच्छता नहीं है, न ही वो केवल आसपास के अपने परिसर की स्वच्छता है, लेकिन वो स्वच्छता जो है वो मन की स्वच्छता है। जब मन स्वच्छ होगा, मन स्वस्थ होगा, तब भारत स्वर्णिम होने में समय नहीं लगेगा। और उन्होंने बहुत, वो बहनों ने हमारे स्कूल में बहुत बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दी, उन्होंने खुद अपने केवल भाषण से नहीं लेकिन अपने अनुभव से बच्चों को इस उद्देश्य बताया। तो मुझे वो इसलिए अभी याद आया कि आपने जो बताया 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस, तो वैसे ही ये कुछ ऐसे बहुत सुंदर विद्यालय है, और खासकर मैंने उनके बारे में तो सुना हुआ है, ब्रह्मा कुमारीज के बारे में, तो उन्होंने ऐसे अभियान, मैंने जब पूछा उसकी डिटेल्स तो उन्होंने कहा हमने देश भर ऐसे अभियान चलाए हैं ताकि लोगों के मन में वह स्वच्छता, वह स्वस्थ मन फिर से एक बार जागृत करे वो विचार कि हमारे अंदर की शक्ति को हम जब जगाते हैं तब स्वर्णिम भारत का निर्माण होता है। और माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री है, आपने जो जिक्र किया मोदी जी का, तो उनका भी वही उद्देश्य है। और अगर हम सब एक ही उद्देश्य से चलते हैं तो हम पत्थर बुद्धि रहेंगे नहीं। अहिल्या की जो हम बात कर रहे हैं तो हमारे अंदर का वो भाव जागृत होगा तो मन तो स्वस्थ रहेगा ही, स्वच्छ भी रहेगा, और फिर भारत स्वर्णिम जरूर होगा। और ऐसा ही स्वर्णिम भारत का सपना जो है, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने भी उठाया, उन्होंने उसके लिए काफी कोशिशें भी की, प्रयास भी किए, और आज उनका वही जो अधूरा रहा हुआ सपना है वो लेकर हमारे प्रधानमंत्री चल रहे हैं, और हम सब उनके साथ हैं तो ये सपना जरूर ही सच होगा। श्रोतागणों को मेरा ये नम्र निवेदन है कि आप भी ये गुडनेस की एक्ट जो है वो जरूर कीजिएगा और करके अपने दुआओं का खाता जमा कीजिएगा। दोस्तों, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए हम आपसे इजाजत लेते हैं कि वाणी को विराम दे, फिर से अमृत धारा के द्वारा आपसे मिलते रहेंगे। रेडियो मधुबन पर सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में, जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है। मित्रों, हम ट्रैफिक सिग्नल से एक बहुत अच्छी बात सीख सकते हैं। जब रेड सिग्नल होता है तो हमें थोड़ा धीरज, थोड़ी शांति रखनी होती है, तो समय आने पर थोड़ी ही देर के बाद वो ग्रीन लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, टर्न हो जाता है और हमारा रास्ता साफ हो जाता है। ठीक वैसे ही जब समस्याएं आती हैं तो शायद हमें थोड़ी धीरज और शांति की आवश्यकता होती है। मूल्य हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। मूल्यों के माध्यम से ही वास्तव में जीवन सरल और सहज होता चला जाता है और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं वो हमें मूल्यों की सीख भी देती हैं। समाधान में आज हम इनकी भी चर्चा करेंगे आदरणीय भ्राता जी से कि किस प्रकार जीवन के मूल्य हमें समाधान की ओर ले चलते हैं। आइए स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू वेरी मच। भ्राता
0: जी, मूल्यों की चर्चा लगातार हम भी करते आए हैं और हमारे सारे वेद, शास्त्र, पुराण भरे पड़े हैं इसे। आप क्या समझते हैं कि मूल्य कितने मूल्यवान हो सकते हैं, सहयोगी हो सकते हैं समाधान के लिए?
1: वास्तव में मूल्यों की कमी ही तो समस्याओं को जन्म दे रही है। किसी को क्रोध आता है, किसी के मन में स्वार्थ है, किसी के मन में ईर्ष्या द्वेष है, तो वही तो समस्याओं को जन्म दे रहा है ना संसार में
0: जी।
1: तो सचमुच अगर हम वैल्यूज पे ध्यान दें, यानी सद्गुणों पे ध्यान दें, उनको अपने जीवन का श्रृंगार बना लें, एक नेचुरल रूप से हमें सुख शांति रहेगी। और जब चित्त में धैर्य और शांति रहती है तो मनुष्य की बुद्धि ठीक ठीक काम करती है। जैसे ही टेंशन हुई, जैसे ही निगेटिविटी आई, जैसे ही हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, तो हमारी बुद्धि की कार्य शक्ति घट जाती है, वो कुछ का कुछ सोचती है, घबराहट हो जाती है, डर हो जाता है। तो अगर शांति और धैर्य होगा तो समस्याओं का समाधान शांतिपूर्वक निकाला जा सकता है। ये हम बहुत देखते हैं जो हमारे पास फोन कॉल्स या ईमेल्स आते हैं कि कहीं कहीं परिवार में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि मनुष्य ये सोचता है कि अब करें क्या, बिल्कुल सब हाथ खड़ा कर देते हैं। ऐसे में स्पिरिचुअल पावर, ईश्वरीय शक्ति, हमारी अपनी आत्मिक शक्ति, हमारा मनोबल, हमारा पॉजिटिव थिंकिंग, हमारे मन की प्योरिटी समस्याओं को समाधान करने में अहम भूमिका निभाती है। तो वास्तव में मूल्यों की कमी या विकारों की अति ही समस्याओं को जन्म दे रही है। कहीं अहंकार के कारण मनुष्य परिवारों में बुरा व्यवहार करता है। और आजकल जो मैं देखता हूँ कि काम वासना अनेक समस्याओं का कारण बनती जा रही है, क्योंकि जो युवक हैं वो ऐसे अंधे हो रहे हैं इसके पीछे कि उन्हें यही लाइफ लगता है। सेक्स लस्ट इज लाइफ ओनली, इट्स एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, बाकी सब चीजें एक तरफ, माँ बाप भी एक तरफ, पढ़ाई भी एक तरफ, भविष्य उन्हें अपना सुधारना है, अपना करियर कैसा बनाना है, वो सब भुला के काम वासना के अधीन हुआ युवक सुसाइड कर रहा है आजकल। तो ये सब कितनी बड़ी समस्या है। वो तो सुसाइड कर लेता है लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि इसका परिणाम क्या होगा। तो मूल्यों की कमी, शांति की कमी, प्योरिटी की कमी, यही समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। और अगर हम सद्गुणों का जीवन में विकास करें तो हमारे जीवन में चरित्र बढ़ता है, हमारी पर्सनैलिटी में एक चमक आती है, रौनक आती है, और संसार हमारी ओर अट्रैक्ट हो, हम किसी की ओर अट्रैक्ट नहीं होते। ये स्पिरिचुअल पावर की एक मैजिकल इफेक्ट होता है और हम अनेक समस्याओं से मुक्त रहते हैं।
0: प्रताप जी, मैं आपको, जैसे आपने कहा तो एक हमारे पास फोन कॉल्स आया था जब आपने आज सेक्स लस्ट की बात कही कि बहुत तेजी से ये बढ़ता चला जा रहा है और न केवल युवा वर्ग बल्कि सभी वर्ग के लोग इससे बहुत ज़्यादा ग्रस्त हैं, परेशान भी हैं, इंजॉयमेंट इसे समझते हैं, लेकिन कहाँ तक इंजॉयमेंट है इसे तो आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते आए हैं। तो पहला जो हमारे पास फ़ोन कॉल आया था भ्राता जी, अनाम है ये फ़ोन कॉल, लेकिन गुजरात से है, और ये कहती हैं कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं और हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन पिछले 2 माह से मेरे पति एक दूसरी लड़की की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मैं उनसे कुछ कहती हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेवजह शक करती हो। लेकिन मैं ही नहीं, कई लोग मुझसे कह चुके हैं कि इनके बीच कुछ चल रहा है। कभी मैं उनसे दूर रहने को बोलती हूँ तो वो कहते हैं कि मुझसे तलाक ले लो। मैं ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जाती हूँ और राजयोग का अभ्यास भी करती हूँ, कृपया बताएं कि मैं कैसे इस समस्या से मुक्ति प्राप्त करूँ।
1: हाँ देखिए, प्रैक्टिकल समस्या है और नैतिक मूल्यों की कमी, प्योरिटी की कमी दो परिवारों को तोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हो रही है, तैयार हो रही है। तो मैं इस घटना के माध्यम से पहले तो लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ। वो व्यक्ति जो किसी की पत्नी से प्यार कर रहा है, उसका जरूर 10 साल शादी को हो गए तो 2-3 बच्चे भी होंगे। अभी जो लेडी अपने पति की नहीं हुई, जिस लेडी को अपने बच्चों से प्यार नहीं है, वो तुमसे प्यार कर रही है, जो अपने परिवार वालों को धोखा दे के तुम्हारी ओर बढ़ रही है, क्या तुम्हें विश्वास है कल वो तुम्हें धोखा नहीं देगी? और उस बहन को भी, माता को मैं कहना चाहता हूँ, जो पति अपनी पत्नी और अपने बच्चों को छोड़कर तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हो रहा है, जो उनका नहीं हुआ, क्या वो कल तुम्हारा होगा? स्त्री और पुरुष दोनों ऐसे केसेज में ध्यान से जरा धैर्य चित्त होकर विचार करें कि हम दो परिवारों को नष्ट करने जा रहे हैं और अपने भविष्य को भी कभी ना कभी हम ऐसा नष्ट कर देंगे कि पश्चाताप की अग्नि में जलने के अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं बचेगा। या तो सुसाइड करेंगे या तो अकेले रहकर इस संसार में उदासीन व्यक्ति की तरह विचरण करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि बुद्धिमान मनुष्य जिसके पास श्रेष्ठ बुद्धि है, वो अपने परिवार को ठीक से संचालित करे। देखिए, कहीं कहीं पत्नी के लिए कहा जाता है कि वो पतिव्रता बने, ठीक बात है। अब तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई पतिव्रता रह गई है नारी, हालांकि मेरी ये बात शायद कड़वी लगे लोगों को। और लेकिन पति को कभी नहीं कहा जाता वो भी पत्नीव्रता बने। तो दोनों की आजकल गलती हो रही है। सेक्स लस्ट बहुत विकराल रूप से बढ़ता जा रहा है, वातावरण में उसकी निगेटिव तरंगे फैली हुई हैं, वो अच्छे अच्छे लोगों पर भी अपना इफेक्ट डाल रही हैं। इसीलिए तो ईश्वरीय ज्ञान की और राजयोग की बहुत आवश्यकता हो गई है। अभी वो मेंटल पेशेंट बनेंगे, उनके पति और बच्चे अनाथ हो जाएंगे और कहीं ना कहीं फिर उनके और बड़े सास ससुर माता पिता सब मेंटल पेशेंट बनेंगे। तो एक दुर्गति का मार्ग ये लोग अपना रहे हैं। तो मैं इस बहन को कहूँगा, आप थोड़ा शक भी ना करें और अपने पति को गुड वाइब्रेशंस दें। अगर सदा ही उनके प्रति निगेटिविटी आ गई तो उनका झुकाव उस लेडी की ओर बढ़ता जाएगा और कहीं ना कहीं वो इसको डाइवोर्स देने के लिए तैयार हो जाएगा। ये उसको सहन नहीं कर पाएगी, फिर कहीं ना कहीं परिवारों में बहुत ज्यादा अशांति होगी, डिप्रेशन बढ़ेगा और जीवन एकदम से, बस क्या कहें, मृत समान हो जाएगा। इसलिए इस बहन को चाहिए बहुत शांति और धैर्यता से इस बुरे समय को व्यतीत करें। और अगर ये राजयोग का अभ्यास करती है तो सो बेटर, नहीं तो ये जाकर सीख ले और अपने पति को।
0: इन्होंने कहा है भैया जी कि ये राजयोग का अभ्यास करती हैं और ब्रह्मा कुमारी इस केंद्र में भी जाती हैं।
1: तो बहुत अच्छा है, ये सवेरे एक टाइम निश्चित करे। देखिए, ये सबकॉन्शियस माइंड का बहुत सुंदर प्रयोग है जो मनुष्य के विचारों को बदलता है, उसको अपनी गलती का एहसास कराता है, क्योंकि ये सेक्स लस्ट ऐसी चीज है, ये कामुक प्यार मनुष्य को अंधा बना देता है, उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देता है और वो अपने गलत कार्यों को अच्छा मान बैठता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो ऐसे में उसकी बुद्धि को एक प्रॉपर गाइडेंस देना, उसके मन को एक लाइट देना, एनलाइटेंड करना, इसके लिए एक सबकॉन्शियस माइंड का बहुत अच्छा प्रयोग है। पहले भी हम अपनी चर्चाओं में इसका जिक्र करते आए हैं। तो सवेरे 5 बजे जब वो व्यक्ति सोया हो, तो उसको भी, उस लड़की को भी, माता को भी और अपने पति को भी, दोनों को ये इमर्ज करके 10 मिनट तो राजयोग के द्वारा गुड वाइब्रेशंस दे। एक टाइम फिक्स करे, 5, 4:45, 5:30, 5:30, जब वो सोए, क्योंकि जब वो सोए हैं तो उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है
0: जी।
1: तो उनको 15-10 मिनट अच्छे वाइब्रेशंस देंगे।
0: जो राजयोग, जब आप ये गुड वाइब्रेशंस कहते हैं तो इसका क्या भाव?
1: हाँ, वो उसी बात पर मैं आ रहा हूँ कि पहले वो अपने परम पिता से बुद्धि योग लगाएं और महसूस करें कि उसकी एनर्जी मुझे आ रही है, पहले गुड फीलिंग करें कुछ देर, और फिर मुझ आत्मा से उन आत्माओं को जा रहे हैं और संकल्प करें बोथ आर गुड सोल्स, दोनों बहुत अच्छी आत्माएं हैं। फिर अपने पति को अच्छे संकल्प दे, क्योंकि ये अपने पति से गहराई से जुड़ी हुई है, इनका हर विचार उसके वाइब्रेशंस उस आत्मा को तुरंत अफेक्ट करेंगे। तो उसको आत्मा देखें, यहाँ मस्तक में चमकती हुई ज्योति देखें, उसका चेहरा देखें, और माइंड टू माइंड उससे बात करें, चाहे वो उनके पास है या दूर है, ये बात कहीं भी की जा सकती है, इसमें हजारों मील भी कोई अंतर पैदा नहीं करते, और उसको ऐसे अच्छे संकल्प दें, यानी जो ये उसे मुख से कहना चाहती हैं वो मन से कहेंगी, माइंड टू माइंड, क्योंकि मुख से कहने पे दूसरा व्यक्ति का ईगो हर्ट होता है और वो अपनी गलती को रियलाइज नहीं करता। सबसे बुरी बात ये हो रही है संसार में कि मनुष्य गलती तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उसको अपनी गलतियों का एहसास बिल्कुल नहीं है। तो उसको किस तरह संकल्प दें, ये आत्मा देखकर कि तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम तो देवकुल के हो, तुम तो भगवान के बच्चे हो, तुम्हारा परिवार कितना सुंदर है, हमारे बच्चे जिनके तुम बाप हो वो तुमसे प्यार चाहते हैं, तुम्हें उनकी प्यार से पालना करनी है, अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है बहुत अच्छी, हम भी तुम्हारे लिए बहुत शुभचिंतक हैं, अब तुम उस लड़की के जंजाल से बचो, वापिस आ जाओ। ये सब मोह माया है, ये सब कामुकता है, ये विनाशकारी है, ये इससे तुम सदा के लिए एक पश्चाताप का मार्ग खोल लोगे। ऐसी बात करे रोज और ये बात लगातार करे तो 3-4 दिन के बाद ही उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इसको अच्छी तरह रिसीव करेगा और जब वो व्यक्ति उठेगा तो उसको रियलाइज होगा कि मैं गलती पर हूँ, लोग क्या कहेंगे, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चे बिखर गए तो, और वो ये भी सोचेगा कि कहीं कल मेरी पत्नी, किसी ऐसे व्यक्ति से फेसबुक पर या किसी भी माध्यम से कॉन्टेक्ट जोड़ ले, चैट करने लगे तो मुझे कैसा लगेगा, तो उसकी पावर ऑफ रियलाइजेशन बहुत बढ़ जाएगी और निश्चित रूप से वो 7 दिन के बाद चेंज होगा। लेकिन इनके पास राजयोग की अच्छी शक्ति होनी चाहिए। अच्छी शक्ति का होना इसलिए आवश्यक है कि जितनी हमारे अंदर शक्ति है उतने ही पावरफुल्ली हमारे वाइब्रेशंस दूसरों को अफेक्ट करेंगे। अगर हम ही स्वयं कमजोर हैं तो हमारे वाइब्रेशंस, हमारा ओरा थोड़ी दूर जाकर डल हो जाएगा, उसका इफेक्ट दूसरे पर नहीं होगा। इसलिए राजयोग का अच्छा अभ्यास करें, रोज ये अपने पति को ऐसे अच्छे वाइब्रेशन दें। यही बात वो उसे कहे कि मैं किसी से ऐसे ही फेसबुक पे नाता जोड़ लूं, चैट करने लगूं, तुम्हें कैसा लगेगा, इस पे विचार करो, तो वो व्यक्ति जगते ही ऐसी फीलिंग में आएगा और समस्या समाप्त हो जाएगी।
0: बिल्कुल भ्राता जी, ये तो रहे कि एक सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे सुबह उठते ही बहुत अच्छे विचार उनको दें, जैसा आपने विधि बताया, क्या सारे दिन में भी अपने व्यवहार में भी कुछ ऐसी बातें शामिल की जाएं जिससे उस व्यक्ति को रियलाइजेशन हो और वो वापस आ जाए?
1: हाँ, देखिए इसमें जैसे मैंने कहा नफरत जहर का काम करेगी, नफरत दूरी बढ़ाती है। मान लो ऐसे में जैसी लेडीज की नेचर है, मेंटेलिटी है, वो बहुत डाउटफुल रहती हैं, शक्की उनका मिजाज होता है, व्यक्ति किसी से जरा सी बात कर ले तो वो सोचती है ये तो गया, बस पता नहीं ये तो उसका ही हो गया, पता नहीं ये मेरे से क्या व्यवहार करेगा, तो ऐसा नहीं, प्रेम से अच्छी बात करे, उसको इस बात को थोड़ी देर के लिए वो इग्नोर ही कर दे कि कुछ हो रहा है, इसको महत्व न दे और अच्छी बात करें घर में, उसको अपने बच्चों के प्रति जो उसका उत्तरदायित्व है वो आप ही रियलाइज हों। और राजयोग मेडिटेशन में तो ऐसी अच्छी चीज़ें हैं कि घर में अगर वो राजयोग मेडिटेशन करें और शिव बाबा जो सर्वशक्तिवान है उसका अपने घर में आह्वान करे और कुछ अच्छे स्वमान का अभ्यास करे, जो राजयोग करते हैं वो इस शब्द से भली भांति प्रचलित हैं, तो घर में बहुत अच्छे वाइब्रेशंस पैदा हो जाएंगे, वो प्योर वाइब्रेशंस फैलाए अपने घर में, तो क्या होगा कि प्योर वाइब्रेशंस में एक ऐसा व्यक्ति जब आता है तो उसको अपने पाप का रियलाइजेशन होने लगता है और वो निष्पाप होने का सोचने लगता है। ये काम वो करेगी तो समस्या जल्दी हल हो जाएगी। और हमारी शुभ भावना है उन सब परिवारों के लिए जिनमें ये समस्या चल रही है, ये कम समस्या नहीं है।
0: आमतौर पर भ्राता जी, ये जो बात इन्होंने हमारी बहन ने रखी है, ये सुनने पे 2-4 दिन में आ ही जाते हैं, चाहे फोन के माध्यम से।
1: नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि 50% परिवार इसी समस्या में चल रहे हैं, किसी को किसी का पता लग जाता है, दूसरों को पता नहीं लगता और आगे चल के ये विकराल रूप ले जाता है, बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, फिर वो भी किसी से नाता जोड़ लेते हैं, जब हमारा पापा ही ऐसा है, जब हमारी मम्मी ऐसी है, तो शायद यही संसार की रीति रिवाज है, हम भी ये करें। और फिर इनमें नैतिक बल होता नहीं जो ये अपने बच्चों को कंट्रोल कर पाए।
0: वो कुछ कहेंगे भी तो भी बच्चे इग्नोर करेंगे, सुनेंगे नहीं, कहेंगे पहले आप ठीक हो जाए फिर हम। तो ये एक पारिवारिक बिखराव का, समस्याओं का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। तो सुंदर है जो आपने अभ्यास बताए हैं, उन अभ्यासों को बहन जी करें, जहां भी ये समस्याएं हैं इन अभ्यासों को करें, और निश्चित रूप से हमें रिजल्ट भी बताएं ताकि हम अपने दर्शकों के साथ इसे शेयर करें। प्रता जी, जो हमारे पास दूसरे मेल्स आए हैं, ये एक मेल आया है नगमा शाह जी का मुंबई से। ये लिखती है कि मेरी बेटी बहुत गर्म स्वभाव की है, सारे दिन चिल्लाती रहती है, चिल्लाती भी है, रोती भी है। उसकी इस आदत से घर में सभी बहुत परेशान है, मैं क्या करूं जो वो शांत हो जाए। और प्रता जी, ऐसा ही दूसरा भी प्रश्न है, मेल है, जो मैं लेना चाहूंगा कि मेरे दो बच्चे हैं, एक 7 साल का और एक 8 साल का, दोनों ही पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मैं सब तरीके आजमा चुकी हूं लेकिन सफल नहीं हुई, कृपया कुछ उपाय बताएं। ये हैं पूनम सिंह जी चंडीगढ़ से।
1: हाँ, ये बच्चों की समस्याएं परिवार परिवारों में बढ़ती जाती है। मेरे पास भी रोज 2-4 फोन तो ऐसे आ ही जाते हैं जिनमें माँ बाप बच्चों से बहुत दुखी हैं। एक का ऐसे ही फोन था, 9 साल का लड़का है और वो तो अगर माँ उसे प्यार भी करे तो नाखूनों से उसका मुंह नोचने लगता है, वो बिल्कुल खून कर देता है, तो बेचारी बड़ी दुखी है। तो ये समस्याएं बढ़ रही हैं और इसका कारण ये है क्योंकि आत्मा पुनर्जन्म लेती है। अभी मैंने उससे यही पूछा, आपका बच्चा 9 साल का है, 10 साल पहले वो कहाँ था? आपके पास तो 9 साल से है ना, लेकिन 10 साल पहले, 12 साल पहले वो कहाँ था? तो जरूर वो किसी और का बच्चा होगा, किसी का पति होगा, किसी का बाप होगा, किसी का दादा होगा। तो वहाँ से जो वो संस्कार लाए हैं, कुछ अतृप्ति लाई है, डिसकॉन्टेंटमेंट, डिससेटिस्फेक्शन जीवन में बहुत होके रहता है, या क्रोध लाए हैं वहीं से। मान लो वो बूढ़ा था पिछले जन्म में और उसके बच्चे उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, वो बहुत बीमार रहता था, वो अकेला हो गया और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो उसके मन में क्रोध बढ़ता गया। और जब उसने नया जन्म लिया तो वो क्रोध उसके साथ है, तो छोटी आयु से, जैसे लड़की की बात है, उसमें क्रोध पनप रहा है। तो एक्चुअली ये पूर्व जन्मों की कुछ फीलिंग्स वर्तमान जन्म में काम करती रहती है। बहुत लोग इनमें विश्वास नहीं रखते, लेकिन विश्वास रखें या ना रखें, सत्य यही है। और ये मनुष्य को जानना चाहिए कि बहुत सारी चीजें पूर्व जन्मों से चलती आ रही हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स भी ये प्रश्न हमसे करते हैं कि बच्चे ने अभी जन्म ही लिया है, 2 ही साल का है और वो डायबिटिक पेशेंट है, अब उसने क्या किया भाई? अभी तो चीनी खाई भी नहीं है तो कहाँ से उसको डायबिटीज हो गई? पीछे मेरे पास एक बहुत बड़ा केस, एक सिविल सर्जन लेडी लेके आई कि देखो ये 5 साल की लड़की कैंसर से बीमार है। हम डॉक्टर्स इसका उत्तर नहीं दे पा रहे कि कैंसर इसको क्यों हुआ है। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ये सब पूर्व जन्मों से चलता आता है। देखिए, वो देह तो जला दिया गया था या दबा दिया गया था जिसमें वो कैंसर था, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर भी आत्मा के साथ रहता है और वो जो बीमारियां थी वो सूक्ष्म शरीर में आ जाती हैं और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से नए शरीर में भी वो प्रवेश कर लेती है। तो बहुत सारी जो मनुष्य की नेचर्स हैं, चाहे वो क्रोध की हो, चिड़चिड़ेपन की हो, वायलेंट नेचर बच्चों की हो या बहुत हाइपर एक्टिव बच्चे हों, ये सब पूर्व जन्मों से बहुत चीजें लाए हैं। तो इनको शांत करना बहुत जरूरी है। अभी वो छोटे बच्चे हैं, उनको ज्ञान नहीं दिया जा सकता।

0: उनको ये भी नहीं बताया जा सकता कि क्रोध करना बहुत बुरा है, तुम क्रोध न किया करो। अभी थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं, कम से कम 9th 10th में आ जाएं या 8th में आ जाएं, तो थोड़ा बच्चे समझने लगते हैं। फिर भी अगर थोड़े बच्चे समझदार हैं तो उन्हें जानना चाहिए। हम ही उन्हें कह देते हैं मम्मी की तरफ से कि क्रोध मनुष्य की विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है, क्रोध मनुष्य की एकाग्रता को नष्ट कर देता है, क्रोध मनुष्य की शांति को नष्ट कर देता है, उसका उसके जो रिलेशनशिप हैं उसको पॉइजनस कर देता है, जहरीला बना देता है। इसलिए जो लड़की है उसको मैं कहूँगा क्रोध आपके लिए बहुत बड़ा विघ्न है। जिस बच्चों को क्रोध आता है उनकी कंसंट्रेशन डे बाय डे भंग होती जाएगी और पढ़ाई में वो वीक हो जाएंगे, धीरे धीरे मेमोरी भी उनकी ढीली पड़ जाएगी। इसलिए बच्चों को क्रोध से बचना है। लेकिन जहाँ तक बच्चे छोटे हैं और वो कुछ भी समझ नहीं सकते, तो ये माँ जो उनकी बात कर रही है उसको मैं कहूँगा कि राजयोग के प्रयोग के द्वारा अपने बच्चों के चित्त को शांत कर सकते हैं। उसके 2-3 तरीके अपनाए जा सकते हैं, और एक तरीका है बच्चों को गुड वाइब्रेशंस देना। मैं एक बहुत अच्छी टेक्निक आजकल सिखा रहा हूँ माताओं को कि जब आपके बच्चे सोए हैं सवेरे ही, मान लो 6 बजे वो सोए हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप एक छोटा सा अभ्यास करें। मैं पहले बताया कि देखो हाथ ऐसे मले, आप अभी करके देख लीजिए, ऐसे मले और अंदर में अभ्यास करें 3 बार, मैं भगवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो हाथों में बहुत एनर्जी आ जाएगी। देखो आप ऐसे छोड़ के देखो, आपको पता चलेगा हाथों में अट्रैक्शन
1: जी।
0: अब ये एनर्जी जो हाथों में आ गई तो ये बच्चों के सिर पे रख दें, ऐसे ब्रेन के दोनों तरफ
1: टच कर दें।
0: और अगर उन्हें डर है कि बच्चे उठ जाएंगे तो थोड़ा पास रख दें, उससे भी ब्रेन को एनर्जी जाएगी। और संकल्प करें, 1 मिनट तक रखें और संकल्प करें बच्चों का ब्रेन नॉर्मल हो जाए, इसे इनका चित्त शांत हो जाए, इसका क्रोध नष्ट हो जाए। ऐसा 5 बार कर दें सवेरे, और फिर 5 बार रात को भी कर सकते हैं, दिन में कभी भी कर सकते हैं। ये थेरेपी दूर से भी दी जा सकती है, हाँ घर बैठे भी इसको किया जा सकता है। मान लो बच्चा स्कूल में है तो ऐसा अभ्यास कर सकते हैं कि हम सूक्ष्म शरीर के पास उसके पास पहुंच गए और ये कर रहे हैं। एक तो ये, इसे धीरे धीरे उनका ब्रेन नॉर्मल होगा, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क वो कर रहा है, हाइपर एक्टिव जो हो गया है वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। दूसरा, भोजन की चीज हम सदा सिखा रहे हैं और माताओं को इस चीज के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अगर वो बच्चों के चित्त को शांत करना चाहती है तो पहले उनको अपने चित्त को शांत करना होगा, और राजयोग और ईश्वरीय ज्ञान इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो चित्त को शांत करके वो भोजन बनाए, उसमें प्यार भी भरें और परमात्म वाइब्रेशंस भी भरें, शांति के वाइब्रेशंस भी भरें। और एक बहुत अच्छा अभ्यास करें वो भोजन बनाते हुए, बार बार ये संकल्प करें, देखिए आत्मा मूल रूप से पवित्र है
1: जी।
0: तो आई एम सुप्रीमली प्योर सोल, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये मन में रिपीट करते रहें और काम करते रहें किचन में, तो हाथों से, नैनों से, मस्तक से प्योर एनर्जी भोजन में समाती जाएगी। और इससे क्या होगा, भोजन प्योरीफाई हो जाएगा, और जब बच्चों को भोजन खिलाए तो बस वो संकल्प कर दे इस भोजन को खाने से इस लड़की का मन शांत हो जाए, इसका क्रोध समाप्त हो जाए, तो इसका बहुत वंडरफुल मिरेकुलस परिणाम दिखाई देगा। ऐसे जो 2 छोटे बच्चों की बात हुई, वो भी माता को चाहिए कि ये दोनों प्रयोग करे और अपने घर में सुंदर वाइब्रेशंस फैलाए। ऐसे नहीं लड़की क्रोध कर रही है तो माँ भी परेशान और वो भी क्रोध करे और एक संग्राम घर में चलता रहे निरंतर। तो अगर बच्ची क्रोध कर रही है तो इसको थोड़ा लाइट रहना चाहिए, ईगोलेस रहना चाहिए और अपने चित्त को धैर्यवत और शांत रखना चाहिए, तो घर में बहुत अच्छे वाइब्रेशंस हो जाएंगे। और जितने घर में अच्छे वाइब्रेशंस होंगे बच्चों पर गहरा इफेक्ट पड़ेगा। बच्चे स्कूल से आए तो उन्हें ऐसा लगे हम एक बहुत प्योर वाइब्रेशंस में आ गए, वो घर में आते ही रिलैक्स हो जाएं और उनको रियलाइज होने लगे कि हमें मम्मी को बहुत प्यार करना चाहिए, हमारी मम्मी तो हमें बहुत प्यार करती है, हमें अपनी मम्मी की बात सुननी चाहिए, उसको तंग नहीं करना चाहिए। तो ये आपे ही बच्चों में हो, इसके लिए गुड वाइब्रेशंस क्रिएट करने की आवश्यकता।
1: बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने कही, सुबह का सुंदर अभ्यास, साथ ही घर में बहुत अच्छा एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर तैयार किया जाए, और साथ ही जब भी वो भोजन बनाती हैं तो बहुत अच्छे वाइब्रेशन भोजन में भी डालें। भ्राता जी जो दूसरा रह गया था कि बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, समय इजाजत नहीं दे रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों जैसे बात चली थी कि पवित्रता या कहें चरित्र एक बहुत ही सुंदर गुण है, मूल्य हमारे जीवन को बहुत मूल्यवान बनाते हैं। हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि यदि धन चला गया तो कुछ भी नहीं गया, यदि स्वास्थ्य गया तो समझो कुछ गया, लेकिन यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। इस बात में बहुत दम है, और कहीं ना कहीं चरित्र से यदि हम समझौता कर रहे हैं तो हम बिखराव की ओर जा रहे हैं, हम पतन की ओर जा रहे हैं। इस बात पर अवश्य विचार कीजिएगा ताकि बहुत सारे घर बच सकें और हम समस्याओं को क्रिएट ना करके समाधान की ओर बढ़ सकें। नमस्कार।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस, क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन कुछ बातें याद रखने लायक होती हैं।
1: भगवान के साथ संबंध, the relationship with God. And friends, believe me, शायद हमने भगवान को सही अर्थ में नहीं पहचाना. Two good reasons. एक तरफ भगवान को कहते वो प्रेम का सागर है, और दूसरे तरफ आज हम उस प्रेम के सागर से सबसे ज्यादा डरते हैं. We have become God fearing rather than God loving. आप कहेंगे सर नो वी डोंट फियर गॉड. देन देयर इज अ सेकंड गुड रीजन व्हाई वी हैव नॉट अंडरस्टूड गॉड, बिकॉज़ फ्रेंड्स मोर देन 80% ऑफ द वॉर दैट इज फॉट टुडे इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द नेम ऑफ गॉड. चाहे वो अमेरिका अफगानिस्तान वॉर हो, अमेरिका इराक वॉर हो, जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम हो, गुजरात प्रॉब्लम हो, दिल्ली ब्लास्ट हो, हैव वी रियली अंडरस्टूड गॉड? किसी ने क्या खूब कहा है, काबा है घर रहीम का, काशी है घर राम का, दोनों ही बात तो एक है, झगड़ा है बस नाम का. We are fighting in the name of God and we call ourselves intellectuals. Friends, let's understand the name very clearly. Hindus मनाते हैं दिवाली और हमारे इस्लाम भाई बहने मनाते हैं रमजान. लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस तो हम समझ सकते हैं, अरे दिवाली में है अली A-L-I, तो रमजान में है राम R-A-M. दिवाली में है अली, रमजान में है राम. दिवाली में है दिल D-I-L, तो रमजान में है जान Z-A-N. अरे उस प्रेम के सागर को दिल व जान सिख व प्रेम से याद करना है, ना कि उसके नाम पर युद्ध करना है. तो परमात्मा के साथ वो संबंध जोड़ना जरूरी है. हमें ये समझ होनी चाहिए कि हम सभी जो आत्माएं हैं उस एक परमात्मा के संतान हैं. एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दैट वी कैन एस्टैब्लिश विद द ऑलमाइटी गॉड. एंड दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और उस परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय भी होना बहुत बहुत जरूरी है. जब हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लेते हैं तो उनका जो स्नेह है, क्योंकि परमात्मा को कहते हैं वो स्नेह और प्रेम का सागर है, तो ऑटोमेटिकली वो स्नेह और प्रेम हमारे में आने लगती है और हमारा जीवन फिर से प्रेममय, सुखमय और शांतिमय बन जाता है. तो हम सबको एक ऐसा कार्य करना है जिससे समाज जो है फिर से ऐसे सुखमय बन जाए.

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू। आप सच बोलेंगे, देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: साथ।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। गुड मॉर्निंग गाबू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग गाबू इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और बड़ा ही प्यारा सा देशभक्ति गीत आप सुन रहे थे। और आज शनिवार का दिन है और आज आखिरी दिन है शिरोई डिस्ट्रिक्ट में, खास जो खेलों का पूरा जो है एक बहुत ही सुंदर उत्सव चल रहा है। और इसमें हम कल विजिट करने गए थे चंदेला में, जहाँ पर आर्चरी का बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। बच्चे जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और आमथला जो मुदुरला है, आमतला मुदुरला, यहाँ के बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और ये बच्चों को तो हम यहाँ पर अपने शांति वन में भी बहुत बार ट्रेनिंग के लिए बुलाया था और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कल हमने देखा कि वहाँ पर 92 यानी 92 स्टूडेंट ने आर्चरी गेम्स में हिस्सा लिया था और उन गेम्स में अच्छा प्रदर्शन, 20 से 30 बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। रेनू जी जो उनके सुपरविज़न में ये सारा गेम हो रहा था, तो उन्होंने आखिरी में इंटरव्यू में बताया कि भाई यहाँ अगर बच्चों के लिए कुछ ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला जाए या बन जाए, ग्राउंड मिल जाए और थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट वगैरह उनको उपलब्ध करा दिया जाए तो बच्चे अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं, ये उनका कहना था। और साथ में रिजमा राम जी जो PTI है और छोगा राम जी, ये भी PT टीचर है, जो अपनी बात यही उन्होंने बताया कि अगर यहाँ उपलब्ध हम संसाधन और ग्राउंड उपलब्ध करा दें तो बच्चों में कोई प्रतिभा की कमी नहीं है और धीरे धीरे अगर उनको अच्छे से कोचिंग किया जाए तो साल भर में ये स्टेट के लिए तैयार हो जाएंगे और 2-3 साल में ये नेशनल के लिए तैयार हो सकते हैं और उससे आगे बढ़ेंगे तो इंटरनेशनल में भी जा सकते हैं। तो चलिए, खुशी की बात ये है कि अब हम कुछ इस पर काम कर रहे हैं और हमारे तपोवन में शायद ये चीज़ें शुरू हो सकती हैं, आप लोगों का सहयोग और प्यार इसी तरफ बना रहे हैं। तो चलिए, बच्चों के बारे में सुनकर सोचकर अच्छा लगा और वहाँ पर जो टीचर्स हैं उनका उत्साह देखकर मुझे खुशी हुआ कि वो लोग अगर बच्चों को साथ लेकर आएंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, यहाँ पर ग्राउंड उपलब्ध हो जाएगा और इंस्ट्रूमेंट हम लोग जो है स्पॉन्सर्स करवा देंगे ताकि बच्चे जो है उसको अच्छे से सीख सकें। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर गुड मॉर्निंग गाबू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 26 सितंबर 2026 आज का तारीख है और आज विशेष पितृपक्ष का श्राद्ध शुरू हो गया है और विश्व मूक बधिर दिवस भी आज है। तो चलिए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से ये चीज़ें आरंभ हो गई हैं। और आज देवानंद साहब का जन्मदिन है और उनके कुछ खूबसूरत गाने मैं आपको सुनाने वाला हूँ। देवानंद जी के देवानंद पर पिक्चराइज किए गए खूबसूरत गाने, सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स मैं आपको सुनाने वाला हूं और आशा करूंगा कि आप सभी को अच्छा लगेगा और देवानंद के सुपर हिट गाने सुनकर खुशी होगी। 8:16 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ, तो आइए एक बहुत ही खूबसूरत गाना हम सभी को और सबको पसंद आता है, फूलों का तारों से शुरू करते हैं देवानंद जी के सुपर डुपर गाने आपके।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। बड़ा ही प्यारा सा ट्रैक आप सुन रहे थे और फूलों के रंग से किशोर कुमार का गाया हुआ ये खूबसूरत गाना एसडी बर्मन साहब का संगीत से सजा, नीरज श्रीधर का लिखा ये खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। आइए आगे बढ़ते हुए देवानंद साहब के और भी खूबसूरत गाने मैं आपको सुनाने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले आइए मूक बधिर दिवस के बारे में बात करते हैं जो आज का दिन है। तो आज विशेष हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन वर्तमान में विश्व मूक बधिर सप्ताह के रूप में अधिक जाना जाता है। ये सितंबर के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। विश्व बधिर संघ 1958 में विश्व बधिर दिवस की शुरुआत हुई और इस दिन बधिरों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के साथ साथ समाज और देश में उनकी उपयोगिता के बारे में बताया जाता रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो विश्व बधिर संघ के आंकड़ों के अनुसार विश्व की करीब 7 अरब आबादी में बधिरों की संख्या 70 लाख के आसपास है। इस संख्या का 80% विकासशील देशों में पाया जाता है और भारत में 2001 में आंकड़ों के अनुसार देश की 1 अरब आबादी बधिरों की संख्या 13 लाख के आसपास है। शिक्षा तक पहुंचने सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत विशेष रूप से परीक्षण अध्यापकों की नियुक्ति की है। इसके अलावा बधिरों को आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए व्यावसायिक परीक्षण भी किया जा रहा है, इसकी व्यवस्था भी की गई है। तो कार्यक्रम और योजनाओं को समय समय पर विशेष रूप से दिल्ली में इंडिया गेट से जंतर मंतर तक मार्च का आयोजन किया गया था और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बधिरों के कल्याण के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को भी दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत सहायता भी मुहैया कराया गया है और बधिरों को नौकरी देने वाली कंपनियों को कुछ छूट का भी प्रावधान दिया गया है। तो इस तरह से नोएडा डेफ सोसाइटी की रूमा रोका ने कहा, सबसे बड़ी समस्या जागरूकता का अभाव है। हमारे यहाँ व्यावसायिक परीक्षण के लिए आने वाले अधिकतर बच्चे देश के पिछड़े इलाकों से आते हैं। समाज के पिछड़े तबकों से संबंधित इनके अभिभावकों में जागरूकता एवं सुविधा के अभाव के कारण इन बच्चों के पास मूलभूत ज्ञान का अभाव होता है। तो प्रदूषण के कारण बहरापन बढ़ रहा है, अगर प्रदूषण कम हो तो बहरापन भी कम हो सकता है, ये भी उन्होंने बताया। दूसरी तरफ सरकारी प्रयास भी इस दिशा में नाकामी सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि आज भी महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर जैसे रेलवे एवं बस स्टेशन पर इन लोगों की सहायता के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था अभी पूरी तरह से सक्षम नहीं है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर इस बात के बाद सोचना पड़ेगा हम सभी को, क्योंकि जनता जनार्दन अगर इस बात को समझे तो इसके लिए जनता ही प्रयास करेगी तो सरकार उसमें सपोर्टिव रोल अदा करेगा। तो इसीलिए हमें ऐसे लोगों को जो विशेष बधिर है या फिर ऐसे मुश्किल है उनको सुनने में इसमें दिक्कत हो रहा है, इन सभी लोगों को हमें जो है खुद होके मदद करनी चाहिए जिससे उनके जीवन में बदलाव आ सके और हमें इनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देवानंद साहब का एक और खूबसूरत गीत अभी आपके लिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, ये खूबसूरत टाइटल सॉन्ग आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और डायरेक्टर थे म्यूजिक डायरेक्टर जयदेव और साहिल लुधियानवी साहब ने इस गीत को लिखा था और इसे पिक्चराइज किया गया था देवानंद पर। तो आइए, 8:30 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ, और विश्व मूक बधिर दिवस के बारे में आपको

देवानंद जी के बारे में अगर बात करें तो 26 सितंबर 1923 को इनका जन्म हुआ था और सदाबहार हीरो के रूप में इनको बहुत ज़्यादा जो है प्रसिद्धि प्राप्त हुई और देवानंद जी की भारतीय सिनेमा के महान कलाकार के रूप में, निर्माण और निर्देशक के रूप में इनको विशेष रूप से याद किया जाता है। और आज ही के दिन 1923 को एक मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म, प्रसिद्ध वकील पिशोरीमल आनंद नामक एक संपन्न घर में इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम धर्मदेव देवदत्त था और फिर इसके बाद धीरे धीरे पिशोरीमल आनंद इनके पिता का नाम था। उनका बचपन परेशानियों से गिरा क्योंकि बचपन में ही उनका झुकाव अपने पिता के पेशे वकालत की ओर न होकर अभिनय की ओर हो गया था। इस वजह से पिताजी और उनके बीच में करियर को लेकर कश्मकश रहा। एक वकील और आज़ादी के लिए लड़ने वाले पिशोरीमल के घर पैदा होने वाले देव ने रद्दी की दुकान से जब बाबूराव पटेल द्वारा संपादित फिल्म इंडिया के पुराने अंक पढ़े तो उनकी आंखों में फिल्मों में काम करने का सपना बन गया और वहीं से वो सपना इतना मजबूत था कि वो सीधे अपने गांव छोड़कर माया नगरी मुंबई का सफ़र पर निकल पड़े। और देवानंद ने अंग्रेजी साहित्य में अपनी पूरी शिक्षा कर ली थी। 1942 में लाहौर में मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी डिग्री हासिल की। कॉलेज ने फिल्मों और साहित्य जगत को बलराज सहानी, चेतन आनंद, बीआर चोपड़ा, खुशवंत सिंह जैसे शख्सियत दी है। इसके बाद वे उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते थे लेकिन पिता के पास इतने पैसे भी नहीं थे। तो फिर देवानंद जी अपनी मास्टर डिग्री करने के बाद लाहौर से फिर देवानंद ने अपनी पहली नौकरी मिलिट्री सेंसर ऑफिस, आर्मी कॉरेस्पॉन्डेंट सेंसर डिपार्टमेंट में एक लिपिक, एक प्यून के रूप में या लिपिक के रूप में क्लर्क के रूप में उन्होंने काम शुरू किया। उन्हें सैनिकों द्वारा लिखी चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना पड़ता था। इस काम के लिए देवानंद को 165 रुपये मासिक वेतन के रूप में मिला करता था जिसमें वे 45 रुपये वो अपने परिवार के खर्च के लिए बेच दिया करते थे। लगभग एक वर्ष तक मिलिट्री सेंसर में नौकरी करने के बाद परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए वह 30 रुपये जेब में लेकर पिता के मुंबई जाकर काम ना करने की सलाह के विपरीत, माना क्योंकि पिताजी हमेशा उनको मना करते थे कि आप मुंबई नहीं जाएंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं था और उनकी रुचि भी थी फिल्मों में काम करना। तो 30 रुपये जेब में डालकर पिताजी के मना करने पर भी वो सीधे चले गए मुंबई और अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ फ्रंटियर मेल में से 1943 में मुंबई पहुंच गए। और चेतन आनंद उस समय भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा से जुड़े हुए थे। उन्होंने देवानंद को भी अपने साथ इप्टा में शामिल कर लिया और फिर यहां से उनकी फिल्मी सफ़र की शुरुआत हुई। तो चलिए शुरुआत क्या क्या हुआ वो जानेंगे, लेकिन एक गीत के बाद। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बड़ा प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे अभी, देवानंद जी पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत गाना। हम सभी को जो है बड़ा आकर्षित करता है और आनंद देता है। तो आइए एक दिन डल जाए, ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, एसडी बर्मन साहब का संगीत से सजा ये गीत, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ ये गीत आप अभी सुन रहे थे। अब जैसे कि हम कहानी के दूसरे मोड़ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर कहानी का अगला मोड़ जैसे फिल्मी सफ़र का शुरू हो जाता है देवानंद जी का। देवानंद जी और उनके छोटे भाई विजय आनंद को फिल्मों में लाने का श्रेय उनके बड़े भाई चेतन आनंद को ही जाता है। देव ने ये सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि कामयाबी इतनी जल्दी उनके कदम चूमेगी, मगर ये 30 रुपये रंग लाए और जाए तो जाए कहा का राग अलापने वाले देवानंद को माया नगरी मुंबई में आशियाना मिल ही गया। गायक बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचे देवानंद अभिनेता बन गए। देवानंद के भाई चेतन आनंद और विजय आनंद भी भारतीय सिनेमा में सफल निर्देशक रहे हैं। उनकी बहन शील कांता कपूर प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की माँ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और पहली फिल्म उनकी, देवानंद जी की पहली फिल्म। फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद उनका नाम सिमट कर रह गया देव आनंद। देवानंद को अभिनेता के रूप में पहला ब्रेक 1946 में प्रभास स्टूडियो की फिल्म हम एक है से मिला, लेकिन इस फिल्म में असफल होने से वो दर्शकों के बीच अपनी पहचान नहीं बना पाए और इस फिल्म के निर्देशन के दौरान प्रभास स्टूडियो में उनकी मुलाकात बाद के मशहूर फिल्म निर्देशक गुरुदत्त से हुई, जो उन दिनों फिल्मी दुनिया में कोरियोग्राफर के रूप में स्थान बनाने की संघर्ष कर रहे थे। वो दोनों की दोस्ती हुई और एक साथ अपने देखते इन दिनों दोनों दोस्तों ने आपस में एक वादा किया कि अगर गुरुदत्त फिल्म निर्देशक बनेंगे तो वह देव को अभिनेता के रूप में लेंगे, और अगर वे देव निर्माण बनेंगे तो गुरुदत्त को निर्देशक के रूप में लेंगे। तो इस तरह से चीज़ें उनकी दोस्ती में बातें हुई। और फिर आया एक 1948 का वो दौर जिसमें अभिनेत्री कामिनी कौशल के साथ देवानंद के लिए फिल्मी करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई। जिद्दी ने देवानंद को नई ऊंचाइयां दिलाई। इस फिल्म की कामयाबी के बाद उन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा और उसके बाद 1949 में एक साल बाद नवकेतन बैनर नाम से स्वयं की फिल्म निर्माण संस्था खोली और उसके अंतर्गत साल दर साल फिल्में बनाने के सफल हुए। नवकेतन के बैनर तले उन्होंने वर्ष 1950 में अपनी फिल्मी सफर अप्सरा का निर्माण किया, जिससे निर्देशन की जिम्मेवारी उन्हें अपने बड़े भाई चेतन आनंद को सौंपी। इस फिल्म के लिए उन्होंने उस जमाने के जानी मानी अभिनेत्री सुरैया का चयन किया, जबकि अभिनेता के रूप में देवानंद खुद ही थे। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए। इसके बाद उनका ध्यान गुरुदत्त को दिए गए वादे की तरफ गया। सन 1951 में उन्होंने अपनी अगली फिल्म बाजी के निर्देशन की जिम्मेवारी गुरुदत्त को सौंप दी। फिल्म सुपरहिट हुई और दोनों दोस्तों की किस्मत चमक गई। फिल्म बाजी की कहानी बलराज सहानी ने लिखी थी। बाजी फिल्म की सफलता के बाद देवानंद फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छे अभिनेता के रूप में शुमार होने लगे। देव यहीं से दिलीप कुमार और राजकुमार की करतार में जा खड़े हुए। इस त्रिमूर्ति ने लंबे समय तक हिंदी फिल्मी दुनिया में राज किया। जाल, राही, आंधिया, पतिता और 1954 में अभिनेत्री कल्पना कार्ती के साथ आई फिल्म टैक्सी ड्राइवर बड़ी हिट फिल्म बन गई। तो इस तरह से देवानंद जो है 1950 तक जो है अच्छा अपना मुकाम हासिल कर चुके। तो ये कहानी थी देवानंद की, कैसे वो फिल्मों में एक सफल अभिनेता बने। तो आइए उनका एक और गीत जो बहुत ही पॉपुलर है, दम मारो दम, अभी आपके लिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए, कार्यक्रम के हम लोग अंतिम मोड़ पे पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे हम जो है आज कैसे मोड़ पे आ गए हैं जहां पर देवानंद की कहानी आपको सुना रहे थे और देवानंद की जीवन कहानी से आप रूबरू हो रहे थे। तो फिल्मी दुनिया में अक्सर ये देखा गया कि बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन में आती है लेकिन लगातार काम करने से ही सफलता मिलती है और देवानंद के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। देवानंद और गुरुदत्त की जोड़ी सिनेमा में अच्छी जो है पहचान बनाई और सफलता हासिल की और 1952 में आई फिल्म गाइड ने तो रातों रात उन्हें जो है एक बड़े स्टार के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। तो पहली रंगीन फिल्म जो आई थी उनकी, इसके पहले ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में उन्होंने काम किया और 1952 में रंगीन फिल्म जो गाइड लोगों के दर्शकों को बहुत आकर्षित किया और देवानंद सबसे ज़्यादा फेमस हो गए और उसके बाद तो नई कलाकारों के साथ इनकी अच्छी जमने लगी और बहुत सारे जितने भी नई कलाकार लेडीज़ या महिला किरदार आते, अभिनेत्रियां आती, तो देवानंद के साथ काम करना उनके लिए बड़ा गर्व का बात हुआ था। तो फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने ऐसा ही एक नाम जो है उनका चमकने लगा और धीरे धीरे देवानंद और नई अभिनेत्रियां, ये सिलसिला भी कुछ समय तक चला। मधुबाला, मीना कुमारी, नूतन, वैजयंती माला, मुमताज, हेमा मालिनी, वहीदा रहमान, सुरैया जैसे सभी के साथ, नायिकाओं के साथ जोड़ी उनकी खूब बनी और उनकी जो है देवानंद और रोमांस इस तरह से ये भी फेमस हो गया। देवानंद और सुरैया ये टाइटल भी बहुत फेमस हो गया और फिर देवानंद का स्टाइल भी बिल्कुल अच्छा लगने लगा। देवानंद को राजेश खन्ना से भी पहले सिनेमा का पहला चॉकलेट नायक या सुपर स्टार के रूप में याद किया जाता था। फिर देवानंद और काला कोट, देवानंद का निजी जीवन, सम्मान और पुरस्कार और इस तरह से भारतीय सिनेमा में सदाबहार अभिनेता देवानंद का लंदन में दिल का दौरा पड़ने से 3 दिसंबर 2011 को 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये थी कहानी देवानंद की, आज आपके लिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: चलिए मित्रों, आज के इस गुड मॉर्निंग गाबू में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कल सुबह। आपके स्वास्थ्य आपके हाथ में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सभी की भागीदारी और योगदान से ही हासिल किया जा सकता है।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वडनगर से प्राप्त मूल्यों ने उनके जीवन को आकार दिया है, जबकि काशी से उन्हें जीवन में सेवा मूल्य प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा तथा निर्बाध प्रतिबद्धता के भाव से सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की जानकारी दे रहे हैं। नए श्रम संहिताएं सरकार की इस प्रतिबद्धता की साक्षी हैं।
3: नई श्रम संहिताएं कई वर्तमान कानूनों को एकीकृत आधुनिक ढांचे में समाहित करती हैं, जिन्हें कार्यबल में स्पष्टता, स्थिरता और समानता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार इन सुधारों के अंतर्गत 29 केंद्रीय कानूनों को 4 संहिताओं में समाहित किया गया है। वेतन संहिता न्यूनतम वेतन को सार्वभौमिक बनाती है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। औद्योगिक संबंध संहिता विवाद समाधान को सरल बनाती है और नियुक्ति में लचीलापन बढ़ता है। वहीं सामाजिक सुरक्षा संहिता वर्कर्स, प्लेटफॉर्म कर्मियों और संगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता कार्यस्थल की सुरक्षा और कल्याण मानकों को बेहतर बनाती हैं। ट्राई सिटी बिल्डिंग कामगार यूनियन चंडीगढ़ के प्रधान रामप्रीत शर्मा ने कहा कि नए श्रम कानून श्रमिकों के हित में है।
4: एक यूनियन लीडर के रूप में मेरा अनुभव है कि अच्छी पॉलिसी वही है जिसमें श्रमिक और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ विकास करें। उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वर्किंग अरेंजमेंट में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आई है।
3: ये 4 श्रम संहिताएं भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखती हैं, जिससे श्रमिकों और नियोक्ताओं को एक समान नियमों के अंतर्गत लाया जा सका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तेज वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में तूफान के कारण तेज वर्षा हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से वर्षा से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों और पर्यटकों से इस दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चार धाम यात्रा फिलहाल जारी रहेगी।
5: मौसम विभाग के अनुसार आज बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 4000 मीटर और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का भी अनुमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और रेड अलर्ट के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने और राहत एवं बचाव की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार हो रही वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ और जल भराव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उड़ीसा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉ जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV केप डाउ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ कई मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की। सत्र के दौरान उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खाड़ी संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा की। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात वाले इस समूह का उल्लेख करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों के नेताओं ने ब्रिक्स सहयोग की समीक्षा की। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है, उसमें नागरिक, सरकार और उद्योग भी शामिल हैं। श्री पाटिल ने नई दिल्ली में कल 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के समापन सत्र में ये बात कही। श्री पाटिल ने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है।
7: जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा। तीन बातें विशेष रूप से सामने आई हैं। पहली, जल संरक्षण से जल भागीदारी सबसे जरूरी है। दूसरी, विज्ञान और नई तकनीक का लाभ जमीन तक पहुंचना चाहिए। और तीसरी, जल की चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थाओं के बीच सहयोग से ही मजबूत होगा।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
8: पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। बरवाल ने 2 घंटा 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो कीन यू से होगा। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में रजत पदक जीतने के एक दिन बाद अब 1500 मीटर स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। पारुल चौधरी और पूजा महिलाओं के 1500 मीटर फाइनल्स में उतरेंगी। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर बना हुआ है। 99 स्वर्ण पदकों के साथ चीन शीर्ष पर है। जापान दूसरे स्थान पर है, उसने अब तक 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया 13 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को पराजित किया। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अब 10वें दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
9: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
10: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री मोदी के भजन क्लबिंग में शामिल होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मोदी जेंजी के साथ भजन क्लबिंग में हुए शामिल। नवभारत टाइम्स के अनुसार जेंजी के साथ पीएम की भजन क्लबिंग। अमर उजाला के अनुसार भजन क्लबिंग में युवाओं संग झूमे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री मोदी का बयान देते हुए लिखा है, देश में दिखा बदलाव, मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे, पीएम ने गिनाई उपलब्धियां, निवेश, रक्षा उत्पादन, विनिर्माण और निर्यात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। हिन्दुस्तान के अनुसार देश का विकास इंजन बना यूपी, गृहमंत्री अमित शाह बोले, डेड इकोनॉमी कहने वालों की सोच ही डेड। दैनिक जागरण लिखता है, गृहमंत्री ने यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह में विपक्ष पर साधा निशाना। पंजाब केसरी के अनुसार तमंचों की फैक्ट्री की जगह बन रही ब्रह्मोस। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारत की पहल, जहाजों नाविकों पर हमले रोकने के लिए बना ग्लोबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, समुद्र में हमले वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा। जनसत्ता के अनुसार न्यूयॉर्क में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, होर्मुज खोलने के लिए 7 दिनों का प्रस्ताव। अमर उजाला का शीर्षक है, स्वर्णिम निशाना, सुरुचि और कमल ने देश को दिलाया दूसरा गोल्ड, एक ही दिन में भारत को 2 रजत सहित 6 पदक। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में गूगल, सौर ऊर्जा से चलेगा AI कंप्यूटिंग सिस्टम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: अभी बजे हैं सुबह के 9। एक मिनट का समय स्वयं को दें

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। तपस्या का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, कैसे जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, बैठ कर किए जाने वाले कौन कौन से आसन है, उसके क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, वो सब आप जानेंगे। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। और आज मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ रेसिपी में चटनी। लेकिन कौन सी वाली चटनी, वो अब आपको बताना पड़ेगा। अगर कोई नई कुछ या आपके पसंद की चटनी सीखना चाहते हैं तो फोन कॉल्स करके बताइएगा, हम जरूर सिखाएंगे। नहीं तो फिर हम अपनी मन पसंद की चटनी सिखाएंगे। और आज की पहेली बहुत ही सुंदर रहेगी, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: 5 यूट्यूब वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा
0: है? हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इतने से ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
2: क्या बात है यार।
3: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। नमस्कार। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, जहां आप ध्यान से सुनेंगे कि तप का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जो तपस्या हम करते हैं उसका परिणाम अच्छा ही होता है, तपस्या हमारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी। एक बार पृथ्वी पर जल वृष्टि न होने के कारण चारों ओर सूखा अकाल पड़ गया था। ताल तले और सरोवर सूख गए थे, कुओं में भी पानी नहीं रह गया था, कहीं भी हरियाली देखने को नहीं मिलती थी। मनुष्य, पशु और पक्षी जल के अभाव में तड़प रहे थे। किंतु महर्षि गौतम के आश्रम पर उस भीषण अकाल का नाम निशान भी नहीं था। आश्रम के आसपास घनी हरियाली तो थी ही, सरोवर में भी स्वच्छ जल लहराया करता था। जब चारों ओर जल का अभाव हो गया तो दूर दूर के पशु पक्षी सरोवर के पास आकर के रहने लगे और सरोवर के पानी को पीकर सुख से जीवन बिताने लगे। मनुष्यों को भी जब उस सरोवर का पता चला तो झुंड के झुंड गौतम ऋषि के पास पहुंचे और उनसे विनीत स्वर में बोले, ऋषिवर, हम सब पानी के बिना दुख पा रहे हैं, अनुमति दीजिए ताकि हम सब आपके सरोवर के जल का उपयोग कर सके। गौतम ने कहा, आश्रम आप सबका है, सरोवर भी आप सबका ही है, आप स्वतंत्रता पूर्वक सरोवर के जल का उपयोग कर सकते हैं। बस फिर क्या था, झुंड के झुंड लोग तरह तरह की सवारियां पर अपना सामान लाद करके सरोवर के पास आकर बसने लगे। कुछ ही दिनों में सरोवर के आसपास चारों ओर अच्छा खासा नगर बस गया। सरोवर के जल से सबको नया जीवन मिलने लगा। सब गौतम ऋषि के तप और त्याग की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। पर मनुष्य में कुछ ऐसे भी लोग थे मेरे प्यारे श्रोता बंधु, जो दुष्ट प्रकृति के थे। उन्होंने जब झन झन के मुख से गौतम ऋषि की प्रशंसा सुनी तो उनके मन में गौतम ऋषि के प्रति ईर्ष्या अग्नि जल उठी। उन्हें गौतम ऋषि की प्रशंसा नहीं सुहाई, वे कोई ऐसा उपाय सोचने लगे जिससे गौतम ऋषि को नीचा देखना पड़े। उनके इस प्रयत्न में कुछ ऋषि मुनि भी सम्मिलित हो गए। पर गौतम ऋषि को नीचा दिखाना सरल काम नहीं था, क्योंकि वे बड़ी निष्ठा से सदा मानव की भलाई में लगे रहते थे। जब दुष्ट स्वभाव के मनुष्यों का किसी तरह वश नहीं चला तो वे सब मिलकर गणपति की सेवा में उपस्थित हुए। सबने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे गणपति महाराज, ऋषि गौतम गर्व से फूलकर पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे उनका गर्व धूल में मिल जाए। गणपति ने कहा, आश्चर्य है, आप लोग गौतम ऋषि के संबंध में मन में ऐसी धारणा रखते हैं, गौतम ऋषि तो तप और त्याग की मूर्ति है। उन्होंने वरुण की उपासना करके उस स्वच्छ जल वाले सरोवर को प्राप्त किया, यदि आज वह सरोवर न होता तो क्या आप लोगों का जीवन सुरक्षित रह सकता था? पर उन दुष्ट मनुष्यों के हृदय पर गणपति जी की बात का भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपनी बात पर अड़े रहे और प्रार्थना पूर्वक गणपति जी से आग्रह करते रहे। गणपति ने विवश होकर कहा, आप लोग नहीं मानते तो मैं कुछ करूंगा, लेकिन उससे आप लोगों का ही अहित होगा। गणपति की बात सुनकर के दुष्ट स्वभाव के सभी मनुष्य तुष्ट होकर के अपने अपने घर चले गए। एक दिन दोपहर के बाद गौतम ऋषि अपने आश्रम की वाटिका में पुष्पों के पौधों को सींच रहे थे। हठात एक दुबली पतली गाय वाटिका में घुसकर पौधों को खाने लगी। गौतम ऋषि गाय को पकड़ करके उसे अलग कर देना चाहते थे, पर जो ही उन्होंने गाय को हाथ लगाया वह गिर पड़ी और निष्प्राण हो गई। यह देख गौतम ऋषि स्तब्ध रह गए और गाय की ओर देखकर बोले, ओह यह कैसा अनर्थ हो गया प्रभु। तभी गौतम ऋषि के कानों में एक आवाज पड़ी, गौतम पापी है, गाय का हत्यारा है। गौतम ऋषि ने पीछे मुड़कर देखा, बहुत से लोग खड़े थे, उनके साथ कुछ ऋषि मुनि भी थे। वे सम्मिलित स्वर में गौतम ऋषि को पापी और हत्यारा घोषित कर रहे थे। चारों ओर गौतम ऋषि की निंदा होने लगी। गौतम ऋषि बहुत दुखी हुए। वे अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए अहिल्या को साथ लेकर आश्रम छोड़कर चले गए। दुष्ट स्वभाव के मनुष्य बहुत प्रसन्न हुए, उनका मन चाहा पूरा हो गया। गौतम ऋषि एक वन में गए। वन के वृक्षों को काटकर उन्होंने एक कुटी बनाई और वहां रह करके तप करने लगे। अहिल्या दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। तप करते हुए गौतम ऋषि को बहुत दिन बीत गए। प्राय ऋषि मुनि भी वहां आया करते थे। उन्होंने गौतम ऋषि से कहा, तब से गौ हत्या का पाप दूर नहीं होगा। यदि आप भी गौ हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते हैं तो गंगा में स्नान कीजिए। पर गौतम ऋषि गंगा में स्नान करे तो भला कैसे, गंगा तो वहां थी ही नहीं। गौतम ऋषि गंगा को प्रकट करने के लिए भगवान शिव की आराधना करने लगे। गौतम ऋषि के तप त्याग और आराधना से भगवान शंकर प्रसन्न हुए। वे प्रकट होकर बोले, महामुने मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हूँ, बोलिए आपको क्या चाहिए। गौतम ऋषि ने निवेदन किया, प्रभु मुझे गौ हत्या का पाप लगा है, कृपा करके मुझे गंगा दीजिए, मैं गंगा में स्नान करके पाप से मुक्त होना चाहता हूँ। भगवान शंकर मुस्कुरा कर बोले, महामुने आपको गौ हत्या का पाप नहीं लगा है, आपको छल का शिकार बनाया गया है। जिन्होंने आपके साथ षड्यंत्र किया है उनका कभी भी कल्याण नहीं होगा, आप कोई और वर मांगिए। गौतम ऋषि ने कहा, प्रभु जिन्होंने मेरे साथ छल किया है मैं तो उन्हें अपना परम हितेशी मानता हूँ, यदि उन्होंने मेरे साथ वैसा न किया होता तो आज मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य कैसे मिलता, मुझे तो केवल गंगा दीजिए। गौतम ऋषि के त्याग पर भगवान शंकर और भी अधिक प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा, महामुने आप धन्य है जो अपने शत्रुओं को भी अपना हितेशी मान रहे हैं, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी, गंगा अब अवश्य प्रकट होगी। शंकर जी के इस कथन पर गंगा जी प्रकट होकर बोली, मैं जलधारा के रूप में प्रकट होने के लिए तैयार हूँ, पर आपको भी मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। शिव जी ने कहा, मैं बिना देवताओं के किसी जगह भला कैसे रह सकता हूँ। गौतम ऋषि ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभो आप देवाधिदेव है, आप जहां रहेंगे देवता भी वही रहेंगे। गौतम ऋषि के कथन पर शंकर जी मुस्कुरा उठे। उनकी मुस्कुराहट के साथ ही साथ देवता वहां उपस्थित होने लगे। देवताओं ने कहा, हम अवश्य यहाँ रहेंगे, प्रकृति के रूप में निवास करेंगे, भांति भांति के फूल बन करके खिलेंगे, हरी हरी फसलों के रूप में लहराएंगे और हरी तमा के रूप में चारों ओर छा जाएंगे। देवताओं के कथन के साथ ही गंगा की जलधारा फूट उठी और हर हर ध्वनि के साथ लहराने लगी। उस जलधारा के प्रभाव से अकाल दूर हो गया, धरती तृप्त हो गई। गौतम ऋषि के तप से प्रकट हुई उस जलधारा का नाम पड़ा गौतमी। कालांतर में गौतमी ही गोदावरी बन गई है। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, ऋषि मुनियों के तप का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार और आइए फिर से सुनते हैं एक गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

ओम शांति, मैं हूं विजय कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको अब बहुत सुंदर घरेलू उपाय, जैसे कि कल आपने सीखे थे खड़े रह करके किए जाने वाले आसन। ठीक है, तो खड़े रहकर किए जाने वाले आसन कितने तरह के हैं वो आपने जाना है। 5 प्रकार के हैं और पांचों के नाम आपको सुनाया है। अब बैठकर किए जाने वाले आसन, इनके फायदे भी जानेंगे और इनका नुकसान के बारे में भी जानेंगे और कैसे किया जाता है वो भी आप जानेंगे। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा, कभी भी इनमें से आपको प्रश्न पूछ सकती हूँ। तो बैठकर किए जाने वाले आसन 7 है। पहला है भद्रासन। भद्रासन में आपको क्या करना है, पहले योगा मैट बिछाइए या चद्दर जो भी आपके पास है आप बिछाइए, उसके ऊपर बैठिए। बैठ करके आप एकदम स्ट्रेट बैठिएगा कड़क हो करके और पलाटी मार दीजिए। फिर पलाटी एक बैठते समय एक बार आपको पलाटी मारनी, फिर दोनों पैरों को आगे लीजिए और दोनों पैरों को आगे लेकर, जैसे पलाटी मार रखी ना तो पलाटी नहीं मारनी है, पैर भी लंबे नहीं करने, दोनों पैरों को पास में सरका दीजिए और जितना हो सके आप अपने से सटा दीजिए और दोनों हाथों को स्ट्रेट रख के दोनों पैरों को पकड़ लीजिए, दोनों पैरों के पंजों को। तो ये हो गया भद्रासन। अब भद्रासन के क्या फायदा है वो आप जानेंगे। घुटनों और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है भद्रासन। घुटनों का दर्द कम करने में मदद करता है। उदर के अंगों को क्रियाशील करता है। महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से मुक्ति प्रदान करता है भद्रासन। ठीक है, अब इसका नुकसान भी आप जानेंगे। देखिए, पुरानी या अत्यधिक पीड़ा देने वाले आर्थराइटिस और साइटिका से ग्रसित व्यक्ति को इस अभ्यास को नहीं करना है। ठीक है, बाकी सब कर सकते हैं। फिर दूसरा है वज्रासन। वज्रासन कैसे किया जाता है पता है, आप बैठिएगा दोनों पैरों को मोड़ दीजिए, दोनों पैरों को मोड़कर दोनों पैरों के ऊपर बैठिएगा और दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों पर रख दीजिए। तो ये हो गया वज्रासन। इसके फायदे ये है कि इस आसन से जांग और पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती है। यह आसन पाचन शक्ति बढ़ाने में भी बहुत ही सहायक है। लेकिन किनको नहीं करना चाहिए वो भी जान लीजिए। बवासीर के मरीज को इस आसन से परहेज करना चाहिए। घुटना दर्द और एड़ियों के चोट से ग्रसित लोगों को भी इस आसन से परहेज करना है, बाकी सभी कर सकते हैं। फिर तीसरा है अर्धउष्ट्रासन। अर्धउष्ट्रासन कैसे करेंगे, आप दोनों पैरों को मोड़ करके पैरों के बल आप थोड़ा सा ऊपर की साइड में बैठिएगा। ठीक है, बैठ करके दोनों पैरों को मोड़ करके घुटनों के बल आप ऊपर हो जाइए और फिर अपने मुंडी को, सिर को जितना झुका सको पीछे की साइड में झुकाइए, पीछे की साइड में आपको झुकाना है। ठीक है, तो इसको कहते हैं अर्धउष्ट्रासन। तो इस योगा

आप बैठ जाइए, बैठने के बाद पैरों को आप उल्टा घुमा लीजिए, ठीक है, मतलब पैर पीछे घुटनों के बल आप बैठिए, फिर बैठ करके ऊपर से इतना झुके कि आपके दोनों हाथ पीछे की साइड में पैरों को पकड़ ले वे, पीछे की साइड में आपको झुकना है, दोनों हाथ स्ट्रेट रखिए, कोनी मुड़नी नहीं चाहिए और दोनों पैरों को पकड़ ले वे, इस पोज में बैठिएगा, इसको कहते हैं उष्ट्रासन। इसके बेनिफिट जान लीजिए, उष्ट्रासन माने ऊंट जैसी शारीरिक स्थिति, ऐसी स्थिति में बैठना है आपको, तो इसका लाभ यह है पीठ और गले के दर्द में आराम दिलाता है, ये उदर और नितंब की चर्बी को कम करने में सहायक है, पाचन क्रिया संबंधी समस्याओं के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। और इसके नुकसान भी जान लीजिएगा, उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, हर्निया के मरीजों को यह आसन नहीं करना है, ठीक है। फिर है पांचवा आसन, शशांक आसन। शशांक आसन कैसे करना है पता है, इतनी देर आप उल्टे बैठे थे, अब आप सीधे बैठिए, ठीक है, घुटनों को तो ऐसे ही मोड़ना है, घुटनों को मोड़ करके अब आपको आगे की तरफ झुकना है और दोनों हाथों को नीचे धरा पर टिका देना है, इसे कहते हैं शशांक आसन, मतलब खरगोश की पोज में बैठना है आपको, ठीक है। इसके बेनिफिट है तनाव, क्रोध, इन सब को करने में सहायक है, ये जनन अंग संबंधी व्याधि और कब्जी से भी मुक्ति दिलाता है और पाचन में सहायक है। अब इसके नुकसान जान लीजिए आप, अधिक पीठ दर्द में इस अभ्यास को नहीं करना है, घुटनों से संबंधित ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित लोगों को भी इस अभ्यास को नहीं करना है, नहीं तो सावधानी पूर्वक करिएगा अथवा वज्रासन से बचना चाहिए। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों को इस आसन से परहेज करना है, मेन तो उष्ट्रासन में उच्च रक्तचाप वालों को तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो आज मैं आपको पांच के ही फायदे बताऊंगी, क्योंकि एक साथ में हाई डोज दे देंगे तो वो पचेगा ही नहीं, भूल जाओगे ना, इसलिए आज पांच, दो बचे हैं, कल आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह देखिए, बहुत ही सुंदर ये आसन, अभी योगा डे भी चल रहा है तो आप इन आसन को कर सकते हो और अपने को स्वस्थ रख सकते हो। किन किन को कौन कौन से आसन नहीं करना है वो आप सभी ने जाना है, ठीक है। अब आइए आज की पहेली की तरफ बढ़ते हैं, आज की पहेली भी योगा के अंतर्गत ही है तो आपके लिए जवाब देना आसान हो गया, मैंने हिंट दे दिया है। न दवा हूं न कोई इलाज, फिर भी रखता हूं सबको तंदुरुस्त आज, सासों का है मुझसे नाता, तन मन दोनों को सुख पहुंचाता, बताओ मैं कौन। अब इसमें कौन सा योगा, इतने सारे आसन है, अभी तो बहुत सारे बताने बाकी है, उसमें से एक का आपको नाम बताना है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94 14 15 14 15, और यही पर एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में सुरेश भाई पिंडवाड़ा से जुड़ चुके हैं. नमस्ते सुरेश भाई.
2: जय माता जी. जय श्री हरि. नमस्ते. ओम शांति.
1: हाँ जी ओम शांति.
2: सुनने सुनाने वाले सभी भक्तों को प्यार भरा नमस्कार. आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं मंगल कामनाएं.
1: आज का विषय आप सुनेंगे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी. क्या कहेंगे आप?
2: तो इसमें क्या बोले आप? देखिए वो तो शॉर्ट में बताऊं तो प्राइड हाल में जी ज्यादा दिखता है ना
1: जी.
2: वो बोले वो सुखी, वो बोले वो सुखी, वो बोले वो सुखी, तो वो मारवाड़ अपने कहते हैं ना कि हिंदी में भी प्राइड पांच वाली थाली में जी ज्यादा दिखता है, अपने खुद की थाली में है वो तो दिखता नहीं है. तो मैं तो इससे यही कहना चाहूंगा कि आप दूसरों का देखने से पहले खुद का देखिए ना. जो अपने थाली में है उससे संतोष रहिए, क्योंकि आप दूसरों की बराबरी करने जाओगे कि वो बोलता है वो सुखी, तो इस संसार में सुखी तो कोई है ही नहीं ना. अगर आप संतोष रखोगे तो ही सुखी रह पाओगे. सही है ना
1: जी?
2: गलत बोल रहा
1: हूँ? सही बोल रहे.
2: हाँ, क्योंकि सुख तो किसी के पास है ही नहीं, और आपको अगर सुखी रहना है सुख को ढूंढने से नहीं मिलेगा. आपको संतोष रहेगा आपके पास तो आपके पास सुख ऑटोमेटिक ही आ जाएगा. नहीं तो आपके पास संतोष नहीं है फिर सुख ही आएगा. सुख कहीं से भी नहीं आएगा, चारों तरफ ढूंढ लोगे
1: जी.
2: क्योंकि ये तो एक दूसरे देखिए कि पत्थर है ना, पहाड़ से जब तक जुड़ा रहता है ना तब तक वो पत्थर रहता है, मतलब सही रहता है. और पत्ता डाली से जुड़ा रहता है तब तक हरा भरा रहता है. तो इंसान परिवार के साथ में रहेगा तो सुख रहेगा, और संतोष के साथ में रहेगा परिवार और संतोष के साथ में तो खुश रहेगा. तो प्राय थाली देखना छोड़िए और खुद की थाली देखते रहिए, और जो भी है अपने थाली में उसको बस उससे खुश रहिए
1: जी.
2: क्योंकि आजकल की दुनिया में क्या हुआ है जी, एक तो ये देखा देखी कि ये मतलब कि संतोष बिल्कुल मर चुका है जी. वो ऐसा कर रहा था कि अपन अरे यार उसके तो इतना पेमेंट है, वो देख देख के दुखी दुखी हो रहे हैं. तो बस अपने पास है उसमें खुश रहिए, संतोष रखिए, तो बस सब कुछ ठीक होगा. ठीक है
1: जी. बहुत बहुत आभार सुरेश भाई.
2: पहली है क्या?
1: हाँ पहली है ना. अच्छा पहली नहीं बताई. पहली इस प्रकार है, न दवा हूँ न कोई इलाज, फिर भी रखता हूँ सबको तंदुरुस्त आज. सासों का है मुझसे नाता, तन मन दोनों को सुख पहुँचाता, बताओ मैं कौन. ये योगा के अंतर्गत ही है, ठीक है, एक्सरसाइज के अंतर्गत ही है. अब क्या चीज है?
2: ना दवा है ना. ठीक है मैं सोच के बताता हूँ. ठीक है.
1: हाँ जी ठीक है. बहुत बहुत आभार. तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, और पहली आप सभी के समक्ष रख चुके हैं. फिर भी एक बार मैं दोहरा रही हूँ ताकि आप ध्यान से सुन करके जवाब दे सको. न दवा हूँ न कोई इलाज, फिर भी रखता हूँ सबको तंदुरुस्त आज. सांसों का है मुझसे नाता, तन मन दोनों को सुख पहुँचाता, बताओ मैं कौन. बहुत ही सुंदर पहेली है. योगा डे तक आपको इसी तरह के हम पूछते रहेंगे, टंग ट्विस्टर भी, प्रश्न भी, पहेली भी. तो ये पहले आपके समक्ष रखी है जवाब देने के लिए और विषय में जुड़ने के लिए. नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज की पहेली का जवाब दे सकते हैं. आज का विषय भी बड़ा अच्छा है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी. तुलसी दास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो बहुत ही सुंदर ये जो दोहा है आपके समक्ष रखा है, आपको स्पष्ट करना है। जैसे कि सुरेश भाई ने बताया है कि लोगों की नजर क्या रहती है, ये तो सही में अभी जिधर देखो यही हाल है, पराई थाल में घी ज्यादा दिखता है। सेम रखेंगे फिर भी, ऐसे ही माता पिता जब अपने दो बच्चे होते हैं दोनों को बरोबर दे देते हैं, लेकिन दोनों यही समझते हैं कि उसके ज्यादा गया उसके ज्यादा गया, और इसी कसम कसमे टेंशन में जीते हैं, तनाव में रहते हैं, क्या फायदा। हेलो
2: हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हम शांति सुरेश भाई।
1: हाँ जी नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
2: काम कर रहे हैं और अच्छा बुक लिया आपने विषय के बारे में। सबके सबकी बात पर सर विधि एक ही है कि देखो परमात्मा के भजन बिना तो कुछ नहीं है। परमात्मा को सब सुखी तो हैं, लेकिन जब परमात्मा साथ रहेंगे तो ही जो जल ज्यादा सुखी रहेंगे ना
1: जी।
2: सभी तो धनवान तो है, धनवान से कोई ऐसा नहीं है, धनवान तो सभी धनवान ही है। कोई पैसे से धनवान है, कोई भजन से धनवान है, कोई भक्ति से धनवान है
1: जी।
2: लेकिन मैं तो बता देती बस कि परमात्मा के साथ जुड़े रहेंगे तो आप धनवान ही धनवान रहेंगे
1: जी।
2: क्योंकि भगवान के भजन के सिवा कुछ नहीं है, भक्ति भजन ज्ञान तो जीवन में जरूरी है, पैसा सब कुछ नहीं होता है। देखो हमारे पास पैसा होगा ज्ञान नहीं होगा तो क्या करेंगे पैसे को, आप अच्छी तरह से कोई यूज नहीं कर पाएंगे
1: जी।
2: इसलिए ज्ञान भी जरूरी है। तो बस मैं तो दीदी एक ही कहूँगा, बस परमात्मा के साथ जुड़े रहो, प्रभु के भजन के सिवा तो कुछ है नहीं
1: जी,
2: बस भगवान को याद करते रहो।
1: अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, आप भी विषय के बारे में बता रहे थे और बहुत ही सुंदर विषय है। अक्सर गरीब व्यक्ति जब महलों को बड़े बड़े बंगलों को देखता है तो उनको ऐसा लगता है कि अरे ये लोग कितने सुखी होंगे, कितने सुखी होंगे, कल्पना करते हैं काश कुछ तो हमारे पास भी होता। लेकिन वो कहते हैं ना, दूर से पहाड़ भी सुंदर दिखाई देते हैं लेकिन पास में जाओ तो क्या है, पत्थर। ऐसे ही हमको दूर से जिनके सुंदर सुंदर बंगले नजर आते हैं उनके भी जीवन में टेंशन कम नहीं है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। इसलिए स्वयं को पहचानिए, मैं जो हूँ जैसा हूँ उसे स्वीकार करिए। हाँ आगे बढ़ना चाहते तो अपनी एबिलिटी के आधार पर आगे बढ़िए, लेकिन दूसरों को देख करके तनाव में मत आइए कि अरे उसके पास इतना है मेरे पास कब होगा, कब नहीं, मेहनत करिए हो जाएगा। लेकिन जब ईर्ष्या की भावना आती है ना, या फिर कर तो कुछ नहीं पाते हम और बस दूसरों का जब हम बार बार कोसना सीखते हैं वो फिर तनाव हमारा बढ़ाता है। हाँ ठीक है, उसके पास बहुत अच्छा बंगला है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, मैं भी मेहनत करूँगा, मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी कुछ प्राप्त कर सकूँ। फिर मेहनत करिए, हो सकता है उसके जैसा नहीं उससे कम, थोड़ा बहुत जो झोपड़ी से तो कम से कम हम पत्थर के मकान में आ जाए, ऐसा तो कर सकते हैं ना, बहुत बड़ा सपना देखते तो बीच में तो आ जाए। इसलिए सपना को देख कर दूसरों को देख करके आप प्रेरणा लीजिए, ईर्ष्या नहीं। कितनी बार लोग कंपेरिजन करने लगते हैं और कंपेरिजन में तनाव बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, कितनी बीमारियां लग जाती है शरीर को, क्या फायदा। और जो तनाव में ग्रस्त होता है वो व्यक्ति न तो मुस्कुराता है न दूसरों के साथ अच्छी तरह बात करता है, तो फायदा तो कुछ है नहीं, नुकसान ही नुकसान। इसलिए अच्छी बात है किसका कुछ अच्छा देखो तो जीवन में उतारो कि भाई मैं भी कैसे भी करके मेहनत करूंगा, मेहनत करके मैं भी कुछ प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। तो मेहनती व्यक्ति कभी पीछे हटते नहीं है और आगे उनका बढ़ना तय है। चलिए इस विषय पर और भी चर्चा करेंगे, हम तो चाहते हैं कि आप जुड़े और अपनी बात को रखें, तो जरूर जुड़िएगा। अभी तो एक ब्रेक लेंगे, पहले आज की पहेली की तरफ चलते हैं। आज की पहेली भी बड़ी सुंदर है, योगा के अंतर्गत है, योगा को योग कर दिया है, योग के अंतर्गत है। न दवा हूँ न कोई इलाज, फिर भी रखता हूँ सबको तंदुरुस्त आज, सांसों का है मुझसे नाता, तन मन दोनों को सुख पहुँचाता, बताओ मैं कौन। अब क्या है जो तन मन को सुख पहुँचाता है और हमारे सांसों से उसका नाता है, तो ऐसा कौन सा योग है, एक्सरसाइज है? हेलो,
2: हाँ मैडम, ऊषा बहन जी बुरा राम बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी बुरा राम जी, राम राम, कैसे हो आप?
2: राम राम, राम मैं तो रोज से राम राम करता हूँ सब मधुबन भाइयों को और सबको, मेरा तरफ से हाथ जोड़ के राम राम
1: जी।
2: और आज क्या मैं फोन जब से लगा रहा था तो विषय के बारे में मालूम नहीं पड़ा मेरे को।
1: आज का विषय है, हम दूसरों को सुखी देखते और सोचते हैं कि वो कितने सुखी है, और वो सुखी व्यक्ति भी अपने से ऊपर वालों को देखता है तो उसको लगता है कि वो कितना सुखी है, लेकिन असली सुख किसी के पास है नहीं है। जीवन में हर एक के जीवन में कुछ न कुछ तकलीफें तो है, लेकिन स्वयं को पहचानना है। क्या कहेंगे आप?
2: बहुत अच्छा विषय दिया है सरगन जी। देखो दूसरों के ऐसे मतलब ये अपने इच्छा एक होती है कि भाई ये बंगले में रहते, ये अच्छे सुखी जीवन रहते और ये रहते वो करके अपना वो खाली अपने भावना जाती है।
1: हाँ,
2: लेकिन सबसे बड़ा धन है संतोष धन
1: जी।
2: जिस व्यक्ति के में संतोष धन है वो सब कुछ है, परमात्मा के ऊपर भरोसा रखो, ईश्वर के ऊपर भेजो अपने को, यह उसमें संतोष करके रहे तो सब धन अपने पास में है। और किसी का दूसरों का मुकाबला करने जाएंगे तो खाली अपना जान जला के कुछ मतलब नहीं है, सबसे तो बड़ा संतोष धन ईश्वर ने दिया है।
1: आपकी आवाज कहाँ जी?
2: आवाज कट रही है?
1: हाँ जी।
2: अच्छा, तो इतना तो सबसे बड़ा संतोष धन है
1: जी।
2: ओके,
1: चलिए, बहुत बहुत आभार आपका।
2: ओके सर
1: जी, ठीक है। तो ये थे बुराराम जी ओर से, और आइए अब यहाँ पर एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः रूबरू होंगे आपसे इसी विषय में चर्चा करने के लिए। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। आज के पहले भी बड़ी सुंदर है, तो दोनों में जुड़ने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज की पहली का भी जवाब दे सकते हैं। आज के विषय में आप अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं। आज की पहली है, न दवा हूँ न कोई इलाज, फिर भी रखता हूँ सबको तंदुरुस्त आज। सासों का है मुझसे नाता, तन मन दोनों को सुख पहुंचाता, बताओ मैं कौन। बहुत ही सुंदर पहली आपके समक्ष रख चुकी हूँ। अब आप जुड़ करके प्रश्न का जवाब, आज की पहली का जवाब दे सकते हैं। और आज का विषय बहुत ही सुंदर है, दिन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। तो मतलब शेर से सवा शेर को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे तो ये कोई सुख है क्या, कितना सुखी है फलाना बंदा। लेकिन उनके भी जीवन में कुछ न कुछ होता ही है, जो बाहर से बहुत सुखी दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है उनके अंदर कोई ना कोई तनाव हो। हाँ, मैं सभी का नहीं कह रही हूँ, बहुत जने ऐसे भी होंगे जो कंपेरिजन में नहीं जाते होंगे, वो सुखी भी होंगे, अपनी मेहनत से खुश होते होंगे, सोचते हैं कि चलो पहले झोपड़ी थी, छोटा सा मतलब भले एक रूम किचन था, आज हमारे पास 2 BHK है या 2 रूम किचन है, चलो 2 में से 3 में तो आए, बड़े खुश हो जाते हैं और वो परिवार पूरा खुश रहता है। जब हम कंपेरिजन की भावना में जाते हैं ना, तब दुख उत्पन्न होता है। मुझे देखिए, घटना में सुनाऊंगी आपको। तो मुझे एक यहाँ पर बात याद आ रही है, एक बहन है, ठीक है, उन्होंने बताया कि जब वो शादी करके आई तो घर में पहली बहू थी, तो ठीक है, जो अभाव था उसको अभाव नहीं लगा कि भाई वाह घर परिवार है, कहीं अच्छे घर से आई थी, मायका अच्छा था, कोई खाने पीने की कमी नहीं थी, ससुराल में भी ठीक था, लेकिन खाने पीने की बड़ी कंजूसी थी। हेलो
3: हेलो, नमस्ते दीदी, मैं सुरेश भाई धानेरा से।
2: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हो आप?
3: बस मेरे बहुत अच्छे हैं, काम काज में व्यस्त है, फिर भी थोड़ा समय लेकर प्रोग्राम सुनते हैं और बात भी करते हैं।
2: जी जी जी बिल्कुल, तो आज के विषय में आप अपनी बात रखेंगे?
3: जी, विषय बहुत अच्छा रखा है, हर दिन की तरह आपने।
2: और थैंक यू।
3: एक कहावत से चालू भी करता हूँ विषय के, दूसरों का बंगला देखकर हमारी झोपड़ी जला नहीं देनी चाहिए।
2: नहीं तो झोपड़ी से भी हाथ धो बैठेंगे, झोपड़ी से भी हाथ धो बैठेंगे।
3: वही तो दीदी, कई लोग बस ऐसा ही करते हैं कि बस मनुष्य अवतार में आए, खाओ पियो ऐश करो और क्या लेके जाना है, ये सब ये सोचते हैं, लेकिन ये सोच भी मनुष्य कुछ उद्देश्य लेकर आए हैं, वो उद्देश्य अपने आप पहचानो तब पता चलेगा कि किस उद्देश्य से आपने भगवान को भेजा है, भगवान ने हमको भेजा है। और कोई भी कहते ना, पहले भी ये ऐसे विषय थे, इस विषय में कह चुका हूँ मैं कि जिन व्यक्ति जो धनी है या जो भी है व्यक्ति, उनको जो शरीर और जो चीज दी है, कुदरत ने जो दिया है वही हमको दिया है, तो हम मेहनत लगन सब कुछ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। यही है ना विषय?
2: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल,
3: हाँ
2: यही है, सही चल रहे हैं आप।
3: तो बस मैं यही कहूंगा सबको तो मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, ज्यादा ठीक से बात भी नहीं
2: अच्छा,
3: कर पा रहा हूँ।
2: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी आपने अच्छी तरह स्पष्ट किया है विषय को।
3: तो, जी जी जी नमस्ते
2: जी। और आज की पहेली का जवाब देंगे?
3: हाँ, मैंने पहेली का जवाब भेजा है।
2: अच्छा ठीक है,
3: जो कहते तो अभी मैं कह दू।
2: नहीं, भेज दिया तब तो ठीक है।
3: ठीक है, ठीक
2: जी, आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई धानेराव से, आपने भी विषय को स्पष्ट करने की कोशिश अच्छी की है। तो मैं आपको दृष्टांत दे रही थी, मतलब दृष्टांत समझिए आप, ये सच्ची घटना समझिए। तो चलिए, हमारे और भी श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं। हेलो।
4: हाँ दीदी नमस्ते।
2: नमस्ते सगुना बहन, केम छो?
4: बस मजा
2: जी।
4: तो आपनी पहेली नो जवाब छे योग।
2: अच्छा,
4: योग करेंगे ना तो सब दुख दर्द हमारे सब मिट जाते हैं।
2: अच्छा ना, ये तो दुख दर्द तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन योग में भी बहुत सारे आसन है, बहुत सारे योग है, प्राणायाम है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये किस में आता है? जैसे बैठने का सिखाया आपको, खड़े रहने का सिखाया, पेट के बल भी बात हुई, तो ये किस में से मतलब योग ठीक है?
4: मैं तो देखो करती थी ऐसे बैठ के करती थी, वो ऐसा ना अनुलोम विलोम है, सब योग है ना, उसे शरीर में कोई तकलीफ नहीं रहती, होती तो भी मिट जाती है। और आपने बताया जो सब कल भी बताया, खड़े होके वो योग करना, वो योग करना सब बताया, तो उससे भी शरीर को बहुत फायदा मिलता है
2: जी। और आज के विषय के बारे में आप अपनी बात को रखेंगे?
4: हाँ, इसे तो बताएंगे आप।
2: दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी।
4: हम दूसरे पर ईर्ष्या करते तो दुखी होते हम, है ना
2: जी।
4: किसी के ऊपर हम ईर्ष्या नहीं करना, हमको कुदरत ने भगवान ने जो भी दिया है उसमें हमें खुश रहना है। किसी के अच्छा देख के हमारे को जलना नहीं है
2: जी।
4: सबके ऊपर भगवान, और ऐसे ही हम ऐसे दुआ दे के भगवान सब सुखी से रहे, कोई को भी दुख ना मिले, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते
2: जी। चले, बहुत बहुत आभार सगुना बहन। हाँ जी, तो ये थे सगुना बहन झोटाना से, और आपने भी विषय को अच्छा स्पष्ट किया है। तो मैं आपको बता रही थी कि जैसे वो पहले नंबर की बहू थी, खाने पीने की बहू थी, घर में समस्या थी, सास कुछ बनाने नहीं देती थी, खाने नहीं देती थी, बोलते कि अगर कुछ खाना हो बनाना हो तो अपनी अपनी कमाई से। तो अभी तो पहली बहू थी, वो उसको ऐसा नहीं लगता था कि वह जाने दो। उसके पति से भी उसने बात की कि क्या कुछ बनाने नहीं देते, रोज सब्जी रोटी सब्जी रोटी, ऐसा थोड़ा होता है। तो बोले अब क्या करें, माँ तो ऐसी है, और नहीं तो कुछ काम करो तुम, सर्विस करना शुरू कर दो। तो भाई बाहर, क्योंकि बिना नौकरी के तो घर से बाहर भी बहुओं का निकला बड़ा मुश्किल है, तो कुछ करो छोटा मोटा काम तो बाहर खा सकते हो। अब क्या करें, युक्ति से मुक्ति कहते ना कि युक्ति से ही मुक्ति मिलती है, तो कुछ युक्ति रचो। लेकिन पढ़ी लिखी थी बहू, लेकिन हर मतलब घर वालों की भी छूट थी कि आप जॉब करना चाहो करो, नहीं तो आपकी मर्जी। घर में भी ऐसे झाड़ू पोछा बर्तन वाले आते थे, खाली खाना ही बनाना है, लेकिन खाना में सब्जी रोटी और कुछ भी नहीं बनाना है, ये स्ट्रिक्टली सासू माँ का ऑर्डर था। लेकिन उन्होंने जॉब नहीं की कि नहीं मुझे जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, तो ठीक है भाई आपकी मर्जी। आप दूसरे भाई की शादी हुई, मतलब देवर की शादी हुई, देरानी आई, देरानी ने भी थोड़े दिन तो देखा कि ये क्या सब्जी रोटी के अलावा कुछ बनता ही नहीं है इस घर में, अगर बाहर कहीं किसी के शादी ब्याह हो तो वहाँ प्रतिभोज खाने जाओ तो ठीक है, होटल में भी नहीं जाने देवे, अगर घर से आप जाना चाहते हैं तो छूटना ही है, ठीक है आप कहीं गए हैं किसी के यहाँ और उधर से खा करके आ गए होटल से तो बात अलग है। तो देरानी ने कहा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, खाली सब्जी रोटी के लिए थोड़े ना इतने मेहनत करते हैं, और कभी तो कुछ खाने की इच्छा होती है। तो फिर यही बात उन्होंने भी अपने हस्बैंड से कही, तो उनके हस्बैंड ने भी यही प्रस्ताव रखा कि भाई कुछ बाहर खाना हो, कुछ अच्छा खाना हो तो जॉब करो, क्यों घर में डिस्कस करने की, माँ को पसंद नहीं है तो जाने दो। तो देरानी ने जॉब शुरू कर दी, और जॉब शुरू कर दी तो जब इच्छा होती बाहर से खाना खा के आ जाते, कभी फ्रूट वगैरह, तो घर पर आकर एक आध रोटी खाई नहीं खाई तो जेठानी नोटिस करने लगी, तो बोले कि अच्छा ये तो आजकल खाना ही नहीं खाती है। तो पूछा कि ये क्या करती हो तुम, खाना नहीं खाती हो? बोले कि क्या करे दीदी, सब्जी रोटी से थोड़े ना चलता है, मैं तो बाहर से खा के आई लेकिन दिखावा कर रही हूँ खाने का कि हाँ माँ जी को पता नहीं चले कि मैं बाहर से खा के आई, सब्जी रोटी से तो रोज उब जाते हैं। तो फिर जेठानी को थोड़ा सा ऐसा लगा कि अरे ये देखो ये कल आई और इसने डिसीजन भी ले लिया और मैंने आज दिन तक नहीं लिया। तो थोड़े दिन तो ईर्ष्या की, लेकिन फिर उसके पति ने समझाया कि देखो ईर्ष्या करने से क्या होगा भाई, वो नौकरी कर रही है तो वो बाहर खा रही है, आपको भी तो ये प्रस्ताव दिया था ना कि आप भी नौकरी करो और बाहर खाओ, क्या कर सकते हैं, घर में डिस्कस से बचना अच्छा है। फिर उसने जॉब करना शुरू किया। तो कहने का भाव ये है कि हमें हमको ऐसा लगता है कि दूसरे सुखी है, तो भाई दूसरे का कंपेरिजन आप करना चाहते हैं तो आप भी आगे बढ़िए, आगे बढ़ने से किसी ने रोका नहीं है, लेकिन हम उनको देख करके कूदते रहेंगे और अपने संकल्प चलाते रहेंगे, इससे तो हम खुश नहीं हो सकते ना, उल्टा दुख बढ़ेगा। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि वो सुखी है वो सुखी है, हमेशा जैसे कितना अच्छा है ये कि भाई दीन कहे धनवान सुखी, गरीबों को लगता है धनवान सुखी है और धन वालों को लगता है अमीर सुखी है, ठीक है, और वो सोचते हैं कि राजा सुखी और राजा सोचता है कि महाराज सुखी है, और महाराज कहते हैं कि भाई सुख देवों के राजा इंद्र के पास है और उनका सुख ब्रह्मा जी के पास है, इंद्र ऐसे सोचते हैं, ब्रह्मा जी सोचते हैं सुख तो विष्णु जी के पास है, और विष्णु जी कहते हैं कि भाई सुखी वो ही है जो हरि भजन करता है। इसलिए ईश्वर का बंदा तो हमेशा सुखी ही होता है, लेकिन जो है उसमें आप खुश रहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए, लेकिन हमें दूसरों को देख करके झलना नहीं है, टेंशन में नहीं रहना है, तनाव में नहीं रहना है, ठीक है। चलिए इस विषय को यही समाप्त करते और सुनते एक गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में मदन भाई मेहसाना से जुड़ चुके हैं। नमस्ते मदन भाई।
3: नमस्ते नमस्ते दीदी जी, और अभी दोस्तों को नमस्कार करते हैं। आज का विषय बहुत अच्छा है और बहुत अभी अंत समय में ये विषय को दौड़ाना और भी बड़ा हो गया।
2: नहीं, अब विषय को जाने दीजिए, आज की पहेली का जवाब दीजिए।
3: हाँ, पहेली का तो आज का पद्मासन है और या ईश्वर को याद करना है।
2: अच्छा ठीक है, चलिए। बहुत बहुत आभार, कल थोड़ा और जल्दी जुड़िएगा, ठीक है?
3: जरूर जरूर,
2: ताकि विषय को भी स्पष्ट कर सको। हाँ जी, तो ये थे मदन भाई मेहसाना से। अब आशियाना के किचन में आप सभी का स्वागत करते हैं। समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का, तो हम तो यहाँ पर यही कहेंगे वारे मारे।

पुदीना, ये गीत है जिसके दो लाइनें आपके सामने गुनगुनाई है। तो आज मैं आपको सिंपल चटनी बनाना सिखा रही हूँ, धनिया और पुदीने की चटनी। ठीक है, अब इसके लिए आप सामग्री ले लीजिए, हरा धनिया एक गड्डी ले लीजिए एक जुड़ी, पुदीना भी एक जुड़ी ले लीजिएगा आधे के है। अब हम तो इतने सारे, आप जानते हैं कि रेडियो मधुबन परिवार बहुत बड़ा है, आप सभी भी सम्मिलित है ना, लेकिन आप थोड़ा कम लीजिएगा अपने परिवार के सदस्यों के हिसाब से। हरी मिर्च ले लीजिए स्वाद के अनुसार, इमली का गुदा 4 छोटे चम्मच ले लीजिएगा, नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा और चाहिए पानी, बस यही सामग्री है। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, इमली का गुदा, नमक और पानी। बनाने का तरीका भी सिखा रही हूँ। इमली को धो करके 1 घंटे के लिए पानी में भिगो करके रख दीजिए। अब भीगी हुई इमली में से गुदा निकाल लीजिएगा। पुदीने और धनिया को भी अच्छी तरह साफ करके धो लीजिए। धनिया, पुदीना, हरी मिर्च को बारीक पीस लीजिए, इसमें इमली का गुदा और नमक डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए, तो ये चटनी तैयार है। ये देखिए, दाल बाटी चूरमा बनाते उसमें भी आप ये चटनी की दाल में डाल करके खाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। आप दाल चावल बना रहे तो भी उस दाल में डाल सकते हैं, आप सब्जियों में डाल सकते हैं इस चटनी को, और आप खाली चटनी के साथ भी भोजन कर सकते हैं। तो फटाफट में विधि आप इस दोहरा रही हूँ। इमली को धोकर के 1 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दीजिए, फिर भीगी हुई इमली में से गुदा निकाल लीजिए। पुदीना धनिया को साफ करके धो लीजिए और इसमें हरी मिर्च धुलाई करके डाल दीजिए और बारीक इन सबको पीस लीजिए। फिर इसमें इमली का गुदा और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। ये बन गई चटनी। धनिया

देना कि सिंपल चटनी। देखिए कभी कभी सिंपल चीजें कोई भी इच्छा हो जाती खाने की, है ना। हमेशा कुछ वेराइटी चीजें खाते, कभी ऐसा लगता है चलो सादा सिंपल आज खाना खाते हैं, तो वो भी बड़ा टेस्टी लगता है। तो ये सिंपल चटनी है ना, ये भी बहुत टेस्टी लगेगी। और बनाने में देखिए मेहनत नहीं, मेहमान आ गए तो फटाफट आप बना सकते हैं, इसमें टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जो भी सात्विक चीज बनाते हैं अपने इष्ट देव को भोग लगाने के बाद ही स्वीकार करना है। आइए फिर से एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मेरी।
1: जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
2: जी आई माँ जी।
1: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
2: जी माँ जी आ गई। चलिए।
1: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
3: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
1: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
3: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
1: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
3: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
2: जी वो न, न,
1: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
3: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
4: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
5: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम था आपने सुने ही है, काफी अच्छे रहे हैं, सुंदर सा जो विचार दिया है जरूर उस पर ध्यान दीजिएगा। नुस्खे भी बहुत अच्छे दिए हैं। कुछ समय से आपको अलग अलग प्रकार की मुद्राएं सिखा रही हूँ, प्राणायाम, योग, जो भी आप समझे आसन, तरह तरह के आसन है। तो योगा डे तक यही चलेगा, है ना, ताकि आपको भी आ जाए और नाम भी, क्योंकि करते सभी है लेकिन नाम आना भी जरूरी है। तो किस पोज के साथ कौन सा आसन है वो आपने जाना है और क्या उसके बेनिफिट है वो भी आपने जाना है। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई और जो सिंपल सी चटनी बनाना सिखाया है धनिया पुदीना की, जरूर बना करके खाइएगा, ठीक है। धनिया पुदीना दोनों हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और आज का पहली बड़ी अच्छी थी जिसको मैं दोहरा रही हूँ फिर से, न दवा हूँ न कोई इलाज, फिर भी रखता हूँ सबको तंदुरुस्त आज। सांसों का है मुझसे नाता, तन मन दोनों को सुख पहुंचाता, बताओ मैं कौन। जवाब दिया है सुरेश भाई जोटाना से, आपका जवाब सही है। सुरेश भाई पिंडवाड़ा से आपने जवाब नहीं दिया है। भुराराम जी ओर से आप ने भी जवाब नहीं दिया है। स्वर्ण लता जी आप जुड़े हैं, आपने ऑक्सीजन जवाब दिया है, गलत है। प्रेम गोड आपने भी ऑक्सीजन दिया है, जवाब गलत है। अलका जी काबरा कपासन से आपका जवाब सही है। सुरेश भाई धानेराव से जवाब सही है। सगुना बहन आपने कहा योग अनुलोम, आपने सही बताया है, प्राणायाम आता है इसमें। संगीता जी आपका जवाब सही है। रोहित जी, हमारे आरजे रोहित जी ने भी मैसेज के द्वारा जवाब दिया है, आपका जवाब भी सही है। सुभाष भाई महाराष्ट्र से आपने कहा सूर्य नमस्कार, गलत जवाब है। और मदन भाई मेहसाना से आपने जवाब नहीं दिया है, दिया लेकिन गलत जवाब है। तो सही जवाब है प्राणायाम। तो प्राणायाम जिन्होंने जवाब दिया उनके लिए ढेर सारा। और फिर विषय में जुड़े हैं सुरेश भाई जोटाना से, सुरेश भाई धानेराव से, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, सगुना बहन जोटाना से, तो आपके लिए भी ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती सुनाना चाहूंगी, भाग्य क्या है वही जिसे हम ही अपनी सोच और कर्म से लिखते हैं, न कि वह पहले से लिखा होता है। अब मैं एक प्यारी सी कविता सुनाऊंगी, कविता थोड़ी सी लंबी है लेकिन सच है, आप ध्यान से सुनना, इसमें एक एक बात सत्य है। तो आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से टंग ट्विस्टर के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। घाव बेच कर शहर खरीदा, कीमत बड़ी चुकाई, जीवन के उल्लास बेच के खरीदी हमने तन्हाई, बेचा है ईमान धर्म तब घर में शानो शोकत आई, संतोष बेच तृष्णा खरीदी देखो कितनी महंगाई, बिगा बेच स्क्वायर फीट खरीदा ये कैसी सौदाई, संयुक्त परिवार के वट वृक्ष से टूटी है ये पीढ़ी मुरझाई, रिश्तों में है भारी चालाकी, रिश्तों में है भारी चालाकी, हर बात में दिखती चतुराई, कहीं गुम हो गई मिठास, जीवन से कड़वाहट सी भराई। रस्सी की बुन खाट बेच दी, रस्सी की बुनी खाट बेच दी, मैट्रेस ने वहां जगह बनाई, अचार मुरब्बे आज अधिकतर शोकेस में सजी दवाई। माटी की सौंधी महक बेच के रूम स्प्रे की खुशबू पाई, मिट्टी का चूल्हा बेच दिया, आज गैस पे कम पकी खीर बनाई। पहले 5 पैसे का लेमन जूस था, अब कैडबरी हमने पाई, बेच दिया भोलापन अपना फिर चतुराई पाई। सैलून में अब बाल कट रहे, कहां घूमता घर घर नाई, कहां दोपहर में अम्मा के संग गप्पे मारने कोई आती चाची ताई। मलाई बर्फ के गोले बिक गए, तब कोक की बोतल आई, मिट्टी के कितने घड़े बिक गए, अब फ्रिज में ठंडक आई। खपरेल बेच फॉल सीलिंग खरीदा, जहां हमने अपनी नींद उड़ाई, बरकत के कई दिए बुझाकर रोशनी बल्बों में आई। गोबर से लिपे फर्श बेच दिए, तब टाइल्स में चमक आई, देहरी से गो माता बेची, अब कुत्ते संग भी रात बिताई। ब्लड प्रेशर शुगर ने तो अब हर घर में ली अंगड़ाई, दादी नानी की कहानियां हुई झूठी, वेब सीरीज ने जगह बनाई। बहुत तनाव है जीवन में, ये कह के मम्मी ने भी 2 पेग लगाई, खोखले हुए है रिश्ते सारे, कम बची उनमें कोई सच्चाई। चमक रहे हैं बदन सभी के, दिल पे जमी गहरी काई, गांव बेचकर शहर खरीदा, कीमत बड़ी चुकाई।

0: भाई रुको भाई रुको, ओए त्रिदेव त्रिमूर्ति, ओ एक बाइक पे तीन है, ओ तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ओ बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक

पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, मैं हूं गौरव आसुदानी टेकीगल से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

वतन करा के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। भक्ति काल की अद्भुत कवित्री थी मीरा, कृष्ण की प्रेम दीवानी मीरा, जिसका दर्द कोई न जान सका। अपार सौंदर्य की स्वामिनी कवित्री मीरा, जो अपने भजन अपने ही कोकिल कंठ से गाकर अपने सांवरिया को रिझाती रही। लोक लाज खोकर और कुल मर्यादा को भुलाकर भक्तों के साथ झूम झूम कर नाचती रही। पग घुंघरू बांध और ताली बजा बजा कर वे अपने जोगी को बुलाती रहीं।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

सचमुच मीरा कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई थी। मीरा ने स्वयं को कृष्ण की दासी के रूप में साकार कर लिया। प्रभु चरणों के निकट वे भाव विभोर होकर नाचती थी। माया मोह नाते रिश्तों से दूर वे कृष्णमय हो गई थी। उनके तो सिर्फ गिरधर गोपाल थे, दूसरा कोई नहीं था। अपार सौंदर्य की धनी और सुख वैभव में रही मीरा ने अपना सर्वस्व त्याग दिया था। न जाने कितने कष्ट और अत्याचार सहकर भी वे गोविंद के गुण गाती रहीं।

0: जनता फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: लोक कहें मीरा भई बावरी, भ्रम दूनी ने खाग्यो, कोई कहे रंग लाग्यो। लोग कहते थे कि मीरा पागल हो गई थी, यही भ्रम दुनिया को खा गया। कोई कहता है ये तो प्रेम लग गया है, अर्थात मीरा का भक्ति भाव कृष्ण में आत्मसात हो गया। आकाश हो या धरती, फूल हो या पत्ते, या फिर हो बादल, हर जगह हर शय में मीरा को सिर्फ कृष्ण ही नजर आते।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। गायिका थी वीनस तरकसवार। संगीतकार थे उमेश वीनस। आलेख और उद्घोषणा सुधा अनुपम। परिकल्पना श्रीराम तिवारी। समन्वय संजय यादव। और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। आज के इस कार्यक्रम में आपने जो गीत सुने उन्हें हमने लिया था स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जन गर्जे श्रृंखला के अंतर्गत जारी ऑडियो एल्बम से। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम वतन का राग, स्वराज संस्थान संचालनालय, रविन्द्र भवन परिसर, भोपाल 462002। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं swaragbhavan@gmail.com पर। ज्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.swarajsansthan.org।

हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।

0: अरे आइए आइए गजबीय काका, मैं तो काफी देर से आपका इंतजार कर रहा था, कहाँ थे आप?
1: बेटा आते आते देर हो गई, मगर तुम क्यों मेरा इंतजार कर रहे थे?
0: काका आप वो स्वतंत्रता समर की सच्ची बातें बताया करते हैं ना, उन्हीं से मेरे अंदर भी देश प्रेम हिलोरे लेने लगता है।
1: ठीक है, देखो बेटा यूं तो इस देश की स्वतंत्रता में कई क्रांतिकारियों ने बड़े बड़े काम किए, लेकिन आज मैं तुम्हें एक सशक्त क्रांतिकारी के बारे में बताऊंगा जिनकी चर्चा कम ही हुई है।
0: अच्छा,
1: तो आज मैं तुम्हें हरे कृष्ण सिंह के बारे में बताता हूँ।
0: ठीक है काका, सुनाइए।
1: यूं तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता समर में अनेक सेनानियों ने सशस्त्र संघर्ष किया, उनमें महान सेनानी बाबू कुंवर सिंह का नाम भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा हुआ है। बाबू कुंवर सिंह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में राष्ट्रीय मुक्ति के लिए संघर्ष किया था। उनकी आवाज बुलंद थी और विचार जोशीले थे।
2: साथियों, हमारा देश गुलाम है। मैं 80 वर्ष का बूढ़ा हूँ, परंतु जब मैं माँ भारती को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा देखता हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। क्या आप लोग मुझे सहयोग देंगे?
0: कुंवर सिंह के जोशीले भाषण पर उपस्थित समूह ने अवश्य ही हाँ कहा होगा।
1: तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा, और सुनो, उनकी उम्र 80 वर्ष की थी, परंतु 80 वर्ष के इस परम साहसी एवं देशभक्त वीर ने अपने बाहुबल के अद्भुत जौहर दिखाकर भारतीय जनता में अभूतपूर्व साहस और शक्ति का संचार कर दिया था। राष्ट्रीय भक्ति अभियान में आम जनता उनके साथ साथ चल रही थी।
0: काका और बताइए ना।
1: वो जगदीशपुरा जिसे आज आरा कहते हैं,
0: हाँ,
1: वहां से बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, आजमगढ़, बलिया होते हुए अंत में अपने जन्म स्थल जगदीशपुरा पहुंचे थे।
0: क्या उनको उनके विश्वसनीय साथियों ने भी सहयोग दिया था? उनमें प्रमुख कौन थे काका?
1: हरे कृष्ण सिंह।
0: हरे कृष्ण सिंह?
1: हाँ, क्रांतिवीर हरे कृष्ण सिंह का जन्म सन 1827 में शाहबाद जिले के बारूनी नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम एदला सिंह था। बचपन से ही उनके अंदर देश को आजाद कराने का जज्बा था। युवा अवस्था में आते आते ये देश प्रेम का जज्बा और अधिक जोश से उनके लहू में दौड़ने लगा था। हरे कृष्ण सिंह का शरीर गोरा और चेहरा रोबीला था। वे पीरू परगना में तहसीलदार भी हो गए थे। एक दिन कुंवर सिंह ने उनसे कहा,
3: हरे कृष्ण सिंह जी, आपकी देशभक्ति से हम परिचित हैं। आप सरकारी मुलाजिम हैं, इसीलिए आप ये काम आसानी से कर सकते हैं।
4: कुंवर सिंह जी, आप बताएं मुझे क्या करना होगा? देश के लिए मैं कुछ कर सकूं, ये मेरा सौभाग्य होगा।
3: आप दानापुर स्टेट जाएं और ब्रिटिश छावनी में अंग्रेज

0: जफसर और सैनिक क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी प्राप्त करके मुझे दें।
1: ठीक है, मैं आपको शीघ्र ही जानकारी उपलब्ध करवाता हूँ।
2: हरे कृष्ण ने गुप्त योजनाओं से कार्य किया और दानापुर स्टेट की अंग्रेजी छावनी में गतिविधियों के बारे में मालूम किया। साथ ही भारतीय सैनिकों के मन में देश प्रेम की मशाल जला दी। उनका प्रयास सफल रहा, विद्रोह हुआ और बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक उनके साथ चलकर आरा पहुंचे।
3: आरा पर क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया होगा काका, है ना?
2: हाँ बेटा, हरे कृष्ण सिंह ने कुंवर सिंह की सहायता की और इस क्षेत्र में अत्यंत कुशलतापूर्वक सूझबूझ से प्रशासन का संगठन किया। उन्होंने आरा पर आक्रमण करने वाली क्रांतिकारी सेनाओं का संचालन भी किया, परंतु जगदीशपुरा और आरा पर ब्रिटिश सेनाओं ने पुनः अधिकार कर लिया।
3: ओह, ये तो बुरा हुआ काका। काका, इसका कारण क्या था?
2: इसका मुख्य कारण अच्छे किस्म के हथियारों का न होना था। फिर योजना के अनुसार कुंवर सिंह तथा हरे कृष्ण सिंह सासाराम की पहाड़ियों में जाकर छुप गए। इनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 3,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा कर रखी थी। उसे इस घटना के बाद बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया था।
0: हरे कृष्ण सिंह जी, आप मेरे विश्वस्त सहायक हैं। मैं चाहता हूं कि आप क्रांति के समर्थन में जनमत जागृत करें और उत्तर भारत तथा मध्य भारत के क्षेत्रों का सघन दौरा करें।
1: जी,
2: कुंवर सिंह के दिशा निर्देशानुसार उन्होंने उत्तर भारत तथा मध्य भारत का दौरा किया और आम जन में क्रांति का शंख फूंक दिया। आजमगढ़ की ऐतिहासिक लड़ाई में उन्होंने कुंवर सिंह की सेना का सफलतापूर्वक संचालन किया। सन 1857 की महान क्रांति में आजमगढ़ विद्रोह और आजमगढ़ की लड़ाई का महत्वपूर्ण स्थान है।
0: भाइयों, आप में देश को आजाद देखने का जज्बा है, मैं इस जज्बे की कद्र करता हूं। हमें यदि देश पर अपनी जान कुर्बान करनी पड़े तो हमें हंसकर तैयार रहना है।
3: हम तैयार हैं, ऐसा ही कहा होगा जनता ने, है ना काका?
2: हाँ बेटा, एक दिन हरे कृष्ण और कुंवर सिंह आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे।
4: कुंवर सिंह जी, 17वीं पैदल सेना का मुख्यालय यहीं आजमगढ़ में है।
0: मैं जानता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं?
4: मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 17वीं पैदल सेना की 2 टुकड़ियाँ गोरखपुर में हैं। फैजाबाद, गोरखपुर, बनारस और कानपुर में विद्रोह आरंभ करने में 17वीं पैदल सेना का सहयोग भुलाया नहीं जा सकता।
0: इन टुकड़ियों में हमें देश प्रेम की चिंगारी प्रज्वलित करनी है।
4: ऐसा ही होगा। आजमगढ़ की टुकड़ी में सूबेदार बंधु सिंह एक ऐसे सेना नायक है जो अपने साथियों में देशभक्ति का ज्वार उठा सकते हैं। मैं उनसे गुप्त वार्ता करके देखता हूँ।
0: यदि बंधु सिंह हमारी ताकत बन जाते हैं तो आजमगढ़ वाली 17वीं पैदल सेना अवश्य हमें अपनी ओर से देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखेगी और अंग्रेज अफसरों से डट कर मुकाबला करेगी। आप इनसे हमारी मुलाकात करवाइए।
4: जी, मैं पूरी कोशिश करके सूबेदार बंधु सिंह को आपके पास लेकर आता हूँ।
0: जी,
5: कौन है? खबरदार, मेरे क्षेत्र में गुप्त रूप से आने वाला कौन है तू?
4: बंधु सिंह जी, मैं सेनापति कुंवर सिंह का सहायक हरे कृष्ण सिंह हूँ। पहले मैं तहसीलदार हुआ करता था, अब मैं भारत माता का एक छोटा सा सेवक हूँ जो उनकी गुलामी की जंजीरों को काटना चाहता है। मैंने ही जगदीशपुरा और आरा पर क्रांतिकारी सेनाओं का संचालन किया था।
5: हरे कृष्ण जी, आपके शौर्य और देशभक्ति की जानकारी मुझे है, माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं सका था।
4: इसमें आपकी कोई भूल नहीं, क्योंकि इससे पहले हम कभी मिले ही नहीं थे। आपकी देशभक्ति की हमें भी जानकारी है।
5: भले ही हम नहीं मिले हों, परंतु आपकी ख्याति के परचम भारत भूमि में बहुत ऊंचे लहरा रहे हैं। आप हम सब क्रांतिवीरों के प्रेरणा स्रोत हैं। हम जो कुछ भी अंग्रेजी सेना अफसरों के विरुद्ध करते हैं उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है।
4: आप सेना में रहते हुए देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है, परंतु
5: परंतु परंतु क्या हरे कृष्ण जी?
4: अब हमें आर पार की लड़ाई लड़नी है।
5: देखिए आप थोड़ा विश्राम करें।
4: ये विश्राम का समय नहीं है।
5: देखिए आप रुकें, मैं पैदल सेना के सिपाही माधो सिंह को लेकर आता हूँ। उसमें तो देश प्रेम का जज्बा कूट कूट कर भरा है और वो अत्यंत उग्र भी है। अपने भाइयों से तो नम्रता से पेश आता है, परंतु जहां अंग्रेज दिखे उनसे वो अकारण उलझ जाता है।
4: तब तो मैं माधो सिंह से अवश्य मिलना चाहूंगा।
5: अवश्य, हम लोग कल आपसे मुलाकात करते हैं।
0: भाई हरे कृष्ण सिंह जी, बंधु सिंह जी तथा माधो सिंह जी, आपका स्वागत है। हम सब यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि सोचें और अमल में लाएं वो तरकीबें कि किस तरह से अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश करें।
5: कुंवर सिंह जी आप महान हैं, आपके दिशा निर्देश में हमें काम करना स्वीकार है। इनसे मिलिए, ये मेरा मित्र माधो सिंह, बड़े उग्र स्वभाव का है।
0: आप बताएं कि किस अंग्रेज का सिर काट दूं।
4: मित्र माधो सिंह, हमें जोश के साथ होश भी रखना है, सभी कुछ सुनियोजित तरह से होना चाहिए।
0: हरे कृष्ण जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे पास साधन सीमित है।
5: साधन तो सीमित है परंतु जज्बा असीम है, और युद्ध में जज्बा ही काम आता है।
6: हमारा एक एक सिपाही जब शेर जैसा दहाड़ता हुआ आगे बढ़ेगा तो अंग्रेजों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी।
5: हम बटालियन में विद्रोह करके हथियार भी लूट लेंगे और विद्रोहियों की सेना भी तैयार कर लेंगे।
0: ठीक है, हमारी रण योजना चुस्त भी है और दुरुस्त भी, हमें सोच समझ कर इस पर कार्य करना है।
2: इसके बाद गुप्त सभा विसर्जित हो जाती है। माधो सिंह व बंधु सिंह अपनी बटालियन में पहुंचते हैं।
0: सुबेदार बंधु सिंह,
5: अरे ये लेफ्टिनेंट हचिंसन बहुत बकबक करता है।
0: लेफ्टिनेंट इधर ही आ रहा है।
5: यदि आज इसने कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना तो मां कसम इसे गोली मार दूंगा।
0: राजा कुंवर सिंह की बात ध्यान रखना।
7: ये क्या खुसर फसर हो रही है, जाओ अपने बैरक में जाओ,
0: और अगर नहीं जाए
7: तो हम तुम्हें चींटी की तरह मसल देगा। हम हाथी है हाथी।
0: अच्छा तो ये बात है, मैं अभी बताता हूँ कि चींटी हाथी को कैसे मार देती है। हिलने की कोशिश मत करना।
7: माधो सिंह तुम बकावत करता है क्या, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? हम तुम्हें मौत का तोहफा देंगे।
0: लेफ्टिनेंट हचिंसन, तुम हमें क्या तोहफा दोगे? तोहफा तो हम देंगे अपने देशवासियों को आजादी का।
7: माधो सिंह तुम बकावत पर उतारू हो रहे हो।
5: माधो सिंह ही क्या लेफ्टिनेंट, रेजिमेंट का हर हिंदुस्तानी सिपाही अब आजादी की रोशनी में भारत माता को मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है।
7: ये तो सरासर बगावत है। जानते हो क्या होगा इसका अंजाम? डू यू नो द रिजल्ट?
0: तुम जैसों की गुलामी से मौत को गले लगाना हमें पसंद है लेफ्टिनेंट।
7: जंग बूम, तुम लोग आगे मत बढ़ना, इसका अंजाम बुरा होगा।
5: सुनो, मैं तुम लोगों का सूबेदार हूँ, लेफ्टिनेंट की बातों में बिल्कुल मत आना, ये हमें डरा रहा है। हमने अपने सिर पर आजादी के लिए कफन बांध रखा है, इसीलिए मौत का कोई खौफ नहीं है। आगे बढ़ाओ
6: साथियों। तुम्हें क्या पसंद है, हमारे साथ इज्जत से चलना या इन फिरंगियों के आगे सर झुकाना?
7: माधो सिंह तुम इन लोगों को क्यों बहका रहे हो? सिपाहियों, ये माधो सिंह और बंधु सिंह पागल हो गए हैं। सिपाहियों और
6: अब कौन किसे गिरफ्तार करता है ये देखना लेफ्टिनेंट।
7: क्या तुम हमको मारेगा?
6: बस इतने में ही घबरा गए हो लेफ्टिनेंट? ये लो साथियों, माँ भारती को आजादी की पहली भेंट।
7: गिरफ्तार करो, चुप रहो।
2: आजमगढ़ की 17वीं पैदल सेना का सिपाही माधो सिंह वो पहला व्यक्ति था जिसने सन 1857 की क्रांति की प्रथम गोली दागकर लेफ्टिनेंट हचिंसन को मौत के घाट उतार दिया था।
3: अच्छा काका,
2: लेफ्टिनेंट की सहायता के लिए और भी अंग्रेज अफसर आगे बढ़े, उनको भी घायल कर दिया गया। आजमगढ़ के विद्रोहियों ने एक घोषणा पत्र जारी किया जो अवध के सिपाहियों में वितरित कर दिया गया। इस घोषणा पत्र में अनुरोध किया गया था,
6: हम सबको विदेशियों के विरुद्ध संघर्ष में अपने मतभेद भुला देने चाहिए,
5: अंग्रेजों ने अफीम, नील, कपड़े आदि का आकर्षक व्यवसाय अपने हाथ ले लिया है और छोटी व कम मुनाफे की चीजों का व्यापार हमारे लिए छोड़ दिया है।
0: अंग्रेज डाक, विद्यालय, कोष के रूप में मनमाने ढंग से जनता का पैसा वसूल कर रहे हैं।
4: दिल्ली घोषणा पत्र के अनुसार हम भी अपने आजमगढ़ घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि सभी लोग ये जान लें कि हिंदू और मुसलमान दोनों की ही प्राचीन पुस्तकों तथा ज्योतिषियों, नुजूमियों की गणना से स्पष्ट है कि अंग्रेजों का भारत में अधिकार खत्म हो गया है।
0: इसलिए जरूरी है कि हम ब्रिटिश दास्ता में रहना अस्वीकार कर दें।
2: कुंवर सिंह, हरे कृष्ण, माधो सिंह, बंधु सिंह आदि विद्रोहियों के साथ 17 मार्च 1858 को उतरौलिया पहुंचे, जो आजमगढ़ जिले में है।
3: फिर
2: यहां अनेक विद्रोही मिले जिन्हें फ्रैंक्स ने पराजित कर दिया था। कुंवर सिंह ने अपने भाषण से उनमें पुनः हिम्मत का संचार किया। इसी समय कर्नल मिलमेन 300 सिपाहियों सहित आजमगढ़ के निकट कोइलसा, जिसे आज बूढ़नपुर के नाम से जाना जाता है, वहां रुका हुआ था। उसे कुंवर सिंह की गतिविधियों की सूचना मिलती रहती थी।
3: अच्छा,
2: इस सूचना का फायदा उठाकर उसने विद्रोहियों पर हमला कर दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेज सैनिक अपने शस्त्र एक स्थान पर रखकर आराम कर रहे थे, तभी कुंवर सिंह ने उन पर अचानक पलटकर हमला कर दिया।
3: फिर
2: उनका दबाव देखकर मिलमैन कोइलसा की ओर पीछे हट गया।
3: अच्छा,
2: कुंवर सिंह की सेना उत्साहित होकर आगे बढ़ती गई और कर्नल मिलमैन को आजमगढ़ तक खदेड़ दिया।
3: फिर
2: वो युद्ध में अपनी तोपें तथा भारी मात्रा में गोला बारूद छोड़कर भाग गया था।
3: अच्छा,
2: कुंवर सिंह अपने 1000 सैनिक तथा 2500 समर्थकों सहित 24 मार्च 1858 को आजमगढ़ से 10 मील दूर मदौरी पहुंचा।
0: साथियों, इस समय तक हमारी सेना में लगभग 4000 लोग शामिल हो गए हैं। उनके पास लूटी हुई 4 तोपें भी हैं।
2: इसी बीच उन्हें पता चला कि गाजीपुर में कर्नल डेम्स बड़ी सेना लेकर युद्ध करने आ रहा है।
3: फिर काका,
2: कर्नल डेम्स को पराजित करके विद्रोहियों ने 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। इसकी पुष्टि बनारस के कमिश्नर के तार से होती है, जो उसने इलाहाबाद के सरकारी सचिव को 27 मार्च 1858 को भेजा था। उसमें लिखा था, करीब 4000 विद्रोहियों ने बिना किसी रोक टोक के आजमगढ़ नगर में कल प्रवेश किया। वहां पर 1000 सिपाही बंदूकों के साथ हैं, जिनमें 2 गोरखा सैनिक हैं।
3: उसके बाद क्या हुआ काका?
2: गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग उस समय इलाहाबाद में थे। उन्होंने आजमगढ़ पर विद्रोहियों के कब्जे का तार मिलते ही मार्क केर को, जो इलाहाबाद में 13वीं लाइट पैदल सेना का नेतृत्व कर रहा था, तत्काल आजमगढ़ भेजा। आजमगढ़ में मार्क और कुंवर सिंह की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। मार्क केर ने देखा कि काफी संख्या में लोग उस इमारत और आम के बगीचे में, जो सड़क की बाई ओर था, एकत्र थे। वो सड़क की दाई ओर की खाइयों में जा छिपे थे।
3: उसके बाद
2: केर ने मैदान में पैदल सेना भेज दी।
4: हमारे बहादुर सिपाहियों, तुम सब खाइयों की दूसरी ओर मोर्चाबंदी कर लो, क्योंकि हमारे साथी सड़क की दूसरी ओर से गोलीबारी कर रहे हैं।
0: साथियों, अंग्रेज कितनी भी गोलियां चला ले, वो हमारे बुलंद हौसले तोड़ नहीं सकते। कुछ लोग आम के पेड़ पर चढ़ जाएं और डालियों में छुपकर गोलियां चलाते रहें। हम मार्क केर के रसद पहुंचाने वाले मार्क को बंद कर देना चाहते हैं।
2: लगातार अंग्रेजों की गोलीबारी से इमारत की दीवार टूट गई थी। इमारत की दीवार टूटते ही विद्रोहियों ने इमारत खाली कर दी थी।
3: फिर
2: इस कठिन लड़ाई के बाद अंग्रेज फौज आजमगढ़ नगर में दाखिल हो सकी थी।
3: अच्छा,
2: कहा जाता है कि 6 अप्रैल 1858 को मारकेर की सेना और कुंवर सिंह की सेना के बीच हुए युद्ध में 81 वर्षीय बूढ़े सेनापति कुंवर सिंह अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर ठीक घमासान युद्ध के अंदर बिजली की तरह इधर से उधर लपकते हुए दिखाई देते थे।
3: उसके बाद क्या हुआ काका?
2: विद्रोहियों को 13 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ नगर खाली करना पड़ा।
3: अच्छा,
2: क्योंकि लुगार्ड और मार्ककेर दोनों की फौजें आजमगढ़ आ गई थी।
0: क्रांतिवीर हरे कृष्ण, तुमने आजमगढ़ के इस ऐतिहासिक युद्ध में अपनी रणनीति से अंग्रेज सेना को पराजित भी किया और काफी क्षति भी पहुंचाई है। तुम महान हो।
4: गौर जी, आप ज्यादा ना बोले, आराम करें, आप घायल हैं, वैद्य जी लेप लगा रहे हैं।
3: गजभिये काका, वैद्य जी की दवाई से तो कुंवर सिंह ठीक हो गए होंगे।
2: बेटा, होनी को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध में घायल कुंवर सिंह का निधन हो गया। कुंवर सिंह के शहीद हो जाने के बाद हरे कृष्ण सिंह ने जमशेदपुर में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध कमान संभाल कर उनके छोटे भाई अमर सिंह की सहायता की और प्रशासन का कार्यभार संभाला।
3: फिर
2: उन्होंने उन गद्दारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जो अंग्रेजों को गोपनीय सूचनाएं पहुंचाया करते थे। अपने अल्पकाल के शासन के दौरान हरे कृष्ण सिंह ने राजस्व की वसूली की स्थिति में सुधार किया तथा सेना को सुगठित किया।
3: अच्छा,
2: उन्होंने सभी ओर से जगदीशपुरा की किलेबंदी की ताकि जगदीशपुरा अंग्रेजों के आक्रमण से सुरक्षित रहे।
3: उसके बाद काका?
2: इसी बीच ब्रिगेडियर डगलस के नेतृत्व में दानापुर से एक मजबूत अंग्रेजी सेना जगदीशपुर के लिए रवाना हुई। अनेक स्थलों से इस सेना की सहायता में 6 अन्य ब्रिटिश कर्नल भी अपने सिपाहियों के साथ सम्मिलित हो गए।
4: ओह, इतनी बड़ी सेना, हम मुट्ठी भर सैनिकों के साथ इसका सामना नहीं कर सकते।
8: महाराज, हम इन्हें गाजर मूली की तरह काट देंगे।
4: हम आपकी भावना की कद्र करते हैं माधो सिंह, परंतु ये भावुकता का समय नहीं है, ये आत्मदाह होगा। यही बेहतर होगा, हम जगदीशपुरा तुरंत खाली कर दें।
5: महाराज ठीक कहते हैं।
8: परंतु बंधु सिंह,
4: यह मेरा हुक्म है।
2: अंग्रेज सेना बिना किसी बाधा के जगदीशपुर में दाखिल हो गई।
3: फिर
2: हरे कृष्ण सिंह ने मोहमिया के पास 20 अक्टूबर 1858 को ग्रैंड ट्रंक रोड पार किया और जंगल की ओर चले गए। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध भी किया, अंत में फरार हो गए।
3: फिर क्या हुआ काका?
2: वे गिरफ्तारी से बचते रहे, परंतु 22 अगस्त 1859 को बनारस में दशाश्वमेध थाने के नायब कोतवाल ने बघोले परगने के होनिया गांव में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें बनारस से ले जाकर आरा जेल में बंद कर दिया गया।
3: फिर
2: शाहबाद के स्थानापन जज तथा विशेष कमिश्नर आरजे रिचर्डसन की अदालत में उस देशभक्त नर नाहर पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। मुकदमा 1857 के 14वें अधिनियम के अंतर्गत चलाया गया था, जिसमें उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। क्रांतिवीर हरे कृष्ण को जगदीशपुरा लाया गया और मुख्य बाजार में सरेआम उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ये वही जगह थी जहां क्रांति प्रारंभ के समय उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जनता को संगठित किया था। हरे कृष्ण बाबू कुंवर सिंह के समान ही अंतिम सांस तक झुके नहीं, उन्होंने भारत मां की बलिवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। वंदे मातरम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। क्रांति कथाओं को सुनकर आपको भेजना है एक प्रेरक स्लोगन। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है, हिंदुस्तान हमारा, स्वराज संस्थान संचालनालय, रविन्द्र भवन परिसर, भोपाल, पिन 462002। पता एक बार फिर नोट करें, स्वराज संस्थान संचालनालय, रविन्द्र भवन परिसर, भोपाल, मध्य प्रदेश, पिन 462002। अब हमें आज्ञा दीजिए, अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय फिर मिलेंगे एक और क्रांतिवीर की जीवन गाथा लेकर। कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा।

0: परमात्मा मिले न दूजी बार है, मात पिता परमात्मा मिले न दूजी बार है, जो करे वंदना या की हो जावे भवसु पार है, जो करे आलोचना या की वे जावे नरक का द्वार है, मात पिता परमात्मा ने वंदन बारंबार है, वंदन बारंबार है।
1: राम राम रतन भाई, राम राम। माता पिता ने तो आज घनी याद कर रही है।
0: अरे राम राम भाई, राम राम कंचन आओ। अरे देख माता पिता ने तो
1: 24 घंटा ही कम पड़ जावे।
0: हाँ,
1: याद कर।
0: आपने तो यूं कहवे, आपने भारतीय संस्कृति में एक माता पिता का चरना ने धोन वाको पानी पियो तो ही आप वहां का ऋण उरण नहीं बह सको।
1: बस, और वाकई भाई माता पिता की तो और कोई भी संबंध पूरा नहीं कर सके।
0: बिल्कुल। तो कंचन, मैं दो लाइन याद आ रही गीत का द्वारा आप सगले ही श्रोता बंधुरो स्वागत करा। हाँ, लोक और पर लोक सुधर गया, मत कर काम बुराई को, माँ बाप की सेवा कर ले, मत बन दास बुराई को।
1: वाह वाह,
0: मत बन दास बुराई को। तो आप सुन रहे गावरी बातें कार्यक्रम, अने कार्यक्रम में आप सगला जना रो खूब खूब
1: स्वागत है,
0: हार्दिक अभिनंदन है। आप सुन रहे रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM,
0: सुनता रहो
1: मुस्कुराता रहो।
0: तो भाई आज उस रात शुरू हो गया है कंचन। आज पूर्णिमा है और आज उस रात शुरू हो गया, तो आप उस रात अपना पूर्वजा का करा।
1: बिल्कुल
0: भाई, माता पिता उम्र वाला वे जाओ तो वे जावी है।
1: सही बात है, अमर तो कोई होवे को नहीं,
0: अमर तो कोई होवे को नहीं। घर में बुजुर्ग है, दादाजी दादी जी जो भी है अपना परिवार वाला, तो वहाँ की याद कर लिए और वहाँ का सम्मान कर लिए, आपस राद रखा।
1: सही बात है, घना ही चोखा लाग गया संबंध देखो भाई, पर आ भी सच्चाई है, कतरो कटवो सच है कि भी सबने जानो है।
0: जानो बिल्कुल, वो क्या मृत्यु एक अटल सत्य है,
1: मृत्यु अटल सत्य है,
0: और बिना जतरा आप जल्दी स्वीकार कर लो, टेंशन फ्री रहे वो।
1: क्योंकि एक ने एक दिन तो आवनी है,
0: आवनी
1: पर भाई आप ही बता रतन, तू मने कह देवे कि थारी मृत्यु काले हुआ वाली है, तो मने क्यान को धक्को लागे।
0: सही बात है,
1: वो मतलब ये कड़वो सच है, पर एक्सेप्ट करनो यानी स्वीकार करनो भी कतरो मुश्किल है।
0: वो कहवे कंचन, केवा कथनी और करने में घणो अंतर पड़े।
1: हाँ,
0: अब उन मने इसके देख भाई, तू काले या परसों जाओ वाली है, हाँ तो थाने तो खबर पड़ी तो आघात लागी, पर पहले आघात मने लागी समय का पहली मर जाऊ, हो मैं तो परसों ही जाओ वाली हूँ, घबरा घबरा नहीं परेशान हो जाऊ।
1: बस ये वास्ते तो इन्हें गुप्त रखियो है भगवान भी।
0: हाँ,
1: इन्हें नहीं पतो लाग गए।
0: बिल्कुल, एक सेकंड पचे कई वे वा भी ठाको नहीं,
1: वो भी ठाको नहीं।
0: बिल्कुल, फिर भी जो जा रहा है अना आपा देख रहे हाँ, तो आपने लागे एक दिन आपने भी अनी दुनिया जानो है, फिर भी कंचन लोग भाग मोह माया में फंस और अत्रो अनर्थ करे है कि आपने बुजुर्गा की हालत खराब करे, जो मने बिल्कुल यू लागे को हो वणी टाइम पे कसान भूल जावे कि आपा भी अनी दुनिया में एक बार जानो आपने भी, और अनी उम्र में आपने भी आनो है।
1: हाँ, यानी आपने भी बुजुर्ग होना है।
0: हाँ, आपने भी बुजुर्ग होना है, आपने भी काले टाबर बड़ा हो,
1: आपा भी पराधीन हो जाए,
0: पराधीन हो जाए, और काले आज आपा जो कर रहे हैं अपना माँ बाप का साथ में, काले अपना साथ में भी हो।
1: सही बात है, टाबर देखो हर आदमी का ही, आपने अनुभव नहीं तो जीवे टाबर देखा बे, धीरे धीरे करके वो भी देखे कि भी घर को माहौल यान है, मारा पिताश्री या मारी माताश्री यान, मारी दादी सा या दादा सा के वास्ते यान करे तो वो भी करवा लाग जावे भी, कोई मोटी बात को नहीं हो।
0: बिल्कुल सही है। तो और कटेक मान लो डर का मारे घनी जगह पे कहीं माता पिता अतरा तेज वे के बालक वहां का दा बन रहे।
1: हाँ, बोल नहीं सके,
0: बोल नहीं सके, और मान लो वे आपकी सेवा कर भी ली दी, पर आ रहा जो अपना माता पिता ने परेशान कर रहा तो वो पाप कटी छुपी रही गई।
1: सही बात है, मान भी देखो आपा कही है कि मनुष्य मात्र से छुपा सका, पर भगवान से थोड़ी छुपा सका।
0: बिल्कुल,
1: और कर्मा की गति तो घनी गुहे हुआ है, कतरी छुपा लो लेकिन जो बीज पड़ेड़ो है वो तो उगसी उगसी
0: उगसी, और कंचन चक्रवर्ती ब्याज समेत रिटर्न होसी।
1: हाँ,
0: कतरी बार आपा देखा कई भी कारण नहीं वे और मोटो झगड़ो हो जावे,
1: मोटो झगड़ो
0: पाई पे आ जावे लोग,
1: बस मोटो झगड़ो हो जावे, और वो सब कही है देखा जाए तो आ कर्मा की गति है कि अच्छो करोड़पति, माता पिता सब कुछ है, घणो ही धान वैभव कि देखो अठे घणो पैसा है, पर पच्छे भी कही है कि भाई सेवा करवा वालों कोई नहीं।
0: बिल्कुल, तो वो भी देखो कर्मा की गति,
1: वो भी कर्मा की गति है,
0: पर वे का बावजूद भी मैं तो क्यों मारा कर्म खराब है।
1: हाँ,
0: पर अबे तू देख रही है तो कहीं तू भी अगर मारे न्यान का भेजा ही तो थारा में मारा में कई फर्क है।
1: कई फर्क रही सही हुँ? बात किने तो पहल करनी पड़सी,
0: किने तो पहल करनी पड़सी ना कि भाई चलो वाह मैं जो गलती की दी वाह की दी पर आ वाली पीढ़ी ने सोचना छा वे कहीं भी किदो माँ के भी अनी रस्ते जानो माँ के एड़ो कहीं नहीं करना तो कोई समझदार वे समझ जावे तो वहां के पास रिटर्न नहीं करना पड़े नहीं तो हर एक ने यो ही है रिटर्न करना ही पड़े। तो वो मैंने याद आ रही दो लाइन जीव्या जत्रे मात पिता की सेवा।

0: तो भाई जीते जी जो करनो वे जीते जी करो, दान पुण्य करनो वे, माता पिता की सेवा करनी वे, बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना वे, तो जीते जी लो, पछे कई कोनी।
1: सही बात है बिल्कुल। और कठे कठे तो कई हुआ है कि भाई उल्टो सिस्टम हुआ है, अख जीते जी तो कोई पूछे को नहीं।
0: हाँ
1: पछे जब स्वर्ग सितार गया, जब कोई देखवा वालो नहीं है, जब देखो छप्पन भोग को
0: अरे पचे तो श्राद्ध
1: आयोजन
0: करे,
1: करो।
0: और श्राद्ध में देखो पहला श्राद्ध में आपने कई बैठा है तो ने,
1: हाँ
0: ओहो आजकल तो गुलाब जामुन खीर तो बनी बनी हर
1: हाँ
0: श्राद्ध में, खीर में हो ड्राई फ्रूट्स डाली, पचे गुलाब जामुन पकोड़ा घनी वेराइटियां बढ़ गई
1: घनी वेराइटी
0: श्राद्ध
1: बढ़
0: में
1: गया। अबे तो कहिए दिखाणो घणो हो गयो भाई।
0: दिखाणो। और यो तो आपा खारिया जो खवारिया, आपा
1: हाँ
0: अपना बुजुर्ग का आशीर्वाद लीधो कि नहीं लीधो, बाकी आत्मा ने ठारी कि नहीं ठारी वो
1: बस
0: आपा ने
1: खास बात
0: देखनो।
1: तो वो मायने रखता है।
0: हाँ आवानू 2 दिन पहली सूचना आई, मारे भी श्राद्ध में जावा को नियत आयो, पहलो श्राद्ध है तो के भाई आप क्या आनो ये, मैं कहूँ हाँ भाई आवा, व्यवहार साचवनो तो आनो तो है ये, पर पाछे बाकी सब बाता करे क्योंकि वे जीते जी वाका सास ससुर ने बिल्कुल
1: पूछा ही कोनी।
0: पूछा कोनी। और वाका ससुरा जी का हाथ कोई बढ़िया घर बनायो सको, अपार्टमेंट में मोटो फ्लैट, खुद की कंपनी फैक्ट्री है, वीका बावजूद भी एक ही तो बेटो बहु है, चार बहना है, चार ही बहना रिश्ता तोड़ दी दो, बहना ने किन्नी बुलावे को नहीं, माता पिता ने वाके रोटियां नहीं बनानी, बनानी में खुद बनाओ खाओ।
1: ओहो
0: हाँ एडो नियम, एक दिन कई वे पिताजी कह दी दो शाम का टाइम पे कटी जी मनाया भी, सुबह को भारी खानो वे गयो, जो
1: हाँ
0: बहु
1: हाँ
0: पूछो शाम को कई बनाओ,
1: काई
0: तो
1: बनाऊं
0: वे क्यों था जो छावे जो बनाओ आज तुम्हारे को नहीं खानो,
1: सही है
0: बस वही बात ने लेन बैठ गई, वाके तो खाने को नहीं, वे तो शाम को खावी को नहीं।
1: खावे को नहीं। अरे
0: अरे कतरो
1: भाई
0: बहानो छावे, जबकि वाके सासू जी बना रहे अबे वाका लिए, हाँ तो
1: हाँ
0: भली बनाओ जदी को छोड़ दी दो।
1: वही तो। आपा अपना टाबर ने कतरा मनुआर करे, कतरी बार वो नकारा अपने, पछे भी आपा बाकी फीलिंग ने कतरी केयर करा है।
0: बिल्कुल, तो कंचन वाका सासू जी के गंभीर बीमारी ही,
1: हाँ
0: वाकी सेवा भी नहीं की दी बेटा बहु, ससुर जी करता, ससुर जी बहुत समझदार हा, करता करता करता वे पर आ गया,
1: पर आ
0: परवा
1: गया।
0: ने आराम मतलब यूं महसूस नहीं वेवा दी दो क्या बीमारी है तो, या कि सेवा नहीं करनी, कपड़ा बदलाना नीलाना धुलाना वाके खानो पकान खिलानो पचे
1: बताओ
0: फैक्ट्री जानो।
1: बताओ।
0: हाँ तो भी वे सब की दो, अबे वे तो पर आ गया, अबे वे एकला रहा, एक टाइम रोटी खानी वे तो रोटी और साग डब्बा में है ले लो और खा लो, रखवा
1: अरे
0: वाला कोई को नहीं खानी वे तो वान, शाम को तो माका नाम की आज दिन तक बनी कोई नहीं।
1: बताओ बहुत बुजुर्ग की
0: हाँ
1: स्थिति
0: तो
1: यानी।
0: वे अबे घर में रेवी नहीं, वाका पाई अत्रो पैसो है, बेटा बहू ने तो खूब दे रखियो फिर भी वे खुद को राख रखियो, तो वाको कहिए दो घर है।
1: और चाहिए भी।
0: हाँ एक घर वाको राजस्थान में, एक घर गुजरात में, तबे वे राजस्थान का घर ने बढ़िया तैयार कर दी दो, और वे अबे राजस्थान का घर है आवे, बाकी चार बेटिया तीन तो विदेश में रहे एक भारत में रहे, वे हर साल एक बेटी काटे जाई 2-3 महीना रह आई, पचे दूसरा देश में जाई वटे बेटी काटे रह आई, पचे तीसरी बेटी काटे
1: बेटा
0: रह आई,
1: बेटी सब समान।
0: हाँ तो चार ही बेटियां काटे ज्यादा रेवे,
1: बहुत
0: क्योंकि
1: बढ़िया
0: घर में तो आने पानी को भी भाव को नहीं
1: सही
0: पूछे,
1: बात है। और फिर भाई रोज की तू तू मैं भी अच्छी कोनी।
0: और वे कहीं पर तो वे दब गया या समाज को डर की वे घर में बिल्कुल नहीं कह था मान ला रहे शानकार है वो।
1: देखो समझदार आदमी भी है। वो सच्चाई ने जाने नहीं कि भी देखो जो बदलवा वाला हो वो ज्ञान करे ही कोनी
0: हाँ
1: है।
0: वो ही है
1: जी में मानवता हुए नहीं वो अतरो हल्को व्यवहार करे ही कोनी।
0: करे को नहीं
1: और पर जो कर रहे हो है वो अतरी जल्दी बदले कोनी।
0: बदले को नहीं बदले, तो खुद का जानीन करवा वाला किसान बदली,
1: बस
0: अनजान में कई पाप में वे ना तो वो
1: तो
0: बदलावे,
1: वो
0: ये
1: बदली
0: तो
1: जावे।
0: जानीन कर रहा।
1: बस बस बस
0: पर चलो कंचन अटे टेम हो गयो एक गीत सुनवा को, तो एक गीत सुनन पाचा लोटा, हाँ तो बढ़िया रीजो कार्यक्रम गावरी बाता में सुनता रहो।
1: मुस्कुराता रहो।

आप हमरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हमरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।

0: शिरो भेस पुरानी पड़ गई चूनड़ी।
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई देखो इस शरीर ने काय की उपमा दी है, चुनरी की उपमा,
0: चुंदड़ी के भाई एक चोलो है। हाँ, और इन्हें आप वस्त्र भी कह सकते।
1: कबीर जी भी कवे ने बिनी रे चुनरिया।
0: हाँ,
1: काहे का ताना काहे का बाना, बिनी बिनी बिनी रे चुनरिया।
0: सही बात है। तो गावरी बाता कार्यक्रम में पाछा अपना सगला श्रोता बंधुरो स्वागत करा। हाँ, और कंचन जो मैं बात करूँ वा हकीकत है। तो अबे वहां कुछ श्राद्ध आयो क्योंकि अबे वे के मैं खूब कमा ली दो, मारे गई करनो आराम घूमो, तो अटे घर में रेन टेंशन मोल लेनो, क्योंकि बेटा बहु टाबर नहीं कहीं सिखा दी दो, टाबर भी नहीं बोले।
1: हाँ,
0: अबे टाबर ही नहीं बोले
1: घर में, तो कही है, बहुत हो है।
0: हाँ,
1: मैंने रोज ही रोज एक ही दो बात ज्ञान कहता रहा कि देख थारे दादा सतने पीसा को नहीं देवे, देख वो कई कर रहे हैं या जो भी कुछ है, छोटी छोटी बात है, मीन में एक निकाल निकाल।
0: हाँ,
1: कच्चे तो हुआ ही बालक, टाबर ने जान भी घड़े वह नहीं घड़ी जावे।
0: अरे यदि मोटा ही नहीं समझ रहा तो बालक तो बालक ही हुए।
1: बालक तो बालक ही हो, और वाने तो माफ भी करवा
0: हाँ,
1: कर देना
0: तो
1: चाहिए।
0: वे अबे घर में बहुत कम रहे, आवे 8-10 दिन रेन पाचा निकल जावे,
1: पाचा निकल जाओ।
0: बिल्कुल अधिकार नहीं छोड़ियो कि ये तो बिल्कुल ही नफर पटवे जाए। आवे 8-10 दिन रेन, बाकी बाकी फैक्ट्री बेटो चला रहे, पर वे वाके बैलेंस रख रखियो, तो वे वाके घूमे। और बाकी कड़ी मेहनत है, बचपन लगान अतरी मेहनत के दी वाका हाथ का गुली डंडा है। वे वाका हाथ मेहनत करन पैसा बनाए जो कोई वाने कह न सके
1: कह नहीं
0: कथा
1: सके।
0: पैसा कशान वापर रहा, कहा कि पूरा समाज देख रो कड़ी परिस्थिति में ऊंचा आया जो। तो घना वाने वहां का रिश्तेदार भी कहवे करे था हसे अगर बेटा बू भाव नहीं पूछे तो था बेटिया काटी रो अटे घर में आओ ही कही लेवा। अहमदाबाद में नहीं तो एक मकान ले लो, वे के जगह जगह मकान लेन कई करूं।
1: सही बात है। और मकान ने भी अवेर नो पड़े
0: हाँ,
1: भाई,
0: अवेर
1: और
0: नो पड़े।
1: वो सारो पैसा वापस मकान में लगा देवे तो कई मतलब है,
0: सही बात है।
1: बैलेंस भी
0: और
1: जरूरी है नहीं।
0: वाको पेलो श्राद्ध आयो तो बेटा बहु के वे यो बनानो वो बनानो वो बनानो, तो
1: किका
0: आश्चर्य
1: माता जी
0: वे।
1: का।
0: हाँ, वाके धर्म पत्नी को पेलो श्राद्ध आयो तो श्राद्ध तो खबर है करी जे। तो बेटा बहु हाउ बतावा के लिए नहीं नहीं मम्मी को श्राद्ध तो यू मेनो छावे, अतरा मेहमान ने बुलाओ वाने बुलाओ वाने बुलाओ।
1: पछे गणी चौकी लागवा लागी।
0: तो सबने आश्चर्य वेक देखो, जीते जी तो मात पिता की सेवा को नहीं के दी, जीते जी तो माने पूछा को नहीं। और अब मरिया बात कहवे के यो खिलाओ वो पिलाओ, श्राद्ध में प्राणी ने मिली अरे था जीते जी जो किदो वो ही जवाने मिली,
1: वही मिली।
0: पछे आपा कतरो भी करा तो
1: और
0: मिलवा
1: जीता
0: वालो
1: जी तो
0: को नहीं।
1: आशीष दी मिले, जीता
0: हाँ
1: जी आशीष दिया जावे।
0: बिल्कुल। और वहां को विचार अलग है, वे के मुंह वहां का नाम को स्कूल में कमरों बना दू, मैं वहां का नाम की प्याऊ खुलवा दू, पर मुंह श्राद्ध मोटो नहीं करो, मोटो करन मारे गई करनो।
1: सही
0: वे तो
1: बात है,
0: अबे
1: समझदार।
0: हाँ, वे के वे मुंह को एक जगह पे तो रह नहीं रहो, करो जी का नाम कमानो रहो समाज में जो करो। वे तो किदो जो दुनिया ही जाने की खूब सब काम अच्छा किदा, बाकी पत्नी शांति ब्याज दी सब काम बेस किदो हो कर काड़े अबे श्राद्ध करो। तो अबे बेटा बुना लागे हो खर्चो माने करना पड़ी, तो लड़ाई की दी यो तो खर्चो यो लास्ट खर्चो थानिस करनो। पचे खर्चो गये चार ही बेटिया तो बोली कोनी जो बुलावी नहीं माने, तो बच्चे पिताजी को मन माने यदि मारी छोरिया तो वहां के घरे मुंह कैसे श्राद्ध करूं।
1: सही बात है, सही बात है।
0: वे क्या
1: बताओ।
0: राखनो तो राखो राखो ही मती, वे क्या वगर वे निकल गया घरों करनो में तो श्राद्ध करो, वाके पत्नी का नाम का दान करनो वे कटे भी कर ले।
1: कठे भी कर ले।
0: तो पचे अभी बेटा बू कह करे फोन करे तो वे उठाई भी कोनी। पचे वे की
1: तो
0: दो
1: बात है केवल अठे वो बाबूजी की नहीं है, बल्कि घर घर में ज्ञान के बेचारे बाबूजी हो गया है
0: हो
1: जो कि
0: गया।
1: परेशान है।
0: हाँ बिल्कुल। और वाके तो जो धार रखे वो इसके दो स्कूल में कमरों बनवा दे दो, प्याऊ खुलवा दे दो।
1: बहुत बढ़िया, मतलब एक सोच अच्छी।
0: हाँ
1: और देखो भाई उम्र में चाहे वे उम्र वाला पण कहिए कि पीसा में भी ताकत हुआ है, ई वास्ते वे ज्ञान को निर्णय लेवा में सक्षम हो
0: हाँ
1: पाया।
0: सक्षम है वे, बाकी बेटा ने कही देनो कोई भी मैं वे न तो किन्नी
1: हस्तक्षेप
0: कहवे
1: नहीं।
0: नहीं किन्नी पूछे, और वाके जो करना हो वाके बारो बारी कर ले। कोई रिश्तेदार आवे वाकी भी बेना है वाके भाणेजा भाणेजी है सबने वाके देनो हुए, पर बारा ही दे आवे सबका घरे जयावे,
1: बहुत बढ़िया, बहुत
0: सबने
1: अच्छा।
0: जो देनो वे दे आवे, वाका उदी कहीं राख ही नहीं रखियो। वे तो वाका घरे कोई भी परा जावे चाय भी बनान नहीं देवे, तो रिश्तेदार सब जाने।
1: सब
0: पर कोई
1: जाने
0: कोई एड़ा नफरपट हो जावे
1: परवाह नहीं
0: कंचन।
1: है।
0: हाँ परवाही नहीं करे कि ये इस लोग काले कई कही, पर मैं तो कहूं कि कटे कटे अपनी बेटी एडी हुए तो पियरों भी तो शिक्षा देवा,
1: सही बात। अरे पियर से तो सब कुछ शिक्षा मिले है,
0: शिक्षा मिले
1: पण
0: बिल्कुल।
1: कही है कि अबे थोड़े से चलन आपा देख बात करे तो ज्ञान कह सका कि बेटी ने आपा अलग सीख दे रहा है ना।
0: हाँ।
1: बेटी की सास तो बुरी लागे।
0: हाँ।

0: बेटी के ससुराल वाला सब बुरा लाग गया माता पिता ने, और वट है आपा चाहवा कि बहू ने अपनो सारा परिवार अच्छो लाग रहा।
1: सही बात
0: तो भाई ये थोड़ी संभव है,
1: बिल्कुल
0: की भी तो माए वही दे रही हुई तो जान को वो बयान को तो काटा।
1: सही है, तो श्राद्ध करो भले आपा मना नहीं करा श्राद्ध करो, पर मैं तो आपनो केनो यो ही है कंचन की जीते जी बुजुर्गा को जी मत दुखाओ।
0: बिल्कुल भावना सो करो, श्रद्धा सो करो,
1: बिल्कुल थाने ठाए कि ये बुजुर्गा को दिल दुखायो पर तो भी था को फर्ज अदा करो।
0: बिल्कुल
1: अच्छो की प्रतिक्रिया अच्छी हो सी,
0: अच्छी हो सी।
1: उन्हें कहे आप जो भी करा जो भी बोल रहा ये
0: ब्रह्मांड में सुने।
1: हाँ ब्रह्मांड में घूमन ये पाचा देर सबेर अपना पास ही
0: अपने पास ही आवे।
1: तो अपना अपने रीतो अपना बुजुर्गा को जीव नहीं दुखनो छावे। हाँ जटे गलती वे वाकी वाने प्यार उको बड़ी अटे था कि गलती है, पर आप अगर खानो बनावो छोड़ दो, वाको बोलो छोड़ दो, पोता का बच्चा बच्ची ने बोलो छुड़ा दो, यो तो पचे पाप नहीं है तो कही है।
0: सही बात है, ज्ञान की यातना जिन्हें 12,000 कह भी नहीं सका,
1: कह नहीं सको, सह भी नहीं सको,
0: सह भी नहीं सको।
1: तो एड़ी हालत है आज बुजुर्गा की, बाकी कटे कटे एक जटे है मान सम्मान बटे बुजुर्गा को है भी सही।
0: हाँ,
1: पर
0: थोड़ी जना घड़ी पूछे
1: मात्रा 100% में 20% का ही मान्यता भी, 80% आज का बुजुर्ग अपना रोता तड़पता इस वहां का जावे। राह की घर में तो दबान राह की वाने वाने हर ऋतु कंट्रोल करी, वे कटी फोन कटे बात नहीं कर सके बेन बेटिया हूं आजकल यू कही हो गयो बेन बेटिया आपा भी तो क्योंकि बेन बेटिया। हाँ
0: सही
1: आज
0: बात
1: आपा
0: है।
1: ने पियर जावो छूट जाए तो अपनो जीव नहीं दुखी,
0: मतलब ये कई ज्ञान की यातना है या भी बहुत ही गजब है। मैं भी ज्ञान को अनुभव करो कि बुजुर्ग लोग अगर फोन करे तो चौकन्ना हो जावे कि भी वे कही अपने मन की बात ही तो कही और थोड़ी बहुत बढ़ार कह रहे हो है। तो यो सोच लो भाई यहाँ की अबे बुजुर्गो और टाबर एक सही तो हो जावे,
1: बालक बुड्ढा तो समान हो,
0: एक सही हुआ है।
1: बिल्कुल। और अबे घर में कोई नहीं बोली तो यूं लागे ना चलो, और हरेक की इच्छा होवे कि भाई बेटे आजकल पियर में कमी आवे, ताकि आजकल सब जगह पे माहौल एड़ो को एड़ो हो रहे हो, आपा सगला की नहीं के वहां पर मोस्ट ऑफ माहौल एड़ो हो रहे है कि वह सब आप आपके घर में राजी, पचे बच्चा का पढ़ाई की जिम्मेदारियां ये वे जाओ तो आई नहीं सके,
0: सही बात
1: तो
0: है।
1: माँ बाप की इच्छा रहे चलो बेटियों बात तो कर ला कम से
0: बात
1: कम।
0: तो कर ले सही है।
1: फिर भी अगर आप वणी में भी डाउट करो तो वो तो कोई इलाज नहीं है, अरे भड़े बैठ जाओ ना था ही बोलो कहलाओ भाई था बात कर खड़े तो मानना ही दो
0: सही
1: भाई
0: बात
1: बात
0: है,
1: कर ला
0: थे
1: बेने।
0: भी बात कर लो और वो भी बेटी है अपनी माता ने अपने पिता ने वो भी तो जाने, वो भी तो नब्ज देखी जी।
1: हाँ
0: मान लो कि वो थोड़ी सी बड़ा अरबी कह रहे हो तो भी वो भी तो वठे ही पड़ी है, उन्हें भी तो ठा है।
1: हाँ बिल्कुल। पर आजकल देखता देखता अपने आंखें का आगे आप खुद देख रहे हाँ बड़ा बुजुर्गा को कई हालत हो रही है, बेन बेटिया की कई हालत हो रही है। तो मैं तो क्यों श्राद्ध में आपके भले आप 5 ब्राह्मण ने जिमाओ भले 15 ब्राह्मण ने जिमाओ, पर घर की बेन बेटिया को अधिकार मत छीनो और बुजुर्गा ने
0: प्यार दो।
1: प्यार दो सम्मान दो।
0: बस
1: बच्चा ने आपा प्यार और विश्वास राखा तो बच्चो खुश हो जावे, बस यानी बुजुर्गा ने भी आप प्यार और विश्वास राखो तो वहां को दिल को आशीष अपने मलतो रही।
0: और बुजुर्ग लोग देखो भाई कुछ और नहीं करे तो कम से कम आशीष तो हर वक्त ही देवे।
1: बिल्कुल देवी है आज अत्र प्यार बोला तो वे खुद कहवे को हो मारा तो भाई बेटा वो कलयुगी कोई ना, मारा तो बेटा वो सत्योगी है, घना अच्छा राके
0: घना अच्छा रहे
1: जत्र था अपने कतरी दुआ मिल जावे।
0: बिल्कुल।
1: तो वाह भाई कंचन बाता तो करो अतरी काम आवजे भाई। राम राम
0: राम राम भाई, राम राम
1: आप पूरा 107।

ओम शांति, मैं हूँ मोनिका पटेल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी जो है इसी तरह से जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो ईश्वरीय ज्ञान जो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ज्वाइन करके प्राप्त करते रहिए मेरी तरह। और सदा सदा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष कार्यक्रम में सफलता का आधार मूल्य शिक्षा। इस एपिसोड में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज हम लोग जो है एक नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे और कल आपने अच्छी प्रैक्टिस भी की होगी, मैं ही सफलता हूं इस विषय का, और इस विषय पर आपने चिंतन भी किया होगा। तो चलिए, एक नया विषय आज हमारा है, सफलता का आधार मेरे संस्कार। जी हाँ, जीवन में कहते हैं कि संस्कार बड़ा रोल अदा करता है, तो मेरे संस्कार ही मुझे सुख या दुख या सफलता या असफलता का कारण बताते हैं। तो इस विषय को गहराई से समझेंगे और आज के हमारे विशेष मेहमान जिन्हें आप सभी जानते हैं राजेश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज का उनका ये विषय है सफलता का आधार मेरे संस्कार। तो चलिए उनसे सुनते हैं। आप सभी की तरफ से राजेश जी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, ओम शांति।
1: नमस्ते जी, ओम शांति।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास।
0: जी जी जी, मैं चाहूँगा कि आज एक नए विषय पर आप बात करने वाले हैं, सफलता का आधार मेरे संस्कार। तो ये विषय क्यों आपने चुना, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें।
1: ये इसलिए चुना

0: और आते एक ऐसी चीज है जो एक बार आपकी बन जाए तो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और फिर वो अपने आप ही प्ले करती, हमें पता ही नहीं लगता कि हम वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। माना वो हमारी जिंदगी का कैसा अभिन्न हिस्सा बन जाती हैं, जिनको अगर हम बाद में बदलना चाहें तो व्यक्ति कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन आदत को नहीं बदल सकता हूँ, क्योंकि उसको लगता है कि ये काम ऑटोमेटिकली ही हो रहा है। तो इसलिए अगर हमारी आदतें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटली अच्छी आदतें, पॉजिटिव आदतें हमें सफलता की ओर लेके जाएंगी।
1: जी जी।
0: क्योंकि सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस हर व्यक्ति की जिंदगी में वही आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर गांधी जी जो थे, जब साउथ अफ्रीका में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया तो अंग्रेजों ने तो हिंसा का रास्ता अपनाया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे अहिंसा का रास्ता अपनाना है। उन्होंने लाठी नहीं उठाई, उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक अलग संस्कार, एक अलग आदत बना ली और उसी एक संस्कार के कारण, उसी एक आदत के कारण वो 20वीं सदी के सबसे महान शख्स बन गए और उनको सबसे महान शख्स बनाया गया। लेकिन नॉर्मली हमारी आदतें क्या होती, जो डे टू डे लाइफ में हमें सिखाई जाती हैं या बताई जाती हैं, समाज में जो आम चलती हैं, जो दूसरों को देखते हैं, कभी हमको ईंट का जवाब पत्थर से देना है, लेकिन वही एक आदत एक व्यक्ति को इतना महान बना दिया और वही एक आदत एक व्यक्ति को वो जेल तक पहुंचा देती है, गुंडा बना देती है, डाकू बना देती है। जो डाकू होते हैं, गुंडे होते हैं, उनके सामने भी ऐसी चैलेंजेस आते हैं जिंदगी में। ऐसा नहीं है कि केवल गांधी जी तो बेकसूर थे, लेकिन बेकसूर होते हुए भी उन्होंने एक अच्छी आदत, एक अच्छे संस्कार को अपनाया। ऐसे जो हम कहते हैं समाज में जो लोग बुरे बन जाते हैं, वास्तविकता में जन्म से कोई बुरा होता नहीं, लेकिन उनके सामने ऐसे चैलेंजेस आते हैं। उनके सामने भी हो सकता है कि उनको भी किसी ने दुख दिया हो, तंग किया हो, लेकिन उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, जिसके कारण उनको भागना पड़ा और जो इतने अच्छे व्यक्ति थे वो चोर बन गए, डाकू बन गए, गुंडे बन गए।
1: बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया राजेश जी। मुझे लगता है कि संस्कार को लेकर काफ़ी चीज़ें हमारे जीवन पर उसका असर पड़ता है और जैसा व्यक्ति चिंतन करता है, सोचता है, उसके आदतें बनने शुरू हो जाती हैं और फिर ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्शन पर रिएक्शन कैसे करें। अगर अंग्रेजों ने हिंसा का मार्ग अपनाया तो गांधी जी ने उसका विरोध में अहिंसा के रूप में उनके साथ में सामने खड़े रह गए। तो यहाँ पर हमारी चिंतन की धारा का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे संस्कारों के साथ में। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं या किसी व्यक्ति का स्वभाव देखते हैं या उनका रवैया देखते हैं तो हमें ऐसा नहीं कि हमें भी उसी रवैया में बात करना है या उसी तरीके से बात करना है। आप अलग भी अपने जो है मानवीय मूल्यों को लेकर भी आप उनके साथ सामने खड़े हो सकते हैं। और देखिए हमारे सामने बहुत ही सुंदर उदाहरण गांधी जी का है, हिंसा के प्रति वो अहिंसक रूप में खड़े होकर जीत हासिल की। तो हम लोग आज के समय में कभी ऐसा विचार नहीं करते या करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग सोचते हैं कि भाई कैसे होगा, कैसे होगा, है ना। तो आइए इस विषय को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि संस्कार तो पुराने भी होते हैं, पूर्व जन्म के भी होते हैं, तो फिर वो हमारे सफलता का आधार कैसे बनेंगे।
0: देखिए कहते हैं ना कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं
1: जी,
0: कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है ना अगर मिट्टी में भी हाथ डाल दे तो सोना बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उस में वो शायद किस कोई उसके पिछले जन्म की बात है, लेकिन हाँ हम ये जरूर कहेंगे कि अगर वो मिट्टी में हाथ डाल दे तो सोना बन जाता है, क्योंकि उसकी जो आदतें हैं या उसके जो संस्कार हैं वो ऐसे हैं कि अगर वो किसी भी कार्य को करेगा तो बहुत निष्ठा से, बहुत मेहनत से, पहली बात तो हाथ में नहीं लेगा अगर उसने कोई कार्य करना है तो, लेकिन अगर लेगा भी वो तभी लेगा अगर उसको ये पता होगा कि मैं इसको ईमानदारी से, सच्चाई से, मेहनत से, पूरी निष्ठा से करूँगा। और जब वो इन अपने मूल्यों के साथ उस कार्य को करता है तो उसको सफलता मिलती है। और जब वही कार्य वो बार बार करता है, क्योंकि दो व्यक्ति हैं और एक कार्य को दो व्यक्ति एक ही समय पर करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति असफल हो जाता है, एक व्यक्ति सफल हो जाता है, क्योंकि

0: वो उसी कार्य को अपने उन्हीं मूल्यों उन्हीं गुणों के साथ करता है, इसलिए वो सफल हो जाता है। तो अगर हम देखें सफलता असफलता में केवल इतना ही फर्क है कि अगर हम मूल्यों को नहीं छोड़ें, अपने मूल्यों पर अडिग रहें, जैसे अगर हम सचिन तेंदुलकर की भी बात करते हैं तो कहते हैं कि वो दुनिया के बेस्ट बैट्समैन आज के दिन में माने जाते हैं, तो उनके मन में भी देखिए कितनी मेहनत उन्होंने जिंदगी में की होगी, साहस उनमें कितनी सहनशीलता होगी, साहस होगा, कड़ी मेहनत उन्होंने की होगी, दिन में मैं समझता हूँ 12-12 घंटे प्रैक्टिस की होगी, अभ्यास किया होगा, कड़ी मेहनत की होगी, डिटर्मिनेशन होगा उनमें, डिसिप्लिन होगा, जहाँ पर उनके विद्यार्थी थिएटर में जाके पिक्चर्स देखते होंगे, वही दोपहर की कड़कती धूप में वो मेहनत में इतनी मेहनत कर रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि हम ये जो मूल्य हैं इनकी बहुत आवश्यकता है एक व्यक्ति के सफल और असफल होने में, और उन्हीं मूल्यों को हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में जब लेके आते हैं, बार बार उनको करते हैं, तो फिर जैसे हम कहते हैं ना कि व्यक्ति को किसी भोजन की आदत पड़ जाती है, जैसे बचपन में हम सबको माँ का भोजन ही अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमें आदत पड़ी होती है कि माँ का भोजन खाने की आदत होती है। तो ऐसा नहीं है कि अब हर एक को अपनी माँ का भोजन ही अच्छा लगता है, लेकिन एक व्यक्ति को दूसरे की माँ का भोजन क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि बचपन से उसकी आदत जो है उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है कि मुझे वही भोजन अच्छा लगेगा जो मेरी माँ बनाएगी, भले दूसरे की बनाएगी तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, बाहर का अच्छा नहीं लगेगा, 5-स्टार का होटल का अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें वो आदत पड़ चुकी है, वो बचपन में अनकॉन्शियसली पड़ी हुई है। इसी तरह ये जो सफल व्यक्ति होते हैं उनकी आदतें ही उनको क्या बनाती हैं, सफल जो है वो बनाती है, लेकिन कॉन्शियसली ध्यान देकर के हम उनको परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जैसे बताया शुरू में, क्योंकि उनको बदलना क्या है, बड़ी मुश्किल है, उसके पीछे रीज़न क्या है, जैसे फिजिक्स में एक लॉ है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि कोई भी वस्तु वो जिस अवस्था में है उस अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कि हम उसको कुछ बाहर से फोर्स ना दें, गति ना दें। एक उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि मान लीजिए एक गिलास है, उसके ऊपर हमने एक गत्ता रखा है, है ना, और उसके ऊपर हमने एक सिक्का रखा है। तो अगर आप गत्ते को गिलास से जोर से खींचेंगे तो सिक्का गत्ते के साथ नहीं जाएगा, लेकिन सिक्का गिलास में गिर जाता है। माना सिक्का अपनी वो अगर वो खड़ा है उसी जगह तो खड़ा ही रहना चाहता है, वो गत्ते के साथ चलना नहीं चाहता है। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी तरह हम अपनी आदतों को बदलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि मैं ही आदत हूँ, मेरी ये पर्सनैलिटी है, इसको बदलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए कहते हैं अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कुछ मुश्किल है तो व्यक्ति की आदतें हैं। जैसे आपने पिछले जन्म की भी बात की, अगर पिछले जन्म की भी कुछ आदतें हैं अगर पॉजिटिव हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। कईयों के आते हैं संस्कार, जैसे मान लीजिए कई बच्चे बचपन से ही बहुत अच्छा गाते हैं, पियानो बजाते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, या उनको गीता के श्लोक बिल्कुल याद होते हैं, पिछले जन्मों के संस्कार हैं। लेकिन कई ऐसे संस्कार भी जो नेगेटिव होते हैं जो पिछले जन्मों में आते हैं, लेकिन अगर हम उनको ध्यान दें तो जैसे हमने अपने संस्कार बनाए हैं, अगर ध्यान देकर कॉन्शियसली उनके ऊपर हम ध्यान एकाग्र करें, तो बहुत सारी विधियाँ हैं जिनके द्वारा हम संस्कारों को बदल भी सकते हैं।
1: जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आशा करूंगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को अच्छा लग रहा है कि हम अपने संस्कारों पे अगर हम लोग काम करें तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा जो है सबसे पहला प्रायोरिटी हम अपने संस्कारों को समझें। अगर वो पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, अगर नेगेटिव है तो उसको चेंज करें, है ना। लेकिन कैसे चेंज किया जाए, क्या पैरामीटर हो सकते हैं, कैसे बदले जा सकते हैं हमारी आदतों को?
0: जी, संस्कार जो है हम कहेंगे तीन तरह के हमारे संस्कार होते हैं। पहला तो है हमारी सोचने के संस्कार, सोचने की आदत
1: जी,
0: के मन जो है हमारा 24 घंटे सोचता रहता है, तो मन को भी एक आदत पड़ जाती है। जैसे हमने बात की कुछ सेशंस में पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड नेगेटिव सेल्फ टॉक। अगर हम नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं तो हम टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, और उसका कारण यही है कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में है उसको एक आदत बन चुकी है, या स्ट्रेस में है, लॉन्ग टर्म एंग्जाइटी में है, उसको एक आदत बन चुकी है, उसने नेगेटिव ही सोचना है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन वो हर एक चीज़ के उसका एक नज़रिया बन जाता है, रवैया बन जाता है कि बार बार उसके मन में नेगेटिव संस्कार ही बनते हैं। तो मन के सोचने का भी एक संस्कार है। फिर जैसा हमारा मन सोचता है वैसे ही हमारे मुख से शब्द निकलते हैं कि जो हम सोचेंगे वैसी ही फीलिंग्स हमारे अंदर पैदा होती है. उन फीलिंग्स को, उन इमोशंस को हम अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं, उन भावनाओं को अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं. तो दूसरी तरह के संस्कार कहेंगे हमारे बोलने के संस्कार, हमारी भाषा कैसी है, हम व्यवहार कैसे करते हैं, एक दूसरे से बातचीत कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, संवाद कैसे करते हैं. तीसरा है जो हमें नज़र आते हैं, जैसे एक्शंस, प्रैक्टिकली जो हम उनको कर्म में करते हैं और जो सुबह से लेकर शाम तक हम अपने कार्य में उनको लेके आते हैं, उनको हम कहेंगे कर्म के आधार के ऊपर. लेकिन इनका जो बेस है वो हमारे मन की सोच है कि मन हमारा क्या सोच रहा है. मन हमारा नेगेटिव सोचता है या मन हमारा जो है वो पॉजिटिव सोचता है. तो आप देखेंगे अगर हमारे संस्कार बुरे हैं, जैसे मान लीजिए किसी में गुस्सा करने का संस्कार है, कोई व्यक्ति किसी को देखते ही गुस्सा करना शुरू कर देता है, तो वो गुस्सा इसलिए करता है कि जैसे व्यक्ति उसको देखता है उसको पता है कि ये व्यक्ति जो है अच्छा नहीं है. तो जैसे ही वो ये सोचता है कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं, उसके मन में पहला थॉट नेगेटिव आता है. तो नेगेटिव जब आया तो उसके मन में भाव क्या हो जाता है, नेगेटिव ही हो जाता है. उसकी फीलिंग्स नेगेटिव हो जाती हैं उस व्यक्ति के प्रति, उसके इमोशंस जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं. इसलिए वो नेगेटिव शब्दों से ही उस व्यक्ति से व्यवहार करता है और उसका क्या हो जाता है, वो आदत क्या बन जाती है गुस्सा करने की, जो है वो बन जाती है. लेकिन उसके विपरीत कोई व्यक्ति अगर उसके मन में भाव ये है कि व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो जैसे ही व्यक्ति सामने आएगा उसके बारे में क्या सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा, अच्छा सोचेगा, उसकी जो टॉक है उसके प्रति अच्छी है और जो शब्द उसके मुख से निकलेंगे उस व्यक्ति के प्रति वो भी कौन से निकलेंगे, अच्छे ही निकलेंगे. और व्यवहार भी क्या निकलेगा, व्यवहार भी कैसा करेगा, अच्छा करेगा, उसका वो काम करेगा, जो वो कहेगा उसकी वो बात भी मानेगा. लेकिन अगर उसकी जगह अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो वो समझता है कि ये बुरा है, उसकी वो बात भी नहीं मानेगा, भले वो अच्छी बात भी करेगा, भले वो उस व्यक्ति के फायदे की बात भी करेगा, लेकिन उसको लगेगा नहीं ये व्यक्ति जो है अच्छा नहीं, इसलिए ये अच्छी बात कभी भी नहीं जो है वो कर सकता है. तो इसकी एक विधि है, इसका एक तरीका है. मैं समझता हूँ हम आने वाले सेशंस पे इसके ऊपर जो है वो ज़रूर बात करेंगे कि हम अपने संस्कारों को कैसे बदल सकते हैं. लेकिन आने वाले जो हमारा नेक्स्ट होगा, कुछ देर के लिए आप ऑब्जर्व करें, देखें अपने आप को कि कोई है, जैसे हमने एग्जांपल दी कि एक व्यक्ति जिसको आप बुरा मानते हैं जब वो सामने आता है तो मन आपका कैसा चलता है, क्या होता है, ऑब्जर्व करें अपने आप को. और दूसरी जगह जैसे ही कोई अच्छा व्यक्ति जिसको आप अच्छा समझते हैं जब वो आपके सामने आता है तो आपका मन कैसा सोचता है, शब्द कैसे निकलते हैं, व्यवहार आपका कैसा होता है.
1: चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हम लोग जो है अपने सोच को बदल सकते हैं, और सोच अगर हमारा बदलना शुरू हो जाए तो फिर हम अपने आदतों को भी बदल सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद ऐसा लगता है कि हमें अपने स्वभाव या संस्कारों को बदलने में एक टेक्निकल चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, खुद का निरीक्षण बहुत ज़रूरी है. और चलिए मैं चाहूँगा कि एक जाते जाते एक और बात अगर इससे जुड़ी हुई कुछ बात रह गई हो तो ज़रूर बताइए राजेश जी.
0: हाँ, एक कॉमन प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं कि आदतें. आपने जैसे पूछा था कि आदतें कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि उनको बदलना जो है बहुत मुश्किल है. लेकिन उसको ये समझें कि बनी कैसे. बनी ऐसे कि जब हम कोई भी काम को जो हमें अच्छा लगता है उसको हम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो हमारी जो है वो आदत बन जाती है. और साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि उस काम को कितनी बार किया जाए कि जो हमारी आदत बन जाए, इसके भी ऊपर बहुत एक रिसर्च हुई है. लेकिन और इसके ऊपर डिस्कशन भी बहुत है, एक राय नहीं है, बहुत सारी राय, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे व्यूज हैं. कुछ लोग कहते हैं कि कुछ हमारी आदतें संस्कार जो हैं वो नौ दिन लगते हैं उनको बदलने में. कुछ लोगों का व्यूज है कि उनको 21 दिन लगते हैं. लगातार हम एक ही कार्य को, जैसे मान लीजिए आपने सुबह उठने की आदत बनानी है, कुछ लोग कहते हैं अगर आप 9 दिन करेंगे, लेकिन वो ये कहते हैं कि नॉर्मल सी आते हमारी 9 दिन में बदल जाती हैं, लेकिन जो मुश्किल आते हैं उनको शायद 21 दिन लगते हैं. कुछ लोग कहते हैं 64 दिन लगते हैं. अगर हमने अपने लाइफस्टाइल को बदलना है तो कम से कम 3 महीने से लेकर 9 महीने तक लगते हैं अपने भोजन की आदतों को बदलने में, एक्सरसाइज करने में. सुबह अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला, जिसे हम नेक्टर टाइम कहते हैं, उसको उठने में. तो पहली तो एक चीज़ है कि हमको जिस भी आदत को बदलना है, जिस भी नई आदत को लेके आना है, उसको हम क्या करें, बार बार बार बार करें, ये पहली बात है। दूसरी बात, उसको हम दिल से करें। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति हमको प्रेशर से कराए, जैसे बच्चों को हॉस्टल में होता है, वो उनको प्रेशर से कराया जाता है। डिसिप्लिन, अगर हम उनको कहते हैं डिसिप्लिन में रहो, लाइन में चलना है, तो टीचर खड़ा होगा तो लाइन में चलेंगे, अगर नहीं खड़ा है तो क्या होगा, फिर वो लाइन तोड़ देंगे। तो दूसरी शर्त ये है कि जिस आदत को भी आपने बदलना है, जो भी आपने नई चीज़ सीखनी है, उसको आप अपने दिल से करें, ना कि दूसरों से कहने से करें। और दिल से आप कब करेंगे, जब आपका लॉजिक माइंड, आपका जो तर्क करने वाली बुद्धि है, वो स्वीकार कर लेगी कि ये जो आदत है, ये जो संस्कार है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी है, ये मेरे को जीवन में आगे बढ़ाएगी, ये मेरे को सफलता तक लेके आएगी। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, किंतु है, परंतु है, तो उस प्रश्न को आप दूर करें, क्योंकि जब तक आपका जो लॉजिक माइंड है उसमें कोई क्वेश्चन है, तो हमारा इमोशनल माइंड, क्योंकि जो भाव हैं वही हमारे संस्कारों को बदलते हैं, हमारी आदतों को बदलते हैं, इसलिए इमोशनल माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसको भी हमें जो है वो दूर कर लेना चाहिए
1: जी।
0: और चौथी बात है कि हम उसको कंटिन्यूस करें, लगातार करें, जिसको हम कहते हैं डिसिप्लिन से करें। अगर हम उसको लगातार करते हैं तो हमारी आदत बदलती है, लेकिन अगर हम दो दिन करते हैं, फिर तीन दिन छोड़ देते हैं, दो दिन करते हैं, तीन दिन छोड़ देते हैं, तो वो हमारी आदत जो है वो नहीं बन पाती है, वो कहीं ना कहीं हमारी जो ब्रेक हो जाता है। उसके लिए हमें बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए और बहुत मेहनत की आवश्यकता पड़ती है
1: जी। राजीव जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे चीज़ें संभव हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से मंथन करके आपने बताया तीन चार चीज़ें। और मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्र अगर ध्यान से अपने आदतों को बदलना चाहे तो एक प्रोसेस है, प्रोसेस के साथ अगर आप करते हैं। और दूसरा, एक किसी चीज़ को बदलने के बजाय अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ फोकस्ड है और उसके ऊपर काम करते हैं तब भी आपका काम हो जाता है, किसी चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका फोकस क्लियर हो कि मुझे क्या बनना है, उसी पर अगर आप ध्यान देते हो तो नए आदतें क्रिएट होंगे आपके लक्ष्य को प्राप्त करने का, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो अल्टरनेटिव चीज़ें बहुत सारी हैं, तो इस पर कई और चीज़ें जैसे कि है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। फिर से एक बार ढेर सारी खुशियाँ, थैंक यू राजेश जी बहुत अच्छी बातें बताने के लिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: पता है मेरे को ना नेचर में रहना बहुत पसंद है।
1: मुझे भी बहुत पसंद है।
0: शिक्षा तुम्हें पसंद है?
2: हाँ मुझे तो नेचर बहुत पसंद है। कितनी ठंडी हवा आती है ना, जब लाइट चली जाती है, हम पेड़ के नीचे बैठे होते, तो अच्छा लगता है।
0: उस टाइम तो मजा ही अलग होता है, धरती पे स्वर्ग।
3: अरे कौन धरती पर स्वर्ग लेकर आ गया है?
0: दीदी हम लाए हैं।
3: अच्छा
0: पेड़ों के साथ।
3: पेड़ों पौधों के साथ तो अलग ही महसूसता होती है। सच में क्या बात है, आज सारे बच्चे पेड़ पौधों के बारे में बात कर रहे हैं।
0: हाँ जी दीदी।
3: चलो करते हैं, चलो फिर एक काम करते हैं, बच्चों की दुनिया में आज बात करते हैं प्रकृति के बारे में, कैसा रहेगा?
0: अच्छा।
3: तो चलो चलते हैं इस सफर पर। और बच्चों की दुनिया में आज कौन कौन है हमारे साथ वो भी तो जान ले।
4: मेरा नाम राघव है, मैं क्लास सिक्स में हूँ।
5: मेरा नाम शिक्षा है, मैं क्लास टेंथ में हूँ।
0: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास टेंथ में हूँ।
6: मेरा नाम रिया है, मैं क्लास सेवेंथ में हूँ।
3: ओके तो बच्चों प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रकृति तो जैसा आपने बताया ना कि कितना अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा आती है, तो आपको क्या क्या अच्छा लगता है जब आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं? वैसे तो हम लोग जिस जगह पे रहते हैं, माउंट आबू में बात करें, आबू की बात करें, तो बहुत सुंदर जगह है ना।
4: हाँ।
3: सबसे अच्छा क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पर?
4: यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, अगर है ना लाइट वगैरह भी, वैसे तो जाती नहीं है, पर अगर चली भी जाए तो बाहर बैठो चेयर पे और ठंडी हवा आ रही होती है पेड़ के नीचे, इतना अच्छा रिलैक्स फील होता है पेड़ के नीचे। अगर है ना कोई भी स्ट्रेस हो, कुछ आपको मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हो, तो बस पेड़ के नीचे जाके बैठो, बहुत अच्छा लगता है।
3: पेड़ के नीचे अच्छा लगने लगता है। राघव को क्या अच्छा लगता है?
7: दीदी अगर अपा को कुछ सॉल्यूशन चाहिए, तो अगर अपा पेड़ के नीचे जाके बैठेंगे तो सॉल्यूशन अपा को मिल जाएगा।
3: पेड़ के नीचे सॉल्यूशन मिल जाता है? अच्छा आपको मिला है कभी सॉल्यूशन?
7: हाँ मिला है।
3: क्या मिला है?
7: मतलब एक बार उधर बैठा था तो मुझे साइकिल में हवा भरना आ गया था।
3: पेड़ ने राघव को हवा भरना सिखाया? मतलब आपको याद नहीं आ रहा था पेड़ में नीचे बैठे तो याद आ गया, ऐसा कि सीख ही लिया आपने पहली बार?
7: नहीं मतलब मेरे को हवा भरने में उसने मदद की, उसकी साइकिल की पेन नहीं मिल रही थी तो वो मिल गई।
3: अच्छा वो मिल गई,
7: ऐसा बोला।
3: ओके ओके ठीक
0: तो
3: है,
0: ऐसा बोलना चाहिए था ना कि पिन मिल गया, ऐसा थोड़ी बोलना था कि साइकिल में हवा भर।
3: नहीं तो पेड़ उसका दोस्त है ना, पेड़ ने उसकी मदद कर दी है ना राघव। ठीक है, और आपको क्या अच्छा लगता है रिया? सबसे अच्छा यहाँ पे क्या लगता है आबू में, माउंट में, जब आप जाते हो तो?
6: यहाँ के ट्रीज वगैरह।
3: ट्रीज अच्छे लगते हैं।
6: और यहाँ पे पोल्यूशन भी नहीं है, और लाइट चली जाए तो यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं लगती।
3: हाँ ये बात तो है, पोल्यूशन भी नहीं है ना इतना जितना बाकी शहरों में हम जाते हैं तो देखते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है, खुला आसमान दिखाई देता है ना। और शिक्षा?
5: और यहाँ पे हम जब जाते हैं ना घूमने, तो किसी जगह यहाँ पे देखो जैसे पानी वगैरह, आनंद सरोवर में झरने वगैरह चलते हैं।
3: हाँ।
5: वहाँ पे व्यू इतना अच्छा लगता है ना, मन करता है बस वहीं पे बैठे रहो
3: देखते रहो,
5: बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे तो।
0: और दीदी शाम को घर के बाहर बैठने में तो मजा ही अलग है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, एसी से भी ठंडी
3: है ना,
0: एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती,
3: एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती।
7: दीदी जब हम इधर नहीं आए थे तो मैंने सुना था कि इधर पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, और इधर आके पता चला इधर तो पानी की कमी नहीं, बारिश ही आ जाती है पूरी।
3: ऐसा कोई कोई लोग सोचते हैं ना कि राजस्थान है तो सिर्फ डेजर्ट होगा है ना, सूखा होगा, यहाँ पे तो बस कैमल्स ही होंगे। कई बार लोगों को भ्रांतियाँ होती हैं अलग अलग जगह के बारे में जब पता नहीं होता ना, जबकि ये तो हिल स्टेशन भी है राजस्थान में, माउंट आबू तो है ना। पहाड़ किसी को नहीं अच्छे लगते, पहाड़ों का तो किसी ने नाम
5: अच्छा
3: नहीं लिया।
0: हम जब हरियाणा में थे, हमारे घर के पास में ही पहाड़ था, तो मतलब हम उधर ना पहाड़ के पूरे चक्कर में फेरी बना रखी थी, तो शाम को उस फेरी पे घूमने जाते थे ना, तो ठंडी ठंडी हवा चलती थी तो चलने में मजा आता था।
7: दीदी हम तो पहाड़ के ऊपर भी चढ़ते थे।
3: पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते थे?
0: और दीदी उधर मतलब अलग अलग मतलब भेड़ बकरियां आती रहती थी ना, तो ऐसे लगता था कि हाँ जंगल में ही घूम रहे हैं पूरा।
3: हाँ ऐसा फील होता है ना।
0: हाँ, पूरा
3: जानवर भी है वहाँ।
0: हाँ
3: पे
0: जी।
3: ओके
0: पूरा मस्त फील होता है,
3: मस्त लगता है। हाँ शिक्षा?
5: मैं तो जहाँ पे रुकी हूँ ना अभी, वहाँ पे छत पे एक झूला है, मैं तो उस पे बैठती हूँ, बस पहाड़ को ही देखती रहती हूँ, मैं बोर भी नहीं होती पता नहीं क्यों, बस सोचती हूँ मैं यहाँ से इस रास्ते से ऊपर जा सकती हूँ, इस रास्ते से सरल है यहाँ पे पहुँच जाऊंगी, इस पे ट्रैकिंग करेंगे, पता नहीं मन में यही चलता रहता है,
3: प्लानिंग चलती रहती है।
5: हाँ। बोर भी नहीं होते,
3: बोर नहीं होते ना, अकेले बैठे हो तो भी बोर नहीं होते।
5: हाँ, नहीं होते।
6: दीदी, हम मेरे पापा आर्मी में, तो हम असम गए थे, वहाँ पे हमारे घर के चारों तरफ पहाड़ थे, तो हम वहाँ पे रोज जाते थे और ठंडी ठंडी आ रही थी, वहाँ पे अच्छा लगता था।
3: क्या बात है, तो आपको तो असम तो बहुत सुंदर जगह है ना। कोई गया है असम?
0: नहीं, पर असम में तो मतलब पहाड़ तो बहुत ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे टीकी ग्रोइंग है ना। पहाड़ तो फिर बहुत ज्यादा
3: है। रिया बता सकती है हमको क्या अच्छा है असम के बारे में जो आपने देखा?
6: वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चलती है, लाइट ना हो तो हम वैसे रह सकते हैं
3: वहाँ पे ना,
6: और लाइट हो फिर भी हम फैन ऑफ करें तो वहाँ पे फिर भी रह सकते हैं।
3: कितना सुंदर है ना हमारा भारत भी, सारे शहर सारे अलग अलग गाँव भी जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। आप लोग कोई गाँव गए हो कभी?
7: गाँव में नहीं रहते, मतलब गाँव भी नहीं है वो, शहर भी नहीं है
0: वो, टाउन है। टाउन और गाँव दोनों ही कह सकते,
3: दोनों कह सकते हैं। ओके, तो गांव के बारे में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है?
4: गांव में ना दीदी, अगर पड़ोस में लोग भी हो ना, बिल्कुल अपने परिवार जैसी फील आती है वहाँ पे। सब लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अगर जानते नहीं हो ना फिर भी आपसे बात करेंगे वहाँ पे सब लोग। जैसे कि वहाँ पे डॉगी वगैरह घूमते हैं, सब आपके इतने फ्रेंडली होते हैं, इतने अच्छे दोस्त होते हैं वहाँ पे हर एक लोग। वहाँ पे ना घर के बाहर पेड़ लगा है तो वहाँ पे सब एक साथ बैठते हैं, लाइट चली जाए तो घर के बाहर आके सब बैठ जाते हैं, फिर बातें होती है, सब अपने अपने बारे में बताते हैं कि हमारे यहाँ पुराने टाइम में ऐसा होता था, सब अपनी अपनी हिस्ट्री खोलते हैं, फिर है ना वहाँ पे चटाई बिछा के बैठते हैं बाहर, फिर अच्छा लगता है सुनने में सबके बारे में, फिर तो रात को नींद ही नहीं आती जब तक, और लाइट आ जाए ना तो ये लगता है अब तो आना ही नहीं था, बात अधूरी रह गई,
3: क्यों आ गई लाइट।
4: हाँ
3: ओके, और शिवांशी, रिया, आप लोगों को क्या अच्छा लगता है बताओ, जो जिसको बताना हो बताओ। अच्छा, गाँव के बारे में, रिया आप गए हो गाँव? क्या अच्छा लगता है, कुछ भी, जो भी एक भी चीज अच्छी लगती है आप बता सकते हो?
6: वहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा नहीं होता है।
3: पोल्यूशन तो नहीं होता है, सही बात है, पोल्यूशन से ना स्वास्थ्य के लिए भी नुकसान होता है वैसे तो, लेकिन साथ साथ जो खुला आकाश हमें आज दिखाई देता है वो भी नहीं दिखाई देता शहरों में ना, बिल्डिंग्स में, पोल्यूशन में, तो वो भी अच्छा लगता है।
0: और दीदी, गाँव में ना सुबह सुबह जब वो चिड़िया 5-6 बजे ऐसे चहचहा रही होती है, और सुबह 3-4 बजे मुर्गा बांग देता है, वो सुन के बहुत मजा आता है।
3: उससे उठ जाते हो?
0: एक बार
7: दीदी
0: मतलब उठी हुई थी बाई चांस, सुबह वैसे ही छत पे गई थी तब सुना था
3: ना।
7: दीदी मुझे एक बात अच्छी लगती है, मैं तो 6 बजे बैठ कर उठा के बाहर चला जाता हूँ।
3: अच्छा, सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है ना। आप लोगों ने उगता हुआ सूरज देखा है?
7: हाँ, मैंने देखा है।
3: है ना, और ढलता हुआ सूरज देखा है?
7: हाँ।
3: क्या ज्यादा अच्छा लगता है? उगता हुआ अच्छा लगता है,
7: उगता हुआ ऐसा लगता है कि ऊपर संतरा आ गया आसमान में, ऑरेंज ऑरेंज और नीचे से रेड रेड लगता है।
3: हाँ सही बात है, सही बात है, ऑरेंज ऑरेंज कैसा, इतने सारे कलर्स दिखाई देते हैं ना सूर्योदय जब होता है तो, कितने लाल लाल सा।
7: दीदी एक बार मैंने वो देखा था, एक रेनबो था उसके साथ, उसके ऊपर एक और रेनबो था, तो मैंने 2 रेनबो एक साथ देखे थे।
3: हाँ ये तो बड़ा रेयर है, ऐसा तो बहुत कम दिखाई देता है, है ना, कि 2 रेनबो साथ दिखाई दे,
0: ऐसा भी कम दिखाई देता है जब सूरज और रेनबो एक साथ निकले।
3: हाँ
0: अभी थोड़े दिनों पहले भी यहाँ पे रेनबो निकला था ना आबू में।
3: अच्छा?
0: हाँ, पहाड़ों पे खत्म हो रहा था।
3: वाह कितना सुंदर लग रहा होगा ना।
0: उसमें से फिर ना जब ऐसे मतलब बादल हट रहे थे ना सूरज के साथ, तो ऐसे लग रहा था कि रेनबो में से रोशनी निकल रही है।
3: वाह
7: दीदी, अगर अपा दूर से देखते तो अपा को ऐसा लगता है कि ये इधर है, तो अगर अपा उधर जाते तो ऐसा लगता है वो और ज्यादा दूर हो गया।
3: सही बात है, मतलब कहीं से भी जाते हैं वो अलग अलग नजर आता है।
0: जैसे अपन ड्राइंग बनाते हैं ना वैसे नेचर्स भी ड्राइंग बनाती है। अभी थोड़े दिनों पहले ही अलग से हम बादलों में देख रहे थे, हमने पहले कान्हा जी देखे, कहीं थोड़ी दूर गए, उसके बाद हमने बर्ड देखी क्लाउड्स की बनी हुई, अलग अलग चीजें से बनाती रहती है।
3: रिया आपने देखा है कभी बादलों में कोई शेप या कुछ और दिखाई दिया हो ऐसा?
6: एक बार देखा था।
3: क्या देखा था?
6: महादेव जी की फोटो।
3: अच्छा, वो आपको बादलों में नजर आई? अरे वाह। और शिक्षा?
4: मैंने तो एक बार उसमें बस छोटा सा हाथी देखा था।
3: हाँ छोटा हाथी भी दिखाई देता। हाँ। है ना, कुछ भी एनिमल्स भी दिखाई देते हैं कभी कभी।
7: दीदी मैंने रियल शिव जी देखे थे, मतलब बादलों से शिव जी बने थे उनके, ऐसे वो इधर जैसे वो एक गंगा भी थी, और इधर जो रियल चांद था बादलों से भी बना हुआ था, वो रियल चांद था।
3: अच्छा
7: आधा था वो भी।
3: अच्छा, कहाँ दिखाई दिया आपको?
7: मैं खेल रहा था तब दिखाई दिया था, रात हो गई थी तब।
3: आसमान में?
7: मैं सबको बुला के भी आया था, शिवांशी तो बहुत ज्यादा लेट आई थी।
0: उस दिन वो महाशिवरात्रि थी उस दिन।
3: अच्छा, अरे वाह, तब तो आप बहुत लकी हो, है ना? आपने तो साक्षात दर्शन कर लिया। नहीं, अच्छी बात है। आपको कभी कभी ना आपके अंदर भावना होती है ना, वो भी आपकी भगवान के प्रति कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है कि आप क्या देखते हो, है ना? और भगवान जी तो आपके साथ है ही हमेशा, तो क्यों नहीं दिखाई दे सकते भाई। और अच्छा, क्या लगता है आप लोगों को, जैसे आपने बादलों के बारे में कहा, अगर मैं आपसे पूछूं आपका फेवरेट ट्री कौन सा है या फ्लावर कौन सा है?
0: यदि फेवरेट ट्री तो मैंगो है।
3: ओके, और फूल?
0: रोज।
3: ओके, और रिया को कौन सा पसंद है पेड़ और फूल?
6: दीदी, बनियन एंड लोटस।
3: बनियन ट्री पसंद है आपको? क्यों अच्छा लगता है बनियन ट्री?
6: वो देखने में मुझे अच्छा लगता है।
3: अच्छा, ओके। और शिक्षा को क्या पसंद है?
2: दीदी, मुझे भी ना बरगद का ही पेड़ पसंद है, क्योंकि मेरे घर के बाहर भी ना वही लगा है,
3: बरगद का पेड़ लगा है। हाँ। और फूल कौन सा अच्छा लगता है?
2: फूल मुझे गुलाब अच्छा लगता है। हमारे घर में ना गुलाब इतने सारे लगे हैं और उनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है।
3: गुलाब की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है ना। राघव को कौन सा पेड़ और फूल अच्छा लगता है?
7: मुझे तो रोज अच्छा लगता है।
3: और पेड़ कौन सा अच्छा लगता है?
7: ड्रैगन फ्रूट का।
3: ड्रैगन फ्रूट का अच्छा लगता है। ओके, हाँ भाई, आजकल तो बहुत लोग ड्रैगन फ्रूट उगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, और हमें यहाँ भी हम देखते हैं बड़ा रेयर फ्रूट है वो, है ना?
2: दीदी, उसका तो नाम बदल दिया गया अभी।
3: अच्छा?
2: हाँ, अभी मधुबन में उसका नाम ना लोटस फ्रूट रख दिया गया है।
3: ओके।
2: हाँ, क्योंकि है ना, उसका ड्रैगन फ्रूट तो चाइना का नाम था, अब यहाँ पे मधुबन में तो उसका नाम बदल दिया।
3: तो नाम बदल दिया गया है उसका। ओके, बहुत सुंदर भी दिखता है ना, पिंक पिंक कलर का।
7: दीदी, वो बाहर से ना पिंक कलर का होता है और अंदर से उसके अंदर सस्पेंस होता है, उसके अंदर तीन कलर, कोई भी वो रेयरली होता है। रेयरली तो सबसे ज्यादा वो मिलता है, येलो मिलता है, और व्हाइट और पिंक कॉमन होते हैं।
3: अच्छा, येलो भी होता है ड्रैगन फ्रूट? हाँ। अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं पता था।
7: वो बाहर से तो पिंक ही दिखता है पर अंदर से अलग अलग कलर्स होते हैं, इसीलिए वो ज्यादा रेयर होते हैं।
3: व्हाइट तो होता है ना, उसमें डॉट डॉट जैसे दिखाई देते हैं।
0: दीदी, वो फ्लावर जैसे होते हैं, उनको सिर पे भी लगा सकते
3: हाँ, तो अगली बार गिफ्ट में दिया जा सकता है किसी को
0: किसी का ड्रैगन फ्रूट फेवरेट हो ना तो उसको देते हैं। हाँ, सिर में लगाएंगे।
3: लगा भी सकते हैं। हाँ। खा भी सकते हैं, वो थोड़ा भारी नहीं हो जाएगा सर के लिए?
0: वो तो दीदी फेवरेट है तो कुछ तो सहना पड़ेगा।
3: थोड़ा तो सहना पड़ेगा।
7: दीदी, मेरा ड्रैगन फ्रूट फेवरेट है, जब मैं रोब्लॉक्स में ब्लॉक फ्रूट खेलने लगा तो मुझे पता लगा कि उसके अंदर भी ड्रैगन फ्रूट है।
3: अच्छा, आपको सबसे ज्यादा वही पसंद है? टेस्टी लगता है बहुत आप लोग को?
7: मैंगो से भी ज्यादा मीठा होता है।
0: हर चीज का मैंगो खाना पन, मैंगो नहीं खाएगा।
3: मैंगो नहीं मिलेगा राघव को? नहीं, ऐसा नहीं
7: खाऊंगा।
0: दीदी, आपका फेवरेट ट्री और फेवरेट फ्लावर कौन सा
3: है? मेरा, मुझे पेड़ तो सच में बहुत सारे हैं जो अच्छे लगते हैं, जैसे नीम का पेड़ भी बहुत अच्छा लगता है, हवा भी बहुत शुद्ध करता है वो, है ना? और एक अच्छी फीलिंग आती है उसके आसपास रहो तो। और साथ साथ फूल, फूल भी बहुत सारे सुंदर लगते हैं। रात की रानी भी बहुत अच्छा लगता है, उसकी जो महक होती है ना वो बड़ी अच्छी होती है। आप वहाँ पे वॉक करो तो सच में ऐसा लगता है कि आप प्रकृति की गोद में हो, तो वो भी बहुत सुंदर लगता है। कमल बहुत सुंदर लगता है, बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल हैं। वैसे रोज भी बहुत अच्छे हैं, रोज तो बड़े सारे कलर्स के भी होते हैं।
2: हाँ।
3: है ना?
2: हाँ।
0: दीदी, तभी आप कमल पुष्प समान
3: है। कमल पुष्प समान तो बनना है हम सबको।
7: दीदी, चाइना रोज अलग वैरायटी होती है एक रोज की।
3: हाँ, रोज की तो बड़ी सारी वैरायटी, ब्लैक रोज भी होता है पता है,
7: चाइना रोज भी होता है, वो अलग होता है।
3: अच्छा, वो तो मुझे भी नहीं पता।
0: हर कलर के आने लग गया, रेड, पिंक, ब्लू।
3: ब्लू भी होता है रोज,
0: कलर्स डालता है,
3: येलो भी होता है ना?
7: दीदी, कई तो नेचुरली भी ब्लू होते
3: हैं। आप लोगों ने कभी आपने कभी रोज गार्डन या ऐसे फूलों वाले कुछ गार्डन्स कभी विजिट किए हैं?
0: एक बार कर रहे हैं चंडीगढ़ में।
3: आपने रिया?
7: हाँ।
3: कहाँ पे आपने रिया कहाँ पे किया?
6: दीदी, बहादुरगढ़ में।
3: बहादुरगढ़ में क्या है वहाँ पे?
6: नाम याद नहीं।
3: कोई बात नहीं, मतलब वहाँ पे क्या देखा आपने?
6: फ्लावर्स थे अलग अलग टाइप के,
3: बहुत सारे तरह के फ्लावर थे। शिक्षा
4: दीदी, हमारे यहाँ तो है ना छोटा सा बगीचा है।
3: ओके।
4: हाँ, वहाँ पे ही हमारे यहाँ बहुत सारे फूल लगे हैं सुंदर सुंदर।
3: कितना अच्छा लगता है उनको देख।
4: हाँ, हमारे पास जब है ना फ्री टाइम होता है स्कूल से, जैसे कि छुट्टी होती है, आज फ्री है तो हम चले जाते हैं वहीं पे बैठते हैं।
3: अरे वाह। हाँ राघव।
7: दीदी, चंडीगढ़ में हम घूम के आए थे, रॉक गार्डन था और एक और था, उधर झरना भी था एक अच्छा।
3: तो मतलब सबको प्रकृति अच्छी लगती है, लेकिन ये तो हमें महसूस होता है जब हम प्रकृति के नजदीक होते हैं। किसी ने आप में से कभी कोई पेड़ लगाना या पौधा लगाना या फूल लगाया है कभी?
0: हाँ जी, हाँ? लगाया।
3: सबने लगाया है? हाँ, राघव ने भी लगाया है। अच्छा, कौन सा लगाया है, कब लगाया है, थोड़ा सा बताइए अपना अपना एक्सपीरियंस। हाँ बताओ राघव। कोई बात नहीं, जब तक बाकी लोग बताएंगे तब तक याद कर लेना, ठीक है?
7: नहीं, पहले से ही मुझे याद नहीं है, मैंने बहुत जब छोटा था मैंने तब याद था मुझे, अब तो याद नहीं है, तभी मैंने पहले बोल दिया क्योंकि आप पहले पूछ रहे थे।
3: अच्छा, तो छोटे थे तब लगाया था आपने, इसलिए अब याद नहीं है, है ना? कोई बात नहीं, अभी अब जब थोड़े बड़े हो गए हो ना तो फिर से लगा लेना, ताकि अब आपको याद रहे।
7: दीदी, अब तो स्कूल की एक्टिविटी मिली है, हम मैंगो ट्री लगाएंगे।
3: अच्छा, आम का पेड़ लगाना है?
0: नहीं, भी आम खाते हैं ना सारे, उसके गीटके सुखा के फिर पर करेंगे।
3: ओके।
0: मम्मी कहते हैं सारे के आम के पेड़ ही लगाने, और कोई फ्रूट नहीं है तुम्हारे पास।
7: दीदी, मैं तो ये सोच रहा हूँ जब मैम देखेंगे तो मैम बोलेंगे क्या पूरे वेकेशन आम ही खा रहे थे क्या तुम लोग,
3: इतने सारे पेड़ लगा दो।
0: अलग अलग वेराइटी के सारे, कोई सिंदूरी है, कोई तोता आम है, कोई लंगड़ा आम है, कोई नॉर्मल आम है।
3: हाँ, बहुत सारी वेराइटी होती है आम की भी। तो आप लोग तो आम का पेड़ लगाने वाले हो, और बताओ कौन सा लगाया है, क्या अनुभव था आप लोगों का?
4: दीदी, हमने तो बगीचा भी बताया था ना, उसमें मैंने चीकू का पेड़ लगाया था। हाँ, और उसमें हिबिस्कस भी लगाया था एक फूल।
3: अरे वाह।
4: हाँ, उसमें रात रानी भी है।
3: वाह।
4: हाँ,
3: तो उसको कैसे लगाया, क्या किया था उसमें, मतलब पहले डाला जड़ों को या मिट्टी डाली, क्या किया?
4: वो तो नर्सरी से लेके आए थे।
3: हाँ।
4: तो वहाँ पे उसमें पूरा सब कुछ था, बस गड्ढा खोदा था हमने और पापा ने मिलके, गड्ढे में उसको पॉलीथिन से निकाला, उसमें रख दिया, ऊपर से मिट्टी डाल के पानी डाला थोड़ा सा। और दीदी, उसी दिन है ना, थोड़ी देर हुई होगी, मैं बस है ना वो हाथ धोए कि उतने में बारिश हो गई।
3: अरे वाह।
4: उसके बाद वो इतने सुंदर खिले ना, 3-4 दिन बाद ही उनमें फूल लगे।
3: हाँ, और खुद लगाओ कोई पौधा, उसमें कोई फूल या फल निकल के आता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है।
4: हाँ।
3: है ना, कितनी खुशी होती है,
0: ऐसा लगता है मेहनत रंग लाई।
3: हाँ, सही बात है।
7: दीदी, अगर अपा फ्रूट उगाते और वो, अगर अपा लेने ही जा रहे होते फिर अपा देखते कोई और ले रहा है और वो एक ही बचा था, तो अपा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है।
3: हाँ, ये तो है, लेकिन फिर देखो पेड़ और पौधे ऐसी चीज है ना जो देते ही रहते हैं, मतलब उसमें अभी तो नहीं तो कल परसों फिर फूल निकल आएगा और फिर से फल निकल आएगा, है ना?
7: दीदी, कई पेड़ तो ऐसे होते हैं जिसमें फूल और फल एक साथ ही निकलते हैं।
3: बिल्कुल। रिया, आपने कभी पेड़ लगाया, पौधा लगाया?
6: हाँ दीदी, मैंने अपने पिछले स्कूल में लगाया था।
3: कौन सा?
6: अमरूद का पेड़ लगाया था और रोज लगाया था।
3: अच्छा, कैसे किया था, क्या किया था?
6: पहले दीदी गड्ढा खोदा, नर्सरी में से लाए थे प्लांट, वो लगा दिया उसने।
3: ओके।
6: फिर वो थोड़े दिन बाद वो उसमें फ्लावर्स आ गए थे।
3: तो उसको बाद में देखते रहते हो आप लोग कि कैसा कुछ उग रहा है, क्या हो रहा है?
6: हर रोज पानी डालते थे।
3: हर रोज देखते हो? पौधों से बातें करते हो कि नहीं करते हो?
0: करते हैं दीदी।
3: करते हो? रिया, आप करते हो?
6: हाँ दीदी।
3: क्या बातें करते हो?
6: वो जब लाइट चली जाती फिर जब बाहर बैठते हैं तो इतने आराम से, वो इतनी ठंडी हवा देते हैं, मैं सोचती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ आप इतनी ठंडी हवा कैसे देते हो।
3: हाँ, सही बात है भाई, आप तो इतने अच्छे हो, इतनी ठंडी ठंडी हवा हमको देते हो, है ना? उनसे बातें करनी चाहिए। पता है आपको कि एक रिसर्च हुई है, वो आपको साइंटिस्ट का नाम पता है कि क्या है जिन्होंने रिसर्च की है प्लांट्स के ऊपर?
4: नहीं पता।
3: भारत के ही साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ये रिसर्च करके बताया था कि प्लांट से अगर आप म्यूजिक सुनते हैं या बातें करते हैं तो वो बहुत अच्छा ग्रो होते हैं, अगर उनको ना किया जाए कुछ उसके बजाय, मतलब दो प्लांट्स लिया गया, एक से बातें की गई, म्यूजिक सुनाया गया, एक को कुछ नहीं किया गया, तो जिससे बातें करते हैं और जो म्यूजिक सुनाते हैं ना वो जल्दी ग्रो करते हैं और अच्छा ग्रो करते हैं। आप तो जानते हो यहाँ पे तो तपोवन में भी है ना यौगिक खेती होती है, तो वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं सीड्स के साथ, और जब वो प्लांट्स उग जाते हैं तब तो पता है बहुत अच्छा अच्छा फल देते हैं, और बहुत बड़ा बड़ा साइज की कभी लौकी निकल के आती है, कभी कुछ निकल के आता है।
7: दीदी तो पापा को उस प्लांट में पानी नहीं देना पड़ता।
3: बिल्कुल देना पड़ता है।
7: तापी ने तो बोला अभी अगर बातें करेंगे तो वो अपने आप ग्रो होगा।
3: हाँ तो वो बेहतर ग्रो होगा, लेकिन देखो अभी राघव है, राघव को हम बातें करेंगे, अच्छे से दोस्त बनेंगे, खेलेंगे तो वो ज्यादा खुश रहेगा ना, है ना। लेकिन उसको खाना और पानी तो फिर भी चाहिए ना, उसके बिना कैसे बातों से काम चलेगा सिर्फ। लेकिन खाना पानी के साथ कुछ भी खेलो नहीं तो फिर राघव को इतनी खुशी नहीं होगी ना, है ना। बिल्कुल, बस उसे खाना पानी दिया जाए, उसके साथ खेला ही ना जाए, उसको बोले एक ही जगह बैठे रहो तुम, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं मिलेगा फिर, नहीं इतना अच्छा मजा नहीं आएगा ना। तो पेड़ पौधों को खाना पानी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में उनके दोस्त बनो, उनसे बातें करो, तो वो और अच्छे से ग्रो होते हैं, है ना, आपके दोस्त बन जाते हैं।
4: दीदी पेड़ कितने अच्छे होते हैं ना, हमसे कभी कुछ लेते ही नहीं है, बस थोड़ा सा पानी मांगते हैं, वो भी किस लिए, जिससे वो हमें फ्रूट वगैरह दे सके।
3: सही बात है, सब कुछ देते ही देते हैं।
4: हाँ, कभी कुछ लेते नहीं है। लाइट चली जाए तो ठंडी हवा आती है, धूप होती है तो छाया मिलती है, और भूख लगती है तो उनपे से हम फल वगैरह भी ले लेते हैं।
3: सही बात है, सब कुछ तो मिलता है, ठंडी हवा, पेड़ पौधे फल देते हैं हमें, सब कुछ देते हैं। सही बात है, उनसे कितना कुछ सीखने को मिलता है।
4: हाँ,
3: है ना। कोई और कुछ कहना चाहता है जाते जाते?
0: यही कि दीदी पेड़ बहुत अच्छे हैं, उनसे प्यार करो, बस काटो मत उनको।
4: सेव ट्रीज, पेड़ों को बचाओ, उनको लगाओ, काटो मत।
7: पेड़ को कभी काटना नहीं चाहिए।
6: सेव ट्रीज सेव अर्थ।
3: सेव ट्रीज सेव अर्थ, तो ये काम तो हम सबको मिलके करना है, है ना। तो हम लोग भी फिर एक एक पेड़ तो हमेशा हर साल में एक तो लगा ही सकते हैं ना।
0: लगा सकते हैं,
3: है ना। अपने बर्थडे का दिन फिक्स कर सकते हैं कि लगाएंगे, या कोई और दिन भी कर सकते हैं। और

0: केयर सिर्फ लगाना नहीं है, उसकी केयर भी करनी है पूरी, है ना?
1: हाँ.
0: दोस्तों की तो केयर की जाती है, तो ऐसे ही पेड़ की भी करनी है. चलिए प्रकृति के साथ और नजदीक आते हैं और प्रकृति को अपना दोस्त बना लेते हैं. सच में आप प्रकृति के पास बैठेंगे तो टेंशन भी भूल जाएंगे और कई तरह की चीजें तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी. तो प्रकृति को बनाइए दोस्त और फिलहाल इन दोस्तों से लेते हैं इजाजत और कहते हैं हमारे दोस्तों को बाय बाय.
2: बाय बाय.
0: रेडियो मधुबन 107.8 FM
2: सुनते रहो मुस्कुराते.

0: नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हैं जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी।

भाग दस। उन्होंने मुझे फिर जंजीरों में बांध दिया। लगभग दो मास तक मेरी ऐसी ही हालत रही। आखिर मेरी बड़ी बहन विलायत से आई। उन्होंने मेरे लौकिक संबंधियों को कहकर मुझे जंजीरों से छुड़ाया, परंतु उसके बाद भी काफी समय तक वे मुझ पर अत्याचार करते रहे। मैं अपने लौकिक संबंधियों को कहा करती थी कि आप हमारे शरीर के मालिक हैं, परंतु आत्मा का मालिक तो एक परमात्मा ही है। अतः आप जब तक चाहे हमारे शरीर को बांध दीजिए, परंतु आत्माएं तो ईश्वर की पुत्रियां हैं और उनके पास बिक चुकी हैं। परंतु वे लोग ये सब बातें कहां सुनते थे? एक ओर तो भारतवासी देवियों की मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजते हैं और दूसरी ओर उन्हें पूजकर डुबो देते हैं। यही हाल उनका अब हमने प्रैक्टिकल देखा। ये लोग पवित्र कन्याओं और देवियों के चित्र तो पूजते हैं, और जब हम स्वयं वैसा बनने का पुरुषार्थ करती हैं, तो ये हम पर अत्याचार करते हैं। तभी तो हमारा मन बोल उठा, तन मानुष का निज मंदिर, जहां आत्मा विराजे अति सुंदर, अहम रथ पर हो सवार, आए हम विराट संसार। एक कौतक देखा यहां आकर, क्या कौतक देखा यहां आकर, देवी की सजाए मूर्ति, देवता की सजाए मूर्ति, तोड़ फोड़ एक पत्थर, हाँ तोड़ फोड़ एक पत्थर, भेंट भोग सब डाल सामने, देवी को दिखला कर कहते, प्रेम भाव से पूज देवी को, प्रेम भाव से पूज देवता को, फेंकते समुद्र में और कहते, डूब जा डूब जा डूब जा। देवियों की पूजा करके उनकी मूर्तियों को जलमग्न करने के अतिरिक्त एक और भी कौतुक हमने देखा। वह यह है कि लोग सन्यासियों के चरण छूते हैं, उनके आगे नतमस्तक होते हैं। क्यों? इसी कारण ना कि वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कन्याओं के आगे माथा टेकते हैं। परंतु जब वही कन्या विवाह कर लेती है, तब वह जो पहले पूज्य कन्या थी, अब लज्जा के मारे घूंघट में मुंह छुपाकर सबके आगे झुकती है और माथा टेकती है। अंतर क्या पड़ा उस कन्या में और इस माता में? यही ना कि उसने कुमारी व्रत को छोड़कर काम को मन में बसाया है। तो आज जब हम पवित्र बनना चाहती हैं, कुमारी व्रत का पालन करना चाहती हैं, तो वे हमें मारते पीटते हैं। जैसे नाक कटे पंथ वाले दूसरे को भी नाक कटे बनाना चाहते हैं, अर्थात पवित्रता जो मनुष्य का स्वमान है उसे नष्ट करना चाहते हैं। तभी तो हम विकारी शादी द्वारा जीवन बर्बाद करने वाली नारियों से कहती हैं, विकारी शादी की जंजीर बंधी, बर्बादी की राह गंदी है, तुम राह रूहानी भूली हो, यह विषय पान एक सूली है। जब ज्ञान हिंडोले झूलेगी, जब प्रेम हिंडोले झूलेगी, जब शांति समाधि झूलेगी, तब सुदबुद्ध सारी भूलेगी। मेरे दिल में होता दीदार नया, स्वयंबर का श्रृंगार नया, तब पहनूंगी ताज नया, खुल जावेगी नैना, हाँ नैना, अम्मी तुम पिंजरे की मैना, हाँ तुम पिंजरे की मैना, तुम रोती रिगड़ती सब दिन में, हम हस्ती फिरती गुरुकुल में, हम हस्ती फिरती गुरुकुल में, तुम निभाग की नथ पहनी है, हम सदा सुहागिन होती है। परंतु कोटि कोटि मनुष्यों में से कोई विरला ही इन सब बातों को सुनता है। जिन माताओं ने अब ज्ञानामृत पिया था, उन्होंने तो अब पवित्रता अथवा ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने का प्रण किया, क्योंकि अब उन्होंने ज्ञान रस चख लिया था। अतः वे अब मानव को ललकार कर कहती थी, मत पियो बेहोश विकारी, मत पियो बेहोश विकारी, तुम ज्ञानामृत पीते रहना, तुम विषय जहर कभी ना पीना, ज्ञानामृत है रूहानी प्याला, पीने से है आनंद निराला, बन पड़ता है सम नंद लाला, मुकुट और कमंडल वाला, पीकर अमृत जीते रहना, मान सरोवर का झरना, हाँ मत करना संग दोष, विषय से दूर हटना तीन कोस।

राजा ने बुद्ध को राजमहलों में बांधने की कोशिश की तो उसका क्या परिणाम हुआ? बुद्ध ही घर से भाग निकले। दयानंद जी को घर की सीमा में ही रखने की कोशिश उनके पिताजी ने की, परंतु क्या दयानंद जी, जिन्हें ज्ञान की प्यास थी, उसे बुझाए बिना रुक सके? शंकराचार्य की माता ने उन्हें कई बार घर में रहने के लिए तथा विवाहित जीवन जीने के लिए तैयार करने की कोशिश की, परंतु वे तो नदी में मगरमच्छ द्वारा पकड़े जाने का बहाना बनाकर आखिर छुट्टी पाकर ही रहे। गोविंद सिंह जी के बच्चों को दीवार में जीवित अवस्था में चिने जाने की धमकी देकर भी धर्म बदलने के लिए कहा गया, परंतु क्या वे अपने धर्म मार्ग से टले? नहीं। अत्याचार को सहन करके तो उन सब की धर्म निष्ठा और भी बढ़ी। इसी तरह से अब कन्याओं माताओं पर जो अत्याचार हुए, उसका परिणाम तो यह हुआ कि उन कन्याओं माताओं का अपने संबंधियों से मोह टूट गया और उन्होंने उनके प्यार के खोखलेपन को तथा उनकी स्वार्थपरता को अच्छी तरह से जान लिया। पति से मिली असहाय पीड़ाओं से पत्नी के मन में यह विचार आया कि जिस पति को हम परमेश्वर और गुरु मानती रहें, उसका भी बस केवल काम वासना का ही हमारे साथ संबंध था। सच्चा प्यार उसके मन में भी नहीं था। उन्होंने हमें विषय भोग की एक गुड़िया समझकर ही घर में लाया था। तभी तो आज वासना भोग की अतृप्ति में वे हम पर सितम ढाते हैं। अरे सचमुच ये सब झूठे नाते हैं। हम सिनेमा जाएं, इनकी वासना की भूख पूरी करें, इनकी बात मानकर मांस खाएं, शराब पिएं, तो हम इनके घर पर रह सकती हैं। परंतु यदि हम अच्छे मार्ग पर चलें और प्रभु की आज्ञा को मानें, तो ये हमारे शत्रु हो जाते हैं। हमें वे ज्ञानामृत पीने के लिए सत्संग में जाने भी नहीं देते, क्योंकि इसमें भी वे लोग अपने स्वार्थ और सिद्धि की रुकावट देखते हैं। हाय हमारे माता पिता, वे भी लोकलाज की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अरे और तो छोड़ो, जिन्हें हम धर्म के ठेकेदार मानते थे, जो शास्त्रों और ग्रंथों से मीरा, शीतला, सरस्वती आदि की कथाएं सुनाते थे और ब्रह्मचर्य के गुणगान करते थे, आज सरमायादार भाई बंधों के सामने वो लोग भी मजबूर हैं, बल्कि समाज में भ्रष्टाचार के पोषक तत्वों के वे भी साथी बन गए हैं। ठीक है, आज हमारी आंखें खुल गई हैं। इस जुल्म व सितम से हमें सचमुच यह लाभ हुआ है कि हम सगे संबंधियों के वास्तविक रूप को अच्छी तरह से जान चुकी हैं। प्रभु सचमुच आप ही हमारे एकमात्र सहारे हैं। इस जगह में हमारा दूसरा कोई नहीं है। हमारे प्राण भले ही जाएं, परंतु प्रभु हम अपने पवित्रता रूपी धर्म को अब बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अपने बर्बरतापूर्ण व्यवहार से लोगों ने कन्याओं माताओं को और भी दृढ़ प्रतिज्ञा वाला बना दिया। यदि वे उनसे स्नेहपूर्ण कुछ कहते अथवा उनकी बात सुनते तो शायद बात आगे न बढ़ती, परंतु अब तो दोनों ओर से मन का नाता टूट चुका था। जब पति देखता कि स्त्री को मैं झूठे विषय सुख के लिए लाया था, अब वह मुझे नहीं मिलेगा, तो वह बहुत ही अशिष्ट रीति से अपनी पत्नी को घर से निकाल देता। जब माता पिता देखते कि फलानी कन्या अथवा पुत्र वधू अब विषय विकार से घृणा करती है, तो पंचायत के दबाव से या लोकलाज के डर से वे भी उनसे अपना नाता तोड़ने तथा उन्हें घर से निकालने पर मजबूर हो जाते। अतः कई एक को घर से निकलना ही पड़ा। आखिर परमपिता परमात्मा ही तो सभी के रक्षक और सहारे हैं। उसी समर्थ ने ही उनको संबल दिया, सांत्वना भी दी और उन बेसहारों को आश्रय तथा अभय दान दिया। कहावत भी है कि संसार में जिसका और कोई सहारा नहीं होता, उसका एक परमात्मा ही सहारा है और साथी है। अतः उस समय उन कन्याओं माताओं के मन से यह गीत निकलता था। सब पूछते हैं कहां चली यह घर बार छोड़कर, यह धन, यह मान, यह अपना संसार छोड़कर। दुनिया के इस सवाल को समझा रहे हैं हम, बच्चे हैं अपने प्रभु के घर जा रहे हैं हम। इस चार दिन की दुनिया में यह दिल लगेगा क्या? टूटी फूटी जिंदगी में आखिर मिलेगा क्या? हंस हंस के, झूम झूम के यूं गा रहे हैं हम, बच्चे हैं अपने प्रभु के घर जा रहे हैं हम। रास्ते में थे जो कांटे बिछे हुए, कांटों पे जब चले तो वे फूल बन गए। बिछड़े हुए थे कल्प भर, अब पा रहे हैं हम, बच्चे हैं अपने प्रभु के, हाँ अपने प्रभु के घर जा रहे हैं हम। इतने अत्याचार करने पर भी लोगों ने छुट्टी न की,

एक ऐसी अग्नि है जब यह धधकती है तो सुख देने वाली संपत्ति को और संस्थाओं को भी जलाने के लिए लपक पड़ती है। लोगों ने जब देखा कि ये कन्याएं व माताएं सत्संग में जाने से नहीं रुकती हैं, तो उन्होंने सोचा कि जिस भवन में ये जाकर ज्ञानामृत पीती हैं, क्यों ना उसे ही धूल दूषित कर दिया जाए, यानी उसे खत्म कर दिया जाए। अतः एक दिन की बात है कि जब बाबा सत्संग भवन में, जो कि लखीराम भवन के नाम से भी जाना जाता था, उसमें उपस्थित नहीं थे, तब उन लोगों ने अवसर जानकर उस पर आक्रमण कर दिया। उस जमघट में बहुत ही शरारती लोग थे। उन्होंने उस लकीराज भवन को चारों ओर से घेर लिया और वे दरवाजे, खिड़कियां इत्यादि तोड़ने लगे। उन्होंने भीतर घुसने की भी कोशिश की, परंतु शिव की शक्ति सेना खड़ी हो गई और उसने किसी को भी अंदर घुसने नहीं दिया। उन लोगों ने मकान को आग लगा दी। यह घटना दिनांक 21 जून 1938 को हुई। ओम मंडली के 110 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट की, परंतु वह मुखी मंगाराम का रिश्तेदार था, उसने उस रिपोर्ट पर विशेष कार्यवाही नहीं की। क्रोध के वश हुए उन लोगों की बुद्धि इतनी मारी गई थी कि उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि हमारी ही कन्याएं, माताएं, बहु बेटियां आदि अंदर हैं, और भवन को आग लगाने के परिणाम स्वरूप वे भी अंदर ही जीते जी जल जाएंगी। जिन मुखी लोगों ने जनता को भड़काया था, वे ना तो उन उपद्रवियों पर कंट्रोल कर सके और ना ही इसके परिणाम को सोच सके। परंतु भावी ऐसी बनी कि किसी दर्शक ने पुलिस को फोन करके उसे सूचना दे दी। पुलिस ने उस स्थान पर आकर सभी को भगा दिया और फायर ब्रिगेड ने आकर आग बुझा दी। कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे सौ जग बैरी होए। लोगों ने हजार कोशिशें की, परंतु वे कुछ भी बिगाड़ न सके। लखी भवन को जलाने का वृतांत तो महाभारत में पहले भी कौरवों द्वारा लाखा भवन को आग के वृतांत के रूप में वर्णित है। एंटी ओम मंडली तथा उपद्रवियों ने जो कुछ किया, उसके कारण यह गीत उन पर ठीक बैठता है। आश्चर्य कैसी मुसीबत में देह अभिमानी पड़े हुए हैं, स्वधर्म अपना भूल करके माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। मोह माया कैसी है यह प्रबल, मोह की जंजीरों में जकड़े पड़े हैं, स्वधर्म विस्मृति उल्टी यह रीति, जन्म अमोलक खोए रहे हैं। प्रकृति के मालिक हो करके फिर गुलाम विषयों के बने हुए हैं, अजब तमाशा विचित्र लीला, पुरुष की प्रकृति नचा रही है, देही अभिमानी को विदा देकर देह अभिमान में खेल रहे हैं। विकारों के लेन देन के धंधे में आत्मघाती मरे पड़े हैं, बाहर मुक्ता कैसी ये मूर्खता, प्रभु हमें समझा रहे हैं। इतना सब होने पर भी बाबा सदा निश्चिंत, अडोल और साक्षी अवस्था में रहते थे। वे कहा करते थे कि हम तो परमपिता परमात्मा के सेवक हैं, वही सब बात ठीक कर देगा। धर्म के मार्ग पर ये परीक्षाएं तो आती हैं, परंतु हमें इस निश्चय में स्थित रहना चाहिए कि सच की बेड़ी डोलती है परंतु डूबती नहीं है। उनके इस शांत और निश्चिंत जीवन से प्रेरणा लेकर तथा सत्यता के आधार पर अडिग रहकर अन्य सभी माताएं, बहने तथा भाई भी ईश्वरीय मस्ती में मस्त रहते थे। वे साक्षी होकर इस नाटक को देखते। लोगों ने लखीराज भवन पर इतने पत्थर फेंके, शीशे भी तोड़ दिए, दरवाजे भी उखाड़ दिए और हंगामा भी खूब किया, परंतु वे माताएं बहने भयभीत नहीं हुई, बल्कि इन सब घटनाओं का फल यह हुआ कि संसार से उनका जो थोड़ा बहुत भी अनुराग रहा हुआ था वह भी टूट गया, और इस उद्दंडता को देखकर उन्हें यह भी हर्ष हुआ कि आज हम इन लोगों से अपनी धारणाओं में काफी आगे निकल गए हैं और अब लोकलाज तथा भय को जीतने के लिए प्रैक्टिकल शिक्षा हमें मिल रही है। इसके अतिरिक्त लोगों की अशांत अवस्था को देखकर उनके मन में करुणा भी जागृत होती। उस करुणा से भरा उनका हृदय इन स्वरों में बोल उठता। सुनो भारत के प्राणी, करो अपने ऊपर मेहरबानी, परम पिता को पहचानो, वारिस को सत्य मानो, छोड़ो गफलत और नादानी। मनुष्य है बोलता चलता मंदिर, मुफ्त बनते क्यों कामी बंदर, तुम करो ना अपनी हानि, आत्मघाती क्यों तुम बनते, क्यों ब्रह्मा ज्ञान न लेते, बनो योगी जगत है फानी। देह का अभिमान न रखना, देही अभिमानी नित्य बनना, चलते फिरते तुम बनो ध्यानी।
अब इस भवन से स्थानांतरित होकर सभी कन्याएं माताएं तथा भाई ओम निवास नामक बिल्डिंग में चले गए। ओम मंडली का सत्संग आदि भी सब वहीं होने लगा। बच्चों बच्चियों को भी लौकिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा वहीं पर मिलने लगी। इसके बाद अब एंटी ओम मंडली ने क्या किया, यह अगले भाग में सुनिए।

0: दोस्तों, अक्सर जब हम घूमने जाते हैं, हम कौन सी जगहों का सिलेक्शन करते हैं अपने लिस्ट में घूमने के लिए? या तो समुन्दर के किनारे जाना पसंद करते हैं, या जंगलों आदि में जाना पसंद करते हैं, या किसी ऐसे तीर्थ स्थान पर जाना पसंद करते हैं जहां पर मन की शांति मिले। ऐसे ही कई स्थानों में से एक होता है पहाड़ों पर जाना। मैं आपको क्या समझाऊं पहाड़ों पर जाने का सुख क्या होता है, क्योंकि आप तो स्वयं ही पहाड़ों की गोद में रहते हैं, माउंट आबू में रहते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पहाड़ की जो पूरा विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, हिमालय की पहाड़ियों की, और उन पहाड़ियों की गोद में बसा हिमाचल। हिमाचल के एक बहुत सुंदर से प्रांत में आज हम आपको लेके जाने वाले हैं, जिसका नाम है सिरमौर। जैसा कि नाम है सिरमौर, अर्थात सिर का जो मुकुट है, ऐसे ही संस्कृति के ताज में आज हम आपको लेकर के जाना चाहेंगे। ये सिरमौर जो है, ये भारत की संस्कृति का सिरमौर आज एक विशेष व्यक्ति की वजह से बना है। आज हम मिलने जा रहे हैं श्री विद्यानंद सरेख जी से, जो कि राजगढ़ के सिरमौर जिले से हैं, जो लोक संस्कृति, लोक साहित्य, लोक नृत्य और लोक गीत को लेकर के अपने जीवन को उन्होंने ऐसा संजोया है कि आज उनका जीवन हमारे लिए एक मार्गदर्शक बन चुका है और यशस्वी भारत कार्यक्रम का हिस्सा। आइए मिलते हैं विद्यानंद सरेख जी से, जिन्हें भारत सरकार ने 2022 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। तो विद्यानंद सरेख जी, आपका रेडियो मधुबन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार जी, धन्यवाद जी। ओम शांति।
0: ओम शांति। कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ जी, ठीक हूँ। 85 साल पूरे होने को जा रहे हैं। ठीक है, अभी वक्त ना हो आपसे बात करने का।
0: जी, हमें भी आपसे बात करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपके जैसा एक विद्या का पुजारी और पहाड़ों से आने वाला, जिनका हृदय बहुत साफ, कोमल और शुद्ध होता है, उनसे हमें बात करने का मौका मिल रहा है। और आपको ये जानकर के खुशी होगी कि रेडियो मधुबन भी पहाड़ों में ही बसता है, क्योंकि शांतिवन, जहां पर रेडियो मधुबन का केंद्र है, वहां और आसपास के माउंट आबू के जितने भी हमारे श्रोता साथी हैं, वो भी अपने साथ एक पहाड़ी दिल लेकर के चलते हैं, जो कि हम सब जानते हैं। दुनिया भर में हर कोई कहता है कि पहाड़ी लोग बहुत अच्छे होते हैं। और तो आज एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक आवाज पहुंच रही है, ये देख करके बड़ा मजा भी आ रहा है और आपसे मिलने का अलग खुशी भी है हमें।
1: असल में इन पर्वतों में युगों की, सदियों की विरासत छुपी है। वो सांस्कृतिक परंपरा हो, धार्मिक परंपरा हो या सामाजिक दृष्टिकोण हो, लेकिन इन कुछ बची है और उसको विरासत में हम बरकरार रखने की देव परंपरा के साथ जुड़े हैं।
0: जी, तो विद्यानंद जी, मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा। जैसे कि आपने कहा, संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर, आप पहाड़ों की कहानियां जन जन तक पहुंचाते हैं, लेकिन आपकी कहानी हमें सुनने का मन है। हम सुनना चाहते हैं आपकी कहानी, आपकी जुबानी। जब आपने कहानियां सुनना शुरू किया, आपको कैसे उन कहानियों ने प्रेरित किया, आपका बचपन कैसा रहा, हम सुनना चाहेंगे आपकी कहानी, आपकी जुबानी। कैसे शुरुआत हुई आपके सफर की?
1: असल में कहानी तो बड़ी लंबी है, और लेकिन ये जरूर है कि ये सांस्कृतिक परिवेश और परंपराओं से जुड़ा मेरा जीवन रहा है। 4 वर्ष से लेकर के मन संभाला है, और उसके बाद निरंतर शिक्षा काल में भी, और जब शिक्षा के बाद मुझे सरकारी नौकरी में अध्यापन का कार्य मिला उस वक्त भी, फिर जब सामाजिक कार्य में मैं 40 वर्षों से निरंतर रहा, उसमें भी निरंतर मेरा प्रयास रहा है, जिसमें मैंने कम से कम 35 पुस्तकें हिमाचल प्रदेश के, जो गिरी नदी बहती है, बड़ी पवित्र धारा है, इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है, और सतयुग की ये नदी है, सतयुग में, और ये गाथा गीतों में है हमारी है। सतयुग में एक साधु स्वर्ग से गंगा जल लाया था, और वो यहाँ पर कोटखाई और युबल है, दो शिमला क्षेत्र के तहसीलें हैं, उनके मध्य एक उपरधार है। आज भी वहां पर गिरी गंगा का मंदिर है। मैं तो गिरी गंगा पर भी काम कर रहा हूँ, तो ये वहां पर उसका कमंडल गिर गया, और उस बड़ी आवाज आई कि गिरी गंगा, और ये गिरी गंगा नाम थी, गिरी गंगा गिरी थी। और वो अब वो कहानी तो ये है, ये फिर वो बहती हुई यमुना में डाक पत्थर में मिलती है, और इसके दोनों ओर हमारा सिरमौर जनपद है, सिरमौर का एरिया भी है, और आज शिमला, सोलन और कुछ ये आपका ठियोग का एरिया, ये सारा दूसरी तरफ ही है, गिरीवार और गिरीपार में, ये दोनों ओर का क्षेत्र है और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश की को हम प्राकृतिक दृष्टि से तीन भागों में विभक्त करते हैं। एक है ये गिरी गंगा का या महासुवी क्षेत्र, और दूसरा है डोगरी बोली का क्षेत्र जो कांगड़ा हमीरपुर के क्षेत्र है, चंबा के क्षेत्र है, मंडी के क्षेत्र है, और तीसरा है वहां पर डोगरी का प्रभाव है, और तीसरा है भूटी बोली का प्रभाव जो लामाओं का है वो है जनजातीय क्षेत्र किन्नर और क्या कहते हैं लाहौल स्पीति। तो इन तीन प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिवेश में हिमाचल प्रदेश की अमूल्य धरोहर है। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ अपने क्षेत्र की, वो जहाँ पर मैं हूँ और जहाँ मैंने लोक साहित्य पे, लोक गीतों पे, लोक नृत्य पे, लोक नाट्य पे और साहित्य पे के विभिन्न पहलुओं पे, उपन्यासों पे काम किया है, तो वो क्या कहते हैं एक धरोहर है। और शायद और फिर अनुवाद भी किए हैं, गीता का अनुवाद किया है, भर्तृहरि त्रिशतक का अनुवाद किया है, रविंद्रनाथ टैगोर की 51 कविताओं का गीतांजलि का अनुवाद किया है, और वो क्या कहते हैं अब मैं 4 वेदों का सिरमौरी में अनुवाद कर रहा हूँ। ये तो छोटे छोटे ऐसे काम है जो मेरे निरंतर चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मेरे साथ एक संस्था जुड़ी है जो निरंतर हम जो कुछ सोचते हैं, लोक संस्कृति की खोज करते हैं, उसको प्रैक्टिकल रूप देते हैं वो, और वो भी 22 साल से है, और वहाँ पर भी गुरु शिष्य परंपरा चली हुई है। उस गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन भी मैं भली प्रकार भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से कर रहा हूँ, और इसी दौरान मुझे माउंट आबू आने का भी मौका मिला, और मैंने वहाँ हमें वहाँ पर मेरा बहुत सा जो सम्मान है वो यहाँ है, और मैं अत्यंत प्रभावित हुआ कि ऐसी संस्था है ये जो धार्मिक मतभेदों से आपसी जिस तरीके से आज एक कष्ट चली हुई है विभिन्न समुदायों में, धर्मों में, और क्या कहते हैं और कुछ उसका प्रचार का गलत वो व्यवस्था हो रही है, उसके लिए सही मूल्यांकित रूप से संदेश आज ये संस्था विश्व को पहुंचा रही है। ब्रह्म कुमारी है एक एक दूसरा सौभाग्य हमारा। तो ये छोटी छोटी बातें तो ये है, लेकिन जहाँ तक लोक संस्कृति के माध्यम में लोक संस्कृति की, इसलिए इस गिरी नदी के किनारे ही क्या कहते हैं ये तो ये सौभाग्य हमारा कि इसी के किनारे महाराज बलि को बलि सौवा यज्ञ एक ही राजा बलि था जो धर्म के रास्ते से स्वर्ग का स्वर्ग पर विजय पाना चाहता था। तो वो जब सौवा यज्ञ यहाँ मेरे गांव के नजदीक बलग गांव है, बलग बलि गया था जहाँ, तो वहां पर त्रिवेणी बनती है, उस वक्त की वास्तविक त्रिवेणी वो है, वो गिरी गंगा ऊपर से निकलती थी, पाताल नदी टूड़ेश्वर है यहाँ पर सबसे ऊंचा 12-13 हजार फुट की ऊंचाई का, वहां से पाताल नदी निकलती थी, और साथ में उसके साथ ही पारबलक के साथ 7 स्वर 7 पानी, ये नेचुरल बात कह रहा हूँ, 7 पानी निकलते हैं, वहाँ स्कूल भी है एक तुंगेश जगह में, वहां से 7 स्वर निकलते हैं और वो वहाँ बलग में मिलते हैं, और वहाँ ये बलग में उसने सौवा यज्ञ करना चाहा, लेकिन देवताओं ने कहा भी अगर ये राक्षस के हाथ में दिए ऐसा है किंवदंती है, हम तो ये कह रहे हैं, लेकिन जो भी हो, लेकिन कहते हैं बामन अवतार वहां पर बामन बनके वहां आए और उन्होंने राजा बलि को पाताल का राज्य बलग में दिया है, और वहीं पर ये इसी गिरी गंगा के किनारे त्रेता युग में परशुराम जी का अवतार हुआ, हमारे क्या कहते हैं 24 अवतारों में, तो वो मार रेणुका और जमदग्नि की तपस्या के फलस्वरूप गिरी गंगा के पास ही एक बड़ा तालाब है जो माँ रेणुका का एक तपस्थली है और बिल्कुल मनुष्य के आकार का है उस समय, और वहीं ऊपर वो जामू का टीमा है, जमदग्नि वहां पर तपस्या करते थे, वहीं परशुराम जी ने एक शिला पर तपस्या करके त्रेता युग और संदेश दिए है। ये त्रेता युग की घटना भी इसके किनारे है। द्वापर में इसी गिरी गंगा के की राह से, यमुना की राह से, कुरुक्षेत्र के मैदान से ये कौरव समर्थक सैनिक और पांडव समर्थक जो है सैनिक थे, शाठड़ और पाषण नाम थे, वो इधर आए और यहाँ की मूल जातियों पर अपना अधिक वो क्या कहते हैं अधिपत्य जमा करके यहाँ पर वर्षों तक उन पर आपस में भी लड़ते रहते, पहने तीरते, और उस काल की द्वापर काल के बाद की असंख्य गाथाएं गीते हैं, उनमें ये सारी ये गिरी गंगा का भी ये बताऊं कि उन लड़ाई की हारूल बार साका पुआरा पडवाइन रामायण ये सारी ये मैंने संकलन किया है। और तो क्या कहते हैं ये सारी लोक शैली की जो लोक परंपराएं थी हैं। और फिर नेचुरल इस गिरी गंगा के दोनों ओर असंख्य देवी देवता शिरगुल हो महातु देवता हो गुग्गा पीर हो ब्रजेश्वर हो क्या कहते हैं डोम देवता हो मतलब ये सारे सैकड़ों देवी देवता आज भी असंख्य मंदिर है और उनके मंदिर है। और फिर प्राचीन वास्तुकला से आज भी यथापत विरासत में है। तो इस क्षेत्र में मुझे काम करने का मौका मिला। खैर मैं तो अभी और भी काम कर रहा हूँ और लेकिन मैं इसके जो परम शांति के लिए जो एकाग्रता की पहल जो ये ब्रह्म कुमारियों ने की है वहाँ मुझ पर मेरे तो अपने बैठक में लगा हुआ मैं नित्य रोज उसके सामने दो मिनट के लिए शांति क्योंकि हमारी एकाग्रता नहीं होगी तो कोई हम न ईश्वर के की आराधना कर सकेंगे। और क्योंकि हम भटके हुए हैं सभी लोग तो ये छोटा सा ये जीवन है। अब इसमें मेरी पुस्तकें में कुछ तो छपी भी है लेकिन कुछ छपी नहीं मैं तो एक गरीब आदमी हूँ कोई ऐसा है नहीं अमीर नहीं हूँ लेकिन मेरा प्रयास है कि शायद आने वाली पीढ़ी मेरी बैठक में बैठे हैं ये पद्मश्री वगैरह ये यहाँ लगा है जो कुछ वो कई पुरस्कार मेरे बैठक में लगे हैं तो डॉक्टर वाई एस परमार भी इस बैठक में कई बार बैठे अब क्या कहते हैं तो कहने का तात्पर्य ये है कि उन सब का प्रभाव मेरा निरंतर प्रयास मुझे नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है लेकिन मुझे मंजिल की ओर रास्ता लेते जाते हुए आपके क्या कहते हैं मार्गदर्शन ऐसा मिला कि हमें क्या कहते हैं माउंट आबू में भी जाने का मौका मिला और आज आप दोबारे मुझे माउंट आबू पहुंचा रहे मैं आपका आभार भी
0: आभारी तो हम हैं आपके विद्यानंद जी कि आपने हमें अपने जीवन कहानी के बीच में आपने उस पूरे प्रांत की कहानी सुना दी और साथ ही साथ हमें इतिहास और हमारे उन सांस्कृतिक धरोहरों की ओर हमारा रुझान आपने कराया जहाँ जरूरी है कि आज के जमाने में जो लोग इतनी दौड़ भाग की जिंदगी जीते हैं कभी बैठकर के इत्मीनान से जब ये कहानियां वो सुनते हैं तो जैसे सुकून मुझे महसूस हो रहा है मैं समझता हूँ उन्हें भी ये सुकून महसूस होगा। लेकिन जब आप कहानियां कह रहे थे कि कैसे कमंडल गिरा और उसकी वजह से गिरी गंगा नाम आया और कैसे राजा बलि की कहानी भी आपने इसमें जोड़ी और भी कई सारी बातें लेकिन मुझे जानना है विद्यानंद सरे की कहानी जब वो बचपन में पैदा हुआ या जिस परिवार में पैदा हुआ कैसा परिवेश था क्या संस्कार थे किन चीजों ने आज के विद्यानंद सरे को प्रेरित किया कि वो इस रास्ते पे निकले।
1: ये जी मैं एक गरीब परिवार में मेरे माँ बाप एक माँ थी एक बाप है पिताजी मैं नौवीं कक्षा में मैं पहला यहाँ तीन चार पांच छह पंचायतों का एक युवक था जिसने पहली बार यहाँ मैट्रिक पास किया फिर आगे ग्रेजुएशन भी चलो वो तो एक बड़ी लंबी कहानी है। यहाँ पढ़ाई नहीं होती थी फिर नहान जाना पड़ता था 200 किलोमीटर या शिमला जाना पड़ता था 100-150 किलोमीटर थी उस वक्त ऐसी हालात थी। पिताजी जो थे मामूली सी सीने का काम करते थे जमीन थी हमारे पास जमीन पे काम करते थे लेकिन मुझे वो पढ़ाना चाहते थे और डॉक्टर बनाना चाहते थे लेकिन वो बीच में मेरी शादी का उन्होंने नियत कर दी मैं 9th में पढ़ता था जब और उन्हीं दिनों 10 प्रविष्टि क्या कहते हैं चैत्र में उनकी में वो 26 की शादी थी 10 प्रविष्टि चैत्र में वो उनका स्वर्गवास हो गया। मेरा सारा सारी व्यवस्था जो उनकी शादी थी वो क्यों अड़े रहे क्योंकि शायद उन्होंने जाना था। फिर माता जी ने जैसे तैसे मुझे पढ़ाया हम दो ही रहे माँ बेटा और फिर किस तरीके से शिक्षा हासिल की बलसन में जा करके थी बलसन में जा करके तो फिर आकर के 59 में सीधा जैसे ही मैट्रिक किया मुझे नौकरी मिल गई थी 63 में मैं प्राइवेट पढ़ना शुरू किया ट्रेनिंग ये तो बड़ी फिर लंबी कहानी है लेकिन इस परिवेश में रह करके मेरा बचपन से ही नृत्य के लिए माँ बाप के को भी रुचि थी संगीत से और उनका प्रभाव उनका आशीर्वाद भी मिला। और पहले तो अपने मनोरंजन के लिए क्या कहते अपनी इसके लिए कि भाई उनको रिझाता था मैं नाच करके गा करके जो जो फूटे फूटे गीत थे लेकिन बाद में फिर मंच मिल गया गांव का करियाला हमारा लोक नाट्य है और वहां से वहां पर भी क्या कहते सैकड़ों लोगों में मुझे वाहवाही मिलने लगी और मेरा और इसी तरह से मैं 57-58 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से मुझे गाने का मौका मिला। आवाज सुरीली थी, अब तो खैर आवाज भी खो चुका हूँ, लेकिन वहां पर सुप्रू हाउस में डॉक्टर केसकर ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे और परमार यहाँ से एमपी बन करके गए थे, क्योंकि 55 में यहाँ विधानसभा खत्म हो गई थी और उन्हें पार्लियामेंट में भेजा गया था। वो सुप्रू हाउस में मुझे उनके सामने शिमला से ऑल इंडिया रेडियो से एक बड़ी टीम गई थी, तो वहां पर तो उन्होंने डॉक्टर परमार ने मुझे हाथ पकड़ करके केसकर हाथ में देखे थे, मिस्टर केसकर विद्यानंद जो है हमारी कल की स्वीकृति की धरोहर है। खैर ये तो बड़ी लंबी कहानी है, मुझे तो मुसीबतें झेलनी पड़ी और लेकिन क्या कहते हैं जैसे तैसे आगे बढ़ते, फिर 17-18 साल की नौकरी भी छोड़ गया क्योंकि राजनीति वालों ने मुझे उत्साह दिया, उससे भी सारा किया कराया खत्म, बच्चे थे 4-5 आदि दर्जन, वो कैसे पले, खैर जमीन है भगवान की कृपा से। ये सारी कठिनाइयां झेलते हुए मैं निरंतर लिखने का काम करता रहा और मेरे लिखने का कई बार पहाड़ी में मजाक भी होता था, ये विद्यानंद तो नाटियां लिखता है वो, और किसको पता था भी ये नाटियां भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री मुझे यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करे, मुझे नहीं भी कैसे, मेरे मैंने ना अप्लाई किया ना मैंने कोई लॉबिंग की, तो ये लंबी कहानी। इसके अलावा भी यहाँ दर्जनों प्रदेश के जिला के इसके और फिर विदेश में भी जाने का मौका मिला, हमने विदेश में भी अपने साथ जो हमारी टीम थी उनकी वो किया है। तो ये तो ये कहानी, लेकिन उसके साथ साथ हम साथ साहित्य को लोक साहित्य को उभारते रहे और हिंदी में भी बहुत सारे लोक साहित्य बहुत से विलुप्त हो रहे हमारे नृत्य, उनको हमने कोशिश की है कि हम उसको लिपिबद्ध किया, क्योंकि यहाँ जो है ये जो हमारा गिरी पार्क कहते हैं, हमारे ट्रांसगिरी एरिया ऑफ द गिरी गंगा, ये आज जनजातीय बन गया है भारत सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार हाटी समुदाय है। ये सारा अनादिकाल से घुमंतू था और क्या आज भी गडरिये गर्मियों में टूरधार के जंगल में जाते हैं और सर्दियों में गर्म इलाकों में नोएडा बोलते उधर को जाते हैं। तो उनके उनके कृतित्व को देवी देवताओं की विभिन्न परंपराओं को उसको भी सजोना, फिर जो वास्तुकला है यहाँ की घरों की मकान की देवताओं के मंदिरों की, उसका भी संकलन मैंने किया है और सुरक्षित रखा है ताकि वो परंपरा निहित रहे। कोशिश ये की है हमने कि उस परंपरा को उस वास्तुकला को मूर्तिकला को यहाँ पर जो इलाके के लोग हैं मुझे बड़ा सम्मान देते हैं ताकि बने, क्यों कि हमारे हमारा जो जीवन है माँ बाप के संस्कारों से वहाँ घर के परिवेश से संस्कार से संस्कृति की ओर जाते हैं, संस्कृति सभ्यता को पैदा करती है और सभ्यता से हमारा आज का परिवेश बनता है। लेकिन जब उस सांस्कृतिक परिवेश में छाया पड़ती है पाश्चात्य वो क्या कहती है, जैसा आज पढ़ रही है धर्म पर पढ़ रही है, धर्म में साधु महात्मा लोग क्या कर रहे हैं, कोई झिंगुड़ बाबा है कोई कर रहा है, देश को जब सही रास्ते में ले जाना है वो नहीं, लेकिन हमारे लोग अभी भी आस्था रखते हैं, जब मंदिर के जो बात होगी उसको आदेश समझ करके हम अपनी उसका पालन करते हैं, वो चाहे शिव का मंदिर है चाहे शक्ति का मंदिर है चाहे काली का मंदिर है, लेकिन श्रद्धा से उसका पालन किया जाता है। ये ट्रांसगिरी एरिया जो है ना, क्योंकि सिरमौर जो मैं आपको बताऊं ये कालसिया से लेकर के आके तरहुज तक उस गिरी गंगा के क्षेत्र से आगे तक की ये सिरमौर जो था ना, सिरमौर एक साम्राज्य था और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका नाम सिरमौर सिर का मौर्य सिर का ताज रखा था, हिंदू ने उनका साथ दिया था पाटलिपुत्र विजय पर, तो तब से लेकर ये राज्य था। ये कोई छोटी रियासतें तो मुसलमानों के टाइम हुनों के टाइम लेना देना जब रियासतें आई और कंपनी के समय में अंग्रेजों के समय में, लेकिन उस समय ये साम्राज्य सिरमौर था और आज भी सिरमौर जो है ना एक जिला जनपद के रूप में प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को यथावत रखा है।
0: और आपने सिरमौर को सिरमौर बना के रखा है क्योंकि सिरमौर का सिरमौर बने रहने के पीछे आपका बहुत बड़ा योगदान है। अगर इन कहानियों को इन धरोहरों को कोई सामने ही ना लाए तो जनमानस तक इन बातों को जानना, इनके बारे में रुचि रखना, इनको अपने जीवन में धारण करने की बात ये हो ही नहीं सकती। इसलिए जो आपका योगदान है, आपने बार बार कहा कि मैं बहुत छोटा सा काम कर रहा हूँ बट हमारा दिल और आपका दिल जानता है कि कितना महत्वपूर्ण कार्य है। मेरे को एक सवाल ये था कि जब आपने कहा कि बचपन में ही आपको नृत्य का और कला के प्रति रुझान था, अक्सर ये देखा जाता है कि माँ बाप या जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, या स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, या जो दोस्त आदि होते हैं, वो सब कुछ और प्रकार की विधाओं को ज्यादा सम्मान या ज्यादा प्रेरणा देते हैं। अगर कोई कहे कि भाई मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं। कोई कहे मैं टीचर बनूंगा, तो बोलते हैं हाँ ये भी अच्छी बात है। अगर कोई कहे मैं किसानी करूंगा, तो बोलते हैं अच्छा ठीक है भले कर लो। लेकिन जब कोई कहता है कि मैं कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो सब कहते हैं अरे बिल्कुल मत करना, वहां तो कुछ भी नहीं रखा है, तुम्हारा तो घर ही नहीं चलेगा, आदि आदि बहुत सारी बातें होती हैं। आपको भी ऐसी बातों का सामना करना पड़ा होगा, या कैसा था आपका वो समय जब आप इस विधा की तरफ झुक रहे थे, या लोक संस्कृति, लोकगीत, इनको आप अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाना चाहते थे, तो वो कैसा था आपका सफर?
1: मैं आपको एक बात बता दूंगी, मैं प्रैक्टिकल आदमी, मैं तो खुद गाता हूँ, अगर लिखता हूँ तो खुद लिखता हूँ, किसी की चोरी नहीं करता, अगर नृत्य करता हूँ तो खुद नृत्य और अभिनय की जो ट्रेडिशन है हमारी, मैं ये आपको ऐसे नहीं बता रहा कि मैं तो क्या कहते हैं मतलब साहित्यिक तौर सिद्धांतिक तौर पर, मैं तालों के बारे में मैं जो हमारे लोक ताल है उस पर भी मैंने काल और ताल एक पुस्तक लिखी है और छपी तो है नहीं, लेकिन उन तालों को बजाना भी जानता हूँ और उनकी प्रस्तुति भी करना जानता हूँ और उसके पीछे क्या लॉजिक है हमारा वो भी, क्योंकि मैंने हर काम के डेप्थ पर जाकर के काम किया है, फिर अलग अलग विधाएं खोजी है, गायन की भी अलग अलग विधा, नाटी के भी चार रूप हमने खोजे है, 8 मात्रा, 12 मात्रा, 16 मात्रा और 6 मात्रा, ये हमारी यहाँ की परंपरा है, उसमें असंख्य गीतों को असंख्य तर्जों को किया और उसका संकलन किया है, तो कहने का तात्पर्य, फिर नाट्य की बात है तो नाट्य में अभिनय भी, नाट्य में अभिनय की निर्देशन भी और लिखना भी, तो बाल नाटक भी वो भी लिखे हैं और कुछ मेरा एक जो यहाँ झांको अजबा का पवाड़ा है, आपके राजस्थान में भी पवाड़ा जो है ना तो पवाड़ा नाम से है, हमारे यहाँ झांको अजबा का पवाड़ा ऐसा ही ऐसा ढांचा था जो सदियों पुरानी वैमनस्य था, 1866 राजपूत और 1818 उनमें युद्ध था, वो भी यही सिरमौर में गिरी गंगा के किनारे क्या कहते कोटला में एक सती झांको ने अपना बलिदान दे करके इसको खत्म किया और

0: इस गिरी गंगा के ही किनारे त्रिविधा नृत्य, नृत्य नाट्य क्रीड़ा। एक छोटा नृत्य वो तीर कमान का, वो पैना तीर उन्होंने काट दिया, उन्होंने हार जीत खत्म कर दी। वो क्या कहते हैं उसने, बोलो जी मेरा बलिदान जो है बराबरी के लिए होगा, और अपने आप वो अपने पति के साथ जल गए। ये बड़ी लंबी कहानी है, और तो ये ऐसे ऐसे गाथा गीत इनका संकलन किया है, और इस पर मैंने मेरा टेलीकास्ट रेडियो से भी, क्या कहते हैं दूरदर्शन से भी, जालंधर से, दिल्ली से समाधान नाम से वो क्या कहते हैं नाटक वो हुआ है। तो मतलब ये थोड़ी थोड़ी बातें ऐसी कह रहा हूं मैं कि मैंने अगर थड़े की बात कही है, एक युद्ध का होता था इनका, तो उन वहां जाकर के उसको देखा है उसमें क्या है। हर गांव में जाकर के, वो तो सौभाग्य ऐसा भी मेरी पोती पीएचडी कर गई सिरमौर जनपद के गीतों में, मौसमों के अनुसार लोक नृत्य लोक संगीत का विश्लेषणात्मक अध्ययन, अभी उसका पीएचडी पूरा हो गया, तो इस वजह से मुझे उसके बाजार से भी जाना पड़ा। तो क्या कहते हैं, बहुत से स्कॉलर आते हैं यहाँ पर, मैं इस प्राचीन संस्कृति को उभारने के लिए निरंतर हूँ, लेकिन इसके साथ साथ जो ये धर्मांधता है हमारे, कट्टरवादिता है, ये ब्राह्मणवाद तो कहेंगे नहीं इससे, और ये जो साधुवाद है इससे तरह थोड़ी सी परहेज करके मुझे आपकी जो ये संस्था है इससे लगाव हुआ है, कि कम से कम कोई संस्था तो ऐसी है जो निर्लेप है, और कोई संस्था तो ऐसी है जो समग्र सबके कल्याण के लिए बिना किसी कशमकश और रस्सा करती थी। क्योंकि अगर आप ईसाई धर्म को लोग भी, वहाँ भी प्रोटेस्टेंट और ब्लडी मेरी जैसे हालात हुए हैं, दुनिया के सभी धर्मों ने किया है, यहूदियों का वही हाल रहा है, तो कहने का तात्पर्य है भी लॉटरी होती रही है वो, लेकिन एक ऐसी संस्था जो शांति और परम श्रद्धा के साथ लोगों को इकट्ठा करे और फिर ये सोचे कि हमारा जन कल्याण हो, ये हमारी सनातन धर्म की परिपाटता का सही रूप।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस अनूठे प्रयास को पहचाना है और इसका आप सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस चीज का भी मैं आपको धन्यवाद कहूंगा कि आपने शरीर की आयु होते हुए भी आप अपना कार्य निरंतर करते रहते हैं, आप रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, युवाओं के साथ गांव-गांव जाकर के उस गांव के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। ये करने के लिए बहुत जज्बा चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए और बहुत धैर्य चाहिए। इतना धैर्य आप अपने अंदर कैसे लाते हैं?
0: मैंने आपसे पहले कह दिया था कि मैं प्रैक्टिकल आदमी, मैंने बचपन से लेकर के, मेरे साथ बड़ी गंदी सोसाइटी होती थी नाच गाने वालों, मैंने कभी शराब का स्वाद नहीं लिया, ना मीट खाता हूँ, और पूरा परिवार मेरा ऐसा है कि ना मीट खाता है ना शराब पीता है, और कम से कम 30-35 आदमी का 3 बेटे हैं, उनके भी आगे पोते भी हैं, परपोते भी। कहने का तात्पर्य ईश्वर की कृपा है, लेकिन कहने का ये तात्पर्य ये है कि मैंने पहले अपने आप अपने चरित्र को, मैं सुबह 4 बजे उठ करके योगा करता हूँ, तभी लोगों को बोलता हूँ 20 मिनट योगा करके, और मैं तभी इस तरीके से जिंदा हूँ, मेरे साथ ही सब तुर्की हड्डियां कीर्तन बोल रही है, मैं भागता हूँ दूर जाता हूँ। आजकल तो मेरे ऊपर तो हम भीगे, एक जगह मैं चीफ गेस्ट था तो वहाँ भीगे, तब से मैं थोड़ा सा अस्वस्थ हो गया था, लेकिन आज सौभाग्य आपसे मिला और ऐसे स्थान से मिला कि हम जहाँ देख करके भी आया है, और आप विश्व में जो ऐसा काम कर रहे हैं, ये वास्तव में हमारे राष्ट्रीय धर्म की सही एक विश्लेषणात्मक बोलो या अध्ययन पूर्ण बात बोलो या ये बोलो कि सही दृष्टिकोण है, और जिससे जो लोगों को भी कुछ ना कुछ पता चलेगा कि हम किस तरीके से अपना जीवन यापन।
1: जो आपने ये बात कही कि आपने जीवन में संयम नियम और अनुशासन को बहुत गहराई से जीवन में अपनाया है, और जो आपने बात कही कि केवल आज का नहीं, एक लंबे समय का आपने अभ्यास किया है इन तीनों गुणों का, जिसकी वजह से आज आप इतने स्वस्थ हैं और आज आप इतने सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, थकान नहीं आपके शक्ल में, इतनी रौनक है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें सीखना चाहिए आपसे, सभी श्रोता साथियों को भी मैं ये कहूँगा कि जैसा कि इन्होंने कहा, जीवन का एक नियम होना चाहिए, एक अनुशासन होना चाहिए और उसमें सततता होनी चाहिए कि हम रेगुलरली उस चीज को कर रहे हैं, आज किया कल नहीं किया। ऐसे उतार चढ़ाव में क्या हो जाता है कि हम खुद भी नहीं समझ पाते कि उससे कुछ परिवर्तन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम सतत करते हैं किसी चीज को तो उसका प्रभाव जीवन पे दिखता है, जैसे कि विद्यानंद सरेख जी के जीवन से दिखता है। उन्होंने न केवल साहित्य के साथ, कला संस्कृति के साथ जुड़े रहने को अपने जीवन का ध्येय बनाया, लेकिन उसको करते हुए उन्होंने कईयों के जीवन में उस संस्कृति का अलग जगाया है। क्योंकि मैं और आप दोस्तों जब शहर में जीने लगते हैं और शहर के दौड़ धूप में अपने को एकदम मच देते हैं, तब हमारे पास यही संस्कृति होती है जो हमें एक ठंडी छांव और एक ठंडी हवा का महसूसता कराती है। विद्यानंद सरेख जी, आपने बोला कि अब आप बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं इसलिए आपकी आवाज भी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कभी ना कभी आप गुनगुनाते तो जरूर होंगे खुद के लिए। क्या आज आप हमारे लिए कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? कुछ आप गाना चाहेंगे, कुछ गुनगुनाना चाहेंगे?
0: तो बोलोगे तो मैं गाऊंगा, एक भजन गा
1: बिल्कुल
0: लेता।
1: हम चाहेंगे कि आप सिर आप कोई भी ऐसा भजन गाएं जो कि उस उन पहाड़ों से निकल के आता हो।
0: वो दुखो राताना बना तो ए इशरा लाया रे, घड़ी पले माया ममते दा जीवना मान छोरा सजाया रे। दुखो दुखो राताना बना हरी बांदरी ये धरती है ऊंची गायणी दे तारे पे, हरी बांदरी ये धरती है ऊंची गायणी दे तारे बे, नाचो तारो दे सात समुंदरो, नाचो तारो दे सात समुंदरो, नदी खाड़ो रे फवारे बे, पापे जी उठा देव गवाए तेरे बद के माया रे। दुखो दुखो रा ताना रुबाना तो ए इशरा लाया रे, दुखो दुखो रा ताना रुबाना। चंदो सूरज चौधुरा के जोड़ू दुई ने हाथों बे, तेरी साइया कुण जी बोलिए लाऊ गुणोरी बातो बे, आखे देखो तेरे मुर तो कहीं मने ना समाया बे। दुखो दुखो राताना रुबाना, ये तो धार्मिक मैं आपको श्रृंगार श्रृंगार की
1: जी। इस गीत का थोड़ा सार भी अगर आप समझाएं, मैं तो समझ रहा हूँ लेकिन हमारे श्रोताओं को अगर आप सार में समझाएं तो भी बड़ा अच्छा होगा इस गीत का सार।
0: तो मतलब ये सुख दुख का ताना ही भगवान तेने लगा रखा है, और ये सारी संसार सुख दुख के ताने और बाने में जो हमारा जैसा क्या नाम कपड़ा बुनने के लिए ताना बाना लगाते है ना जी, तो उसमें उलझी हुई है। लेकिन और उसके साथ माया ममता के साथ ऐसा उलझा रहा है रखा है कि इंसान जो है ना अपने आप को भी भूल जाता है, कई बार घर को घर गृहस्थ को भी भूल जाता है और बहक जाता है दूसरी ओर भाग रहे, और यही कारण है कि पाश्चात्य की ओर नजर लगा करके हम अपने आप को बर्बाद कर। थोड़ी थोड़ी बातें है ना जी, ऐसी बहुत पहले लिखा, ऐसे मैंने धार्मिक भी लिखे, श्रृंगारिक भी लिखे, हास्य के भी लिखे और लिखे है, और वो अलग अलग वो पहलू है उन पुस्तकों का। तो लेकिन मैंने छपे इसलिए नहीं सके, मेरे पास साधन नहीं था, और कोशिश करता हूँ गाए रेडियो से, मेरे बहुत से लोगों ने भी गाए, मैंने भी बहुत से रेडियो से गाए, मैं भी हाई था रेडियो का, ऑल इंडिया रेडियो शिमला का, तो क्या कहते बहुत अरसे तक जब गला बंद हो गया तब क्या करना, तो पर यही एक उस वक्त।
1: लेकिन आज भी आपके आवाज में वो क्या कहेंगे, एक ओरिजिनलिटी है आपके आवाज में, वो एक अनोखापन है जो कि सुनते साथ ही मैं खुद को ऐसे अनुभव कर रहा था कि मैं हिमाचल की या हिमालय की किसी छोटे से गांव में बैठ करके चाय पी रहा हूँ, खिड़कियों से देखते हुए झरने नदी, मैं जैसे आपके वहां पहुंच गया था, आपकी आवाज में वो जादू है।
0: ये यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है ये हमें प्रेरणा देता है इसको अध्ययन करके। यहाँ ये देवी देवताओं का तभी पास है, और हजारों वर्ष के यहाँ प्राचीन मंदिर है, मेरे गांव में हजारों वर्ष पुराने मंदिर है, और मूर्ति कला का एक अनूठा वो है। अब उन्होंने किस आस्था से किस तरह से बनाया ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हमें हमारे लिए ये प्रेरणा है कि हम आस्था से वहाँ बैठ करके श्रद्धा से अब एक एकाग्रता वहाँ पर अपनी जता करके और ये सोच करके चलते हैं कि हम उस प्रभु जो क्या कहते हैं जिस जो निराकार है, निर्विकार है, निराधार है, उसकी आराधना किस तरीके से हम करें। चलो ये तो बहुत लंबा वो है, लेकिन आज मैं मुझे मुझे तो पेंशन भी कोई नहीं मिली, और ना मैंने कभी भगवान ने चला रखा है जैसा काम घर का चला रखा है, मेरा भी चला रखा है, सारे परिवार का भी चलता है, बाग बगीचे लगे हुए, अब तो खैर भगवान सब कुछ ठीक है, लेकिन मैंने आर्थिक दृष्टिकोण को देखा नहीं, तब तो मैं अच्छी खासी नौकरी ना, मैं भी डिप्टी डायरेक्टर तो रिटायर हो ही जाता, इतना मुझे पता था। लेकिन 17

0: है उनके लिए, आपका कोई संदेश है उनके लिए, या आप क्या देखते हैं उनमें, उनकी क्या जरूरतें हैं आज?
1: जी, युवा पीढ़ी आज भटक तो चुकी है, लेकिन फिर भी ये मेरा अपना ये संदेश है युवाओं को कि वो माँ बाप पिता गुरु अपने अपनी जो प्राचीन हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, धरोहर है, उस पर आस्था रखते हुए आगे बढ़े। इस पाश्चात्य जो प्रभाव हम पर पड़ता रहा उसकी नकल छोड़ करके सीधे अपने जो अपना सनातन धर्म है, जो हमारी परंपरा है, रीति रिवाज है, उनका अनुसरण करे, उस पर चले, और तो अपना भविष्य उनका सुधर सकता है, और क्या कहते हैं यही नहीं पूरा परिवार खुशहाल हो सकता है। तो ये मेरा छोटा सा परिवार है कि भाई 30-35 आदमी के परिवार में कोई किसी किस्म का बुरे व्यसन में नहीं है, तो मेरे लिए तो गौरव की बात है, कम से कम मैं इतना तो कर सकता हूँ। लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग मेरे से चुप करके जो कुछ करते भी है, चुप चोरी छिपेगी नहीं, गुरु जी आ रहे हैं अब जरा हम बोतल को दबा करके रखें तो खैर इतना भी एक बहुत बड़ा है। तो युवा अगर भटक गए हैं उनके लिए भी मेरे निरंतर प्रयास है, मैं किसी भी मंच से, किसी भी पत्रिका में, किसी भी इस तरीके से जो जो जहां पर भी बातचीत होती है वहां पर यही संदेश देता हूँ कि आइए पहले तो खुद को अपने आप को सुधारिए, क्योंकि गांधी जी गुड़ खाते थे और उनके दांत में दर्द होती थी, पर एक औरत आई कि मेरा बेटा जो है ना उसके दांत में दर्द हो रही है, कि 8 दिन बाद आना, फिर वो 8 दिन बाद ही कि तो आज अब बता दूं क्या है कि आपका बेटा गुड़ तो नहीं खाता, बोलो हाँ तो अब गुड़ नहीं खा रहे लेना, तो 8 दिन पहले बता दिया, बोलो उस वक्त मैं खुद गुड़ खाता था या मैंने भी गुड़ छोड़ दिया। तो असल में ये छोटी सी बात है, लेकिन आदर्शों को पहले खुद आपके आपको अपने व्यक्तित्व को हमको अपने व्यक्तित्व को इतना सबल बनाना है, तभी हम जो है दूसरों को के लिए आदर्श बन सकते हैं। नहीं तो आज सर्वनाश हो रहा है, धर्म का विनाश हो रहा है और कर्म का विनाश हो रहा है, आर्थिक राजनीति खत्म हो चुकी है, लोग भटक चुके हैं और हम पश्चिम की ओर इस तरीके से दौड़ रहे हैं, भाई पैसा ही कमाना है, वो क्या है। हमने देखा, मैं आपको एक बात बता दूं, बुल्गारिया में हम एक जब आ रहे थे तो वहां की जो डायरेक्टर थी विभाग की, वो हमें छोड़ने थी ऑफ करने, फिर हमने वहां से मैसेडोनिया जाना था, तो हमारे लड़कों ने कहा कि गुरुजी ने एक गीत लिखा है पहाड़ी का, यहाँ वो क्या कहते हैं हमारे साथ बुल्गारिया की एक नौजवान लड़की थी बड़ी खूबसूरत, उसके ये इनके हमारे शाबरे बाल बोलते हैं इसके, जो इनके पेड़ बाल होते हैं ना अंग्रेजों के, तो मैंने लिखा है था उसमें, उनको सुना दिया मैंने, क्या बोलो मुर्गा जो रही है बुलगार की है, तेरे शाबरे बाल हो रहे, ताई देखे हो दाढ़ी ये जियो दे चोटी ये बाल हो रही, तेरे को देख करके मन उबल गया अब क्या करने, तो वो हंसने लगे सभी, बोलो आप लिखते भी है, उसने हिंदी में बोला उस लेडी ने, मैंने कहा आप हिंदी, और हमारे बीच वो साड़ी पहन करके आती थी, कहते आपको मैं बता दूं मैंने सूरदास पर गोकुल वृंदावन में PhD की है, और क्या कहते 2 साल लगा करके वहां पर अध्ययन करके मुझे डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, और मुझे भारतीय संस्कृति से प्यार है, इसीलिए ये आपके बीच ये साड़ी पहन करके ये लड़कियां आपकी शालीन है, पर्दे में हया है, इनको शर्म है, हमारे तो नग्नता है। तो कुछ आदर्श भी होते जीवन के और उनको अपनाना जरूरी है, और ये हमारी नकल से सीख रहे हैं बाहर के लोग और हम अपने आप को भटक रहे हैं। मैं नौजवानों की बोलता, आइए अपनापन, अपना अस्तित्व, अपनी खुददारी और देश की क्या कहते हैं ताकत देते अपने आप को सुधार करके आप अपनी बात को दुनिया के सामने मनवाने की कोशिश, जो विवेकानंद ने की, जो भी आप लोग जो कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, और वो उन लोगों को भी पता लगता जा रहा है कि भाई हाँ वाकई वास्तव में ये जीवन का सही रास्ता।
0: ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि युवाओं को जरूरत है अपनी संस्कृति पर निश्चय होने की, कि इस संस्कृति पे जब मेरा निश्चय होगा तो ही मैं एक खुददार नागरिक कहलाऊंगा देश का। अगर मैं अपनी संस्कृति पे निश्चय नहीं रखता हूँ, उसको अपने जीवन में अवलंबन नहीं करता हूँ, तो मेरी खुददारी भी कम हो जाती है, और फिर ऐसा नागरिक देश को कैसे यशस्वी बना सकता है। मेरा एक आखिरी प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जब आप भारत के अलग अलग विभिन्न प्रांतों में जाते हैं, तो या फिर देश के बाहर भी आप जब जाते हैं, तो आपको ऐसा कौन सा चीज देखने को मिलता है जो आपको केवल भारत में ही देखने को मिलता है, बाकी और कहीं देखने को नहीं मिलता?
1: हमें तो जब भी गए हम, जब वो क्या कहते हैं तो बुल्गारिया में एक कॉन्सुलेट के यहाँ एट होम थे ना जी, तो उसने मुझसे पूछा हिंदुस्तान ने दुनिया को क्या दिया है, मैंने कहा गीता रामायण, बड़े बड़ी तारीख है आपको नहीं पता, जो विश्व को दिया जिस पर विश्व आज खड़ा, तो मैंने कहा आप बोलो, कहते जीरो किसने दिया, क्योंकि

0: लोग अध्ययन करते हैं कि जीरो का वो कहते हैं रिसर्च करने वाला भारत है और आज सारा इंटरनेट लेना देना जीरो पर, वो अध्ययन करते हैं और हम जो है ना हम उनके पीछे लगे हुए, उन्होंने सारी हमसे सीखा है। और आज आप लोग जो पहुंचा रहे हैं ये परम शांति और मोक्ष की बात कहते हैं वहां जा करके, तो उनके दिमाग में सही रास्ता निकलता नहीं, तो वो लोग भटक भटक चुके हैं अपने।
1: तो ये जो आपने बताया कि भारत की विशेषता रही है कि हमेशा दुनिया को दिशा दिखाने की, ऐसे भारत में भी जब आप अलग अलग प्रांतों में जाते हैं, हर प्रांत की अपनी एक विशेषता है और हर प्रांत अपने को दूसरे से ज्यादा बेहतर मानता है। शिमला वाले कहेंगे हम ज्यादा अच्छे हैं और हिमाचल में कोई और शहर वाला कहेगा नहीं हम ज्यादा अच्छे हैं। हर एक को अपना देश अपना प्रांत ज्यादा प्रिय होता है, लेकिन जब आप पूरे देश में घूमते हैं या पूरे देश में जाते हैं, कोई एक बात ऐसी जरूर आपने देखी होगी जो पूरे देश को एक बना देता है, जोड़ देता है, वो कौन सी एक बात है आपके हिसाब से?
0: देखिए मुझे तो ऐसा लगा कि पूरे देश को मुझे आपकी ये जो परंपरा है, ये ब्रह्म कुमारियों का संदेश है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि सब धर्मों में कहीं ना कहीं विसंगतियां उसका धर्म का नाम लेकर के वो, लेकिन ये कुछ जोड़ने का ऐसा प्रयास किया जा रहा है जिसमें ना ऊंच है ना नीच है, जिसमें ना जाति है ना धर्म है, जिसमें ना हिंदू है ना मुसलमान है, जिसमें एक कट्टरवादिता है ना वो क्या कहते हैं किसी किस्म का एक ऐसा गिरोह है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो तलवार लेकर के एक दूसरे के पीछे पड़ा है कि ये मानो धर्म नहीं तो हम ये तुम धर्म नहीं है तुम तो शांति का एक ऐसा परम शांति का एक रास्ता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपके मंच से बात कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं प्रभावित हुआ हूँ और बहुत सा समय भी देखा है हमारे सामने। हमने 1947 में जब यहाँ लोग गुज्जर लोग आए, लोगों ने उनको खत्म किया हमारे गांव में, ऐसे ने उनकी हालात देखी, उनको यहाँ लोगों ने कपड़े वगैरह दिए, तब उनकी वो दिन में आज भी बड़ी दर्दें भी इस तरीके से हुआ है, उनको बचाया यहाँ खाना दिया लोगों ने, यहाँ के लोगों में श्रद्धा और प्रेम रही है, ऐसी बात नहीं, वो बरकरार रहे तो ठीक है, धर्म का झंडा लेकर के ही इंसान किसी देश को नहीं बचा सकता, लेकिन अगर उसकी कृतत्व अच्छे है, उसका समर्पण अच्छा है, श्रद्धा अच्छी है और वो सेवा भाव है और सबसे मिलकर के काम करके अपने साथ जोड़ने की व्यवस्था है, तो शायद हम बच सकते हैं, तभी इसलिए कह सकते ज्यादा कहो।
1: ये आपने बहुत सुंदर बात कही कि धर्म का झंडा या व्यापार का झंडा या किसी एक विधा का झंडा पकड़ के व्यक्ति आगे बढ़े तो उससे देश आगे नहीं बढ़ता है। देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने अंदर सत्यता होनी चाहिए, धर्म होना चाहिए, अपना मानवीय जो धर्म होता है वो बहुत जरूरी है। और जो आपने एक और बात कही कि पूरे देश में जो आपने एक चीज देखी जो पूरे देश को जोड़ता है, वो है शांति के प्रति लोगों की आस्था या शांति के प्रति लोगों का जो लगाव है, रुचि है, हर कोई शांति पसंद करता है। तो इन बातों को सुनते हुए मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक भारत देश में आपके जैसे बेटे और बेटियां होंगे तो भारत देश यशस्वी तो बना ही रहेगा। आपके हिसाब से भारत को यशस्वी बनाने वाला कौन सा एक बात है? ये भी आपने बताया कि भारत ने विश्व को दिया है हमेशा से, शून्य से लेकर के संस्कृति तक हर चीज का ज्ञान भारत ने विश्व को दिया है, तो ये जो देने की कला है ये मैं समझता हूँ भारत को यशस्वी बनाता है, जो कि मैं आज के एपिसोड से आपसे सीख रहा हूँ कि हमें हमेशा देने का अभिप्राय रखना चाहिए। कभी भी लेने वाली अगर भावना होती है तो शायद कहीं ना कहीं हम छोटे हो जाते हैं, और अगर हमारे अंदर देने की भावना हो तो हम अपने आप ही बड़े हो जाते हैं। तो विद्यानंद जी, आपसे बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत कुछ जानने सीखने को मिला और हमारे सभी श्रोता साथियों को एक लगभग दशक कई दशकों का जो ज्ञान है, संचित ज्ञान, वो आपने कुछ ही मिनटों में हमारे सामने रखा। और ये दशकें जो थी वो आपके आयु से जुड़ी हुई थी, लेकिन आपने उससे भी आगे चल करके पुरातन काल और सनातन काल की कहानियों को भी आपने आज हमारे साथ इस एपिसोड में जोड़ा, जिससे मैं समझता हूँ केवल माउंट आबू में सुनने वाले श्रोता नहीं, लेकिन कहीं भी देश के किसी भी कोने में सुनने वाले श्रोताओं को सिरमौर से जुड़ने का जरूर अवसर मिलेगा, उनके अंदर रुचि जागेगी कि सिरमौर के बारे में थोड़ा हमें और जानना चाहिए कि सिरमौर को चंद्रगुप्त मौर्य ने सिरमौर कहा था, लेकिन उस सिरमौर को सिरमौर बनाए रखने में कैसे लोगों का हाथ है, विद्यानंद सरक जी जैसे लोगों का हाथ है। जाते जाते अगर विद्यानंद जी आप अपनी आवाज में फिर से कुछ गुनगुना दे हम सबके लिए और उसका थोड़ा सार भी बता दे तो बड़ा अच्छा होगा।
0: पहाड़ी की सुनना चाहेंगे हिंदी? क्या करूं?
1: पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ी ऐसा कोई गीत जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपका सबसे प्रिय गीत है।
0: मैं एक श्रृंगार का एक गीत सुनाता हूँ। आप आखुटी आखुटी मलाई जा भाव टलाई जा अपने पे वो करी बात बताई जा आखुटी बता आखुटी मलाई जा भाव टलाई जा अपने पे वो करी बात बताई जा कोचरी ध्यान कोचरी जाए थोड़ी बाणी रा तू मुंदरे आए इन्हें नखरे तू हम न खाए आकुटी मलाई जा भाव टलाई जा अपने पे वो कहरी बात बताई जाए। कि युवक को युवती खूबसूरत मिलती है, वो उसको ये बोलता है कि तू आंखें तो मिला ले, तू तिरछी नजर से देख रही है, तू तू दौड़ रही है, मैं तेरे पीछे दौड़ रहा हूँ, तू ये तो बता किसकी ध्यान है, किसकी बेटी है और तेरा माता पिता कौन है, ताकि मैं समझ सकूं और क्या क्या कहते हैं और मेरे तेरा पीछा करने का मुझे भी फल मिले। मतलब ये तो श्रृंगार का मैंने आपको धार्मिक का भी था। इसी तरह से नाटी के कई रूप हमने यहाँ पर उभारे हैं और एक शीर्षक से चारों विधाओं को पेश किया है। एक एक शीर्षक से उसका जैसे ढाटू है ना, सिर में स्कार्प पहनती है ना हमारे, तो ढाटू को लेकर के आठ मात्रा की घी गारंटी नाटी है, उसको घी कहते हैं हमारे और मुंजरा बोलते हैं हमारे घरों में अंदर, नाटी का एक सबसे छोटा रूप है वो, उसको आपको बता रहा हूँ। निखाए घाले पिंवड़े ढाटुए बोलो तो ही जो माटुए जवानी दूरी जणू ढोबो कुण नीरी जा माइए शावण भी जणू ढोबो पूर्णी भी जा माइए हो निखाए घाले पिंवड़े ढाटुए कहते इस पीले ढाटू ने तेरे हमारे को तबाह कर दिया है। तू ये बता जवानी में कौन निरीजा कौन ठंड बढ़ के नहीं चलता और जवान वो ऐसा कौन आदमी है जो बरसात में नहीं भीगता, तो ये जवानी के बाद बरसात आती है इसमें भी जो भीगा नहीं है वो भी इंसान इसने वर्ष के मौसम को समझा नहीं है। कहते निखाए घाले लेकिन तेरे काले तेरे जो पीले ढाटू ने मुझे तबाह कर ली। निखाए घाले माटुकू था बोला बांका जवानो माटू माटकू था बड़ा बांका जवान था वो माटकू था बोला बांका जवानो लाल होठड़ू पांदे गूंज रे छानो गूंज समझ रहे मूंछों की लाल होठ थे उसके उसकी खूबसूरती का वर्णन किया है। एक ही दिन से भी मुजरे आया पिंवड़े ढाटुए हाड़ो दा पाया। एक दिन वो मुजरे में आया महफिल में आया और पिंवड़ा ढाटू जो उसका खूबसूरत लड़के देखा हाड़ मतलब जैसे सैलाब हो पानी का ऐसा वो उसके सिर पर उसके जीवन पर ढल गया और वो बेसुध होकर। ये तो आठ मात्रा की गीत है। इसी इसी क्रम में हमारी दूसरी विधा है वो है बारह मात्रा की। ये थेवड़ा ताल पर रौद्र ताल पर है और रौद्र ताल पर हमारे ठोडा जो है ना तीर कमान खेलते हैं वो मैं आपको सुना रहा हूँ। और ढाटू है ढाटू तेरे मुंडो दा पिंवड़ा ढाटू।

0: जमाना कोटा कह युटी, जरूर तेरे सिर पर पीला ढाकू बड़ा सज रहा है और मेरे सिर पर भी ये जो है ना हिमाचली टोपी है बड़ी अच्छी लगी नहीं, लेकिन उसके बावजूद ही जरा सोच समझ करके कदम देना है। आजकल जमाना पार गंवारी है ध्यानिए, आया जमाना कोटा। ये 12 मात्रा की बंदी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक, ये बड़े धमाके से और दिल खोल जाता है नृत्य करने वाला का जब इसको गाते। ये 12, अब 16 मात्रा की बंदिश बताऊंगा, लेकिन ढाटू याद रखना है। मैंने ढाटू ऐसे ढाटू पर, गले पर, आंखों पर, ओठों पर, पलकों पर, पतली कमर पे, बहुत से वो मैंने कोई 60-70-80 गीतों का संकलन अलग कर रखा है, अलग अलग लेकिन अलग अलग तर्जों में। अब ये 16 मात्रा की बंदिश है ढीली नाटी है हमारे, ये बड़ी मशहूर है। ढाटू बिस राणा, ढाटू रखना याद, ये ढाटू जो है ना हमारे सिर की में औरतें लगाती है। ढाटू बिस राणा किसके चाली दाढ़ी ये बोला मस तुए, तेने ढाटू बिस लिया वो, अब तू तो नंगे सिर से जा रही है। ढाटू बिस रा तलटा घिसरा, तलटा हमारे दुपट्टे को बोलते हैं, कहते दुपट्टा भी भूल दिया, ढाटू तो भूला ही था तो वो भी भूल दिया। माथे तमको टीका बिरे, माथे में तेरा टीका जो है ना, जो चमकदार बिंदी है वो चमक रही है। गोरा तेरा बोलो मुटा दाड़िए, आए पड़ो सुर जो फीका बिरे। ढाटू बिस, कहते गोरा तेरा मुंह देख करके अब ढाटू भी निकल गया, दुपट्टा भी निकल गया, टीका सामने नजर आ रहा है, तेरे तेरे चेहरे को देख करके क्या कहते सूरज भी फीका पड़ता जा रहा है। तो पूरा वर्णन इसमें है, चलो कह रहे सुंदरता का। तो क्या कहते ये 16 मात्रा की बंदिश है ये, टन टन टन टन टन टन टन टन। नृत्य करना का भी इसका, मैं नृत्य भी करता हूँ और इसका एक बड़ा अंदाज है ढीली नाटी का। बहुत सी नाटियां हैं लेकिन मैंने अपनी संकलन की है, यहाँ ट्रेडिशन में भी बहुत सी नाटियां गाई है कई लोगों ने। तो अब ये 16 मात्रा की, अब 6 मात्रा की बंदिश आपको बता रहा हूँ। भाभी ये तेरा ढटकू, भाभी ये तेरा ढटकू काला सो मेरे जियो रर बाला, तू भी टंग बेरा ताला दाड़ी मेरे जियो रर बाला। ए भाभी तेरा ढटकू जो है मेरे मन को बहलाने वाला है, मेरे मन के लिए बहलावा है। क्या और तू तो अनोखी औरत है, आकर्षक है, सजीली है, सुंदर है, क्या कहते हैं, इसलिए मैं तेरा वर्णन कर। तो ये 6 मात्रा की 4 किस्म की नाटियां मैंने आपको बता दी। ये हमारी यहाँ की सिरमौर की जो नाटी है और जिसका उदय ही सिरमौर में हुआ है। और ये नाटी आपको ये भी बता दूं, ये नाटी जो है मेरी टीम ने विश्व बुक ऑफ रिकॉर्ड में 11 बार फर्स्ट आने पर विश्व बुक ऑफ रिकॉर्ड में डाली है। जोगिंदर हापी मेरे शिष्य है तो उन्होंने 11 बार ये नाटी कंपटीशन में फर्स्ट आने पर विश्व में, और इसका जो नाटी का उदय है वो सिरमौर से, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। हमने सारा कोशिश की है कि हर चीज के डेप्थ पे जा करके हम काम करें और लोगों को बताएं कि हमारे संस्कारों से जुड़े ये पहलू क्या है और हम उनको क्यों झुठला रहे हैं, क्यों भूल रहे हैं। लेकिन हमारा जब आदर्श और हमारा जब चिंतन, जब हमारा जब सामने आप जैसे लोगों का प्रदर्शन हो तो मन में सुकून मिलता है और आगे बढ़ने का रास्ता।
1: मैंने कहा विद्यानंद जी आपकी आवाज में आज भी वो जादू है कि सुनने वाला खुद ब खुद नाचना शुरू कर देगा, जैसे कि आप खुद नृत्य करते हैं सामने वाला सुनते हुए नृत्य करना शुरू कर देगा। लेकिन आपका जो भाव है या जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया वो मैं समझता हूँ बहुत ही सिंबॉलिक है, बहुत ही प्रतीकात्मक है, क्योंकि अगर मैं सोचूं तो वो हिमाचल की या हिमालय के एरिया की प्रकृति को भी दर्शा सकता है। जो सूर्य की बात हो रही है, जो लालिमा की बात हो रही है, जो सनराइज सनसेट हम हिमालय में देख सकते हैं वो कहीं और नहीं देखा जा सकता। तो कहीं ना कहीं ये सांस्कृतिक जो भी नाटी आपने सुना है उनमें वहां की प्रकृति का सौंदर्य भी झलकता है।
0: कि हर गीतों में कथा और कथानक होना चाहिए, हमारे यहाँ गीतों में भी आड़ जिसका कोई मतलब नहीं, लेकिन चाहे वो धार्मिक बात हो, चाहे श्रृंगार की हो, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण की हो, या कोई संदेश हो जन जागरण का, या और पहलू हो सामाजिक एकता का, ऐसे असंख्य गीत है जो मैंने उसी हिसाब से कथा और कथानक को लेकर के सस्वर लिपिबद्ध किए हैं
2: और कोशिश करो, जब कभी भगवान समय देगा तो तभी तो है, तो ऐसा है।
1: जी बिल्कुल, आपके पास जो भी समय है और जितना भी समय है उसको आपने सफल किया है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि पूरा भारत देश आप पर नाज करता है। आज आप भारत के एक ऐसे यशस्वी रत्न हैं जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हुए हैं, क्योंकि आपने भारत की संस्कृति को अपने जीवन का ध्येय बनाया है। आपसे मिलकर के न केवल मैं, लेकिन हमारा पूरा रेडियो मधुबन का परिवार, जिसमें कि हमारे प्यारे श्रोता साथी भी आते हैं, आज बहुत खुश हो रहे हैं कि आज रेडियो के माध्यम से, रेडियो मधुबन के माध्यम से और यशस्वी भारत कार्यक्रम के माध्यम से हम पहुंच गए सीधा सिरमौर, और आपने अपने घर में, अपने बैठक में हमें स्थान दिया। आपने हमारे साथ बातचीत की, अपने जीवन की कई सारे पन्नों को आपने खोला हमारे सामने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम शुभकामना करेंगे कि आप
2: एक सिरमौर, सिरमौर एक ऐसी है जिसके सिर पर चूड़धार की 12,000 फुट की ऊंचाई है, और आगोश में गिरी गंगा बहती है, असंख्य नदियां बहती है, खूबसूरत वादियां हैं बीच में, और इन वादियों में असंख्य देवी देवताओं के मंदिर है, और मन में सुकून मिलता है जब वहां जा करके कुछ बचा हुआ है, तब लगता है कि है ये यहाँ कुछ। तो ये अंत में आपको कहना चाहूंगा, इन्हीं के धन्यवाद।
1: जी विद्यानंद जी ने इतने सुंदर तरीके से कहा कि सिरमौर में अध्यात्म का सिरमौर है, और यहाँ पर जो बस्तियां हैं, जो देवताओं की श्रृंखलाएं हैं, जो मंदिर हैं, जो प्राकृतिक धरोहर है, इसके बीच में कभी अगर आने का मौका मिले तो जरूर लोगों को प्रयास करना चाहिए कि आकर के अपना समय जरूर यहाँ गुजारे। रेडियो मधुबन के समस्त परिवार की ओर से, जिसमें कि हमारे प्यारे श्रोता भी आते हैं, उन सभी की ओर से विद्यानंद सरेख जी, आपका और आपके परिवार का हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज आपने हम सबके लिए इतना समय निकाला, और आपने बातों के जरिए, अपने सुरों के जरिए आपने हमें सीधा सिरमौर पहुंचा दिया। आपका दोबारा हम धन्यवाद करना चाहेंगे, और ईश्वर के आगे हम ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आपके जीवन के जरिए कई जीवन को अलग संस्कृति की अलग जगाने में जरूर मदद करते रहें आपको, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आपका फिर से रेडियो मधुबन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता साथियों, अब तक आप सुन रहे थे यशस्वी भारत कार्यक्रम के आज के हमारे एपिसोड के मेहमान। मेहमान क्या कहेंगे, घर वाले ही कहेंगे, क्योंकि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की ओर आवाज जा रही थी। हम माउंट आबू से सुन रहे थे और सुनाने वाले थे विद्यानंद सरक जी, जो कि सिरमौर हिमालय के पर्वत श्रृंखलाओं में हिमाचल प्रदेश से आते हैं। विद्यानंद सरेख जी भारत सरकार द्वारा 2022 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। इसके पूर्व उन्हें राज्य सम्मान और राष्ट्रपति सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। कारण कि उन्होंने अपने प्रांत की जो पहाड़ी सभ्यता है, सिरमौर जिस जगह से वो आते हैं, उस जगह की सभ्यता में उन्होंने न केवल उस जगह की लोक संस्कृति को उजागर किया, लेकिन जो मूल धारा है, जो प्रमुख सांस्कृतिक धरोहर, जैसे कि हमारे शास्त्र हैं, हमारी गीता, भागवत, पुराण, रामायण आदि, इनका भी उन्होंने अनुवाद किया सिरमौरी में। साथ ही साथ उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी के भी 51 कविताओं का अनुवाद किया। ऐसे कई चीजों का उन्होंने अनुवाद किया ताकि जनमानस, जो उनके आसपास के लोग हैं, मूल सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ सके, और जो मूल धारा के लोग हैं वो किसी भारत के किसी कोने की आवाज से जुड़ सके। उन्होंने एक ब्रिज का काम किया दोस्तों, जहां पर उन्होंने अपने प्रांत की आवाज पूरे देश तक पहुंचाई और पूरे देश की आवाज को अपने प्रांत तक लाया। मैं और आप भी ऐसे एक ब्रिज का काम कर सकते हैं, एक सेतु का काम कर सकते हैं। मेरे आसपास जो हो रहा है उसमें अगर मैं अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उनको जोड़ सकूं, तो उस चीजों को मैं निखार सकता हूं और पूरे देश को यशस्वी बनाने में अपना एक अहम भूमिका निभा सकता हूं। उम्मीद करेंगे कि आप भी ये अहम भूमिका जरूर निभाएंगे और निभा भी रहे हैं। आगे चल करके आपसे मुलाकात होगी एक और एपिसोड में। यशस्वी भारत कार्यक्रम में हम लाएंगे एक और नए मेहमान को, जिनसे जानेंगे हम उनके जीवन की कहानी उनकी जुबानी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, सुनते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपने भीतर के अंधकार को समझिए, क्योंकि वहीं से प्रकाश निकलेगा। और जो व्यक्ति खुद पर विजय पा लेता है, वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। हम कल्पना कर सकते हैं कि इस मनुष्य सृष्टि के आदिकाल से ही संगीत का जन्म हुआ होगा। आदिकाल अर्थात मानव समाज में हर मनुष्य अपने मन बुद्धि संस्कार रूपी तीन सूक्ष्म शक्तियों के बंधन में आ गई, तब से ही संगीत का उद्भव हुआ। प्राचीन काल में भी ऋषि मुनि तपस्या द्वारा संगीत के माध्यम से ही माना मंत्रोच्चारण द्वारा अपने इष्ट देव देवियों का आह्वान करते थे। जबकि इस आधुनिक काल में भी उषा काल से ही हम मंदिर मस्जिद में संगीत के सुर मूर्छना सुनते रहते हैं। तो आइए संगीत की महिमा में और बढ़ोतरी करने के लिए आज हमारे साथ हर बार की तरह मौजूद है श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बारंबार स्वागत है।
1: हाँ गीता जी, आपको और जितने सारे लिसनर है सबको मैं स्वागत करती हूँ, नमस्कार करती हूँ।
0: श्यामली जी, आज हमने आदिकाल से ही जो संगीत की महिमा चली आ रही है इसके बारे में कुछ बातें बताई, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे?
1: हाँ देखिए, अभी भी आदिकाल आप बोलो या मध्य या अभी जो चल रहा है, ओम ध्वनि जो होता है
0: जी,
1: कितना सुर में उसको बैठा कर करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, महल बदल जाती है
0: जी।
1: तो हम कह सकते हैं कि आदि में भी जो वेद का शामगान हम कह सकते हैं, शामगान में भी जितने सारे मंत्र थे वो मुनि ऋषि आदि सब इतना अच्छा करके संगीत के सुर के द्वारा सुर के धुन में बैठा कर इतना अच्छा मंत्र उच्चारण करते थे कि सुनने का लायक है। कि सबका अलग अलग तरीका है, भगवान को बुलाने का आह्वान करने का अलग अलग तरीका है, तो हम क्यों ना संगीत के माध्यम से करें
0: जी।
1: इसलिए अभी भी
0: वही सरल माध्यम है।
1: हाँ जी, अभी वही परंपरा चल रहा है
0: जी।
1: कि आप देखो संगीत जो है, सुबह आप कोई मंदिर में जाओ तो देखोगे भजन पूजन हो रहा है, रामगान हो रहा है, शिव का स्तुति हो रहा है या आदि आदि देवी देवता का स्तुति होता है जिस मंदिर में जो है व्यवस्था जो है, या मस्जिदों में अल्लाह को जो बुलाते हैं, या गिरजा में आप जाओ उधर में भी ऐसी आप धुन सुन सकते हो। मतलब संगीत ही एक माध्यम है जो भगवान के पास पहुंच सकते हैं हम भक्तजन
0: जी। सभी लिसनर को पता ही होगा कि जौनपुरी राग की शुरुआत तो श्यामली जी ने कर चुके हैं
1: जी।
0: आगे श्यामली जी आप इसमें क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हाँ, पिछले एपिसोड में शायद लिसनर को जो विलंबित हम सिखा रहे थे तो उसमें स्वर लिपि दे दिया था
0: जी।
1: तो लिसनर को हर बार की तरह मैं उसको कॉशन करती हूँ, सावधान करती हूँ कि अगर ये जो हमने स्वर लिपि दे देती हूँ अगर वो बहुत ध्यान पूर्वक आकार सहयोग से करते हैं तो कभी हम जो विलंबित का बंदेश देंगे अभी वो मिस नहीं कर सकते
0: जी।
1: बहुत अच्छा से बैठा सकते हैं क्योंकि अभी नए नए राग सीख रहे हैं, थोड़ा कठिन में जा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि यह कठिन है हम नहीं कर सकते, ये कभी नहीं होता है। कि हमने भी ऐसे ही किया था, पहले स्वर लिपि को आकार सहित उसको अंदर बैठा लिया
0: जी।
1: उसके बाद अगर बंदिश दे दिया तो मास्टर जी ने तो हम आसानी से उसको बैठा दिया। तो हमने जो स्वर लिपि दे दिया, मैं तो रिवाइज कराऊंगी, तो अब आज बंदिश देने का दिन है, बंदिश दे देती हूँ जो जनपुरी राग में एक तल के ऊपर 48 मतलब 48 मात्रा थे उसके ऊपर जो बंदिश है, बंदिश को स्थाई का जो बोल है, बाजे झनन झनन बाजे पायलिया मोरी राज दुलारी दौड़े अंगनवा, बहुत सुंदर बंदिश है। बाजे झनन झनन बाजे पायलिया मोरी राज दुलारी दौड़े अंगनवा माँ। और अंतरा जो है, मन मातंग मत वारो, मन मातंग मत वारो ही डोरे इन नये नये छवि अति ही छाई, मन मतंग मत वारो ही डोरे इन नये नये छवि अति ही छाई। तो ये बंदिश शायद लिसनर लिख लिया किताबों में, तो अभी इसको जैसे हमने सिखाया है उसको धुन में बैठा देती हूँ, पहले स्थाई उसके बाद अंतरा बैठा देती हूँ। ठीक है, ओके
0: जी, जी।

0: ये हमने थोड़ा बिस्तर करके लिसनर को सुनाया, क्योंकि अभी हमने एक बात फिर से स्मृति दिलाती हूँ कि मैंने पिछले एपिसोड में हमने राग आशावरी सिखाया था, क्योंकि ये जनपुरी जो राग है इसका ठाट भी आशावरी है। तो आशावरी के साथ इसका अंतर है, तो आशावरी एकदम धा सा होता है, नी वर्जित है, लेकिन इसमें धा नी सा ऊपर जो हम जब मध्य सर में उठते हैं ऊपर चढ़ते हैं तो सा रे मा पा धा नी सा। लिसनर को याद है, याद होगा कि पिछले एपिसोड में हमने ऐसे सिखाया था, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना है
1: जी।
0: मैं करके सुनाती हूँ, पहले आशावरी उसके साथ फिर से करती हूँ, उसके बाद जौनपुरी।

0: शायद लिसनर के सामने क्लियर हो गया कि आशाबरी के साथ जौनपुरी जो राग है इसका अंतर। अभी जो दिया है हम स्वरलिपि शब्दी के साथ हम बंदिश बैठा देते हैं।
1: जरूर आप बंदिश हमें सिखाइएगा, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में हम अपने श्रोता मित्रों के साथ जौनपुरी राग से ही संबंधित एक गीत का आनंद लेंगे। पुनः लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराती रहिए रेडियो।

0: आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज शुरुआत में हमने संगीत की आदि काल से ही चली आ रही महिमा के बारे में सुना, उसके साथ साथ जौनपुरी राग और आशावरी राग में क्या अंतर है ये भी श्यामली जी ने हमें स्पष्ट समझाया। आगे श्यामली जी आप हमें क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हाँ, अभी मैं फिर से लिसनर को स्वरलिपि के साथ ये बंदिश बैठा देती हूँ, ठीक है?

0: ये हमने स्थाई के थोड़ा बिस्तर किया, थोड़ा बोल के साथ जो बंदिश का जो बोल दिया है उसके साथ किया है। इतना जल्दी तो हम इतना छोटे एपिसोड में नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा इसका सैंपल दे दिया। अगर लिसनर गुरु के पास जाकर शिक्षा लेते हैं तो अच्छा है, लेकिन सबसे बढ़िया कर बंदिश उठाना है तो स्वरलिपि को आकार सहित उसको कंठस्थ करना है।
1: शमली जी, आज जाते जाते आप कौन सा गीत लेकर आए हैं?
0: हाँ, बहुत सुंदर एक गीत 1973 में हस्ते जखम एक फिल्म बना हुआ था, उसमें ऑब्वियसली लता जी का ही है। जो अभी तो लता जी बिना हम तो नहीं रह सकते हैं ना
1: जी।
0: तो बहुत सुंदर गीत, आज सोचा तो आंसू भर आए। अभी भी लता जी को याद करते हैं तो आंसू भर आ जाते हैं।
1: दर्द भरा गीत है।

0: ये गीत जब भी गाती हूँ लता जी का याद ताजा हो जाते हैं
1: जी, क्योंकि अभी अभी ही लता जी हमारे से रुखसत निकल गई है, मगर आज भी हमारे दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेगी।
0: जी जी,
1: उन्होंने ऐसा सारे विश्व को अपने कंठ के द्वारा ऐसी यादें दी है जो सदियों तक हम सभी और आने वाली पीढ़ी भी उसको याद करती रहेगी। ये सच में लता जी थी, मगर है भी हमारे दिलों में सदा जिंदा रहेगी। श्यामली जी, यही हम विराम लेते हैं, पुनः मिलेंगे अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो संगीत के विषय में, तो जरूर हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9414151415। पुनः रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन।

0: बंदर मामा फेंक पजामा आंसू भर भर रोए। हाँ बंदर मामा फेंक पजामा आंसू भर भर रोए। घर पर आए थे झल्लाए बिस्तर पर जा सोए। हाँ बिस्तर पर जा सोए देखो बिस्तर पर जा सोए।
1: आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
2: रेडियो मधुबन।
3: नमस्कार दोस्तों, जीना इसी का नाम है। क्या खूबसूरत नाम है। कभी कभी ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं और कोई उस सिचुएशन से उभर के बाहर आते हैं और कोई नहीं आ पाते। जो अपनी परिस्थितियों से उभर के बाहर आते हैं और एक उदाहरण सेट करते हैं तो कहते हैं इन्होंने क्या जिया है, मजा आ गया इनकी कहानी सुन करके। ऐसे ही कुछ उदाहरणों के साथ आज हमारे कार्यक्रम जीना इसी का नाम पे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हमारे साथ है सुमन बहन जी। सुमन बहन ब्रह्म कुमारी इस मुख्यालय में माउंट आबू में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एक नर्स के रूप में। एक नर्स जो योगी जीवन जीते हुए अपनी सेवाएं कर रहे हैं और एक नर्स जो लौकिक दुनिया में रहते हैं, क्या अंतर होता है आइए जानते हैं और बातचीत करते हैं आज की हमारी मेहमान सुमन बहन जी से। सुमन बहन आपको रेडियो मधुबन पर बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद, खुशी हुई आप यहाँ बुलाए
3: जी। हमें भी बहुत खुशी है कि आज एक योगी की कहानी और वो योगी जो साइंस के साथ भी ताल्लुक रखते हैं और साइलेंस के साथ भी ताल्लुक रखते हैं। तो सुमन बहन हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो लौकिक जर्नी है, आपने कहाँ पे जन्म लिया और आपके परिवार माता पिता क्या करते थे और आपकी जो लौकिक परिवार है उसके बारे में थोड़ा सा परिचय दें।
4: मैं ऐसे कर्नाटक से कारवार डिस्ट्रिक्ट में हलियाल करके आता है, वो भरे तालू का प्लेस है लेकिन वहाँ का सारा वातावरण यानी 30-40 साल पहले एक गांव का ही था, तो गांव के वातावरण में ही हम पले बड़े हैं। वहाँ ही लौकिक और जो अलौकिक ज्ञान को हम प्राप्त किया है। पिताजी ऐसे वुड मिल में काम करते थे और माताजी खेती बाड़ी में। घर में गाय भैंस और वो दूध का सब व्यापार चलता था, तो उसी में ही हम छोटेपन से ही काम करके ही सीखने का एक पहले से ही नियम था, तो इस तरह हम पले बड़े हैं
3: जी। आप कितने भाई बहन थे।
4: हम तीन बहनें और एक भाई है, उसमें मैं ही थोड़ा पढ़ाई किया क्योंकि उस जमाने में वहाँ लड़कियों को पढ़ाना इतना ये स्कोप नहीं था, सिर्फ लड़कों को थोड़ा पढ़ाते थे। लड़कियों को बस थोड़ा कोई प्राइमरी वगैरह पढ़ाया, पढ़ना लिखना आ गया तो बस हो गया और कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं बहुत मना स्ट्रगल करके बहुत जिद करके पढ़ाई किया है और वो इतना सहज भी नहीं था क्योंकि हर बार यही होता था कि इनको स्कूल छुड़ावे, इनको कॉलेज छुड़ावे, और हमेशा ये कंडीशन होता था कि आपको ये काम करके ही जाना है, ये करके ही जाना है तो जाने का, हम जैसे बोलते वैसे ही कपड़ा पहनना है तो ही जाने का। तो मैं वो सारे कंडीशन को पूरा करते हुए भी मना, बस मेरा एक ही लक्ष्य था कि मुझे पढ़ाई करना है, तो उस तरह मेरी पढ़ाई हुई थी। और मैं बहुत छोटेपन से ही बुक्स पढ़ने की बहुत आदत थी, तो मैं बहुत बड़े बड़े महारथियों का दार्शनिक या जो फ्रीडम फाइटर्स है उन लोगों के सभी बहुत सारे बुक्स पढ़ती थी, तो उनके जीवन से मुझे बहुत ऐसे एनर्जी फील होती थी कि मुझे सच में पढ़ना है, पढ़ाई से आगे बहुत कर सकते हैं
3: जी। तो फिर आपके भाई बहनों ने कहाँ तक पढ़ाई किया।
4: वो लोग ज्यादा से ज्यादा कोई प्राइमरी कोई हाई स्कूल के अंदर ही छोड़ दिया और वो अपने अपने गृहस्थी में चले गए।
3: तो फिर आपने कहाँ तक पढ़ाई किया।
4: मैंने ऐसे ग्रेजुएट किया है और बाद में ओपन यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट भी किया, लेकिन उस टाइम में वहाँ एक रूरल एरिया को डेवलप करने के इसलिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स लेके आते थे, कुछ महीने के कुछ साल के, कोई नर्सिंग का कोई कंप्यूटर का पढ़ाते थे, तो उस तरह के मैंने फिर कोर्स कर लिया था साइड बाय साइड।
3: तो इतने स्ट्रगल से आपने जो पढ़ाई किया है, फिर आपको कभी लगा नहीं कि मैं जाकर के नौकरी करूँ ये सब चीजें।
4: नहीं, थोड़ा सा आध्यात्मिकता का ये था, रुचि था और दुनिया के बारे में सोचना, देश के बारे में सोचना, इस तरह की बुद्धि थी, मेरा सिर्फ मेरा जीवन का बहुत मैं कम सोचती थी। और पढ़ाई का मैं एक सुनाती हूँ। गांव में ऐसा पढ़ाई होती थी, एक हॉल रहता था, उसमें एक ही मास्टर जी, एक ही ब्लैक बोर्ड, और उस हॉल में 4 स्टैंडर्ड के बच्चे बैठते थे। मना कोई क्लासरूम या पार्टीशन ऐसा कुछ नहीं है। जो सामने के कुछ बेंचेस होते थे वो 1st स्टैंडर्ड वाले, और बाद में कुछ होते थे वो 2nd वाले, फिर इस तरह, मना जिस बेंच पे वो बैठा है
3: वो उसका क्लास है।
4: उसका वो क्लास है, ऐसे होता था। तो उस टाइम में पढ़ाई क्या किया पता नहीं इतने हॉल में बैठ के, लेकिन मजा बहुत आता था।

0: वेस्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं कभी भी उस तरह का नहीं किया है। और धर्म के हिसाब से मैं सभी धर्मों के बारे में भी जानकारी लिया था, जैसे मुस्लिम्स है, कुरान के बारे में, बाइबल के बारे में, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारा मैंने बहुत जानकारी लिया था। कि मुझे ऐसा लगता था अगर इस धर्म में फॉलो करने से भगवान प्राप्त होता है और मैं इस धर्म में जा रही हूँ, शायद मैं वंचित रह जाऊंगी, तो इसलिए मैं कोशिश करती थी सब तरफ से जानकारी करूँ और मैं उसमें बाद में चलूँ जब मुझे पता चले। तो मुस्लिम का जो होता है रोज़ा रखना और मुहर्रम और रमज़ान वगैरह, वो सब सेलिब्रेट करते थे, चर्च में भी जाते थे। तो इस तरह मुझे अंदर से एक खोज थी कि मुझे भगवान को खोजना है, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे पूजा पाठ करके या कोई एक मूर्ति एक कहानी के पीछे, नहीं, मुझे रियल में उसको पाना है, इस तरह का एक अंदर से भूख थी। तो इसलिए मैं बहुत ऐसे अंदर से एफर्ट करती थी और उस टाइम में मेरे विचारों को समझने वाले नहीं थे, उनको लगता था कि ये कुछ अलग सोचती है।
1: आपके पूरे परिवार में?
0: हाँ, परिवार में कहीं भी मुझे इतना ये नहीं हुआ, जो मैं खुद बुक्स वगैरह पढ़ पढ़ के अपने आप को मोटिवेट कर लेती थी। मैं स्कूल की बुक्स बहुत कम पढ़ती थी और जो दार्शनिक है, बड़े बड़े होके गए हैं, स्वामी विवेकानंद है, फ्रीडम फाइटर्स की भी बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ लिया था, तो मुझे लगता था कि मुझे भी कुछ बनना है।
1: बहुत अच्छा। तो फिर जैसे आपको आध्यात्मिकता में रुचि थी, तो ब्रह्म कुमारी से जो परिचय मिला आपको, उस समय आपकी क्या उम्र रही होगी?
0: मैं 20-21 साल की थी, मैंने ग्रेजुएट भी हो गए थे। मना मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में आने से पहले, मेरी जो पहले मैंने बताया कि मेरे विचार ऐसे ऐसे थे, और उस टाइम में जैसे एक टिवाटे पर खड़ी थी मैं कि मैं किधर जाऊँ। मुझे कोई इस तरह का शादी करना ये करना उस तरह का तो था नहीं, लेकिन एक साधना का जीवन करना चाहिए, लेकिन मैं जाऊँ किधर, ऐसा कोई मुझे क्लियर रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। और मैं थी 20-21 साल की और मुझे कोई भी डिसीजन लेना उसी टाइम में लेना है। तो मेरे विचार ऐसा था कि अगर किसी और धर्म के थ्रू मैं परमात्मा को पालूं, तो उस टाइम में मैं ऐसी मेरी मेंटेलिटी थी कि मैं धर्म परिवर्तन करने के लिए भी रेडी थी।
1: अच्छा।
0: हाँ।
1: ओके।
0: हाँ, फिर मैंने देखा था कि और कहीं भी जाते तो थोड़ा स्त्री को दूसरी दर्जा दी जाती थी और आध्यात्मिकता भी उसमें, फिर मैं थोड़ा पीछे हट जाती थी, मैं शायद इसमें जाऊँ तो वहाँ फिर ना होवे। तो ऐसे एक उलझन के टाइम में मुझे ब्रह्मा कुमारी संस्था से मैं जुड़ गई। मैं जॉब के लिए गई थी, उस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए थे और कुमार थे, तो उनका जो हाव भाव है पेशेंट पूरा होने के बाद, उनका पढ़ाई करने का, मेडिटेशन करने का और महिलाओं के प्रति उनका रिस्पेक्ट, वो सभी देख के मुझे बहुत थोड़ा ये हुआ कि ये व्यक्ति कुछ अलग है दूसरों के। जैसे कोई लड़का जाता है पुरुष, तो हम वहाँ से जाने के लिए सोचना पड़ता है या थोड़ा अटेंशन से जाना पड़ता है, लेकिन उनके पास ऐसा नहीं लगता था, तो ये बहुत ऊंचे विचार वाले हैं ऐसा लगता था। और मुझे एक था ये कि भगवान के बारे में जो भी कोई कहानियाँ बताते थे उसको विरोध करना और ये सब पाखंड है, ये साबित करने का बहुत, वाद विवाद में आने का बहुत एक ये था, और मैं काफ़ी लोगों को हरा भी देती थी तो वो एक घमंड भी था मुझे, अच्छा ये कोई ओम शांति करके कोई एक है और ये भी कोई अपना बाबा बोलते हैं, कोई भगवान मिला बोलते हैं, मैं इनको भी ये भूत छुड़ा सकती हूँ इस भाव से मैं उनसे बात करना शुरू किया था।
1: Okay, ये कौन सा साल रहा होगा?
0: ये 2001 का है।
1: अच्छा।
0: तो फिर मैं उनको भगवान के बारे में पूछना शुरू किया, तो उन्होंने ये एक बात बोला कि मैं भगवान को इतनी अच्छी तरह से संबंध में हूँ, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे ही मैं करता हूँ। एक तो मुझे अंदर से लगा ये व्यक्ति कहीं पहुँचा हुआ व्यक्तित्व वाला हो सकता है या तो ये पागल हो सकता है, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान से हम इजीली बात कर सके। एक तो मैं इतना ढूंढ रही हूँ, भगवान है ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा है, और उनको मिल भी गया और इतना वो लोग आराम से बात भी करते हुए, तो ये बात से मुझे थोड़ा सा अंदर से लगा कि ये व्यक्ति एक तो पागल हो सकता है या सच में पाया हुआ है। तो भगवान के बारे में मुझे बहुत क्वेश्चन थे, जैसे सभी को रहता है, ऐसी दुनिया क्यों बनाया है, दुखी है, ये है, जात पात धर्म में सब बटी हुई है, तो ये सभी बहुत क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन सभी सुन के उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चनों को सारा हम आंसर दे देंगे, सब आपको ज्ञान मिल जाएगा,

0: लेकिन आप चाहते क्या हो, आपका क्या सपना है कि भाई भारत कैसा होना चाहिए, दुनिया कैसा होना चाहिए आपके सपनों के हिसाब से। तो वो एक ऐसे दिया था मुझे, तो मैंने 5-6 पेज लिख के लेके गई थी कि मेरे सपनों का भारत इस तरह होना चाहिए। मैं स्पेशल मेरा महिलाओं का था, तो महिलाओं को रिगार्ड होना चाहिए और हर एक इंसान इतना संतृप्त होना चाहिए, इतना भरपूर होना चाहिए, किसी और की चोरी करना, लूटना या जलस होना इतना कोई जरूरत ही न पड़े, इतना हर एक भरपूर होना चाहिए और कोई किसी को शिक्षा देना जैसा कर्म होना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह की बातें जो मैं कॉलेज से लेके आई थी दिमाग में, वैसे ही मैं लिख के दिया था। तो वो मेरा एसे देख के उन्होंने डिसाइड किया शायद इनको सच में एक भारत के प्रति या दुनिया के प्रति ऐसी भाव है। तो तभी उन्होंने बहुत इंटरेस्ट से मुझे कोर्स देना शुरू किया, लेकिन वो ज्ञान इतना सुनाते और मैं उनको इतनी क्वेश्चन पूछती डबल मैंने इतने क्वेश्चन थे, लेकिन वो बहुत संयमता से सारे क्वेश्चन सुनते थे। तो इस तरह मेरा ये ज्ञान में आ गई।
1: तो फिर फाइनली आपका निश्चय कैसे हुआ कि ये सत्य ज्ञान है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आप हर धर्म को फॉलो कर रहे थे भगवान की खोज में, और जब आप बेसिक फंडामेंटल कोर्स करने के लिए आए हैं वो ब्रह्म कुमारी इसमें, तब भी आपके मन में बहुत सारे सवाल थे, तो निश्चय किस बात से हुआ और कैसे हुआ?
0: मैं और ऐसा मेंटेलिटी था कि कोई कुछ कह रहा है तो मैं इतना इजी मानने वाली नहीं थी। तो एक तो उनका जीवन देखा मैंने, वो डॉक्टर का जीवन देखा कि उनकी कितनी सिंप्लिसिटी है, विचार कितने ऊंचे है और कितना सेवा भाव, ये भी प्रभाव डाला। और उसके बाद जब ज्ञान दिया और मेरे सारे क्वेश्चनों का आंसर मिल गया, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहानियों में देवताओं का ही भगवान बोल की कहानियां बनाया है, वो सभी जो है मुझे उसकी क्लियरिटी हो गई सच में एक निराकार परमात्मा वो रियल में कौन है। तभी तो ये सारे क्वेश्चन फिर ऑटोमेटिक स्टॉप हो गए मेरे। फिर भी मैं अगर इस संस्था को मैं अगर आगे बढ़ना है तो मैं इतना जल्दी डिसीजन लेने वाली जैसी नहीं थी। फिर मैं पहली बार यहाँ मधुबन आई, ऐसे सच कहूँ तो ये मधुबन में भी मैं ऐसे टेस्ट करने के लिए आई थी कि कोई ऐसा तो नहीं है कि भगवान आया करके किसी को बहला रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई ड्रामा कर रहे हैं, इस तरह तो नहीं है। तो मैं वो सभी देखने के लिए यहाँ आई थी। और उसके पहले जो क्लास माउंट आबू जो आई थी।
1: अच्छा, वो कौन से साल में आए थे आप?
0: 2004 में मैं पहली बार आई।
1: अच्छा,
0: एक तो मुझे यहाँ का वातावरण और यहाँ के जो भाई लोगों का व्यवहार है ना, विनम्रता जो दुनिया में हम देखते हैं बहनों के प्रति उनका व्यवहार, और यहाँ देखते हैं बहुत ऊंचा, बहुत वो भी प्रभावित हुए। और जो पुरुष प्रधान समाज है, और वो कुछ साल पहले तो और भी था, अभी तो थोड़ा चेंज हो रहा है, तो उनका जो दबदबा था यहाँ ऐसा नहीं था। सभी को इक्वल रिक्वेस्ट होता था, कोई जात पात का नहीं था, कोई पढ़े लिखे अनपढ़ गांव, इसका कोई भेदभाव नहीं था। तो तब मुझे लगा कि ये जो चेंजेस है ये भगवान ही कर सकता है, कोई इंसान नहीं। और जो प्रभु मिलन डायमंड हॉल में होता है उसके 3 दिन पहले से कोई क्लासेस होते हैं, तो एक क्लास में सुना था कि भाई इतने ऊंचा हाईएस्ट अथॉरिटी से हमें मिलना है तो हमारे अपनी स्थिति भी कुछ ऊंची बनानी पड़ेगी। तो उसके पहले मैं 3 दिन अखंड मौन रखा था, सुबह 2 बजे से उठ के योग करना, खान पीन भी बहुत लाइट रखा था, और जितना हो सके मेरी एक अशरीरी स्थिति, एक बॉडीलेस स्थिति और जो निराकार है उसको मिलने के लिए मैं अपनी स्थिति को ऊंचा बनाऊ, तो ये बहुत किया था एक स्थिति में। तो उस स्थिति के साथ ही मेरा प्रभु मिलन के लिए मैं डायमंड हॉल में बैठी थी, और बहुत जैसे चारों तरफ से ध्यान रख के जो गुलजार दादी में आते हैं वो देखने के लिए कि ये सच में प्रभु अवतरण है और ये परमात्मा ही है जो मुझ आत्मा का पिता है। तो मैं उनकी एक बच्चा कहे, संतान कहे, तो मुझे महसूस होना चाहिए ना कि वो मेरा बाप है
1: जी।
0: तो ऐसे बुक्स में पढ़ने से तो नहीं है, मुझे आत्मा को भी महसूस होना चाहिए वो मेरा बाप है। दूसरों को महसूस हुआ होगा वो बाप कहते हैं, लेकिन मैं क्यों कहूँ। तो उस इरादे से मैं बैठी थी, लेकिन उस दिन जो भगवान का अवतरण हुआ तब मेरी स्थिति बहुत अलौकिक थी, बहुत डिवाइन। जो वहाँ वाइब्रेशन बने पूरे हॉल में 20-30 हजार लोग, पिन ड्रॉप साइलेंस, और जो मुझे दृष्टि मिल रही थी उससे मुझे मेरा शरीर इतना बहुत जैसे टच करूँ तो, हाँ मैं टच करूँ तो भी उसका फील नहीं होता था, और आंखों से इतनी आंसू बह रहे थे, खुशी की जब से प्राप्त कर लिया है, जैसे एक भूख मिट गई है। तो मैं ऐसा सोचती थी कि मैं आंखें आंसू पहुंचने के लिए थोड़ा हाथ उठाऊं तो थोड़ी कुछ सेकंड की भी दृष्टि मुझे मिस ना हो जाए। तो वो प्रभु मिलन से मेरा पक्का हो गया कि भगवान सच में आया है और उसका और मेरा एक बाप और अपने संतान का एक रिश्ता है। तो उसी दिन फिर मैं पक्का निश्चय कर लिया।
1: फिर आपके परिवार में इस ईश्वरी मार्ग पर चल रहे थे?
0: नहीं, कोई नहीं, मैं ही पहले थी।
1: अच्छा, तो फिर आपको छुट्टी कैसे मिली?
0: नहीं, बहुत अपोज हुआ, बहुत सारे एक समाज में भी एक ही दूसरा धर्म का है, कोई ब्रेन वॉश करते हैं, शादी करना नहीं, ऐसे जो अफवाहें होते हैं वो सभी बातें हमारे सामने भी आई थी। लेकिन मैं तो भगवान का अनुभव का टेस्ट देख चुकी थी, इसलिए मुझे ज्ञान भी था कि मैं उनको आंसर दे सकूं। बहुत परेशानी हो गई, जैसे हमारे खान पान का शुद्धता होता है उसके लिए भी हमें ऐसे हुआ था कि 2 साल तक हम घर में दूध दही ये तो रहता था, लेकिन दूसरी चीज़ें बनाने का अलाव नहीं था। लेकिन बाबा का नियम था कि भाई उनको हम नैवेद्य ऑफर करके ही लेना है, तो वो करने नहीं देते थे जानबूझ के, ये कोई अलग बन रहे हैं। तो हम 2 साल तक दूध और केला चावल इसी में ही रहे थे। इतना वेट भी कम हो गया था, कईयों को लगता था कि इनके ऊपर कोई ने कुछ किया है, ये
1: क्या किया।
0: लेकिन अंदर से मैं बहुत खुश थी, बहुत नशे में थी, बहुत पा लिया था। शरीर तो कभी पतला होता है, कभी मोटा होता है, अलग बात है, लेकिन भगवान के रास्ते में मुझे चलना है, तो मैं तो अंदर से बहुत खुश थी।
1: तो फिर आपको ज्ञान मार्ग में चलने के लिए, नियम धारणाओं में आप जैसे चाहते हैं वैसे जीने के लिए इतनी चैलेंजेस थे, इन चैलेंजेस में से अपने समर्पित होने का, संस्था में और एक अलौकिक जीवन जीना, एक योगी जीवन जीने का संकल्प कैसे किया, उसको कैसे सामना किया?
0: जैसे पहले सुनाया था कि मेरा अंदर से एक युद्ध चल रहा था आध्यात्मिकता का कि मुझे भगवान को पाना है। तो जैसे 20-21 साल में आ गई तो अपने आप को कुछ माना जजमेंट लेना पड़ेगा, कहाँ जाना है, क्या करना है। उस टाइम में मुझे ये मिल गया, तो जब मुझे अनुभव हो गया तो मैं उसी दिन और लिख के भी दे दिया था कि जब अगर मुझे अनुभव हुआ कि यहाँ भगवान आया हुआ है तो मैं उसी दिन से ही मेरा जीवन इनकी सेवा में लगा दूंगी। अगर मुझे अनुभव नहीं हुआ मैं तो छोड़ूंगी ही, उसके साथ यहाँ जो भी आ रहे उन सभी को छुड़ाऊंगी, ऐसा मैंने बोला था। उन्होंने बोला कि बेशक आपको अगर अनुभव नहीं होता है तो आप दूसरों को भी सुना सकते हो। तो ये जो उनका कॉन्फिडेंट था वही मुझे ज्यादा निश्चय करने में प्रेरित किया। फिर घर में तो फिर थोड़ा चलता ही है रोना धोना, क्योंकि मोह तो रहता है। फिर मैंने उनको भी यहाँ लेके आए, यहाँ दिखाया कि भाई आपको बेटी का एक ही आशा रहता है कि भाई अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले, आगे जाके सुखी रहे और हमारे बाद में भी ये और भी सुखी रहे, यही तो इच्छा रहती है। तो मैं उनको लाके यहाँ दिखाया, देखो इतना बड़ा घर है और परमात्मा हमारा साथी है और मैं इस तरह जीना चाहती हूँ। तो फिर जब खुद मम्मी पापा ने देखा तब फिर समाज का, रिश्तेदार का वो ज्यादा सुनने नहीं, फिर बाद में छुट्टी दे दिया। फिर मधुबन में भी सिर्फ 3 महीने के लिए सेवा के लिए यहाँ बुलाया गया था। फिर दादियों के पास हमें नर्सिंग सेवा की जरूरत पड़ती थी, उस टाइम तो ऐसा था हमें हिंदी ठीक तरह नहीं आती थी, फिर भी बाबा ने इतना सिखा लिया, सब अपनी सेवा में रख लिया। और जब पहली बार बाबा मिलन में आई थी तो मैं पांडव भवन में बाबा का कुटीर है, वहाँ ऐसे कहते हैं कि वहाँ जो भी संकल्प करते हैं उसको बल मिलता है या वो सफल होता है। तो मैं पहले बाबा मिलन में आई थी तो वहाँ बाबा के कुटीर में चिट्ठी डाल के गई थी कि मुझे अभी तो निश्चय हो गया, अभी मुझे मेरी सेवा शुरू हो जाएगी कि मैं आपका जो ज्ञान है वो सभी को देना है, तो मैं अगली बार जब आऊंगी तो मेरी जैसे 5 कन्याओं को रेडी करके लाऊंगी।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो वो फिर हो गया। अगली बार मैं आई तो मैं मेरे जैसे 5 लोगों को लेके आई और मेरे लौकिक रिश्तेदार में ही बहुत सारे ज्ञान में आए, तो उसमें से हम 8-9 बहनें समर्पित हो गए हैं।
1: तो फिर आपके जीवन में प्रेरणा कौन रहे आपके लिए?
0: मुझे जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे बुक्स वगैरह पढ़ के मुझे बहुत सारे महान व्यक्तियों का ये रहा, लेकिन उसमें हमेशा मुझे ये लगता था कि ये लोग तो पुरुष है तो स्त्री के लिए मैं आगे जाके फिर कहीं फेल ना हो जाऊं। तो कर्नाटक में एक साध्वी है अक्क महादेवी करके,
1: जी
0: हाँ, तो वो वचन वगैरह लिखते हैं जैसे पोएम छोटा, तो उन्होंने आध्यात्मिकता में बहुत अच्छा आगे गए है, भक्ति में बहुत ये थे, यानी 11वीं या 12वीं शताब्दी के है वो। उस जमाने में एक स्त्री इतना जंगल में अकेली जाके, एक श्री शैल करके है वहां गुफा में जाके उन्होंने तपस्या किया है और वहां ही उन्होंने शरीर छोड़ा। तो उनका जीवन मुझे बहुत ये हो गया, इम्प्रेस हो गया कि मैं उनकी जैसे बनूं, कि अगर 12वीं शताब्दी में वो कर सकते हैं तो मैं अभी कर सकती हूँ, तो मैं उनको आदर्श मानती थी।
1: तो सुमन बहन, जैसे आपने कहा कि आपको अख महादेवी आदर्श थी और बचपन से ही, लेकिन जैसे आप इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में आई, राजयोग मेडिटेशन सीखा ब्रह्म कुमारी संस्थान में, और आप समर्पित होने का भी संकल्प लिया एंड परिवार से सामना करके ये सब चीजें जब यहाँ पर आई, यहाँ पे भी तो आप आश्रम में एक नया जीवन है, आप दक्षिण भारत कर्नाटका से आए, यहाँ पे वेस्ट में राजस्थान में, और हेडक्वार्टर होने के नाते यहाँ पे हर प्रकार के लोग रहते हैं, हर भाषा हर कल्चर तरीके से, फिर आप यहाँ पे अपने आप को कैसे एडजस्ट किया और क्या क्या आपने अपने अंदर वो परिवर्तन देखा है इतने सालों से जब आप यहाँ पे रहना शुरू किया?
0: मुझे जो मुरलियों में आता है तूफान को तोहफा बनाने का, और आपके जीवन में जो भी एक घटना सिचुएशन आ रही है वो आपको कुछ ना कुछ सीख दे के जाएगी, तो वो सीख को मैं लेने की कोशिश करती थी। जब मैं यहाँ आई थी तो हम इतना नर्सिंग में कोई एक्सपर्ट नहीं थे, थोड़ा जो एक क्लिनिक में सेवा किया था तो उतना ही एक्सपीरियंस हमारे पास था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं हर जो भी सामने बड़े सेवा दे थे उसको पहले हाँ कहती थी, और एक था कि जो ईश्वर सेवा देता है तो उसकी शक्ति भी देता है, ये मुझे बहुत काम आया कि मैं उस इसमें चली जाऊँ, और कोई भी तूफान आता है तो उसको तोहफा बना के ही छोड़ूं, तो ये मुझे बहुत काम आया। तो यहाँ आने के बाद भाषा का थोड़ा सा होता था क्योंकि हम इतना वहाँ हिंदी यूज नहीं करते थे, लेकिन घर में मराठी बात करते थे तो हिंदी अच्छे समझ में आ जाता था, लेकिन बात करने में थोड़ा हिचकिचाते थे। फिर बाद में वेदर का भी, यहाँ बहुत ठंडी होती है और बहुत गर्मी होती है, तो वो भी थोड़ा सा छोटी मोटी ऐसे लगता था, लेकिन ज्ञान जो है और ईश्वरीय नशा जो है वो सभी क्रॉस करने में बहुत मदद मिलता था। और हमारी नर्सिंग की सेवा यहाँ आके अभी 20 साल हुआ है, तो इतने साल में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो यज्ञ के महारथी दादियाँ है जो आध्यात्मिकता में अपनी बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर चुके हैं उनके साथ ही रहा हुआ है, तो उनके साथ सेवा करते हुए मुझे मेडिकली बहुत अपडेट रहना पड़ता था, बहुत सीखना पड़ता था।
1: तो जैसे मेडिकल प्रोफेशन में भी एक्सलेंसी को प्राप्त किया और स्पिरिचुअलिटी में भी एक्सलेंसी को प्राप्त किया, क्योंकि जो इतने श्रेष्ठ योगी उनके साथ आपने जीवन बिताया और उनके अंग संग रहे, उनके शरीर की ख्याल रखने के लिए आपकी सेवा होती थी, तो फिर उनका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, ये सारी चीजें। तो ऐसा क्या चीजें है आप जो देखते हैं कि योगी जीवन में प्रकृति को जीतना, मतलब जैसे ये कहते हैं ना आध्यात्मिकता में कि आत्मा पुरुष है और ये शरीर प्रकृति है, पांच तत्वों का बना हुआ है, तो जिस तरीके से आपने इतने श्रेष्ठ और बड़े योगियों के साथ अपने जीवन बिताया, दादियों के साथ जिसने अपने जीवन के 70 साल 80 साल पूरा ही जीवन लगभग इस आध्यात्मिक मार्ग में अपना जीवन चलाया, तो क्या आप डिफरेंसेस देखते थे, क्या आपको सीखने को मिला है?
0: हाँ, वो बहुत डिफरेंस, क्योंकि मैं पहले वहाँ 5 साल लौकिक हॉस्पिटल में जॉब करते थे, वहाँ के जो पेशेंट थे कुछ होता है तो उनका चिल्लाने का, उनका जो बात करने का, वो सभी एकदम दुख दर्द वाला ऐसा होता था, और उनको समझा के सेवा करना भी बहुत ये होता था। यहाँ हमने देखा तो कि दादियों के पास जैसे कुछ बीमारी होती है तो हम कोई मेडिटेशन वगैरह उस टाइम नहीं कर सकते हैं, ना कोई हम शांति का अभ्यास करेंगे, ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन मना एक बुखार भी आया तो हमारा कॉन्सेंट ज्यादा शरीर में ही रहता है, एक तो 10 लोगों को बताने में
1: मुझे बुखार,
0: बुखार है, फिर क्या होगा, क्या खाने से क्या होगा, कौन सी लेना है, और शायद मुझे ऐसा तो नहीं होगा ना, इसी में ही हमारा ज्यादा बॉडी कॉन्सियस में ही ज्यादा रहते है जो पहले से भी। लेकिन दादियों का देखा, जैसे उनको शरीर में कोई मना चिकित्सा की जरूरत पड़े तो वो तुरंत उस शरीर से डिटैच हो जाते थे, तो हम कहते थे दादी ये ट्रीटमेंट करना है आपको, ये हुआ, अच्छा ये करना है तो ठीक करो, मना आपके हवाले वो शरीर को सौंप देते थे। कभी ऐसे सोचते नहीं कि शायद आप मुझे गलत ट्रीटमेंट देंगे, मुझे ये क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे, नहीं उसमें कभी नहीं है। उनको लगता था कि बाबा के बच्चे हैं, अच्छे थे अच्छे ही हमारे लिए कर रहे हैं। वो हमने देखा। और कभी हम सुई लगाते हैं, कैनोला लगाते हैं, तो उसमें भी जैसे अगर वो नहीं लग गया या हम कोई डर रहे हैं थोड़ा सा लगाने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी दादियों को एक ही प्रिक में लगना चाहिए, बहुत सॉफ्टली लगना चाहिए, वो बहुत ध्यान रखते थे, तो लेकिन अंदर से एक डर भी रहता था। लेकिन दादियां हमारे चेहरा देख के बता देते थे, कोई बात नहीं अब शांति से बाबा की याद में करो, तो ये हाथ में नहीं लगा है कोई बात नहीं ये हाथ में लगा दो, मतलब इतना सहज वो खुद हमें सहज करते थे बहुत। तो वो देखने को मिला। और जब उनका जो रूटीन होता है अमृत वेला, मुरली का जो हमारे आध्यात्मिक स्टडी है, और शाम को मेडिटेशन करना, दुनिया को सकाश देना, ये सभी रूटीन उनके शरीर को कुछ भी होता रहे, कितने भी प्रोसेस से गुजरता रहे, लेकिन ये रूटीन में उनका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता था।
1: तो आप अपने जीवन में इसका प्रभाव कैसे देखते हैं?
0: हाँ, उससे मेरे में भी बहुत सारा परिवर्तन हुआ है कि कोई एक बात होती है उसको ज्यादा समय तक ना रखे, ज्यादा से ज्यादा रात तक वो बात रहेगी, उसके बाद वो मैं निकाल देती हूँ। क्योंकि दादियों को देखा है वो कोई बात लेके सोते नहीं थे। जैसे दुनिया में भी कहते हैं कि भाई 7 घंटा सोना है, 6 घंटा डीप स्लीप है, सभी आजकल बहुत उसके ऊपर रिसर्च हो रहे हैं। लेकिन मैंने जितने भी दादियों को देखा है सभी 80 above 90 above 100 तक भी पहुंचे, तो उन लोगों की नींद होती 10-11 बजे से लेके 3 बजे तक, यही उनकी नींद का टाइम होता था। उसके बाद वो उठना, स्नान करना, फिर हॉल में आना, ये सभी होता था। दिन में भी अगर टाइम मिले तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, इस तरह। फिर भी वो लोग 100 साल तक भी पहुंचे, और बहुत अच्छी तरह से उनका जो पे होते कि मेंटली कोई ये होता है वो होता, ऐसा कुछ नहीं था। दादियों का लास्ट डे तक उनका अच्छा रहा। तो तब मुझे ऐसा लगा कि भाई वो जो रात को बाबा के कमरे में जाके अपने दिन भर की दिनचर्या सुना के लिख के सौंप के बाद में सोते थे, तो वो ज्यादा इफेक्ट होता था हमें डीप नींद की। तो ये उनके हेल्थ के ऊपर भी बहुत असर पड़ता था, क्योंकि जो कल रात तक उनकी ऐसी शारीरिक स्थिति रहती थी कि कल क्या होगा क्या होगा, लेकिन जैसे ही वो एक डीप नींद हो गई और अमृत वेले का जो उन्होंने मेडिटेशन किया, तो ऑटोमेटिकली उनके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाती थी। तो वो देख के मुझे भी उस तरह का बहुत अभ्यास करने का होता है, और मैं करती थी।
1: बहुत सुंदर। तो आपने अपने जीवन में इतने सारे उतार चढ़ाव देखा और एक संघर्ष को देखा, कब आपको ये फील हुआ कि मुझे ऐसा ही जीना है, इसे कहते हैं जीना?
0: मैं पहले तो सुनाया कि मेरा कितना उलझनों से, कितना स्ट्रगलों से जीवन जिया है। भगवान मिलने के बाद तो मुझे प्यार ही प्यार मिला है, और जो भी कोई परीक्षा कहते हैं वो कोई मुझे परीक्षा नहीं लगता था, वो बहुत सारे इतना एक सटीक ज्ञान था। तभी तो अंदाज वाला मैं लेके घूमती थी, शायद यहाँ होगा, शायद ये राइट होगा, लेकिन भगवान का ज्ञान मुझे सत्य ज्ञान मिलने के बाद, उस महावाक्य को मुझे सेवा में यूज करना, या मुझे कोई उलझन आती है तो उसमें उसको यूज करने से मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे हमेशा एक होता था कि मेरे साथ स्वयं परमात्मा खड़ा है, तो मुझे बहुत सिक्योर फील होता था कि मैं उनको बोल सकती हूँ और उनके मत के अनुसार मैं कर सकती हूँ।
1: तो वर्तमान समय में आप क्या करते हैं?
0: मैं जैसे नर्सिंग का ही है, तो ऐसे जहाँ भी बड़ों के पास सेवा में भेजते हैं तो वहाँ जाती हूँ, लेकिन अभी यहाँ शांतिवन में एवर हेल्दी हॉस्पिटल में नर्सिंग की सेवा कर रही हूँ।
1: जी बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच सुमन बहन, आज आया।
0: थैंक यू अमशन।
1: दोस्तों ये था आज की कहानी आप सभी के सामने। आप सुन रहे थे सुमन बहन को, जो हमारी नर्स है एवर हेल्दी हॉस्पिटल में ब्रह्म कुमारीज में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। हम विदाई लेते हैं आप सभी से, जीना इसी के नाम से।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। मैं हूँ आरजे शुभा, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में जिसका नाम है नई दुनिया नया समाज, जहाँ हम बात करते हैं एक ऐसे भविष्य की जो हो स्वच्छ, हरित और सतत। धरती केवल हमारे रहने की जगह नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर भी है। तो पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों या फिर संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी का कर्तव्य है। तो जब एक व्यक्ति जागता है तो समाज बदलता है, और जब समाज जागता है तो एक नई दुनिया का निर्माण होता है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे पर्यावरण योद्धा है जिन्होंने वर्षों से स्वच्छता, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, जिनके कार्यों को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं श्री खमू राम विश्नोई जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नई दुनिया इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: तो खमू राम जी, सबसे पहले तो आपके अनुभवों और संघर्षों के बारे में हम जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले इस कार्यक्रम में आपके बारे में थोड़ा अधिक हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: मेरा नाम खमू राम विश्नोई है, मैं ओशिया तहसील के गांव एकलगोरी का रहने वाला हूं, और वर्तमान में मैं राजस्थान उच्च न्यायालय के सहायक रजिस्ट्रार के पद से सेवानिवृत्त 28 फरवरी 2026 को हुआ हूँ, और पिछले लगभग ढाई दशक से मैं सिंगल यूज प्लास्टिक और के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ रहा हूँ। बड़े बड़े मेले होते हैं, वहाँ हमारी टीम कचरा बीनती रहती है ताकि लोगों की मानसिकता में जो कचरा भरा हुआ है, जो लोगों की सोच में कचरा भरा हुआ है वो निकले। हमारी मकसद ये नहीं है कि हम जमीन से कचरा बीने, हमारा मकसद ये है कि जमीन पर कचरा आए उससे पहले ही मानसिकता ही बदल जाए कि मेरा धर्म नहीं बनता कि मैं जमीन पे कचरा फेंकूं। तो इस प्रकार लगभग ढाई दशक हो गए हैं। और दूसरा हमारा काम है शादी ब्याह, वहाँ भी हम फ्री सेवा देते हैं। उसके पीछे हम तीन चार शर्तें होती है, वो पहली शर्त होती है पूरा कार्यक्रम सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त रहना चाहिए, डिस्पोजल मुक्त रहना चाहिए, और दूसरा हमारी होती है झूठन मुक्त रहना चाहिए, तीसरा हमारा होता है नशा मुक्त रहना चाहिए, और चौथा होता है हमारा फटाका मुक्त समारोह हो। तो हम ऐसे सेवाएं देते हैं जैसे मेरी बहन की शादी हो, मेरी भतीजी की हो, भांजी की हो, सारे दिन हम तांबे के लोटे ले जाके मेहमानों को जलपान कराते हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक को दरकिनार करते हैं, नशे को दरकिनार करते हैं, फटाकों को दरकिनार करते हैं, और झूठा भी नहीं छोड़ने के लिए मना करते हैं। क्योंकि धरती का, अगर मेरी भाषा में बोलूं तो धरती का सबसे बड़ा भगवान है वो भोजन है, भोजन से बड़ा भगवान मंदिरों में भी नहीं मिलता, मंदिर के भगवान को भी हमारे भोजन का प्रसाद का ही भोग लगता है।
0: जी जी सर, बिल्कुल। तो सर, बहुत सारे कार्य आप कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बचपन राजस्थान के ग्रामीण परिवेश में बीता, प्रकृति से जुड़ाव कैसे शुरू हुआ?
1: अब आपने बिल्कुल सुन रखा होगा कि विश्नोई समाज शुरू से ही, गुरुदंबेश्वर भगवान 550 वर्ष पहले ही हमें विश्नोई समाज सभी कम्युनिटी में से चुन चुन के हमको अलग बैठा के और 29 नियमों की एक आचार संहिता दी, एक सिस्टम दिया कि प्रकृति के साथ समन्वय बैठा के तुम्हें जीना है। तो गुरुदंबेश्वर भगवान ने 1485 ईस्वी में सभी कम्युनिटी, सभी समाज के लोगों में से विश्नोई समाज के लोगों को एक नियम देके, 29 नियम देके, और एक नया पंथ चलाया या एक नया सिस्टम बनाया, एक नई जीवन जीने की एक नई कला दी जो प्रकृति के साथ में समन्वय बैठा के जी सके।
0: जी सर। सर, सहायक रजिस्टर पद से आपने रिटायरमेंट लिया है, और मतलब पढ़ लिख करके आप अच्छा नौकरी भी कर रहे थे, लेकिन पर्यावरण संरक्षण को आपने जीवन का मिशन क्यों बनाया? आप चाहते तो अकेला भी, जितना आपको प्रकृति से प्रेम है तो आप अपने प्रेम के साथ जीते, लेकिन इसको मिशन क्यों बनाया आपने?
1: ऐसी बात है कि पहली बात तो गुरु जम्बेश्वर भगवान जो 15वीं शताब्दी के सबसे पहले पर्यावरण वैज्ञानिक थे, वो उनके अनुयायी हुआ। दूसरे मेरे माता पिता के जो रगों में भी पर्यावरण और संस्कृति बचाओ का खून था, प्रकृति प्रेमी का खून था, और दूसरा विश्नोई कम्युनिटी का रंग भी तो मेरे साथ, मेरे ऊपर शरीर में मेरे लगा हुआ था, चढ़ा हुआ था, मेरे खून में घुला हुआ था। तो जब ये इतनी सारी आबो हवा के बीच में मुझे जीने का मौका मिला तो स्वाभाविक है कि मैं प्रकृति की सेवा करूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे जीवन ये बहुत ही कम समय के लिए मुझे भगवान ने दिया है और पर्टिकुलर एक टाइम बींग के लिए है, उसके बाद में भगवान मुझसे वापस छीन लेंगे और सांसें भी गिनी हुई है। अब मुझे रियलाइज नहीं है तो बात अलग है, लेकिन मुझे अगर रियलाइज है कि मेरे पास लिमिटेड सांसें हैं तो मैं बेहतरीन काम करने का प्रयास करता हूँ। और हर आदमी को जब ये मालूम चल जाता है कि मैं जीवन पृथ्वी धरती पे कोई विशेष प्रयोजन से आया हूँ तो वो कभी भी प्रकृति के खिलाफ काम नहीं करेगा, वो हमेशा प्रकृति की सेवा करने का ही प्रयास करेगा। मैंने ही वैसा ही किया।
0: जी सर बिल्कुल, जैसे कि ये संस्कार आपको आपकी संस्कृति से, आपके समाज से, आपके माता पिता से आपको मिली है और इसको ही आप आगे लेकर के जा रहे हैं और एक आपने समाज में क्रांति लाए हैं आपने। तो जब आपने शुरुआत की 2005 में, वर्ष 2005 में, हम सभी आई थिंक मेरे जनरेशन के जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त सभी स्कूल में होंगे, तो आपने अकेले स्वच्छता अभियान शुरू किया, तो उस समय ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली 2005?
1: बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया और मैं इसकी रिप्लाई भी बहुत बेहतरीन तरीके से देना चाहूंगा। मैंने एक विदेशी डॉक्यूमेंट्री देखी जिसमें भारतीय संस्कृति की बहुत ही तारीफ की गई, जैसे हमारी जो 5000 पुरानी हमारी संस्कृति है और हमारे जो पर्यटन स्थल है, हमारे जो धार्मिक तो और प्रकृति से प्रतिदिन हम पीपल को पूजते हैं, हम गौ माता को माँ बोलते हैं और हम सभी अलग अलग देवताओं के अलग अलग जीव जंतु भी उनके सवारियों में, जीवों को भी उनकी सवारियां बनाई है, तो हम देवता को और जीवों को हमने समन्वय में बैठा के और उनको पोषण देने का प्रयास किया ताकि सभी जीव धरती पर रह सके और उनका सब अपने अधिकार पूर्वक रह सके, यही भारतीय संस्कृति थी। तो एक विदेशी डॉक्यूमेंट्री में सब कुछ अच्छा बताया है, सब कुछ गुणगान किया गया, लेकिन अंत में हमारे तीर्थ स्थान है, हमारे जो पूजा स्थली है, वहाँ अंदर तो आरतियाँ गा रही है, ओम जय जगदीश हरे या और भी जे देवी देवताओं की जो आरतियाँ हो रही है, और बाहर की तरफ कचरों का ढेर लगा हुआ बताया। तीर्थ स्थानों पर भी मेले में लोग इतने भीड़ कर देते हैं लेकिन भीड़ के बीच में पैरों में इतना कचरा पड़ा रहता है कि वो तीर्थ न होके कोई कचरा घर हो जाता है, तो मेरे को दर्द हुआ और मैंने तीर्थ स्थान को जाके देखा तो जैसी डॉक्यूमेंट्री में फोकस किया गया वैसा को वैसा मैंने वहाँ तीर्थ स्थान पे देखा। तो फिर मेरे अंदर क्वेश्चन आया, पहले मैं हाईकोर्ट की सिक्रेसी में था, मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी, मैंने छुट्टी मिली और मैं 2005 में कोई बड़े हमारे विष्णु समाज के बड़े तीर्थ स्थान पे गया, तो मैंने विष्णु समाज के लोगों को बलिदान को याद कर 363 लोग 1730 में पेड़ों हरे पेड़ों के लिए अमृता देवी के तत्व में शहीद हो गए थे और वन्य जीवों के लिए भी शहीद हो गए थे। सलमान खान वाला भी उदाहरण हमारे सामने ही था कि काले हिरण का शिकार करने आए और फंस गए, अभी भी फंसे हुए हैं, कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। तो हमारी कम्युनिटी इतनी अच्छी है, फिर सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में इग्नोर क्यों कर रही है? तो समाज के लोगों ने मुझे थोड़ा कहा कि तेरे अकेले से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हर चीज हमेशा अकेला करता ना वो आगे जरूर बढ़ता है।
0: जी, तो लोग जब आपका मजाक उड़ाते थे तो आपने हिम्मत कैसे बनाए रखी?
1: ऐसी बात है, शुरुआत में जब मैं गया तो वहाँ लोग कचरा फेंक रहे थे तो मैंने उनको समझाने का कोशिश किया तो कौन मानता है, एक आदमी की कोई नहीं सुनता है, बड़े बड़े आदमियों की नहीं सुनता, तो मैं एक साधारण आदमी था, मेरी कौन सुने? तो मैंने कहा अब ये सुनने वाला तो है नहीं, तो मैंने वो जो मेलों में हमारे विष्णु समाज के लगभग अपनी आमदनी का 10% चुगा पक्षियों के लिए, गायों के लिए लाते हैं, तो वहाँ बड़े बड़े चुगा घर बनते हैं, वहाँ वो चुगा घर के लिए बोरी कट्टा भर के लाते हैं बाजरा का या गेहूं का, जो भी धान उनके फसल होती है वो ला के वहाँ डालते हैं, तो वो उसका खाली कट्टा पड़ा था, मैंने देखा अब इस कट्टे का उपयोग तो मुझे ही करना चाहिए, मैंने वो कट्टा उठाया और वहाँ जितना भी बिखरा हुआ कचरा था वो उठाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा विष्णु समाज के लोग थोड़े मानते कम है, कुछ अलग टाइप के हैं, मानेंगे नहीं, वो नहीं, मैं कचरा बींध रहा हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को धक्का नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी को कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, आई एम वर्किंग फॉर बेटरमेंट ऑफ माई मदर प्लानिट, मैं धरती माँ की स्वच्छता के लिए काम कर रहा हूँ, इसमें भी मुझसे कोई धक्का मुक्की होगी तो मैं मेरे सहन करूंगा।
0: जी सर, सलाम है आपके कार्य को और आज भी वो कार्रवा जारी है और
1: बिल्कुल ये शुरुआत में ऐसा हुआ
0: जी,
1: फिर लोगों ने मेरे हंसी मजाक भी कौन चुके और फब्तियां किसने में कौन चुके, किसने कहा पागल हो गया, किसी ने कहा इसकी नौकरी चली गई, किसी ने ये कहा गया अब ये फटीचर हो गया, जो उनके मन में आता था वो कह रहे थे, लेकिन मेरा टारगेट था, मैंने मेरा लक्ष्य निर्धारित किया। जैसे मैं जयपुर जा रहा हूँ और रोड से जा रहा हूँ तो कहीं गोलाई भी आती है, कहीं पुल भी आता है, कहीं बाईपास भी आते हैं, कोई कुछ भी आता है, लेकिन मेरा टारगेट जयपुर जाने का होता है तो मैं हर हाल में उसी रोड को चुनता हूँ जहाँ जो जयपुर जाती है। भले बीच में रस्ते में कोई एक्सीडेंट भी हो गया तो भी मैं उससे बच के आगे यहन कहन में पहुँचता हूँ। वैसे मेरा टारगेट था, मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं इस फील्ड में धरती माँ की सेवा करने में मेरे जीवन को आगे बढ़ाऊंगा, तो मैंने वैसे किया। हालांकि मेरे पास खूब सारे ऐसे भी अवसर आए, परिवार के लोगों ने भी मुझे शुरू शुरू में कहा कि हमारे समाज मेरे परिवार का हमारे खानदान का नाक कटा रहा है, गंदगी उठा रहा है। परिवार के श्रीमती जी भी थे वो शुरू शुरू में, उन्होंने उनकी सहेलियों ने और उनके लोगों ने उनके परिवार जो उनकी बहनें हैं उनके जो पीर की परिवार के लोग उनको भी थोड़ा ऐसे महसूस हुआ, तो उसने भी अपने आप में नाक में सर डाली और मेरे को भी कभी व्यंग्यात्मक रूप से कभी कभी बोल देती थी, लेकिन वो भी मैंने सहन किया क्योंकि मेरा लक्ष्य था, मुझे आगे बढ़ना था। लोग तो कहेंगे और लोगों का काम है कहना, लेकिन मेरा जीवन का लक्ष्य था तो मैंने भगवान की कृपा और प्रभु की कृपा से मैं मेरे उस रास्ते पे बढ़ता रहा। जैसे जैसे मुझे समय मिलता मैं हाई कोर्ट से सर्विस से छुट्टी लेके परमिशन लेके मैं उस लक्ष्य पे काम करने लग गया।
0: जी सर, कभी ऐसा लगा नहीं कि अभियान छोड़ देना चाहिए?
1: नहीं, कई बार ऐसा लगा, कभी कभी मैं अकेला जाता था, बिल्कुल अकेला, तो मेरा चेहरा भी उतरा हुआ था कि मैं अकेला जा रहा हूँ। मेरे पास कुछ स्लोगन लिखी हुई तख्तियां होती थी, कुछ बैनर होते थे, कुछ पर्दे होते थे, कुछ अन्य सामग्रियां भी होती थी, मेरे खुद के कपड़े भी होते थे, 3-4 बैग हो जाते थे। चार बैगों को उठा के किसी साथ वाले राई को मैं निवेदन करता था कि थोड़ा मेरे हेल्प कर दो, तो उस समय लगता था कि तुम करने क्या जा रहा है, अकेला क्या कर लेगा, लेकिन फिर प्रभु कहते थे कि अरे भाई जो अकेला करता है ना उसको किसी का इंतजार करना नहीं पड़ता, तो जब अकेला चलता है ना उसको किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता, वो लेट नहीं होता है, वो हमेशा सही टाइम पे पहुंचता। तो मैं अकेला था तो मुझे बड़ा ही खुशी हो रहा था कि मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ रहा, मैं स्वयं ही डिसीजन ले रहा हूँ और स्वयं ही फाइनल डिसीजन और स्वयं ही मन बंद कर रहा हूँ, स्वयं ही खोल रहा हूँ। मेरा काम शुरू भी मैं श्री गणेश भी मैं कर रहा था और वाइंड अप भी मैं कर रहा था, तो मुझे कोई दर्द नहीं था। और धीरे धीरे लोगों का ध्यान मेरे ऊपर आने लगा, लोग कुछ लोग हेल्प के लिए, कुछ हेल्प नहीं होती थी तारीफ करने लगे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे दो जुड़े चार जुड़े, और शुरू में जो आज मेरे साथ में थे शुरू में थे वो अब एक भी नहीं था, लेकिन मेरा कारोबार चल रहा है, नए लोग आते रहते हैं, पुराने छोड़ते रहते हैं, रोटेशन बन गए ये। तो अभी भी हमारे कब शादी ब्याह में जाते हैं तो 10-20-30 हो जाते हैं, मेलों में 50-100 हो जाते हैं और काम बेहद बेहतरीन तरीके से चल रहा है।
0: जी सर, तो सर धार्मिक मेलों में और जो पर्यटन स्थल है वहां पर प्लास्टिक रोकने के लिए विशेष प्रयास आप क्या कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं वो कैसे कर सकते?
1: बिल्कुल सही है, हर चीज शुरू से करना चाहिए। हम मैं एक मोस्टली मैं जहां भी जाता हूँ एग्जांपल देता हूँ, वॉशरूम और किचन का। अपने परिवार में ही बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं 70-80 साल के और उनकी मानसिकता थोड़ी सी या सोचने की शक्ति या यादगार शक्ति कम हो जाती है तो वो भूल जाते हैं, और छोटा बच्चा होता है 1.5-2-3 साल का तो वो भी नहीं समझता है वॉशरूम क्या होता है और किचन क्या होता है, लेकिन उनकी इतनी मानसिकता विकसित हो जाती है कि किचन से भोजन लेके वॉशरूम में जाके कभी नहीं बैठता, चाहे बच्चा भी नहीं बैठता बूढ़े आदमी भी नहीं बैठते। और वॉशरूम का डब्बा या बाल्टी जो होती है जो विशेष रूप से हम वहाँ काम लेते हैं वो दूसरी जगह काम नहीं लेते, वो कभी लाके किचन में या दूसरी जगह नहीं रखते, या पानी के जो अपन जिसको परिंडा बोलते हैं वाला के कोई डब्बा या बाल्टी नहीं रखते, इतनी मानसिकता उनकी और बन जाती है। तो हम तो जागरूक है, इतनी मानसिकता तो हमारी होनी चाहिए कि जो चीज हम नहीं चाहते वो दूसरों को देंगे तो वापस हमें अच्छी कैसे मिलेगी। जैसे मैं आपको अभद्र भाषा में बोलूंगा तो आप क्यों मेरे को सभ्य भाषा का प्रयोग करेगी, कैसे करेगी, कैसे कर पाएगी, कर नहीं पाएगी, कौन से अलाउ नहीं करेगा। तो ऐसे ही है, ऐसे ही हम करते हैं, हम लोगों को बेहतरीन व्यवहार देते हैं तो लोग हमें शाबाशी देते हैं, ऐसे करते करते के लोगों को हम समझाते हैं कि तीर्थ स्थान ध्यान साधना तपस्या और पूजा की और आत्म बल को मजबूत करने की जगह है, ये कोई कचरा फेंकने की और मौज मस्ती करने की या पिकनिक स्पॉट नहीं है। तीर्थ स्थान तो संकल्प को मजबूत करने की, हे भगवान मैं आपके आया हूँ और मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं मेरे मानवत्व को पहचानूं और अच्छा मानव जीवन जी के किस प्रकार मैं मेरी ये यात्रा पूरी करूँ। ये तीर्थ स्थान उसके लिए है, न कि कोई नगर पालिका मेला होता है जहाँ झूले लगते हैं, लोग आइसक्रीम खाते हैं, जो भी चीज जो मजे आओ वैसे चीजें खाते हैं, उसके लिए नहीं है। लेकिन लोग आजकल उसको तीर्थ स्थानों को भी सिर्फ एक वो कहानी में बेल घूमता ना वैसे, हर जो महीने एक फेरी दूंगा, अरे फेरी शरीर की नहीं लगानी है, फेरी विचार की लगानी है कि मैंने पिछले गुरु जो भी तीर्थ स्थान था वहां जाके आया, उसके बाद में मेरे भावना में, मेरे क्रियाक्रम में, मेरी सोच में क्या कुछ फर्क आया। अगर फर्क आया है तो मेरी यात्रा या मेरी जो वहां धोक देना या वहां साधना करना, वहां जाना सफल है, नहीं तो फालतू ही गोता है और भगवान को धोखा देना। भगवान तो क्यों धोखा खाएंगे, धोखा तो खुद को ही मिलता है, क्योंकि वो एक बिना मन के, बिना कोई संकल्प के वहां जाके आता है तो तेल जलता है और खुद की एनर्जी वेस्ट होती है और मिलना कुछ नहीं है। भगवान तो आत्म अनुभूति है, अपने आप के अंदर विराजमान है, पहचानने की जरूरत है। क्योंकि जो चीज हमारे अंदर है, पर एक मैं एक छोटी सी बात करके आपको बताऊंगा कि जब भगवान एक बार क्या हुआ, सभी लोगों ने अपनी इच्छाएं जताई और भगवान से पूछा कि हे भगवान हमें दो, वो दो, वो दो, वो दो, अपनी अपनी, मेरे परिवार में मेरी वाइफ नहीं मानती है, बेटा नहीं मानता है, सासू नहीं मानती रहो, तो भगवान परेशान हो गए कि जाऊं कहां, तो भगवान कहीं छिप गए, तो दूर पहाड़ में छिप गए। लेकिन मनुष्य एक जीव है, वहां भी जाके ढूंढ लिया, यहाँ आके छिप गए और हम तो दुखी है। तो फिर उन्होंने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊं, तो हम मनुष्य के हृदय में आके बैठ गए। अब जिसको भी अगर भगवान को पहचानना है तो अपने हृदय के खुद को जानो, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मैं जीवन में क्या कर सकता हूँ। तो खुद के अंदर जब हम सोच अपने आप को अंदर झांकेंगे, अपना अंदर आत्मा को देखेंगे, तभी हम प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। बाहर कहीं किसी भवन, किसी बिल्डिंग या किसी मंदिर में भगवान नहीं विराजमान है, भगवान अपने अंदर ही। मनुष्य के अंदर दो लोग रहते हैं, एक राक्षस, एक भगवान। राक्षस इट मीन्स पॉजिटिव नहीं नेगेटिव एनर्जी, और भगवान इट मीन्स पॉजिटिव एनर्जी, देवत्व, देवत्व और राक्षसत्व, ये दो चीज मनुष्य के अंदर रहती है। अगर मैं लगातार लगातार लगातार मैं अच्छे आदमियों के साथ रहूंगा, अच्छी संगति के साथ करूंगा, तो मेरे कंधे देवत्व का परसेंटेज बढ़ जाएगा और राक्षसी परसेंटेज कम हो जाएगा। और मैं अच्छे विचारों को इग्नोर करता जाऊंगा तो मेरे अंदर राक्षसी प्रवृत्ति आएगी, हरीफ से झगड़ा कर लूंगा, पुलिस केस हो जाएंगे, जेल में भी जाऊंगा, वापस पेरोल पे आके भी मैं उल्टा काम करूंगा, इस प्रकार की प्रवृत्ति बन जाती है। तो दो प्रवृत्तियों से ही मनुष्य का निर्माण होता है, और दूसरी एक प्रवृत्ति से निर्माण होता है, दूसरी प्रवृत्ति से मनुष्य का क्या विनाश होता है। ये मेरे विचार है, व्यक्तिगत विचार है।
0: बिल्कुल, तो अगर हम पॉजिटिव विचारों के साथ रहेंगे तो हम पर्यावरण के लिए भी सही काम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही है। अगर हम प्रकृति का पेड़ है, पेड़ को काटेंगे फिर हमें छाया चाहिए, तो पेड़ को, जिस पेड़ को हमने काटा वहां छाया कैसी रहेगी, वो तो जगह खाली हो जाएगी। अगर छाया है चाहिए तो पेड़ लगाएं। अब आजकल क्या करते हैं, अपन पाश्चात्य संस्कृति का फॉलो करते हैं, और बड़ी बड़ी शादियों में देखा होगा गरीब तो हाथ में कांदा रोटी लेके खा लेते हैं, बड़ी शादियों में चाउमीन के लिए अलग प्याला प्लास्टिक का, आइसक्रीम के भी अलग अलग फ्लेवर, वो और उसके अलग प्याले, कितने ही प्रकार के, वो गोलगप्पे के लिए अलग प्याला। एक आदमी शादी ब्याह में, बड़ी शादी ब्याह में, रईस की शादी में 100 बर्तन काम में लेता है एक टाइम के भोजन के लिए। हम जा किधर रहे हैं ये विचार भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो रईस होते हैं, वो देखा हमारा तो जन्म धरती को गंदा करने के लिए होता है, सफाई करने वाले तो कोई दूसरे हैं, हमारे लिए, हम कोई सफाई करने के लिए पैदा नहीं हुए। और चाहते हैं, हर आदमी चाहता है हमें अच्छा व्यवहार मिले, लेकिन हम देवे नहीं देवे, ये हमारी बात, तो ये कैसे हो सकता है, संभव हो सकता है? छोटा बच्चे को भी अगर हम थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलेंगे तो वो रूठ जाएगा या वापस ऐसा जवाब देगा तो हमारी बोलती बंद हो जाएगी।
0: जी जी, तो सर आपने हजारों मेलों में और धार्मिक आयोजनों में सफाई अभियान चलाया है, कोई यादगार अनुभव साझा करें हमारे साथ।
1: बिल्कुल, मैं मेरे खुद के ही जो विष्णु समाज के मेले, वहाँ हम कचरा बीन रहा था, तो पेरिस से एक मेरा फ्रेंड, मेरा मित्र आया फ्रैंक, वो जेल, तो उसने वो विष्णु समाज के ऊपर कुछ आर्टिकल लिखना चाह रहा था, तो वो 2-3 मेलों में मुझे फॉलो किया और मेरे को कचरा बीनते हुए देखा, तो उन्होंने व्हाट आर यू डूइंग, मैं आई एम पिकअपिंग गार्बेज हियर टू मेक माई मदर प्लानेट नीट एंड क्लीन एंड आई वॉन्ट टू अवेयर द पीपल इन दिस रिगार्ड। तो उसने कहा आप इंग्लिश भी जानते हो, मैं थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी ऐसे, मैंने कहा मैं इतनी जानता हूँ, तो कहा ठीक है इतनी, इट्स एनफ। उसने कहा इतनी बहुत है मेरे लिए, मैंने जो मुझे आदमी चाहिए था उसको मैंने सर्च कर लिया। फिर एक मेले में वो मिला, मुझे दूसरे मेले मिला, तीसरे मेले मिला, हर मेले में मैं वही काम करता हुआ उसको पाया गया, उसने फोटोग्राफ खींचे। फिर पेरिस फ्रांस का था, वो पेरिस में जाके आर्टिकल छापा। 2008 में उसने वहाँ एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही थी, तो उसमें मुझे इनवाइट कर लिया, तो मैंने मना कर दिया, इट्स नॉट पॉसिबल टू कम देयर, क्योंकि मैं प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को फॉलो करने में मैं असहज महसूस कर रहा था, मैंने मना कर दिया। तो उसने कहा कमू, इट्स नॉट इजी टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू कम हियर, सो यू डोंट से मी नो, after half an hour, one person called you or getting your consent. So don't say him, I don't want to come there. You should say him, I have no problem to come there. I wanna come there to participate in global conference organized by of you. तो ठीक है, उसने बात की और मैंने उसको कहा भाई ठीक है मैं तेरी बात मान लेता हूँ. आधे घंटे बाद मुझसे फोन किया, आर यू मिस्टर खमुराम बिश्नोई? मैंने कहा यस आई एम खमुराम बिश्नोई. वुड यू लाइक टू कम पेरिस टू पार्टिसिपेट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एज ए कीनोट स्पीकर? मैंने उसने मना किया हुआ था कि मना मत करना. मैंने कहा यस आई हैव नो प्रॉब्लम, आई विल कम देयर, कम व्हाट मे. फिर उसने बुलाया, मैं 2008 में गया, 11 में गया, 12 में गया, 13 में गया, 14 में गया, 15 में मेरी फ्लाइट मिस हो गई, टाइम मिस रीड कर लिया. और 18-20 में भी मेरे को इनवाइट किया था उन्होंने, लेकिन वहाँ कोरोना काल आ गया तो उसमें वो मिस हो गई. अब 2028-27 का भी वो कह रहे हैं कि वी वांट टू इनवाइट यू. देखो प्रभु क्या, मैं वहाँ जाने के लिए मेरा टारगेट नहीं है, मेरा का टारगेट तो है मेरी धरती माँ को स्वच्छ रखूँ. लेकिन अगर वो बुला लेते हैं तो मैं उनके यहाँ भी मना नहीं कर पाता.
0: जी सर, तो कैसा अनुभव रहा? आप फ्रांस स्विट्जरलैंड में भी भारत का प्रतिनिधित्व आपने किया और आपकी कई डॉक्यूमेंट्रीज भी विदेश में प्रसारित.
1: 52 मिनट की 2011-11 में 52 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उन्होंने, फ्रेंच चैनल्स पे वो रिलीज हुई थी. और 2011 में ही पेरिस के मेट्रो रेलवे स्टेशन पे 100 फीट बाई 150 फीट की फोटो एग्जीबिशन भी मेरी रही. मैं उस समय 2011 में वहाँ गया था तो उस एग्जीबिशन लगी हुई थी, उसके साथ में मेरे फोटोग्राफ्स भी उसने लिए. देखो कमू, यू आर वेरी बिग पर्सन हियर, यू कैन सी दिस फोटोग्राफ्स. मैंने देखा तो वास्तव में बहुत लंबी चौड़ी, जैसे बड़े बड़े होल्डिंग पे विज्ञापन होते हैं ना, वैसे वैसे मेरी फोटो लगी हुई थी. मैं अपने आप को भगवान को बार बार धन्यवाद दे रहा था, ये भगवान में एक छोटे से कचरा बीनने वाले आदमी को आपने इस प्रकार प्रेजेंटेशन देने के लिए फोटोग्राफ्स में शामिल किया है, मैं आपका ऋणी हूँ. और वो ऋण उतारने के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ. वास्तव में मैं धरती माँ का और प्रभु का ऋणी हूँ, क्योंकि एक मनुष्य होना, जन्म लेना ही अपने आप में कितने ही कर्मों के बाद में, कितने ही अच्छे कर्मों के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है. मनुष्य जन्म इस यू आर नेक्स्ट गॉड, यू आर सेंडर ऑफ द गॉड, भगवान के ही रूप हो, भगवान ने ही आपको भेजा है. लेकिन हम आके यहाँ भूल जाते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, हम तो सूर्य है. अरे तुम बहुत कुछ हो, कितने भी महान महान वैज्ञानिक हुए या नेता हुए, लोग हुए या स्वामी विवेकानंद जी क्या थे, बहुत छोटी उम्र में गए लेकिन इतना कुछ दे के चले गए कि कितनी शताब्दियों तक वो अमर रहेंगे और उनका संदेश कोई मिटा नहीं सकता. वैसे ही जाम्बोजी महाराज, और भी घने ऐसे लोग हुए हैं, रामदेव जी हुए हैं, और भी ऐसे खूब लोग हुए हैं जिन्होंने समाज को बहुत कुछ देने का प्रयास किया, लेकिन समाज को भी चाहिए कि वो स्वीकार करे.
0: जी सर, बिल्कुल बिल्कुल. तो युवाओं का क्या रोल है पर्यावरण संरक्षण में सर, आप क्या कहते
1: हैं? मैं इस समय में हमेशा कहता रहता हूँ मैडम के द यूथ जनरेशन इज गार्जियन ऑफ द प्रेजेंट एरा. वर्तमान के युवा क्या है, संरक्षक है. जो सीनियर सिटीजन थे, जिनको अपन पूर्वज अपन बड़े रा कह दें या हमारे वरिष्ठ जन कह दें, जिन्होंने अपनी पारी खेल ली है, वो 70 के हो गए, 80 के हो गए या 60 से ऊपर हो गए, उन्होंने पारी खेल ली. जैसे उनका कर्तव्य था, उन्होंने अपन को साफ सुथरी एकदम नीट एंड क्लीन धरती दी. वर्तमान समय युवाओं का है, बच्चों को अभी समझ में नहीं है क्या करना क्या नहीं करना. तो अगर वर्तमान युवा जाग जाएंगे तो धरती को कोई गंदा नहीं कर सकता. युवा इग्नोर करेंगे तो धरती को कोई बचा नहीं सकता. और धरती पर इतना कचरा हो गया, बड़े बड़े शहरों में तो

0: 500-500 फीट ऊंचे पहाड़ बन गए। मैंने दिल्ली में देखे, पहले देखा मैं इस पहाड़ी पे चढ़ूंगा, फिर मैं पहाड़ी के पानीपत की ओर जा रहा था, पहाड़ी के नजदीक गया तो ऊपर आग दिखी, मैं वो पहाड़ी पे आके चल गया, आग ये है कि पहाड़ी की आग नहीं है क्या, ये कचरे के ऊपर आग लगाई हुई है। और फिर मैंने देखा एक बहुत बड़ा वो डंपर होता ना, वो ऊपर खाली होता देखा, माचिस की डिब्बी जितना दिख रहा था, इतने इतने कचरे के ढेर लग गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं, समुद्र को हमने सही नहीं छोड़ा, समुद्र के मैं अभी जू बीच पे गया था, वो तो ज्वार आता है ना, तब जो कचरा समुद्र का देता है ना, वो पूरा का पूरा वापस लुटा के और उनके घरों के आसपास किनारों पे लाके फेंक देता है। तो जब तक मनुष्य धरती को देना नहीं सीखेगा, तब तक धरती दे नहीं पाएगी, लंबे समय धरती नहीं दे पाएगी, धरती अब इग्नोर करना बंद कर देगी और हम मरेंगे। और हम वैसे दिल्ली में अपन बड़े शर्म, आपने भी कहीं सुना होगा देखा होगा, वहाँ वो जीना कोई जीना नहीं है, अमिताभ बच्चन वाला वो डायलॉग किसी एक फिल्म में था कि ये जीना भी कोई जीना है। तो इतनी गंदी बदबू आती है बड़े बड़े नालों के पास कि एक दिन भी हमारा बार, हम जो खुले एरिया में रहते हैं जैसलमेर बाड़मेर या मरुस्थल वाले उधर जाते हैं ना, तो मन नहीं होता कि घंटा आधा घंटा यहाँ रुके, लेकिन लगातार जब हम वहां रहते हैं तो हमारी भी नासिकाएं वो ऐसी स्वीकार कर लेती है गंदगी को, और हम गंदगी में रहने में मजबूर हो जाते हैं।
1: जी सर। सर, हर घर अगर कोई संकल्प ले या छोटा छोटा प्रयास करे तो क्या हम अपने देश को परिवर्तन कर सकते हैं? अगर
0: बिल्कुल बिल्कुल मदर टेरेसा ने कहा, बिल्कुल मदर टेरेसा ने भी कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि धरती को हम, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि धरती को तो साफ रख नहीं पाए और चांद की तरफ दौड़ रहे हैं, और गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति के पास वो सब कुछ है जिससे हम अपन जीवन जी सकते हैं, लेकिन हमारी लालचा को पूरी कोई भी नहीं कर सकता। अब लालचा किसी भी चीज से पूरी नहीं होती। मेरे पास एक छोटी सी साइकिल थी और पुरानी साइकिल थी, मैंने नई साइकिल ले ली तो फिर उसका नया ब्रांड और नई वो उसकी और हाई वर्जन देख लिया, फिर साइकिल से मोटरसाइकिल आई, कार आई, कार का नया ब्रांड। तो आदमी कभी भी संसाधन से, मेटेरियलिज्म से, मतलब भौतिक चीजों से आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। संतुष्ट आदमी होता है अपने विचारों से संतुष्ट होता है कि मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए बहुत है,
1: बिल्कुल संतुष्ट और विचारों से
0: संतुष्टि बाहर नहीं है, संतुष्टि बाहर कहीं भी नहीं है, साधनों में संतुष्ट नहीं है, जोधपुर में मेरा, मतलब मैं जहां भी जिस शहर में रह रहा हूँ, मेरा पूरी पोस्ट कॉलोनी में सबसे अच्छा बंगला है, लेकिन सात वाला मेरे खाली जमीन पड़ी, उसने डिजाइन थोड़ी बदल के मेरी वाले से 21 डिजाइन लाके बना दिया, तो मेरे रात को नींद आनी बंद हो गई। अब जबकि बहुत बड़ा मेरा बंगला है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ी सी उसने डिजाइन नहीं लिया ही, तो मैं घर से बाहर निकलता हूँ उसकी डिजाइन के सामने देखता हूँ तो मेरा पिछता होता है, यार क्या कर लिया ये, अपने पैसे तो खूब लगे लेकिन इसने तो सारे डिजाइन नहीं बना ली। तो कहने का मतलब है आदमी किसी भी चीज से, ऐश्वर्य से, धन से कभी संतुष्ट नहीं होता। और कुछ लोगों ने विकास की जो दौड़ में है वो कहते हैं आदमी को संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए, लेकिन विकास की अंधी दौड़ ऐसी हो गई है कि अब मनुष्य का जीवन ही निकलने लग गई है। छोटे बच्चे भी मोबाइल के अंदर इतने घुस रहे हैं कि मोबाइल उनकी माँ से भी प्यारे लगने लगे, माँ का दूध पीना छोड़ देंगे और मोबाइल की तरफ देखने लग जाएंगे, हम जा किधर रहे हैं ये हमें भी सूझ नहीं रहा है, और हम इसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है। स्कूल में सिर्फ एक बंद डब्बा में स्कूल में पहले मैदान होते थे, पढ़ाते थे, अब मैदान गायब हो गए बंद डब्बों में बच्चों को। और कहीं कहीं तो मैं देखता हूँ, आपने भी देखा होगा मैडम, 50 किलोमीटर या 25 किलोमीटर से बच्चे को सुबह कलेक्ट करते हैं, स्कूल लाते हैं और 3-4 घंटे बैठाते हैं, वापस 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर बस में और घुमाते हैं। हम शाम को चाहते हैं कि बच्चा का दिमाग तेज हो रही है, इसकी मानसिकता सुधरे, कैसे सुधरे, वो थकान से मरा मरा हो जाता है, कैसे पढ़ाई करे, कैसा राष्ट्र उत्थान करे जब उसके है ही नहीं। और दूसरे ऐसी पहले हमें कविताएं और भजन और कीर्तन और राष्ट्रपति गीत गवाए जाते थे, जैसे हिंद के बहादुरों वक्त की पुकार है, बढ़ना है, बढ़ना है, आगे सबसे बढ़ना है, इस प्रकार के निर्माणों के पावन युग में चरित्र निर्माण ने भूले इतने, जब नाव जल में छोड़ी, कितने प्रकार के राष्ट्रभक्ति के और आत्म उत्थान के गीत और कविताएं सुनाई जाती थी, तो हमारे मन में रहता था नहीं ऐसा हमें करना चाहिए, लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है तो फिर कुछ होना भी नहीं है।
1: जी सर, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम आपसे बात कर रहे हैं, और आप इतने समय से ये कार्य कर रहे हैं, जो बच्चे इस वक्त सुन रहे हैं, जो युवा सुन रहे हैं, उनके लिए जरूरी प्रेरणादायी कार्यक्रम है ये।
0: युवा आज नहीं जागा तो कल गंदगी में खड़ा रहेगा और पिछताएगा, और अगली पीढ़ी जैसे आज जवान है उसके बच्चे हो रहे हैं, वो बच्चे जब जवान होंगे तो जो जिन्होंने जन्म दिया है उनको गालियां निकालेंगे 100% के, खुद ने तो जन्म देके हमको छोड़ दिया और धरती को गंदगी करके चला गया, अब हम जी भी नहीं सकते और मर भी नहीं सकते, मरे तो कैंसर होके मर रहे हैं या कोई और बीमारी लेके मर रहे हैं, हर चीज में जेर है। व्यापारी चाहता है मैं किसान को ठगूं, किसान चाहता है मैं केमिकल डाल के व्यापारी को ठगूं, और एक दूसरे से ठग रहे हैं और खुश हो रहे हैं। जबकि ठगा आदमी आदमी को रहा है, लेकिन फिर भी खुश हो रहा है। जो किसान ठग रहा है वो व्यापारी को केमिकल दे रहा है, और व्यापारी मिलावट करके किसान को दे रहा है या अदर कंज्यूमर को दे के पैसे इकट्ठे कर वो ठग रहा है। तो वो भी देख रहा है मेरे पास पैसे हैं, अरे पैसे किसी काम के नहीं, मरना वाला एक सांस भी पैसे से खरीद नहीं सकते।
1: जी जी सर बिल्कुल, पैसे से सांसें नहीं खरीदी जा सकती, हमने देखा कोरोना काल में भी। तो सर आपसे जानना चाहेंगे स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा को किस तरह से व्यवहारिक बनाया जाए, क्या कहना चाहिए?
0: बिल्कुल सही है, जब भी बच्चों का जन्मदिन हो टोपियां नहीं बांटी जाए, बच्चों के हाथ से पौधे लगाए जाए, पर्यावरण के संबंध में रैलियां गीत और उनको चित्रकला आयोजित की जाए कि पर्यावरण के बारे में बच्चा क्या जानता है, तुम अपने अपना एक बैठ जाओ और आपकी भावनाओं को पर्यावरण के बारे में क्या जानते हो वो भावना होनी चाहिए। शनिवार को जो नो बैग डे होना चाहिए, नो बैग डे में पर्यावरण के बारे में उनसे विचार लेने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा उनको बताना चाहिए कि जीना है तो प्रकृति को बचाना पड़ेगा। उनको इस प्रकार की भावना ठूस ठूस के बढ़नी चाहिए। जैसे पहले हमें स्कूल में हम पढ़ाई करके नहीं आते थे, होमवर्क करके नहीं आते तो मुर्गा बनाते थे, छोटे बच्चों को कभी कभी बड़े बच्चों के ऊपर बैठा देते थे और इस प्रकार की हम देते थे ताकि हम लज्जित होते थे कि नहीं पढ़ाई तो हमें करनी पड़ेगी और ऐसा हमें करना पड़ेगा। लेकिन आजकल के बच्चों को तो बर्थडे होता टॉफी बांटते वो बांटते रहे, ये चीजें टॉफी क्या होती है कुछ नहीं, एक मीठा जेर है। लेकिन अब हमारे परिवार में और टिफिन में ही डालते हैं तो प्लास्टिक के डब्बे में टिफिन डालते हैं जो बदबू मारता है। एक तो पराठा बनाते हैं, पराठा खुद अपने आप बच्चों छोटे बच्चों के जो नर्वस सिस्टम है उसको खराब करता है कि छोटे बच्चे बढ़ती वाले तो पराठे में तेल होता है, वो कैसा ही तेल होता है वो खिलाते हैं। कभी भी बच्चों को वो इस प्रकार के तेल में तली हुई छोटी उम्र के बच्चों को नहीं देने चाहिए, लेकिन हम दे रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार जब तक हम सात्विकता पे ध्यान नहीं देंगे, बच्चों के बर्थडे पे भी पौधे लगाने की केक काटते हैं पौधे लगावे, अगर एक बर्थडे पे एक पौधा होगा तो बच्चा अगर बड़ा होगा और 25 साल का होगा शादी होगा तो अपनी वाइफ को कह सकता है कि मैं देख 25 साल का हूँ, मैंने मेरे 25 साल में इतने पौधे लगाए हैं, आज अपनी शादी के दिन भी हम 2 पौधे लगाएंगे, एक तेरा होगा एक मेरा होगा। इस प्रकार आगे बढ़ेंगे और लोगों में भावना पैदा करेंगे कि हर फंक्शन को पौधे से जोड़ेंगे, हर फंक्शन को स्वच्छता से जोड़ेंगे, बाजार से कपड़े की थैली के लिए जाएंगे, घर एक अलग ही अलमारी का कोना रखेंगे जहां कपड़े की थैली रखेगा, सामान लाने की थैली है, वहां मेरे बैग में मैं मोटरसाइकिल बैग में मोटरसाइकिल चलाता हूँ कम से कम 5 कपड़े की थैलियां हर समय रखती है, मिसेज रखती है नहीं रखती है तो मैं उनको थोड़ा रौद्र रूप बताता हूँ तो वो झट से रख देती है, एक दिन नहीं रखती है दूसरे दिन मेरे को मालूम नहीं चलता है, मैं जाके देखता हूँ तो थैलियां पड़ी रहती है। तो जब हम सिस्टम बनाएंगे तो सिस्टम से सब होता है, हम इग्नोर करेंगे। ऐसी ऐसी महीने हैं कि आलू ले रहे हैं और टिंडी ले रहे हैं, आलू और टिंडी अगर हम साथ में ले ले तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो उसके लिए प्लास्टिक अलग थैली मांगती है, हर सब्जी और फिर एक बड़ी थैली, 5 तरह की सब्जी ली तो 5 प्लास्टिक छोटी थैली है फिर एक बड़ी थैली है, घर से कपड़े की थैली ले जाते हैं, शर्म आती है। जब हम शर्म करेंगे तो फूटेंगे कर्म, ये तय है। हम प्रकृति बचाने में शर्म करेंगे तो मरेंगे, हमारे आंखों के सामने हम अपने पूर्वजों को अपने बच्चों को या कोई भी कैंसर हो गए, कोई कैंसर से मरेगा, कोई किसी से मरेगा, कोई किसी से मरेगा और हमें सहन करना पड़ेगा। जो हम देंगे वो हमें मिलेगा,
1: जो हम देंगे वो हमें मिलेगा। सर आपकी जो अभियान है कितने स्वयंसेवक जुड़े हुए? जी जी सर
0: पहले बताया था कि हम छोटा फंक्शन होता ना, हम क्या है वॉलंटियर है, हम किसी से कुछ लेते नहीं, तो जब हम किसी से कुछ नहीं लेते हैं जिसको जो समय मिलता है उस हिसाब से वो समय निकाल के अपना भाड़ा किराया खुद दे के आता है। तो शादी ब्याह होते हैं वहाँ 10-15 होते हैं और मेले होते हैं धार्मिक मेले होते हैं तो वहाँ संख्या थोड़ी हमें बढ़ानी पड़ती है, उस समय हम कभी 50 हो जाते हैं कभी 100-150 हो जाते हैं, वो मेले की और उनके लोगों के आने की आह्वान पर उनकी रुचि के अनुसार, दबाव कहीं नहीं होता, दबाव वाला काम भी नहीं करता।
1: जी जी सर ओके,
0: जो बिना दबाव वाला एक आदमी 15 आदमी काम कर लेगा और दबाव वाला 15 आदमी एक आदमी काम नहीं करेगा, कहीं पेड़ के नीचे जब बैठ जाएगा या कहीं 2 मिनट में कहेगा मेरी मासी आई हुई है 2 मिनट मिल के आता हूँ, मासी क्या आई हो, शाम तक ही वापस नहीं आएगा।
1: जी,
0: ये होता है
1: जी,
0: काम सब संकल्प काम करता है, शरीर काम नहीं करता है, जुनून काम करता है, बॉडी काम नहीं करती, जुनून काम करता है, संकल्प मजबूत होता है, हमें करना होता है, हमारी भावनाएं होती है, हमें कुछ देने की इच्छा होती है तब काम होता है। काम आदमी किसी आदमी का कोई शरीर काम नहीं करता, उसके अंदर संकल्प क्या है और क्या वो धरती को देना चाहता है, किस प्रकार का जीवन जी के दूसरों को देना चाहता है वो काम करता है। कभी ये मत सोचना कि बॉडी काम करती है, बॉडी काम तो सिर्फ है भार उठाना, वो मेरे से एकदम छोटा बच्चा हूँ मेरे 10 किलो भार उठाए, लेकिन एक बहुत मुस्टंडा है वो हो सकता है 50 किलो है 2 क्विंटल ही उठा ले, पहलवान है तो 2 क्विंटल ही उठा ले, वो अलग चीजें हैं। लेकिन आप किसी काम को अंजाम देने के लिए मेहनत करेंगे तो वो भावना से होगा, पहलवानी।

0: तो मनुष्य हैं। किसी शेर ने अपना पेट भरने के बाद में दूसरे शेरों को या गंदगी को प्लास्टिक का उत्पादन नहीं किया या किसी प्रकार के दूसरा कोई चीज का उत्पादन नहीं किया, जो कर रहा है मनुष्य कर रहा है और जो नुकसान पहुंचा रहा है मनुष्य कर रहा है। मनुष्य कहता मैं बुद्धिमान हूं, लेकिन वो है बुद्धिहीन
1: जी।
0: एयर केस में बुद्धिमान है, परसेंटेज बुद्धिमानों का बहुत ही कम है, सिर्फ दो पैरा वाला जानवर है, दो पैरा वाला जानवर। मनुष्य ये मत समझना कि मैं मनुष्य हूँ। मनुष्यता लाने के लिए बहुत ज्यादा विचार करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, सवेरे उठ के सोचना पड़ता है व्हाट इज माय टारगेट ऑफ माय डे, व्हाट इज टारगेट ऑफ माय होल लाइफ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे किस प्रकार जीवन जी के आगे बढ़ना है, क्या हम सिर्फ एक जानवर बन के सुबह शाम भोजन करना और सो जाना, वो करना दाल रोटी लाना, बच्चों को जिमाना, सो जाना, ये मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता यह है अपना परिवार पाल के और दूसरों को भी कुछ दें, प्रकृति को भी कुछ दें, तब तो है मनुष्यता। सिर्फ अपना ही पेट भराई करें तो मनुष्य नहीं है, वो तो जानवर भी करते हैं, एक जहरीला सांप भी करता है, एक कीड़ा मकोड़ा भी करता है।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने कहा कि मनुष्य अपने अगर करते हुए को भूल जाए तो वो किसी जानवर के समान है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे,
0: जानवर समान नहीं है मैडम, जानवर से गया बीता है, जानवर से डाउनफॉल है। जानवर तो मतलब कोई गाय ने किसी ने धरती में कोई इतना गंदगी नहीं कही, आज हम जानवरों की कंटीली बाड़ियां लगा के हिरणों को खत्म कर दिया। अब हमारे जोधपुर की तरफ हिरण खूब सारे थे, हमारे खेतों में हमारे घर के जब हम रात को बाहर घर के आगे खाट बिछा के सोते थे ना, तो पास में हमारे चारों तरफ हिरण बैठे रहते। अब क्या हुआ, हर लोगों ने कंटीले तार लगा दिए, तो हिरण को जो पालतू कुत्ते हैं और जो गलियों में घरों में होते हैं वो चार पांच का झुंड बना के हिरणों को मार देते, क्यों वो जैसे वो हिरण दौड़ने की कोशिश करता सामने जाली आती थी, और कुछ लोग तो जाली भी इतनी बारीक लगाते हैं, सफेद जाली लगाते हैं वो प्लास्टिक वाली, उसमें और भी फंस जाता है, उसको दिखती भी नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, छलांग लगाता है लेकिन जाली में फंस जाता है, कुत्ते आ जाते हैं। अब हिरणों की तो टोली खत्म हो गई, अब किसकी आई है, जिसको अपन कहते हैं ना सूरों की। अब जहां भी देखो, जैसलमेर देखो, बाढ़ में देखो, बीकानेर देखो, हरे कहते हैं कि यार हमारे खेतों में सूर बहुत नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो चीज सुंदर थी उसको गायब कर दिया, तो अब सूर ही आएंगे।
1: बिल्कुल, जानवरों के घर तक हम पहुंच गए, उनके लिए जगह ही नहीं बची है।
0: अब बिल्कुल सही है, जानवरों का घर तक पहुंच गए, जानवर जाए कहां, तो जानवर आपके घर में आएंगे, और जानवरों की अच्छी क्वालिटी को खत्म कर दिया तो गंदी क्वालिटी है जो सूअर है वो वही आएंगे, अच्छी क्वालिटी जो हिरण थे, जो लोमड़ियां थी, जो वन बिलाव थे, जो भी है, जो हमारे प्रकृति के लिए फायदेमंद थे, उनको हमने उनकी जगह ही नहीं छोड़ी, तो अब जो गलियों में गंदगी में बैठे रहते हैं वो हमारी तरफ बढ़ने लगे।
1: बिल्कुल,
0: वही अपने साथ होता है, हम आगे अच्छे संस्कारों को इग्नोर करेंगे तो बुरे संस्कार तो स्वतः ही आ जाएंगे, वो तो कहीं गाली तो बच्चा कहीं भी सीख जाएगा, लेकिन एक कीर्तन भजन सत्संग या एक अच्छी पोएम याद कराने में हमें कितने दिन लग जाएंगे, और गाली तो एक मिनट में आके बोल देगा, डेढ़ दो साल का बच्चा, तीन साल का बच्चा इतनी भद्दी गाली बोलेगा आप अचंभित हो जाओगे, ये कहाँ से सीख के आगे। तो बुरी चीज तो हरेक सीखता है। आज मैं इतना काम करता हूँ, मेरा इतना मैं वायरल नहीं हूँ, और एक दिन मैं किसी से झगड़ लूँ तो एक मिनट में मेरा वीडियो इतना वायरल होगा दुनिया देखती रह जाएगी, यार ये आदमी ऐसे क्यों झगड़ रहा है, और जगह जगह देखो ये पर्यावरणविद खमुराम विष्णु, देखो इसका एक रूप, ये देखो यूं कर करके वीडियो आएंगे।
1: जी सर, नेगेटिव चीज जल्दी वायरल होता है,
0: बिल्कुल वायरल होता है,
1: लेकिन आपने अपने हौसलों के साथ उड़ान आपने भरा है और अभी तक भी आप उड़ रहे हैं पर्यावरण के कार्य के क्षेत्र में पॉजिटिविटी के साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मैंने मेरा संकल्प ले रखा है, जब तक जिंदा रहूंगा धरती माँ को देता रहूंगा, और ये मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, क्यों धरती ने मुझे ऐसा जीवन दिया, मनुष्य मैं अपने आप को मनुष्य नहीं मानता, भगवान का रूप ही मानता हूँ, क्योंकि भगवान में मुझ में कोई फर्क नहीं है, भगवान में इतनी है कि भगवान दूसरों को देने का प्रयास करता है, मैं कभी कभी चूक जाता हूँ, इतनी कमी है, भगवान हमेशा हर एक को देता है और मैं कभी कभी देने में चूक जाता हूँ, लेकिन थोड़ा प्रयास करता हूँ कि मैं कुछ न कुछ देने का प्रयास करूँ, बाकी मनुष्य ही धरती का भगवान है। भगवान अपन कहते भी हैं कि एक मेरे को आज देवता मिला नहीं तो मैं आज पहुँच ही नहीं पाता, मैं बस चूक गया था, मैं फलन जगह ऐसे हो गया था, फंस गया था, लेकिन एक क्या मालूम देवता कहाँ से आया, मेरे को वहां से उसने बिठाया, ऐसा किया। हम कभी कभी वर्तमान सुनाते ही रहते हैं, तो मनुष्य में ही भगवान विराजमान होते हैं, मनुष्य में ही भगवान और देवता रहते हैं।
1: जी सर, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि विदेशों से भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में क्या सीखना चाहिए भारत को, आप विदेश भी देखे हैं, भारत भी आपने देखा।
0: ऐसी बात है मैडम, विदेशों में अपने देश के प्रति अटूट श्रद्धा है और अपने आप इग्नोरेंस है, अपने आप इग्नोरेंस है, क्योंकि अपन इतनी अलग अलग जाति प्रथा में बंट गए हैं और अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, और कुछ लोग दूसरे

0: कम्युनिटी दूसरे देशों से जुड़े हुए हैं, तो वो देखे हम यहाँ क्यों ऐसी, क्यों हम वहाँ रह करें, हमें क्या करना है, वो क्या करना है, समझाएं तो समझे नहीं, तो अपन समझाएं तो वो कहते क्या ठेका ले रखा है तुमने समझाने का, लेकिन वहाँ दूसरे विदेशों में ऐसा नहीं है, वो अपने देश के प्रति भावना है और अपने देश को साफ रखना चाहता है, और अपने यहाँ ऐसी भावना नहीं है। एक तो आबादी बहुत ज़्यादा है और एक अनपढ़ और इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है कि हाँ हमें हमारा क्या लेना, हमारा क्या करना, सरकार अपना आप करेगी, हम तो पैसा हम हमारे ऊपर टैक्स लेती है, वो लेती है, वो लेती है, मतलब हर आदमी चाहता है कि मैं कुछ नहीं करूं और दूसरा करे, अब दूसरा ऐसा कैसा, मेरा मुंह मैं ही नहीं धोऊं तो दूसरे को क्या पड़ी है मेरा मुंह धो आए के धोएगा, हाँ छोटा हूँ मेरी माँ है, मैं छोटा हूँ मेरी माँ धो दी, लेकिन मैंने उम्र पा ली, मैं 25 का हूँ 15 का हूँ, माँ आके थोड़ी मेरा मुंह धोएगी। तो ये जब तक हम देश और अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे, कर्तव्य को हम इग्नोर करेंगे, तभी हमारा राष्ट्र गंदा होगा और भी ज्यादा बीमारी आएगी, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उनको कोई लेना देना नहीं है अपने यहाँ गंदगी हुए या गंदगी सफाई रहे, उनको कोई मतलब नहीं है। बाहर का आदमी आके जब बांग्लादेश को क्या मतलब कि भारत की स्वच्छता रहे या नहीं रहे, या पाकिस्तानी क्यों आके अपने बारे में सोचेगा भारत साफ रहे, हर भारतीय का कर्तव्य बनता है कि वो अपने राष्ट्र को साफ रखे, अपने गांव को साफ रखे, अपने घर को साफ रखे, और यही होगा तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। हो सकता है किसी कुछ फौज कॉलोनी में कोई विकास समिति बना दी और पर्टिकुलर एरिया, आदर्श आदर्श एरिया बना के उस जगह विशेष को साफ रख लिया हो, लेकिन पूरे भारत को कोई साफ नहीं रख सकता जब तक प्रत्येक आदमी नहीं जागेगा और प्रत्येक आदमी का कर्तव्य नहीं समझेगा जब तक। हम साफ रखने में बड़े ही मुश्किल हैं। जरूर हम अब मोदी जी ने 2014 में स्वच्छ भारत की जगह जगह वो कचरा टैक्सी चला दी, लेकिन कचरा टैक्सी में नहीं डालते हैं लोग, कचरा डालते नहीं टैक्सी में, वो देखे दे 50 रुपए लग जाएंगे, 100 रुपए लग जाएंगे या 80 रुपए लग जाएंगे। अब ऐसे लोगों से हम कैसे सफाई कराएं? 80 रुपए का गुटखा खा लेगा, जर्दा खा लेगा, पान खा लेगा और कोई रात को ड्रिंक कर लेगा, लेकिन कचरा पात्र का महीने का 80 रुपए कचरा वाले गाड़ी को वो नहीं देगा और कचरा खुले में फेंक देगा, और खाता चलता जा रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक लास्ट बात कह के मेरी बात पूरी करना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है पहले थूकता है कोने में और फिर चाहता है कि मेरा इलाज बहुत बढ़िया हो जाए। अरे कैसे हो जाए, मतलब अब मैं एक बात लास्ट में और कहता हूँ, मेरे को याद आ जाती है, क्या करूँ, आपने कहा ही कह दिया, आप कुछ याद आए जरूर बताना। अब एक गिरगिटों की मीटिंग चल रही थी, आप समझ गए, गिरगिटों की मीटिंग चल रही थी, वो नाराज हो गए, आपस में झगड़ने लगे, एक गिरगिट ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या कि ये मानव मनुष्य आदमी बदले जैसे कैसे रंग बदल रहे हो, गिरगिटों ने कहा आदमी बदले जैसे क्यों रंग बदल रहे हो, मतलब गिरगिटों ने हमें उपाधि दे दी कि मनुष्य बहुत ज्यादा रंग बदल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता तो अलग तरह से बिहेव करता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता तो अलग बिहेव करता है, और अगर वही एयरपोर्ट पर जाता है तो अलग बिहेव करता है, मतलब जगह जगह बदल रहा है, जगह जगह विचार अपनी एक रूपता रखता ही नहीं है, बदलता जा रहा है, और वही देख लो कि कहीं यहाँ बहुत ज्यादा पेनल्टी लग जाएगी, 100, 200, 300 रुपए लग जाएगी, तो बड़ी बड़ी होटलों में जाता है तो इतना सीधा हो जाता है, गांव का गंवार होता है भी, वो कहीं नहीं थूकता है, बीड़ी भी नहीं सुलगाता है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पलंग के पास में मरीज बैठा सो रहा ऊपर और नीचे बैठा बीड़ी पी रहा है, समझता सब है लेकिन करना नहीं चाहता, वो रंग बदल लेता है, सब समझते हैं, छोटा बच्चा भी समझता है, मैंने आपको कहा था छोटा बच्चा भी समझता है कि क्या कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कौन सी कहाँ रखती है। अब ये जब तक हम राष्ट्र को बच्चे बच्चे को नहीं समझाने में सफल नहीं होंगे, छोटे बच्चे परिवार के लोगों को मानेंगे नहीं ये गंदगी ये सही है, बच्चा आगे बढ़ेगा, युवा आगे बढ़ेगा तभी होगा, बूढ़ों से हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि उन्होंने तो अपनी आदत बना ली है, जो 25, 30, 40 साल से सिगरेट पी रहा है उसको हम पैर पकड़े बैठे तो सिगरेट छोड़ दे मरे नहीं छोड़ेगा, लेकिन जो शुरू कर रहा है उसको रोक देंगे कहाँ सिगरेट पी रहा है, तो वो हो सकता है वो हमारी बात मान ले, उसको हम प्रोत्साहित करें तो मान ले, ऐसा हो सकता है।
1: कुछ अंतिम क्षण में हम पहुंच चुके हैं, अंतिम पड़ाव है ये इस प्रोग्राम का, तो कुछ क्वेश्चंस आपको जल्दी जल्दी पूछना चाहूंगी, तो एक शब्द में पर्यावरण आपके लिए क्या है, एक शब्द में?
0: एक शब्द में पर्यावरण यही है कि अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो देना सीखना पड़ेगा, प्रकृति को हरा भरा और साफ सुथरा रखना पड़ेगा, और हम चाहते हैं कि हम तो कुमोती मरेंगे, हम तो इसीलिए पैदा हुए हैं, तो फिर जैसा जियो वैसा जियो, मौत बहुत नजदीक आ रही है, मौत दौड़ती आपको झपट रही है, और मौत आपको कम उम्र में 25, 30, 35 और हमारी एज 50 से नीचे हो जाएगी, वो जो जीने की उम्र है ना वो बहुत कम हो आ जाती है, बीमारी है।
1: पर्यावरण मतलब देना है, देना
0: पर्यावरण का मतलब लेना नहीं है, पर्यावरण मतलब देना, अगर आप जो दोगे वो लौट के आएगी, जैसे इको है, इको आप वैसे ही इको सिस्टम बोलते हैं, इको है पर्यावरण, क्या इको, जैसे अपन बोलेंगे जैसे कुएं बोलते हैं तो वापस आती आवाज आती है, वैसे ही ये पर्यावरण है, आप जो दोगे वो वापस मिलेगा, मैं घर के बाहर कचरा फेंकूंगा तो उड़ के घर के अंदर आएगा, नहीं आएगा तो बाहर जाऊंगा तब दिखेगा। और मैं घर के अंदर बाहर सांप रखूंगा तो बाहर जाऊंगा तो सफेद दिखेगी, अंदर भी हरियाली दिखेगी सफेद दिखेगी, वही मैं सफेद कपड़ा पहनूंगा तो मैं सुंदर लगूंगा, अच्छा लगूंगा, मन में शांति होगी। मैं गंदा कपड़ा पहनूंगा तो लगेगा यार आज क्या पहन लिया, लोग क्या सोचेंगे। कुछ लोग तो दूसरों के लिए भी पहनते हैं। और दूसरी एक पर्यावरण की वो बढ़ती हुई, मैं एक बार लास्ट बात कर देता हूँ, जो फैशन है ना ये पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। ऐसी ऐसी बहने हैं जिनके, जैसे जयललिता जब वो सस्पेंड हुई थी मुख्यमंत्री पद से हटी थी तो अगर 1000 जूतों की जोड़ी है वो अलमारियां भरी हुई थी कपड़ों से, वैसे हमारी बहनों की भी है, हर मिनट में नया कलर लेके आती है, पहनती है हर शादी, एक ड्रेस को दोबारा पहनने में शर्म महसूस करती है, जबकि हमारे पूर्वज उसकी राली बनाते थे और धोती पुरानी होती थी, धोती का ऊपर कवर चढ़ा के धोती के अंदर कपड़े भर के रालियां बनाते थे, वो तो हम भूल गए। अब बूढ़े बड़े जावे ना तो उनके जैसे मेरे दादी जी चले गए या मेरे पास नानी जी चले गए तो नानी जी के जितने भी कपड़े हैं ना बाहर चौराहे में या कहीं जैसे भी हो कहीं ले जाके फेंक देते हैं, उन कपड़ों को काम नहीं लेते, जबकि वो पुराने लोग थे, गर्व समझते थे मेरे दादा की धोती है, मेरी नानी की साड़ी है, राली बनाएंगे या बैठने की वो बनाएंगे। तो जब तक हम इस प्रकार का सिस्टम नहीं लाएंगे, भारतीय संस्कृति को नहीं अपनाएंगे, देखा देखी करेंगे तो देखा देखी करे तो मरे नहीं तो हुए रोग।
1: तो मिनिमलिज्म की बात आप कर रहे हैं और जो हमारे पुरानी संस्कृति,
0: बिल्कुल सही है। एक आदमी ने कहा कि धरती के सबसे सुखी आदमी सभी, एक राजा बहुत था, वो बहुत ज्यादा दुखी था, कितने वेद बुला लिए सब कुछ बुला लिए लेकिन राजा ठीक नहीं हुआ। तो किसी ने एक ने चलता रहा चलता कहा मैं ठीक कर सकता हूँ, ये कैसा, ये जो सबसे संतुष्ट आदमी है उसका शर्ट लाके इसको राजा को पहना दियो। तो राजा ने दूते छोड़े तो कोई संतुष्ट था ही नहीं, कोई अपनी पत्नी से दुखी था, कोई पति से दुखी थे, कोई माँ से, कोई भाई से, कोई पड़ोसी से, कोई सब लोग दुखी थे। एक आदमी नदी किनारे बैठा था वो एकदम खुश था, एकदम मस्त था। उससे पूछा राजा के दूतों ने, भाई तुम कैसे हो गए, मैं एकदम मस्त हो गए, एकदम मस्त, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं, चिंता नहीं, कुछ भी नहीं, तो तुम्हारा शर्ट दो मुझे, तुम्हारा बुशर्ट दो, तुम्हारा पहना हुआ कमीज दो, कि मेरे पास कमीज है कहाँ, बगैर कमीज बेटा मस्त मस्त मोला बेटा था। तो संसाधनों से, कपड़ों से और संपत्ति से आदमी कोई सुखी नहीं रह सकता
1: जी,
0: सुख है विचारों में
1: और पर्यावरण के प्रति आपके समर्पण भाव आपको सुख देता है। तो आपका पसंदीदा वृक्ष क्या है सर?
0: मेरा पसंदीदा वृक्ष तो ये खेजड़ी है जो राजस्थान की राज्य वृक्ष है, जिसकी अब सोलर प्लांट की वजह से निरंतर कटाई हो रही है, तो हम तो यही कहेंगे भी खेजड़ी बढ़ाओ, क्योंकि खेजड़ी की लूंग होता है तो वो भी खाद करता है, खेजड़ी के खोके होते हैं वो हिरणों के और पशुओं और जानवरों के लिए खाने, ऊंट के लिए भी खाने के लिए काम आता है, और सांगरी से हम बहुत अच्छी तरह पंचकुटा की सब्जी बनाते हैं। वैसे जो अपने भारतीय संस्कृति में दूसरे जो पेड़ है, पीपल है, बरगद है, जो अपने अपने पेड़ है वो सब विलुप्त होते जा रहे हैं, और नए नए पेड़ लगाए, कोनोकॉर्पस नया पेड़ आया है जिसे सब जगह बैन कर रखा है, लेकिन राजस्थान में कुछ जगह लगाए जा रहे हैं जो 12 मास है, लेकिन वो प्रकृति का इतना शोषण कर रहा है, जैसे बबूल पेड़ों का राक्षस है।
1: Okay.
0: पेड़ों में मनुष्य में जो राक्षस होता है ना, वैसे पेड़ों का राक्षस बबूल है, किसी को नहीं छोड़ा है, हर धरती पहाड़ को नहीं छोड़ा, नदी को नहीं छोड़ा, सड़क किनारे को नहीं छोड़ा और घास को नहीं छोड़ा। जानवर आज अगर गौशाला में है तो बबूल की वजह से है, बबूल उगने ही नहीं देता घास को
1: जी। ओके
0: okay. तो ये बातें हैं जो मैंने
1: सुने हैं, और बबूल को हमें जहाँ कम लगाना चाहिए अगर देख रहे हैं तो उसे,
0: बबूल तो छोटे वाला बदमाश है, वो राक्षस है, राक्षस तो अपने आप ही पनपते हैं मैडम, बबूल को लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही, कितनी ऊंची पहाड़ी हो, कैसे हो, कहीं हो, खेत हो, जमीन हो,
1: लगा हुआ है, हटा के हम दूसरे वृक्ष लगा सकते हैं।
0: इतने संसाधन अपने पास है ही नहीं, लोग रुचि भी नहीं लेते हैं, गवर्नमेंट भी नहीं ले रही है, प्राइवेट वाले नहीं ले रहे हैं, अपने क्या करना, और बबूल फैलता जा रहा है, ऐसे फैलता जा रहा है कि पूरी सृष्टि को खत्म करेगा। अरे इतने बबूल हो गए, आपने देखा, आपसे क्या छिपा है, मैं आपको क्या बताऊं कि हो सकता है पहाड़ी आया जो माउंट आबू में उस तरफ कम होंगे, लेकिन हमारे मरुस्थल में तो इधर बहुत है, सड़कों के किनारे और जहाँ खाली हो या नाड़ी के किनारे हो या तालाब के किनारे, बहुत सारे लगते जा रहे हैं और पूरी जमीन को, घास की जमीन को बबूलों ने घेर रखा है।
1: जी सर, जल जमीन आसमान सबसे पहले किसको बचाना चाहेंगे आप?
0: मैं तो कहूँ पांच तत्वों को बचाना चाहिए, पांचों तत्व है वही भगवान है, इन पांचों तत्वों जो जल जमीन आकाश वायु अग्नि,
1: लेकिन एक चूज करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले किसको बचाएंगे?
0: अब जल को बचाएंगे तो सब बच जाएंगे,
1: जल
0: नहीं होगा तो पूरी संपत्ति, पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, जल से ही सब जीव पैदा हुए हैं, जल बच जाएगा तो बाकी सब बच जाएंगे।
1: ओके सर जी, सर बढ़िया सर। एक चीज जो हर भारतीय को आज ही छोड़ देना चाहिए आपको क्या लगता है?
0: प्रदूषण फैलाना,
1: प्रदूषण फैलाना,
0: और क्या?
1: ओके,
0: एक आदत ज्यादा ज्यादा धरती को हरी भरी रखें, हरियाली में ही भगवान है, भगवान का दूसरा हरियाली ही भगवान है, भगवान वही रहेंगे जहाँ हरियाली होगी, हरियाली का नाम ही भगवान है, भगवान कोई भगवान गंदगी पर जाके नहीं खड़ा रहेगा, जहाँ हरियाली होगी वहीं रहेंगे भगवान, तो हरियाली उसमें प्रभु है,
1: बिल्कुल
0: हरी वहाँ जहाँ हरियाली,
1: हरी वहाँ है जहाँ हरियाली है सर, बहुत सुंदर बात है ये। और भारत को हरित बनाने का एक उपाय क्या है आपको लगता है?
0: सभी संकल्प लेंगे तब होगा, बाकी अकेले आदमी सब संकल्प लेंगे कि हम हमारी धरती माँ को हरा भरा रखें हो गया, बाकी कोई ऐसा उपाय नहीं है, किसी के पास जादू टोना नहीं है, कोई ऐसा डंडा नहीं है कि ये भारत को हरा भरा बना दे, जब मनुष्य जागेंगे सब जागेंगे तभी होगा, ऐसा कोई ऐसा आदमी एक देवदूत नहीं पैदा होगा या पहुंच भी नहीं पाएगा हरे को हरा बना दे। मोदी जी खूब कहते हैं पेड़ लगाओ, लेकिन अब कितनी सरकारी मशीनरी है, वन विभाग है, कितना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बड़े बड़े अफसर है, जो IAS के कैडर वाले होते हैं, लेकिन हजारों पेड़ लगते हैं, लेकिन पेड़ों को बड़ा करने वाला कोई नहीं है, लगाने वाले खूब है, आत्मा पेड़ों को मारने वाले खूब है, नर्सरी से लगाते हैं और मर जाते हैं बस।
1: जी सर, जी
0: मेरे को कुछ लोग पूछते हैं कि आपने कितने पेड़ बड़े किए, मैं ये क्वेश्चन आपने गलत ही पूछा है, वो कहे ऐसे कैसे बोल रहे हो, मैं आप ये बोलो कितने पेड़ लगा के बड़े कर दिए, ऐसे पूछो, मैंने अगर 50 पेड़ बड़े कर दिए तो अपने आप में बहुत, मैं अपने आप को यूं गर्व गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और मैंने 5,000
1: लगाना नहीं बट उनका देखभाल भी करना है सर, ऐसा बोल,
0: हाँ लगा के देखभाल करके बड़ा करे, और बड़ा दिखना चाहिए, लगना चाहिए, 25 साल तक आप हो तो भी आपको आपने लगाया पेड़ नजर आना चाहिए, तब तो है आप लगाया पेड़ है ही नहीं, और आपके तो मैंने तो मेरे जीवन में 50,000 पेड़ लगा दिए, अरे भाई है कौन सी जिंदा कितने है वो तो मालूम नहीं।
1: जी सर, आपके बारे में अगर बात करें तो मुझे लगता है एक और कार्यक्रम भी कम पड़ेगा, और इतने सारे उपलब्धियां हैं आपके पास, इतने सारे पुरस्कारों की सूची भी है मेरे पास,
0: बिल्कुल सही है, आपकी तरफ से मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, आई विल बी ऑनर्ड बाई गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुझे वहाँ का बहुत बड़ा पुरस्कार देने जा रही है, गुरु जम्बेश्वर
1: बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन सर,
0: धन्यवाद मैडम, गुरु जम्बेश्वर प्रौद्योगिकी विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा,
1: हिसार से। जी सर, जी सर, आपको तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजा जा चुका है, और फिर से आपको एक और पुरस्कार से नवाजा जाएगा,
0: ये सब प्रभु का खेल है, प्रभु ही है, मैं उनको ही समर्पित करता हूँ, जो भी मुझे धन्यवाद देते हैं तो मैं धन्यवाद भगवान को दो कि मुझे मनुष्य बनाया है, इसे ऐसी समझ दी है, तो एक्चुअली में काम भगवान कर रहा है, नाम मेरा हो रहा है, तो मैं तो हमेशा ऋणी रहता हूँ, मैं परमात्मा भगवान के साथ शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, वो आपने कहीं सुना होगा एक कोई सेठ दान दे रहा था और आंखें नीचे हो रही थी, तो किसी ने पूछा कि दान दे रहे हो इतना अच्छा करो फिर नीचे क्यों आंखें कर रहे हो, क्या देने वाला कोई और है, मैं तो सिर्फ एक बीच की माध्यम हूँ, इसलिए लोग मेरा समझ रहे तब मेरे को शर्म आ रही है, इसलिए आंखें नीचे कर रहा हूँ, तो मैं भी अपने आप को लोग मेरे को कहते हैं आप अच्छा करते हो, तो मेरे को लगता है कि करने वाला भगवान है, मैं नहीं हूँ, मुझे समझ दी अकल दी है तो भगवान ने दी है, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ, और आई एम डूइंग समथिंग ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड जाम्बोजी एंड ऑलमाइटी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, और आपके समर्पण भाव को सलाम है, और आपके कार्य क्षमता को सलाम है, देशभक्ति को भी सलाम करते हैं आज हम रेडियो मधुबन के माध्यम से, और दोस्तों वक्त हो गया है यहाँ से अलविदा कहने का, तो खम्मूराम जी आपका बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद, आपके अनुभवों को, संघर्षों को, प्रेरणादायक विचारों को भी हम सलाम करते हैं।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, मुझे मेरा हौसला बढ़ाने के लिए संपर्क किया, मुझसे बातचीत की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मुझ पर भरोसा किया, तो मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा मुझे शक्ति दे, समझ दे, ज्ञान दे, अकल दे, कि मैं मेरे जीवन के अंतिम क्षणों तक धरती माँ को कुछ न कुछ न कुछ न कुछ ऐसा दूँ कि मेरी माँ मुझ पर गौरवान्वित हुए कि वाह बेटा मैंने कुछ जन्म दिया है तो कुछ समझ के दिया, तुम उसके काबिल निकला।
1: जी बिल्कुल, आप सर काबिल है, और धरती माता आप के लिए गौरवान्वित है ही।
0: मैं कभी कहता भी रहता हूँ कि हमारी तीन माँ, एक माँ जो हमें दूध पिला के बड़ा करती, दूसरी माँ गौ माता होती, तीसरी सब माओं की बड़ी माँ, द ग्रेट ग्रेट ग्रेट ग्रेट मदर वो कौन होती है, वो धरती माँ होती है, जो सब माओं को दूध पिलाती है, सब माओं को भोजन देती है, वो होती धरती माँ, हम बड़ी वाली माँ नाराज हो जाएगी, छोटी वाली माँ जिंदगी नहीं रह पाएगी।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सही, अगर बड़ी वाले माँ को नाराज नहीं करना है हमको, तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं पर्यावरण के लिए थोड़ा और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें, तो दोस्तों यहीं पर रुकना चाहते
0: हैं। समय की मांग है, दिस इज द नीड ऑफ आवर, ये समय की मांग है, और समय के हिसाब हम काम नहीं करेंगे तो फिर बेहाल होना ही है, पानी पीना है, पानी नहीं पी रहे हैं तो कह रहे हैं वो डॉक्टर कहेंगे भी पानी की कमी होगी, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा।
1: सही सही बात है, तो समय की मांग को देखते हुए हमें पर्यावरण के लिए कदम जरूर उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी प्रेरणादायी बातों के लिए, और आपके बारे में जानकर के हमारे श्रोताओं को भी बहुत प्रेरणा मिली है, और हमें भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से।
0: मैं आपका ऋणी हूँ, और प्रभु ने चाहा तो आपने जो भी आशा किया उसका मैं पालन करूंगा मेरे जीवन में।
1: धन्यवाद सर। तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। नमस्ते
0: नमस्ते।

अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

0: मधुबन पर आरजे रमेश के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। साथियों, जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लोग बातें करने वाले हैं सामग्री लेखक के बारे में। जी हाँ, अंग्रेजी में कहे तो कंटेंट राइटर। ये एक सशक्त और रचनात्मक करियर विकल्प है। आज के समय में जैसे कि डिजिटल युग में शब्दों की ताकत पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। आज हर ब्रांड, संस्था, मीडिया प्लेटफॉर्म और व्यक्ति अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने के लिए सामग्री कंटेंट पर निर्भर है। इसी आवश्यकता ने कंटेंट राइटर को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सम्मानजनक करियर विकल्प बना दिया है। साथियों, सामग्री यानी लेखक कंटेंट कौन सा होता है और कैसे लिखता है, इन सारी चीज़ों पर आज का समय जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। निश्चित तो आइए इस पर मैं एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करना चाहूँगा कि स्मिता एक पढ़ी लिखी गृहिणी थी। बच्चों के स्कूल जाने के बाद उसके पास समय होता था, लेकिन वो खुद को सीमित महसूस करती थी। उसने एक दिन सोशल मीडिया पर कंटेंट राइटिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। उसने ऑनलाइन कोर्स किया और रोज 500 शब्द लिखने का लक्ष्य बना। शुरुआत में उसने पेरेंटिंग और स्पिरिचुअल विषयों पर लिखा। धीरे धीरे उसे क्लाइंट मिलने लगे और आज स्मिता घर से काम करते हुए ब्लॉग लिखती है, रेडियो प्रोग्राम के लिए स्क्रिप्ट देती है और आत्मनिर्भर बन चुकी है। साथियों, यहाँ पर इस छोटी सी कहानी से सीख ये मिलती है कि उम्र, स्थान या परिस्थिति रुकावट नहीं, सोच रुकावट होती है। इसलिए सोच बदले तो जीवन बदल जाता है। आइए आज के इस प्रोग्राम में कंटेंट राइटर के बारे में बातें करने वाले हैं और आप सभी दिल दाम कर बैठिए और जहाँ कुछ अच्छी बातें आपको लगती हैं तो ज़रूर लिखिएगा। और लिखना ये सबसे अच्छी आदत है जिससे आपका मन और मस्तिष्क दोनों जो है सक्रिय होते हैं और अच्छी चीज़ों को अगर आप लिखना शुरू करते हैं तो आपका व्यक्तित्व भी अच्छा बनता। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर कंटेंट राइटिंग। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में, करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हम लोग कंटेंट राइटर पर बातें कर रहे हैं। साथियों, सामग्री लेखक कौन होता है इसके बारे में अगर जाने तो सामग्री लेखक वो व्यक्ति होता है जो किसी विषय विचार या उद्देश्य को शब्दों के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। ये लेख वेबसाइट, ब्लॉग, सोशल मीडिया, स्क्रिप्ट, समाचार, विज्ञापन, ई बुक, रेडियो प्रोग्राम या वीडियो कंटेंट के रूप में हो सकता है। एक अच्छा कंटेंट राइटर केवल लिखता नहीं है बल्कि पाठक को समझता भी है, भावनाओं को छूता है, जानकारी को सरल बनाता है और संदेश को असरदार बनाता है। कंटेंट राइटिंग के मुख्य क्षेत्र, जैसे आज कंटेंट राइटिंग के अनेक रूप है, ब्लॉग राइटिंग है, वेबसाइट कंटेंट है, एसईओ कंटेंट राइटिंग है, सोशल मीडिया कंटेंट है, स्क्रिप्ट राइटिंग है जिसमें यूट्यूब पॉडकास्ट आदि चीज़ें आती हैं, कॉपी राइटिंग की बात आती है जहाँ पर एड्स और मार्केटिंग की बात लिखी जाती है, न्यूज़ एंड फीचर राइटिंग्स भी है और टेक्निकल राइटिंग्स भी चीज़ें बहुत काम करती हैं। क्रिएटिव राइटिंग, कहानी, कविता, स्क्रिप्ट, ये आम लोग हमेशा इसको यूज़ करते हैं और आज अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार किसी एक या कई क्षेत्रों में विशेषज्ञ बन सकते हैं आप, अगर आप कंटेंट लिखना जानते हैं। साथियों, यहाँ पर कंटेंट को और अलग तरीके से देखा जाए तो इसको बनाने के लिए अवश्य जो कौशल है, जो स्किल्स जिसको कहते हैं, वो आता है सबसे पहला भाषा पर पकड़, हिंदी, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा में स्पष्टता हो। दूसरा है पढ़ने की आदत। अच्छा लेखक पहले अच्छा पाठक होता है। रिसर्च जो है, अनुसंधान कला जो रिसर्च स्किल बोलते हैं, सही और विश्वसनीय जानकारी, क्रिएटिविटी, नए दृष्टिकोण से लिखने की क्षमता। पांचवी बात या जो मैंने बताया था ऊपर में कि सीईओ की समझ, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज़रूरी कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग। डिग्री से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लेखन क्षमता और अभ्यास। साथियों, जब हम लोग इन चीज़ों को ठीक से समझ लेते हैं और ठीक तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं तो हम बेहतर राइटर, कंटेंट राइटर बन जाते हैं। तो आइए इसके बारे में और भी हम बात करेंगे, क्या सीखे, क्या पढ़े और कितना कमाई हो सकता है और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इस क्षेत्र में, कंटेंट लिखकर कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, इसी पर बातें करेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। जीवन कौशल इस कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे हैं कंटेंट राइटिंग के बारे में। साथियों, जब मैंने बात की कि लिखना अलग अलग तरीके से है, वो भी हमने बातें की, अब कंटेंट राइटर के लिए शिक्षा और सीखने का जो स्थान है वो है जैसे कि पत्रकारिता, मास कम्युनिकेशन फायदेमंद अनिवार्य नहीं है, लेकिन इन चीज़ों से आपको कंटेंट राइटिंग करना आसान हो जाता है। दूसरी बात, ऑनलाइन कोर्सेस हैं, कंटेंट राइटिंग है, सीईओ डिजिटल मार्केटिंग है, ब्लॉग लिखना, डायरी लिखना, रेडियो स्क्रिप्ट, न्यूज़ आर्टिकल का अभ्यास, अनुभवी लेखकों को पढ़ते रहना, आज जैसे कि यूट्यूब है या यूडमी जैसे प्लेटफॉर्म सीखने के बड़े माध्यम हैं, कोर्सेरा ये जो जहाँ पर आप अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हो ऑनलाइन, और बहुत सारे कोर्सेस उपलब्ध होती हैं। अब जब आप कंटेंट लिखना सीख जाएंगे, छोटे छोटे आर्टिकल से बड़े आर्टिकल तक पहुँचेंगे, तो शुरुआती कमाई जो है एक कंटेंट राइटर की वो आता है 10,000 से 25,000 रुपये महीना जो फ्रेशर है। दूसरा, 2-3 साल अनुभव होने के बाद आप 40 से 1 लाख तक कमा सकते हैं, और फ्रीलांसर में ये डिपेंड करता है कि आप कितनी चीज़ें लिखते हैं और किन के लिए लिखते हैं, तो यहाँ पर असीमित जो है आपको पैसे मिलते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट से डॉलर की कमाई भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। दूसरा, कंटेंट राइटर के साथ साथ आप ट्रांसलेटर भी बन सकते हैं, अच्छे अंग्रेजी पुस्तकों को लोकल भाषा में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी कमाई हो जाती है, या हिंदी में जो अच्छी किताब है उसको अंग्रेजी में लिखकर विदेश में सेल आउट कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा जो है ज़रिया है। एक सफल कंटेंट राइटर आगे चलकर बन सकता है कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट, एडिटर, स्क्रिप्ट राइटर, ऑथर और डिजिटल मीडिया हेड भी बन सकते हैं। साथियों, करियर के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं आपके लिए, और आज डिजिटल वर्ल्ड के कारण बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अलग अलग जो है विभाग मिल जाते हैं, और डिजिटल वर्ल्ड में तो एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर आप काम करते करते थक जाएंगे, है ना। तो बहुत सारे विकल्प है आज के समय में, और आपके कंटेंट लिखने का तरीका अच्छा है तो आप किसी भी मीडिया हाउस में या फिर एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर के रूप में काम कर सकते हैं, या एडिटर के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और छोटा सा ब्रेक, सुनते रहो, मस्कराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। जैसे कि हम लोग आज कंटेंट राइटिंग के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक चीज हम सभी को समझ में आता है कि हम लोग जब भी काम करें और लिखने की बात आती है तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि आपका लिखने का तरीका क्या है, किन चीज़ों को आप ज़्यादा लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं, ये सारी चीज़ें आती है। और साथ में आप किस चीज़ को कितनी गहराई से देखते हो, आपका देखने का सोचने का तरीका डिपेंड करता है आपके कंटेंट को देखने के बाद समझ में आता है कि आपकी गहराई कितनी है। कई बार एक वस्तु को देखकर भी आप देख सकते हैं कि एक वस्तु कहीं पड़ी हुई है, खराब कोई चीज़ मिल जाती है और आप सोचते हैं ये कोई काम का नहीं है, आपने उसको फेंक दिया है। लेकिन कुछ लोगों को वो ख़राब चीज़ जब मिल जाती है तो उसके लिए वो उसको सजा बिजा कर जो है अच्छी जगह पे रखता है, तो म्यूज़ियम में अगर वो पहुंच जाती है चीज़ें तो कितने लोग उसको देखते हैं, है ना, फिर वो एक अलग चीज़ बन जाती है और वो इतिहास बताता है वो स्थान का। तो कहने का भाव ये है कि कई बार छोटी वस्तु को भी आप किस तरह से देखते हैं और कैसे उसको सजाते हैं फिर से, वो इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे ही आज देखेंगे आप जो पुराने सिक्के हैं वो शायद आपको देखने को मिलता ही नहीं, क्योंकि धीरे धीरे हम जो है सिक्के यूज़ करना बंद कर दिया और फिर हम करेंसी यूज़ कर रहे थे। अब करेंसी भी हम यूज़ करना बंद किया, अब हम डिजिटल मनी यूज़ कर रहे हैं। तो पुराने जो सिक्के हैं वो अगर किसी के पास है और उसको आप अगर सजा के रखते हैं, एक एल्बम बना के रखते हैं, तो अपने घर में आने वाले लोगों को जब वो चीज़ें आप दिखाते हैं या कहीं अपने घर के आसपास में रखते हो सजा

यही है कि आप जब कंटेंट राइटिंग की बात करते हैं उसमें कितनी गहराई होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट। एक छोटी और कहानी मैं आपको बताता हूँ, अनुज की कहानी। जी हाँ साथियों, ये एक छोटे शहर में बड़ी पहचान बनाया अनुज ने। अनुज एक छोटे से कस्बे में रहता था। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिली या नौकरी करने का मन नहीं लगा। उसे बचपन से लिखने का बड़ा शौक था। वो रोज रात को मोबाइल पर ब्लॉग पढ़ता और डायरी में अपने विचार लिखता। एक दिन उसने फैसला किया कि वह हिंदी में ब्लॉग लिखेगा, क्योंकि उसे लगा कि ग्रामीण और साधारण हिंदी पाठकों के लिए अच्छा कंटेंट कम है। शुरुआत में कोई पाठक नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं माना और लगातार रोज लिखने के कारण क्या हुआ कि लोग उसके साथ जुड़ने लगे। 6 महीने बाद उसके लेख सोशल मीडिया पर शेयर होने लगे और एक डिजिटल कंपनी ने उसे फ्रीलांसर के रूप में काम पर रख दिया। आज अनुज एक फुल टाइम कंटेंट राइटर है। उसकी अपनी वेबसाइट है और वो युवाओं को हिंदी में डिजिटल करियर सिखाता है। तो साथियों, कहा जाता है कि निरंतरता और अपनी भाषा पर विश्वास आपको आगे ले जाता है। कंटेंट राइटिंग का यही एक बहुत बड़ा जो है खूबसूरती है। जब लोगों को आपका लिखना पसंद आ जाएगा तो आप बहुत जल्दी जो है सितारों की तरफ, सितारों को छूने लगते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंच गए हैं अभी। और यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहूँगा, कंटेंट राइटर के सामने कुछ चुनौतियाँ भी होती हैं साथियों। ऐसे नहीं कि जो भी लिखते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। आप देखेंगे आज के समय में जहाँ डिजिटल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा हावी हुआ है, वहाँ पुस्तकें बिकती नहीं हैं, उसे बेचने के लिए आपको मार्केटिंग करना पड़ता है, है ना। कहीं ना कहीं हम अगर लगातार काम करते हैं और थोड़ा सा बदलाव करते हैं अपनी लिखने में, तो हम अच्छी जगह पे पहुंच जाते हैं। कंटेंट राइटर के सामने चुनौतियाँ ये है साथियों, शुरुआत में पहचान और काम मिलना मुश्किल होता है, कभी कभी तो पेमेंट भी आपको समय पर नहीं मिलता। लेकिन ये सारी चीज़ें टेम्प्ररी होती हैं, एक बार आपका कंटेंट लोगों को पसंद आ गया तो सारी मुश्किलें खत्म। लेकिन हर चुनौती के साथ सीख और अवसर भी जुड़े होते हैं। कंटेंट राइटिंग क्यों चुने ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये करियर आज भी है और भविष्य में भी है। घर बैठे काम की सुविधा, अपनी भाषा, विचार और समाज को जोड़ने का अवसर, रचनात्मक संतुष्टि, आत्म अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को ज़रूर करें, कंटेंट ज़रूर लिखें। कंटेंट राइटर होना केवल एक नौकरी नहीं बल्कि एक जिम्मेवारी और साधना भी है। आपके शब्द किसी को दिशा दे सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अगर आपको लिखना पसंद है, सीखने की भूख है और समाज को जोड़ने की ताकत है, तो कंटेंट राइटिंग आपके लिए एक शानदार करियर विकल्प है। शब्द जब सच्चे होते हैं तो वे रास्ता खुद बना लेते हैं साथियों, इस बात को याद रखिएगा। और कंटेंट लिखने का अगर आपको शौक है, लिखना आपको पसंद है, तो इस ओर ज़रूर थोड़ा और गहराई से काम करें और इस ओर अपने करियर को फ्रेम आउट करें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। आप सुनाए है रेडियो मौज 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: क्या आपके पास भी कोई ऐसा हुनर है जो रातों की नींद उड़ा दे?
1: क्या आपका दिल भी किसी पैशन के लिए धड़कता है?
0: वो पैशन जो आपको भीड़ से अलग करता है, वो जुनून जो आपको हर मुश्किल पार करने में ताकत देता है।
1: चाहे वो गिटार के सुर हों, कठपुतलियों से कहानी हो या फिर रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ा हो,
2: हम ला रहे हैं एक ऐसा शो जहां हम बात करेंगे उन जोशीले युवाओं से जिन्होंने अपने पैशन को ही अपना रास्ता बना लिया
3: और ये जुनून जबरदस्त था हम में। तो आज हम चाहे 69 साल के हो गए तो आज भी श्रमदान होता है और हमने हर गांव में 3-3 तालाब बना दिए आज भी।
4: तो सेवा तो सर ये वास्तव में आपने इस कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर नाम मधुबन रेडियो ने दिया है जुनून। ये वास्तव में जुनून है, ये चस्का है।
5: सुनिए उनकी कहानी, जानिए उनका सफर और महसूस कीजिए उस जुनून की आग को उन्हीं की जुबानी। पेश है रेडियो मधुबन पर एक अनोखा कार्यक्रम जुनून। हर शनिवार शाम 6 बजे सिर्फ आपके अपने रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मेरे दोस्त, मैं आपका होस्ट शरद त्रिपाठी, और आपके साथ तो हर बार हम मिलते ही हैं ना, और प्रोग्राम का नाम होता है जुनून, और हमारी मुलाकातों में हर बार होता है कोई जुनूनी, और उस जुनूनी से बात होती है कि उसके जुनून की शुरुआत कैसे हो यार, वो दुनिया को कैसे बदलना चाहता है, और वो क्या सोचता है, क्या जानता है, और उसकी काबिलियत क्या है। तो हमारे साथ हैं हमारे एक नए दोस्त और नए जुनूनी, और इस जुनून प्रोग्राम में आपका स्वागत है मिस्टर यश।
1: थैंक यू सो मच सर, एंड नमस्कार सभी को। मेरा नाम यश गर्ग है और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ।
0: जी यश एक यंग एंटरप्रेन्योर है सिल्वर ट्री कंपनी के, और सिल्वर ट्री इनका ब्रांड है, और वो क्या करता है वो हम इनसे जानेंगे। और यश जो है वो बिल्कुल यंग एंटरप्रेन्योर है, और उनको यूथ आइकन अवार्ड मिला है, और इतनी कम उम्र में एक जुनून इन्होंने पाल लिया। और आपको तो पता है ना श्रोताओं, कि हमारे संग जितने भी जुनूनी आते हैं उन्होंने बहुत कम उम्र में कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में एक तैयारी कर ली होती है, और एक जुनून सेट कर चुके होते हैं, और उस पर वो निकल पड़ते हैं, लोगों का साथ उनको मिलता है, और वो एक बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं। तो हमारे साथ जो यश गर्ग हैं, आप 2024 के राजस्थान के यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति हैं, और हम यश को तब से जाने हैं कि यश ने जब से बताया कि आपकी जो कंपनी है वो एक राजस्थान में एक नई मुहिम शुरू कर रही है। तो आइए हम उसे जानते हैं कि सिल्वर ट्री क्या कर रही है, और सिल्वर ट्री ने कैसे हमारे देश के पर्यावरण को बदला है, और यूथ आइकन अवार्ड इनको क्यों मिला है। जी यश बताइए आपकी कहानी, सिल्वर ट्री क्या है।
1: सर सिल्वर ट्री के अंदर हमारी छोटी सी कंपनी है, कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, अभी स्टार्टअप कह सकते हैं हम इसको। हम इसके अंदर रिसाइकल प्लास्टिक, जो अपना सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, उसके हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे बेंचेस हो गई, ट्री गार्ड्स हो गए, वॉशरूम्स हो गए, डस्टबिन्स, आउटडोर फर्नीचर, इंडोर फर्नीचर, ये सारे हम मैन्युफैक्चर करते हैं, और ये सारा रिसाइकल प्लास्टिक से होता है। हमारा कंपनी का लोगो स्लोगन भी यही है, रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल, मतलब चाहे कितना ही छोटा हो या कितना ही प्लास्टिक का कितना ही बड़ा टुकड़ा हो, हम सब चीजें रिसाइकल करते हैं जी। तो बेसिकली हमारा मोटिव यही है कि सब जानते हैं हम कि प्लास्टिक जो मल्टी लेयर सिंगल यूज प्लास्टिक होता है डीकम्पोज नहीं हो पाता है वो काफी 100-200 सालों तक, तो उसको हम कुछ नई टेक्निक से, नई टेक्नोलॉजी के थ्रू, कुछ केमिकल्स के थ्रू हम उसको एक ऐसे प्रोडक्ट के अंदर उसको शेप देते हैं कि वो अपने यूज आ सके। जैसे हम गवर्नमेंट के थ्रू हम बेंचेस सप्लाई करते हैं, हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को देते हैं। तो बेसिकली मोटिव यही है सर कि जितना जल्दी हो सके हम प्लास्टिक को यूज ले लें, जिससे पहले कि हमारे ऊपर हावी हो जाए। काफी जगह, जैसे मैं ये आइडिया भी, मेरे को काफी जगह में ट्रैवल करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि कचरे के पहाड़ बन चुके हैं। जैसे आप दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस वे पे जाएंगे, आपको वहां पे दिखेगा कि एक पूरा प्लास्टिक के कचरे का एक पहाड़ बना हुआ है, उसकी हाइट अप्रोक्स 500 मीटर हो चुकी है।
0: जी।
1: तो यही है कि सर हमारा मेन मोटिव यही है कि जैसे भी हो अपन सिंगल यूज प्लास्टिक को रीयूज ले सके और उससे कुछ ना कुछ अच्छा प्रोडक्ट्स बना सके।
0: निश्चित रूप से आपने बताया कि आपकी जो कंपनी है एक छोटा स्टार्टअप है, कंपनी बड़ी नहीं है, बट वही मैं फिर से कहूंगा कि स्टार्ट इज इम्पोर्टेंट नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज। तो आपने शुरुआत तो करी ना, वो कितनी छोटी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, तो ये बहुत अच्छा पंचलाइन और एक अच्छा पंच आपने दिया समाज को, ये पंच पॉजिटिव पंच मैं ऐसे कहूंगा। इस पंच में ये मान के चल रहा हूँ कि आपने नेचर को ठीक करने के लिए प्रयास किया है, और देखिए प्लास्टिक के साथ में आपको हम सब जानते हैं कि हम उसको निकाल नहीं सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, डिसॉल्व नहीं कर सकते, वो कैसे भी करके उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका एक ही सोल्यूशन है रिसाइकल, और रिसाइकल करके एटलीस्ट वो पहाड़ की फॉर्म में या गंदगी की फॉर्म में यहाँ वहाँ ना सड़के, वो एटलीस्ट हमारे समाज में ही एक पॉजिटिव भूमिका में हमारे साथ आ पाएगी। तो कुछ वैसा ही एक स्टार्टअप आपका है और आप इसमें प्लान कर रहे हैं। तो मैंने भी निश्चित रूप से, जब मैं दिल्ली पोस्टिंग के दौरान था, मैंने दिल्ली और अहमदाबाद में मैंने एक बड़े बड़े पहाड़ देखे कचरे के, हर बड़े शहर के बाहर कचरे के पहाड़ आपको मिलते हैं, शहर के बीचों बीच या शहर के बाहर, कुछ वैसा ही समस्या हमारे देश की और समाज की है, और आप उस समस्या को ठीक करने का पीड़ा आपने उठाया। ये शुरुआत कैसे हुई और आपको कैसे लगा कि मुझे ये करना चाहिए?
1: सर शुरू से एक, आप कहते हैं आपके जैसे शो का भी नाम है जुनून, तो एक वो शुरू से एक जुनून था कि खुद से कुछ नाम कमाना है, खुद से कुछ अच्छा करना है। कुछ ऐसा ऐसा काम करना है जो हर कोई नहीं कर रहा हो
0: जी।
1: तो वही सोच के, और बाकी मेरे को मेरी मदर से भी काफी मोटिवेशन मिली, क्योंकि वो भी प्लास्टिक को लेके काफी कंसर्न रहती हैं, वो सेग्रीगेशन करती है हमेशा, जैसे जब भी वो कचरा हम कचरे वाली वो गाड़ी आती है हम उसके अंदर देते हैं तो वो सेग्रीगेट करके फिर डालती है, मतलब सूखा कचरा अलग होता है, जो हमारा सब्जियों का कचरा होता है वो अलग होता है, और जो ये प्लास्टिक वेस्ट होता है वो अलग होता है, गीला कचरा होता है वो अलग होता है। तो ये अपना जो, अगर यही अपन चीज हम सभी लोग हमारे घर से चालू करें कि हम ड्राई और वेट वेस्ट अलग अलग करके कचरे की गाड़ी में फेंक रहे हैं, तो काफी कुछ हद तक जो हमको सेग्रीगेशन में बाद में दिक्कत आती है, जैसे नगर निगम को भी आती है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो इन फील्ड में काम कर रहे हैं उनको भी काफी ये सेग्रीगेशन की दिक्कत आती है, वो सेग्रीगेशन की जो इशू है वो खत्म हो सकता है, क्योंकि जो प्रोसेस है सेग्रीगेशन का उसके अंदर सर काफी कॉस्टली भी पड़ता है, और उसके अंदर ये भी रहता है कि आप जो आपको यूटिलाइजेशन लेने पड़ता है, जैसे वाटर का आपको क्लीन करने के लिए आपको यूटिलाइज लेना पड़ता है, तो एक कॉस्ट इफेक्टिव और एक इको फ्रेंडली अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी कम यूज हों और हम रिसाइकिल भी करें, तो अगर हम लोग घर से ही ये चीजें स्टार्ट करेंगे कि अपन सेग्रीगेट करें वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट को, तो काफी कुछ हेल्पफुल हो सकता है नेचर के लिए, हम काफी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे इस चीज के थ्रू
0: जी। समाज में ये तो इम्पोर्टेंट है, और हमारे देश की जो स्वच्छता को लेकर जो पॉलिसी है उसमें ये भी है स्पष्ट है कि हमें गीला कचरा, सूखा कचरा, प्लास्टिक, कांच, ये हमें अलग अलग बिन्स में करने हैं, और क्लिनिकल वेस्ट के लिए पूरी अलग नीति बनी हुई है, लेकिन शायद हमारी जागरूकता की कमी की वजह से हम लोग सब नहीं कर पाते। और एक आप एक युवा है और आप एक युवा का यही फर्ज है, यही उसकी पॉलिसी है, नीति है, या उसका विचार भी यही होना चाहिए कि वो कुछ समाज में बदले या बदलाव की तरफ अग्रसर हो, और आपने वो कदम उठा लिया है। तो आपका जो कंपनी है इसका नाम सिल्वर ट्री कैसे हुआ, सिल्वर लाइनिंग कैसे बना रहे हैं आप जी?
1: सर हमारी जो शीट्स होती है रिसाइकल प्लास्टिक से उसके ऊपर एक टेक्सचर भी आता है सिल्वर, आप कभी आपको मौका मिलेगा तो हम दिखाएंगे
0: जी,
1: उसके ऊपर टेक्सचर भी आता है सिल्वर कलर का। तो सिल्वर ट्री हमने ये सोच के रखा कि पेड़ों की तो वैसे भी कमी हो ही रही है हमारे यहाँ इंडिया के अंदर
0: जी,
1: तो एक हम ऐसी कंपनी चालू करते हैं जो चांदी का पेड़ हो
0: जी,
1: जिसके थ्रू आप एक अच्छा मैसेज दे पा रहे हो, एक कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो अपने सोसाइटी के अंदर, एक अच्छी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं, एक नई पहल चालू कर पा रहे हैं
0: जी। निश्चित रूप से आप बात आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखी है, और आप तो बड़ा अच्छा बोलते भी हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ये यूथ आइकन अवार्ड राजस्थान सरकार ने किस लिए दिया और क्यों दिया?
1: सर यूथ आइकन अवार्ड मेरे को राजस्थान यूथ बोर्ड ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने इसी वर्क के ऊपर दिया है, एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर में दिया था मुझे, और ये जो मैं रिसाइकल प्लास्टिक का स्टार्टअप कर रखा है मैंने, इसी के ऊपर मेरे को ये अवार्ड मिला गया था, ये 12 जनवरी 2025 के अंदर हमको मिला था अवार्ड बाय सीएम भजनलाल एंड मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौर
0: जी।
1: सर
0: ऑनरेबल सीएम ने आपको सम्मानित किया, तो निश्चित रूप से एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रही है कि आपने नए युवाओं के सामने भी एक आइडिया रखा है, आइडिया, और हम तो और भी युवाओं से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी ऐसी और कंपनीज बनाएं और आपके कंपटीशन में आए, और जिससे कि बाजार में लोगों में अवेयरनेस आए कि हमें रिसाइकिल करना है, और निश्चित रूप से जब प्रतियोगिता बढ़ेगी तो इस प्रोडक्ट का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट का जो ब्रांडिंग है वो करने में हमको सबको आसानी। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे और जानना भी चाह रहा था आपसे कि आपने ये शुरुआत कहाँ से की, मतलब कब से आप प्लान कर रहे थे, कैसे आपने कंपनी बनाई, और प्रोडक्ट डेवलप कैसे हुए कि ये प्रोडक्ट हमें जब बनाना है, प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे किया गया, ये सब मुझे जानना है बारीकी से थोड़ा बता।
1: कंपनी की डेवलपमेंट काफी 2023 के अंदर मैंने ये स्टार्टअप ऐसे फुली एग्जीक्यूट कर दिया था कि हम मैन्युफैक्चरिंग करने लग गए थे, उसके एक साल पहले से हम रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर रिसाइकल प्लास्टिक के ऊपर इतना फोकस नहीं है। अगर आप दूसरी कंट्रीज के अंदर जैसे आप सपोज बाली जाते हैं या आप जापान के अंदर देखते हैं, तो ये नाइजीरिया के अंदर जाते हैं, नाइजीरिया के अंदर जैसे सर रबर रिसाइकलिंग का काफी अच्छा प्रोसेस है, तो ये सारी कंट्रीज के अंदर सर रिसाइकलिंग के ऊपर गवर्नमेंट के थ्रू अच्छी पॉलिसीज बनी हुई है जो एंटरप्रेन्योर्स को काफी सपोर्ट करती है। जी। तो वहीं से मैंने देखा कि रिसाइकलिंग, जैसे वो दूसरी जगह हम दूसरी कंट्रीज में देख रहे हैं कि वहां पे प्लास्टिक को रिसाइकिल करके ये प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, सपोज बेंच ट्रिगर। तो मैंने वही सोच के वहीं से मैंने ये आइडिया लिया कि हम क्यों ना हम ये इंडिया के अंदर भी कर सकते हैं, हमारे राजस्थान के अंदर भी, क्योंकि हमारे यहाँ प्लास्टिक की तो कोई कमी है नहीं कि रॉ मटेरियल हमको मिल नहीं पाएगा, प्लास्टिक तो हमारे यहाँ अनलिमिटेड है। तो वहीं से हमने थोड़ा इसको आइडिया लेके हमने इसको यहाँ अपने राजस्थान में एग्जीक्यूट किया है। और बेइंग ये हमारा फोकस है कि एक्टिव है ये, जैसे हम लकड़ी का प्रोडक्ट यूज लेते हैं, सपोज अपन बेड बनवाते हैं, वैसे ही आप सेम बेड आप रिसाइकल प्लास्टिक से भी बना सकते हैं
0: जी।
1: तो ये हमारा मोटिव ये है कि हम पब्लिक के एक अवेयरनेस आए कि हाँ लकड़ी की जगह भी कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव है जो लॉन्ग लाइफ रहेगा, टर्माइट प्रूफ रहेगा, जिसको आप और अच्छे से यूज ले सकते हैं एज कम्पेयर टू वुड, और कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा
0: जी। तो क्या आप रिसाइकल प्लास्टिक से बेड बना पा रहे हैं?
1: बिल्कुल सर, हम बेड भी बनाते हैं, अलमीरा भी बनाते हैं, रैक्स भी बनाते हैं, लाइब्रेरी शेल्फ बनाते हैं, आउटडोर फर्नीचर बनाते हैं, जैसे टेबल चेयर सेट हो गया फार्म हाउस के हिसाब से, और इंडोर फर्नीचर भी बनाते हैं। काफी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट हम वो चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं।
0: क्या बात है। अगर हमारे श्रोता अभी जानना चाहें तो क्या है मिनिमम कॉस्ट आपके बेड की?
1: बेड की सर एक आप एक अपन सिंगल पर्सन के हिसाब से साइज लेके चलें तो आपको अप्रोक्स वो 7-10,000 का आपको पड़ रहा है।
0: बहुत बढ़िया। और उसकी लाइफ भी लॉन्ग लाइफ होगी?
1: लाइफ भी सर लॉन्ग लाइफ रहती है सर, बिकॉज टर्माइट प्रूफ रहता है प्लास्टिक है, उसमें टर्माइट की कोई इशू रहेगा नहीं। वाटर प्रूफ रहता है, जैसे अपनी लकड़ी फूलती है तो ये फूलता नहीं है, प्लास्टिक का पानी का कोई इफेक्ट है नहीं। और इसके अलावा फायर रिटार्डेंट भी है। और एक और इस चीज का ये फायदा ये है कि अगर आप इसको कहीं बाहर रख भी, सपोज आप कोई भी प्रोडक्ट आपने अपने घर के बाहर लगा रखा है, सपोज ट्री गार्ड ही लगा रखा है, तो हमारे इंडिया में क्या चोरी चकारी काफी ज्यादा होती है, आपको पता ही होगा। तो हमारे ये प्रोडक्ट का एक ये फायदा है कि ये एंटी थेफ्ट बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसको क्या कबाड़ी वाला नहीं खरीदेगा
0: जी।
1: कोई अगर चोरी करके इसको कबाड़ी वाले को बेचना भी चाहे तो वो कर नहीं सकता, वो ज्यादा से ज्यादा अपने घर में ले जाके उसको इस्तेमाल ले सकता है
0: जी। बिल्कुल। तो एक इंटरेस्टिंग बातचीत के मोड पर हम अब आ गए हैं, लेकिन श्रोताओं आप फिर से बता दूं जो हमसे लेट से जुड़े हैं वे जान लें, हमारे साथ हैं मिस्टर यश। यश यंग एंटरप्रेन्योर है, एक स्टार्टअप है, सिल्वर ट्री सोल सब कुछ है, और मैं कहूँगा कि वो ही उसको डायरेक्ट भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इनके इस स्टार्टअप को देखते हुए, इनके इस प्रयास को देखते हुए और ये युवा चेतना को देखते हुए राजस्थान सरकार ने आपको 2024 में यूथ आइकन अवार्ड से भी नवाजा। तो श्रोताओ आप अपने सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन और आपका फेवरेट प्रोग्राम 107.8 FM पे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आप इंटरनेशनली अगर आप हमें सुन रहे हैं माउंट आबू की वादियों से तो आप हमें सुन सकते हैं 107.8 FM पे, और आप यदि सुन रहे हैं हमें देश के बाहर से तो आप हमारे एप्लीकेशन रेडियो मधुबन से हमें सुन सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तो यश मुझे बताइए कि ये जो पूरा आपने बोला कि दो आपने एक लंबे समय से आपने ये शुरू किया, प्रोडक्शन शुरू कर दिया, 2-3 साल लगभग आपको होने जा रहे हैं इस प्रोग्राम इस प्रोजेक्ट के साथ में, इस कंपनी के साथ में, क्या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं आपके इस पूरे प्रोसेस में? आपको क्या लगता है कि एनवायरनमेंट जो है वो बिजनेस फ्रेंडली है भारत का?
1: सर चैलेंजेस तो देखो काफी है जो शायद मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर भी ना पाए, क्योंकि वो कई चैलेंजेस अनएक्सप्लेनेबल होते हैं। तो जैसे एक सर सपोज अभी जैसे नया नया प्रोडक्ट है, अगर मैं आपको कस्टमर फेथ काफी कम होता है मतलब नए प्रोडक्ट पे कस्टमर्स का, सपोज मैं आपको एक बेंच बेचना हूँ तो आपको लगेगा कि ये तो रिसाइकल प्लास्टिक है कि ये चलेगा कैसे, नया नया प्रोडक्ट है अभी मार्केट में, चले ना चले, अपन तो लोहे की बेंच लेके ही अपना काम चला देंगे। तो एक तो सर वो कस्टमर का एक विश्वास जीतना कि नहीं हाँ ये प्रोडक्ट ड्यूरेबल है, आप इसको ले सकते हैं, मतलब वर्थ इट प्रोडक्ट है, ये काफी मुश्किल है आज के टाइम पे
0: जी।
1: और सर इसके अलावा जैसे हम गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अंदर भी करते हैं, गवर्नमेंट पार्क्स भी डेवलप करते हैं, तो उसके अंदर भी सर मेन ये इशू रहता है कि गवर्नमेंट हालांकि प्रमोट तो कर रही है कि रिसाइकल प्लास्टिक को प्रमोट कर रही है, उससे बने हुए प्रोडक्ट काफी प्रमोट कर रही है, पर कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक ये भी है कि कोई भी नए प्रोडक्ट के अंदर इतना रिस्क उठाना नहीं चाहता
0: जी।
1: मेन सर यही है, मार्केटिंग काफी ज्यादा होती है और कंपटीशन, हालांकि मेरे प्रोडक्ट में अभी तो काफी ना के बराबर है, अगर हाँ कंपटीशन बढ़ता तो शायद मार्केटिंग भी अपने आप ही हो जाएगी।
0: जी जी
1: सर, इशू और सर इशूज तो और भी होते हैं, जैसे आपके कॉम्पिटिटर, अब आप लकड़ी हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, सस्ती काफी अवेलेबल हो जाती है पर वो ब्रांडेड नहीं होती है, तो अब अगर आप इसको लकड़ी से कई बार कंपैरिजन करेंगे तो लोकल प्लाईवुड का बोर्ड आपको सस्ता पड़ सकता है एज कम्पेयर टू हमारे रिसाइकल प्लास्टिक का बोर्ड, पर उसकी लाइफ ड्यूरेबल हो या ना हो ये इसका कुछ गारंटी नहीं रहती। मतलब हमारे इंडिया के कस्टमर को सस्ता और अच्छा चाहिए, पर वो सस्ते के चक्कर में अच्छा भूल जाते हैं।
0: अनीश तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं ना, यस ने कितनी अच्छी बात बोली है।
1: ये सर हमारी सबकी मेंटालिटी है, हालांकि मेरी भी कहीं ना कहीं है, मैं कोई सपोज कपड़े लेने जाऊंगा तो मैं ये देखूंगा कि सस्ते से सस्ता मिले, पर हाँ ये क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से।
0: जी निश्चित रूप से आपने एक मिसाल कायम की है, एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट आप लेकर आए हैं और आपको एक समय के बाद निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलना तय है, और डेफिनेटली जो हमारे फ्रेंडली एनवायरनमेंट तैयार करने में हमें कुछ समय लग रहा है, लेकिन निश्चित रूप से जीत हमारी ही होगी।
1: और सर अभी हम हमारे इंडिया में सर, हालांकि काफी हम मतलब इस चीज में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के अंदर काफी आगे बढ़ चुके हैं, पहले कंपैरिजन करें आज से 3-4 साल पहले, पर अभी भी सर काफी वो एक लोगों की मेंटालिटी चेंज करना और गवर्नमेंट के थ्रू सपोर्ट मिलने में काफी अभी और हमको काफी अच्छा करने की जरूरत है, जैसा अभी तक मुझे फील हुआ है। मतलब पॉलिसीज तो क्या बन जाती है, पर पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन होना काफी ज्यादा टफ हो जाता है क्योंकि हो नहीं पाती बेसिकली, कई बार ऐसा मेरे को फील हुआ है। मतलब ये मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ जो अभी तक मेरे को एक्सपीरियंस किया मैंने।
0: जी जी निश्चित रूप से कुछ चैलेंजेस हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, ब्यूरोक्रेसी के साथ भी,
1: बिल्कुल सर,
0: लेकिन हम तो जुनूनी है ना, हम तो जुनून के साथ निकल पड़े हैं और देखते हैं कि बाजुए कातिल में कितना दम है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, समय के साथ हम उसको, हम लोग जुनूनी जो है निश्चित रूप से उसमें बदलाव भी करते हैं, मिलके काम करेंगे।
1: बिल्कुल सर,
0: तो श्रोताओं इस कहानी में एक नया मूड हम ये भी लेना चाहते हैं कि ये जो प्रयास कर रहे हैं हमारे साथी, इन्होंने बताया कि इनके इनके प्रयासों में ये एक चैलेंजेस इन्होंने देखा है कि इनको एनवायरनमेंट, लेकिन मेरे मैं फिर से वहीं पर आना चाहूंगा यश, कि ये जो कीड़ा है कि मुझे पर्यावरण के लिए कुछ करना है, तुम्हारे जैसे युवा तो बस घूम रहे हैं इधर उधर, गाड़ियों में तेल जला रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लंबे लंबे वीकेंड छुट्टियों पर जा रहे हैं, तुमने ये क्या पाल लिया है ये समस्या, ये क्या है, ये कहां से?
1: जी मेरा मोटिव ऐसा है सर कि ऑनेस्टली कि हाँ एनवायरनमेंट को लेके कंसर्न हूँ मैं, पर ये भी है कि मेरे को मेरी कंपनी और खुद की एक ब्रांड वैल्यू भी बनानी है, मतलब बेसिकली अपन शॉर्ट फॉर्म में कहें तो पैसा भी कमाना है, पैसा भी कमाना है, एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है कि कुछ अच्छा काम करके निकले सर, बस बेसिकली यही है बात। और
0: लेकिन तुम पैसा कमाने के लिए तुमने एक इनोवेटिव क्रिएटिव और एक एथिकल आइडिया चुना है।
1: जी सर, जिस आइडिया ऐसा चुना है कि सर जिसमें एनवायरनमेंट को लेके जो हमारा कंसर्न है वो भी पूरा होए, और एक हमारा जो पर्सनल कंसर्न है कि पैसा कमाना है तो वो भी पूरा हो।
0: तो ये एनवायरनमेंट का कंसर्न तुमको था पहले से, या तुमने देखा कि लोगों में कंसर्न है इसलिए मुझे ये बिजनेस शुरू करना चाहिए?
1: सर अब एंटरप्रेन्योर हूं तो हम तो एक नया आइडिया ही खोजते हैं कि कुछ एक नया मार्केट में जो चीज नहीं है वो लेकर आए कि एक खुद का ब्रांड वैल्यू बन जाए जिसकी वजह से। तो मेरी थिंकिंग थोड़ा वो बिजनेस माइंड को लेकर भी है कि अच्छे काम के साथ साथ खुद की भी ग्रोथ हो रही है तो उसमें बुरा क्या है, और आप अपने साथ साथ 10 लोगों को और आगे बढ़ा रहे हो तो मुझे नहीं लगता था उसमें कुछ गलत कर रहा हूँ मैं।
0: तो मतलब तुम एनवायरमेंट के लिए पहले कंसर्न नहीं थे, अब ज्यादा हो गए जब से तुमने
1: एनवायरमेंट के लिए? हाँ सर, हाँ ये आप कह सकते हो, पहले बेसिकली मोटिव यही था कि यहाँ से खुद का डेवलपमेंट, क्योंकि सर हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरों के बारे में या एनवायरनमेंट के बारे में कम सोचते हैं। फिर मुझे लगा कि हाँ ये ये जो रिसाइकल प्लास्टिक का कॉन्सेप्ट है ये हमारे यहाँ अभी है नहीं इतना, ना कोई कर रहा है, तो मैं इसके अंदर काम कर सकता हूँ। मेरे को कहीं ना कहीं पहले ये लगता था कि आसानी रहेगी कि हाँ कोई और कंपटीशन नहीं है तो सिर्फ एक होल एंड सोल प्लेयर हम ही होंगे मार्केट में तो हम मोनोपोली चला पाएंगे, पर ऐसा नहीं है सर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक नया प्रोडक्ट है तो नए प्रोडक्ट के ऊपर एक कस्टमर का विश्वास लेना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है सर। और नए प्रोडक्ट को आपको मार्केटिंग करना है कि आपको लोग नाम से जाने, जैसे अपन ग्रीन प्लाई का नाम आपने सुना होगा, ग्रीन प्लाई का प्लाईवुड की बोर्ड की कंपनी है
0: जी,
1: तो उन्होंने अपना वो उनका भी जैसे काफी टाइम स्ट्रगल रहा होगा कि उन्होंने एक कस्टमर का फेथ लिया, उन्होंने इतनी मार्केटिंग करी कि अब जाके पब्लिक उनको जानने लगी। तो मेरा भी एक वही मोटिव है कि हाँ कभी इन फ्यूचर आज से 5 साल बाद रिसाइकल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के बारे में देखे कभी कोई बात आए राजस्थान के अंदर तो उसके अंदर मेरा और नाम और मेरी कंपनी का नाम लोग जाने।
0: सरकार से क्या सहयोग मिला आपको इस पूरे आपकी मुहिम को लेकर, कितना आप उनसे सहयोग ले पाए?
1: सर ऑनेस्टली अभी मैं सरकार से मैंने इससे रिलेटेड कोई सहयोग लिया नहीं है, मैं जो भी कर रहा हूँ खुद से ही कर रहा हूँ। हाँ हालांकि मैं सरकार को मेरे प्रोडक्ट सप्लाई जरूर करता हूँ फॉर डेवलपमेंट्स ऑफ पार्क या अदर पब्लिक प्रीमाइसेस जहाँ पे नगर निगम या नगर पालिका नगर परिषद डेवलपमेंट करती है, तो मैं उनको मेरे प्रोडक्ट सप्लाई जरूर करता हूँ।
0: आपकी क्लाइंट लिस्ट में कौन कौन से डिपार्टमेंट जुड़ गए हैं अभी?
1: सर क्लाइंट लिस्ट में हमारे नगर पालिका भी हैं, नगर परिषद भी है, नगर निगम भी हैं, बिल्डर्स भी हैं और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं जैसे कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई और स्कूल्स भी हैं कई, तो धीरे धीरे सर ग्रो करते हैं
0: जी।
1: वो सर वो कहते हैं ना कर्म करते चलो फल की चिंता मत करो, तो बस यही सोच के चल रहे हैं।
0: बिल्कुल, ये तो प्रभु श्री राम की बात है और आपने वही बात आज हमारे बीच में रख दी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी फैमिली भी आपको काफी सपोर्ट करती रही है और आप एक यंग माइंड हैं, तो आपके क्या प्लानिंग है और क्या योजना है आपकी, क्या योजना है आपकी इस प्रोजेक्ट को लेकर
1: आने वाले टाइम पे? सर यही है कि मेरा मेन फोकस अभी तो ये है कि जैसे हम हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू जो डेवलपमेंट होते हैं उस पर हम मेटल प्रोडक्ट यूज लेते हैं जैसे मेटल बेंच हो गई या मेटल ट्री गार्ड हो गए, तो उनका वो मेन ये देखा आती कि साल भर के अंदर अंदर तो चोरी चकारी हो जाते हैं या वो लोहा है तो जंग खा के वो खत्म हो जाता है। तो मेरा मेन फोकस यही है कि हम एक पब्लिक के अंदर भी अवेयरनेस फैला सकते हैं उसको गवर्नमेंट के थ्रू ही, कि आप सपोज कोई पार्क डेवलप कर रहे हैं तो आप इको फ्रेंडली पार्क डेवलप करो, उसके अंदर आप बेंच भी रिसाइकल प्लास्टिक लगाइए, आप डस्टबिन भी उसमें रिसाइकल प्लास्टिक के लगाइए, इवन फ्लावर पॉट्स हो गए आप वो इससे लगाइए, तो वो अपने आप जब पब्लिक देखेगी तो हाँ उनको लगेगा कि अगर सरकार ही पब्लिक प्रीमाइसेस डेवलपमेंट के अंदर ये प्रोडक्ट यूज ले रही है तो हम खुद के घर के अंदर भी यूज ले सकते हैं
0: जी।
1: तो एक मेन मोटिव यही है कि एक रिप्लेस कर रहे हैं हम लोहे के प्रोडक्ट्स को हमारे रिसाइकल प्लास्टिक से, और जो अपना वुड जिसमें अपन प्लाईवुड यूज लेते हैं, हालांकि प्लाईवुड यूज आना तो कभी बंद नहीं

0: पर कुछ हद तक हम ये कर सकते हैं कि रिसाइकल प्लास्टिक के बोर्ड्स भी जो हम बनाते हैं वो आप यूज ले लें एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ प्लाईवुड बोर्ड।
1: बहुत ही बढ़िया शुरुआत, बहुत ही बढ़िया आइडिया और बहुत ही शानदार आपकी शुरुआत। श्रोताओं, जुनून में हमारे साथ हैं आज यश गर्ग और आप जयपुर से हैं और आपने अपनी कंपनी बनाई है सिल्वर ट्री, और सिल्वर ट्री इन दोनों रिसाइकल प्लास्टिक के साथ में बहुत सारे हमारे होम प्रोडक्ट बना रही है जो कि हमारे घर में काम आती है, जिनको हम चाहे फर्नीचर से रिलेटेड हो चाहे वो हमारे कुछ यूटिलिटीज के और डे टू डे यूटिलिटीज के आइटम्स हो। तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि यश को कि और भी नए इनोवेटिव प्रोडक्ट लाइन में कुछ और प्रोडक्ट्स भी ऐड करें जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं काम आते हैं, और मैं चाहता हूँ कि रिसाइकिल प्लास्टिक से अगर भविष्य में सड़कें भी बन सके या निर्माण भी हो सके तो वो भी करने की गुंजाइश होनी चाहिए।
0: बिल्कुल सर।
1: तो इसी बात पर आपके साथ हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपने इस पूरे वेंचर को लेकर जो शुरुआत आपने की, इस वेंचर के लिए आपने आगे क्या सोचा है, मतलब इसमें आप क्या ऐड करना चाहेंगे या क्या कमी आपको भी महसूस हो रही है?
0: सर, अभी एट प्रेजेंट तो मेरे को लगता है कि थोड़े प्रोडक्ट रेंज या ये भी लगता है कि हम और क्वालिटी के अंदर थोड़ा और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। अब जैसा कि नया नया प्रोडक्ट है तो थोड़े कस्टमर से रिव्यूज आते हैं या हम भी खुद नोटिस करते हैं कि यार ये इशू आ रहा है सर, या ऐसा कुछ हो रहा है। तो अभी तो सर जैसे 3 साल भी मेरे को कंप्लीट नहीं हुए तो एज सच मैं मेरी आगे की कुछ कह नहीं पाऊंगा, पर हाँ ये है सर कि अब आए हैं तो कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे, ये तो सोचा हुआ है। इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, निकल पड़े हैं बंदे तो कुछ कर गुजरेंगे। तो श्रोताओं से हम विदाई लें, लेकिन उससे पहले एक अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है कि आप जो केमिकल यूज कर रहे हैं अपने इस प्रोसेस में रिसाइकल प्लास्टिक को लेकर, वो केमिकल्स क्या एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं या वो भी वातावरण को
0: उनमें? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं वो एक बस एक एज अ एजेंट काम करते हैं वो प्लास्टिक जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में, और वैसे आप देखोगे तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हमारे एनवायरमेंट को लेके, और ये सारे प्रोडक्ट्स वापस रिसाइकलेबल भी होते हैं
1: जी।
0: अगर सपोज आप 3 साल बाद टूट जाती है तो आप उसको वापस रिसाइकिल कर सकते हो।
1: बढ़िया
0: सर। अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि यार चोरी चकारी नहीं होता ये आइटम, तो मेरे को लगता है आने वाले टाइम पे इसको कबाड़ी वाला भी खरीदने लग जाएगा तो मैं ये मानूंगा कि अब मैं सक्सेसफुल हूँ। होने लग गई तो सर ये सोच लेंगे कि आप कुछ हमने एस्टैब्लिश कर लिया है
1: जी। तो श्रोताओं, आपने सुना यश गर्ग को और सुन रहे थे आपका फेवरेट प्रोग्राम जुनून। जुनून में अब हम यश से विदा लेना चाहेंगे। यश, आपको कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद, और भविष्य में हम ऐसे ही आपसे बात करते रहेंगे। आपसे फिर एक रिव्यू लेंगे उस समय बाद कि क्या अनुभव रहा और क्या मंजिल कितना दूर है। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM, योर होस्ट शरद त्रिपाठी साइनिंग ऑफ टुडे। थैंक यू। ओम शांति।

0: नमस्कार सभी सुनने वालों को, मैं आपका होस्ट और हमारे फेवरेट शो जुनून का दोस्त। और आप सभी तो हमें जो सुनते रहते हैं, मेरी आवाज तो कुछ लोग पहचानते भी होंगे, हमारे श्रोताओं को तो मालूम ही है। मैं आपके लिए लेकर आता हूँ आपका फेवरेट प्रोग्राम जुनून और आपका दोस्त शरद। तो हमारे साथ आज है एक नई आवाज रेडियो मधुबन के इस प्यारे से प्रोग्राम में, और जुनूनी है मुकेश। मुकेश एक एथलीट है और मैराथन एथलीट हैं, मैराथन करते रहते हैं और बहुत सारे देश के अलग अलग इलाकों में इन्होंने अपने साहस और अपने स्टैमिना का झंडा बुलंद किया है। आपका प्रोग्राम में स्वागत है मिस्टर मुकेश
1: जी। नमस्ते सर।
0: तो आप आते हैं राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर से, और आपका जो सूरज है वो मैराथन के क्षेत्र में ऊंचा करता जा रहा है, तो इसलिए हम चाहते थे कि आपसे बात की जाए और जुनून में आपके साथ जाना जाए कि आपका प्रकाश कहाँ तक पहुंचाए। वेलकम मुकेश, बताइए मुकेश अपने बारे में, अपनी इस एथलेटिक्स की यात्रा के बारे में, और आप कौन सा इवेंट खेलते हैं?
1: मैं अभी तो ट्रैक में 10 किलोमीटर इवेंट करता हूँ और हाफ मैराथन फुल मैराथन भी खेल रखी है।
0: जी
1: हाँ जी सर।
0: 10 किलोमीटर इवेंट जो है वो एक ओलंपिक इवेंट है, राइट?
1: हाँ जी, 10 किलोमीटर और मैराथन भी ओलंपिक इवेंट है।
0: जी जी, तो दो इवेंट्स में आप तैयारी कर रहे हैं। आपकी उम्र कितनी हुई मुकेश अभी?
1: 24।
0: आपको कभी साई जाने का अवसर मिला, SAI की ट्रेनिंग में गए हैं आप?
1: नहीं नहीं सर, नहीं गए। एक्चुअली वो क्या सर, हमारे को मतलब बिल्कुल ग्रामीण एरिया से आते हैं हम, हमारे को पता ही नहीं था। और हमने 12th करके जब जोधपुर में आए तो थोड़ा बहुत ऐसे पता चला गेम होता है, जो उस 12th करने के बाद नहीं पता चला गेम के बारे में। मैं 2020 से ही स्टार्ट किया गेम, जब मैं ऑलरेडी 3 ईयर हो चुका था। ज्यादातर साइंस में मतलब जूनियर लड़कों को अवसर मिलता है
0: जी,
1: मैंने गेम शुरू ही 3 ईयर से ही किया
0: जी। हाँ, साई के ट्रायल के लिए आपको 12वीं कक्षा के बाद आप जा सकते हैं, या फिर आप 11वीं कक्षा में भी वहाँ जा सकते हैं। Am I correct, मुकेश जी?
1: हाँ हाँ
0: जी। तो आपका कहना है कि आप की ट्रेन छूट गई, तो फिर तो इस ट्रेन में आप चढ़े कैसे, भाग कर या आपने ये रिस्क कैसे लिए, बताइए आपने भागती हुई ट्रेन कैसे पकड़ी और कब पकड़ी?
1: मैं तो सर ऐसे स्टार्टिंग से ही थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो यहाँ जोधपुर में आया था मतलब ऐसे आर्मी की तैयारी करने के लिए। ठीक है, जो आर्मी की तैयारी करने वाले लड़के थे, यहाँ कोच थे एक, दिनेश परियार नाम का कोच था, उन्होंने मतलब ऐसे में वर्कआउट करता था, उन्होंने देखा भाई ये बच्चा मतलब बहुत तगड़ा दौड़ रहा कर रहा है, क्यों नहीं इसको बताए, ऐसे ऐसे गेम भी होता है, ये सब कुछ होता है। तो उन्होंने एक बार ट्रायल दिया तो मैं फर्स्ट हो गया उन सब में। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि तुम लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ऐसे ऐसे गेम होता है, यूनिवर्सिटी से होता है, ओपन से होता है, उनमें जॉब भी मिलती है, हर कुछ सब कुछ होता है। तो उस टाइम से मैंने ऐसे स्टार्ट कर लिया। फिर स्टार्ट किया तो मैं मतलब कम से महीनों में ही नेशनल खेल लिया मैंने, 6 मंथ के अंदर नेशनल खेल लिया बस
0: जी।
1: फिर ऐसे खेलने जाता तो अपने आप में खुद में अलग से जुनून और देखने को मिलता था, वो ये तो ऐसे होता है गेम है, बहुत अच्छा खुद से शौक होने लग गया, मतलब यही शौक हो गया रनिंग का ही बस
0: जी। तो आपका मानना है कि आपने देर से अपनी ट्रेन पकड़ी, लेकिन आप सही रास्ते पर हैं ऐसा मुझे लगता है, आपका सफर सही चल रहा है और आप अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट है। तो मैं इसको लेकर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए, मैराथन और लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट्स जितने भी हैं, ये स्टैमिना का गेम है ना, कि आप कितने लंबा चल सकते हैं, कितना लंबा दौड़ सकते हैं, तो इसमें स्पीड मैटर नहीं करती, इसमें स्टैमिना मैटर करता है। तो ये स्टैमिना लाते कहाँ से हैं, कैसे तैयार किया आपने अपना स्टैमिना, क्या आपका शेड्यूल होता है?
1: सर शेड्यूल तो सर मेरी तो पूरी अलग ही कहानी है सर। हम तो विवाह शादी जागरण में कुछ में घर भी नहीं जाता हूँ मैं तो, अभी दीपावली को भी घर नहीं गया, क्योंकि हमारे को मतलब इतना अधिक ऐसे लग रहा कि घर जाने के लिए हमारे पास टाइम मिलेगा, हमारे को वो भी हमारे लिए टाइम आएगा, अभी हमारी उम्र है, एज है, और ये दीपावली तो बहुत सारी दीपावली आगे हमारे को मनाने के लिए मिल जाएगी, लेकिन जो अभी ये टाइम है ये टाइम वापस कभी नहीं आएगा। एज निकलने के बाद में पिस्ता में के अलावा कुछ नहीं मिलेगा हमारे को देखने के लिए। मेरा खुद का ही डिस्कशन है कि अब जितना हो सके इस उम्र में हम मेहनत करें
0: जी। बड़ी प्रेरणादायी बात आपने कही मुकेश। अगर भविष्य की दिवालियां मनानी है तो आज की दिवाली को हमें त्यागना होगा।
1: जी सर,
0: निश्चित रूप से आप दिवाली पे घर नहीं गए लेकिन आपने उस समय का सदुपयोग किया, तो मैं जानना चाहूंगा कि आप

0: मैंने कभी मना नहीं किया, मैं मेरे से नहीं होगा।
1: जी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.9 FM, और हमारे साथ हैं एथलीट मुकेश, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और प्रयास कर रहे हैं कि वो देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करें। तो आज हम उनसे कर रहे हैं बातचीत उनके सफर के बारे में और उनके जीवन के बारे में और उनकी तैयारियों के बारे में और भविष्य के सपनों और आकांक्षाओं के बारे में। तो श्रोताओं, मजा आ रहा है ना उनसे बात करने में, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मेरे साथ है मुकेश। तो मुकेश, निश्चित रूप से आपने एक बात की, सफर की बात की, और आपने बताया कि आप एक कठिन प्रशिक्षण के से गुजर रहे हैं। वो कठिन प्रशिक्षण होता क्या है, मतलब मैं सुबह 5 बजे से लेकर आपकी पूरे दिन की यात्रा समझना चाहता हूँ। आप कैसे अपनी तैयारी करते हैं?
0: नहीं, अभी तो ठीक है सर, जब शुरुआती का दिन थे ना, तभी मेरे को कम से कम 3 बजे उठना था, क्योंकि मैं जब घर से निकला था ना तो हमारे पास कुछ नहीं था, क्योंकि हम जो एथलीट होते हैं, जो खिलाड़ी है, लगभग मैं समझता हूँ कि मेरी कंडीशन कही है, शुरुआती में ऐसे ही होते हैं, ऐसे कोई नहीं जो पूरे कमाने वाले या फिर पूरे VIP घर से होकर के कोई गेम नहीं करेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा कष्टदायक एक जीवन यापन है। ऐसा कुछ नहीं है कि भी जो शौक से कर रहा है, शौक से कर रहा है तो वो आगे के नहीं बढ़ पाएगा, बस वो ये डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित रहेगा। क्योंकि जब शुरुआती पल थे तो मैं तो किसी पड़ोसी से 1000 रुपये लेकर के शहर में आया बस, और वहाँ पे एक शॉप पे 8000 रुपये में पर महीने काम करता था।

0: और 3 बजे उठ के बना के उसके बाद में सुबह 4 बजे 5 बजे ग्राउंड पहुंच के जो भी वर्कआउट होता वो करके उसके बाद में सीधा मैं वापस रूम नहीं जा सकता था क्योंकि सीधा उसी शॉप पे जाना था क्योंकि मेरे को वहां पे रह करके काम करना था। काम करने के बाद में शाम को और ग्राउंड जाता था।
1: जी ये तो बड़े परिश्रम की कहानी है आपकी और बड़ी प्रेरणादायी कहानी है। लेकिन मुकेश मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप किस तरह की शॉप पर काम कर रहे थे और आपने वहां से क्या सीखा?
0: जी सर वो एक फायरवर्क्स की शॉप थी वहां पर ही काम करता था तो वहां से भी उन्होंने मतलब उनसे भी मेरा इतना लगाव होगा मेरा क्यों व्यवहार मेरे से मतलब लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार रहा है आज तक और उनसे इतना लगाव हो गया वो मतलब शेर से मैं चाहता था कि ये शॉप से अब मैं छुटकारा पा करके मैं प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ सर तो वो मना कर रहे हैं कि नहीं जा मुकेश मत जा तेरे को जो सही है वो हम दे देंगे लेकिन ये छोड़ के मत जाओ। फिर मैंने बोला मेरे को जाना पड़ेगा कि मेरी लाइन अलग है ये अलग है क्योंकि अब मैराथन खेल के कैसे भी पैसे का मैनेज करके और मेरे को आगे बढ़ने और ऊंचे लेवल पे जाने के लिए ये जगह छोड़नी पड़ेगी और उस टाइम मैं दिल्ली गया था प्रैक्टिस के लिए।
1: जी तो आप भविष्य के सफर के बारे में बात हो सकता हूँ मैं आपको बता दूं कि आप हैं श्री मुकेश जो कि जोधपुर से आते हैं और देश के प्रतिष्ठित मैराथन दादी प्रकाश मणि मैराथन के आप उप विजेता रहे हैं और इस मैराथन में पिछले दिनों मुकेश ने 2025 की मैराथन में अपने साहस और अपने स्टैमिना का झंडा बुलंद किया। तो मुकेश कैसा अनुभव रहा आपका दादी प्रकाश मणि मैराथन में पार्टिसिपेट करने के बाद?
0: वो तो सर उस टाइम क्या थोड़ा ऑब्सेशन था और मैं थोड़ा फीवर में था और जो हमारे इलाइट ग्रुप की कोऑर्डिनेट है सुनीता पोदारा मैम उनका खुद का कॉल आया था कि मुकेश तुम्हारे राजस्थान में मैराथन हो रही है तुम भाग नहीं ले रहे हो तो मैम ने बोला था कि ये मैराथन खेलनी जरूरी होगी मुकेश तुम्हारे को। मैंने बोला मैं फिट नहीं हूँ मैं अभी बुखार में चल रहा हूँ तो मैं कोई दिक्कत नहीं मैं आ रही हूँ तुम भी आ जाना जितना हो सके उतना भाग लेना कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा ठीक है ऐसे ही मैं तो भागा फिर फिनिश कर ली उसी हिसाब से सेट करके हुआ तो मैं उपविजेता रह गया वह भी बहुत अच्छी बात है।
1: आपने बताया कि आप एलीट ग्रुप के सदस्य हैं ये एलीट ग्रुप क्या है और आप इससे कैसे जुड़े हुए हैं?
0: ये एलीट ग्रुप ये होता है कि सर ये इंडिया के टॉप 10 एथलीट होते हैं जो इंडिया के टॉप एथलीट होते हैं उनको ये फैसिलिटी मिली जाती है एलीट ग्रुप की हर किसी को नहीं दी जाती है सर।
1: तो इसमें क्या सुविधाएं आपको दी जाती हैं?
0: सुविधाएं ये होती है सर जो मैराथन होती है उसमें अपने अभी आजकल ये एंट्री फीस लगती है उससे वो हमारी मैडम के थ्रू ही होती है एंट्री और रहने का और व्यवस्था सारी मैडम करती है अपना अभी सुविधा देती खुद से
1: जी
0: जी सर।

0: बढ़िया। तो भविष्य में आपकी क्या सपना है, आपकी क्या योजनाएं हैं, आप क्या करना चाहते हैं?
1: सर देखो धीरे धीरे कर रहे हैं भविष्य के लिए। तो अब देखो हम तो एकदम से आप होकर के जाना वो तो है नहीं। अब धीरे धीरे नेशनल मेडल आया, आगे धीरे धीरे एशियन गेम तक पहुंचेंगे, जितना हो सके समय देंगे। अभी तो 24 साल एज हुई है, 35 साल तक खेलेंगे, 35 साल का टारगेट है हमारा। 10 साल और करेंगे तो लगभग ओलंपिक तक पहुंचने का हमारा टारगेट है। वहां तक पहुंचेंगे तो अपना देश का नाम रोशन करेंगे सर।
0: आपका बेस्ट टाइम क्या निकाल रहे हैं आप 10 किलोमीटर इवेंट?
1: 10 किलोमीटर सर 29 मिनट 41 सेकंड
0: जी।
1: आप मैराथन का 1 घंटा 3 मिनट 27 सेकंड सर
0: जी।
1: 2025 का फास्ट रनर हुआ।
0: तो आप अंतरराष्ट्रीय बेस्ट से कितना पीछे हैं अभी?
1: सर ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बस तो परफॉर्मेंस है, अप डाउन होती रहती है इधर उधर, बस पास में ही है, ऐसे ही है, मतलब बिल्कुल निशाने के पास पास घूम रहे हैं।
0: मैं जानना चाहता था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो ओलंपिक का गोल्ड मेडल है उनका क्या टाइमिंग है और आप उससे कितना पीछे हैं?
1: सर उनका तो 27 मिनट के आसपास है, 27 से 20 यही चलता रहता है, और अभी मेरा 29 मिनट आ रहा है। तो मतलब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि होगा नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, इसको टाइम देना पड़ेगा और अच्छे लेवल पे जाके प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। हर कोई सुविधा है आस पास से जो भी बातचीत करके करेंगे प्लानिंग कोई अच्छी आगे से करेंगे।
0: ये जो ओलंपिक के बेस्ट मेडलिस्ट होंगे ये मुझे लगता है अफ्रीकन होंगे, राइट?
1: जी सर।
0: तो अफ्रीकन देशों की तो तैयारी है, क्या थोड़ा बेटर है उनकी तैयारियां या हम कहाँ पीछे हैं?
1: नहीं उनका सर स्टार्टिंग से ही लेवल अलग है उनका, उनका रहन सहन अलग है और उनकी मतलब अलग ही लेंथ वगैरह सब कुछ अलग ही है, उनका सिस्टम अलग है पूरा, और अपना इंडिया का सिस्टम अलग है, उनका क्लाइमेट पूरा अलग है, अपना अलग है पूरा क्लाइमेट। तो उनमें ज्यादा ही स्पीड है, हमारे में कम स्पीड है, तो उसके लिए हमारे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इसीलिए सर मेन मेन इंडिया के एथलीट है वो बाहर जाके भी प्रैक्टिस करते हैं, क्लाइमेट का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है सर।
0: नामीबिया के एथलीट?
1: हाँ जी सर, इंडिया के भी एथलीट वहाँ बाहर प्रैक्टिस, यूएसए में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं।
0: आपको भारत सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजना को लाभ मिला है अभी तक अपने संघर्ष को?
1: नहीं हमारे को सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं मिल रहा सर। सरकार की तरफ
0: खेलो इंडिया प्रोग्राम में क्या चल रहा है, क्या कमियां हैं?
1: खेलो इंडिया तो सर वो तो यूथ गेम हो गया, 18 साल कम एज वालों का, उस चीज का तो मैं हिस्सा बन ही नहीं पाया जी सर।
0: टॉप स्कीम में आपने कभी आवेदन नहीं किया?
1: ये तो सर सरकारी चीजें हैं, इनमें सिर्फ कागजी काम होता है सर, धरातल पे कोई काम नहीं होता है, ये सिर्फ दिखावटी है और उसमें कुछ नहीं है। सरकारी सब जो भी लगे हुए हैं वो सिर्फ अपने पैसों के लिए कर रहे हैं, दिखावटी कर रहे हैं, सिर्फ कागज कागज पे ही काम होता है और धरातल पे 0% काम होता है।
0: टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में आपने कभी आवेदन नहीं किया?
1: नहीं सर।
0: टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के बारे में आप जानते हैं?
1: नहीं नहीं सर।
0: टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के माध्यम से भारत सरकार कुछ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक मेडल के लिए तैयार करती है और उसके लिए उनके मापदंड है क्वालिफिकेशन और सभी चीजों के लिए। तो मैं श्रोताओं को बता दूं कि जो भी हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनके मापदंडों पे अगर यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको टॉप स्कीम में के अंतर्गत चयनित होने का मौका मिलता है, और टॉप स्कीम में भारत सरकार की ओर से हर तरह की सुविधाएं और इस साथ साथ आपको एक अच्छा सुंदर सा मानदेय भी महीने का दिया जाता है, जिससे कि आर्थिक रूप से संबल प्राप्त हो सके खिलाड़ी को और एक अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। तो आप टॉप स्कीम के बारे में निश्चित रूप से मुकेश पता करिएगा और मैं चाहूंगा कि आप उसके लिए आवेदन भी करें और किसी प्रकार के सहयोग अगर हम कर पाएंगे तो हम आपको गाइड भी करेंगे। तो आपने अपनी यात्रा के बारे में बताया और मुझे अच्छा लगा, और बताइए आपकी क्या तैयारियां हैं, आप अपने टाइम को बढ़ाने के लिए कम करने के लिए क्या कर रहे हैं और कैसे इसको आगे बढ़ने जाएंगे?
1: अभी तो सर जो इंडिया के चीफ कोच है यूनिस खान सर, उनका वर्कआउट कर रहा हूँ, उन्हीं से गाइड होके उनका ही वर्कआउट कर रहा हूँ, और जो भी है खाना पीना जो भी हर चीज पूछ के उन्हीं से ही कर रहा हूँ तो बेहतर से बेहतर हो सके
0: जी। आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है अभी, फैमिली क्या करती है और आपको कोई आर्थिक संबल मिल पाया है इन दिनों में?
1: सर आर्थिक स्थिति के बारे में बताए तो सर ऐसा स्थिति है कि एक तो होता है गरीब और हम आते हैं अति गरीब में, बिल्कुल कुछ नहीं है हमारे पास, ऐसी कंडीशन हो रखी है।
0: क्या करते हैं आपके माता पिता?
1: कोई गांव में सर, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट तो जैसलमेर लगता है ऐसे सर, दोरों की धरती है, बिल्कुल ट्यूबवेल का पानी नहीं है, हमारे जो बरसात होती है तो थोड़ी बहुत खाने पीने का हो जाता है बस, और कुछ नहीं है, वो भी साल में एक बार। और फादर साहब का पहले आज से 3-4 साल पहले एक्सीडेंट हो गया, तो दिमाग में लगी हुई है, इतना कुछ काम कुछ कर नहीं पाते, वैसे कोई कमाने वाला है नहीं घर में।
0: श्रोताओं, जुनून में हम ऐसी ही कहानियों को लेकर आते हैं और हम जान लें कि हमें ऐसे ही जुनूनियों की आवश्यकता है कि जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है और माता पिता का भी संबल प्राप्त नहीं है, फिर भी एक जुनून है कुछ कर गुजरने का, कुछ देश के लिए कर गुजरने का और साथ में तिरंगे की आन बान शान को आगे बढ़ाने का। तो ऐसे ही हमारे युवा साथियों का हम इस्तकबाल करते हैं हमारे फेवरेट प्रोग्राम जुनून में। विषय गंभीर है और निश्चित रूप से भावुक कर देने वाली बातें हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अगर यदि आपके अंदर हौसला है तो आप हर मंजिल को पा सकते हैं। और हमारे जैसे जुनूनी मुकेश की कहानी तो अलग ही है। मुकेश, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कौन कौन सी अभी तक इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और मैराथन को लेकर आप में ये जुनून कब आया?
1: इवेंट सर 10 किलोमीटर ट्रैक एंड फील्ड भी खेल रखा हूँ और क्रॉस कंट्री होती है 10 किलोमीटर की, उसमें भी नेशनल में पार्टिसिपेट भी कर चुका हूँ और पिछली बार हमारे राजस्थान टीम से मेडल भी आया था। और हाफ मैराथन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल है 2024 में। और अभी फिलहाल तो एक बार गवर्नमेंट जॉब हो जाए उसके बाद में सीधा मैराथन में आऊँगा, क्योंकि फुल मैराथन में सीधा उसके लिए करूँगा ताकि कि मेरे भविष्य के लिए आगे ओलंपिक में क्वालिफाई हो, एशियन गेम और ओलंपिक के लिए, क्योंकि मैं मेरा पूरा पूरा टाइम है जो भी आज से 5 साल हो गए मेरे को प्रैक्टिस करते हुए, तो मेरा एक ही टारगेट है, मैं उसी टारगेट पे चल रहा हूँ। मैंने सब कुछ इधर उधर सब कुछ देखना जो भी करना सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ एक ही टारगेट है बस, और कहीं जाना करना फोन पे बात तक नहीं होती है 7-7 दिन का वालों से, बहुत सीरियस होकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है एकदम से, ऐसा समझो कि एक कैदी जेल में बंद होकर के कैसे रहता है उसी स्थिति में एक एथलीट को रहना पड़ता है, तब जाके सीरियसली गेम होता है। अब लाइन से मतलब थोड़ा बहुत भी इधर उधर भटक गए तो आप नहीं कर पाओगे
0: जी। आपने अपने देश के पूर्व एथलीट्स मिल्खा सिंह और श्री गोपाल सैनी के जीवन से क्या सीखा?
1: उनसे हर कंडीशन में मैं सीखना देखता था, कि भी वो अपने आप में कितने मजबूत हैं, वो टूटते नहीं है, कितनी कंडीशन खराब हो जाओ लेकिन टूटते नहीं है, लास्ट तक मरते तक आप करते रहो चाहे कितनी भी कंडीशन है, वो इंसान तब तक खत्म नहीं हो जाए तब तक करते रहना बस, मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, आगे जाके पिछता नहीं होना चाहिए कि मैंने किया क्यों नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि मैंने करा है, बस यही होना चाहिए।
0: और अब तो भारत के एथलीट्स ओलंपिक में ही बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप तो जानते ही हैं नीरज जी ने पिछले साल कमाल करके दिखाया है, तो आपका क्या तैयारियां हैं और आप क्या सोचते हैं कि हम भविष्य में आपको किस तरह की सुविधाएं या सहयोग की आवश्यकता है जिससे कि आप एक बेहतर एथलीट बन के निकले?
1: सर फिलहाल तो कंडीशन ऐसी हो रही

0: करके फिर उसमें जाके अपनी मतलब जो ये स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसी आती है उसमें आवेदन के लिए भी ऐसा कर दिया है। राजस्थान पुलिस की वैकेंसी है, इसमें भी हम फॉर्म नहीं लगा सकते, ऐसी कंडीशन कर रखी है। और जैसे हम डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं और स्टेट खेलते हैं, नेशनल खेलते हैं, तो क्या हमारी सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि हम खिलाड़ियों के लिए गेम करवा रहे हैं, उनके लिए खिलाड़ियों से ही पैसे लिए जा रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए 200 रुपये एंट्री फीस देनी पड़ रही है, स्टेट राजस्थान स्टेट खेलने के लिए 700 रुपये एंट्री फीस देनी पड़ रही है, और हम नेशनल में एंट्री करवाएंगे तो हमारे से 1200 रुपये एंट्री फीस ली जा रही है। ऐसी कंडीशन कर रखी है गवर्नमेंट से। तो हमारा तो यही है कि भी मैं भी सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि इसमें आप कुछ सुविधाएं दी जाए खिलाड़ियों को। ये इंडिया में मतलब गिने सुने खिलाड़ी है, इतने ज्यादा कोई खिलाड़ी नहीं है, और अभी कंडीशन बहुत खराब हो रही है। आने वाले लड़के मतलब कोई ऐसे किसी में जोश नहीं है, खिलाड़ी बहुत कम पड़ रहे हैं, इसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है, खिलाड़ियों में कोई जोश नहीं है, बहुत कम पड़ रहे हैं, बहुत कम मिल रहे हैं। अभी आजकल के एसोसिएशन में मैराथन में भी बहुत कम भीड़ देखने को मिल रही है।
1: अपनी कठिन परिस्थितियों और अपने जीवन के बारे में हमें बताया, और श्रोताओं इस प्रेरणादायी कहानी से हमें जानने को मिलता है कि जुनून यदि है तो आप हर मंजिल हासिल कर सकते हैं। तो आप सुनते रहें और मुस्कुराते रहें, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8 FM। और मुकेश ने बताया कि जिस प्रकार से फीस ली जा रही है सरकार के द्वारा विभिन्न इवेंट्स में या जो आयोजक हैं उनके द्वारा, उससे वो थोड़ा नाखुश हैं और बताते हैं कि उनके लिए फीस भी जुटा पाना कई बार मुश्किल होता है और इस फीस पर राहत दी जानी चाहिए। आशा है कि जो हमारे खेल प्रबंधक हैं और जो खेल प्रशासक हैं इस बात और इस मांग के बारे में गंभीरता से विचार करेंगे। तो श्रोताओं केस से बात करते हैं। मुकेश आप बताइए ना, आपने कई सारी मैराथन में भाग लिया है, सबसे अच्छा अनुभव और यादगार अनुभव कौन सी मैराथन में रहा आपके लिए?
0: सर अगर देखी जाए तो इसमें सबसे एक तो हमारी अमृतसर में हुई थी BSF मैराथन, उसको ही बताऊंगा मैं। और सबसे अच्छी तो जो माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी मैराथन हुई थी, इससे अच्छी कोई सुविधा नहीं हो सकती। इतनी अच्छी व्यवस्था और सब कुछ, रूट पे पानी वगैरह, आगे गाड़ी पीछे गाड़ी हर सुविधा, और रेलवे स्टेशन से लेकर के स्टार्टिंग से लास्ट तक ड्रॉप करना, हर एक सुविधा, छोटी छोटी रुकने की, जाने आने की, इतनी अच्छी सुविधा दी जाए तो खिलाड़ियों में अपने आप में जोश होगा। हर कोई इंसान में जो भी अगर 40 साल एज होगी ना, वो भी सोच सके कि मैं भी मैराथन खेलूं। और ये एक भागना दौड़ करना, ये मतलब एक बहुत कठिन परिश्रम है, इसका खेल नाम दिया बहुत अच्छी बात है। कि जो भी सुबह उठते हैं जल्दी और कोई रोड पे ऐसे रनिंग करते हुए देखते हैं तो हर कोई मोटिवेट होता है, हर कोई यही सोचता है कि कितनी फिटनेस के लिए कर रहे हैं, वो इसके लिए कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं, अपन सो रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, हर एक इंसान के अंदर विचार आता है।
1: जी
0: जी सर।
1: तो श्रोताओं आशा है कि आज आपने सुना गंभीरता से हमारे साथी मुकेश को, जो कि एक एथलीट हैं, जोधपुर शहर से आते हैं। आप भी इनकी कहानी से प्रेरणा लेंगे और इनकी कहानी से कुछ सीखेंगे। और उन्होंने बताया कि माउंट आबू में होने वाली दादी प्रकाश मनी मैराथन ने उनको एक अच्छा खुशनुमा अनुभव उनको दिया, और उन्होंने इस मैराथन में अपने साहस और अपने जज्बे की मिसाल कायम की। तो मुकेश आप इसी प्रकार से आगे दौड़ते रहें, और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि आप भी देश के नाम रोशन करें, अपने प्रयासों में कभी कमी ना आने दें, और जो सहयोग आपके आसपास अवेलेबल हैं वो निश्चित रूप से आपको मिले। और सरकार से भी हम इस कार्यक्रम जुनून के माध्यम से निवेदन करेंगे कि वो आपको आशानुरूप सहयोग प्रदान करें। केश आप हमसे ऐसे जुड़े रहें, और आप भविष्य में हम जब भी चाहेंगे तो हम निश्चित रूप से, जब आपके पास मेडल्स और होंगे तो हम आपसे और भविष्य में बातचीत करेंगे। तो आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। श्रोताओं आप सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8 FM। थैंक यू मुकेश, जय हिंद।
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद।

नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव।

0: भारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते सभी वर्गों से मिलते तो आज हमें खुशी है, क्योंकि सरकार का जो मंच है आसपास गतिविधि को जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबनी का मंच देती है, और इस मंच का फायदा आज बच्चे लेंगे, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं, बच्चे महान होते हैं, और बच्चे शिक्षित होते हैं और मीठे होते हैं। आज राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरपुरा जो कि बॉर्डर में पहुंचे रेबदर ब्लॉक और आबू रोड ब्लॉक का लास्ट ग्राम पंचायत, और हर साल इस स्कूल में आते हैं, तो आज बच्चों को एक मंच मिल रही, सभी बच्चे बच्चों के हिस्सा लेंगे, क्योंकि सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि सामुदायिक तक पहुंचाने के लिए आज पहुंचे। सब हाथ हिलाओ, वेरी गुड, सभी बच्चे हाथ हिला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चे परिया है, तो अपना नाम, कौन सा क्लास और कौन सा फल से आते हैं बताएंगे।
1: मेरा नाम आरोही कुमारी है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरी एज 14 साल की है।
0: वेरी गुड। और आपका मम्मी पापा क्या करते हैं?
1: मेरे मम्मी पापा घर पे ही रहते।
0: खेती बाड़ी है?
1: नहीं सर।
0: पशुपालन?
1: नहीं।
0: क्या करते हैं पापा?
1: मेरे पापा मंदिर में रहते हैं।
0: मंदिर, अरे वाह, मंदिर मस्जिद गिरजा घर को हम कभी भूल नहीं पाते, वहाँ प्रार्थना होता है। और बड़े होकर क्या बनेगी?
1: बड़े होकर टीचर बनेंगे।
0: वेरी गुड, मैम बनेंगे, वाह वेरी गुड। नेक्स्ट, अपना नाम?
2: मेरा नाम मीना कुमारी है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ।
0: हाँ, और
2: मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते हैं, मैं 14 साल की हूँ।
0: और बड़े होकर क्या बनेगी बहन?
2: टीचर बन।
0: टीचर, बट टीचर क्यों? क्योंकि टीचर में मजा आता है पढ़ाने, आज पढ़ रहे हैं और कल पढ़ाएंगे। नेक्स्ट,
3: मेरा नाम है सोनिया कुमारी, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ, मेरे माँ बाप खेती बाड़ी करते हैं।
0: और कौन सा फल से आते, कौन सा गाँव, कहाँ से? बहादुरपुरा। ओके, नेक्स्ट।
4: मेरा नाम मीना कुमारी, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे पापा खेती बाड़ी करते हैं और मेरे गांव का नाम भातेपुर।
0: वेरी गुड।
5: मेरा नाम दुष्की कुमारी है, मेरे पापा खेती बाड़ी करते हैं।
0: आपको आज क्या ज्ञान मिला?
1: मुझे आत्मा और शिक्षा और सभी का ज्ञान मिला।
0: तो इसको फायदा लेने से फायदा होगा?
1: जी
0: फायदा होगा
1: जी।
0: वाह, चलिए एक प्रस्तुति होगा, प्रार्थना के रूप में एक प्रस्तुति सुनाओ।

0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर प्रस्तुति। और हर स्कूल में, हर विद्यालय में जो जाते हैं प्रार्थना सत्र में बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और जब रेडियो मधुबन इस तरह कार्यक्रम को लेकर पहुंचता है तो इस तरह कार्यक्रम में जब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते बच्चे बहुत खुशी लगता है, क्योंकि उनको एक मंच जो आवश्यकता था आज मिल रहा, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, पहला बार आए और रेडियो में अपना आवाज को बुलंद से बता पा रहे। जब इनकी आवाज जब आकाशवाणी में सुनेंगे बच्चे का, मम्मी पापा भाई लोग बहन टीचर सुनेंगे, ये तो हमारा गुड़िया का आवाज है, ये हमारा दोस्त का आवाज है, तो कितना खुशी लगेगा, लगेगा ना सभी बच्चों को?
1: हाँ जी।
0: क्या धीरे से बोल रहे
1: हैं? हाँ जी।
0: हाँ, यही हुई ना बात, हमेशा हाँ जी का पाठ पक्का करना है, कोई भी बात हो हाँ जी क्या बोलेंगे?
1: हाँ जी।
0: बड़े जो बोलेंगे आपका भलाई के लिए बोलते हैं माँ बाप। बड़े में कौन कौन आता है? बड़े में कौन कौन आता है बता देखिए बहन।
2: पिताजी, माता जी, चाचा जी, मामा जी, चाची जी, मामी जी,
0: और
2: दादा बड़ा, दादी, नाना नानी।
0: हाँ, इसको कैसे बोलेंगे भाई? दादा दादी, नाना नानी, चाची, काकी, काका, बड़ा भैया,
2: भैया बहन,
0: बहन, और हमारा शिक्षकगण, टीचर्स गण, ये भी गुरुजन हमारा बड़े होते, तो उनका बात मानना
1: चाहिए,
0: मानना
1: चाहिए,
0: क्योंकि वो आपका भलाई के लिए हमेशा सोचते हैं, भलाई के लिए
1: सोचते हैं।
0: कौन कौन सोचते हैं भलाई के लिए आपका?
2: टीचर्स,
0: मम्मी पापा, बड़ा भाई, किसका किसका, छोटे भाई बहन भी सोचते लगते बड़ों के लिए, है ना? छोटे भाई बहन भी बहुत होशियार होते, वो भी हमारा दीदी बड़ा भाई अच्छा बने ऐसे सोचते है ना?
1: जी।
0: हाँ, बहुत अच्छा लगा। और बड़ों के क्या बनेगी? टीचर।
2: जी।
0: इसलिए मेहनत क्या करती तुम?
2: पढ़ाई करते।
0: कितना घंटा?
2: दो
0: घंटा से नहीं चलेगा, और
2: करते और स्कूल में छह घंटा,
0: छह घंटा, आठ घंटा हुआ, 24 घंटा से 8 घंटा का। और कितना समय कहाँ क्या करती तुम?
2: और खेलते,
0: सोते, खाते, पीते, खाते हैं खाना, दिन में खा खा कर दिन में दिन को गवा देते हैं, सो सो कर रात को, तो पढ़ते कब?
2: दोपहर को पढ़ते
0: हैं। हाँ, होशियार बच्चे, बोला हम पढ़ते हैं सर, दोपहर को हम पढ़ते हैं, आप ऐसे कैसे बोल देंगे? दिन में हम खा खा कर सोते हैं, हम स्कूल जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, और पढ़ाई भी अच्छा करते हैं। विद्यार्थी जीवन में 2 घंटा नहीं 4 घंटा मेहनत से पूरा लगाएंगे ना विद्यार्थी जीवन में, ये 5 साल, इसके बाद आपको तो 90 साल पैसा ही पैसा मिलेगा, क्योंकि नौकरी करेंगे, ये 5 साल थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, करेंगे बच्चे?
1: जी।
0: जब तक कॉलेज है तब तक पढ़ाई करना करना करना, बस नंबर लाना है, मेहनत क्या करेंगे?
1: मेहनत।
0: जोर से बोलो,
1: मेहनत,
0: मेहनत, 20 नाखून लगाकर नीचे से ऊपर तक इतना मेहनत करेंगे तो हम जरूर क्या लेंगे? सर्विस। क्या लेंगे?
1: सर्विस,
0: नौकरी लेंगे, है ना? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तुम क्या बोलेंगे? बड़े होकर टीचर तो बने, इसलिए मेहनत करती है तुम?
3: जी।
0: फिर नाम बताओ?
3: हिना कुमारी।
0: हिना, मेहनत करती?
3: जी।
0: वेरी गुड, ये तो जी जी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा, सभी को धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं, याद रखिएगा।
1: नमस्ते। कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी, आज बच्चों का साथ हम भी बच्चे बनकर उनका साथ रूबरू हो रहे थे और बच्चे प्रार्थना सत्र में ही महात्मा जैसे पूरा गीत गाए हैं और ऐसे हर स्कूल में होता है, परमात्मा का याद में खुद को आत्मा समझकर गीत गाए तो बहुत अच्छा हो गया। और इस कार्यक्रम को कॉम्पिटिशन जैसे बच्चियों का आवाज के बाद अभी बच्चे भी देंगे, छोकरियों का आवाज के बाद छोकरा भी कम नहीं, वो भी अपना आवाज को देंगे, अपना अपना नाम और कौन सा गांव में आते हैं और बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे उनसे भी सुनेंगे। जब उनका आवाज से लक्ष्य रहेगा तो लक्षण दिखाई देगा। और चलिए सभी को स्वागत करते हैं एक एक को। आज हमारे साथ बहुत सारे बच्चे आए हैं, तो हेलो, अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम प्रकाश कुमार है और मैं बादबुरा गांव का हूँ।
1: वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी आवाज तो आप दे पा रहे हैं, आपका आवाज कौन बोलता है, अभी आवाज नहीं है, आपका आवाज तो बहुत मिठास है, सुंदर है और हट्टा कट्टा है। और खेल खेलते हैं?
2: जी खेलते हैं।
1: कौन सा खेल खेलते हैं?
2: कबड्डी।
1: अरे वाह, कबड्डी खेलने से क्या फायदा होता है?
2: सर मजबूत बनता है।
1: हाँ, कौन बोलता भाई, ये पूरा होशियार बच्चा भाई। सारी एक्सरसाइज करेंगे, हमारा स्वास्थ्य तंदुरुस्त होगा, स्वास्थ्य का विकास होगा, शारीरिक का विकास होगा, बहुत अच्छा। इसे आगे बढ़कर क्या बनना चाहेंगे?
2: टीचर बनना।
1: टीचर ही नहीं तो एक्सरसाइज कर पीटीआई साहब बनेंगे, नहीं तो फौजी। हाँ। फौजी भी बन सकते हैं। वेरी गुड, खेल को अपना दोस्त मानना चाहिए। चलिए और एक दोस्त। हेलो, क्या नाम है?
3: मोती राम।
1: वाह, मोती तो आत्मा तो मोती है, आत्मा मोती। गांव का नाम पूरा बताओ।
3: बहादुरपुरा।
1: और तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है? दोस्त है
3: जी।
1: क्या नाम बताओ?
3: जगदीश।
1: कौन सा क्लास? 11th क्लास। चलिए, हेलो, नाम बताओ।
4: रमेश
1: हमारा श्रेष्ठ भाई है और अच्छा काम करता है, उनका दोस्त का साथ आज भी वो अपना बात बता रहे। और तुम्हारा अच्छा फूल, कोई फूल देखा? फूल का नाम बताओ। देखी
4: कमल
1: फूल। वाह, कमल फूल सबसे विशेषता है, कमल फूल जैसे बनना है। कीचड़ में रहता है कमल फूल, खिलता है लेकिन कितना उसका कीचड़ नहीं लगता है लेकिन आगे बढ़ता है, उसका पूरा खुशबू है पद्म जैसे, है ना? वेरी गुड। तुम्हारा नाम?
5: जी सर, मैं बादुरपुर में रहता हूँ।
1: और बड़े होकर क्या बनेगा?
5: पुलिस वाला।
1: वेरी गुड, पुलिस बहुत अच्छा। चलिए हमारे साथ और छोटा सा।
6: मैं विक्रम कुमार हूँ और मैं बादुरपुरा में रहता हूँ।
1: और अच्छा भोजन करते हैं ना? क्या खाते हैं? अच्छा, कौन सा अच्छा भोजन लगता है आपको?
6: दाल रोटी।
7: मेरा नाम किशन कुमार, मैं बादुरपुरा में रहता हूँ।
8: मेरा नाम गमा राम है, मैं बादुरपुरा में रहता हूँ।
9: मेरा नाम प्रवीण कुमार है, 11th
1: क्लास में। देखो सभी अपना अपना आवाज को खोल दिए, तो सबको धन्यवाद देते हैं। और तुम्हारे गांव का आसपास कौन सा गांव है बहादुरपुरा के आसपास गांव?
6: सरीफली।
1: हाँ।
6: चनार।
1: मुंगथला
6: जी।
1: फतेहपुरा।
6: फतेहपुरा।
1: डांगफली। साकोड़ा। बताते नहीं आप लोग, साकोड़ा और
6: मई खेड़ा।
1: वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8।

0: चलिए रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आज बच्चों का आवाज पारी पारी ले रहे, सभी को आज एक गुलदस्ता, जैसे सबका आवाज, जैसे सभी फूल मिलकर एक गुलदस्ता बनता है, सभी का आवाज, नाम, गांव और कौन सा क्लास और गांव का आसपास क्या है सुनने को जा रहे, तो रेडियो मधुबन आज इनको सभी बच्चों को आज चुप्पी तोड़ रहे हैं, सभी चुप्पी तोड़ के अपना बात को रख रहे हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक छात्रा है, हेलो नाम बताइए।
1: मेरा नाम है सोनिया कुमारी, मैं बादीपुरा में रहती हूँ।
0: सोनिया बहुत अच्छा, सोनिया और सुरेश तो भरपूर है, हर स्कूल में सोनिया और सुरेश मिलता ही है ना। कौन नाम रखा है सोनिया तुम्हारा नाम?
1: बाप ने।
0: क्या नाम बाप का?
1: कान्हा राम।
0: अच्छा,
2: मेरा नाम गीता कुमारी, मैं बादीपुरा में रहती हूँ।
3: मेरा नाम पंकू कुमारी है, मैं 11 क्लास में पढ़ती हूँ, मैं बादरपुरा में रहती हूँ।
0: बादरपुरा के?
3: मैं बड़ी होकर पुलिस बनूंगी।
0: पुलिस, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा है ना, मेहनत करते हैं। पुलिस वाले को देखा है कभी?
3: जी।
0: क्या करता पुलिस? चोर को
3: पकड़ता है,
0: जो बेईमान करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, जो दुर्नीति करेगा उसको जेल में
3: डालेंगे।
0: नेक्स्ट।
4: मेरा नाम सीता कुमारी है, गाँव का नाम बादरपुरा है, मेरे पिता का नाम कान्हाराम है, माता का नाम अंजा देवी है। मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ।
0: और बड़े होकर क्या बनेगी?
4: डॉक्टर।
0: सीता है ना नाम? वाह, सीता रामायण में है ना, महाभारत में सीता किस में है? सीता
4: रामायण में।
0: रामायण में सीता और राम और सीता, श्री राम और श्री सीता कहते हैं। और महाभारत में द्रौपदी क्या बोलते हैं?
4: द्रौपदी।
0: सबको अच्छा लगा
4: जी?
0: क्या अच्छा लगा? एक बात बताओ, ज्ञान अच्छा लगा ना, रेडियो अच्छा लगा ना, खुद अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा बोलो? अच्छा लगा ना, सब बुरा लगा, क्या अच्छा लगा रे बहन? ज्ञान अच्छा लगा, ज्ञान माने समझ, समझ में आया
4: जी?
0: समझ में आया
4: जी?
0: तुमको समझ में आया
4: जी?
0: तुम कौन हो, सीता ना आत्मा?
4: मैं आत्मा, सीता मेरा नाम है।
0: वेरी गुड, ये पक्का उत्तर। तुम बोलो।
3: मैं आत्मा, मेरा नाम पंकज।
0: मेरा नाम,
2: मैं आत्मा, मेरा नाम गीता कुमारी।
0: समझ में, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए सभी बच्चों को एक मंच मिल रहा है, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

लोग ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुरा।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। बच्चे एक को देखकर दूसरे भी अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे, सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे। 40-50 बच्चों को आज मौका मिल रहा है क्योंकि वो सोचेगा भाई मेरा आवाज नहीं है, उसका आवाज आ गया, पंकु का आ गया, सीता का आ गई, किंतु मेरा आ गया, इसलिए वो भी बोलता भाई मेरा भी आवाज होना चाहिए, तब तो गुलदस्ता बनेगा बहादुरपुरा विद्यालय का। और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा और छात्राएं उपस्थित होगी, सभी अपना क्लास कौन सा क्लास के और नाम और कहां से बताएंगे। वेरी गुड।
1: मेरा नाम सीमा कुमारी और मैं फतेहपुरा से आती हूँ और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: वेरी गुड।
2: मेरा नाम है इनाम कुमारी, मैं बहादुरपुरा में रहती
3: हूँ। मेरा नाम पूजा कुमारी, मैं बहादुरपुरा में रहती हूँ, 9th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: पूजा नाम बहुत सुंदर है, कौन रखा है पूजा नाम?
3: मेरे पिताजी।
0: घर में कौन कौन है?
3: पापा, मम्मी, बहन।
4: मेरा नाम है तेजल कुमारी।
0: क्या नाम?
4: तेजल।
0: तेजल बोलो, 9th क्लास में। और कौन सा गांव से?
4: सरीफली से।
0: सरीफली, अच्छा,
4: बहादुरपुरा
0: में आता है। और आपका गांव का सरपंच का नाम बता सकते हैं? क्या नाम है? मिश्री देवी। गलबा राम का क्या लगता है?
4: मम्मी,
0: माँ, आई लगता है। गलबा राम सरपंच से पहले, हाँ बता नाम।
5: मेरा नाम पप्पी कुमारी है, मैं बहादुरपुरा में रहती हूँ।
0: वेरी गुड।
6: मेरा नाम आरती कुमार, मैं बहादुरपुरा में रहती
0: हूँ। अच्छा, सबको अच्छा लगा? सभी को अच्छा लगा आज कार्यक्रम? कैसे लगा सभी को? अच्छा लगा होगा ना? बुरा लगा? अच्छा लगा कार्यक्रम? आपका आवाज जब जाएगा तो घर में सुनेंगे सभी बच्चे?
7: हाँ जी,
0: हाँ जी सुनेंगे। कैसे सुनेंगे? रेडियो पे सुनेंगे, मोबाइल में रेडियो आता है, लिंक आता है, उसमें सुनेंगे शाम को 7 से 8 बजे, ठीक है। और अच्छा, घर में कोई चीज आता है तो पहले किसको मिलता है? मम्मी पापा कुछ नया चीज लेकर, आम आया, खजूर आता है, तो किसको देते? भाई को देते ना बहन को देते?
4: भाई को।
0: भाई को, भाई और बहन दोनों को देते हैं। किसका घर में? भाई को देते हैं। किसका घर में? बहन को देते हैं। तुम्हारा घर में किसको देते हैं?

0: भाई का,
1: भाई को देते हैं। भाई भाई को क्यों, बहन को क्यों नहीं देते हैं?
0: बहन को भी देते हैं।
1: बहन को भी देते हैं पीछे, क्योंकि
0: हाँ
1: भाई और बहन में अंतर होना चाहिए,
0: नहीं,
1: नहीं होना चाहिए। भाई और बहन एक भगवान का दो फूल है, भगवान का दो फूल है तो बराबर होना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों बराबर अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? पढ़ाई में, खाने में, घूमने में, फिरने में, सब में बराबरी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद लास्ट प्रस्तुति। हमारा ग्रुप इंतजार कर रहे, जो पहले ग्रुप आए थे वो ग्रुप करेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।
2: नमस्कार, मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, माने आवे पिया जीरी हिचकी, मारो वादी लो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752, 9001313752, ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से प्रसारण किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी। हमारा संगीत कला केंद्र है जहां हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं। बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमायचा, खड़ताल, ढोलक, हारमोनियम सिखाया जाता है। तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें। संगीत निर्देशक हाकम खान

ओम शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया और कह सकते हैं अपना लोक भाषा में मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब गाँव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते तो आज इस कार्यक्रम को लेकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मईखड़ा में पहुंचे। आप सबको विदित है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय ये दोनों विद्यालय का मिलित सहयोग से बच्चों का सर्वांगीण उन्नति के लिए, विद्यार्थी विकास के लिए, बच्चों का हुनर, बच्चों का टैलेंट, बच्चों का प्रतिभा को, बच्चों का भाव और भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच एक स्टेज देती है। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर इस स्कूल में विद्यालय में पहुंचे, बहुत खुशी लग रहा है। बच्चों का साथ हम भी बच्चे बनकर उनका साथ रूबरू हो रहे हैं और सरकार का जो मंच है आसपास स्कूल हो चाहे आंगनबाड़ी हो चाहे नरेगा हो चाहे कहीं पर भी चाहे प्रशासन गांव के संघ हो सभी के साथ हम मिलकर उनका भाव और भावना को जन जन तक पहुंचाते हैं। एक खुला मंच है जो इस मंच का माध्यम से अपना भाव को जन जन तक

0: अनिता राजकीय
1: उस्मानी विद्यालय
0: मईखेड़ा मईखेड़ा जो कि बादपुरा ग्राम पंचायत में आता है। ये एक प्रमोशन होकर आज बड़ी स्कूल हो गया, क्योंकि पहले आठवीं क्लास, इसके बाद दसवीं क्लास, इसके बाद बारहवीं क्लास है ना। तो अभी आप कौन सा क्लास में है? टेंथ में। अच्छा, बोर्ड परीक्षा होगा इस बार, रहे परीक्षा में बहुत मेहनत करना है। आ? और घर में कौन कौन है? अनिता
1: बाप आई
0: और भाई बहन है। और आपको पढ़ाई अच्छा लगता है? कौन सा विषय आपको अच्छा लगता है?
1: विज्ञान।
0: विज्ञान।
2: मेरा नाम दीपिका सोलंकी है।
0: हाँ।
2: मैं टेंथ क्लास में पढ़ती हूँ।
0: हाँ। अच्छा, आपका अच्छा दोस्त का नाम बताओ, सहेली, जो कि आपका मन का बात उसको बताते है। क्या नाम है? सभी बच्चे उनका दोस्त है। चले, सब शर्माते, शर्मानंद से नहीं होगा, क्योंकि सब आत्मा है ना, आत्मा शर्माते है क्या? देह को देखेंगे तो सर ये लड़का ये लड़की ऐसे सोचते हैं। चलिए, एक गीत प्रार्थना सत्र में प्रार्थना गाते ना, प्रार्थना कराओ।

पूजा और उनका साथी आए हैं, तो उनको भी स्वागत करते हैं सभी ग्रामवासियों की तरफ से और सभी नन्हे मुन्ने बच्चों की तरफ से। नन्हे नन्हे सितारे आए हैं, तो इस कार्यक्रम में पूजा को भी स्वागत करते हैं। पूजा साथी,

0: मत बैठो।
1: धन्यवाद लेते छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद लास्ट प्रस्तुति हमारा ग्रुप इंतजार कर रहे, जो पहले ग्रुप आए थे वो ग्रुप करेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन।
2: नमस्ते। कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए अंतिम प्रस्तुति की हम चल रहे हैं और ये अंतिम पड़ाव में राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरपुरा बच्चों का जो भावना को लेकर एकल आए हैं हमारा परी, क्या नाम बताए थे फिर आपने?
3: आरोही कुमारी।
2: आरोही, बस आरोही, अवरोही नहीं, आरोही मीन्स ऊपर उठना है, अवरोही मैंने नीचे डाउन। इनका नाम है आरोही, क्या नाम है?
3: आरोही।
2: वाह कितना सुन, मैंने पहला बार सुना आरोही, है ना? कौन नाम रखा है आरोही?
3: मेरी बहन।
2: आरोही का मतलब क्या जानते ना? आरोही मतलब उठना, चढ़ना, उड़ना। आरोही मतलब चढ़ना। चलिए शुरू करिए।

0: राम है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। अंतिम प्रस्तुति में पूरा चार चांद लगा दिए, और जिसका उमंग उत्साह रहता है और एक आध्यात्म जब बन जाता है और उसका घर में पूजा पाठ उनका पापा करते मंदिर में जाकर आरोही, और जिसका चलते वो भी अपना झिझक दूर करके अपना कार्यक्रम को हेल्दी वेल्दी हैप्पी बना दिए, और इस तरह कार्यक्रम में जब इस तरह बच्चिया आएंगे बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे पार्टिसिपेट करेंगे तो गांव का नाम रोशन करेंगे, विद्यालय का नाम रोशन करेंगे, और परिवार का नाम रोशन करेंगे, और खासकर खुद का भी नाम रोशन करेंगे। और नाम भी पहला बार इसने नाम सुना आरोही, बहुत अच्छा नाम है। तो जाते जाते सभी को नाम का साथ एक एक बच्चे का जो नाम लिए सभी को धन्यवाद देते सुंदर प्रस्तुति के लिए, और सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिए। ऐसे पहला बार हुआ जो सभी बच्चे अपना आवाज को रेडियो में लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। यह था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरपुरा के सभी बच्चों जो कि 9th, 10th, 11th, 12th का बच्चे मिक्स होकर आज बैठे थे, और आत्मसात के आत्म प्रबंधन सेल्फ रियलाइजेशन बच्चे सेल्फ रियलाइजेशन की आत्म उन्नति किए, आत्म अनुसंधान किए, मैंने सेल्फ रियलाइजेशन किए, खुद को महसूस किए। हाँ, ये खुद को महसूस किए। हम सब कौन है? हाँ, देखा समझ में आया। आत्मा अनुभूति की आत्मा अनुभूति हुआ ना, इसको कहते सेल्फ रियलाइजेशन, और गॉड रियलाइजेशन भी किए, परमात्मा का अनुभूति भी हुई ना। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं आप सबसे इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। अच्छा धन्यवाद, आभार।
2: गायक कलाकार हाकम खान ढोलक पे साथ दे रहे हैं, मदन खान खरताल पे संगीतकार, शौकत खान मौनशिया। ये खरताल लकड़ी की बनी हुई होती है, शीशम की लकड़ी की चार खुली लकड़ी होती है, और हाथों के अंदर ये खुले अंगूठे और अंगुलियों के सहयोग से ये बजाया जाता है। शौकत खान है राजस्थान, इन्होंने खरताल के माध्यम से अपना कुछ नाम कमाया है, हर स्टेज पे इनका कार्यक्रम होता है। हकीम लोक संगीत संस्थान केसुमिला के अंदर ये बच्चों को संगीत की खरताल में सिखलाई देता है, खुद गाता है। इस संगीत संस्थान में हमारे कलाकारों खरताल ढोलक कमायचा सारंगी मोरचंग मुरली अलगोजा सहनाई ये सिखलाई दी जाती है। काफ़ी कलाकार हमारे इस संस्थान के माध्यम से संगीत को आगे बढ़ावा दे चुके हैं और विदेशों में भी काम कर रहे हैं। तो आपके सामने अभी पेश किया जा रहा है निम्बूड़ा। ये निम्बूड़ा हमारे मांगनिया लोगों का गया हुआ है, प्रस्तुत करना जा रहा है हाकम खान।

0: तो सभी सुनने वालों को नमस्कार, सुप्रभात। और हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे स्टूडियो से और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो शो मन की आंखों से। मन की आंखों से में हमने बहुत सारे हमारे साथियों, हमारे मित्रों, हमारे दोस्तों को आज तक रिकॉर्ड किया है, उनकी बातें सुनी है, उनको समझने की कोशिश की है कि वो आंखें नहीं होते हुए या कहें कि वर्चुअली नजर ना होते हुए भी जीवन जीने का इतना नजरिया कहाँ से लाते हैं। और उसी की तलाश में हम निकल पड़े थे आज से 3 से 4 साल पहले। और मन की आंखों से के इस शो से हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए हैं और हमने यही जानने की कोशिश की कि ये आंखें ना होते हुए भी जीवन को कैसे आंखें मिलती है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मन की आंखें रखते हैं हमारे वो साथी जिनको हम नेत्रहीन कहते हैं, ब्लाइंड कहते हैं, दृष्टि बाधित कहते हैं। और हमारे साथ ही हमारी एक सीनियर साथी जिन्होंने एक समय पे न केवल बैंकिंग के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद किया और इसके साथ साथ अब स्पिरिचुअलिज्म से भी जुड़ी हुई हैं और हमारे शहर लखनऊ से कहें कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, लखनऊ के शहर से, खूबसूरत शहर से आती है हमारी साथी, हमारी सीनियर बहन, इनका नाम है ममता कपूर। और ममता कपूर जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं और एक शानदार रेगुलर सेवाओं के बाद अब समाज में कैसे अपनी सेवाएं दे रही हैं, या कहें कि दूसरी पारी जीवन की कैसे खेल रही है, आइए हम जानेंगे। तो आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM और पर हम कहते हैं ना, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो ममता जी आपका स्वागत है हमारे रेडियो शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए।
0: जी, ऑक्टावो की वादियों से आप सुन रहे हैं हमारा रेडियो शो और आप इसे सुन सकते हैं हमारे रेडियो मधुबन ऐप पे भी और कुछ दिनों बाद हम इसको लेकर आएंगे स्पॉटिफाई पे भी, तो आप उसको सुन पाएंगे हमारे रेडियो शो को रेगुलर, नियमित, और रखिए अपने दिल के पास इस शो को। तो मन की आंखों से ममता जी हमारे साथ हैं और ममता जी से हमको ढेर सारी बातें करनी है और अब आप थाम के बैठ जाइए आपका दिल अगले एक घंटे के लिए। देखिए ना कहाँ से इस पिटारे में कौन कौन सी बातें निकलती हैं, कौन कौन से जीवन के वो महत्वपूर्ण अनुभव निकलते हैं जो शायद आपको रोशनी देंगे और आपके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। दोस्तों, माउंट आबू की वादियों से हम आपके लिए लेकर आए हैं इस बार के रेडियो शो में एक और साथी जो हमारे डिसेबल साथी है, हमारे ही कम्युनिटी से है लेकिन उनकी चुनौती जो है वो थोड़ी सी अलग है। और आपको तो पता है हम मन की आंखों में से ऐसे साथियों को भी रिकॉर्ड करते रहे हैं जो नेत्रहीनता से अलग डिसेबिलिटीज के साथ जूझ रहे हैं लेकिन उनको उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा एहसास नहीं की कराया कि वो परेशान है या हैरान। तो हम इस बार हमारी जो साथी हैं जो ममता कपूर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं, वे शारीरिक रूप से अक्षम हैं और व्हीलचेयर बाउंड हम उन्हें कह सकते हैं, आप व्हीलचेयर का उपयोग करती हैं। तो ममता जी हम आपकी यात्रा को शुरू करेंगे, तो यात्रा की शुरुआत होती है बचपन से, अब आप बहुत तुले हैं बचपन से ऊपर, तो आपने डिसेबिलिटी कैसे एक्वायर की और आपके बचपन की जो शुरुआत है, जो हम कहते हैं ना 55 साल पहले आपका जो बचपन था वो कैसा था, वो हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: मैं अपने माता पिता की पहली संतान थी और उनके पास शादी के 5 साल बाद मेरा जन्म हुआ। घर में बहुत खुशियाँ मनाई गई, बेटी होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत खुशियां मनाई। जैसे गांव में मेरा बिलग्राम नाम के गांव में जन्म हुआ था, गोले छुड़ाए गए, आतिशबाजी की गई, लेकिन 2 साल की जब मैं हुई और चली नहीं, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और उन्होंने फिर मेरा ट्रीटमेंट जो है कराने के लिए दर दर भटके, वो एलोपैथ डॉक्टर, होम्योपैथ, उन्होंने मतलब यहाँ से लेके अमेरिका तक और आयुर्वेद से लेके कोई भी पैथी किसी तरह की, कोई कहता कि अंग्रेज महिला आई हुई है वो कुछ पानी देके वो करती है, कोई जादू टोना भी कर रहा है। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मेरे पिता बहुत सीनियर ऑफिसर रिजर्व बैंक पे हुआ करते थे, लेकिन वो हर जगह ले लेके मुझे दौड़े, लेकिन 13 साल तक जब सफलता प्राप्त नहीं हुई और मैं पूरी तरह व्हीलचेयर पे आ गई, फिर उन्होंने पढ़ाई पे मेरे ध्यान देना शुरू किया। अक्षमता पे कोई उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई, फिर मुझे उन्होंने पढ़ाई पे जोर दिया और तब तक मुझे वो स्कूल के पेपर्स लाके देते थे, ट्यूटर आता था, मेरे एग्जाम लेते थे और मैं एक के बाद एक क्लास ऊपर चढ़ती गई। हर साल मेरे एग्जाम लिए जाते थे घर पे, लेकिन मेरी तकदीर कहे या मेरी लगन कहे, क्योंकि मुझे कुछ बन कर दिखाने की तमन्ना मैं जब 5 साल की थी तब से ही मुझे लगता है था कि इस शारीरिक अक्षमता को मुझे बहुत पीछे छोड़ देना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो फिर मैं जो थी, और जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, तो मैं मेरे घर के सामने ही एक स्कूल खुल गया। तो मेरे पिता ने बात की, तब तक मैं 9th पास कर चुकी थी, तो फिर मैंने 10th क्लास में डायरेक्टली एडमिशन लिया। और फिर उसके बाद तो एक के बाद एक सफलताएं पढ़ाई के क्षेत्र में मुझे प्राप्त हुई। मैंने वहाँ पे SSC बोर्ड होता था, वहाँ पे भी बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया। फिर ग्रेजुएशन की, फिर ये लगा कि अब कॉलेज कैसे जाऊंगी, तो मेरी सिस्टर जो जस्ट मेरे से छोटी थी उसने मुझे कहा कि आप दीदी चिंता क्यों करती हैं, मैं तो हुई ना आपके साथ। तो वो और मैं, मेरे से वो 1.5-2 साल छोटी है, तो हम दोनों ने ही एक साथ ही SSC बोर्ड पास किया था। तो फिर मैं, हम दोनों ने गुजरात कॉलेज जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी ने पढ़ाई की है, उस प्रेस्टिजियस कॉलेज में, मैंने अहमदाबाद में, मेरे पापा तब उस समय अहमदाबाद में पोस्टेड थे, तो मैंने वहाँ पर अपना एडमिशन लिया। और वहाँ भी मुझे दिया इतना कोऑपरेशन मिला कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब मैं सुनती थी कभी, हम जैसे बच्चों के स्कूल अलग होते हैं, बच्चे मजाक उड़ाते हैं, कॉलेज में भी हमें हेय दृष्टि से देखा जाता है, पर मुझे आज तक किसी भी जंक्शन पे इस बात का एहसास किसी ने भी नहीं कराया मुझे भाई किसी तरह की कमी है। मेरी पढ़ाई की बुलंदियों को देखकर, मेरे मार्क्स को देख के सब लोग मुझसे जुड़ते चले जाते थे, और हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने तो मेरे साथ इतना कोऑपरेट किया कि आप सोचिए कि 4 साल जो कॉलेज के थे, रूम नंबर 16 में ट्यूटोरियल्स, सारे लेक्चर्स, आउटसाइड लेक्चर्स सब उसी क्लास में करवाए, मुझे कहीं भी मतलब किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, और साथियों का भी मुझे पूरा पूरा सहयोग मिला। ये जरूर था कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए शायद उससे लोग जुड़ना भी बहुत पसंद करते थे, क्योंकि ये एबिलिटी जो है उससे लोग इम्प्रेस होके भी और प्यार से, पर दया से कभी नहीं, मेरे कोई भी मुझ पे दया कभी नहीं दिखाई। और मैं सच बताऊं भाई, कभी भी मुझे मुझे हमेशा इस बात से चिढ़ रही कि मुझे कोई फिजिकली हैंडीकैप कह दे या बेचारी बेचारी शब्द का यूज कर ले मेरे लिए। मैंने इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया, उसके बाद उसमें भी मेरिट स्कॉलरशिप मुझे प्राप्त हुई, और लेकिन मैं मेरिट स्कॉलरशिप को मैंने उन गरीब बच्चों को दान दे दी जो अपनी पढ़ाई करके नहीं कर पाते थे। तो उसके बाद मैंने साहित्य रत्न किया वर्धा यूनिवर्सिटी से, मेरी पढ़ाई की चाहत कभी खत्म ही नहीं हुई। मुझे ये था कि मुझे दुनिया से कुछ अलग करना है, मुझे कोई ये ना समझे कि ये फिजिकली अक्षम है इसलिए ये काम नहीं कर पाए, ये बात मुझे कभी भी स्वीकार्य नहीं थी। उसके पश्चात फिर मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना शुरू किया, उसमें भी तरह तरह की परेशानियां आई, लेकिन आप विश्वास नहीं मानेंगे शायद, मैंने हर एक एग्जाम को क्लियर किया, यहाँ तक कि ESI एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, फिर इनकम टैक्स, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टेलीफोन्स, इनकम टैक्स, हर एक के एग्जाम मैंने पास किए, लेकिन फाइनली मैंने रिजर्व बैंक को चूज किया, और वहाँ फिर मैंने फिर जीवन के 37 साल आबाद गत से करे, और वहाँ भी मतलब राइट फ्रॉम प्यून टू टॉप ऑफिशियल्स सबने मुझे पूरा पूरा सपोर्ट किया, और मैंने भी अपनी डिसेबिलिटी को कभी भी अपने आड़े आने नहीं दिया। मुझे मेरा चूंकि ग्रेजुअली ये तकलीफ होती गई इसलिए बढ़ती गई, तो पहले मैं लिख के सारे स्टेटमेंट्स बनाती थी, सब करती थी, फिर धीरे धीरे भगवान भी मेरे साथ हमेशा मददगार रहा। जब हाथ में अक्षमता आनी शुरू हुई तो कंप्यूटर युग आ गया, मेरे एक साथी ने कहा कि दीदी आपने इतना अचीव किया, कंप्यूटर कौन सी बड़ी चीज है जो आप नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन मेरे सब साथी इतने अच्छे थे, लेडीज हो या जेंट्स, हर एक ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया। और मैं आप विश्वास करें, मतलब आई वॉज द फर्स्ट टू कंप्यूटराइज माई सीट फुल्ली, मैं अपने पूरे काम को फुल्ली कंप्यूटराइज कर पाई। हाँ, और मतलब तो मेरी क्षमता और भी बढ़ गई। और फिर मैंने अपने प्रमोशंस के लिए भी एग्जाम दिए, आई रिटायर्ड एज मैनेजर। मेरे सब बॉसेस, मेरे सब साथी, सब साथ तो देते ही थे और मुझे इंस्पायर भी करते थे। बस ये था कि मुझे कभी भी किसी चीज से कभी हार नहीं माना। और मैंने आपको एक बात और बताऊं, मैंने कभी भी अपनी डिसेबिलिटी का फायदा कभी नहीं लिया सरकार से। मैंने हमेशा जनरल कैंडिडेट की तरह हर एग्जाम में मैं अपीयर हुई, क्योंकि मुझे पसंद था ही नहीं कि मैं फिजिकली हैंडीकैप कहलाऊं। मैं अक्षम होते हुए भी हमेशा सक्षम बनी रही और लोगों ने अपने साथ से मुझे बनाया भी। मेरा आत्मविश्वास हमेशा हाई पे रहा और कोशिश में कभी कोई कमी नहीं रही।
0: तो आपने अपने बचपन से लेकर और अपने यंग एज तक की सारी चीजें हमसे लगभग साझा कर ली हैं, लेकिन हम उस बातें और ढूंढना चाहेंगे। जैसे आपको मैं बताऊं, हमारे श्रोता जान रहे होंगे कि दिव्यांग व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है रिहैबिलिटेशन। और जिस हमारे दिव्यांग साथी का रिहैबिलिटेशन हो जाए, वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है, मेन स्ट्रीम में आ जाता है, मुख्य धारा में अपनी जगह बना लेता है। लेकिन हमारे बहुत सारे साथियों को ये अवसर नहीं मिल पाता और उनके माँ बाप बहुत सालों तक डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहते हैं और बच्चे की पढ़ाई जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हम श्रोताओं से यही कहते हैं या हम उनको यही बताना चाहते हैं, और आप जैसे हमारे साथियों के माध्यम से भी हम ये बात का प्रचार प्रसार लोगों तक करना चाहते हैं जागरूकता, कि आप बेशक इलाज के लिए यहाँ वहाँ जहाँ आपको ट्राई करना है वो आप बिल्कुल बेशक आप ट्राई करिए, लेकिन अगर आपको एक देश के एक प्रतिष्ठित अस्पताल के चिकित्सक ने कह दिया कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो फिर हमें बाबाओं और नीम हकीमों के चक्कर में हमारे बच्चे का जीवन खराब नहीं करना चाहिए और उसकी रिहैबिलिटेशन के बारे में विचार करना चाहिए कि वो कैसे मुख्य धारा में आ सकता है, वो कैसे आगे पढ़ाई कर सकता है, कैसे उसका स्कूल में एडमिशन हो सकता है और वो कैसे अपने साथियों का सहयोग ले सकता है। तो हम इसी परिकल्पना को लेकर लोगों के बीच जागरूकता का प्रयास कर रहे हैं कि वो लोगों तक जैसे आपका रिहैबिलिटेशन हो पाया। बेशक आपके माता पिता ने आपका इलाज कराने का भी भरपूर प्रयास किया और वो अमेरिका तक पहुंच गए, परंतु उन्होंने आपकी शिक्षा में कोई कोताही नहीं बरती, आपको एक अच्छे विद्यालय में जाने का अवसर मिला और आपने वहां पर अपने प्रेम से, अपने जज्बे से लोगों को प्रभावित किया और उनका प्रेम और सहयोग भी पाया। और आपका जो बात आपने रखी है कि दिव्यांग कहलाना मुझे पसंद नहीं है, निश्चित रूप से वो हम भी इस बारे में जानते हैं कि हम एक आदमी की जो गरिमा है जो देश के संविधान ने उसको दी है, तो यह वो गरिमा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और उसके साथ में भाईचारा बहुत महत्वपूर्ण है और वो दोनों ही आपने उसको मिसाल बनाते हुए आपने जीवन को जिया है और इसलिए हम लखनऊ से आपसे जुड़ पाए। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन मन की आंखों से 107.8 FM और मैं हूं आपका होस्ट शरद। तो आज के इस शो में ममता जी से फिर हम आगे बढ़ते हैं और उनकी जो उन्होंने बात कही है, देखिए 2016 का जो कानून देश में लागू है और आज भी हम देखते हैं कि बिल्डिंगों की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, कहीं रैंप नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है और बहुत सारी समस्याएं एक व्हीलचेयर पे चलने वाले व्यक्ति को हम देखते हैं। लेकिन जैसा ममता जी ने बताया कि हम उनके बचपन से लेकर उनके यंग एज तक का जो स्ट्रगल है, उन्होंने बताया कि वो कैसे अपना लोगों का सहयोग ले पाई, एक ही कमरे में उनको सारी चीजें उपलब्ध कराई, कमरा नंबर 16 उनके लिए एक माइलस्टोन बन गया है तो जिसको उन्होंने जिक्र भी किया, तो ये कमरा नंबर 16 की कहानी क्या है वो हम इनसे जानना चाहेंगे और कैसे वो सहयोग मिल पाया। और बिल्डिंगों की जो हम हालात आज भी देखते हैं कि बिल्डिंगें एक्सेसिबल नहीं है और पोस्टिंग और ट्रांसफर के दौरान भी कई तरह की समस्याएं आती हैं, दिव्यांग व्यक्तियों को कई तरह की चुनौतियां आती है, वहां उसको रियलाइज होता है कि मैं डिसेबल्ड हूं, लोग कहे बिना ही कह देते। ममता जी के इंसिडेंस आपको मैं बताऊं कि एक बहुत प्रतिष्ठित मॉल के मालिक से मेरी एक दिन डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने उनको कहा कि आपका मॉल तो बहुत सुंदर है लेकिन एक्सेसिबल नहीं है, हमारे दिव्यांग व्यक्ति नहीं आ सकते, आपने इसको एक्सेसिबल नहीं बनाया। तो वो कहते हैं कि वो आते ही नहीं है, हमें रैंप बनाने की जरूरत ही क्या है, आप पहले रैंप बनाइए फिर देखिए कि वो कैसे इस जगह इस मॉल को कैसे घेर लेंगे, तो आप एक बार मौका तो देखिए दीजिए फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये वही बात है जो बाबा साहब अंबेडकर ने सरदार पटेल को कही थी कि आप, मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे एक मौका तो दीजिए संविधान लिखने के लिए, हम कैसे आगे बढ़ जाते हैं। तो वही बात जो बात आपने अभी कही, तो ममता जी इन सारी बातों पर हम आपको सुनना चाहेंगे।
1: देखिए जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो पहले स्टार्टिंग में 4 स्टेप्स थे, तो मैं जैसे ही पहुंची तो मैं और मेरी सिस्टर, तो उन्होंने 4 लड़के आए और जैसे गॉड सेंट होते हैं उस तरह उन्होंने मेरी व्हीलचेयर सहित मुझे उठा के ऊपर चढ़ा दिया, जैसे भगवान के 8 हाथ आए और उन्होंने मुझे उठाया और ऊपर रख दिया। उसके बाद हमारे क्लास नीचे थे, कुछ क्लासेस नीचे भी थे और कुछ ऊपर भी थे, लेकिन मेरे साथियों ने जो मैंने को एजुकेशन में ही हमेशा थ्रू आउट पढ़ा है, तो मेरे साथियों ने मुझसे पूछा कि मैम आपके कोई ब्रदर है क्या? तो मैंने कहा अरे आप एक ब्रदर की बात करते हैं, मेरे तो इतने सारे भाई हैं, आप लोग मेरे क्या हैं, भाई तो हैं बस। उस दिन का दिन, उसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल से अप्रोच किया और मेरी प्रॉब्लम को बताया, मुझसे मिलवाया, और उसके बाद तो प्रिंसिपल मुझसे इतने ज्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने एक क्लास क्या मतलब हर क्लास, हर ट्यूटोरियल, हर आउटसाइड लेक्चर सब रूम नंबर 16 फॉर ऑल द 4 इयर्स वहीं पे ऑर्गेनाइज हुए। इतना ज्यादा सहयोग मुझे मिला। मेरी सिस्टर जो थी वो मुझे रिक्शे से लेके जाती थी, ईश्वर की दया ही, मैं तो हर अपने मैंने जो किया सो किया, लेकिन ईश्वर का पूरा हाथ मेरे पर रहा, वरद हस्त जिसको कहते हैं, मेरे परिवार ने जो मदद की उसके अलावा साथियों ने, और ईश्वर का वरद हस्त हमेशा मेरे पर रहा। मुझे कॉलेज ले जाने के लिए भैया जी मिल गए रिक्शे वाले, तब हम लोगों के पास कार तो हुआ नहीं करती थी, तो हम दोनों रिक्शे से जाते थे, वो हम लोगों को बहुत उससे ले जाते थे, मुझे मैनुअली उठा के व्हीलचेयर पे बैठाते थे, और फिर वहाँ रैंप बनवा दिया गया था, तो वो जो स्टार्टिंग के 4 जीने थे वो भी मेरे लिए बाधा नहीं बन सके। और उसके बाद तो फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर वही वर्धा यूनिवर्सिटी से साहित्य रत्न की डिग्री प्राप्त की, फिर ये रिजर्व बैंक ज्वाइन किया, लेकिन पढ़ाई की वो तो भूख मेरी कभी खत्म नहीं हुई। फिर मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से आके LLB की शिक्षा प्राप्त की, मैंने LLB भी की भी डिग्री पाई, और वहाँ ज्वाइन करा नहीं लेकिन मैं एग्जाम देने गई, और वहाँ के जो डीन थे वो स्वयं मुझे अपने घर बुलाते थे और मुझे कहते थे कि ममता अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे तुम डिस्कस कर लो आके मेरे घर पे, और मैं उनके घर में जाती थी और वो मुझे गाइड करते थे, और इस तरह मैंने अपना LLB भी कंप्लीट किया। मुझे शरद जी हमेशा से डॉक्टर बनने की बड़ी अभिलाषा थी, पर चूंकि मैं शारीरिक रूप से अक्षम थी तो ये तमन्ना कैसे मेरी पूरी होती, लेकिन देखिए भगवान, गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स, तो इस तमन्ना को ये समझिए कि मैंने पत्राचार द्वारा मावेली होम्यो मिशन से करस्पॉन्डेंस का होम्योपैथ के डॉक्टर का कोर्स किया, और उसके बाद मैंने वहां से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में बन गई, और मैं होम्योपैथ की सेवाएं भी प्ले ऑफिस में पहले तो कुछ लोगों तक ही सीमित रहा, लेकिन फिर मुझे मेरे ऑफिसर इंचार्ज को जब पता चला कि इस फील्ड में भी मुझे ज्ञान है, तो उन्होंने मेरे लिए एक अलग से चैम्बर दे दिया, और मैं उस पर बैठ के 10:45 तक तो ऑफिशियल अपना कार्य का निर्वहन करती थी, और उसके बाद एज ए होम्योपैथ डॉक्टर मैं अपने चैम्बर में बैठती थी 3 से 5, और वहाँ दवा की डिस्पेंसिंग के लिए मेरे पास कोई ना कोई आ जाता था और मैं दवा प्रिस्क्राइब किया करती थी। तो होम्योपैथ की डॉक्टरी भी मैंने इस तरह प्राप्त की, और मेरी ये तमन्ना भी पूरी हो गई कि मेरे नाम के पीछे डॉक्टर लिख गया, मैं डॉक्टर ममता कपूर हो गई। फिर उसके पश्चात मैंने एक फील्ड और भी, मुझे पता चला कि भारतवर्ष में रेकी का बहुत प्रचार हो रहा था उस तकरीबन 1992 में, तो मेरी सिस्टर वहाँ रहती थी, तो उसने कहा कि जमशेदपुर में आजकल दीदी का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है और इससे लोगों को फायदे हो रहे हैं, तो उसने तो इस लालच में मुझे बुलाया था कि शायद मेरी अक्षमता कुछ कम हो जाए और मैं एक सामान्य जीवन बिता पाऊँ। तो मैं वहाँ गई, मैंने अट्यूनमेंट लिए। मुझे तो खैर मेरा आत्मविश्वास तो पहले भी कम नहीं था लेकिन उससे और बढ़ा। लेकिन मुझे उसके बाद मैंने देखा कि उसके द्वारा जब मैं होम्योपैथ का ट्रीटमेंट करती थी या मैं लोगों को रेकी करती थी तो उससे लोगों को बहुत फायदा होना शुरू हो गया। तो फिर हमारे जो ग्रेट ज्ञान बाटर मास्टर थे उन्होंने मुझे मास्टरशिप दे दी। तो अब मैं रेकी मास्टर भी हूँ और अपना रेकी द्वारा भी ट्रीटमेंट देती हूँ, होम्योपैथ का भी ट्रीटमेंट करती हूँ। और इस तरह मेरा सही पूछे तो मेरे को अपना दिन थोड़ा 24 घंटे से कुछ ज्यादा हो जाए ऐसा महसूस होता है।
0: जी, तो अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते रहना यही इंसान की कुवत है और यही इंसान का जज्बा है। और जब हमारे साथ कोई समस्या हो जाए या कहीं कि हमें कोई चुनौती आ जाए तो फिर उस चुनौती को पार पा जाना ही इंसान होना है। तो आपने सिर्फ अपने कॉलेज में रैंप, अपने स्कूल में रैंप ही नहीं बनवाया बल्कि आप अभी आज बहुत सारे लोगों को इलाज भी दे पा रही हैं या कहें कि उन्हें जीवन दान भी दे कर पा रही हैं अपने मेडिकल की शिक्षा के माध्यम से। तो मैं उन प्रिंसिपल, उन आचार्य का नाम इस शो में जरूर चाहूंगा जिन्होंने इतना मेहरबान होके या आपसे मुतमईन होके उन्होंने वो रैंप जो है वहां पर बनवा दिया और जिसके लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे कि मैं अपनी कहानी बताऊं कि भले मुझे रैंप की ऐसी आवश्यकता नहीं है नेत्रहीन व्यक्ति होने के नाते, परंतु मेरे शहर में ही एक पास में ही एक शौचालय बन रहा था, साधु कॉलेज से कहते हैं, और उस पर रैंप नहीं बनवाए बिना ही उसका उद्घाटन किया जा रहा। तो मैंने अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि को इसके लिए चेताया कि आप रैंप आवश्यक रूप से बनाएं, देश का कानून भी है और आवश्यकता भी। तो फिर वो काम बड़ा देर सवेर हुआ और उसके लिए भी हमें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। ऐसे बहुत सारे शहर के शौचालय बन पाए उसके लिए भी बड़ा प्रयास किया गया। मैरिज गार्डन्स को एक्सेसिबल किया जा सके उसके लिए मैंने एक कंप्लेन कोर्ट में लगाई और बहुत सारा एडवोकेसी करते करते करते ये जो बात है ये प्रोटेस्ट तक पहुंच गई। और वो प्रोटेस्ट के दौरान बहुत सारे मुकदमे मेरे ऊपर भी कायम हुए और बहुत सारे अन्य दिव्यांगों पर भी कायम हुए राजस्थान में, और फिर मेरी नौकरी भी चली गई इस वजह से। लेकिन वो सारी चीजें हुई, हालांकि फिर वापस से नौकरी कायम हुई, फिर मैंने वापस से चीजों को किया। लेकिन वो तो जज्बा है। तो एक देखिए ना, एक वो सज्जन है जिन्होंने रैंप बड़े प्रेम से स्वीकार किया और बनाया। और ऐसे भी हमारे जीवन में ऐसे भी लोग भी हैं हमारे आसपास जो जनप्रतिनिधि होते हुए भी इस पर बात नहीं कर पा रहे और बहुत के द्वारा कई बार बर्बरता भी हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे भी अनुभव हमारे कई साथियों के हमारे सामने हैं। लेकिन आपने जो बताया कि वो सज्जन कौन है, पहले तो हम उनके बारे में जानना चाहेंगे और बाकी साथियों पे क्या प्रभाव पड़ा आपके वो मैं जानना चाहूंगा।
1: कॉलेज में जो गुजरात कॉलेज में तो डॉक्टर सांडिल्य थे
0: जी,
1: उन्होंने इस तरह की व्यवस्थाएं मेरे लिए की और मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ और आजीवन रहूंगी। और रिजर्व बैंक में तो सभी सीनियर ऑफिसर्स जो हमारा सेंट्रल ऑफिस बॉम्बे में है वो क्योंकि मेरा कार्यकाल 36 साल का, मैंने 1975 में ज्वाइन किया रिजर्व बैंक और 2011 में वो किया। तो बहुत सारे मेरे साथ जो यहाँ पे रह चुके वो मेरी कार्य और मेरे जज्बे को देख के कहिए वो इम्प्रेस होके या मतलब सहयोग के उससे, क्योंकि ये तो ट्रांसफरेबल जॉब है। ये जो चीफ होते हैं बैंकों के उनको तो हर 3-5 साल में ट्रांसफर होके जाना, पर जो आया उसने ही मदद की। किसी एक के नाम को नहीं कह सकती हूँ। हाँ, इसमें एक हमारे बहुत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होके रिटायर हुए मिस्टर दीपक सिंघल, उन्होंने जब हमारा ऑफिस विजिट किया तो वहाँ पे जो जब मेरा पुराने ऑफिस में तो लिफ्ट थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ लकड़ी का रैंप रख दिया जाता था, रोज मेरा रिक्शे वाला, और फिर मैंने कार ले ली थी तो खैर मेरा ब्रदर मुझे लेके जाता था। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी दो बहनें हैं, मेरे से दो छोटी और मेरा ब्रदर है, उनका भी बहुत सहयोग मिला माता पिता के साथ ही, और उन्होंने भी मुझे कोई कमी महसूस नहीं की, होने दी और मेरा पूरा सहयोग किया। मेरा ब्रदर मुझे कार से लेके जाता था और वो रैंक जो लकड़ी का बैंक ने बनवा के दिया था उसके थ्रू मैं चली जाती थी, लेकिन जब मेरा नया ऑफिस बना तो वहाँ पे रैंप की सुविधा नहीं थी, और इत्तेफाक से वो डॉक्टर मिस्टर सिंघल वहाँ आ गए, तो मैं बैंक में शरद जी दीदी के नाम से ही, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, तब मुझे
0: जी
1: ममता दीदी के नाम से ही, आई वॉज पॉपुलरली नोन एज ममता दीदी, तो मुझे
0: जी
1: शायद ममता कपूर के नाम से लोग कम जानते थे, ममता दीदी के नाम से बहुत जानते थे और सम्मान और प्यार भी देते थे, और बल्कि लोग कहा करते थे कि अगर किसी को कभी कोई डिप्रेशन हो तो जाके ममता के पास बैठ जाओ तो
0: जी
1: तुम्हारा डिप्रेशन तुरंत दूर हो जाएगा। दीपक सिंघल जी वहाँ आए और उन्होंने मुझे पैर लगा के व्हीलचेयर से चढ़ाते हुए देखा, और उन्होंने हमारे जो लोकल इंचार्ज थे उनसे कहा, अरे दीदी को इतनी परेशानी हो रही है आपने देखा नहीं उस दिन? मतलब आप ये सोचिए कि सुबह मैं जब आई हूँ तब मुझे पीछे से रेस्ट करके उठाना पड़ा था, और शाम को जब मैं गई हूँ तो रैंप से गई हूँ,
0: जी बहुत बढ़िया
1: रैंप से वापस गई हूँ, इतना
0: जी
1: कोऑपरेशन मतलब मुझे मिला।
0: जी और आपको मैं बताऊं कि श्रोता तो आपको सुन ही रहे हैं और श्रोताओं को आपको महसूस भी हो रहा होगा कि एक रूहानी रोशनी हमारे साथ है ममता दीदी के रूप में, और ममता दीदी से बात हो पा रही है। ममता दीदी, आप जिस संस्था में काम कर रहे थे, उस संस्था में एक विशाल नाम, बहुत बड़ा नाम उस समय के डिप्टी गवर्नर के रूप में रहा, जिन्हें हम हमारा कई लोग दिव्यांग लोग हमारा अपना भगवान भी कहते हैं, और भारत रत्न के भी वो दावेदार हैं, परंतु वो कब मिलेगा, कब भारत सरकार समझेगी जानेगी वो हमें नहीं पता। उनका नाम है डीआर मेहता, जो महावीर विकलांग समिति के अध्यक्ष हैं, और महावीर विकलांग समिति आप जानते हैं कि देश में दुनिया भर में काम कर रही है, खासतौर पर उस क्षेत्र में वाना जैसे कहते हैं वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका जो जल रहा है, कुछ नेताओं की क्या कहें कि भूख या हवस के चलते, और उस उन देशों में आग लगी हुई है, बहुत सारे लोग बमबारी की वजह से विकलांग हो गए हैं,
1: बहुत
0: तो
1: परेशान हो
0: उनको
1: गए हैं।
0: लगातार वो पैर लगाने का काम वो कर रहे हैं, जिसे हम जयपुर फुट कहते हैं। तो डीआर मेहता जी भी आपकी संस्था में आए, तो कभी आपका उनसे कोई परिचय या कोई संपर्क कभी हुआ या कैसा उनको?
1: अरे उनसे तो मेरा परिचय नहीं हो पाया क्योंकि
0: जी
1: मेरे मेरे उसके दौरान वो आए नहीं कभी, लेकिन मुझे नाम से अवश्य जानते होंगे, यहाँ
0: हाँ
1: लखनऊ से लेके पूरे इंडिया में एज ए होम्योपैथ डॉक्टर मेरा काफी नाम रहा। ये बात को मुझे अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये कहना चूंकि जरूरी था तो मैंने
0: जी
1: बताया, तो मतलब मैं मेरे अपने काम के लिए तो मैं जानी गई, लेकिन एज ए होम्योपैथ डॉक्टर और रेकी स्पेशलिस्ट की तरह मुझे बहुत मिली है।
0: बिल्कुल, कुछ चीजें मैं भी आपसे साझा करना चाहता हूँ, और श्रोता भी जान रहे हैं कि समाज में कई बार कुछ इलाकों में, राजस्थान के कुछ इलाकों में, गांव में, ग्रामीण इलाकों में अवेयरनेस जहाँ पर कम है, वहां पर तो लोग ये भी समझते हैं कि सुबह सुबह अगर दिव्यांग व्यक्ति को देख लिया तो उनको लगता है कि आज हमें भोजन भी नहीं नसीब नहीं है, तो ये भी धारणा कई बार लोग हमारे बारे में कई इलाकों में रखते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, और हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से, मन की आंखों के माध्यम से, हम लोगों को यही कहना चाहते हैं कि हम भी आपके भाई हैं, हम भी आपके बहन हैं,
1: बिल्कुल
0: और जहां तक आदमी की जो पहचान है उसकी काबिलियत तो उससे काम से होनी
1: काबिलियत,
0: चाहिए, ना कि वो कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, किस जाति से आता है, या उसका लिंग क्या है, या वो दिव्यांग है कि नहीं, ये हमारे जीवन के मूल्यांकन, किसी व्यक्तित्व के मूल्यांकन के मानक नहीं हो सकते। तो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों तक यही बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और इसलिए हम आप जैसे शख्सियत के साथ बात करते हुए इन बातों पर फोकस करते हैं कि समाज में जितनी भी ये कुरीतियां और खास तौर पे अंधविश्वास फैला हुआ है दिव्यांगता को लेकर, ये दूर हो सके, कि दिव्यांग व्यक्ति भी अपना जीवन सामान्य रूप से जी सकता है, वो भी विवाह कर सकता है यदि चाहे तो, और वो भी एक सामान्य जीवन जीते हुए अपनी टेबल पे, अपनी डेस्क में, अपने हुनर से, अपने कौशल से समाज को में योगदान करने की स्थिति में है। तो डीआर मेहता जी ने भी कुछ ऐसे ही दिव्यांगों से शायद वो प्रभावित हुए होंगे, और उनको फिर महावीर विकलांग समिति उन्होंने बनाने का निर्णय लिया, और आज वो दुनिया भर में काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको तो कोई याददाश्त में रहा ही होगा कि वो 1990 से लेके शायद 1991 से लेके कुछ समय के लिए आपके यहाँ डिप्टी गवर्नर के पद पर रहे, और उस दौरान
1: हाँ,
0: उन्होंने बहुत सारा काम देश भर में वो कर पाए। जी
1: मेरा नाम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फिजिकली चैलेंज बच्चों को देती है उसके लिए भी हुआ था, नाम
0: नॉमिनेट हुआ था
1: मेरा
0: आपका नाम?
1: प्रस्ताव नॉमिनेट हुआ था हाँ,
0: जी
1: और यहाँ पर भी इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन है जो
0: जी
1: उसने लखनऊ में यूपी से 7 ज्वेल्स को चुना था, उसमें भी मेरा 2009 में चयन हुआ था और मुझे बहुत सम्मान उन्होंने दिया था।
0: बहुत सारी बातें आज देखिए ना, हमने मन की आंखों से के शो में आपके डॉक्टर चांडिले को भी याद कर लिया, आपके रिक्शे वाले भैया को भी याद कर लिया, उन भैया को भी याद कर लिया, वो आठ हाथ, वो हेवनली आठ हाथ जो आपके साथ आते हैं उनको भी हमने याद किया, हमने डीआर मेहता जी को भी याद किया और हमने आपके वो सारे साथी सहयोगी उन सबको भी याद किया जो आपके जीवन में आपके साथ रहे।
1: बहुत अमूल्य योगदान जिनका रहा है।
0: जी जी। और इस हरफन मौला शख्सियत को बता दूं श्रोताओं कि देखिए ना कि चिकित्सा विज्ञान से लेकर और बैंकिंग तक की रेंज मैंने तो किसी व्यक्ति के आज तक नहीं देखी और शायद आप पहली शख्सियत है जो इतनी बड़ी रेंज में इतने विशाल डायस्पोरा के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें आपने इधर से लेके उधर तक, ए से लेके जेड तक की आपके साथ एक हुनर आपके पास है, तो ये सब जो करने की का जज्बा क्या माता पिता का रहा या कैसे सिर्फ आपसे ऑटोमेटिकली होता रहा, कोई बाबा जैसी शक्ति आपके अंदर आई और वो चलता रहा, कैसे हुआ ये?
1: मुझे तो लगता है कि मेरा आत्मविश्वास, मेरा ईश्वर में पूरा विश्वास और मतलब आगे बढ़ने के मेरी जो जज्बा था
0: जी,
1: और आत्मविश्वास से और सबके सहयोग से और भगवान के वरद हस्त के कारण ये सब संभव हो पाया। नहीं तो मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ सबके बदौलत हूँ।
0: और मैं आपको बताऊँ, हमारी दो बेटियाँ होती हैं, एक का नाम भावना होता है ना, और तो जो भावना नाम की जो बेटी है ना, वो बहुत जल्दी आहत हो जाती है, सुबह उसको हम खिलाते पिलाते नहीं है, उसका पोषण नहीं करते, तो उसमें लोगों की बहुत जल्दी से आहत होती है, तो हम तो लोगों को यही कहते हैं कि भैया अपनी थोड़ी भावना नाम की जो बेटी है उसको आप थोड़ा खिलाए पिलाए, उसका पोषण करें जिससे जल्दी से आहत ना हो तो इस पर भी लोगों से हमें बात करने की आवश्यकता है। आप तो लखनऊ में रहते हैं, अदब के शहर में रहते हैं और वहां पर तो भाईचारा बहुत सालों से अमन बना हुआ है समाज में, और मैं एक जमाने में एक दौर में उस बीच बीच में कुछ रुकावटें भी आती रही हैं, दोनों तरफ की जो शक्तियां हैं, नेगेटिव शक्तियां हैं दोनों ही समुदाय से या कहीं समुदाय से और भी समुदाय उसमें घी डालने का काम करते रहते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में समाज में कि आप एक लीडर हैं और एक दिव्यांग लीडर भी हम कहेंगे आपको, तो आपका क्या कहना है इस बारे में?
1: नहीं, ये जो मुझे तो कभी भी ये जाति और धर्म और इस सब में भाई इंसान को बस इंसान होना चाहिए, इससे बड़ी और कोई चीज नहीं है। इंसान में अगर इंसानियत है तो वो चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, उससे कोई वो नहीं है। बस केवल इंसानियत अगर उसमें है और प्यार सबके दिल में हो, इज्जत सबके सम्मान हो, बस इसी की समाज को आवश्यकता है और बहुत दुखद है कि वो कम होती जा रही है
0: जी।
1: ये तकलीफ दे बात है।
0: जी जी बिल्कुल, समाज में जो हालात हैं वो बड़े गंभीर हैं और हम सबको जैसे लीडरान को इस पर काम करने की जरूरत है, जो समाज में लगातार इन मुद्दों पर भी बोल सकें, बात कर सकें, और जब भी ये भावना नाम की बेटी आहत हो तो उनसे बात करें कि भैया अपनी भावना को संभाल के रखो, ये बहुत जल्दी आहत हो जाती है, इसको बाहर ना आने दिया। हम तो यही प्रयास कर रहे हैं, हम भी आपसे यही बात करना चाहते थे कि देखिए आपकी जो बात है श्रोताओं आप जान लें कि खासतौर पर कोई भी भगवान हो, कोई भी ईश्वर हो, कोई भी अल्लाह हो, कोई यीशु मसीह हो, वो तालीम को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं, वो शिक्षा को बड़ी, वो बाबा साहब तो कहते हैं कि ये वो दूध है जो पिएगा वो आगे बढ़ेगा और लड़ेगा, तो वही आप देखिए, आप दिव्यांग होते हुए या कहें कि आप स्त्री होते हुए भी आपकी शिक्षा पे आपके वालिद ने, आपके फादर ने, आपके पिताजी ने ध्यान दिया और आपने जीवन में अपना एक मुकाम पाया और उसका कारण है शिक्षा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और अभी बहुत सारे देश के बच्चों के जो हालात है आप देखते हैं
1: कि मैं कुछ बातें और भी बताना चाहूंगी, मुझे बच्चों से बहुत लगाव है, तो मैं जो है स्कूल के, यहाँ के टॉप को स्कूल के बच्चों का बड़े लगातार 15-16 साल ये सब स्कूल्स के बच्चों को मैं इनवाइट करती थी अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑडिटोरियम में, अपने ओआईसी से परमिशन लेके, और उनके कॉम्पिटिशन्स मैंने लगातार 15 साल करवाए हैं और उससे भी मेरा बहुत नाम हुआ। और एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि जब मेरा आर्ट कंपटीशन का रिजल्ट जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था वो जब वाजपेयी जी, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, तो वो लखनऊ आए हुए थे और हमारा नेक्स्ट डे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना था, तो हमने उन्हें इनवाइट किया और वो इतने जनरस और इतने अच्छे इंसान थे कि मेरी एक छोटी सी संस्था यंग फ्रेंड्स एसोसिएशन, जिसको कि मैंने रजिस्टर करवाया था, जिसके तत्वाधान में ये सब प्रोग्राम मैं कराती थी, तो उसमें आने के लिए वो तैयार हो गए और वो 1.5 घंटे तक लगातार हमारे साथ रहे। सर जी, मैं 5 साल पहले मधुबन से एक हमारे पहले के जानने वाले अनिल भटनागर, जो कि ब्रह्म कुमार और उनकी वाइफ भी ब्रह्म कुमारी में पूरी तरह लीन हो चुके हैं, वो हमारे वहाँ आए। वो मुझे पहले से जानते, मेरी सिस्टर के साथ वो पढ़ा करते थे, तो आए, उन्होंने ब्रह्म कुमारी के बारे में बताया और आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड। तो उन्होंने मुझे 7 दिन का घर पे ही बैठे बैठे, इसमें भी मैं ईश्वर की दया ही कहूंगी कि सामने से चल के ईश्वर मेरे घर आ गए, निमित्त बन के, किसी को निमित्त बनाया उन्होंने अपना। और मिस्टर भटनागर ने मुझे 7 दिन तक ये राजयोग और ये ब्रह्म कुमारी इसके बारे में बताया, और पिछले 5 सालों से मैं पूरी तरह बाबा की हो चुकी हूँ। बाबा मेरे हैं, मैं बाबा की हो चुकी हूँ, और मुझे पूरा पूरा बाबा पे विश्वास है। मैं

0: धाम शांति धाम में रहते हैं, और मैं रोज अमृत वेला में उनसे मिलन मनाती हूँ। मेरी डिसेबिलिटी है, इसलिए मैं किसी और को डिस्टर्ब ना करते हुए लेटे लेटे ही बाबा को शुक्रिया अदा करती हूँ और बाबा से रू रूहान करती हूँ, उनसे उनका आशीर्वाद और ज्ञान प्राप्त करती हूँ। और मेरी यही तमन्ना है कि मेरा जो अब बाकी जीवन जो बचा है वो बाबा की याद और साथ में गुजरे, और बाबा के दिए हुए ज्ञान को मैं आत्मसात करूं और धारण करके मैं बाबा के श्रीमत पे चलूं और उनके डायरेक्शन अनुसार जितना मैं मनसा वाचा कर्मणा से लोगों की सेवा कर सकूं और अपने जीवन को धन्य बना सकूं।
1: बहुत बढ़िया श्रोताओं, आज मजा आ गया बात करके, और आज हम इस बात का, इस कार्यक्रम का समापन जो है मनसा वाचा कर्मणा से ही करेंगे। मन वचन और कर्म से जब समानता आ जाती है तो जीवन के सारे रोग और सारे दुख मिट जाते हैं। ये संदेश हमको ममता जी ने अपनी बात में कहा, और यही हम आज का हमारा टेक अवे है इस कार्यक्रम के लिए। मन की आंखों से केशों को जमाने और सजाने, और आपकी आवाज की बुलंदी से हमें जोड़ने के लिए हम ममता जी की जो आत्मा है, हम उसका धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आप ऐसे ही कार्य करते रहें, हमसे जुड़े रहें, और श्रोताओं फिर से ऐसी ही एक सत्य से मुलाकात होगी 107.8 FM पर आपके फेवरेट रेडियो शो मन की आंखों से। और मैं आपका होस्ट आपको सलाम कहता हूँ, अलविदा कहता हूँ, नमस्कार कहता
0: शरद जी, आपको भी बहुत बहुत
1: हूँ।
0: धन्यवाद। आपने बहुत पेशेंटली मुझे सुना, और आपके इतने बड़े सम्मान के लिए मैं काबिल हूँ भी कि नहीं ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन आपने मुझे बहुत पेशेंटली सुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और
1: जी,
0: इस शो के काबिल मुझे समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपकी जब ज्ञान की गंगा बह रही थी तो धैर्य तो आना जरूरी था। बहुत सारे अनुभव आपने, बहुत अच्छे अनुभव साझा किए हैं, मजा आ गया। आशा है
0: थैंक यू।
1: कि हमारे भाई बहन इसका

0: मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं ताल पे गिनती,
2: छोटी बड़ी बातें, इनमें छुपी है बच्चों के दिल की बात। छोटी

0: नमस्ते भाभी, ये लुई की लंबी लिस्ट वाली सारी सब्जियां हाजिर है।
1: ओ शुक्रिया मनोज, अब क्या बताऊं, जब तुम्हारे लुई भाई साहब रसोई में लग जाते हैं उन्हें तो घंटी भी नहीं सुनाई देती। कह रहे थे आज सबकी छुट्टी है, कुछ खास बनाता हूँ।
0: अरे फिर तो अच्छा हुआ, जो मैं बाजार निकल ही रहा था आज मंडी में ताजा ताजा। हाँ भाई एल्मो, ताजी भिंडी और पालक भी।
2: एल्मो मनोज अंकल के साथ खेलेगा अपना नया खेल, सब्जी गिनो रंग से छाटो। एल्मो गिन के छाटेगा 3 लाल और 3 हरी सब्जियाँ।
0: 1, 2, 3 हो जाओ शुरू।
2: पहले 3 लाल सब्जियाँ, गाजर 1, 2, 3 तीन लाल लाल गाजर।
0: अरे वाह।
2: और अब 3 हरी सब्जियाँ, भिंडी 1, 2, 3 तीन हरी हरी भिंडियाँ।
0: क्या बात है, तुमने तो चुटकी में गिन ली। अच्छा एल्मो, भाभी बाद में मिलते हैं।
2: ओके अंकल।
1: अच्छा मनोज, तो क्या कहते हो एल्मो, हो जाए मम्मी के साथ एक और गिनती वाला खेल?
2: नया खेल मम्मी के साथ।
1: बिल्कुल, और इस खेल को कहते हैं हाँ ताल पे गिनती।
2: ताल पे गिनती?
1: हाँ, मजेदार गिनती। एक खिलाड़ी सुर गाएगा और दूसरा उन सुरों को गिनकर उतनी ही बार इस डब्बा ढोलक पर ताल बजाएगा।
2: हो, जितने सुर उतनी बार डब्बा ढोलक। ओके, अब मम्मी पहले एल्मो बजाएगा
1: और मम्मी गाएगी। एल्मो तैयार?
2: सुपर तैयार।
1: तो शुरू करते हैं। ला
2: मम्मी ने गाया 1 सुर, तो एल्मो बजाएगा ढोलक 1 बार।
1: वाह एल्मो वाह, पहला राउंड हुआ पार। टडा, अब अगला।
2: ला ला, 1 ला और 1 ला। मम्मी ने गाया 2 सुर और ये एल्मो ने बजाया ढोलक 1, 2, 2 बार।
1: बिल्कुल सही गिना उस्ताद एल्मो डब्बे वाले। और अब ध्यान से सुनो।
2: ला ला ला, 1 ला 1 ला और 1 ला। यानी 3 सुर। एल्मो को ढोलक बजाना है 1, 2, 3 3 बार।
1: और इसी के साथ एल्मो ने किए ताल पे गिनती के सभी राउंड पार। शानदार। अब एक और ताल पे गिनती वाला खेल हो जाए।
2: जाए।
1: ताल पे गिनती द्वितीय। इस खेल में हम दोनों बारी बारी से कोई धुन गाएंगे और दूसरा उस धुन में जितने सुर है उतनी ही चीजें गिनेगा।
2: हाँ, तो पहले मम्मी गाएंगी और फिर वो चीजें गिनेगा। रेडी?
1: रेडी। तो पहली धुन है
2: ला ला ला ला। हाँ, 4 सुर, 4 चीजें। हाँ, ये भी 1, 2, 3, 4, 4 किताबें।
1: एल्मो ने पूरा किया एक और धुआंदार खेल। अब मम्मी के गिनने की बारी
2: और एल्मो सुर में गाएगा ला ला ला ला ला।
1: 5 सुर। क्या गिनूं? हाँ, 1, 2, 3, 4, 5। 5 कटोरियाँ।
2: वाह मम्मी गिनती वाली, आपने भी राउंड किया पार फटाफट। अब मम्मी गाएगी।
1: ठीक है, शुरू करते हैं।
2: ला ला ला ला ला ला। ओ, 6 सुर 6 सुर। एल्मो गिने का 6 चम्मचे। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 छोटी छोटी चम्मचे।
1: शाबाश।
2: हाँ, मम्मी एल्मो को ताल पे गिनती खेल के बहुत मजा आया। क्या मम्मी और एल्मो और खेल सकते हैं?
1: मम्मी को थोड़ा काम तो करना है, पर एक आइडिया है।
2: आइडिया?
1: हाँ, काम का काम और खेल का खेल। क्या एल्मो उस फाइल के ढेर से मम्मी को गिनकर 3 नीली फाइलें दे सकता है?
2: उस्ताद, एल्मो गिनती वाला तैयार है मम्मी। आइए लो, 1 नीली फाइल, 2 नीली फाइल, 3 नीली फाइल।
1: शाबाश।
0: वैसे एल्मो को गिनने का शौक तो है, पर वो साथ साथ डब्बा मतलब ढोलक बजाने में भी सच में उस्ताद है।
1: हाँ, और मजे की बात तो ये है कि चाहे घर में रखी या आसपास की चीजें हो, गागा कर गिनना हो या एक ही रंग या आकार की चीजें ढूंढनी हो, ये सारे ही खेल गिनती सीखने के मजेदार तरीके हैं। हर रोज कुछ नया ट्राई कर सकते हैं।
0: अरे वाह, ये तो काफी जबरदस्त खेल है भाभी, मैं भी चिंटू के साथ ट्राई करूंगा। वैसे चिंटू भी बाजार में सारी दुकानें गिन लेता है।
1: वाह, बढ़िया है।
0: और उससे भी बढ़िया, जब बच्चे हमें गिनने को कहते हैं और हम भी खेल खेल में बच्चे बन जाते हैं।
3: सेसेमी वर्कशॉप इंडिया द्वारा निर्मित, UBS ऑप्टिमस फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट द्वारा समर्थित।

0: सहज बहाव में जीना ही इस चेतना का सत्य घेरा। हमारी जो चेतना है वो सरलता को तलाश करती है, पर कहीं ना कहीं वो जटिलताओं में घिरी हुई होती है। इसलिए कहते हैं, नदी जैसी बहती चेतना न रुके कहीं न बंधे दिशा। नदी का जल सभी के लिए है, वह सबको अपना बना लेती है, जहां भी जाती है उसे लाभ देती है, विलीन होने के लिए भी तैयार है। नदियों की अविरल धाराओं में निस्वार्थ प्रेम है। नदी अटूट प्रेम, अनन्य प्रेम की चिरस्थायी प्रतीक है। वह बिना कुछ कहे परोपकार किए जाती है। तो आज कार्यक्रम गुलदस्ता में स्वर्णलता आप सभी का फिर से स्वागत करती है और आगाज करती है, क्योंकि आज हम एक खास नदी पर बातें भी करेंगे और उस नदी से जुड़े गीत भी सुनेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप हैं रेडियो मधुबन पर सुनते हुए गुनगुनाते हुए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: यमुना मैया यमुना मैया, तेरे जल में बसती है माया। मेरे हर एक ख्वाब में माँ तेरी ही छवि दिखाई दे। युगों युगों से नदियां बहती आ रही हैं, विश्व के नक्शे की यह साथी हैं, संगिनी हैं। पूरे विश्व में अपने अपने स्थानों में प्रचलित नदियां हैं, जो वहां के रहवासियों की जननी हैं। जैसे धरती को माँ कहा जाता है, नदी भी जननी है हमारी। खेत खलिहानों की सिंचाई से लेकर शरीर निर्वाह तक उसकी जरूरत अनवरत है। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आज हम सुनेंगे यमुना नदी की गाथा। यह एक ऐसी अविरल धारा है जिसकी धाराओं में हमारी भारत की प्राचीन संस्कृति बसती है। हमारी प्राचीन संस्कृति में यमुना की बहुत महिमा है और उस महिमा को हम इन गीतों के जरिए और कुछ बातों के जरिए अभिव्यक्त करेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप हैं स्वर्णलता के साथ आपके फेवरेट शो में गुलदस्ता में। जब मन में आशा गंगा, धैर्य यमुना और दूसरों से अपेक्षा सरस्वती हो जाए तो जीवन संगम सा सुंदर व शांत हो जाता है। इसके बारे में हम और भी बातें करेंगे। लेट अस एंजॉय टुडेस शो।
1: मम्मी मम्मी।
2: हाँ बेटा।
1: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता क्या देखा कि एक बच्चा चाय बांट रहा है। वह फिसल गया और उसके हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसे बहुत डांट पड़ी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के बाजू में जो शंभू है वो भी तो काम करता है, उसे भी तो ऐसी ही डांट पिटती होगी। क्यों ना हम उसे पढ़ाएं।

0: यमुना मैया तेरे जल में पावन कहानियां पाई जाती हैं, तेरी महिमा न्यारी है और तूने कृष्ण मुरारी राधा रानी की कहानियां भी देखी हैं। तुम साक्षी हो, इतिहास में तुम्हारी बहुत महिमा है। हम सुन रहे हैं यमुना नदी की महिमा। यमुना नदी की धाराओं में भारतवर्ष की अमूल्य इतिहास कहानी रची बसी है। भारत जब सोने की चिड़िया थी, आज से 5000 वर्ष पहले परमात्मा शिव ने स्वर्ग की रचना की और यमुना नदी के कंठे पर दिल्ली में ही राजधानी थी। यमुना के कंठे पर विश्व महाराजन महारानी लक्ष्मी नारायण का साम्राज्य था। तो कितनी सुंदर कहानी है इन नदियों में, हमारे भारतवर्ष की ही नहीं, इन नदियों में अलग अलग जगहों में उनकी भी कहानी छुपी हुई है। तो देर न करते हुए ट्यून कीजिए, रेडियो मधुबन पर आ जाएं, क्योंकि कार्यक्रम गुलदस्ता में आज हम यमुना नदी के बारे में सुनेंगे, क्योंकि यह बहुत ही ऊंच नदी है।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: सुरम की मल्लिका लता जी की आवाज में हम यमुनाष्टकम सुन रहे थे। कार्यक्रम है गुलदस्ता। श्री यमुना महारानी की महिमा, उनके गुणों और श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति का वर्णन करने वाला एक अत्यंत पवित्र अष्टक, और इसके रचयिता थे श्री वल्लभाचार्य। इस यमुनाष्टकम का सार है, मैं सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली श्री यमुना जी को प्रसन्नता के साथ प्रणाम करता हूँ, जिनकी रेत श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से चमकती है और जिनके तटों पर नए वन तथा सुंदर पुष्प खिले रहते हैं। बहुत ही अद्भुत श्लोक है, और इस श्लोक को सुनकर हमारे दिल में यमुना नदी के प्रति जो प्रेम है वह और भी बढ़ गया है ना। हम सुन रहे हैं यमुना नदी की महिमा आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसे कि हमें मालूम है, नदी को माँ का स्थान भी दिया गया है। नदियाँ तो कई हैं भारत में, गोदावरी, कावेरी, गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा, सिंधु, महानदी, अनगिनत नदियाँ हैं, और ये प्रचलित नदियाँ हैं भारत वर्ष की, और इसमें यमुना का भी एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है हमारे दिलों में।
1: वो पहाड़ देख रहे हो?
2: हाँ, कितना सुंदर है।
1: और उनको देख रहे हो?
2: वो तो रतन मोहिनी दादी है ना।
1: वो इस पर्वत से भी ज्यादा अपने नियमों पे अडिग, उसकी चोटी से भी उच्च स्थिति वाली है। उस पर्वत से जैसे सूर्य दिखाई देता है ना, ऐसे ही दादी जी ज्ञान सूर्य यानी परमात्मा से मिलवाती है।
3: ऐसी असीम शक्ति जिन्होंने समाज कल्याण में समर्पित कर दिया अपना जीवन, आइए सुने उनकी कहानी। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हर शुक्रवार रात 9:30 बजे कार्यक्रम शक्ति वंदन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मधुबन 107.8 एफएम पर आपने सुना जमुना पर एक बहुत ही सुंदर गीत जो हमें बहुत इमोशनल कर रही थी, भाव विभोर कर रही थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अलग अलग प्रांतों की एक स्पेशल नदी है और हम सब जिस भी प्रांत के हों उन प्रांतों की जो नदियां हैं, जो स्पेशल नदियां हैं, चर्चित नदियां हैं, उन नदियों के साथ भी हमारी कहानी जुड़ी हुई है। उन नदियों के आसपास हमारा बचपन गुजरा है या हम ट्रेन में जाते हुए उन नदियों को क्रॉस करते हुए जाते हैं, तो ऐसे में हमें बहुत खुशी मिलती है ना। हमें हमारा बचपन और बचपन में खेल कूद किए हुए हैं हम ऐसी नदियों के तट पर अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार के लोगों के साथ, तो ये बहुत भावपूर्ण गीत था हम सबके लिए। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर अभी हम यमुना नदी के बारे में थोड़ी बातें करेंगे कि यमुना नदी भारत की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर 1376 किलोमीटर का सफर तय करते हुए प्रयागराज में गंगा से मिलती है। यह नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो आज हमने यमुना नदी के बारे में जाना कि वो कहाँ से गुजरती हुई कहाँ को जाती है, तो अंत में यह नदी गंगा नदी में ही विलीन हो जाती है।
1: ओए रुको, रुक रुक, भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पे चले जा रहे हो, हैं?
2: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
1: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
3: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

कार्यक्रम गुलदस्ता में अभी हमने ब्रज भाषा में एक गीत सुना जगजीत सिंह जी की आवाज में, जिसके बोल थे तरुवर छाओ तीर जमुना के कीर पठावत डोले, रूप रास कौ नवल किशोरी मोहन कह कह बोले। है ना, बहुत खूबसूरत गीत। वैसे दोस्तों, जब भी यमुना नदी की बात होती है तो श्री कृष्ण और राधा इन दोनों का जिक्र तो होना ही है। वैसे यमुना नदी का ब्रज मंडल से गहरा नाता है। श्री कृष्ण की बाल्यावस्था और उनकी कई लीलाएं इसी नदी के तट पर हुई। तो अभी जो हमने एक गीत सुना ब्रज भाषा में, आइए उसका अर्थ थोड़ा समझ लें कि यमुना नदी के शीतल तट पर घने वृक्षों की छाव है, जहां तोते प्रेम के बोल बोल रहे हैं और इधर उधर फुदक रहे हैं। वहां अनुपम सौंदर्य और रस की सागर वह नवल किशोरी श्री राधा विराजमान है, जिन्हें देखकर श्री कृष्ण बार बार कुछ कह रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर गीत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए आ रहे हैं दो गीत बैक टू बैक यमुना नदी के बारे में। तो आइए यमुना तट पर हम अपने दिल को बसा दें।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वयं से जुड़े प्रश्न पूछें। मैं कौन हूं? मुझे क्या चाहिए? मैंने जीवन में अब तक क्या पाया है? ये आत्मा चिंतन की पहली सीढ़ी है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर हम सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता, और आज हम सब यमुना नदी के बारे में बातें कर रहे हैं और इस नदी पर ही गीत सुन रहे हैं। और आप सब हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा, क्योंकि यमुना नदी की कहानी बहुत गहरी है, इसने कई कहानियों को साक्षी होकर देखा है। आज स्वर्णलता को इजाजत दीजिए, जाते जाते आप सभी के लिए आ रहा है एक राजस्थानी भजन यमुना नदी पर। यमुना जल माँ केसर घोली भजन के बोल हैं, और इस भजन को सुनते हुए हम विदा लेंगे। और आपको हम यही कहना चाहेंगे कि नदी जो है सुखदायिनी है। नदी तट पर बैठकर इंसान घंटों बातें करता है नदी के साथ, और उसको ऐसा लगता है कि नदी उसके प्रश्नों को सुन रही है और जवाब भी दे रही है। नदी के साथ हमारा गहरा रिश्ता होता है, तो ऐसे ही हम प्रकृति के 5 तत्वों के साथ रिश्ता बनाकर उसे खुश करें और उससे खुशी प्राप्त करें। तो आज स्वर्णलता को इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगी अगले सप्ताह एक नवीनतम विषय के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, मेरा नाम है मंजू, मैं बाड़मेर से हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते।

0: नमस्ते जी, मैं अजय कांत रुइया बोल रहा हूँ बम्बई से। मुझे बहुत खुशी हुई कि रेडियो मधुबन के श्रोताओं से बात करने का मौका मिला और मैं अभी राजस्थानी लैंग्वेज में भाषा में सबना हार्दिक नमस्कार कर रहा हूँ और बोलना चाह रहा हूँ कि जब से मैं कई साल पहला ब्रह्म कुमारी का भाइयों और बहनों से मेरा संपर्क हो तब से मना जिंदगी को एक नया दृश्य देखना मिलो है और मेरी कई प्रॉब्लम जो जिंदगी में आवा बिना हल करने के लिए इन्हें सब मार्गदर्शन मिलो है और मैं यही एक संदेश सारा लोगों ना बोलूंगा कि अपना जो भी काम आप करा मन लगाकर करो और खूब मेहनत से करो और कदे हार नहीं मानो और जिंदगी में आगे ही बढ़ाऊंगा। फिर नमस्ते, हंसते रहो मुस्कुराते रहो।
1: थारी कंचन सीका यारो भरोसो कौन लोभी जीवड़ी ला कौन पापी जीवड़ी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। मैं हूँ आरजे शुभा, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में जिसका नाम है नई दुनिया नया समाज, जहाँ हम बात करते हैं एक ऐसे भविष्य की जो हो स्वच्छ, हरित और सतत। धरती केवल हमारे रहने की जगह नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर भी है। तो पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों या फिर संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी का कर्तव्य है। तो जब एक व्यक्ति जागता है तो समाज बदलता है, और जब समाज जागता है तो एक नई दुनिया का निर्माण होता है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे पर्यावरण योद्धा है जिन्होंने वर्षों से स्वच्छता, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, जिनके कार्यों को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं श्री खमू राम विश्नोई जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नई दुनिया इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: तो खमू राम जी, सबसे पहले तो आपके अनुभवों और संघर्षों के बारे में हम जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले इस कार्यक्रम में आपके बारे में थोड़ा अधिक हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: मेरा नाम

0: खमुरा बिश्नोई है। मैं ओशिया तहसील के गांव एकल घोरी का रहने वाला हूं और वर्तमान में मैं राजस्थान उच्च न्यायालय के सहायक रजिस्ट्रार के पद से सेवानिवृत्त 28 फरवरी 2026 को हुआ हूं। और पिछले लगभग ढाई दशक से मैं सिंगल यूज प्लास्टिक और के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ रहा हूं। बड़े बड़े मेले होते हैं, वहां हमारी टीम कचरा बीनती रहती है ताकि लोगों की मानसिकता में जो कचरा भरा हुआ है, जो लोगों की सोच में कचरा भरा हुआ है वो निकले। हमारी मकसद ये नहीं है कि हम जमीन से कचरा बीने, हमारा मकसद ये है कि जमीन पर कचरा आए उससे पहले ही मानसिकता ही बदल जाए कि मेरा धर्म नहीं बनता कि मैं जमीन पे कचरा फेंकूं। तो इस प्रकार लगभग ढाई दशक हो गए हैं। और दूसरा हमारा काम है शादी ब्याह, वहाँ भी हम फ्री सेवा देते हैं। उसके पीछे हम तीन चार शर्तें होती है, वो पहली शर्त होती है पूरा कार्यक्रम सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त रहना चाहिए, डिस्पोजल मुक्त रहना चाहिए। और दूसरा हमारी होती है झूठन मुक्त रहना चाहिए। तीसरा हमारा होता है नशा मुक्त रहना चाहिए। और चौथा होता है हमारा फटाका मुक्त समारोह हो। तो हम ऐसे सेवाएं देते हैं जैसे मेरी बहन की शादी हो, मेरी भतीजी की हो, भांजी की हो। सारे दिन हम तांबे के लोटे ले जाके मेहमानों को जलपान कराते हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक को दरकिनार करते हैं, नशे को दरकिनार करते हैं, फटाकों को दरकिनार करते हैं और झूठा भी नहीं छोड़ने के लिए मना करते हैं। क्योंकि धरती का, अगर मेरी भाषा में बोलूं तो धरती का सबसे बड़ा भगवान है वो भोजन है। भोजन से बड़ा भगवान मंदिरों में भी नहीं मिलता, मंदिर के भगवान को भी हमारे भोजन का प्रसाद का ही भोग लगता है।
1: जी जी सर, बिल्कुल। तो सर बहुत सारे कार्य आप कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बचपन राजस्थान के ग्रामीण परिवेश में बीता, प्रकृति से जुड़ा कैसे शुरू हुआ?
0: अब आपने बिल्कुल सुन रखा होगा कि विष्णुई समाज शुरू से ही गुरु दंबेश्वर भगवान 550 वर्ष पहले ही हमें विष्णुई समाज सभी कम्युनिटी में से चुन चुन के हमको अलग बैठा के और 29 नियमों की एक आचार संहिता दी, एक सिस्टम दिया कि प्रकृति के साथ समन्वय बैठा के तुम्हें जीना है। तो गुरु दंबेश्वर भगवान ने 1485 ईस्वी में सभी कम्युनिटी सभी समाज के लोगों में से विष्णुई समाज के लोगों को एक नियम देके 29 नियम देके और एक नया पंथ चलाया या एक नया सिस्टम बनाया, एक नई जीवन जीने की एक नई कला दी जो प्रकृति के साथ में समन्वय बैठा के जी सके।
1: जी सर। सर सहायक रजिस्टर पद से आपने रिटायरमेंट लिया है और मतलब पढ़ लिख करके आप अच्छा नौकरी भी कर रहे थे, लेकिन पर्यावरण संरक्षण को आपने जीवन का मिशन क्यों बनाया? आप चाहते तो अकेला भी, जितना आपको प्रकृति से प्रेम है तो आप अपने प्रेम के साथ जीते, लेकिन इसको मिशन क्यों बनाया आपने?
0: ऐसी बात है कि पहली बात तो गुरु दंबेश्वर भगवान जो 15वीं शताब्दी के सबसे पहले पर्यावरण वैज्ञानिक थे वो उनके अनुयायी हुआ। दूसरे मेरे माता पिता के जो रगों में भी पर्यावरण और संस्कृति बचाओ का खून था, प्रकृति प्रेमी का खून था। और दूसरा विष्णु कम्युनिटी का रंग भी तो मेरे साथ मेरे ऊपर शरीर में मेरे लगा हुआ था, चढ़ा हुआ था, मेरे खून में घुला हुआ था। तो जब ये इतनी सारी आबो हवाओं के बीच में मुझे जीने का मौका मिला तो स्वाभाविक है कि मैं प्रकृति की सेवा करूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे जीवन ये बहुत ही कम समय के लिए मुझे भगवान ने दिया है और पर्टिकुलर एक टाइमिंग के लिए है, उसके बाद में भगवान मुझसे वापस छीन लेंगे और सांसें भी गिनी हुई है। अब मुझे रियलाइज नहीं है तो बात अलग है, लेकिन मुझे अगर रियलाइज है कि मेरे पास लिमिटेड सांसें हैं तो मैं बेहतरीन काम करने का प्रयास करता हूं। और हर आदमी को जब ये मालूम चल जाता है कि मैं जीवन पृथ्वी धरती पे कोई विशेष प्रयोजन से आया हूं तो वो कभी भी प्रकृति के खिलाफ काम नहीं करेगा, वो हमेशा प्रकृति की सेवा करने का ही प्रयास करेगा। मैंने ही वैसा ही किया।
1: जी सर, बिल्कुल। जैसे कि ये संस्कार आपको आपकी संस्कृति से, आपके समाज से, आपके माता पिता से आपको मिली है और इसको ही आप आगे लेकर के जा रहे हैं और एक आपने समाज में क्रांति लाए हैं आपने। तो जब आपने शुरुआत की 2005 में, वर्ष 2005 में, हम सभी आई थिंक मेरे जनरेशन के जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त सभी स्कूल में होंगे, तो आपने अकेले स्वच्छता अभियान शुरू किया, तो उस समय ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली 2005?
0: बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया और मैं इसकी रिप्लाई भी बहुत बेहतरीन तरीके से देना चाहूंगा। मैंने एक विदेशी डॉक्यूमेंट्री देखी जिसमें भारतीय संस्कृति की बहुत ही तारीफ की गई, जैसा कि हमारी जो 5000 पुरानी हमारी संस्कृति है और हमारे जो पर्यटन स्थल है, हमारे जो धार्मिक तो और प्रकृति से पीपल को पूजते हैं, हम गौ माता को माँ बोलते हैं और हम सभी अलग अलग देवताओं के अलग अलग जीव जंतु भी उनके सवारियों में, जीवों को भी उनकी सवारियां बनाई है। तो हम देवता को और जीवों को हमने समन्वय में बिठा के और उनको पोषण देने का प्रयास किया ताकि सभी जीव धरती पर रह सके और उनका सब अपने अधिकार पूर्वक रह सके, यही भारतीय संस्कृति थी। तो एक विदेशी डॉक्यूमेंट्री में सब कुछ अच्छा बताया है, सब कुछ गुणगान किया गया, लेकिन अंत में हमारे तीर्थ स्थान है, हमारे जो पूजा स्थली है, वहाँ अंदर तो आरतियाँ गा रही है, ओम जय जगदीश हरे या और भी जे देवी देवताओं की जो आरतियाँ हो रही है, और बाहर की तरफ कचरों का ढेर लगा हुआ बताया। तीर्थ स्थानों पर भी मेले में लोग इतने भीड़ कर देते हैं, लेकिन भीड़ के बीच में पैरों में इतना कचरा पड़ा रहता है कि वो तीर्थ न होके कोई कचरा घर हो जाता है। तो मेरे को दर्द हुआ और मैंने तीर्थ स्थान को जाके देखा, तो जैसी डॉक्यूमेंट्री में फोकस किया गया वैसा को वैसा मैंने वहाँ तीर्थ स्थान पे देखा। तो फिर मेरे अंदर क्वेश्चन आया, पहले मैं हाईकोर्ट की सिक्रेसी में था, मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी, मैंने छुट्टी मिली और मैं 2005 में कोई बड़े हमारे विष्णु समाज के बड़े तीर्थ स्थान पे गया। तो मैंने विष्णु समाज के लोगों को बलिदान को याद कर 363 लोग 1730 में पेड़ों हरे पेड़ों के लिए अमृता देवी के तत्व में शहीद हो गए थे, और वन्य जीवों के लिए भी शहीद हो गए थे। सलमान खान वाला भी उदाहरण हमारे सामने ही था कि काले हिरण का शिकार करने आए और फंस गए, अभी भी फंसे हुए हैं, कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। तो हमारी कम्युनिटी इतनी अच्छी है, फिर सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में इग्नोर क्यों कर रही है? तो समाज के लोगों ने मुझे थोड़ा कहा कि तेरे अकेले से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हर चीज हमेशा अकेला करता ना वो आगे जरूर बढ़ता है
1: जी। तो लोग जब आपका मजाक उड़ाते थे तो आपने हिम्मत कैसे बनाए रखी?
0: ऐसी बात है, शुरुआत में जब मैं गया तो वहाँ लोग कचरा फेंक रहे थे, तो मैंने उनको समझाने का कोशिश किया, तो कौन मानता है, एक आदमी की कोई नहीं सुनता है, बड़े बड़े आदमियों की नहीं सुनता, तो मैं एक साधारण आदमी था, मेरी कौन सुने। तो मैंने कहा अभी सुनने वाला तो है नहीं, तो मैंने वो जो मेलों में हमारे विष्णु समाज के लगभग अपनी आमदनी का 10% चुगा पक्षियों के लिए गायों के लिए लाते हैं, तो वहाँ बड़े बड़े चुगा घर बनते हैं, वहाँ वो चुगा घर के लिए बोरी कट्टा भर के लाते हैं बाजरा का या गेहूं का, जो भी धान उनके फसल होती है वो ला के वहाँ डालते हैं, तो वो उसका खाली कट्टा पड़ा था। मैंने देखा इस कट्टे का उपयोग तो मुझे ही करना चाहिए, मैंने वो कट्टा उठाया और वहाँ जितना भी बिखरा हुआ कचरा था वो उठाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा विष्णु समाज के लोग थोड़े मानते कम है, कुछ अलग टाइप के हैं, मानेंगे नहीं, वो नहीं। मैं कचरा बींध रहा हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को धक्का नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी को कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। आई एम वर्किंग फॉर बेटरमेंट ऑफ माई मदर प्लानिट, मैं धरती माँ की स्वच्छता के लिए काम कर रहा हूँ, और इसमें भी मुझसे कोई धक्का मुक्की होगी तो मैं मेरे सहन करूंगा।
1: जी सर, सलाम है आपके कार्य को, और आज भी वो कारवा जारी है। और
0: बिल्कुल यार, शुरुआत में ऐसा हुआ
1: जी,
0: फिर लोगों ने मेरे हंसी मजाक भी कौन चुके और फबतियां कसने में कौन चुके, किसने कहा पागल हो गया, किसने कहा इसकी नौकरी चली गई, किसी ने ये कहा गया अब ये फटीचर हो गया, जो उनके मन में आता था वो कह रहे थे, लेकिन मेरा टारगेट था, मैंने मेरा लक्ष्य निर्धारित किया। जैसे मैं जयपुर जा रहा हूँ और रोड से जा रहा हूँ तो कहीं गोलाई भी आती है, कहीं पुल भी आता है, कहीं बाईपास भी आते हैं, कोई कुछ भी आता है, लेकिन मेरा टारगेट जयपुर जाने का होता है, तो मैं हर हाल में उसी रोड को चुनता हूँ जहाँ जो जयपुर जाती है, भले बीच में रास्ते में कोई एक्सीडेंट भी हो गया तो भी मैं उससे बच के आगे यहन कहन में पहुँचता हूँ। वैसे मेरा टारगेट था, मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं इस फील्ड में धरती माँ की सेवा करने में मेरे जीवन को आगे बढ़ाऊंगा, तो मैंने वैसे किया। हालांकि मेरे पास खूब सारे ऐसे भी अवसर आए, परिवार के लोगों ने भी मुझे शुरू शुरू में कहा कि ये हमारे समाज मेरे परिवार का हमारे खानदान का नाक कटा रहा है, गंदगी उठा रहा है। परिवार के श्रीमती जी भी थे वो शुरू शुरू में, उन्होंने उनकी सहेलियों ने और उनके लोगों ने उनके परिवार जो उनकी बहनें हैं उनके जो पीर की परिवार के लोग उनको भी थोड़ा ऐसे महसूस हुआ, तो उसने भी अपने आप में नाक में सर डाली और मेरे को भी कभी व्यंग्यात्मक रूप से कभी कभी बोल देती थी, लेकिन वो भी मैंने सहन किया क्योंकि मेरा लक्ष्य था, मुझे आगे बढ़ना था। लोग तो कहेंगे और लोगों का काम है कहना, लेकिन मेरा जीवन का लक्ष्य था, तो मैंने भगवान की कृपा और प्रभु की कृपा से मैं मेरे उस रास्ते पे बढ़ता रहा। जैसे जैसे मुझे समय मिलता मैं हाईकोर्ट से सर्विस से छुट्टी लेके परमिशन लेके मैं उस लक्ष्य पे काम करने लग गया।
1: जी सर, कभी ऐसा लगा नहीं कि अभियान छोड़ देना चाहिए?
0: नहीं, कई बार ऐसा लगा कि कभी कभी मैं अकेला जाता था, बिल्कुल अकेला, तो मेरा चेहरा भी उतरा हुआ था कि मैं अकेला जा रहा हूँ। मेरे पास कुछ स्लोगन लिखी हुई तख्तियां होती थी, कुछ बैनर होते थे, कुछ पर्दे होते थे, कुछ अन्य सामग्रियां भी होती थी, मेरे खुद के कपड़े भी होते थे, 3-4 बैग हो जाते थे। चार बैगों को उठा के किसी साथ वाले राई को मैं निवेदन करता था कि थोड़ा मेरे हेल्प कर दो, तो उस समय लगता था कि तुम करने क्या जा रहा है, अकेला क्या कर लेगा, लेकिन फिर प्रभु कहते थे कि अरे भाई जो अकेला करता है ना उसको किसी का इंतजार करना नहीं पड़ता, तो जब अकेला चलता है ना उसको किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता, वो लेट नहीं होता है, वो हमेशा सही टाइम पे पहुंचता है। तो मैं अकेला था तो मुझे बड़ा ही खुशी हो रहा था कि मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ रहा है, मैं स्वयं ही डिसीजन ले रहा हूँ और स्वयं ही फाइनल डिसीजन, और स्वयं ही मन बंद कर रहा हूँ और स्वयं ही खोल रहा हूँ। मेरा काम शुरू भी मैं श्री गणेश भी मैं कर रहा था और वाइंड अप भी मैं कर रहा था, तो मुझे कोई दर्द नहीं था। और धीरे धीरे लोगों का ध्यान मेरे ऊपर आने लगा, लोग कुछ लोग हेल्प के लिए, कुछ हेल्प नहीं होती थी तो तारीफ करने लगे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे दो जुड़े चार जुड़े, और शुरू में जो आज मेरे साथ में थे शुरू में थे वो अब एक भी नहीं है था, लेकिन मेरा कारोबार चल रहा है, नए लोग आते रहते हैं, पुराने छोड़ते रहते हैं, रोटेशन बन गया ये। तो अभी भी हमारे कब शादी ब्याह में जाते हैं तो 10-20-30 हो जाते हैं, मिलो हम 50-100 हो जाते हैं, और काम बेहद बेहतरीन तरीके से चल रहा है।
1: जी सर, तो सर धार्मिक मेलों में और जो पर्यटन स्थल है वहां पर प्लास्टिक रोकने के लिए विशेष प्रयास आप क्या कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं वो कैसे कर सकते?
0: बिल्कुल सही है, हर चीज शुरू से करना चाहिए। हम मैं एक मोस्टली मैं जहां भी जाता हूँ एग्जाम्पल देता हूँ, वॉशरूम और किचन का। अपने परिवार में ही बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं 70-80 साल के, और उनकी मानसिकता थोड़ी सी या सोचने की शक्ति या यादगार शक्ति कम हो जाती है, तो वो भूल जाते हैं। और छोटा बच्चा होता है 1.5-2-3 साल का, तो वो भी नहीं समझता है वॉशरूम क्या होता है, किचन क्या होता है। लेकिन उनकी इतनी मानसिकता विकसित हो जाती है कि किचन से भोजन लेके वॉशरूम में जाके कभी नहीं बैठता, चाहे बच्चा भी नहीं बैठता, बूढ़े आदमी भी नहीं बैठते। और वॉशरूम का डब्बा या बाल्टी जो होती है, जो विशेष रूप से हम वहाँ काम लेते हैं, वो दूसरी जगह काम नहीं लेते, वो कभी लाके किचन में या दूसरी जगह नहीं रखते, या पानी के जो अपन जिसको परिंडा बोलते हैं वाला के कोई डब्बा या बाल्टी नहीं रखते। इतनी मानसिकता उनकी और बन जाती है, तो हम तो जागरूक है, इतनी मानसिकता तो हमारी होनी चाहिए कि जो चीज हम नहीं चाहते वो दूसरों को देंगे तो वो वापस हमें अच्छी कैसे मिलेगी। जैसे मैं आपको अभद्र सभ्य भाषा में बोलूंगा तो आप क्यों मेरे को सभ्य भाषा का प्रयोग करेगी, कैसे करेगी, कैसे कर पाएगी, कर नहीं पाएगी, कौन से अलाउ नहीं करेगा। तो ऐसे ही हम करते हैं, हम लोगों को बेहतरीन व्यवहार देते हैं तो लोग हमें शाबाशी देते हैं। ऐसे करते करते के लोगों को हम समझाते हैं कि तीर्थ स्थान, ध्यान, साधना, तपस्या और पूजा की और आत्मा बल को मजबूत करने की जगह है, ये कोई कचरा फेंकने की और मौज मस्ती करने की या पिकनिक स्पॉट नहीं है। तीर्थ स्थान तो संकल्प को मजबूत करने की, हे भगवान मैं आपके आया हूँ और मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं मेरे मानवत्व को पहचानूं और अच्छा मानव जीवन जी के किस प्रकार मैं मेरी ये यात्रा पूरी करूं। ये तीर्थ स्थान उसके लिए है, न कि कोई नगर पालिका मेला होता है जहाँ झूले लगते हैं, लोग आइसक्रीम खाते हैं, जो भी चीज जो मजा हो वैसे चीजें खाते हैं, उसके लिए नहीं है। लेकिन लोग आजकल उसको तीर्थ स्थानों को भी सिर्फ एक वो कहानी में बेल घूमता ना वैसे, हर जो महीने एक फेरी दूंगा, अरे फेरी शरीर की नहीं लगानी है, फेरी विचार की लगानी है कि मैंने पिछले गुरु जो भी तीर्थ स्थान था वहां जाके आया, उसके बाद में मेरे भावना में, मेरे क्रियाक्रम में, मेरी सोच में क्या कुछ फर्क आया। अगर फर्क आया है तो मेरी यात्रा या मेरी जो वहां धोख देना या वहां साधना करना वहां जाना सफल है, नहीं तो फालतू ही गोता है और भगवान को धोखा देना। भगवान तो क्यों धोखा खाएंगे, धोखा तो खुद को ही मिलता है, क्योंकि वो एक बिना मन के बिना कोई संकल्प के वहां जाके आता है तो तेल जलता है और खुद की एनर्जी वेस्ट होती है, मिलना कुछ नहीं है। भगवान तो आत्म अनुभूति है, अपने आप के अंदर विराजमान है, पहचानने की जरूरत है, क्योंकि जो चीज हमारे अंदर है। पर एक मैं एक छोटी सी बात करके आपको बताऊंगा कि जब भगवान एक बार क्या हुआ, सभी लोगों ने अपनी इच्छाएं जताई और भगवान से पूछा कि हे भगवान हमें दो वो दो वो दो वो दो, अपनी अपनी, मेरे परिवार में मेरी वाइफ नहीं मानती है, बेटा नहीं मानता है, सासू नहीं मानती रहो, तो भगवान परेशान हो गए कि जाऊं कहां, तो भगवान कहीं छिप गए, तो दूर पहाड़ में छिप गए। लेकिन मनुष्य एक जीव है, वहां भी जाके ढूंढ लिया, यहाँ आके छिप गए और हम तो दुखी है। तो फिर उन्होंने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊं, तो हम मनुष्य के हृदय में आके बैठ गए। अब जिसको भी अगर भगवान को पहचानना है तो अपने हृदय के खुद को जानो, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मैं जीवन में क्या कर सकता हूँ। तो खुद के अंदर जब हम सोच से अपने आप को अंदर झांकेंगे, अपने अंदर आत्मा को देखेंगे, तभी हम प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। बाहर कहीं किसी भवन, किसी बिल्डिंग या किसी मंदिर में भगवान नहीं विराजमान है, भगवान अपने अंदर ही। मनुष्य के अंदर दो लोग रहते हैं, एक राक्षस एक भगवान। राक्षस इट मीन्स पॉजिटिव नहीं नेगेटिव एनर्जी, और भगवान इट मीन्स पॉजिटिव एनर्जी, देवत्व है, देवत्व और राक्षसत्व, ये दो चीज मनुष्य के अंदर रहती है। अगर मैं लगातार लगातार लगातार मैं अच्छे आदमियों के साथ रहूंगा, अच्छी संगति के साथ करूंगा, तो मेरे देवत्व का परसेंटेज बढ़ जाएगा और राक्षसी परसेंटेज कम हो जाएगा। और मैं अच्छे विचारों को इग्नोर करता जाऊंगा तो मेरे अंदर राक्षसी प्रवृत्ति आएगी, हर एक से झगड़ा कर लूंगा, पुलिस केस हो जाएंगे, जेल में भी जाऊंगा, वापस पेरोल पे आके भी मैं उल्टा काम करूंगा, इस प्रकार की प्रवृत्ति बन जाती है। तो दो प्रवृत्तियों से ही मनुष्य का निर्माण होता है, और दूसरी एक प्रवृत्ति से निर्माण होता है, दूसरी प्रवृत्ति से मनुष्य का क्या विनाश होता है। ये मेरे विचार है, व्यक्तिगत विचार है।
1: बिल्कुल, तो अगर हम पॉजिटिव विचारों के साथ रहेंगे तो हम पर्यावरण के लिए भी सही काम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही है, अगर हम प्रकृति का पेड़ है, पेड़ को काटेंगे फिर हमें छाया चाहिए, तो पेड़ को, जिस पेड़ को हमने काटा है वहाँ छाया कैसी रहेगी, वो तो जगह खाली हो जाएगी। अगर छाया है चाहिए तो पेड़ लगाएं। अब आजकल क्या करते हैं, अपन पाश्चात्य संस्कृति का फॉलो करते हैं, और बड़ी बड़ी शादियों में देखा होगा गरीब तो हाथ में कांदा रोटी लेके खा लेते हैं, बड़ी शादियों में चाउमीन के लिए अलग प्याला प्लास्टिक का, आइसक्रीम के भी अलग अलग फ्लेवर, वो और उसके अलग प्याले, कितने ही प्रकार के वो गोलगप्पे के लिए अलग प्याला। एक आदमी शादी ब्याह में, बड़ी शादी ब्याह में, रईस की शादी में 100 बर्तन काम में लेता है एक टाइम के भोजन के लिए। हम जा किधर रहे हैं, ये विचार भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो रईस होते हैं, वो देखा हमारा तो जन्म धरती को गंदा करने के लिए होता है, सफाई करने वाले तो कोई दूसरे हैं, हमारे लिए, हम कोई सफाई करने के लिए पैदा नहीं हुए। और चाहते हैं, हर आदमी चाहता है हमें अच्छा व्यवहार मिले, लेकिन हम देवे नहीं देवे ये हमारी बात, तो ये कैसे हो सकता है, संभव हो सकता है? छोटा बच्चे को भी अगर हम थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलेंगे तो वो रूठ जाएगा या वापस ऐसा जवाब देगा कि हमारी बोलती बंद हो जाएगी।
1: जी जी, तो सर आपने हजारों मेलों में और धार्मिक आयोजनों में सफाई अभियान चलाया है, कोई यादगार अनुभव साझा करें हमारे साथ।
0: बिल्कुल, मैं मेरे खुद के ही जो विष्णु समाज के मेले, वहाँ हम कचरा बीन रहा था, तो पेरिस से एक मेरा फ्रेंड, मेरा मित्र आया फ्रेंक, वो जेल, तो उसने वो विष्णु समाज के ऊपर कुछ आर्टिकल लिखना चाह रहा था, तो वो 2-3 मेलों में मुझे फॉलो किया और मेरे को कचरा बीनते हुए देखा, तो उन्होंने व्हाट आर यू डूइंग, मैं आई एम पिकअपिंग गार्बेज हियर टू मेक माई मदर प्लानिट नीट एंड क्लीन एंड आई वॉन्ट टू अवेयर द पीपल इन दिस रिगार्ड। तो उसने कहा आप इंग्लिश भी जानते हो, मैं थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी ऐसे, मैंने कहा मैं इतनी जानता हूँ, तो कहा ठीक है इतनी, इट्स एनफ, उसने कहा इतनी बहुत है मेरे लिए, मैंने जो मुझे आदमी चाहिए था उसको मैंने सर्च कर लिया। फिर एक मेले में वो मिला, मुझे दूसरे मेले मिला, तीसरे मेले मिला, हर मेले में मैं वही काम करता हुआ उसको पाया गया, उसने फोटोग्राफ खींचे। फिर पेरिस, फ्रांस का था वो, पेरिस में जाके आर्टिकल छापा। 2008 में उसने वहाँ एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही थी, तो उसमें मुझे इनवाइट कर लिया, तो मैंने मना कर दिया, इट्स नॉट पॉसिबल टू कम देयर, क्योंकि मैं प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को फॉलो करने में मैं असहज महसूस कर रहा, तो मैंने मना कर दिया। तो उसने कहा कमू, इट्स नॉट ईजी टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू कम हियर, सो यू डोंट से मी नो आफ्टर हाफ एन आवर, 1 पर्सन कॉल्ड यू और गेटिंग योर कंसेंट, सो डोंट से हिम आई डोंट वॉन्ट टू कम देयर, यू शुड से हिम आई हैव नो प्रॉब्लम टू कम देयर, आई वाना कम देयर टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाई ऑफ यू। तो ठीक है, उसने बात की और मैंने उसको कहा भाई ठीक है मैं तेरी बात मान लेता हूँ। आधे घंटे बाद मुझसे फोन किया, आर यू मिस्टर खमुराम बिश्नोई, मैंने कहा यस आई एम खमुराम बिश्नोई, वुड यू लाइक टू कम पेरिस टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एज ए कीनोट स्पीकर। मैंने उसने मना किया हुआ था कि मना मत करना, मैंने कहा यस आई हैव नो प्रॉब्लम आई विल कम देयर कम व्हाट मे। फिर उसने बुलाया, मैं 2008 में गया, 11 में गया, 12 में गया, 13 में गया, 14 में गया, 15 में मेरी फ्लाइट मिस हो गई, टाइम मिस रीड कर लिया, और 18-20 में भी मेरे को इनवाइट किया था उन्होंने, लेकिन वहाँ कोरोना काल आ गया तो उसमें वो मिस हो गई। अब 2028-27 का भी वो कह रहे हैं कि वी वांट टू इनवाइट यू। देखो प्रभु क्या, मैं वहाँ जाने के लिए मेरा टारगेट नहीं है, मेरा का टारगेट तो है मेरी धरती माँ को स्वच्छ रखूँ, लेकिन अगर वो बुला लेते हैं तो मैं उनके यहाँ भी मना नहीं कर पाता।
1: जी सर, तो कैसा अनुभव रहा, आप फ्रांस स्विट्जरलैंड में भी भारत का प्रतिनिधित्व आपने किया और आपकी कई डॉक्यूमेंट्रीज भी विदेश में प्रसारित हो चुकी
0: है। 52 मिनट की, 2011 में 52 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उन्होंने, फ्रांस चैनल पे वो रिलीज हुई थी, और 2011 में ही पेरिस के मेट्रो रेलवे स्टेशन पे 100 फीट बाई 150 फीट की फोटो एग्जीबिशन भी मेरी रही। मैं उस समय 2011 में वहाँ गया था, तो उस एग्जीबिशन लगी हुई थी, उसके साथ में मेरे फोटोग्राफ्स भी उसने लिए। देखो कमू, यू आर वेरी बिग पर्सन हियर, यू कैन सी दिस फोटोग्राफ्स। मैंने देखा तो वास्तव में बहुत लंबी चौड़ी, जैसे बड़े बड़े होल्डिंग पे विज्ञापन होते हैं ना, वैसे वैसे मेरी फोटो लगी हुई थी। मैं अपने आप को भगवान को बार बार ही धन्यवाद दे रहा था, ये भगवान में एक छोटे से कचरा बीनने वाले आदमी को आपने इस प्रकार प्रेजेंटेशन देने के लिए फोटोग्राफ्स में शामिल किया है, मैं आपका ऋणी हूँ, और वो ऋण उतारने के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। वास्तव में मैं धरती माँ का और प्रभु का ऋणी हूँ, क्योंकि एक मनुष्य होना, जन्म लेना ही अपने आप में कितने ही कर्मों के बाद में, कितने ही अच्छे कर्मों के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म इस यू आर नेक्स्ट टू गॉड, यू आर सेंडर ऑफ द गॉड, भगवान के ही रूप हो, भगवान ने ही आपको भेजा है। लेकिन हम आके यहाँ भूल जाते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, हम तो सुई है। अरे तुम बहुत कुछ हो, कितने भी महान महान वैज्ञानिक हुए या नेता हुए, लोग हुए, या स्वामी विवेकानंद जी क्या थे, बहुत छोटी उम्र में गए लेकिन इतना कुछ देके चले गए कि कितनी शताब्दियों तक वो अमर रहेंगे और उनका संदेश कोई मिटा नहीं सकता। वैसे ही जांबोजी महाराज, और भी घने ऐसे लोग हुए हैं, रामदेव जी हुए हैं, और भी ऐसे खूब लोग हुए हैं जिन्होंने समाज को बहुत कुछ देने का प्रयास किया, लेकिन समाज को भी चाहिए कि वो स्वीकार करे।
1: जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो युवाओं का क्या रोल है पर्यावरण संरक्षण में सर, आप क्या कहें?
0: मैं इस समय हमेशा कहता रहता हूँ मैडम के द यूथ जनरेशन इज गार्जियन ऑफ द प्रेजेंट एरा, वर्तमान के युवा क्या है, संरक्षक है। जो सीनियर सिटीजन थे, जिनको अपन पूर्वज अपन बड़े रा कह दें या हमारे वरिष्ठ जन कह दें, जिन्होंने अपनी पारी खेल ली है, वो 70 के हो गए, 80 के हो गए या 60 से ऊपर हो गए, उन्होंने पारी खेली, जैसे उनका कर्तव्य था, उन्होंने अपन को साफ सुथरी एकदम नीट एंड क्लीन धरती दी। वर्तमान समय युवाओं का है, बच्चों को अभी समझ में नहीं है क्या करना क्या नहीं करना। तो अगर वर्तमान युवा जाग जाएंगे तो धरती को कोई गंदा नहीं कर सकता, युवा इग्नोर करेंगे तो धरती को कोई बचा नहीं सकता। धरती पर इतना कचरा हो गया, बड़े बड़े शहरों में तो 500-500 फीट ऊंचे पहाड़ बन गए। मैंने दिल्ली में देखे, पहले देखा मैं इस पहाड़ी पे चढ़ूंगा, फिर मैं पहाड़ी के पानीपत की ओर जा रहा था, पहाड़ी के नजदीक गया तो ऊपर आग दिखी, मैं पहाड़ी पे आके चल गया, आग ये है, पहाड़ी की आग नहीं है क्या, ये कचरे के ऊपर आग लगाई हुई है। और फिर मैंने देखा एक बहुत बड़ा वो डंपर होता ना, वो ऊपर खाली होता, देखा माचिस की डिब्बी जितना दिख रहा था, इतने इतने कचरे के ढेर लग गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं समुद्र को, हमने सही नहीं छोड़ा समुद्र का। मैं अभी जू बीच पे गया था, वो तो ज्वार आता है ना, तब जो कचरा समुद्र का देता है ना, वो पूरा का पूरा वापस लुटा के और उनके घरों के आसपास किनारों पे लाके फेंक देता है। तो जब तक मनुष्य धरती को देना नहीं सीखेगा, तब तक धरती दे नहीं पाएगी, लंबे समय धरती नहीं दे पाएगी, धरती अब इग्नोर करना बंद कर देगी और हम मरेंगे। और हम वैसे दिल्ली में अपन बड़े शहरों में, आपने भी कहीं सुना होगा देखा होगा, वहाँ वो जीना कोई जीना नहीं है, अमिताभ बच्चन वाला वो डायलॉग किसी एक फिल्म में था कि ये जीना भी कोई जीना है। तो इतनी गंदी बदबू आती है बड़े बड़े नालों के पास कि एक दिन भी हमारा बार, हम जो खुले एरिया में रहते हैं जैसलमेर बाड़मेर या मरुस्थल वाले उधर जाते हैं ना, तो मन नहीं होता कि घंटा आधा घंटा ही यहाँ रुके, लेकिन लगातार जब हम वहाँ रहते हैं तो हमारी भी नासिकाएं वो ऐसी स्वीकार कर लेती है गंदगी को और हम गंदगी में रहने में मजबूर हो जाते हैं।
1: जी सर। सर, हर घर अगर कोई संकल्प ले या छोटा छोटा प्रयास करे तो क्या हम अपने देश को परिवर्तन कर सकते हैं? अगर
0: बिल्कुल बिल्कुल, मदर टेरेसा ने भी कहा था, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि धरती को हम, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि धरती को तो साफ रख नहीं पाए और चांद की तरफ दौड़ रहे हैं, और गांधी जी ने भी कहा था कि प्रकृति के पास वो सब कुछ है जिससे हम अपन जीवन जी सकते हैं, लेकिन हमारी लालचा को पूरी कोई भी नहीं कर सकता। अब लालचा किसी भी चीज से पूरी नहीं होती। मेरे पास एक छोटी सी साइकिल थी और पुरानी साइकिल थी, मैंने नई साइकिल ले ली तो फिर उसका नया ब्रांड और नई वो उसकी और हाई वर्जन देख लिया, फिर साइकिल से मोटरसाइकिल आई, कार आई, कार का नया ब्रांड। तो आदमी कभी भी संसाधन से, मेटेरियलिज्म से, मतलब भौतिक चीजों से आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। संतुष्ट आदमी होता है अपने विचारों से संतुष्ट होता है कि मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए बहुत है।
1: बिल्कुल, संतुष्ट और विचारों से
0: संतुष्टि बाहर नहीं है, संतुष्टि बाहर कहीं भी नहीं है, साधनों में संतुष्ट नहीं है, जोधपुर में मेरा, मतलब मैं जहां भी जिस शहर में रह रहा हूँ, मेरा पूरी पोस्ट कॉलोनी में सबसे अच्छा बंगला है, लेकिन साथ वाला मेरे खाली जमीन पड़ी, उसने डिजाइन थोड़ी बदल के मेरी वाले से 21 डिजाइन लाके बना दिया, तो मेरे रात को नींद आनी बंद हो गई। अब जबकि बहुत बड़ा मेरा बंगला है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ी सी उसने डिजाइन नहीं लिया ही, तो मैं घर से बाहर निकलता हूँ उसकी डिजाइन के सामने देखता हूँ तो मेरा पिछता होता है, यार क्या कर लिया ये, अपने पैसे तो खूब लगे लेकिन इस तरह सारे डिजाइन नहीं बना ली। तो कहने का मतलब है आदमी किसी भी चीज से, ऐश्वर्य से, धन से कभी संतुष्ट नहीं होता। और कुछ लोगों ने विकास की जो दौड़ में है वो कहते हैं आदमी को संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए, लेकिन विकास की अंधी दौड़ ऐसी हो गई है कि अब मनुष्य का जीवन ही निकलने लग गई है। छोटे बच्चे भी मोबाइल के अंदर इतने घुस रहे हैं कि मोबाइल उनकी माँ से भी प्यारे लगने लगे, माँ का दूध पीना छोड़ देंगे और मोबाइल की तरफ देखने लग जाएंगे। हम जा किधर रहे हैं ये हमें भी सूझ नहीं रहा है, और हम इसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है। स्कूल में सिर्फ एक बंद डब्बा में स्कूल में पहले मैदान होते थे, पढ़ाते थे, अब मैदान गायब हो गए बंद डब्बों में बच्चों को। और कहीं कहीं तो मैं देखता हूँ, आपने भी देखा होगा मैडम, 50 किलोमीटर या 25 किलोमीटर से बच्चे को सुबह कलेक्ट करते हैं, स्कूल लाते हैं और 3-4 घंटे

0: जाते हैं वापस 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर बस में और घुमाते हैं। हम शाम को चाहते हैं कि बच्चा का दिमाग तेज हो रही है, इसकी मानसिकता सुधरे। कैसे सुधरे? वो थकान से ही मरा मरा हो जाता है। कैसे पढ़ाई करे, कैसा राष्ट्र उत्थान करे जब उसके है ही नहीं। और दूसरे ऐसी पहले हमें कविताएं और भजन और कीर्तन और राष्ट्रपति के गीत गवाए जाते थे, जैसे हिंद के बहादुरों वक्त की पुकार है, बढ़ना है बढ़ना है, आगे सबसे बढ़ना है। इस प्रकार के निर्माणों के पावन युग में चरित्र निर्माण ने भूले इतने, जब नाव जल में छोटी, कितने प्रकार के राष्ट्रभक्ति के और आत्म उत्थान के गीत और कविताएं सुनाई जाती थी, तो हमारे मन में रहता था नहीं ऐसा हमें करना चाहिए। लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है तो फिर कुछ होना भी नहीं है।
1: जी सर, बहुत ही सौभाग्यशाली है हम आपसे बात कर रहे हैं और आप इतने समय से ये कार्य कर रहे हैं। जो बच्चे इस वक्त सुन रहे हैं, जो युवा सुन रहे हैं, उनके लिए जरूरी प्रेरणादायी कार्यक्रम है ये।
0: युवा आज नहीं जागा तो कल गंदगी में खड़ा रहेगा और पिछताएगा, और अगली पीढ़ी जैसे आज जवान है उसके बच्चे हो रहे हैं, वो बच्चे जब वो जवान होंगे तो जिन्होंने जन्म दिया है उनको गालियां निकालेंगे 100% के, तो खुद ने तो जन्म दे के हमको छोड़ दिया और धरती को गंदगी करके चला गया। अब हम जी भी नहीं सकते और मर भी नहीं सकते। मरे तो कैंसर होके मर रहे हैं या कोई और बीमारी लेके मर रहे हैं। हर चीज में जे रहे, व्यापारी चाहता है मैं किसान को ठगूं, किसान चाहता है मैं केमिकल डाल के व्यापारी को ठगूं, और एक दूसरे से ठग रहे हैं और खुश हो रहे हैं। जबकि ठगा आदमी आदमी को रहा है लेकिन फिर भी खुश हो रहा है। जो किसान ठग रहा है वो व्यापारी को केमिकल दे रहा है, और व्यापारी मिलावट करके किसान को दे रहा है या अदर कंज्यूमर को दे के पैसे इकट्ठे कर वो ठग रहा है, तो वो भी देख रहा है मेरे पास पैसे हैं। अरे पैसे किसी के काम के नहीं, मरने वाला एक सांस भी पैसे से खरीद नहीं सकते।
1: जी जी सर, बिल्कुल पैसे से सांसें नहीं खरीदी जा सकती, हमने देखा कोरोना काल में भी। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा को किस तरह से व्यवहारिक बनाया जाए, क्या कहना चाहिए?
0: बिल्कुल सही है, जब भी बच्चों का जन्मदिन हो टोपियां नहीं बांटी जाए, बच्चों के हाथ से पौधे लगाए जाए, पर्यावरण के संबंध में रैलियां, गीत और उनको चित्रकला आयोजित की जाए कि पर्यावरण के बारे में बच्चा क्या जानता है, तुम अपने अपना एक बैठ जाओ और आपकी भावनाओं को पर्यावरण के बारे में क्या जानते हो, वो भावना होनी चाहिए। शनिवार को जो नो बैग डे होना चाहिए, नो बैग डे में पर्यावरण के बारे में उनसे विचार लेने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा उनको बताना चाहिए कि जीना है तो प्रकृति को बचाना पड़ेगा। उनको इस प्रकार की भावना ठूस ठूस के बढ़नी चाहिए। जैसे पहले हमारे स्कूल में हम पढ़ाई करके नहीं आते थे, होमवर्क करके नहीं आते तो मुर्गा बनाते थे, छोटे बच्चों को कभी कभी बड़े बच्चों के ऊपर बैठा देते थे और इस प्रकार की हम देते थे ताकि हम लज्जित होते थे कि नहीं पढ़ाई तो हमें करनी पड़ेगी और ऐसा हमें करना पड़ेगा। लेकिन आजकल के बच्चों को तो बर्थडे होता टॉफी बांटते हैं, वो बांटते रहे, ये चीजें टॉफी क्या होती है कुछ नहीं, एक मीठा जेर है। लेकिन हमारे परिवार में और टिफिन में ही डालते हैं, तो प्लास्टिक के डब्बे में टिफिन डालते हैं जो बदबू मारता है। एक तो पराठा बनाते हैं, पराठा खुद अपने आप बच्चों छोटे बच्चों के जो नर्वस सिस्टम है उसको खराब करता है, कि छोटे बच्चे बढ़ती वाले तो पराठे में तेल होता है, वो कैसा ही तेल होता है वो खिलाते हैं। कभी भी बच्चों को वो इस प्रकार के तेल में तली हुई छोटी उम्र के बच्चों को नहीं देनी चाहिए, लेकिन हम दे रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार जब तक हम सात्विकता पे ध्यान नहीं देंगे, बच्चों के बर्थडे पे भी पौधे लगाने की केक काटे हैं, पौधे लगावे, अगर एक बर्थडे पे एक पौधा होगा तो बच्चा अगर बड़ा होगा और 25 साल का होगा, शादी होगा तो अपनी वाइफ को कह सकता है कि मैं देख 25 साल का हूँ, मैंने मेरे 25 साल में इतने पौधे लगाए हैं, आज अपनी शादी के दिन भी हम 2 पौधे लगाएंगे, एक तेरा होगा एक मेरा होगा। इस प्रकार आगे बढ़ेंगे और लोगों में भावना पैदा करेंगे कि हर फंक्शन को पौधे से जोड़ेंगे, हर फंक्शन को स्वच्छता से जोड़ेंगे, बाजार से कपड़े की थैली के ले जाएंगे, घर एक अलग ही अलमारी का कोना रखेंगे जहां कपड़े की थैली रखेगा, सामान लाने की थैली है, वहां मेरे बैग में मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ, कम से कम 5 कपड़े की थैलियां हर समय रखती है, मिसेज रखती है, नहीं रखती है तो मैं उनको थोड़ा रौद्र रूप बताता हूँ तो वो झट से रख देती है, एक दिन नहीं रखती है, दूसरे दिन मेरे को मालूम नहीं चलता है, मैं जाके देखता हूँ तो थैलियां पड़ी रहती है। तो जब हम सिस्टम बनाएंगे तो सिस्टम से सब होता है, हम इग्नोर करेंगे। ऐसी ऐसी महीने हैं कि आलू ले रहे हैं और टिंडी ले रहे हैं, आलू और टिंडी अगर हम साथ में ले ले तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो उसके लिए प्लास्टिक अलग थैली मांगती है, हर सब्जी और फिर एक बड़ी थैली, 5 तरह की सब्जी ली तो 5 प्लास्टिक छोटी थैली है फिर एक बड़ी थैली है, घर से कपड़े की थैली ले जाते हैं, शर्म आती है। जब हम शर्म करेंगे तो फूटेंगे कर्म, ये तय है। हम प्रकृति बचाने में शर्म करेंगे तो मरेंगे, हमारे आंखों के सामने हम अपने पूर्वजों को अपने बच्चों को, या कोई भी कैंसर हो गया, कोई कैंसर से मरेगा, कोई किसी से मरेगा, कोई किसी से मरेगा, और हमें सहन करना पड़ेगा। जो हम देंगे वो हमें मिलेगा,
1: जो हम देंगे वो हमें मिलेगा। सर आपकी जो अभियान है कितने स्वयंसेवक जुड़े हुए? जी जी सर,
0: पहले बताया था कि हम छोटा फंक्शन होता ना, हम क्या है वॉलंटियर है, हम किसी से कुछ लेते नहीं। तो जब हम किसी से कुछ नहीं लेते हैं, जिसको जो समय मिलता है उस हिसाब से वो समय निकाल के अपना भाड़ा किराया खुद दे के आता है। तो शादी ब्याह होते हैं वहाँ 10-15 होते हैं, और मेले होते हैं, धार्मिक मेले होते हैं, तो वहाँ संख्या थोड़ी हमें बढ़ानी पड़ती है। उस समय हम कभी 50 हो जाते हैं, कभी 100-150 हो जाते हैं, वो मेले की और उनके लोगों के आने की आह्वान पर, उनकी रुचि के अनुसार। दबाव कहीं नहीं होता, दबाव वाला काम भी नहीं करता।
1: जी जी सर, ओके
0: जो
1: जी,
0: बिना दबाव वाला एक आदमी 15 आदमी काम कर लेगा, और दबाव वाला 15 आदमी एक आदमी काम नहीं करेगा। कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाएगा, या कहीं 2 मिनट में कहेगा मेरी मासी आई हुई है, 2 मिनट मिल के आता हूँ, मासी क्या आई हो, शाम तक ही वापस नहीं आएगा।
1: जी
0: ये होता है
1: जी
0: काम, सब संकल्प काम करता है, शरीर काम नहीं करता है, जुनून काम करता है, बॉडी काम नहीं करती, जुनून काम करता है, संकल्प मजबूत होता है, हमें करना होता है, हमारी भावनाएं होती है, हमें कुछ देने की इच्छा होती है, तब काम होता है। काम आदमी किसी आदमी का कोई शरीर काम नहीं करता, उसके अंदर संकल्प क्या है और क्या वो धरती को देना चाहता है, किस प्रकार का जीवन जी के दूसरों को देना चाहता है, वो काम करता है। कभी ये मत सोचना कि बॉडी काम करती है। बॉडी काम तो सिर्फ है भार उठाना, वो मेरे से एकदम, मैं छोटा बच्चा हूँ, मेरे 10 किलो भार उठाए, लेकिन एक बहुत मुस्टंडा है वो हो सकता है 50 किलो है, 2 कुंटल ही उठा ले, पहलवान है तो 2 कुंटल ही उठा ले, वो अलग चीजें हैं। लेकिन आप किसी काम को अंजाम देने के लिए मेहनत करेंगे तो वो भावना से होगा। पहलवान ही बनेगा तो पहली उसकी भावना होगी शुरू से कि मैं बड़ा होकर पहलवान बनूंगा, तो वो बन पाता है। तो बच्चों के अंदर ये भावना हम पैदा करेंगे शुरू से, बच्चा आगे तू ऐसा काम कोई मत करना जिससे तेरी और तेरे खानदान की और हमारी इज्जत मिट्टिया मेट हो जाए, हम लज्जित हो जाए, ऐसा काम मत करना। ऐसा काम करना कि हमारा गांव भी नाज करे, शहर भी नाज करे, और हो सकता है तेरा नाम राष्ट्र स्तर पर भी पहुंच जाए और पूरा राष्ट्र तुझसे सुने। ऐसा बेटा बन, बनना है तो ऐसा बन बेटा। बाकी शरीर लिए तो जानवर घने घूमते हैं। द मैन इज द मोस्ट नोटोरियस एनिमल ऑफ द प्लानिट, ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ। धरती का सबसे गया बेटा जीव है तो मनुष्य है, धरती को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जीव है तो मनुष्य है। किसी शेर ने अपना पेट भरने के बाद में दूसरे शेरों को या गंदगी को, प्लास्टिक का उत्पादन नहीं किया, या किसी प्रकार के दूसरा कोई चीज का उत्पादन नहीं किया। जो कर रहा है मनुष्य कर रहा है, और जो नुकसान पहुंचा रहा है मनुष्य कर रहा है। मनुष्य कहता मैं बुद्धिमान हूं, लेकिन वो है बुद्धिहीन। एयर केस में बुद्धिमान है, परसेंटेज बुद्धिमानों का बहुत ही कम है, सिर्फ 2 पैरा वाला जानवर है, 2 पैरा वाला जानवर। मनुष्य ये मत समझना कि मैं मनुष्य हूँ। मनुष्यता लाने के लिए बहुत ज्यादा विचार करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, सवेरे उठ के सोचना पड़ता है व्हाट इज माय टारगेट ऑफ माय डे, व्हाट इज टारगेट ऑफ माय होल लाइफ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे किस प्रकार जीवन जी के आगे बढ़ना है। क्या हम सिर्फ एक जानवर बन के सुबह शाम भोजन करना और सो जाना, वो करना, दाल रोटी लाना, बच्चों को जिमाना, सो जाना, ये मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता यह है अपना परिवार पाल के और दूसरों को भी कुछ दें, प्रकृति को भी कुछ दें, तब तो है मनुष्यता। सिर्फ अपना अपना ही पेट भराई करें तो वो मनुष्य नहीं है, वो तो जानवर भी करते हैं। एक जहरीला सांप भी करता है, एक कीड़ा मकोड़ा भी करता है।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने कहा कि मनुष्य अपने अगर करते हुए को भूल जाए तो वो किसी जानवर के समान है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि
0: जानवर समान नहीं है मैडम, जानवर से गया बीता है, जानवर से डाउनफॉल है। जानवर तो मतलब कोई गाय ने किसी ने धरती में कोई इतना गंदगी नहीं कही। आज हम जानवरों की कंटीली बाड़ियां लगा के हिरणों को खत्म कर दिया। अब हमारे जोधपुर की तरफ हिरण खूब सारे थे हमारे खेतों में, हमारे घर के जब हम रात को बाहर घर के आगे खाट बिछा के सोते थे ना, तो पास में हमारे चारों तरफ हिरण बैठे रहते। अब क्या हुआ, हर लोगों ने कंटीले तार लगा दिए, तो हिरण को जो पालतू कुत्ते हैं और जो गलियों में घरों में होते हैं, वो 4-5 का झुंड बना के हिरणों को मार देते। क्यों, वो जैसे वो हिरण दौड़ने की कोशिश करता सामने जाली आती थी, और कुछ लोग तो जाली भी इतनी बारीक लगाते हैं, सफेद जाली लगाते हैं वो प्लास्टिक वाली, उसमें और भी फंस जाता है, उसको दिखती भी नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, छलांग लगाता है लेकिन जाली में फंस जाता है, इसमें कुत्ते आ जाते हैं। अब हिरणों की तो टोली खत्म हो गई, अब किसकी आई है, जिसको अपन कहते हैं ना सूरों की। अब जहां भी देखो, जैसलमेर देखो, बाढ़ में देखो, बीकानेर देखो, हरे कहते हैं कि यार हमारे खेतों में सूअर बहुत नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो चीज सुंदर थी उसको गायब कर दिया, तो अब सूअर ही आएंगे।
1: बिल्कुल, जानवरों के घर तक हम पहुंच गए, उनके लिए जगह ही नहीं बची है।
0: बिल्कुल सही है, जानवरों का घर तक पहुंच गए, जानवर जाए कहाँ, तो जानवर आपके घर में आएंगे। और जानवरों की अच्छी क्वालिटी को खत्म कर दिया तो गंदी क्वालिटी है जो सूअर है वही आएंगे, अच्छी क्वालिटी जो हिरण थे, जो लोमड़ियां थी, जो वन बिलाव थे, जो भी है, जो हमारे प्रकृति के लिए फायदेमंद थे, उनको हमने उनकी जगह ही नहीं छोड़ी। तो अब जो गलियों में गंदगी में बैठे रहते हैं वो हमारी तरफ बढ़ने लगे।
1: बिल्कुल,
0: वही अपने साथ होता है, हम आगे अच्छे संस्कारों को इग्नोर करेंगे तो बुरे संस्कार तो स्वतः ही आ जाएंगे। वो तो कहीं गाली तो बच्चा कहीं भी सीख जाएगा, लेकिन एक कीर्तन भजन सत्संग या एक अच्छी पोयम याद कराने में हमें कितने दिन लग जाए।

0: भरा है और अभी तक भी आप उड़ रहे हैं पर्यावरण के कार्य के क्षेत्र में पॉजिटिविटी के साथ उड़ रहे
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल मैडम, मैंने मेरा संकल्प ले रखा है, जब तक जिंदा रहूंगा धरती माँ को देता रहूंगा, और ये मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, क्यों धरती ने मुझे ऐसा जीवन दिया। मनुष्य, मैं अपने आप को मनुष्य नहीं मानता, भगवान का रूप ही मानता हूँ, क्योंकि भगवान में मुझ में कोई फर्क नहीं है। भगवान में इतनी है कि भगवान दूसरों को देने का प्रयास करता है, मैं कभी कभी चूक जाता हूँ, इतनी कमी है। भगवान हमेशा हर को देता है और मैं कभी कभी देने में चूक जाता हूँ, लेकिन थोड़ा प्रयास करता हूँ कि मैं कुछ न कुछ देने का प्रयास करूँ। बाकी मनुष्य ही धरती का भगवान है। भगवान अपन कहते भी हैं कि एक मेरे को आज देवता मिला नहीं तो मैं आज पहुंच नहीं पाता, मैं बस चूक गया था, मैं फलन जगह ऐसे हो गया था, फंस गया था, लेकिन एक क्या मालूम देवता कहाँ से आया, मेरे को वहां से उसने बिठाया, ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। हम कभी कभी वर्तमान सुनाते ही रहते हैं, तो मनुष्य में ही भगवान विराजमान होते हैं, मनुष्य में ही भगवान और देवता रहते हैं।
0: जी सर, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि विदेशों से भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में क्या सीखना चाहिए भारत को? आप विदेश भी देखे हैं, भारत भी आपने देखा।
1: ऐसी बात है मैडम, विदेशों में अपने देश के प्रति अटूट श्रद्धा है और अपने आप इग्नोरेंस है, अपने आप इग्नोरेंस है, क्योंकि अपन इतनी इतनी अलग अलग जाति प्रथा में बंट गए हैं और अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, और कुछ लोग दूसरे कम्युनिटी दूसरे देशों से जुड़े हुए हैं, तो वो देखे हम यहाँ क्यों ऐसी क्यों हम भाव रख रहे हैं, हमें क्या करना है, वो क्या करना है, समझाएं तो समझे नहीं, तो अपन समझाओ तो वो कहते क्या ठेका ले रखा है तुमने समझाने का। लेकिन वहाँ दूसरे विदेशों में ऐसा नहीं है, वो अपने देश के प्रति भावनाएं और अपने देश को साफ रखना चाहता है, और अपने यहाँ ऐसी भावना नहीं है। एक तो आबादी बहुत ज्यादा है और एक अनपढ़ और इग्नोरेंस बहुत ज्यादा है कि हाँ हमें हमारा क्या लेना, हमारा क्या करना, सरकार अपना आप करेगी, हम तो पैसा हम हमारे ऊपर टैक्स लेती है, वो लेती है वो लेती है, मतलब हर आदमी चाहता है कि मैं कुछ नहीं करूं और दूसरा करे। अब दूसरा ऐसा कैसा, मेरा मुंह मैं ही नहीं धोऊं तो दूसरे को क्या पड़ी है, मेरा मुंह धो आए के धोएगा। हाँ छोटा हूँ मेरी माँ है तो मैं छोटा हूँ मेरी माँ धो देगी, लेकिन मैंने उम्र पा ली, मैं 25 का हूँ 15 का हूँ, माँ आके थोड़ी मेरा मुंह धोएगी। तो ये जब तक हम देश और अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे, कर्तव्य को हम इग्नोर करेंगे, तभी हमारा राष्ट्र गंदा होगा और भी ज्यादा बीमारी आएगी, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उनको कोई लेना देना नहीं है अपने यहाँ गंदगी हुए या गंदगी सफाई रहे, उनको कोई मतलब नहीं है। बाहर का आदमी आके जब बांग्लादेश को क्या मतलब कि भारत की स्वच्छता रहे या नहीं रहे, या पाकिस्तानी क्यों आके अपने बारे में सोचेगा भारत साफ रहे। हर भारतीय का कर्तव्य बनता है कि वो अपने राष्ट्र को साफ रखे, अपने गांव को साफ रखे, अपने घर को साफ रखे, और यही होगा तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। हो सकता है किसी कुछ फौज कॉलोनी में कोई विकास समिति बना दी और पर्टिकुलर एरिया आदर्श आदर्श एरिया बना के उस जगह विशेष को साफ रख लिया हो, लेकिन पूरे भारत को कोई साफ नहीं रख सकता जब तक प्रत्येक आदमी नहीं जागेगा, और प्रत्येक आदमी का कर्तव्य नहीं समझेगा जब तक हम साफ रखने में बड़े ही मुश्किल है। जरूर हम अब मोदी जी ने 2014 में स्वच्छ भारत की जगह जगह वो कचरा टैक्सी चला दी, लेकिन कचरा टैक्सी में नहीं डालते हैं लोग, कचरा डालते नहीं टैक्सी में, वो देखे दे 50 रुपए लग जाएंगे, 100 रुपए लग जाएंगे या 80 रुपए लग जाएंगे। अब ऐसे लोगों से हम कैसे सफाई कराएं?
0: जी
1: 80 रुपए
0: जी
1: का गुटखा खा लेगा, जर्दा खा लेगा, पान खा लेगा, और कोई रात को ड्रिंक कर लेगा, लेकिन कचरा पात्र का महीने का 80 रुपए कचरा वाले गाड़ी को वो नहीं देगा और कचरा खुले में फेंक देगा, और खाता चलता जा रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक लास्ट बात कहकर मेरी बात पूरी करना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है पहले थूकता है कोने में और फिर चाहता है कि मेरा इलाज बहुत बढ़िया हो जाए। अरे कैसे हो जाए, मतलब अब मैं एक बात लास्ट में और कहता हूँ, मेरे को याद आ जाती है क्या करूँ, आपने कहा ही कहा कि आप कुछ याद आए जरूर बताना। अब
0: जी
1: एक
0: जी
1: गिरगिटों की मीटिंग चल रही थी, आप समझ गए,
0: जी हाँ
1: गिरगिटों की मीटिंग
0: गिरगिट
1: चल रही थी, वो नाराज हो गए आपस में झगड़ने लगे, एक गिरगिट ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या कि ये मानव मनुष्य आदमी बदले जैसे कैसे रंग बदल रहे हो, गिरगिटों ने कहा आदमी बदले जैसे क्यों रंग बदल रहे हो, मतलब गिरगिटों ने हमें उपाधि दे दी कि मनुष्य बहुत ज्यादा रंग बदल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता तो अलग तरह से बिहेव करता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता तो अलग बिहेव करता है, और अगर वही एयरपोर्ट पर जाता है तो अलग बिहेव करता है, मतलब जगह जगह बदल रहा है, जगह जगह विचार अपनी एक रूपता रखता ही नहीं है, बदलता जा रहा है, और वही देख लो कि कहीं यहाँ बहुत ज्यादा पेनल्टी लग जाएगी, 100, 200, 300 रुपए लग जाएगी, तो बड़ी बड़ी होटलों में जाता है तो इतना सीधा हो जाता है, गांव का गंवार होता है भी, वो कहीं नहीं थूकता है, बीड़ी भी नहीं सुलगाता है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पलंग के पास में मरीज बैठा सो रहा ऊपर और नीचे बैठा बीड़ी पी रहा है, समझ तो सब है लेकिन करना नहीं चाहता, वो रंग बदल लेता है, सब समझते हैं, छोटा बच्चा भी समझता है, मैंने आपको कहा था छोटा बच्चा भी समझता है कि क्या कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कौन सी कहाँ रखती है। अब ये जब तक हम राष्ट्रवाद को बच्चे बच्चे को नहीं समझाने में सफल नहीं होंगे, छोटे बच्चे परिवार के लोगों को मानेंगे नहीं ये गंदगी ये सही है, बच्चा आगे बढ़ेगा, युवा आगे बढ़ेगा तभी होगा, कूड़ों से

0: कोई उम्मीद ही नहीं रख सकते, क्योंकि उन्होंने तो अपनी आदत बना ली है। जो 25, 30, 40 साल से सिगरेट पी रहा है उसको हम पैर पकड़े बैठे, तो सिगरेट छोड़ दे, मरे नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो शुरू कर रहा है उसको रोक देंगे, कहाँ सिगरेट पी रहा है, तो वो हो सकता है वो हमारी बात मान ले, उसको हम प्रोत्साहित करें तो मान ले, ऐसा हो सकता है।
1: कुछ अंतिम क्षण में हम पहुंच चुके हैं, अंतिम पड़ाव है ये इस प्रोग्राम का, तो कुछ क्वेश्चंस आपको जल्दी जल्दी पूछना चाहूंगी। तो एक शब्द में पर्यावरण आपके लिए क्या है, एक शब्द में?
0: एक शब्द में परिवर्तन यही है कि अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो देना सीखना पड़ेगा, प्रकृति को हरा भरा और साफ सुथरा रखना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि हम तो कुमोती मरेंगे, हम तो इसीलिए पैदा हुए हैं, तो फिर जैसा जियो वैसा जियो। मौत बहुत नजदीक आ रही है, मौत दौड़ती आपको झपट रही है, और मौत आपको कम उम्र में 25, 30, 35 और हमारी एज 50 से नीचे हो जाएगी, वो जो जीने की उम्र है ना वो बहुत कम हो, हार्ट अटैक
1: मतलब
0: है,
1: एक
0: बीमारियां
1: शब्द
0: है।
1: में पर्यावरण मतलब देना है,
0: हाँ,
1: देंगे
0: पर्यावरण का
1: तभी
0: मतलब
1: जी
0: देना है,
1: पाएंगे, देना।
0: पर्यावरण का मतलब
1: ओके,
0: लेना नहीं है, पर्यावरण मतलब देना। अगर आप जो दोगे वो लौट के आएगी, जैसे इको है, इको आप वैसे ही इको सिस्टम बोलते हैं, इको है पर्यावरण क्या, इको जैसे अपन बोलेंगे, जैसे कुएं में बोलते हैं तो वापस आती आवाज आती है, वैसे ही ये पर्यावरण है, आप जो दोगे वो वापस मिलेगा। मैं घर के बाहर कचरा फेंकूंगा तो उड़ के घर के अंदर आएगा, नहीं आएगा तो बाहर जाऊंगा तब दिखेगा, और मैं घर के अंदर बाहर साफ रखूंगा तो बाहर जाऊंगा तो सफेद दिखेगी, अंदर भी हरियाली दिखेगी, सफेद दिखेगी। वही मैं सफेद कपड़ा पहनूंगा तो मैं सुंदर लगूंगा, अच्छा लगूंगा, मन में शांति होगी। मैं गंदा कपड़ा पहनूंगा तो लगेगा यार आज क्या पहन लिया, लोग क्या सोचेंगे। कुछ लोग तो दूसरों के लिए भी पहनते हैं। और
1: ये
0: दूसरी एक
1: सही बात।
0: पर्यावरण की वो बढ़ती हुई, मैं एक बार लास्ट बात कह देता हूँ, जो फैशन है ना ये पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। ऐसी ऐसी बहनें हैं जिनके, जैसे जयललिता जब वो सस्पेंड हुई थी, मुख्यमंत्री पद से हटी थी, तो अगर 1,000 जूतों की जोड़ी है, वो अलमारियां भरी हुई थी कपड़ों से, वैसे हमारी बहनों की भी है। हर मिनट में नया कलर लेके आती है, पहनती है, हर शादी एक ड्रेस को दोबारा पहनने में शर्म महसूस करती है, जबकि हमारे पूर्वज उसकी राली बनाते थे, और धोती पुरानी होती थी, धोती का ऊपर कवर चढ़ाते और धोती के अंदर कपड़े भर के रालियां बनाते थे, वो तो हम भूल गए।
1: बिल्कुल
0: अब बूढ़े बड़े जावे ना तो उनके, जैसे मेरे दादी जी चले गए या मेरे पास नानी जी चले गए, तो नानी जी के जितने भी कपड़े हैं ना बाहर चौराहे में या कहीं जैसे भी हो कहीं ले जाकर फेंक देते हैं, उन कपड़ों को काम नहीं लेते, जबकि वो पुराने लोग थे, गर्व समझते थे, मेरे दादा की धोती है, मेरी नानी की साड़ी है, और राली बनाएंगे या बैठने की वो बनाएंगे। तो जब तक हम इस प्रकार का सिस्टम नहीं लाएंगे, भारतीय संस्कृति को नहीं अपनाएंगे, देखा देखी करेंगे तो देखा देखी करे तो मरे नहीं तो वे रोग।
1: तो मिनिमलिज्म की बात आप कर रहे हैं, और जो हमारे पुराने
0: बिल्कुल सही
1: संस्कृति
0: है, एक आदमी ने कहा कि धरती के सबसे सुखी आदमी या सभी, एक राजा बहुत था, वो बहुत ज्यादा दुखी था, कितने वेद बुला लिए, सब कुछ बुला लिए, लेकिन राजा ठीक नहीं हुआ। तो किसी ने, एक ने चलता रहा चलता कहा मैं ठीक कर सकता हूँ, ये कैसा, ये जो सबसे संतुष्ट आदमी है उसका शर्ट ला के इसको राजा को पहना दियो। तो राजा ने दूत छोड़े तो कोई संतुष्ट था ही नहीं, कोई अपनी पत्नी से दुखी था, कोई पति से दुखी थे, कोई माँ से, कोई भाई से, कोई पड़ोसी से, कोई सब लोग दुखी थे। एक आदमी नदी किनारे बैठा था, वो एकदम खुश था, एकदम मस्त था। उससे पूछा राजा के दूतों ने, भाई तुम कैसे हो गए, मैं एकदम मस्त हो गए, एकदम मस्त, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं, चिंता कोई चिंता नहीं, कुछ भी नहीं, तो तुम्हारा शर्ट दो मुझे, तुम्हारा बुशर्ट दो, तुम्हारा पहना हुआ कमीज दो, कि मेरे पास कमीज है कहाँ, बगैर कमीज बेटा मस्त मस्त मोला बेटा था। तो संसाधनों से, कपड़ों से और संपत्ति से आदमी कोई सुखी नहीं रह सकता,
1: जी बिल्कुल,
0: सुख
1: ये
0: है
1: सब
0: विचारों में।
1: विचारों में और पर्यावरण के प्रति आपके समर्पण भाव आपको सुख देता है। तो आपका पसंदीदा वृक्ष क्या है सर?
0: मेरा पसंदीदा वृक्ष तो ये खेजड़ी है, जो राजस्थान की राज्य वृक्ष है, जिसकी अब सोलर प्लांट की वजह से निरंतर कटाई हो रही है, तो हम तो यही कहेंगे कि खेजड़ी बढ़ाओ, क्योंकि खेजड़ी की लूंग होता है तो वो भी खाद करता है, खेजड़ी के खोके होते हैं वो हिरणों के और पशुओं और जानवरों के लिए खाने, ऊंट के लिए भी खाने के लिए काम आता है, और सांगरी से हम बहुत अच्छी तरह पंचकुटा की सब्जी बनाते हैं। वैसे वैसे जो अपने भारतीय संस्कृति में दूसरे जो पेड़ है, पीपल है, बरगद है, जो अपने अपने पेड़ है वो सब विलुप्त
1: आपके
0: होते जा रहे हैं,
1: पसंदीदा
0: और नए नए पेड़ लगाए, कोनो कोरपस नया पेड़ आया है जिसे सब जगह बैन कर रखा है, लेकिन राजस्थान में कुछ जगह लगाए जा रहे हैं, जो 12 मास है लेकिन वो प्रकृति का इतना शोषण कर रहा है, जैसे बबूल, बबूल पेड़ों का राक्षस है, पेड़ों
1: ओके
0: में मनुष्य में जो राक्षस होता है ना, वैसे पेड़ों का राक्षस बबूल है, किसी को नहीं छोड़ा है, हर धरती पहाड़ को नहीं छोड़ा, नदी को नहीं छोड़ा, सड़क किनारे को नहीं छोड़ा, और घास को नहीं छोड़ा। जानवर आज अगर गौशाला में है तो बबूल की वजह से है, बबूल उगने नहीं देता घास को।
1: जी। ओके okay.
0: और ये बातें हैं जो मैंने सुन ली।
1: वृक्ष है और बबूल को हमें जहाँ कम लगाना चाहिए, अगर देख रहे हैं तो उसे
0: बदमाश है वो, राक्षस है, राक्षस तो अपने आप ही पनपते हैं मैडम, बबूल को लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही, कितनी ऊंची पहाड़ी हो, कैसे हो, कहीं हो, खेत हो, जमीन हो,
1: यहाँ पे लगा हुआ है, उसे हटा के हम दूसरे वृक्ष लगा सकते हैं।
0: इतने इतने संसाधन अपने पास है ही नहीं, लोग रुचि भी नहीं लेते हैं, गवर्नमेंट भी नहीं ले रही है, प्राइवेट वाले नहीं ले रहे हैं, अपने क्या करना। और बबूल फैलता जा रहा है, ऐसे फैलता जा रहा है कि पूरी सृष्टि को खत्म करेगा। अरे इतने बबूल हो गए, आपने देखा, आपसे क्या छिपा है, मैं आपको क्या बताऊं कि हो सकता है पहाड़ी आया जो माउंट आबू में उस तरफ कम होंगे, लेकिन हमारे मरुस्थल में तो इधर बहुत है, सड़कों के किनारे और जहाँ खाली हो या नाडी के किनारे हो या तालाब के किनारे हो, बहुत सारे लगते जा रहे हैं और पूरी जमीन को, घास की जमीन को बबूलों ने घेर रखा है।
1: जी सर, जी सर। सर, जल, जमीन, आसमान, सबसे पहले किसको बचाना चाहेंगे आप?
0: मैं तो कहूँ पांच तत्वों को बचाना चाहिए, पांचों तत्व है वही भगवान है, इन पांचों तत्वों जो जल, जमीन, आकाश, वायु, अग्नि,
1: लेकिन एक चूज करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले किसको बचाएंगे?
0: अब जल को बचाएंगे तो सब बच जाएंगे,
1: जल
0: ही नहीं होगा तो पूरी संपत्ति, पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, जल से ही सब जीव पैदा हुए हैं, जल बच जाएगा तो बाकी सब बच जाएंगे।
1: ओके सर, जी सर, बढ़िया सर। एक चीज जो हर भारतीय को आज ही छोड़ देना चाहिए, आपको क्या लगता है?
0: प्रदूषण फैलाना,
1: प्रदूषण फैलाना,
0: और क्या?
1: ओके,
0: एक आदत, ज्यादा से ज्यादा धरती को हरी भरी रखें, हरियाली में ही भगवान है, भगवान का दूसरा, हरियाली ही भगवान है, भगवान वही रहेंगे जहाँ हरियाली होगी, हरियाली का नाम ही भगवान है, भगवान कोई भगवान गंदगी पे जाके नहीं खड़ा रहेगा, जहाँ हरियाली होगी वहीं रहेंगे भगवान, तो हरियाली मीन्स प्रभु है,
1: बिल्कुल,
0: हरी वहाँ जहाँ हरियाली,
1: हरी वहाँ है जहाँ हरियाली है सर, बहुत सुंदर बात है ये। और भारत को हरित बनाने का एक उपाय क्या है आपको लगता है?
0: सभी संकल्प लेंगे तब होगा, बाकी अकेले आदमी सब संकल्प लेंगे कि हम हमारी धरती माँ को हरा भरा रखें, हो गया, बाकी कोई ऐसा उपाय नहीं है, किसी के पास कोई जादू टोना नहीं है, कोई ऐसा डंडा नहीं है कि ये भारत को हरा भरा बना दे, जब मनुष्य जागेंगे, सब जागेंगे तभी होगा, ऐसा कोई ऐसा आदमी, एक देवदूत नहीं पैदा होगा या पहुंच भी नहीं पाएगा कि हरे को हरा बना दे। मोदी जी खूब कहते हैं पेड़ लगाओ, लेकिन अब कितनी सरकारी मशीनरी है, वन विभाग है, कितना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बड़े बड़े अफसर है, IAS जो IAS के कैडर वाले होते हैं, लेकिन हजारों पेड़ लगते हैं, लेकिन पेड़ों को बड़ा करने वाला कोई नहीं है, लगाने वाले खूब है, आत्मा पेड़ों को मारने वाले खूब है, नर्सरी से लगाते हैं और मर जाते हैं बस।
1: जी सर, जी
0: मेरे को कुछ कुछ लोग पूछते हैं कि आपने कितने पेड़ बड़े किए, ये क्वेश्चन आपने गलत ही पूछा है, वो कहे ऐसे कैसे बोल रहे हो, मैं आप ये बोलो कितने पेड़ लगा के बड़े कर दिए, ऐसे पूछो। मैंने अगर 50 पेड़ बड़े कर दिए तो अपने आप में बहुत, मैं अपने आप को यूं गर्व गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और मैंने 5,000
1: लगाना नहीं बट उनका देखभाल भी करना है सर, ऐसा बोल।
0: हाँ, लगा के देखभाल करके बड़ा करें, और बड़ा दिखना चाहिए, लगना चाहिए, 25 साल तक आप हो तो भी आपको आपका लगाया हुआ पेड़ नजर आना चाहिए, तब तो है, आप लगाया पेड़ है ही नहीं, और आपके तो मैंने तो मेरे जीवन में 50,000 पेड़ लगा दिए, अरे भाई है कौन सी जिंदा कितने है वो तो मालूम नहीं।
1: जी सर, आपके बारे में अगर बात करें तो मुझे लगता है एक और कार्यक्रम भी कम पड़ेगा, और इतने सारे उपलब्धियां हैं आपके पास, इतने सारे पुरस्कारों की सूची भी है मेरे पास,
0: बिल्कुल सही है, आपकी तरफ से मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, आई विल बी ऑनर्ड बाई गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुझे वहाँ का बहुत बड़ा पुरस्कार देने जा रही है, गुरु जम्बेश्वर
1: बहुत बहुत मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन सर,
0: धन्यवाद मैडम, गुरु जम्बेश्वर प्रौद्योगिकी विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा।
1: जी सर, जी सर, आपको तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजा जा चुका है, और फिर से आपको एक और पुरस्कार से नवाजा जाएगा,
0: ये सब प्रभु का खेल है, प्रभु ही है, मैं उनको ही समर्पित करता हूँ, जो भी मुझे धन्यवाद देते हैं तो मैं धन्यवाद भगवान को दो कि मुझे मनुष्य बनाया है, इसे ऐसी समझ दी है, तो एक्चुअली में काम भगवान कर रहा है, नाम मेरा हो रहा है, तो मैं तो हमेशा ऋणी रहता हूँ, मैं परमात्मा भगवान के साथ शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, वो आपने कहीं सुना होगा एक कोई सेठ दान दे रहा था और आंखें नीचे हो रही थी, तो किसी ने पूछा कि दान दे रहे हो इतना अच्छा करो, फिर नीचे क्यों आंखें कर रहे हो, क्या देने वाला कोई और है, मैं तो सिर्फ एक बीच की माध्यम हूँ, इसलिए लोग मेरा समझ रहे थे, मेरे को शर्म आ रही है इसलिए आंखें नीचे कर रहा हूँ, तो मैं भी अपने आप को, लोग मेरे को कहते हैं आप अच्छा करते हो, तो मेरे को लगता है कि करने वाला भगवान है, मैं नहीं हूँ, मुझे समझ दी है, अक्ल दी है तो भगवान ने दी है, मैंने मेरे मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ, और आई एम डूइंग समथिंग ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड जाम्बोजी एंड ऑलमाइटी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, और आपके समर्पण भाव को सलाम है, और आपके कार्य क्षमता को सलाम है, देशभक्ति को भी सलाम करते हैं आज हम रेडियो मधुबन के माध्यम से, और दोस्तों वक्त हो गया है यहाँ से अलविदा कहने का, तो खम्बूराम जी आपका बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद, आपके अनुभवों को, संघर्षों को और प्रेरणादायक विचारों को भी हम सलाम करते हैं।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, संपर्क किया, मुझसे बातचीत की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मुझ पर भरोसा किया। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा मुझे शक्ति दे, समझ दे, ज्ञान दे, अकल दे कि मैं मेरे जीवन के अंतिम क्षणों तक धरती माँ को कुछ न कुछ न कुछ न कुछ ऐसा दूँ कि मेरी माँ मुझ पर गौरवान्वित तो हुए कि वाह बेटा मैंने कुछ जन्म दिया है तो कुछ समझ के दिया तो उसके काबिल निकला।
1: जी बिल्कुल, आप सर काबिल हैं और धरती माता आप के लिए गौरवान्वित है ही।
0: मैं कहता भी रहता हूँ कि हमारी तीन, मैं कभी कहता भी रहता हूँ कि हमारी तीन माँ, एक माँ जो हमें दूध पिला के बड़ा करती, दूसरी माँ गौ माता होती, तीसरी सब माओं की बड़ी माँ, द ग्रेट ग्रेट ग्रेट ग्रेट मदर वो कौन होती है, वो धरती माँ होती है जो सब माओं को दूध पिलाती है, सब माओं को भोजन देती है, वो होती धरती माँ। हम बड़ी वाली माँ नाराज हो जाएगी, छोटी वाली माँ जिंदगी नहीं रह पाएगी।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सही, अगर बड़ी वाले माँ को नाराज नहीं करना है हमको, तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं पर्यावरण के लिए थोड़ा और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें। तो दोस्तों यहीं पर रुकना चाहते
0: समय
1: हैं।
0: की मांग है, दिस इज द नीड ऑफ आवर, ये समय की मांग है, और समय के हिसाब हम काम नहीं करेंगे तो फिर बेहाल होना ही है। पानी पीना है, पानी नहीं पी रहे हैं तो कह रहे हैं वो डॉक्टर कहेंगे भी पानी की कमी होगी, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा।
1: सही सही बात है, तो समय की मांग को देखते हुए हमें पर्यावरण के लिए एक कदम जरूर उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी प्रेरणादायी बातों के लिए, और आपके बारे में जानकर के हमारे श्रोताओं को भी बहुत प्रेरणा मिली है, और हमें भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से।
0: मैं आपका ऋणी हूँ और प्रभु ने चाहा तो आपने जो भी आशा की है उसका मैं पालन करूंगा मेरे जीवन में।
1: धन्यवाद सर। तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। नमस्ते
0: नमस्ते।

वतन करा के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। भक्ति काल की अद्भुत कवित्री थी मीरा, कृष्ण की प्रेम दीवानी मीरा, जिसका दर्द कोई न जान सका। अपार सौंदर्य की स्वामिनी कवित्री मीरा, जो अपने भजन अपने ही कोकिल कंठ से गाकर अपने सांवरिया को रिझाती रही। लोक लाज खोकर और कुल मर्यादा को भुलाकर भक्तों के साथ झूम झूम कर नाचती रही। पग घुंघरू बांध और ताली बजा बजा कर वे अपने जोगी को बुलाती रहीं।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जी, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जी। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जी।

सचमुच मीरा कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई थी। मीरा ने स्वयं को कृष्ण की दासी के रूप में साकार कर लिया। प्रभु चरणों के निकट वे भाव विभोर होकर नाचती थी। माया मोह नाते रिश्तों से दूर वे कृष्णमय हो गई थी। उनके तो सिर्फ गिरधर गोपाल थे, दूसरा कोई नहीं था। अपार सौंदर्य की धनी और सुख वैभव में रही मीरा ने अपना सर्वस्व त्याग दिया था। न जाने कितने कष्ट और अत्याचार सहकर भी वे गोविंद के गुण गाती रहीं।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: लोक कहे मीरा भई बावरी, भ्रम दूनी ने खाग्यो, कोई कहे रंग लाग्यो। लोग कहते थे कि मीरा पागल हो गई थी, यही भ्रम दुनिया को खा गया। कोई कहता है ये तो प्रेम लग गया है, अर्थात मीरा का भक्ति भाव कृष्ण में आत्मसात हो गया। आकाश हो या धरती, फूल हो या पत्ते, या फिर हो बादल, हर जगह हर शय में मीरा को सिर्फ कृष्ण ही नजर आते।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। गायिका थी वीनस तरकसवार। संगीतकार थे उमेश वीनस। आलेख और उद्घोषणा सुधानुपम। परिकल्पना श्रीराम तिवारी। समन्वय संजय यादव। और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। आज के इस कार्यक्रम में आपने जो गीत सुने उन्हें हमने लिया था स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जन गर्जे श्रृंखला के अंतर्गत जारी ऑडियो एल्बम से। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम वतन का राग, स्वराज संस्थान संचालनालय, रविंद्र भवन परिसर, भोपाल 462002। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं swaraj@gmail.com पर। ज्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.swarajsansthan.org।

मैं हूं संजय कुमार और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।

हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।

0: अरे आइए आइए गजबीय काका, मैं तो काफी देर से आपका इंतजार कर रहा था, कहाँ थे आप?
1: बेटा आते आते देर हो गई, मगर तुम क्यों मेरा इंतजार कर रहे थे?
0: काका आप वो स्वतंत्रता समर की सच्ची बातें बताया करते हैं ना, उन्हीं से मेरे अंदर भी देश प्रेम हिलोरे लेने लगता है।
1: ठीक है, देखो बेटा यूं तो इस देश की स्वतंत्रता में कई क्रांतिकारियों ने बड़े बड़े काम किए, लेकिन आज मैं तुम्हें एक सशक्त क्रांतिकारी के बारे में बताऊंगा जिनकी चर्चा कम ही हुई है।
0: अच्छा,
1: तो आज मैं तुम्हें हरे कृष्ण सिंह के बारे में बताता हूँ।
0: ठीक है काका, सुनाइए।
1: यूं तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता समर में अनेक सेनानियों ने सशस्त्र संघर्ष किया, उनमें महान सेनानी बाबू कुंवर सिंह का नाम भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा हुआ है। बाबू कुंवर सिंह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में राष्ट्रीय मुक्ति के लिए संघर्ष किया था। उनकी आवाज बुलंद थी और विचार जोशीले थे।
2: साथियों, हमारा देश गुलाम है। मैं 80 वर्ष का बूढ़ा हूँ, परंतु जब मैं माँ भारती को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा देखता हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। क्या आप लोग मुझे सहयोग देंगे?
0: कुंवर सिंह के जोशीले भाषण पर उपस्थित समूह ने अवश्य ही हाँ कहा होगा।
1: तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा, और सुनो, उनकी उम्र 80 वर्ष की थी, परंतु 80 वर्ष के इस परम साहसी एवं देशभक्त वीर ने अपने बाहुबल के अद्भुत जौहर दिखाकर भारतीय जनता में अभूतपूर्व साहस और शक्ति का संचार कर दिया था। राष्ट्रीय भक्ति अभियान में आम जनता उनके साथ साथ चल रही थी।
0: काका और बताइए ना।
1: वो जगदीशपुरा, जिसे आज आरा कहते हैं,
0: हाँ,
1: वहां से बनारस, मिर्जापुर, अलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, आजमगढ़, बलिया होते हुए अंत में अपने जन्म स्थल जगदीशपुरा पहुंचे थे।
0: क्या उनको उनके विश्वसनीय साथियों ने भी सहयोग दिया था? उनमें प्रमुख कौन थे काका?
1: हरे कृष्ण सिंह।
0: हरे कृष्ण सिंह?
1: हाँ, क्रांतिवीर हरे कृष्ण सिंह का जन्म सन 1827 में शाहबाद जिले के बारूनी नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम एदला सिंह था। बचपन से ही उनके अंदर देश को आजाद कराने का जज्बा था। युवावस्था में आते आते ये देश प्रेम का जज्बा और अधिक जोश से उनके लहू में दौड़ने लगा था। हरे कृष्ण सिंह का शरीर गोरा और चेहरा रोबीला था। वे पीरू परगना में तहसीलदार भी हो गए थे। एक दिन कुंवर सिंह ने उनसे कहा,
3: हरे कृष्ण सिंह जी, आपकी देशभक्ति से हम परिचित हैं। आप सरकारी मुलाजिम हैं, इसीलिए आप ये काम आसानी से कर सकते हैं।
4: कुंवर सिंह जी, आप बताएं मुझे क्या करना होगा। देश के लिए मैं कुछ कर सकूं, ये मेरा सौभाग्य होगा।
3: आप दानापुर स्टेट जाएं और ब्रिटिश छावनी में अंग्रेज अफसर और सैनिक क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी प्राप्त करके मुझे दें।
4: ठीक है, मैं आपको शीघ्र ही जानकारी उपलब्ध करवाता हूँ।
1: हरे कृष्ण ने गुप्त योजनाओं से कार्य किया और दानापुर स्टेट की अंग्रेजी छावनी में गतिविधियों के बारे में मालूम किया। साथ ही भारतीय सैनिकों के मन में देश प्रेम की मशाल जला दी। उनका प्रयास सफल रहा, विद्रोह हुआ और बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक उनके साथ चलकर आरा पहुंचे।
0: आरा पर क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया होगा काका, है ना?
1: हाँ बेटा, हरे कृष्ण सिंह ने कुंवर सिंह की सहायता की और इस क्षेत्र में अत्यंत कुशलतापूर्वक सूझबूझ से प्रशासन का संगठन किया। उन्होंने आरा पर आक्रमण करने वाली क्रांतिकारी सेनाओं का संचालन भी किया, परंतु जगदीशपुरा और आरा पर ब्रिटिश सेनाओं ने पुनः अधिकार कर लिया।
0: ओह, ये तो बुरा हुआ काका। काका, इसका कारण क्या था?
1: इसका मुख्य कारण अच्छे किस्म के हथियारों का न होना था। फिर योजना के अनुसार कुंवर सिंह तथा हरे कृष्ण सिंह सासाराम की पहाड़ियों में जाकर छुप गए। इनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 3,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा कर रखी थी। उसे इस घटना के बाद बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया था।
3: हरे कृष्ण सिंह जी, आप मेरे विश्वस्त सहायक हैं। मैं चाहता हूं कि आप क्रांति के समर्थन में जनमत जागृत करें और उत्तर भारत तथा मध्य भारत के क्षेत्रों का सघन दौरा करें।
4: जी,
1: कुंवर सिंह के दिशा निर्देशानुसार उन्होंने उत्तर भारत तथा मध्य भारत का दौरा किया और आम जन में क्रांति का शंख फूंक दिया। आजमगढ़ की ऐतिहासिक लड़ाई में उन्होंने कुंवर सिंह की सेना का सफलतापूर्वक संचालन किया। सन 1857 की महान क्रांति में आजमगढ़ विद्रोह और आजमगढ़ की लड़ाई का महत्वपूर्ण स्थान है।
3: भाइयों, आप में देश को आजाद देखने का जज्बा है, मैं इस जज्बे की कद्र करता हूं। हमें यदि

0: फैजाबाद, गोरखपुर, बनारस और कानपुर में विद्रोह आरंभ करने में 17वीं पैदल सेना का सहयोग भुलाया नहीं जा सकता।
1: इन टुकड़ियों में हमें देश प्रेम की चिंगारी प्रज्वलित करनी है।
0: ऐसा ही होगा। आजमगढ़ की टुकड़ी में सूबेदार बंधु सिंह एक ऐसे सेना नायक है जो अपने साथियों में देशभक्ति का ज्वार उठा सकते हैं। मैं उनसे गुप्त वार्ता करके देखता हूँ।
1: यदि बंधु सिंह हमारी ताकत बन जाते हैं तो आजमगढ़ वाली 17वीं पैदल सेना अवश्य हमें अपनी ओर से देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखेगी और अंग्रेज अफसरों से डट कर मुकाबला करेगी। आप इनसे हमारी मुलाकात करवाइए।
0: जी, मैं पूरी कोशिश करके सूबेदार बंधु सिंह को आपके पास लेकर आता हूँ।
1: जी।
2: कौन है? कौन है? खबरदार, मेरे क्षेत्र में गुप्त रूप से आने वाला कौन है तू?
0: बंधु सिंह जी, मैं सेनापति कुंवर सिंह का सहायक हरे कृष्ण सिंह हूँ। पहले मैं तहसीलदार हुआ करता था, अब मैं भारत माता का एक छोटा सा सेवक हूँ जो उनकी गुलामी की जंजीरों को काटना चाहता है। मैंने ही जगदीशपुरा और आरा पर क्रांतिकारी सेनाओं का संचालन किया था।
2: हरे कृष्ण जी, आपके शौर्य और देशभक्ति की जानकारी मुझे है। माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं सका था।
0: इसमें आपकी कोई भूल नहीं, क्योंकि इससे पहले हम कभी मिले ही नहीं थे। आपकी देशभक्ति की हमें भी जानकारी है।
2: भले ही हम नहीं मिले हों, परंतु आपकी ख्याति के परचम भारत भूमि में बहुत ऊंचे लहरा रहे हैं। आप हम सब क्रांतिवीरों के प्रेरणा स्रोत हैं। हम जो कुछ भी अंग्रेजी सेना अफसरों के विरुद्ध करते हैं उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है।
0: आप सेना में रहते हुए देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है, परंतु
2: क्या हरे कृष्ण जी?
0: अब हमें आर पार की लड़ाई लड़नी है।
2: देखिए, आप थोड़ा विश्राम करें।
0: ये विश्राम का समय नहीं है।
2: देखिए, आप रुकें, मैं पैदल सेना के सिपाही माधो सिंह को लेकर आता हूँ। उसमें तो देश प्रेम का जज्बा कूट कूट कर भरा है और वो अत्यंत उग्र भी है। अपने भाइयों से तो नम्रता से पेश आता है, परंतु जहां अंग्रेज दिखे उनसे वो अकारण उलझ जाता है।
0: तब तो मैं माधो सिंह से अवश्य मिलना चाहूंगा।
2: अवश्य, हम लोग कल आपसे मुलाकात करते हैं।
1: भाई हरे कृष्ण सिंह जी, बंधु सिंह जी तथा माधो सिंह जी, आपका स्वागत है। हम सब यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि सोचें और अमल में लाएं वो तरकीबें कि किस तरह से अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश करें।
2: कुंवर सिंह जी, आप महान हैं। आपके दिशा निर्देश में हमें काम करना स्वीकार है। इनसे मिलिए, ये मेरा मित्र माधो सिंह, बड़े उग्र स्वभाव का है।
3: आप बताएं कि किस अंग्रेज का सिर काट दूं?
0: मित्र माधो सिंह, हमें जोश के साथ होश भी रखना है। सभी कुछ सुनियोजित तरह से होना चाहिए।
1: हरे कृष्ण जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे पास साधन सीमित है।
2: साधन तो सीमित है परंतु जज्बा असीम है और युद्ध में जज्बा ही काम आता है।
3: हमारा एक एक सिपाही जब शेर जैसा दहाड़ता हुआ आगे बढ़ेगा तो अंग्रेजों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी।
2: हम बटालियन में विद्रोह करके हथियार भी लूट लेंगे और विद्रोहियों की सेना भी तैयार कर लेंगे।
1: ठीक है, हमारी रण योजना चुस्त भी है और दुरुस्त भी। हमें सोच समझ कर इस पर कार्य करना है।
4: इसके बाद गुप्त सभा विसर्जित हो जाती है। माधो सिंह व बंधु सिंह अपनी बटालियन में पहुंचते हैं।
5: सुबेदार बंधु सिंह,
2: अरे ये लेफ्टिनेंट हचिंसन बहुत बकबक करता है।
5: लेफ्टिनेंट इधर ही आ रहा है।
2: यदि आज इसने कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना तो मैं कसम इसे गोली मार दूंगा।
5: राजा कुंवर सिंह की बात ध्यान रखना।
6: ये क्या खुसर फसर हो रही है? जाओ अपने बैरक में जाओ।
3: और अगर नहीं जाए तो
6: हम तुम्हें चींटी की तरह मसल देगा। हम हाथी है हाथी।
3: अच्छा, तो ये बात है, मैं अभी बताता हूँ कि चींटी हाथी को कैसे मार देती है। हिलने की कोशिश मत करना।
6: माधो सिंह, तुम बगावत करता है क्या? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? हम तुम्हें मौत का तोहफा देंगे।
3: लेफ्टिनेंट हचिंसन, तुम हमें क्या तोहफा दोगे? तोहफा तो हम देंगे अपने देशवासियों को आजादी का।
6: माधो सिंह, तुम बगावत पर उतारू हो रहे हो।
2: माधो सिंह ही क्या लेफ्टिनेंट, रेजिमेंट का हर हिंदुस्तानी सिपाही अब आजादी की रोशनी

0: को मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है।
1: ये तो सरासर बगावट है। जानते हो क्या होगा इसका अंजाम? डू यू नो द रिजल्ट?
2: तुम जैसों की गुलामी से मौत को गले लगाना हमें पसंद है लेफ्टिनेंट।
1: डोंट मूव। तुम लोग आगे मत बढ़ना, इसका अंजाम बुरा होगा।
0: सुनो, मैं तुम लोगों का सूबेदार हूँ। लेफ्टिनेंट की बातों में बिल्कुल मत आना, ये हमें डरा रहा है। हमने अपने सिर पर आजादी के लिए कफन बांध रखा है, इसीलिए मौत का कोई खौफ नहीं है। आगे बढ़ाओ
3: साथियों। तुम्हें क्या पसंद है, हमारे साथ इज्जत कर चलना या इन फिरंगियों के आगे सर झुकाना?
1: माधव सिंह, तुम इन लोगों को क्यों बहका रहे हो? सिपाहियों, ये माधव सिंह और बंजू सिंह पागल हो गए हैं। सिपाहियों, अरेस्ट देम ऑल।
2: अब कौन किसे गिरफ्तार करता है ये देखना लेफ्टिनेंट।
3: क्या तुम हमको मारेगा?
2: बस इतने में ही घबरा गए हो लेफ्टिनेंट? ये लो साथियों, माँ भारती को आजादी की पहली भेंट।
1: गिरफ्तार करो।
3: चुप रहो।
4: आजमगढ़ की 17वीं पैदल सेना का सिपाही माधव सिंह वो पहला व्यक्ति था जिसने सन 1857 की क्रांति की प्रथम गोली दागकर लेफ्टिनेंट हचिनसन को मौत के घाट उतार दिया था।
5: अच्छा काका,
4: लेफ्टिनेंट की सहायता के लिए और भी अंग्रेज अफसर आगे बढ़े, उनको भी घायल कर दिया गया। आजमगढ़ के विद्रोहियों ने एक घोषणा पत्र जारी किया जो अवध के सिपाहियों में वितरित कर दिया गया। इस घोषणा पत्र में अनुरोध किया गया था,
6: हम सबको विदेशियों के विरुद्ध संघर्ष में अपने मतभेद भुला देने चाहिए।
0: अंग्रेजों ने अफीम, नील, कपड़े आदि का आकर्षक व्यवसाय अपने हाथ ले लिया है और छोटी व कम मुनाफे की चीजों का व्यापार हमारे लिए छोड़ दिया है।
6: अंग्रेज डाक, विद्यालय, कोष के रूप में मनमाने ढंग से जनता का पैसा वसूल कर रहे हैं।
7: दिल्ली घोषणा पत्र के अनुसार हम भी अपने आजमगढ़ घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि सभी लोग ये जान लें कि हिंदू और मुसलमान दोनों की ही प्राचीन पुस्तकों तथा ज्योतिषियों, नुजूमियों की गणना से स्पष्ट है कि अंग्रेजों का भारत में अधिकार खत्म हो गया है।
6: इसलिए जरूरी है कि हम ब्रिटिश दास्ता में रहना अस्वीकार कर दें।
4: कुंवर सिंह, हरे कृष्ण, माधो सिंह, बंधु सिंह आदि विद्रोहियों के साथ 17 मार्च 1858 को उतरौलिया पहुंचे जो आजमगढ़ जिले में है।
5: फिर
4: यहां अनेक विद्रोही मिले जिन्हें फ्रेंक्स ने पराजित कर दिया था। कुंवर सिंह ने अपने भाषण से उनमें पुनः हिम्मत का संचार किया। इसी समय कर्नल मिलमेन 300 सिपाहियों सहित आजमगढ़ के निकट कोइलसा, जिसे आज बूढ़नपुर के नाम से जाना जाता है, वहां रुका हुआ था। उसे कुंवर सिंह की गतिविधियों की सूचना मिलती रहती थी।
5: अच्छा,
4: इस सूचना का फायदा उठाकर उसने विद्रोहियों पर हमला कर दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेज सैनिक अपने शस्त्र एक स्थान पर रखकर आराम कर रहे थे, तभी कुंवर सिंह ने उन पर अचानक पलटकर हमला कर दिया।
5: फिर
4: उनका दबाव देखकर मिलमैन कोइलसा की ओर पीछे हट गया।
5: अच्छा,
4: कुंवर सिंह की सेना उत्साहित होकर आगे बढ़ती गई और कर्नल मिलमैन को आजमगढ़ तक खदेड़ दिया।
5: फिर
4: वो युद्ध में अपनी तोपें तथा भारी मात्रा में गोला बारूद छोड़कर भाग गया था।
5: अच्छा,
4: कुंवर सिंह अपने 1000 सैनिक तथा 2500 समर्थकों सहित 24 मार्च 1858 को आजमगढ़ से 10 मील दूर मदौरी पहुंचा।
6: साथियों, इस समय तक हमारी सेना में लगभग 4000 लोग शामिल हो गए हैं। उनके पास लूटी हुई 4 तोपें भी हैं।
4: इसी बीच उन्हें पता चला कि गाजीपुर में कर्नल डेम्स बड़ी सेना लेकर युद्ध करने आ रहा है।
5: फिर काका,
4: कर्नल डेम्स को पराजित करके विद्रोहियों ने 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। इसकी पुष्टि बनारस के कमिश्नर के तार से होती है जो उसने इलाहाबाद के सरकारी सचिव को 27 मार्च 1858 को भेजा था। उसमें लिखा था, करीब 4000 विद्रोहियों ने बिना किसी रोक टोक के आजमगढ़ नगर में कल प्रवेश किया। वहां पर 1000 सिपाही बंदूकों के साथ हैं, जिनमें 2 गोरखा सैनिक हैं।
5: उसके बाद क्या हुआ काका?
4: गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग उस समय अलाहाबाद में थे। उन्होंने आजमगढ़ पर विद्रोहियों के कब्जे का तार मिलते ही मार्क केर को, जो अलाहाबाद में 13वीं लाइट पैदल सेना का नेतृत्व कर रहा था, तत्काल आजमगढ़ भेजा। आजमगढ़ में मार्क और कुंवर सिंह की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। मार्क केर ने देखा कि काफी संख्या में लोग उस इमारत और आम के बगीचे में, जो सड़क की बाई ओर था, एकत्र थे। वो सड़क की दाई ओर की खाइयों में जा छिपे थे।
5: उसके बाद
4: केर ने मैदान में पैदल सेना भेज दी।
7: हमारे बहादुर सिपाहियों, तुम सब खाइयों की दूसरी ओर मोर्चाबंदी कर लो, क्योंकि हमारे साथी सड़क की दूसरी ओर से गोलीबारी कर रहे हैं।
8: साथियों, अंग्रेज कितनी भी गोलियां चला ले, वो हमारे बुलंद हौसले तोड़ नहीं सकते। कुछ लोग आम के पेड़ पर चढ़ जाएं और डालियों में छुपकर गोलियां चलाते रहें। हम मार्क केर के रसद पहुंचाने वाले मार्क को बंद कर देना चाहते हैं।
4: लगातार अंग्रेजों की गोलीबारी से इमारत की दीवार टूट गई थी। इमारत की दीवार टूटते ही विद्रोहियों ने इमारत खाली कर दी थी।
5: फिर
4: इस कठिन लड़ाई के बाद अंग्रेज फौज आजमगढ़ नगर में दाखिल हो सकी थी।
5: अच्छा,
4: कहा जाता है कि 6 अप्रैल 1858 को मार्क केर की सेना और कुंवर सिंह की सेना के बीच हुए युद्ध में 81 वर्षीय बूढ़े सेनापति कुंवर सिंह अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर ठीक घमासान युद्ध के अंदर बिजली की तरह इधर से उधर लपकते हुए दिखाई देते थे।
5: उसके बाद क्या हुआ काका?
4: विद्रोहियों को 13 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ नगर खाली करना पड़ा।
5: अच्छा,
4: क्योंकि लुगार्ड और मार्क केर दोनों की फौजें आजमगढ़ आ गई थी।
9: क्रांतिवीर हरे कृष्ण, तुमने आजमगढ़ के इस ऐतिहासिक युद्ध में अपनी रणनीति से अंग्रेज सेना को पराजित भी किया और काफी क्षति भी पहुंचाई है। तुम महान हो।
7: गौर जी, आप ज्यादा ना बोले, आराम करें, आप घायल हैं, वैद्य जी लेप लगा रहे हैं।
5: गजभिये काका, वैद्य जी की दवाई से तो कुंवर सिंह ठीक हो गए होंगे।
4: बेटा, होनी को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध में घायल कुंवर सिंह का निधन हो गया। कुंवर सिंह के शहीद हो जाने के बाद हरे कृष्ण सिंह ने जमशेदपुर में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध कमान संभाल कर उनके छोटे भाई अमर सिंह की सहायता की और प्रशासन का कार्यभार संभाला।
5: फिर
4: उन्होंने उन गद्दारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जो अंग्रेजों को गोपनीय सूचनाएं पहुंचाया करते थे। अपने अल्पकाल के शासन के दौरान हरे कृष्ण सिंह ने राजस्व की वसूली की स्थिति में सुधार किया तथा सेना को सुगठित किया।
5: अच्छा,
4: उन्होंने सभी ओर से जगदीशपुरा की किलेबंदी की ताकि जगदीशपुरा अंग्रेजों के आक्रमण से सुरक्षित रहे।
5: उसके बाद काका?
4: इसी बीच ब्रिगेडियर डगलस के नेतृत्व में दानापुर से एक मजबूत अंग्रेजी सेना जगदीशपुर के लिए रवाना हुई। अनेक स्थलों से इस सेना की सहायता में 6 अन्य ब्रिटिश कर्नल भी अपने सिपाहियों के साथ सम्मिलित हो गए।
7: ओह, इतनी बड़ी सेना, हम मुट्ठी भर सैनिकों के साथ इसका सामना नहीं कर सकते।
8: महाराज, हम इन्हें गाजर मूली की तरह काट देंगे।
7: हम आपकी भावना की कद्र करते हैं माधो सिंह, परंतु ये भावुकता का समय नहीं है, ये आत्मदाह होगा। यही बेहतर होगा, हम जगदीशपुरा तुरंत खाली कर दें।
10: महाराज ठीक कहते हैं।
11: परंतु बंधु सिंह,
7: यह मेरा हुक्म है।
4: अंग्रेज सेना बिना किसी बाधा के जगदीशपुर में दाखिल हो गई।
5: फिर
4: हरे कृष्ण सिंह ने मोहमिया के पास 20 अक्टूबर 1858 को ग्रांड ट्रंक रोड पार किया और जंगल की ओर चले गए। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध भी किया, अंत में फरार हो गए।
5: फिर क्या हुआ काका?
4: वे गिरफ्तारी से बचते रहे, परंतु 22 अगस्त 1859 को बनारस में दशाश्वमेध थाने के नायब कोतवाल ने बघोले परगने के होनिया गांव में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें बनारस से ले जाकर आरा जेल में बंद कर दिया गया।
5: फिर
4: शाहबाद के स्थानापन जज तथा विशेष कमिश्नर आरजे रिचर्डसन की अदालत में उस देशभक्त नर नाहर पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। मुकदमा 1857 के 14वें अधिनियम के अंतर्गत चलाया गया था, जिसमें उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। क्रांतिवीर हरे कृष्ण को जगदीशपुरा लाया गया और मुख्य बाजार में सरेआम उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ये वही जगह थी जहां क्रांति प्रारंभ के समय उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जनता को संगठित किया था। हरे कृष्ण बाबू कुंवर सिंह के समान ही अंतिम सांस तक झुके नहीं, उन्होंने भारत मां की बलि वेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। वंदे मातरम।
12: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा। निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। क्रांति कथाओं को सुनकर आपको भेजना है एक प्रेरक स्लोगन। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है हिंदुस्तान हमारा स्वराज संस्थान संचालनालय रविंद्र भवन परिसर भोपाल पिन 462002। पता एक बार फिर नोट करें स्वराज संस्थान संचालनालय रविंद्र भवन परिसर भोपाल मध्य प्रदेश पिन 462002। अब हमें आज्ञा दीजिए अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय फिर मिलेंगे एक और क्रांतिवीर की जीवन गाथा लेकर। कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गाँव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते तो आज हमें खुशी है, क्योंकि सरकार का जो मंच है आसपास गतिविधि को जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच देती है, और इस मंच का फायदा आज बच्चे लेंगे, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं, बच्चे महान होते हैं, और बच्चे शिकलद्ध होते हैं और मीठे होते हैं। आज राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरपुरा जो कि बॉर्डर में पहुंचे रेबदर ब्लॉक और आबू रोड ब्लॉक का लास्ट ग्राम पंचायत, और हर साल इस स्कूल में आते हैं, तो आज बच्चों को एक मंच मिल रही, सभी बच्चे बच्चों का हिस्सा लेंगे, क्योंकि सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि सामुदायिक तक पहुंचाने के लिए आज पहुंचे। सब हाथ हिलाओ, वेरी गुड, सभी बच्चे हाथ हिला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चे परिया है, तो अपना नाम कौन सा क्लास और कौन सा फॉलिश आते हैं बताएंगे।
1: मेरा नाम आरोही कुमारी है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरी एज 14 साल की है।
0: वेरी गुड। और आपका मम्मी पापा क्या करते हैं?
1: मेरे मम्मी पापा घर पे ही रहते।
0: खेती बाड़ी है?
1: नहीं सर।
0: पशुपालन?
1: नहीं।
0: क्या करते हैं पापा?
1: मेरे पापा मंदिर में रहते हैं।
0: मंदिर, अरे वाह, मंदिर मस्जिद गिरजा घर को हम कभी भूल नहीं पाते, वहाँ प्रार्थना होता है। और बड़े होकर क्या बनेगी?
1: बड़े होकर टीचर बनेंगे।
0: वेरी गुड, मैम बनेंगे, वाह वेरी गुड। नेक्स्ट, अपना नाम?
2: मेरा नाम मीना कुमारी है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती।
0: हाँ, और
2: मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते हैं, मैं 14 साल की हूँ।
0: और बड़े होकर क्या बनेगी बहन?
2: टीचर बन।
0: टीचर, बट टीचर क्यों? क्योंकि टीचर में मजा आता है पढ़ाने, आज पढ़ रहे हैं और कल पढ़ाएंगे। नेक्स्ट,
3: मेरा नाम है सोनिया कुमारी, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ, मेरे माँ बाप खेती बाड़ी करते हैं।
0: और कौन सा फल से आते, कौन सा गाँव, कहाँ से?
3: बहादुरपुरा।
0: ओके, नेक्स्ट।
4: मेरा नाम मीना कुमारी, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे पापा खेती बाड़ी करते हैं और मेरे गांव का नाम भातेपुर।
0: वेरी गुड।
5: मेरा नाम दुष्की कुमारी है, मेरे पापा खेती बाड़ी करते हैं।
0: आपको आज क्या ज्ञान मिला?
1: मुझे आत्मा और शिक्षा और सभी का ज्ञान मिला।
0: तो इसको फायदा लेने से फायदा होगा?
1: जी
0: फायदा होगा
1: जी।
0: वाह, चलिए एक प्रस्तुति होगा, प्रार्थना के रूप में एक प्रस्तुति सुनाओ।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति। और हर स्कूल में हर विद्यालय में जो जाते हैं प्रार्थना सत्र में बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और जब रेडियो मधुबन इस तरह कार्यक्रम को लेकर पहुंचता है तो इस तरह कार्यक्रम में जब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं बच्चे बहुत खुशी लगता है, क्योंकि उनको एक मंच जो आवश्यकता था आज मिल रहा, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, पहला बार आए और रेडियो में अपना आवाज को बुलंद से बता पा रहे। जब ये आवाज जब आकाशवाणी में सुनेंगे बच्चे का, मम्मी पापा भाई लोग बहन टीचर सुनेगा, ये तो हमारा गुड़िया का आवाज है, ये हमारा दोस्त का आवाज है, तो कितना खुशी लगेगा, लगेगा ना सभी बच्चों को?
1: हाँ जी।
0: क्या धीरे से बोल रहे
1: हैं? हाँ जी।
0: हाँ यही हुई ना बात, हमेशा हाँ जी का पाठ पक्का करना है, कोई भी बात हो हाँ जी क्या बोलेंगे?
1: हाँ जी।
0: बड़े जो बोलेंगे आपका भलाई के लिए बोलते हैं माँ बाप। बड़े में कौन कौन आता है? बड़े में कौन कौन आता है बता दे की बहन?
2: पिताजी, माता जी, चाचा जी, मामा जी, चाची जी, मामी जी,
0: और
2: दादा
0: बड़ा,
2: दादी, नाना नानी।
0: हाँ इसको कैसे बोलेंगे भाई, दादा दादी, नाना नानी, चाची, काकी, काका, बड़ा भैया,
2: भैया बहन,
0: बहन, और हमारा शिक्षकगण, टीचर्स गण, ये भी गुरुजन हमारा बड़े होते, तो उनका बात मानना
1: चाहिए,
0: मानना
1: चाहिए,
0: क्योंकि वो आपका भलाई के लिए हमेशा सोचते हैं, भलाई के लिए
1: सोचते हैं।
0: कौन कौन सोचते हैं भलाई के लिए आपका?
2: टीचर्स,
0: मम्मी पापा, बड़ा भाई, किसका किसका, छोटे भाई बहन भी सोचने लगते बड़ों के लिए, है ना? छोटे भाई बहन भी बहुत होशियार होते हैं, वो भी हमारा दीदी बड़ा भाई अच्छा बने ऐसे सोचते हैं ना
1: जी।
0: हाँ बहुत अच्छा लगा। और बड़ों को क्या बनेगी? टीचर
2: जी।
0: इसलिए मेहनत क्या करती तुम?
2: पढ़ाई करते।
0: कितना घंटा?
2: दो
0: घंटे से नहीं चलेगा, और
2: करते और स्कूल में छह घंटा,
0: छह घंटा, आठ घंटा हुआ, 24 घंटा से 8 घंटा का। और कितना समय कहाँ क्या करती तुम?
2: और खेलते
0: है, सोते हैं, खाते पीते खाते हैं खाना, दिन में खा खा कर दिन को गवा देते हैं, सो सो कर रात को, तो पढ़ते कब?
2: दोपहर को पढ़ते
0: हैं। हाँ होशियार बच्चे, बोला हम पढ़ते हैं सर, दोपहर को हम पढ़ते हैं, आप ऐसे कैसे बोल देंगे, दिन में हम खा खा कर सोते हैं, हम स्कूल जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, और पढ़ाई भी अच्छा करते हैं। विद्यार्थी जीवन में 2 घंटा नहीं 4 घंटा मेहनत से पूरा लगाएंगे ना विद्यार्थी जीवन में, ये 5 साल, इसके बाद आपको तो 90 साल पूरा पैसा ही पैसा मिलेगा, क्योंकि नौकरी करेंगे, ये 5 साल थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, करेंगे बच्चे
1: जी?
0: जब तक कॉलेज है तब तक पढ़ाई करना करना करना, बस नंबर लाना है, मेहनत क्या करेंगे?
1: मेहनत।
0: जोर से बोलो
1: मेहनत,
0: मेहनत, 20 नाखून लगाकर नीचे से ऊपर तक इतना मेहनत करेंगे तो हम जरूर क्या लेंगे, सर्विस, क्या लेंगे?
1: सर्विस,
0: नौकरी लेंगे, है ना? बहुत अच्छा लगा। अच्छा तुम क्या बोलेंगे? बड़ा होकर टीचर तो बने, इसलिए मेहनत करती है तुम
3: जी।
0: फिर नाम बताओ?
3: हीना कुमारी।
0: हीना मेहनत करती
3: है जी।
0: वेरी गुड, ये तो जी जी बोल रहे, बहुत अच्छा, सभी को धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं, याद रखिएगा।
1: नमस्ते, कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी, आज बच्चों का साथ हम भी बच्चे बनकर उनका साथ रूबरू हो रहे थे और बच्चे प्रार्थना सत्र में ही महात्मा जैसे पूरा गीत गाए हैं और ऐसे हर स्कूल में होता है, परमात्मा का याद में खुद को आत्मा समझकर गीत गाए तो बहुत अच्छा हो गया। और इस कार्यक्रम को कॉम्पिटिशन जैसे बच्चियों का आवाज के बाद अभी बच्चे भी देंगे, छोकरियों का आवाज के बाद छोकरा भी कम नहीं, वो भी अपना आवाज को देंगे, अपना अपना नाम और कौन सा गांव में आते हैं और बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे उनसे भी सुनेंगे। जब उनका आवाज से लक्ष्य रहेगा तो लक्षण दिखाई देगा। और चलिए सभी को स्वागत करते हैं एक एक को। आज हमारे साथ बहुत सारे बच्चे आए हैं, तो हेलो, अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम प्रकाश कुमार है और मैं बादबुरा गाँव का हूँ।
1: वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी आवाज तो आप दे पा रहे, आपका आवाज कौन बोलता है, अभी आवाज नहीं है, आपका आवाज तो बहुत मिठास है, सुंदर है और हट्टा कट्टा है। और खेल खेलते हैं?
2: जी खेलते हैं।
1: कौन सा खेल खेलते हैं?
2: कबड्डी।
1: अरे वाह, कबड्डी खेलने से क्या फायदा होता है?
2: शरीर मजबूत बनता है।
1: हाँ, कौन बोलता भाई, ये पूरा होशियार बच्चा भाई। शारीरिक एक्सरसाइज करेंगे, हमारा स्वास्थ्य तंदुरुस्त होगा, स्वास्थ्य का विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, बहुत अच्छा। इसे आगे बढ़कर क्या बनना चाहेंगे?
2: टीचर बनना।
1: टीचर ही नहीं तो एक्सरसाइज कर पीटीआई सर बनेंगे, नहीं तो फौजी। हाँ। फौजी भी बन सकते हैं। वेरी गुड, खेल को अपना दोस्त मानना चाहिए। चलिए और एक दोस्त, हेलो, क्या नाम है?
3: मोती राम।
1: वाह, मोती तो आत्मा तो मोती है, आत्मा मोती। गांव का नाम पूरा बताओ।
3: बहादुरपुरा।
1: और तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है? दोस्त है
3: जी।
1: क्या नाम बताओ?
3: जगदीश।
1: कौन सा क्लास? 11th क्लास। चलिए, हेलो, नाम बताओ।
4: रमेश
1: हमारा श्रेष्ठ भाई है और अच्छा काम करता है, उनका दोस्त का साथ आज भी वो अपना बात बता रहे। और तुम्हारा अच्छा फूल, कोई फूल देखा है? फूल का नाम बताओ। देखी कमल फूल। वाह, कमल फूल सबसे विशेषता है, कमल फूल जैसे बनना है। कीचड़ में रहता है कमल फूल, खिलता है लेकिन कितना है? उसका कीचड़ नहीं लगता है लेकिन आगे बढ़ता है, उसका पूरा खुशबू है पद्म जैसे, है ना? वेरी गुड, तुम्हारा नाम?
5: जी सर, मैं बादुरपुर में रहता हूँ।
1: और बड़े होकर क्या बनेगा?
5: पुलिस वाला।
1: वेरी गुड, पुलिस, बहुत अच्छा। चलिए हमारे साथ और छोटा सा।
6: मैं विक्रम कुमार हूँ और मैं बादुरपुरा में रहता हूँ।
1: और अच्छा भोजन करते हैं ना? क्या खाते हैं? अच्छा, कौन सा अच्छा भोजन लगता है आपको?
6: दाल रोटी।
7: मेरा नाम किशन कुमार है, मैं बादुरपुरा में रहता हूँ।
8: मेरा नाम गमा राम है, मैं बादुरपुरा में रहता हूँ।
9: मेरा नाम प्रवीण कुमार है, 11th
1: क्लास में। देखो सभी अपना अपना आवाज को खोल दिए, तो सबको धन्यवाद देते हैं। और तुम्हारे गांव का आसपास कौन सा गांव है बादुरपुरा के आसपास? गांव
6: सरीफली।
1: हाँ।
6: चनार।
1: मुंगथला
6: जी।
1: फतेहपुरा।
6: डामफली।
1: साकोड़ा। बताते नहीं आप लोग, साकोड़ा और
6: मईखेड़ा।
1: वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा आंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8।

0: चलिए रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आज बच्चों का आवाज पारी पारी ले रहे, सभी को आज एक गुलदस्ता, जैसे सबका आवाज, जैसे सभी फूल मिलकर के गुलदस्ता बनता है, सभी का आवाज, नाम, गांव और कौन सा क्लास और गांव का आसपास क्या है सुनने को जा रहे, तो रेडियो मधुबन आज इनको सभी बच्चों को आज चुप्पी तोड़ रहे हैं, सभी चुप्पी तोड़ के अपना बात को रख रहे हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम में हमारा साथ एक छात्रा है, हेलो नाम बताइए।
1: मेरा नाम है सोनिया कुमारी, मैं बादीपुरा में रहती हूँ।
0: सोनिया बहुत अच्छा, सोनिया और सुरेश तो भरपूर है, हर स्कूल में सोनिया और सुरेश मिलता ही है ना। कौन नाम रखा है सोनिया तुम्हारा नाम?
1: बाप ने।
0: क्या नाम बाप का?
1: काना राम।
0: अच्छा।
2: मेरा नाम गीता कुमारी, मैं बादीपुरा में रहती हूँ।
3: मेरा नाम पंकू कुमारी है, मैं 11 क्लास में पढ़ती हूँ, मैं बादरपुरा में रहती हूँ।
0: बादरपुरा के?
3: मैं बड़ी होकर पुलिस बनूँ।
0: पुलिस, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा है ना, मेहनत करते हैं। पुलिस वाले को देखा है कभी?
3: जी।
0: क्या करता पुलिस? चोर को
3: पकड़ता है।
0: जो बेईमान करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, जो दुर्नीति करेगा, उसको जेल में
3: डालेंगे।
0: नेक्स्ट।
4: मेरा नाम सीता कुमारी है, गाँव का नाम बादरपुरा है, मेरा पिता का नाम काना राम है, माता का नाम अंजारी भी है। मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ।
0: और बड़े होकर क्या बनेगी?
4: डॉक्टर।
0: सीता है ना नाम? वाह। सीता रामायण में है ना, महाभारत में सीता किस में है? सीता
4: रामायण में।
0: रामायण में सीता और राम और सीता, श्री राम और श्री सीता कहते हैं। और महाभारत में द्रौपदी क्या बोलते हैं? सबको अच्छा लगा
1: जी?
0: क्या अच्छा लगा? एक बात बताओ, ज्ञान अच्छा लगा ना, रेडियो अच्छा लगा ना, खुद अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा बोलो? तो अच्छा लगा ना, सब बुरा लगा, क्या अच्छा लगा रे बहन?
1: क्या?
0: ज्ञान अच्छा लगा, ज्ञान माने समझ। समझ में आया
1: जी?
0: समझ में आया
1: जी?
0: तुमको समझ में आया
1: जी?
0: तुम कौन हो, सीता ना आत्मा?
4: मैं आत्मा, सीता मेरा नाम है।
0: वेरी गुड, ये पक्का उत्तर। तुम बोलो।
3: मैं आत्मा, मेरा नाम पंकज।
0: मेरा नाम?
4: मैं आत्मा, मेरा नाम गीता कुमारी।
0: समझ में, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए सभी बच्चों को एक मंच मिल रहा है, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

लोग ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। बच्चे एक को देखकर दूसरे भी अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे, सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे। 40-50 बच्चों को आज मौका मिल रहा है, क्योंकि वो सोचेगा भाई मेरा आवाज नहीं है, उसका आवाज आ गया, पंकु का आ गया, सीता का आ गई, किंतु मेरा आ गया। इसलिए वो भी बोलता भाई मेरा भी आवाज होना चाहिए, तब तो गुलदस्ता बनेगा बहादुरपुरा विद्यालय का। और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा और छात्राएं उपस्थित होगी। सभी अपना क्लास कौन सा क्लास के और नाम और कहाँ से बताएंगे। वेरी गुड।
1: मेरा नाम सीमा कुमारी है और मैं फतेहपुरा से आती हूँ और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: वेरी गुड।
2: मेरा नाम है इनाक कुमारी, मैं बहादुरपुरा में रहती हूँ।
3: मेरा नाम पूजा कुमारी, मैं बहादुरपुरा में रहती हूँ, 9th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: पूजा नाम बहुत सुंदर है, कौन रखा है पूजा नाम?
3: मेरे पिताजी।
0: घर में कौन कौन है?
3: पापा, मम्मी, बहन।
4: मेरा नाम है तेजल कुमारी।
0: क्या नाम?
4: तेजल।
0: बोलो 9th क्लास में। और कौन सा गांव से?
4: सरीफली से।
0: सरीफली, अच्छा,
4: बहादुरपुरा
0: में आता है। और आपका गांव का सरपंच का नाम बता सकते हैं? क्या नाम है? मिश्री देवी। गलबा राम का क्या लगता है?
4: मम्मी,
0: माँ, आई लगता है। गलबा राम सरपंच से पहले, हाँ बता नाम।
5: मेरा नाम पप्पी कुमारी है, मैं बहादुरपुरा में रहती हूँ।
0: वेरी गुड।
6: मेरा नाम आरती कुमार, मैं बहादुरपुरा में रहती
0: हूँ। अच्छा, सबको अच्छा लगा? सभी को अच्छा लगा? आज कार्यक्रम कैसे लगा? सभी को अच्छा लगा होगा ना? बुरा लगा? अच्छा लगा कार्यक्रम। आपका आवाज जब जाएगा तो घर में सुनेंगे सभी बच्चे?
7: हाँ जी,
0: हाँ जी सुनेंगे। कैसे सुनेंगे? रेडियो पे सुनेंगे, मोबाइल में रेडियो आता है, लिंक आता है, उसमें सुनेंगे शाम को 7 से 8 बजे, ठीक है? और अच्छा, घर में कोई चीज आता है तो पहले किसको मिलता है? मम्मी पापा कुछ नया चीज लेकर, आम आया, खजूर आता है, तो किसको देते? भाई को देते ना बहन को देते?
4: भाई को।
0: भाई को,
4: बहन।
0: भाई और बहन दोनों को देते हैं। किसका घर में? भाई को देते हैं। किसका घर में? बहन को देते हैं। तुम्हारा घर में किसको देते हैं?
8: भाई को।
0: भाई को देते हैं। भाई भाई को क्यों, बहन को क्यों नहीं देते हैं?
8: बहन को भी देते हैं।
0: बहन को भी देते हैं पीछे?
8: हाँ।
0: भाई और बहन में अंतर होना चाहिए?
8: नहीं नहीं,
0: नहीं होना चाहिए। भाई और बहन एक भगवान का दो फूल है, भगवान का दो फूल है, तो बराबर होना चाहिए। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों बराबर अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? पढ़ाई में, खाने में, घूमने में, फिरने में, सब में बराबरी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद लास्ट प्रस्तुति। हमारा ग्रुप इंतजार कर रहे, जो पहले ग्रुप आए थे वो ग्रुप करेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।
9: नमस्कार, मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, माने आवे पिया जीरी हिचकी, मारो वादी लो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752, 9001313752, ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से प्रसारण किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी। हमारा संगीत कला केंद्र है, जहां हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं। बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमायचा, खड़ताल, ढोलक, हारमोनियम सिखाया जाता है। तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें। संगीत निर्देशक हाकम खान

ओम शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया और कह सकते हैं अपना लोक भाषा में मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब गाँव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते तो आज इस कार्यक्रम को लेकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मईखड़ा में पहुंचे। आप सबको विदित है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय ये दोनों विद्यालय का मिलित सहयोग से बच्चों का सर्वांगीण उन्नति के लिए, विद्यार्थी विकास के लिए, बच्चों का हुनर, बच्चों का टैलेंट, बच्चों का प्रतिभा को, बच्चों का भाव और भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच एक स्टेज देती है। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर इस स्कूल में विद्यालय में पहुंचे, बहुत खुशी लग रहा है। बच्चों का साथ हम भी बच्चे बनकर उनका साथ रूबरू हो रहे हैं और सरकार का जो मंच है आसपास स्कूल हो चाहे आंगनबाड़ी हो चाहे नरेगा हो चाहे कहीं पर भी चाहे प्रशासन गांव के संघ हो सभी के साथ हम मिलकर उनका भाव और भावना को जन जन तक पहुंचाते हैं। एक खुला मंच है जो इस मंच का माध्यम से अपना भाव को जन जन तक पहुंचाते हैं। तो आज राजकीय विद्यालय में पहुंचे हमारा सभी छात्राओं को धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम को सजाने के लिए और इसका श्रेय तो संस्था का संस्था प्रधान श्रीमान प्रिंसिपल साहब को जाता है और सभी स्टाफ को जाता है। उनका परमिशन के चलते आज इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाएंगे और बारी बारी सभी का आवाज सुनने को मिलेगा। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ होनहार बच्चे तो अपना परिचय देंगे और कहां से और कौन सा क्लास में और बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे सभी सुनेंगे। चलिए हमारा पहला प्रस्तुति के लिए हमारा साथ छात्राएं अपना नाम बताएंगे।
1: मेरा नाम है अनिता कुमारी
0: जी। और कौन सा क्लास? 10th क्लास। और स्कूल का पूरा नाम बताएंगे अनिता? राजकीय
1: माध्यमिक विद्यालय
0: मईखेड़ा, जो कि बादबुरा ग्राम पंचायत में आता है। ये एक प्रमोशन होकर आज बड़ी स्कूल हो गया क्योंकि पहले 8वीं क्लास, इसके बाद 10वीं क्लास, इसके बाद 12वीं क्लास, है ना। तो अभी आप कौन सा क्लास में
1: है?
0: 10th में। अच्छा, बोर्ड परीक्षा होगा इस बार, है परीक्षा में बहुत मेहनत करना है। हा? और घर में कौन कौन है अनिता?
1: बाप, आई
0: और भाई बहन है। और आपको पढ़ाई अच्छा लगता है? कौन सा विषय आपको अच्छा लगता है?
1: विज्ञान।
0: विज्ञान।
2: मेरा नाम दीपिका सोलंकी है।
0: हाँ,
2: मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: हाँ, अच्छा, आपका अच्छा दोस्त का नाम बताओ। सहेली, जो कि आपका मन का बात उसको बताते, क्या नाम है? सभी सभी बच्चे उनका दोस्त है। चलिए, सब शर्माते, शर्माने से नहीं होगा क्योंकि सब आत्मा है ना, आत्मा शर्माते है क्या? देह को देखेंगे तो सर ये लड़का ये लड़की ऐसे सोचते हैं। चलिए, एक गीत प्रार्थना सत्र में प्रार्थना गाते ना, प्रार्थना कराओ।

पूजा और उनका साथी आए हैं, तो उनको भी स्वागत करते हैं सभी ग्रामवासियों की तरफ से और सभी नन्हे मुन्ने बच्चों की तरफ से। नन्हे नन्हे सितारे आए हैं, तो इस कार्यक्रम में पूजा को भी स्वागत करते हैं। पूजा साथी,

चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में कुछ

धन्यवाद। लेते छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद लास्ट प्रस्तुति। हमारा ग्रुप इंतजार कर रहे, जो पहले ग्रुप आए थे वो ग्रुप करेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: करते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन।
2: नमस्ते। कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए अंतिम प्रस्तुति की हम चल रहे हैं और ये अंतिम पड़ाव में राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरपुरा बच्चों का जो भावना को लेकर एकल आए हैं हमारा परी, क्या नाम बताए थे फिर आपने?
3: आरोही कुमारी।
2: आरोही, बस आरोही, अवरोही नहीं, आरोही मीन्स ऊपर उठना है, अवरोही मैंने नीचे डाउन। इनका नाम है आरोही, क्या नाम है?
3: आरोही।
2: वाह कितना सुन, मैंने पहला बार सुना आरोही, है ना? कौन नाम रखा है आरोही?
3: मेरी बहन।
2: आरोही का मतलब क्या जानते ना? आरोही मतलब उठना, चढ़ना, उड़ना। आरोही मतलब चढ़ना। चलिए शुरू करिए।

0: राम है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। अंतिम प्रस्तुति में पूरा चार चांद लगा दिए, और जिसका उमंग उत्साह रहता है और एक आध्यात्मिक जब बन जाता है और उसका घर में पूजा पाठ उनका पापा करते मंदिर में जाकर आरोही, और जिसका चलते वो भी अपना झिझक दूर करके अपना कार्यक्रम को हेल्दी वेल्दी हैप्पी बना दिए। और इस तरह कार्यक्रम में जब इस तरह बच्चिया आएंगे बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे पार्टिसिपेंट करेंगे तो गांव का नाम रोशन करेंगे, विद्यालय का नाम रोशन करेंगे और परिवार का नाम रोशन करेंगे और खासकर खुद का भी नाम रोशन करेंगे। और नाम भी पहला बार इसने नाम सुना आरोही, बहुत अच्छा नाम है। तो जाते जाते सभी को नाम का साथ एक एक बच्चे का जो नाम लिए सभी को धन्यवाद देते सुंदर प्रस्तुति के लिए, और सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिए। ऐसे पहला बार हुआ जो सभी बच्चे अपना आवाज को रेडियो में लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। ये था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरपुरा के सभी बच्चों जो कि 9th, 10th, 11th, 12th का बच्चे मिक्स होकर आज बैठे थे और आत्मसात के आत्म प्रबंधन सेल्फ रियलाइजेशन बच्चे सेल्फ रियलाइजेशन की आत्म उन्नति किए आत्म अनुसंधान किए मैंने सेल्फ रियलाइजेशन किए खुद को महसूस किए। हाँ ये खुद को महसूस किए हम सब कौन है। हाँ देखा समझ में आत्म अनुभूति की आत्म अनुभूति हुआ ना इसको कहते सेल्फ रियलाइजेशन। और गॉड रियलाइजेशन भी किए परमात्मा का अनुभूति भी हुई ना। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं आप सबसे इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। अच्छा धन्यवाद आभार।
2: गायक कलाकार आकम खान ढोलक पे साथ दे रहे हैं, मदन खान करताल पे संगीतकार, शौकत खान मौनशिया। ये करताल लकड़ी की बनी हुई होती है, शीशम की लकड़ी की चार खुली लकड़ी होती है और हाथों के अंदर ये खुले अंगूठे और अंगुलियों के सहयोग से ये बजाया जाता है। शौकत खान है राजस्थान, इन्होंने करताल के माध्यम से अपना कुछ नाम कमाया है, हर स्टेज पे इनका कार्यक्रम होता है। हकीम लोक संगीत संस्थान के शिमला के अंदर ये बच्चों को संगीत की करताल में सिखलाई देता है, खुद गाता है। इस संगीत संस्थान में हमारे कलाकारों करताल ढोलक कमायचा सारंगी मोरचंग मुरली अलगोजा सहनाई ये सिखलाई दी जाती है। काफी कलाकार हमारे इस संस्थान के माध्यम से संगीत को आगे बढ़ावा दे चुके हैं और विदेशों में भी काम कर रहे हैं। तो आपके सामने अभी पेश किया जा रहा है निमूड़ा। ये निमूड़ा हमारे मांगनिया लोगों का गया हुआ है, प्रस्तुत करना जा रहा है आकम खान।

0: मात पिता परमात्मा मिले न दूजी बार है, मात पिता परमात्मा मिले न दूजी बार है, जो करे वंदना या की हो जावे भवसु पार है, जो करे आलोचना या की वे जावे नरक का द्वार है, मात पिता परमात्मा ने वंदन बारंबार है, वंदन बारंबार है।
1: राम राम रतन भाई, राम राम। माता पिता ने तो आज घनी याद कर रही है।
0: अरे राम राम भाई, राम राम कंचन आओ। अरे देखो माता पिता ने तो
1: 24 घंटा ही कम पड़ जावे।
0: हाँ,
1: याद कर।
0: आपने तो यूं कहवे, आपने भारतीय संस्कृति में एक माता पिता का चरना ने धोन वाको पानी पियो तो आप वहां का ऋण उरण नहीं बह सको।
1: बस, और वाकई भाई माता पिता की तो और कोई भी संबंध पूरा नहीं कर सके।
0: बिल्कुल। तो कंचन, मैं दो लाइन याद आ रही गीत का द्वारा आप सगले ही श्रोता बंधुरो स्वागत करा। हाँ, लोक और पर लोक सुधर गया, मत कर काम बुराई को, माँ बाप की सेवा कर ले, मत बन दास बुराई को।
1: वाह वाह,
0: मत बन दास बुराई को। तो आप सुन रहे गावरी बातें कार्यक्रम, अने कार्यक्रम में आप सगला जनारो खूब खूब
1: स्वागत है,
0: हार्दिक अभिनंदन है। आप सुन रहे रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM,
0: सुनता रहो
1: मुस्कुराता रहो।
0: तो भाई आज उस रात शुरू हो गया है कंचन। आज पूर्णिमा है और आज उस रात शुरू हो गया, तो आप उस रात अपना पूर्वजा का करा।
1: बिल्कुल
0: भाई, माता पिता उम्र वाला वे जाओ तो वे जावी है।
1: सही बात है, अमर तो कोई होवे कोनी,
0: अमर तो कोई होवे कोनी। घर में बुजुर्ग है, दादाजी दादी जी जो भी है अपना परिवार वाला, तो वहाँ की याद कर लिए और वहाँ का सम्मान कर लिया, आपस राद रखा।
1: सही बात है, घना ही चोखा लाग गया संबंध देखो भाई, पर आ भी सच्चाई है, कतरो कटवो सच है कि भी सबने जानो है।
0: जानो बिल्कुल, वो क्या मृत्यु एक अटल सत्य है,
1: मृत्यु अटल सत्य है।
0: और विनय जत्रा आप जल्दी स्वीकार कर लो, टेंशन फ्री रहे वो।
1: क्योंकि एक ने एक दिन तो आवनी है,
0: आवनी
1: पर भाई आप ही बता रतन, तू मने कह देवे कि थारी मृत्यु काले हुआ वाली है, तो मने क्यान को धक्को लाग गए।
0: सही बात है,
1: वो मतलब ये कड़वो सच है, पर एक्सेप्ट करनो यानी स्वीकार करना भी कतरो मुश्किल है।
0: वो कह कंचन केवा कथनी और करने में घणो अंतर पड़े।
1: हाँ,
0: अब मनीष के देख भाई, तू काले या परसों जाओ वाली है, हाँ तो थाने तो खबर पड़ी तो आघात लागी, पर पहले आघात मने लागी समय का पहली मर जाओ, हो मैं तो परसों ही जाओ वाली हूँ, घबरा घबरा नहीं परेशान हो जाओ।
1: बस ये वास्ते तो इन्हें गुप्त रखियो है भगवान भी।
0: हाँ,
1: इन्हें नहीं पतो लाग गए।
0: बिल्कुल, एक सेकंड पचे कई वे वा भी ठाको नहीं,
1: वो भी ठाको नहीं।
0: बिल्कुल, फिर भी जो जा रहा है अना आप देख रहे हैं, तो आपने लागे एक दिन आपने भी अनी दुनिया जानो है, फिर भी कंचन लोग भाग मोह माया में फंस और अत्रो अनर्थ करे है कि आपने बुजुर्गा की हालत खराब करे, जो मने बिल्कुल यू लागे को हो वणी टाइम पे कसान भूल जावे कि आपा भी अनी दुनिया में एक बार जानो आपने भी, और अनी उम्र में आपने भी आनो है।
1: हाँ, यानी आपने भी बुजुर्ग होना है।
0: हाँ, आपने भी बुजुर्ग होना है, आपने भी काले टाबर बड़ा हो,
1: आपा भी पराधीन हो जाए,
0: पराधीन हो जाए, और काले आज आपा जो कर रहे हैं अपना माँ बाप का साथ में, काले अपना साथ में भी हो।
1: सही बात है, टाबर देखो हर आदमी का ही, आपने अनुभव नहीं तो जीवे टाबर देखा बे, धीरे धीरे करके वो भी देखे कि भी घर को माहौल यान है, मारा पिताश्री या मारी माताश्री यान, मारी दादी सा या दादा सा के वास्ते यान करे तो वो भी करवा लाग जावे भी, कोई मोटी बात को नहीं हो।
0: बिल्कुल सही है। तो और कटेक मान लो डर का मारे घनी जगह पे कई माता पिता अतरा तेज वे बालक वहां का दबन रहे वे।
1: हाँ, बोल नहीं सके,
0: बोल नहीं सके, और मान लो वे आपकी सेवा कर भी ली दी, पर आ रहा जो अपना माता पिता ने परेशान कर रहा तो वो पाप कटी छुपी रही गई।
1: सही बात है, मान भी देखो आपा का ही है कि मनुष्य मात्र से छुपा सका, पर भगवान से थोड़ी छुपा सका।
0: बिल्कुल,
1: और कर्मा की गति तो घनी गुहे हुआ है, कतरी छुपा लो लेकिन जो बीज पड़े रो है वो तो उगसी उगसी
0: उगसी, और कंचन चक्रवर्ती ब्याज समेत रिटर्न होसी।
1: हाँ,
0: कतरी बार आपा देखा कई भी कारण नहीं वे, और मोटो झगड़ो हो जावे,
1: मोटो झगड़ो
0: पाई पे आ जावे लोग,
1: बस मोटो झगड़ो हो जावे, और वो सब का ही है। देखा जाए तो आ कर्मा की गति है कि अच्छो करोड़पति, माता पिता सब कुछ है, घणो ही धन वैभव कि देखो अठे घणो पैसा है, पर पच्छे भी कही है कि भाई सेवा करवा वालो कोई कोई नहीं,
0: कोई कोई नहीं। बिल्कुल, तो वह भी देखो कर्मा की गति,
1: वह भी कर्मा की हाँ, गति है।
0: पर वे का बावजूद भी मैं तो क्यों, मारा कर्म खराब है।
1: हाँ,
0: पर अबे तू देख रही है तो कहीं तू भी अगर मारे न्यान भेजा ही तो थारा मेन मारा में कई फर्क है।
1: कई फर्क रही, सही बात। किने तो पहल करनी पड़सी,
0: किने तो पहल करनी पड़से ना कि भाई चलो वाह मैं जो गलती की दी वाह की दी, पर आ वाली पीढ़ी ने सोचना छा वे कहीं भी की दो माँ के भी अणी रस्ते ही जाना माँ के एडो कहीं नहीं करना। तो कोई समझदार वे समझ जावे तो वहां के पास रिटर्न नहीं करना पड़ी, नहीं तो हर एक ने यो ही है रिटर्न करना ही पड़े। तो वो मैंने याद आ रही दो लाइन, जीव्या जत्रे मात पिता की सेवा।

0: तो भाई जीते जी जो करना वे जीते जी करो, दान पुण्य करना वे, माता पिता की सेवा करनी वे, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना वे, तो जीते जी लो, पछे कई कोनी।
1: सही बात है बिल्कुल। और कठे कठे तो कई हुआ है कि भाई उल्टो सिस्टम हुआ है, अखे जीते जी तो कोई पूछे को नहीं, और पछे जब स्वर्ग से तार गया जब कोई देखवा वालो नहीं है, जब देखो छप्पन भोग को
0: अरे पचे तो श्राद्ध
1: आयोजन करो।
0: करे, और श्राद्ध में देखो पहला श्राद्ध में आपने कई वे बैठा है थोने,
1: हाँ
0: ओ आजकल तो गुलाब जामुन खीर तो बानी बानी, हर
1: हाँ
0: श्राद्ध में खीर में हो ड्राई फ्रूट्स डाली, पचे गुलाब जामुन पकोड़ा, घनी वेराइटिया बढ़ गई
1: घनी वेरायटी
0: श्राद्ध
1: बढ़
0: में
1: गई। अबे तो कहिए दिखाणो घणो हो गयो बे।
0: दिखानो। और यो तो आपा खारिया जो खवारिया, आपा
1: हाँ
0: अपना बुजुर्गा का आशीर्वाद लिदो कि नहीं लिदो, बाकी आत्मा ने ठारी कि नहीं ठारी वो
1: बस
0: आपा ने
1: खास बात
0: देखनो।
1: तो वो मायने रखता है।
0: हाँ वानू 2 दिन पहली सूचना आई मारे भी श्राद्ध में जावा को न्योतो आयो, पहलो श्राद्ध है तो के भाई आप क्या आनो ये, मैं कहूँ हाँ भाई आवा, व्यवहार साचवनो तो आनो तो है ये, पर पाछे बाकी सब बाता करे क्योंकि वे जीते जी वाका सास ससुर ने बिल्कुल
1: पूछा ही कोनी।
0: पूछा कोनी। और वाका ससुरा जी का हाथ कोई बढ़िया घर बनायो सको, अपार्टमेंट में मोटो फ्लैट, खुद की कंपनी फैक्ट्री है, वीका बावजूद भी एक ही तो बेटो बहु है, चार बेना है, चार ही बेना रिश्तों तोड़ दी, दो बेना ने किन्नी बुलावे को नहीं, माता पिता ने वाके रोटियां नहीं बनानी, बनानी में खुद बनाओ खाओ।
1: ओह
0: हाँ एडो नियम, एक दिन कई वे पिताजी कह दी दो शाम का टाइम पे कटी जी मनाया भाई, सुबह को भारी खानो वे गयो, जो
1: हाँ
0: बहु
1: हाँ
0: पूछो शाम को कई बनाओ,
1: काई
0: तो
1: बनाऊं
0: वे क्यों था जो छावे जो बनाओ आज तुम्हारे को नहीं खानो,
1: सही है
0: बस वही बात ने लेन बैठ गई, वहां के तो खाने को नहीं, वे तो शाम को खावी को नहीं।
1: खावे को नहीं। अरे
0: अरे कतरो
1: भाई
0: बहानो छावे, जबकि वहां के सासू जी बना रहे अबे वहां का लिए, हाँ तो
1: हाँ
0: भली बनाओ जदी को छोड़ दी दो।
1: वही तो। आपा अपना टाबर ने कतरा मनुआर करे, कतरी बार वो नकारा आपने, पछे भी आपा बाकी फीलिंग ने कतरी केयर करा है?
0: बिल्कुल, तो कंचन अगर सासू जी के गंभीर बीमारी ही,
1: हाँ
0: बाकी सेवा भी नहीं की दी बेटा बहू, ससुर जी करता, ससुर जी बहुत समझदार हा, करता करता करता वे पर आ गया,
1: पर आ
0: परवा
1: गया।
0: ने आराम मतलब यूं महसूस नहीं वेवा दी दो क्या बीमारी है तो, या कि सेवा नहीं करनी, कपड़ा बदलाना नीलाना धुलाना, वाके खानो पकान खिलानो, पचे
1: बताओ
0: फैक्ट्री जानो,
1: बताओ।
0: हाँ तो भी वे सब की दो। अबे वे तो पर आ गया, अबे वे एकला रहा, एक टाइम रोटी खानी वे तो रोटी और साग डब्बा में है ले लो और खा लो, रखवा वाला कोई को नहीं खानी वे तो वान, शाम को तो माका नाम की आज दिन तक बनी कोई नहीं।
1: बताओ बहुत बुजुर्ग की
0: हाँ
1: स्थिति
0: तो
1: यान।
0: वे अबे घर में रेवी नहीं, वहां का पाई अत्रो पैसो है, बेटा बहू ने तो खूब दे रखियो फिर भी वे खुद को राख रखियो, तो वहां को कही है दो घर है।
1: और चाहिए भी।
0: हाँ एक घर वहां को राजस्थान में, एक घर गुजरात में, तो वे राजस्थान का घर ने बढ़िया तैयार कर दी दो, और वे अबे राजस्थान का घर है आवे, वहां की चार बेटिया तीन तो विदेश में रहे, एक भारत में रहे, वे हर साल एक बेटी काटे जाई 2-3 महीना रहन आई, पचे दूसरा देश में जाई वटे बेटी काटे रहन आई, पचे तीसरी बेटी काटे
1: बेटा
0: रहन आई,
1: बेटी सब समान।
0: हाँ तो चार ही बेटिया काटे ज्यादा रेवे,
1: बहुत बढ़िया
0: क्योंकि घर में तो आने पानी को भी भाव को नहीं
1: सही
0: पूछे,
1: बात है। और फिर भाई रोज की तू तू मैं भी अच्छी को नहीं।
0: और वे कहीं पतो वे दब गया या समाज को डर कि वे घर में बिल्कुल नहीं कहे था मारला रहे शानकार है वो।
1: देखो समझदार आदमी भी वो सच्चाई ने जाने नहीं कि भी देखो जो बदलवा वाला हो वो ज्ञान करे ही कोनी
0: हाँ
1: है
0: वो ही है।
1: जी। मैं मानवता हुए नहीं वो।

आप हो रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM खबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो।

0: रो भेस पुरानी पड़ गई चूंदड़ी।
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई देखो इस शरीर ने काय की उपमा दी है, चुनरी की उपमा,
0: चुंदड़ी के भाई एक चोलो है और इन्हें आप वस्त्र भी कह सकते।
1: कबीर जी भी कवे ने बिनी बिनी रे, बिनी रे चुनरिया,
0: हाँ
1: काहे का ताना काहे का माना, बिनी बिनी बिनी रे चुनरिया।
0: सही बात है। तो गावरी बाता कार्यक्रम में पाछा अपना सगला श्रोता बंधुरो स्वागत करा। हाँ और कंचन जो मैं बात करूँ वा हकीकत है। तो अबे वहां कुछ श्राद्ध आयो क्योंकि अबे वेके मैं खूब कमा ली दो मारे गई करनो आराम घूमो तो अटे घर में रेन टेंशन मोल लेनो क्योंकि बेटा बहु टाबर नहीं कहीं सिखा दी दो टाबर भी नहीं बोले।
1: हाँ
0: अबे टाबर ही नहीं बोले घर में
1: तो कही है, बहुत हो है।
0: हाँ
1: मैंने रोज ही रोज एक ही दो बात ज्ञान कहता रहा कि देख थारे दादा सतने पीसा को नहीं देवे, देख वो कई करे है या जो भी कुछ है, छोटी छोटी बात
0: हाँ,
1: मीन में एक निकाल निकाल
0: हाँ
1: कच्चे तो हुआ ही बालक,
0: हाँ
1: ने जान भी घड़े वया नहीं घड़ी जावे।
0: अरे यदि मोटा ही नहीं समझ रहा तो बालक तो बालक ही
1: बस
0: हुए।
1: बालक तो बालक ही हो और वाने तो माफ भी करवा
0: हाँ
1: कर देना
0: तो
1: चाहिए।
0: वे अबे घर में बहुत कम रहे आवे 8-10 दिन रेन पचा निकल जावे
1: अच्छा निकल जाओ।
0: बिल्कुल अधिकार नहीं छोड़ियो कि ये तो बिल्कुल ही नपर पटवे जाए आवे 8-10 दिन रेन बाकी बाकी फैक्ट्री बेटो चला रहे पर वे वाके बैलेंस राख रखियो तो वे वाके घूमे और बाकी कड़ी मेहनत है बचपन लगान अतरी मेहनत के दीख वाका हाथ का गुली डंडा है ये वाका हाथ मेहनत करन पैसा बनाए जो कोई वाने कह न सके
1: कह नहीं
0: कथा
1: सका।
0: पैसा कसान वापर रहा ताकि पूरा समाज देख रो कि कड़ी परिस्थिति में ऊंचा आया जो तो घना वाने वाका रिश्तेदार भी कहवे करे था हसे अगर बेटा बू भाव नहीं पूछे तो था बेटिया काटी रो अटे घर में आओ ही कही लेवा अहमदाबाद में नहीं तो एक मकान ले लो वे जगह जगह मकान लेन कई करूं।
1: सही बात है। और मकान भी अवेर नो पड़े भाई,
0: हाँ अवेर नो
1: और
0: पड़े
1: वो सारो पैसा वापस मकान में लगा देवे तो कई मतलब है,
0: सही बात है।
1: बैलेंस भी
0: और
1: जरूरी है नहीं।
0: वाको पेलो श्राद्ध आयो तो बेटा बहु के वे यो बनानो वो बनानो वो बनानो तो
1: किका
0: आश्चर्य
1: माता जी
0: वे
1: का।
0: हाँ वाके धर्म पत्नी को पेलो श्राद्ध आयो तो श्राद्ध तो खबर है करी जे तो बेटा बहु हाउ बतावा के लिए नहीं नहीं मम्मी को श्राद्ध तो यू मेनो छावे अतरा मेहमान ने बुलाओ वाने बुलाओ वाने बुलाओ
1: पछे गड़ी
0: जगी।
1: चोखी लागवा
0: हाँ
1: लागी।
0: तो सबने आश्चर्य वेक देखो जीते जी तो मात पिता की सेवा को नहीं के दी जीते जी तो माने पूछो को नहीं अरे मैं मरिया बात कहवे के यो खिलाओ वो पिलाओ श्राद्ध में प्राणी ने मिली अरे था जीते जी जो किदो वो इज माने मिली
1: वही मिली।
0: पछे आपा कतरो भी करा तो
1: और
0: मिलवा
1: जीता जी
0: वालों
1: तो
0: को नहीं।
1: आशीष दी मिले, जीता
0: हाँ
1: जी आशीष दिया जावे।
0: बिल्कुल। और वाको विचार अलग है वे के मुँह वहां का नाम को स्कूल में कमरों बना दू मैं वहां का नाम की प्याऊ खुलवा दू पर मुंह श्राद्ध मोटो नहीं करो मोटो करन मारे गई करनो
1: सही
0: वे तो
1: बात है,
0: अबे
1: समझदार।
0: हाँ वे के वे मुके एक जगह पे तो रह ही नहीं रहो करो जिका नाम कमाणो रहो समाज में जो करो वे तो किदो जो दुनिया ही जाने की खूब सब काम अच्छा किदा बाकी पत्नी शांति ब्याज दी सब काम बेस किदो हो कर काढ़े अबे श्राद्ध करो तो अबे बेटा बुना लाग्यो हो खर्चो माने करना पड़ी तो लड़ाई की दी यो तो खर्चो यो लास्ट खर्चो थानिस करनो पचे खर्चो ही गये चार ही बेटिया तो बोली कोने जो बुलावी नहीं वाने तो बच्चे पिताजी को मन माने यदि मारी छोरिया तो वहां का घरे मुंह से श्राद्ध करूं
1: सही बात है, सही बात है।
0: वे क्या
1: बताओ।
0: राखनो तो राखो राखो ही मती वे क्या वगैरह वे निकल गया घरों करनो में तो श्राद्ध करो वाके पत्नी का नाम का दान करनो वे कटे भी कर ले
1: कठे भी कर ले।
0: तो पचे अभी बेटा बू कह करे फोन करे तो वे उठाई भी कोनी पचे वे की
1: तो
0: दो
1: बात है केवल अठे वो बाबूजी की नहीं है, बल्कि घर घर में ज्ञान के बेचारा बाबूजी हो गया है
0: हो
1: जो कि
0: गया।
1: परेशान है।
0: हाँ बिल्कुल। और वाके तो जो धार रखे वो इसके दो स्कूल में कमरों बनवा दे दो प्याऊ खुलवा दे
1: बहुत
0: दी।
1: बढ़िया, मतलब एक सोच अच्छी।
0: हाँ
1: और देखो भाई उम्र में चाहे वे उम्र वाला पण कहिए कि पीसा में भी ताकत हुआ है, ई वास्ते वे ज्ञान को निर्णय लेवा में सक्षम हो
0: हाँ
1: पाया।
0: सक्षम है वे वाके बेटा ने कही देनो कोई भी मैं वे न तो किन्नी
1: हस्तक्षेप
0: कहवे
1: नहीं।
0: नहीं किन्नी पूछे और वाके जो करना हो वाके बारोबारी कर ले कोई रिश्तेदार आवे वाकी भी बेना है वाके भाणेजा भाणेजी है सबने वाके देनो वे पर बारा ही दे आवे सबका घरे जयावे
1: बहुत बढ़िया, बहुत
0: सबने
1: अच्छा।
0: जो देनो वे दे आवे वाका उदी कहीं राखी नहीं रखियो वे तो वाका घरे कोई भी परा जावे चाय भी बनान नहीं देवे तो रिश्तेदार सब जाने
1: सब
0: पर
1: जाने
0: कोई कोई एड़ा नफरपट हो जावे
1: परवाह नहीं
0: कंचन
1: है।
0: हाँ परवाही नहीं करे कि ये इस लोग काले कई कही पर मैं तो कहूं कि कटे कटे अपनी बेटी एडी हुए तो पियरों भी तो शिक्षा देवा
1: सही बात। अरे पियर से तो सब कुछ शिक्षा मिले
0: शिक्षा मिले
1: है, पर
0: बिल्कुल
1: कही है कि अबे थोड़े से चलन आपा देख बात करे तो ज्ञान कह सका कि बेटी ना आपा अलग सीख दे रहा है ना।
0: हाँ।
1: बेटी की सास तो बुरी लाग गए।
0: हाँ।
1: बेटी के ससुराल वाला सब बुरा लाग गया माता पिता ने, और वट है आपा चावा कि बहु ने आपनो सारा परिवार अच्छो लाग गए।
0: सही बात
1: तो भाई ये थोड़ी संभव है,
0: बिल्कुल
1: की भी तो माए वही दे रही हुई तो जान को वो बयान को तो काटता।
0: सही है, तो श्राद्ध करो भले आपा मना नहीं करा श्राद्ध करो, पर मैं तो आपनो केनो यो ही है कंचन की जीते जी बुजुर्गा को जी मत दुखाओ।
1: बिल्कुल भावना सो करो, श्रद्धा सो करो।
0: बिल्कुल आने ठाए कि ये बुजुर्गा को दिल दुखायो पर तो भी था था को फर्ज अदा करो।
1: बिल्कुल
0: अच्छो की प्रतिक्रिया अच्छी हो सी,
1: अच्छी हो सी।
0: उन्हें कहे कि आप जो भी करा जो भी बोल रहा ये
1: ब्रह्मांड
0: में
1: सुने।
0: हाँ ब्रह्मांड में घूमन ये पाचा देर सबेर अपना पास ही
1: अपने पास ही आवे।
0: तो अपना अपने रीतो अपना बुजुर्गा को जीव नहीं दुखनो छावे। हाँ जटे गलती वे वाकी वाने प्यार को भाई अटे था कि गलती है, पर आप अगर खानो बनावो छोड़ दो, वाको बोलवो छोड़ दो, पोता का बच्चा बच्ची ने बोलो छुड़ा दो, यो तो बचे पाप नहीं है तो कही है।
1: सही बात है, ज्ञान की यातना जिन्हें 12,000 कह भी नहीं सका,
0: कह नहीं सको, से भी नहीं सको,
1: सह भी नहीं सको।
0: तो एड़ी हालत है आज बुजुर्गा की। बाकी कटे कटे जटे है मान सम्मान बटे बुजुर्गा को है भी सही।
1: हाँ,
0: पर
1: थोड़ी जना घड़ी पूछे
0: मात्रा 100% में 20% का ही मान्यता भी, 80% आज का बुजुर्ग अपना रोता तड़पता इस वाका जावे। रा की घर में तो दबान रा की वाने वाने हर ऋतु कंट्रोल करी, वे कटी फोन कटे बात नहीं कर सके बेन बेटिया हूँ। आजकल यो कही हो गयो बेन बेटिया आपा भी तो क्योंकि बेन बेटिया। हाँ
1: सही
0: आज आपा ने पियर जावो छूट जाए तो आपनो जीव नहीं दुखी।
1: मतलब ये कि ज्ञान की यातना है या भी बहुत ही गजब है। मैं भी ज्ञान को अनुभव करो कि बुजुर्ग के लोग अगर फोन करे तो चौकन्ना हो जावे कि भी वे कही अपने मन की बात ही तो कही और थोड़ी बहुत बढ़ार कह रहे हो तो यो सोच लो भाई यहाँ की अबे बुजुर्गो और टाबर एक सही तो हो जावे,
0: बालकन बुड्ढा तो समान होवे।
1: एक सही हो वै।
0: बिल्कुल
1: तो
0: और अबे घर में कोई नहीं बोली तो क्यों यू लागे ना चलो। और हरेक की इच्छा होवे कि भाई बेटे आजकल पियर में कम ही आवे, क्या आजकल सब जगह पे माहौल एडो को एडो हो रहे हो। आपा सगला की नहीं कहवा पर मोस्ट ऑफ माहौल एडो हो रहे हो है कि वह सब आप आपके घर में राजी, पचे बच्चा का पढ़ाई की जिम्मेदारियां ये वे जाओ तो आ ही नहीं सके।
1: सही बात
0: तो माँ बाप की इच्छा रहे चलो बेटियों बात तो कर ला कम से
1: बात
0: कम।
1: तो कर ले सही है।
0: फिर भी अगर आप वणी में भी डाउट करो तो वो तो कोई इलाज नहीं है। अरे भड़े बैठ जाओ ना था ही बोलो कलाओ भाई था बात कर कर तो मानना ही दो
1: सही
0: भाई
1: बात
0: बात कर ला
1: थे भी
0: बेनू।
1: बात कर लो और वो भी बेटी है अपनी माता ने अपने पिता ने वो भी तो जाने वो भी तो नब्ज देखी जी।
0: हाँ
1: मान लो कि वो थोड़ी सी बड़ा अरबी कह रहे हो तो भी वो भी तो वठे ही पड़ी है उन्हें भी तो ठा है।
0: हाँ बिल्कुल। पर आजकल देखता देखता अपने आंखें का आगे आप खुद देख रहे हाँ बड़ा बुजुर्गा को कई हालत हो रही है, बेन बेटिया की कई हालत हो रही है। तो मैं तो क्यों श्राद्ध में आपके भले आप 5 ब्राह्मण ने जिमाओ भले 15 ब्राह्मण ने जिमाओ पर घर की बेन बेटिया को अधिकार मत छीनो और बुजुर्गा ने प्यार दो सम्मान दो।
1: बस
0: बच्चा ने आप प्यार और विश्वास रखा तो बच्चों खुश हो जावे, बस यानी बुजुर्गा ने भी आप प्यार और विश्वास रखो तो आपको दिल को आशीष अपने मलतो रही।
1: और बुजुर्ग लोग देखो भाई कुछ और नहीं करे तो कम से कम आशीष तो हर वक्त ही देवे।
0: बिल्कुल देवी है आज अत्र प्यार बोला तो वे खुद कहवे को हो मारा तो भाई बेटा बू कलयुगी कोई ना मारा तो बेटा बू सत्योगी है घना अच्छा राके
1: घना अच्छा
0: जतरे तो आपने कतरी दुआ मिल जावे।
1: बिल्कुल
0: तो वाह भाई कंचन बाता तो करो अतरी काम आवजे भाई राम राम
1: राम राम भाई राम राम
0: आपकी 107।

ओम शांति, मैं हूँ मोनिका पटेल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी जो है इसी तरह से जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो ईश्वरीय ज्ञान जो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ज्वाइन करके प्राप्त करते रहिए मेरी तरह। और सदा सदा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष कार्यक्रम में सफलता का आधार मूल्य शिक्षा इस एपिसोड में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज हम लोग जो है एक नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे और कल आपने अच्छी प्रैक्टिस भी की होगी, मैं ही सफलता हूं इस विषय का, और इस विषय पर आपने चिंतन भी किया होगा। तो चलिए, एक नया विषय आज हमारा है, सफलता का आधार मेरे संस्कार। जी हाँ, जीवन में कहते हैं कि संस्कार बड़ा रोल अदा करता है, तो मेरे संस्कार ही मुझे सुख या दुख या सफलता या असफलता का कारण बताते हैं। तो इस विषय को गहराई से समझेंगे और आज के हमारे विशेष मेहमान जिन्हें आप सभी जानते हैं राजेश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज का उनका ये विषय है सफलता का आधार मेरे संस्कार। तो चलिए उनसे सुनते हैं। आप सभी की तरफ से राजेश जी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, ओम शांति।
1: नमस्ते जी, ओम शांति।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास।
0: जी जी जी, मैं चाहूँगा कि आज एक नए विषय पर आप बात करने वाले हैं, सफलता का आधार मेरे संस्कार। तो ये विषय क्यों आपने चुना, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें।
1: ये इसलिए चुना क्योंकि एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है, जो व्यक्तित्व होता है, उसको बनाने में उसकी आदतें, या जिनको हम इंग्लिश में कहें हैबिट्स
0: जी,
1: या जिसको हम संस्कार भी बोलते हैं, वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं
0: जी।
1: और व्यक्ति अपने आप को अपने संस्कारों के हिसाब से ही जानता भी है और पहचानता भी है। अगर वो कहता है मैं ये हूँ, तो वो उसके संस्कारों के आधार के ऊपर है, उसकी आदतों के ऊपर है। और आदतें एक ऐसी चीज़ है जो एक बार आपकी बन जाएं तो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और फिर वो अपने आप ही प्ले करती, हमें पता ही नहीं लगता कि हम वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। माना वो हमारी ज़िंदगी का कैसा अभिन्न हिस्सा बन जाती हैं, जिनको अगर हम बाद में बदलना चाहें तो व्यक्ति कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन आदत को नहीं बदल सकता हूँ, क्योंकि उसको लगता है कि ये काम ऑटोमेटिकली ही हो रहा है। तो इसलिए अगर हमारी आदतें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटली अच्छी आदतें, पॉजिटिव आदतें हमें सफलता की ओर लेके जाएंगी
0: जी, जी।
1: क्योंकि सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस हर व्यक्ति की ज़िंदगी में वही आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर गांधी जी जो थे, जब साउथ अफ्रीका में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया तो अंग्रेज़ों ने तो हिंसा का रास्ता अपनाया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे अहिंसा का रास्ता अपनाना है। उन्होंने लाठी नहीं उठाई, उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक अलग संस्कार, एक अलग आदत बना ली और उसी एक संस्कार के कारण, उसी एक आदत के कारण वो 20वीं सदी के सबसे महान शख्स बन गए और उनको सबसे महान शख्स बनाया गया। लेकिन नॉर्मली हमारी आदतें क्या होती, जो डे टू डे लाइफ में हमें सिखाई जाती हैं या बताई जाती हैं, समाज में जो आम चलती हैं, जो दूसरों को देखते हैं, कभी हमको ईंट का जवाब पत्थर से देना है, लेकिन वही एक आदत एक व्यक्ति को इतना महान बना दिया और वही एक आदत एक व्यक्ति को वो जेल तक पहुंचा देती है, गुंडा बना देती है, डाकू बना देती है। जो डाकू होते हैं, गुंडे होते हैं, उनके सामने भी ऐसी चैलेंजेस आते हैं ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि केवल गांधी जी तो बेकसूर थे, लेकिन बेकसूर होते हुए भी उन्होंने एक अच्छी आदत, एक अच्छे संस्कार को अपनाया। ऐसे जो हम कहते हैं समाज में जो लोग बुरे बन जाते हैं, वास्तविकता में जन्म से कोई बुरा होता नहीं, लेकिन उनके सामने ऐसे चैलेंजेस आते हैं। उनके सामने भी हो सकता है कि उनको भी किसी ने दुख दिया हो, तंग किया हो, लेकिन उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, जिसके कारण उनको भागना पड़ा और जो इतने अच्छे व्यक्ति थे वो चोर बन गए, डाकू बन गए, गुंडे बन गए।
0: बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया राजेश जी। मुझे लगता है कि संस्कार को लेकर काफ़ी चीज़ें हमारे जीवन पर उसका असर पड़ता है और जैसा व्यक्ति चिंतन करता है, सोचता है, उसके आदतें बनने शुरू हो जाती हैं और फिर ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्शन पर रिएक्शन कैसे करें। अगर अंग्रेजों ने हिंसा का मार्ग अपनाया तो गांधी जी ने उसका विरोध में अहिंसा के रूप में उनके साथ में सामने खड़े रह गए। तो यहाँ पर हमारी चिंतन की धारा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे संस्कारों के साथ में। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं या किसी व्यक्ति का स्वभाव देखते हैं या उनका रवैया देखते हैं, तो हमें ऐसा नहीं कि हमें भी उसी रवैया में बात करना है या उसी तरीके से बात करना है। आप अलग भी अपने जो है मानवीय मूल्यों को लेकर भी आप उनके साथ सामने खड़े हो सकते हैं। और देखिए, हमारे सामने बहुत ही सुंदर उदाहरण गांधी जी का है। हिंसा के प्रति वो अहिंसक रूप में खड़े होकर जीत हासिल की। तो हम लोग आज के समय में कभी ऐसा विचार नहीं करते, या करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग सोचते हैं कि भाई कैसे होगा कैसे होगा, है ना। तो आइए इस विषय को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि संस्कार तो पुराने भी होते हैं, पूर्व जन्म के भी होते हैं, तो फिर वो हमारे सफलता का आधार कैसे बनेंगे।
1: देखिए, कहते हैं ना कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं
0: जी,
1: कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है ना, अगर मिट्टी में भी हाथ डाल दे तो सोना बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उस में वो शायद किस कोई उसके पिछले जन्म की बात है, लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर कहेंगे कि अगर वो मिट्टी में हाथ डाल दे तो सोना बन जाता है, क्योंकि उसकी जो आदतें हैं या उसके जो संस्कार हैं वो ऐसे हैं कि अगर वो किसी भी कार्य को करेगा तो बहुत निष्ठा से, बहुत मेहनत से, पहली बात तो हाथ में नहीं लेगा अगर उसने कोई कार्य करना है तो। लेकिन अगर लेगा भी, वो तभी लेगा अगर उसको ये पता होगा कि मैं इसको ईमानदारी से, सच्चाई से, मेहनत से, पूरी निष्ठा से करूँगा। और जब वो इन अपने मूल्यों के साथ उस कार्य को करता है तो उसको सफलता मिलती है। और जब वही कार्य वो बार बार करता है, क्योंकि दो व्यक्ति हैं और एक कार्य को दो व्यक्ति एक ही समय पर करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति असफल हो जाता है, एक व्यक्ति सफल हो जाता है, क्योंकि वो उसी कार्य को अपने उन्हीं मूल्यों, उन्हीं गुणों के साथ करता है, इसलिए वो सफल हो जाता है। तो अगर हम देखें, सफलता असफलता में केवल इतना ही फर्क है कि अगर हम मूल्यों को नहीं छोड़ें, अपने मूल्यों पर अडिग रहें। जैसे अगर हम सचिन तेंदुलकर की भी बात करते हैं तो कहते हैं कि वो दुनिया के बेस्ट बैट्समैन आज के दिन में माने जाते हैं, तो उनके मन में भी देखिए कितनी मेहनत उन्होंने ज़िंदगी में की होगी, साहस उनमें कितनी सहनशीलता होगी, साहस होगा, कड़ी मेहनत उन्होंने की होगी, दिन में मैं समझता हूँ 12-12 घंटे प्रैक्टिस की होगी, अभ्यास किया होगा, कड़ी मेहनत की होगी, डिटर्मिनेशन होगा उनमें, डिसिप्लिन होगा। जहाँ पर उनके विद्यार्थी थिएटर में जाके पिक्चर्स देखते होंगे, वही दोपहर की कड़कती धूप में वो मेहनत में इतनी मेहनत कर रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि हम ये जो मूल्य हैं इनकी बहुत आवश्यकता है एक व्यक्ति के सफल और असफल होने में। और उन्हीं मूल्यों को हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में जब लेके आते हैं, बार बार उनको करते हैं, तो फिर जैसे हम कहते हैं ना कि व्यक्ति को किसी भोजन की आदत पड़ जाती है। जैसे बचपन में हम सबको माँ का भोजन ही अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमें आदत पड़ी होती है कि माँ का भोजन खाने की आदत होती है। तो ऐसा नहीं है कि अब हर एक को अपनी माँ का भोजन ही अच्छा लगता है, लेकिन एक व्यक्ति को दूसरे की माँ का भोजन क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि बचपन से उसकी आदत जो है उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है कि मुझे वही भोजन अच्छा लगेगा जो मेरी माँ बनाएगी, भले दूसरे की बनाएगी तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, बाहर का अच्छा नहीं लगेगा, 5-स्टार का होटल का अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें वो आदत पड़ चुकी है, वो बचपन में अनकॉन्शियसली पड़ी हुई है। इसी तरह ये जो सफल व्यक्ति होते हैं उनकी आदतें ही उनको क्या बनाती हैं, सफल जो है वो बनाती है। लेकिन कॉन्शियसली ध्यान देकर के हम उनको परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जैसे बताया शुरू में, क्योंकि उनको बदलना क्या है, बड़ी मुश्किल है। उसके पीछे रीज़न क्या है? जैसे फिजिक्स में एक लॉ है, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि कोई भी वस्तु वो जिस अवस्था में है उस अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कि हम उसको कुछ बाहर से फोर्स ना दें, गति ना दें। एक उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि मान लीजिए एक गिलास है, उसके ऊपर हमने एक गत्ता रखा है, है ना, और उसके ऊपर हमने एक सिक्का रखा है। तो अगर आप गत्ते को गिलास से जोर से खींचेंगे तो सिक्का गत्ते के साथ नहीं जाएगा, लेकिन सिक्का गिलास में गिर जाता है। माना सिक्का अपनी वो अगर वो खड़ा है उसी जगह तो खड़ा ही रहना चाहता है, वो गत्ते के साथ चलना नहीं चाहता है। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी तरह हम अपनी आदतों को बदलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि मैं ही ये आदत हूँ, मेरी ये पर्सनैलिटी है, इसको बदलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए कहते हैं अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कुछ मुश्किल है तो व्यक्ति की आदतें हैं। जैसे आपने पिछले जन्म की भी बात की, अगर पिछले जन्म की भी कुछ आदतें हैं अगर पॉजिटिव हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। कईयों के आते हैं संस्कार, जैसे मान लीजिए कई बच्चे बचपन से ही बहुत अच्छा गाते हैं, पियानो बजाते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, या उनको गीता के श्लोक बिल्कुल याद होते हैं, पिछले जन्मों के संस्कार हैं। लेकिन कई ऐसे संस्कार भी जो नेगेटिव होते हैं जो पिछले जन्मों में आते हैं, लेकिन अगर हम उनको ध्यान दें तो जैसे हमने अपने संस्कार बनाए हैं, अगर ध्यान देकर कॉन्शियसली उनके ऊपर हम ध्यान एकाग्र करें तो बहुत सारी विधियां हैं जिनके द्वारा हम संस्कारों को बदल भी सकते हैं।
0: जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आशा करूंगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को अच्छा लग रहा है कि हम अपने संस्कारों पे अगर हम लोग काम करें तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा जो है सबसे पहला प्रायोरिटी हम अपने संस्कारों को समझें। अगर वो पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, अगर नेगेटिव है तो उसको चेंज करें, है ना। लेकिन कैसे चेंज किया जाए, क्या पैरामीटर हो सकते हैं, कैसे बदले जा सकते हैं हमारी आदतों को?
1: जी, संस्कार जो है हम कहेंगे तीन तरह के हमारे संस्कार होते हैं। पहला तो है हमारी सोचने के संस्कार, सोचने की आदत।
0: जी,
1: के मन जो है हमारा 24 घंटे सोचता रहता है, तो मन को भी एक आदत पड़ जाती है। जैसे हमने बात की कुछ सेशंस में पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड नेगेटिव सेल्फ टॉक। अगर हम नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं तो हम टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, और उसका कारण यही है कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में है उसको एक आदत बन चुकी है, या स्ट्रेस में है, लॉन्ग टर्म एंग्जाइटी में है, उसको एक आदत बन चुकी है उसने नेगेटिव ही सोचना है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन वो हर एक चीज़ के उसका एक नज़रिया बन जाता है, रवैया बन जाता है कि बार बार उसके मन में नेगेटिव संस्कार ही बनते हैं। तो मन के सोचने का भी एक संस्कार है। फिर जैसा हमारा मन सोचता है वैसे ही हमारे मुख से शब्द निकलते हैं, कि जो हम सोचेंगे वैसी ही फीलिंग्स हमारे अंदर पैदा होती है। उन फीलिंग्स को, उन इमोशंस को वो अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं, उन भावनाओं को अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो दूसरी तरह के संस्कार कहेंगे हमारे बोलने के संस्कार, हमारी भाषा कैसी है, हम व्यवहार कैसे करते हैं, एक दूसरे से बातचीत कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, संवाद कैसे करते हैं। तीसरा है जो हमें नज़र आते हैं, जैसे एक्शंस, प्रैक्टिकली जो हम उनको कर्म में करते हैं और जो सुबह से लेकर शाम तक हम अपने कार्य में उनको लेके आते हैं, उनको हम कहेंगे कर्म के आधार के ऊपर। लेकिन इनका जो बेस है वो हमारे मन की सोच है, कि मन हमारा क्या सोच रहा है, मन हमारा नेगेटिव सोचता है या मन हमारा जो है वो पॉजिटिव सोचता है। तो आप देखेंगे अगर हमारे संस्कार बुरे हैं, जैसे मान लीजिए किसी में गुस्सा करने का संस्कार है, कोई व्यक्ति किसी को देखते ही गुस्सा करना शुरू कर देता है, तो वो गुस्सा इसलिए करता है कि जैसे व्यक्ति उसको देखता है उसको पता है कि ये व्यक्ति जो है अच्छा नहीं है। तो जैसे ही वो ये सोचता है कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं, उसके मन में पहला थॉट नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव जब आया तो उसके मन में भाव क्या हो जाता है, नेगेटिव ही हो जाता है, उसकी फीलिंग्स नेगेटिव हो जाती हैं उस व्यक्ति के प्रति, उसके इमोशंस जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं, इसलिए वो नेगेटिव शब्दों से ही उस व्यक्ति से व्यवहार करता है। और उसका क्या हो जाता है, वो आदत क्या बन जाती है गुस्सा करने की, जो है वो बन जाती है। लेकिन उसके विपरीत कोई व्यक्ति अगर उसके मन में भाव ये है कि व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो जैसे ही व्यक्ति सामने आएगा उसके बारे में क्या सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा, अच्छा सोचेगा, उसकी जो टॉक है उसके प्रति अच्छी है, और जो शब्द उसके मुख से निकलेंगे उस व्यक्ति के प्रति वो भी कौन से निकलेंगे, अच्छे ही निकलेंगे। और व्यवहार भी क्या निकलेगा, व्यवहार भी कैसा करेगा, अच्छा करेगा, उसका वो काम करेगा, जो वो कहेगा उसकी वो बात भी मानेगा। लेकिन अगर उसकी जगह अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो वो समझता है कि ये बुरा है, उसकी वो बात भी नहीं मानेगा, भले वो अच्छी बात भी करेगा, भले वो उस व्यक्ति के फायदे की बात भी करेगा, लेकिन उसको लगेगा नहीं ये व्यक्ति जो है अच्छा नहीं, इसलिए ये अच्छी बात कभी भी नहीं जो है वो कर सकता है। तो इसकी एक विधि है, इसका एक तरीका है, मैं समझता हूँ हम आने वाले सेशंस पे इसके ऊपर जो है वो ज़रूर बात करेंगे कि हम अपने संस्कारों को कैसे बदल सकते हैं। लेकिन आने वाले जो हमारा नेक्स्ट होगा, कुछ देर के लिए आप ऑब्ज़र्व करें, देखें अपने आप को कि कि कोई जैसे हमने एग्जांपल दी कि एक व्यक्ति जिसको आप बुरा मानते हैं जब वो सामने आता है तो मन आपका कैसा चलता है, क्या होता है, ऑब्जर्व करें अपने आप को। और दूसरी जगह जैसे ही कोई अच्छा व्यक्ति जिसको आप अच्छा समझते हैं जब वो आपके सामने आता है तो आपका मन कैसा सोचता है, शब्द कैसे निकलते हैं, व्यवहार आपका कैसा होता है।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हम लोग जो है अपने सोच को बदल सकते हैं, और सोच अगर हमारा बदलना शुरू हो जाए तो फिर हम अपने आदतों को भी बदल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद ऐसा लगता है कि हमें अपने स्वभाव या संस्कारों को बदलने में एक टेक्निकल चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, खुद का निरीक्षण बहुत ज़रूरी है। और चलिए, मैं चाहूँगा कि एक जाते जाते एक और बात अगर इससे जुड़ी हुई कुछ बात रह गई हो तो ज़रूर बताइए राजेश जी।
1: हाँ, एक कॉमन प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं कि आदतें, आपने जैसे पूछा था कि आदतें कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि उनको बदलना जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको ये समझें कि बनी कैसे। बनी ऐसे कि जब हम कोई भी काम को जो हमें अच्छा लगता है उसको हम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो हमारी जो है वो आदत बन जाती है। और साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि उस काम को कितनी बार किया जाए कि जो हमारी आदत बन जाए, इसके भी ऊपर बहुत एक रिसर्च हुई है, लेकिन और इसके ऊपर डिस्कशन भी बहुत है। एक राय नहीं है, बहुत सारी राय, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे व्यूज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ हमारी आदतें संस्कार जो हैं वो नौ दिन लगते हैं उनको बदलने में। कुछ लोगों का व्यूज है कि उनको 21 दिन लगते हैं। लगातार हम एक ही कार्य को, जैसे मान लीजिए आपने सुबह उठने की आदत बनानी है, कुछ लोग कहते हैं अगर आप 9 दिन करेंगे, लेकिन वो ये कहते हैं कि नॉर्मल सी आते हमारी 9 दिन में बदल जाती हैं, लेकिन जो मुश्किल आते हैं उनको शायद 21 दिन लगते हैं, कुछ लोग कहते हैं 64 दिन लगते हैं। अगर हमने अपने लाइफस्टाइल को बदलना है तो कम से कम 3 महीने से लेकर 9 महीने तक लगते हैं अपने भोजन की आदतों को बदलने में, एक्सरसाइज करने में, सुबह अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला जिसे हम नेक्टर टाइम कहते हैं उसको उठने में। तो पहली तो एक चीज़ है कि हमको जिस भी आदत को बदलना है, जिस भी नई आदत को लेके आना है, उसको हम क्या करें, बार बार बार बार करें, ये पहली बात है। दूसरी बात, उसको हम दिल से करें। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति हमको प्रेशर से कराए, जैसे बच्चों को हॉस्टल में होता है, वो उनको प्रेशर से कराया जाता है। डिसिप्लिन, अगर हम उनको कहते हैं डिसिप्लिन में रहो, लाइन में चलना है, तो टीचर खड़ा होगा तो लाइन में चलेंगे, अगर नहीं खड़ा है तो क्या होगा, फिर वो लाइन तोड़ देंगे। तो दूसरी शर्त ये है कि जिस आदत को भी आपने बदलना है, जो भी आपने नई चीज़ सीखनी है, उसको आप अपने दिल से करें, ना कि दूसरों से कहने से करें। और दिल से आप कब करेंगे, जब आपका लॉजिक माइंड, आपका जो तर्क करने वाली बुद्धि है, वो स्वीकार कर लेगी कि ये जो आदत है, ये जो संस्कार है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी है, ये मेरे को जीवन में आगे बढ़ाएगी, ये मेरे को सफलता तक लेके आएगी। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, किंतु है, परंतु है, तो उस प्रश्न को आप दूर करें, क्योंकि जब तक आपका जो लॉजिक माइंड है उसमें कोई क्वेश्चन है, तो हमारा इमोशनल माइंड, क्योंकि जो भाव हैं वही हमारे संस्कारों को बदलते हैं, हमारी आदतों को बदलते हैं, इसलिए इमोशनल माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसको भी हमें जो है वो दूर कर लेना चाहिए
0: जी।
1: और चौथी बात है कि हम उसको कंटिन्यूस करें, लगातार करें, जिसको हम कहते हैं डिसिप्लिन से करें। अगर हम उसको लगातार करते हैं तो हमारी आदत बदलती है, लेकिन अगर हम 2 दिन करते हैं, फिर 3 दिन छोड़ देते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन छोड़ देते हैं, तो वो हमारी आदत जो है वो नहीं बन पाती है, वो कहीं ना कहीं हमारी जो ब्रेक हो जाता है। उसके लिए हमें बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए और बहुत मेहनत की आवश्यकता पड़ती है
0: जी। राजेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे चीज़ें संभव हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से मंथन करके आपने बताया 3-4 चीज़ें। और मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्र अगर ध्यान से अपने आदतों को बदलना चाहे तो एक प्रोसेस है, प्रोसेस के साथ अगर आप करते हैं, और दूसरा एक किसी चीज़ को बदलने के बजाय अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ फोकस्ड है और उसके ऊपर काम करते हैं तब भी आपका काम हो जाता है, किसी चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका फोकस क्लियर हो कि मुझे क्या बनना है, उसी पर अगर आप ध्यान देते हो तो नए आदतें क्रिएट होंगे आपके लक्ष्य को प्राप्त करने का, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो अल्टरनेटिव चीज़ें बहुत सारी हैं, तो इस पर कई और चीज़ें जैसे कि है उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। फिर से एक बार ढेर सारी खुशियाँ, थैंक यू राजेश जी बहुत अच्छी बातें बताने के लिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ बुक, जीवन एक बहुत सुंदर किताब है। रीड इट, उसको पढ़ो, है ना। कुछ एक अच्छी अच्छी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। एक किताब रिसेंटली जो मैंने पढ़ी है और वो है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। और एक और किताब मुझे अभी रिसेंटली बहुत अच्छी लगी थी, एंड दैट वाज हू वुड क्राई व्हेन यू वुड डाई। जब हमारी मृत्यु होगी ना तो कौन कौन लोग रोएंगे। जब मैं किताब पढ़ने लगा तो मुझे ये एहसास हुआ, मृत्यु के नजदीक जब हम हैं और अगर हमने अपने लाइफ को रिवाइंड करके देखा, अगर हमारे जीवन के प्रति हमारी बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आया, तो मींस माय लाइफ इज अ वेरी रियल सक्सेस। हमें इस जीवन को देखकर खुशी में रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एक बातों को फॉलो करना है। हो सके ना तो बीच बीच में उपवास करने का। कौन सा उपवास करना है, कोई शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है, लेकिन उपवास करना है दो बातों का, और एक है न्यूज़पेपर्स का। हफ्ते में एक दिन न्यूज़पेपर को थोड़ा बंद करो, हफ्ते में एक दिन टीवी को थोड़ा बंद करो, और हो सके तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। मैं आपको कुछ एक अच्छे और किताबों का सजेशन करूंगा, अगर हो सके तो वो किताबों को जरूर पढ़ना। एंड दैट इज नंबर वन इज इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, जो आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मिलेगा। इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा रिटन बाय आदरणीय जगदीश भाई जी, बहुत अच्छी किताब है। एक और किताब मैं आपको सजेस्ट करूंगा और वो है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ये भी किताब हो सके तो आप जरूर खरीदना और पढ़ना। और एक जो सबसे अच्छी किताब मुझे लगी है वो आप जरूर पढ़ना, और वो है आदिदेव ब्रह्मा। हिंदी में ये अवेलेबल है और वो है ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू। और जैसे जैसे आप ये किताबें पढ़ेंगे, आपको ये समझ में आएगी कि यस, दुनिया जो है किस तरफ बढ़ रही है और कैसे ये दुनिया परिवर्तन हो रहा है और कैसी एक सुंदर दुनिया की स्थापना होगी।
2: From the world of light, it's time now to return to this physical world. But keep the light. The light shines from my eyes. It shines from my eyes.

also in bodies of matter. But I see the light from their eyes.

the world of light to the world of matter. But I keep the light.

शांति। आज है 27 सितंबर 2026 और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 15 दिसंबर 2011 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा हर एक बच्चे को किस स्वरूप में देख रहे हैं। तो बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। बाबा कहते हैं, ये बेफिक्र का जीवन कितना प्यारा लगता है और बेफिक्र की निशानी क्या दिखाई देती है। हर एक के मस्तक में लाइट आत्मा चमकती हुई दिखाई देती है। लाइट है, बेफिक्र है। और ये बेफिक्र जीवन बनी कैसे? तो बाप ने सभी बच्चों के जीवन से फिकर लेकर फकूर दे दिया, नशा दे दिया। जिनके जीवन में फकूर नहीं, फिकर है, उनके मस्तक में बोझ की रेखाएं देखने में आती है। लाइट नहीं चमकती है, बोझ की रेखाएं देखने में आती है। बाबा कहते हैं, आप सबको बेफिक्र लाइफ पसंद है ना, जो इस समय संगम पर ही अनुभव होती है। बाप दादा हर बच्चे को बेफिक्र बादशाह देखना चाहते हैं। अगर कभी कभी वाले भी है ना, कि कभी कभी फिक्र आ जाता है, तो बहुत सहज विधि है। जो भी थोड़ा बहुत फिक्र आता है तो बस मेरे को तेरे में बदल दो। मेरे को तेरे में बदलने की ये बहुत सहज विधि है। सभी दिल से कहते हो ना, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। तो मेरे में तेरे को समाना, मेरे में तेरे को समा देना। संकल्प कर लिया सब तेरा, तो मेरा क्या रहा, मेरा बाबा। तो आज बाप दादा बच्चों को बेफिक्र स्वरूप में देख रहे हैं। बाबा कहते आपके चित्र भी बनाते हैं, डबल ताज दिखाते हैं। बेफिक्र बादशाहों का चित्र कैसा होता है? डबल ताज दिखाते हैं, कि लाइट का ताज, दूसरा ताज विकारों पर विजयी बने हो, इसलिए ताज दिखाया है। फिर बाबा कहते, बाप दादा ने जब फिक्र लेकर फकूर दे दिया तो बेफिक्र बादशाह तो बन गए। तो बादशाहों को तख्त भी चाहिए, ताज भी मिल गया, तख्त भी चाहिए। तो बाप दादा ने तो सभी बच्चों को तीन तख्त के मालिक बनाया है। एक ब्रुकुटी का तख्त तो सबको है, दूसरा तख्त है बाप दादा का दिल तख्त, और तीसरा तख्त है विश्व का तख्त, राज्य तख्त, सबसे श्रेष्ठ तख्त। ये तीनों तख्त में सबसे श्रेष्ठ तख्त है बाप दादा का दिल तख्त। बाप दादा के दिल तख्त पर कौन बैठता है? जिसने सदा स्वयं भी बाप दादा को अपने दिल तक पर बिठाया है, वही बाप दादा के दिल तक पर बैठते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को समय का इशारा भी देते हैं, अचानक का पाठ भी पक्का करा रहे हैं। इस एक जन्म में ही अनेक जन्म की प्रारब्ध बनानी है, और संगम के समय की वैल्यू भी बाबा ने बताई है, और उसके साथ दो बातों पर विशेष अटेंशन बाबा देते हैं। वो दो बातें तो याद है ना, पहली मुरलियों में भी ये दो बातें बाबा ने बताई, समय और संकल्प। बाप दादा को सभी ने व्यर्थ संकल्प, संकल्प द्वारा देने की हिम्मत रखी है, और हिम्मत है बच्चे एक बार तो बाप हजार बार मददगार है। इस व्यर्थ संकल्प में समय बहुत जाता है। व्यर्थ संकल्प को समाप्त करना है तब दुख अशांत आत्माओं को सुख शांति का अनुभव करा सकेंगे। अभी समय के प्रमाण, जल्दी जल्दी उन्हों को वारिस बनाओ, जो कुछ न कुछ वर्षे के अधिकारी बन जाए। बाबा कहते अभी समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थी बनने की आवश्यकता है, और तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ है सेकंड में बिंदी लगाना। सेकंड में बिंदी लगाई, बात समाप्त।
तो बाबा कहते हैं आज गुरुवार का दिन, बहुत बच्चे वतन में भी आए। सप्ताह में दो दिन विशेष होते, एक गुरुवार का दिन और एक संडे। दोनों का महत्व है, क्या महत्व है? तो बाबा कहते गुरुवार के दिन को कहेंगे गुरु का दिन और गुरु से वरदान मिलता है। तो बाबा कहते रोज कोई ना कोई विशेष वरदान अमृत वेले से अपनी बुद्धि में इमर्ज रखो। वरदान स्वरूप बनना है, वरदान को खाली रिपीट नहीं करना है, वरदान स्वरूप बनना है। और दूसरा विशेष दिन है संडे, तो वह दिन होता है छुट्टी का दिन। तो बाबा कहते संडे के दिन मनाओ कि जो कुछ भी अपने जीवन में संकल्प मात्र भी कमजोरी हो, स्वप्न मात्र भी कमजोरी हो, उसको छुट्टी दे देना। तो गुरुवार के दिन वरदान लेना, संडे के दिन कमजोरियों को छुट्टी दे देना। तो बाप दादा कहते हैं ये दोनों दिन में विशेष लक्ष्य और लक्षण अटेंशन में रखो। बाप दादा ने सभी बच्चों को साथ चलने का वायदा किया है, तो चेक करो उसकी तैयारी है। सेकंड में बिंदी लगाई, संपन्न और संपूर्ण बन चले। हाथ में हाथ देना, इसका अर्थ है समान बनना। बाप का भी बच्चों से प्यार है, बाप एक को भी साथ चलने में पीछे छोड़ना नहीं चाहते हैं। साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ राजधानी में, राजघराने में आएंगे। तो बाप दादा के दिल की आश है, क्या आश है? बच्चों के प्रति समान और संपूर्ण। ये दो शब्द सदा चेक करो। बाबा कहते इसको संपन्न करना ही है। बाबा की हम बच्चों के प्रति बस इतनी आश है कि हर बच्चा समान और संपूर्ण बने, इसको संपन्न करना ही है। फिर बाबा ने टीचर्स को देखा, बाबा टीचर्स को सदा याद करते हैं। आज बाबा कहते टीचर को बाप दादा गुरु भाई कहते हैं और गुरु भाई का अर्थ है समान। योग्य टीचर बाप समान सदा सेवाधारी और सदा सफलता स्वरूप बन, सफल स्वरूप बनाने वाले। तो इसी तरह बाबा आज बच्चों को देख करके बस एक ही स्वरूप में बेफिक्र बादशाह बन। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है सदा फकूर में रह बेफिक्र बादशाह बनो। तीव्र पुरुषार्थ द्वारा संपन्न और समान बन साथ चलने की तैयारी करो। आज बाप दादा कौन सी सभा देख रहे होंगे? आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। ये सभा इसी समय ही लगती है। क्यों? क्योंकि सभी बच्चों ने अपने फिक्र बाप को देकर बाप से फकुर ले लिया है। ये सभा अभी ही लगती है। हर एक बच्चे ने अपना फिक्र बाप को देकर के बाबा से फकुर ले लिया है। आप भी हर एक सवेरे से उठते, कर्म करते भी बेफिक्र और बादशाह बन चलते हो ना। संगम युग में भी सभी बेफिक्र और बादशाह बन चलते हो ना। ये बेफिक्र का जीवन कितना प्यारा लगता है। बेफिक्र की निशानी क्या दिखाई देती है? पूछते बाबा बेफिक्र की निशानी क्या दिखाई देती? हर एक के मस्तक में लाइट, आत्मा चमकती हुई दिखाई देती है। ये बेफिक्र जीवन कैसे बने? बेफिक्र की निशानी है लाइट, लेकिन ये बेफिक्र जीवन कैसे बने? बाप ने सभी बच्चों के जीवन से फिक्र लेकर फकुर दे दिया है। जिनके जीवन में फकुर नहीं फिक्र है, उनके मस्तक में लाइट नहीं चमकती है।
लेकिन उसके मस्तक में क्या दिखाई देता है? उनके मस्तक में बोझ की रेखाएं देखने में आती है। तो बताओ, आपको क्या पसंद है, लाइट या बोझ? अगर कोई बोझ भी आता है तो बोझ अर्थात फिकर। फिकर बाप को देकर फकुर ले सकते हैं। बोझ माने ही फिकर, तो फिकर बाप को देकर फकुर ले सकते हैं। बाबा की ऑफर है। आप सबको बेफिकर लाइफ पसंद है ना? देखने वाले भी बेफिकर लाइफ पसंद करते हैं। तो बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों के, चाहे सन्मुख हैं, चाहे जहां भी बैठे हैं, बच्चों के मस्तक बीच चमकती हुई लाइट ही देख रहे हैं। तो सदा बेफिक्र रहते हैं या कभी कोई फिक्र भी आता है? पूछते बाबा, सदा बेफिक्र रहते हो या कभी कोई फिक्र भी आ जाता है? है कोई फिक्र? जब बाप ने प्रकृति जीत, विकारों जीत बना दिया तो फिक्र कैसे आ सकता है? तो हाथ उठाओ बेफिक्र बने हो। पूछते बाबा कि हाथ उठाओ बेफिक्र बने हो? बने हो सदा? सदा बने हो या कभी कभी? बाबा कंफर्म करते, सदा बने हो या कभी कभी? कभी कभी वाले भी है, हाथ तो नहीं उठाते। बाप दादा भी नहीं देखना चाहते हैं। कभी कभी वालों को बाप दादा भी नहीं देखना चाहते हैं। बाप दादा हर बच्चे को किस रूप में देखना चाहते हैं? हर बच्चे को बेफिक्र बादशाह देखना चाहते हैं। अगर कभी कभी वाले भी है तो बहुत सहज विधि है। जो भी थोड़ा बहुत फिक्र है, जो भी थोड़ा बहुत फिक्र आता है, तो मेरे को तेरे में बदल लो। सहज विधि बाबा ने बताई, जहां मेरापन है वहां फिक्र आएगा, मेरा है मेरा है। इसलिए उस मेरे को क्या करो, तेरे में बदल लो। यह हद के मेरेपन को मेरे को तेरे में बदलने की बहुत सहज विधि है। आप तो कहते ही हो मेरा बाबा, तो मेरा क्या रहा? बस बाबा के सिवाय मेरा क्या रहा? हद का मेरा तो समाप्त हुआ ना, मेरा बाबा हो गया। सभी दिल से कहते हो ना, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, तो मेरे में तेरे को समाना। बाबा कहते, ये मेरे को क्या करो, तेरे में, बाबा में समा दो। मुश्किल है क्या? फर्क क्या है तै और मैं? एक मात्रा का ही तो फर्क है, इतना छोटा सा फर्क है। संकल्प कर लिया सब तेरा, और मेरा क्या रहा? सब संकल्प ही कर लिया सब तेरा, और मेरा क्या रहा? मेरा बाबा। तो बाप दादा ने देखा, मेजॉरिटी बच्चों ने हद के मेरे को तेरा बनाया, इसलिए क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह। तो आज बाप दादा बच्चों को बेफिक्र बादशाह स्वरूप में देख रहे हैं। हर बच्चे को बाबा किस स्वरूप में देख रहे हैं? बच्चे को बेफिक्र बादशाह स्वरूप में देख रहे हैं। देखो, भक्ति मार्ग में भी आपके चित्र बनाते हैं तो डबल ताज दिखाते हैं। एक तो लाइट का ताज है ही, क्योंकि बेफिक्र आत्मा की निशानी है, मस्तक में लाइट चमकती है। और दूसरा ताज विकारों पर विजयी बने हो, इसलिए ताज दिखाया है। इसलिए ये अटेंशन रखो कि जब बाप दादा ने फिक्र लेकर फुकुर दे दिया तो क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह। बादशाह बने हैं तो तख्त भी चाहिए। जब बादशाह बने हैं तो बाबा कहते, तख्त भी चाहिए ना, ताज तो है फिर तख्त भी चाहिए। तो बाप दादा ने तीन तख्त के मालिक बनाया है।
एक भी नहीं, तीन तख्त के मालिक। जानते हो तीन तख्त कौन से हैं? एक तख्त भ्रुकुटी का, ये तो सबको है ही। दूसरा तख्त है बाप दादा का, दिल तख्त। और तीसरा है विश्व का तख्त, राज्य का तख्त। तो आप सबको ये तीन तख्त प्राप्त है ना। सबसे श्रेष्ठ कौन सा तख्त है? बाबा कहते सबसे श्रेष्ठ है बाप दादा का दिल तख्त। इन तीनों तख्त में सबसे श्रेष्ठ तख्त है बाप दादा का दिल तख्त। तो चेक करो तख्त पर रहते हो, क्योंकि बाप दादा के दिल तख्त पर कौन बैठता है? जिसने सदा स्वयं भी बाप दादा को अपने दिल तख्त पर बिठाया है, जिसने बाप दादा को अपने दिल तख्त पर बिठाया है, वही बाप दादा के दिल तख्त पर बैठता है। जो सदा श्रेष्ठ स्थिति में मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो चेक करो कि सदा तख्त नशीन है या कभी मिट्टी में भी आ जाते हैं। ये देह भान मिट्टी है, बहुत समय मिट्टी में रहे हैं तो कभी कभी मिट्टी में तो नहीं चले जाते हैं। बहुत समय दे अभिमान की मिट्टी में रहे हैं तो बाबा पूछते कभी कभी मिट्टी में तो नहीं चले जाते हो? तो बाप दादा सभी बच्चों को समय का इशारा दे रहे हैं, अचानक का पाठ पक्का करा रहे हैं। इसके लिए संगम के समय का बहुत बहुत महत्व रखना है, क्योंकि इस एक जन्म में अनेक जन्म की प्रारब्ध बनानी है। इसलिए बाप दादा ने इशारा दिया था। तो संगम के समय में दो बातों का हर समय अटेंशन देना। संगम का समय बहुत महत्व का है। बाबा ने इशारा भी दे दिया, अचानक का पाठ पक्का करा रहे हैं और एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। तो बाबा कहते दो बातों पर हर समय अटेंशन देना है। वह दो बातें तो याद होगी, समय और संकल्प। व्यर्थ संकल्प नहीं होना चाहिए और व्यर्थ समय नहीं गवाना है। पहले भी बाबा ने पिछली दो मुरलियों में इस बात पर अंडरलाइन कराया है। तो दो बातें तो याद होगी, समय और संकल्प। बाप दादा को सभी ने व्यर्थ संकल्प संकल्प द्वारा देने की हिम्मत रखी थी। व्यर्थ संकल्प को कैसे देंगे बाबा को? अपने संकल्प शक्ति द्वारा देने की हिम्मत रखी थी। तो चेक करो हिम्मत सदा कायम है, क्योंकि हिम्मत से बच्चे एक बार तो बाप हजार बार मददगार है। तो अभी क्या समझते हो? व्यर्थ संकल्प का जो हिम्मत रख बाप के आगे संकल्प किया वह कायम है, क्योंकि इस व्यर्थ संकल्प में समय बहुत जाता है और आपका इस समय के प्रमाण कार्य है विश्व की आत्माओं को संदेश देने का। तो व्यर्थ संकल्प को समाप्त करना है, तब दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति का अनुभव करा सकेंगे। बाप दादा को दुखी बच्चों को देख तरस पड़ता है। तो बाबा पूछते हैं आपको भी अपने भाई बहनों को देख तरस तो पड़ता है ना? बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय सभी को रुचि है, प्लान बनाया भी है, प्रैक्टिकल किया भी है, सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे किए हैं, इसकी मुबारक भी दे रहे हैं, लेकिन अभी समय के प्रमाण जल्दी जल्दी उन्हों को वारिस बनाओ। बाबा कहते अभी जल्दी जल्दी उन्हों को वारिस बनाओ, जो कुछ न कुछ वर्षे के अधिकारी बन जाए। अच्छा अच्छा बहुत कहते हैं। बाप दादा ने भी बच्चों के सेवा की रिजल्ट तो देखी है और बाप बच्चों पर खुश भी है, दिल से कर रहे हैं,
और अभी समय प्रमाण सुनते भी रुचि से हैं, इतना अंतर तो आया है। बाबा ने देखा कि अभी समय के हिसाब से सेवा की रिजल्ट भी बाबा ने देखी और बाप बच्चों पर खुश है, दिल से सेवा कर रहे हैं और सभी समय प्रमाण रुचि से सुनते भी है, तो इतना अंतर तो आया है। अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा बना के कुछ न कुछ वर्षे के अधिकारी बनाओ। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि अभी समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थी बनने की आवश्यकता है। अभी समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थी बनने की आवश्यकता है। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ है सेकंड में बिंदी लगाना, एक सेकंड में बिंदी लगाना, यह है तीव्र पुरुषार्थ की विधि। सेकंड और बिंदी दोनों समान। तो अब बाप दादा बच्चों का तो बेफिक्र बादशाह का रूप देख रहा है, अभी इसी रूप को सदा अनुभव करो। कोई भी कुछ भी आवे तो मेरे को तेरे में समा दो, बस मेरे को तेरे में समा दो। आज बाप दादा ने देखा गुरुवार का दिन है, बहुत बच्चे बाप दादा के पास पहुंचे तो बाप दादा ने कहा सप्ताह के दो दिन विशेष है, एक गुरुवार का दिन, दूसरा इतवार संडे। तो गुरुवार के दिन गुरु का दिन है और गुरु से क्या मिलता है, वरदान। तो गुरुवार के दिन वरदान का दिन विशेष है, इस रूप से गुरुवार को मनाओ। गुरुवार को गुरु का वरदान प्राप्त करने के लिए विशेष गुरुवार को मनाओ। कोई ना कोई विशेष वरदान अमृत वेले से अपनी बुद्धि में इमर्ज रखो। वरदान तो अनेक है, लेकिन विशेष एक वरदान अपने लिए बुद्धि में रख चेक करो कि वरदानी दिन में वरदान स्वरूप बन। वरदान को रिपीट नहीं करना है, लेकिन वरदान स्वरूप बनना है। गुरुवार के दिन सुबह उठ करके बाबा कहते इतने वरदान है, एक वरदान को ले लो और वरदान स्वरूप बनना है और चेक करते रहो तो आज कितना समय वरदान स्वरूप रहे। और संडे के दिन, संडे का दिन विशेष दुनिया में छुट्टी का दिन होता है, तो संडे के दिन मनाओ कि जो भी कुछ अपने जीवन में संकल्प मात्र भी कमजोरी हो, कोई भी कमजोरी अपने जीवन में हो, स्वप्न मात्र भी कमजोरी हो, उसको छुट्टी दे देना। छुट्टी का दिन है तो कमजोरी को उस दिन छुट्टी दे देना। तो जैसे लोग ये दोनों ही दिन अच्छा बिताते हैं, गुरुवार के दिन वरदान का दिन, वरदान स्वरूप बनना, और संडे के दिन कमजोरियों को छुट्टी दे देना, तो बाबा कहते ये दोनों ही दिन अच्छा बिताते, ऐसे आप भी इन दोनों दिन में विशेष लक्ष्य और लक्षण, सिर्फ लक्ष्य नहीं लेकिन लक्ष्य के साथ लक्षण को अटेंशन में रखो। बाप दादा ने सभी बच्चों को साथ ले चलने का वायदा किया है, इसके लिए साथ चलने की तैयारी क्या करनी है। बाप तो सेकंड में अशरीरी बन जाएंगे, लेकिन आपने जो वायदा किया है, बाप ने भी वायदा किया है साथ चलेंगे, तो चेक करो उसकी तैयारी है, साथ चलने की तैयारी है। सेकंड में बिंदी लगाई, संपन्न और संपूर्ण बन चला, तो ऐसी तैयारी है, पूछते बाबा। साथ तो चलना है ना, चलना है, कांध हिलाओ, चलना है। अच्छा पक्का, हाथ में हाथ देना, इसका अर्थ है समान बनना। हाथ में हाथ वही दे सकता जो समानता, जहां समानता हो। तो चेक करो, समय तो अचानक आना है,
तो इसकी तैयारी है जो साथ में चले। बाप का बच्चों से प्यार है ना, तो बाप एक को भी साथ चलने में पीछे छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये बाबा का प्यार है, साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ राजधानी में राजघराने में आएंगे। मंजूर है ना? मंजूर है, तैयारी है, मंजूर है तो हाथ उठा लेंगे। बाबा कहते मंजूर है तो हाथ उठा लेंगे, यह हाथ नहीं उठाओ। हाँ, बाबा कहते यह हाथ नहीं उठाओ, तैयारी है इसमें हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा, कल भी विनाश हो जाए तो तैयार हो? पूछते बाबा, अगर कल विनाश हो जाए तो सभी तैयार हो? लेकिन अपनी सेवा को समाप्त किया है, सेवा तो अभी रही हुई है या सेवा समाप्त हो गई है? संदेश सबको पहुंच गया है? सिर्फ अपने मोहल्ले में ही देखो, आपने हर एक को बाप आ गया है, वर्षा लेना है तो ले लो, ये संदेश दिया है। हम बाबा कहते अपने मोहल्ले में ही ये संदेश दिया है, अभी प्लान बना रहे हैं। बाप दादा ने सुना कि घर घर में संदेश देने का प्लान बना रहे हैं। अच्छा है, संदेश तो देना ही है, नहीं तो उलहना मिलेगा। प्रोग्राम बनाया है ना? उठो, बाप को प्लान बताया है ना, उठो। तो मीडिया वालों को उठाया, मीडिया वालों ने ये प्लान बनाया होगा। अच्छा है, उलहना पूरा कर लो, क्योंकि होना तो अचानक ही है, सब कुछ अचानक हो जाना है। तो आपस में मिलकर इसी प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ, आपस में राय सलाह जल्दी करो। समय लग जाता है ना, तो उमंग भी थोड़ा कम हो जाता है। बाकी बाप दादा को पसंद है कि घर घर में ये उलहना पूरा हो जाए। ऐसे न कहे कि हमको तो पता नहीं पड़ा, बाप आया और चला भी गया, हम वंचित रह गए। सभी को उमंग है ना, सबको उमंग है। सेवा करके उलहना पूरा करना है, उमंग है तो बाप दादा का सहयोग भी है। अगर बच्चों को उमंग है तो बाप दादा का सहयोग भी है। अच्छा, तो बाप दादा के दिल की आश को तो सभी जानते ही हो, समान और संपूर्ण। ये दो शब्द सदा चेक करो, तो क्या बाप की ये आशा पूर्ण की है? क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को बाप के आशाओं का सितारा समझते हैं। हर एक बच्चे का बाप से प्यार है, तो बाप दादा भी जानते हैं इन सभी को मधुबन में लाने वाला क्या है। हाँ, बच्चे मधुबन में दौड़ दौड़ के आते हैं तो क्या लेके आता है? ये प्यार की ट्रेन में आते हैं, प्यार के प्लेन में आते हैं। तो बाप भी बच्चों के प्यार की सब्जेक्ट में बच्चों से खुश है। लेकिन जो दो शब्द बाप चाहते हैं, समान और संपूर्ण, बाप समान और संपूर्ण, इसको भी संपन्न करना ही है। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को दिल से, स्नेह से देख एक एक बच्चे को दिल के प्यार की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, फिर टीचर्स भी बहुत आए हैं, तो बाबा कहते टीचर्स को तो बाप दादा सदा ही याद करते, प्यार करते, क्योंकि टीचर्स निमित्त बनती है हर भाई और बहनों को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, टीचर्स का काम ही है सबको आगे बढ़ाना। टीचर को बाप दादा गुरु भाई कहते हैं, कितना बड़ा सम्मान है भगवान द्वारा मिला हुआ। टीचर को बाप दादा गुरु भाई कहते हैं, गुरु भाई का अर्थ है समान, क्योंकि जैसे बाप का कर्तव्य है सदा सेवा में बिजी रहना, ऐसे योग्य टीचर बाप समान सदा सेवाधारी और सदा सफलता स्वरूप बन, सफल स्वरूप बनाने वाली है।
बाप दादा को टीचर्स प्रति सदा ही दिल में प्यार है। क्यों? टीचर अर्थात सदा सेवाधारी, सदा बाप समान बनाने वाली और नए नयों को बाप का परिचय दे, अनुभवी बना के बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाली। तो बाप दादा टीचर्स पर खुश है और यही दिल का प्यार है। बाप का प्यार स्टूडेंट में भी भरकर उन्हों को भी बाप के पूरे वर्षे के अधिकारी बनाने वाली है। बाप की हर एक टीचर में उम्मीद रहती है।